0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस
2: भारतीय सेना की ताकत में होगा और भी ज्यादा इजाफा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी ने 1,10,000 करोड़ की खरीद प्रस्ताव को दी मंजूरी, 98% होंगे स्वदेशी उत्पाद। उज्जैन में धूमधाम से निकली बाबा महाकाल की सवारी, रजत पालकी में सवार होकर भगवान शिव ने भक्तों को दिए दर्शन, 11 किलोमीटर लंबे नगर भ्रमण में दिखे आस्था के अनूठे रंग।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज शुरुआत करेंगे अमेरिकी लेखक हेनरी मिलर की कही बात के साथ। कवि हेनरी मिलर ने फ्रांस के पेरिस शहर के वसंत का वर्णन करते हुए लिखा था, जब पेरिस में वसंत आता है तो दुनिया के सबसे साधारण इंसान को भी ऐसा महसूस होने लगता है कि वो स्वर्ग में रह रहा है। इस समय पेरिस में एक बार फिर से वसंत आया है, लेकिन ये हर साल वाला वसंत नहीं, बल्कि पेरिस में इस वक्त सनातन का वसंत चल रहा है। और जैसा कि हेनरी मिलर ने कहा था कि वाकई पेरिस में इस समय स्वर्ग सा एहसास है। भारत की समृद्ध संस्कृति के रंग इस समय पेरिस में बिखरे से हैं। एफिल टावर का शहर भारत के रंगों में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। पेरिस में पहले बड़े हिंदू मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। सालों की तपस्या से पेरिस में तैयार हुआ बैप स्वामी नारायण मंदिर, इस मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ हिंदू देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। भव्य समारोह हुआ और भारतीय लोगों के साथ फ्रांसीसी मूल के लोग भी आस्था के इस उत्सव में मगन दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा है पेरिस का अक्षरधाम मंदिर।

डच में एक कहावत है, म्यू व टॉक इज जमे, यानी देर से करना कभी न करने से बेहतर है। देर से ही सही, लेकिन जरा देखिए फ्रांस में आखिरकार हुआ क्या है।

फ्रांस में वही हुआ है जो इससे पहले अमेरिका, यूके, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक के कई हिस्सों में कई सालों पहले हो चुका है। फ्रांस में अब सियाराम की जय जयकार है, एफिल टावर के शहर में अब बजरंग बाण की पुकार है, फ्रांस की राजधानी में अब कन्हैया की जयकार है, पेरिस में अब महादेव की भक्ति अपार है, क्योंकि पेरिस की धरती पर अब बनकर तैयार है मंदिर दे पेरी, पेरिस का पहला बड़ा हिंदू मंदिर। 6 सितंबर से फ्रांस के पहले स्वामीनारायण मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। ये मंदिर मेनलैंड यूरोप का पहला बड़ा हिंदू मंदिर है, जिसके पट खुलने के साथ सनातन संस्कृति और

0: 6 सितंबर को पेरिस में पूरे विधि विधान और वैदिक परंपराओं के साथ देवताओं और भगवान स्वामी नारायण के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंत्रोच्चार के बीच जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पूरा हुआ, पूरा मंदिर परिसर जयकारों और भगवान के संकीर्तन से गूंज उठा। महंत स्वामी महाराज की मौजूदगी में करीब 125 संत और हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अवसर पर बधाई देते हुए विश्वास जताया कि ये मंदिर भारत फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊंचाई देगा और इसके मानवीय मूल्य पूरे यूरोप में गूंजेंगे।
1: भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों का नया युग स्तंभ है। पूज्य संत जनों और सनातन परंपरा के श्रेष्ठ जनों के आशीर्वाद के साथ आज इस लोकार्पण का मंच वसुधैव कुटुंबकम के भाव का जागृत मंच बन गया है। भगवान स्वामीनारायण की कृपा और हमारे संतों का स्नेह, संतों का आशीर्वाद, मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे पुण्य अवसरों से जुड़ने का अवसर हमेशा मिलता रहता है।
0: पेरिस में तैयार हुआ बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर करीब 5000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसके ऊपरी तल पर पारंपरिक शैली का मंदिर बनाया गया है, जबकि नीचे के हिस्से को सांस्कृतिक केंद्र का स्वरूप दिया गया है। मंदिर का यह हिस्सा सिर्फ पूजा की जगह नहीं होगा, बल्कि यहाँ सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मंदिर परिसर में भारतीय परंपरा और आधुनिक तकनीक का संगम है। मंदिर में भारत से लाए गए खास पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें भारत में करीब 1000 साल पुरानी नक्काशी की तकनीकों से तैयार किया गया है। कई हिस्सों पर कारीगरों ने हाथ से बारीक नक्काशी की है। भारत में तैयार किए गए इन पत्थरों को फ्रांस लाकर मंदिर में लगाया गया। इस काम में भारतीय कारीगरों के साथ फ्रांस के विशेषज्ञ भी शामिल रहे, जिनमें फ्रांस के प्रसिद्ध नोट्र डेम कैथेड्रल की मरम्मत से जुड़े कारीगर भी शामिल थे।
2: इस मंदिर के अंदर जो पत्थर है वे भी अलग अलग देशों से हैं। वियतनाम से पत्थर आए हैं, ग्रीस से पत्थर आए हैं, इटाली से हैं और भारत के ग्वालियर का बलुआ पत्थर भी इस मंदिर में उपयोग में आया है। ये सभी पत्थर भारत गए, वहां पर प्राचीन भारतीय शिल्पकला के अनुसार इस पर कार्विंग की नक्काशी की गई और वापस ये पत्थर फ्रांस की धरती पर आए। ये केवल फ्रांस की धरती पर पत्थर नहीं आए, बल्कि अपने साथ भारतीय संस्कृति का हजारों वर्ष पुराना इतिहास और संस्कृति को लेकर आए। और इन पत्थरों को यहाँ पर संयोजित किया गया एक मंदिर के रूप में, इसमें फ्रेंच की आधुनिक इंजीनियरिंग का भी उतना ही योगदान है। तो आज यह पूरे विश्व में यह मंदिर संदेश दे रहा है कि जब दो संस्कृतियां मिलती है तब एक अजोड़ कार्य सिद्ध होता है।
0: इस तरह मंदिर में भारतीय शिल्प कला और फ्रांस की आधुनिक निर्माण तकनीक का मेल देखने को मिलता है। मंदिर की संरचना में गुंबद, स्तंभ और शिखर जैसी पारंपरिक हिंदू वास्तुकला शामिल है। इसके अलावा मंदिर में इस्तेमाल हुए पत्थरों पर हुई कार्विंग में भारतीय पौराणिक इतिहास और लोक जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंगों को भी जगह दी गई है।
2: यहाँ पर जो बारीक नक्काशी की गई है उसमें हजारों वर्ष पुरानी भारतीय शिल्पकला, भारतीय शास्त्र है उनके अनूठे, हमारे प्राचीन भारत में जो कहानी थी, कथानक थे, उनको यहाँ पर उकेरा गया है, जो हमें हर एक पत्थर के अंदर, हर एक नक्काशी के अंदर प्रेम, भाईचारा, बंधुत्व की प्रेरणा देता है। तो आज एफिल टावर से भी जो फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुता का संदेश गुजरा, उसके साथ साथ भारतीय संदेश इस मंदिर के द्वारा सर्वे भवंतु सुखिना का संदेश भी भारत इस बीएपीएस हिंदू मंदिर के द्वारा उद्घोषित हो रहा है।
0: यूँ समझिए कि पेरिस के पूर्वी उपनगर बसी सेंट जॉर्जेस में बनाया गया ये दिव्य मंदिर भारत की प्राचीन वास्तुकला और फ्रांस की आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अभूतपूर्व संगम है। बताया जाता है कि करीब आधी सदी पहले ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज ने फ्रांस की धरती पर इस आध्यात्मिक केंद्र का स्वप्न देखा था, यानी इस मंदिर के निर्माण का विचार तो 1970 से ही था, लेकिन साल 2017 में इस मंदिर के लिए जमीन मिली। इसके बाद 2021 में मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई और साल 2026 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ।
2: ये बात 7 जुलाई 1970 की है, जब योगी जी महाराज इंग्लैंड से वापस भारत जा रहे थे, उनका प्लेन कुछ समय के लिए पेरिस की धरती पर रुका। योगी जी महाराज ने अपने युवा शिष्यों से कहा कि आप नीचे उतरे और इस पेरिस की भूमि पर चरण डालें। उस समय उनके युवा शिष्य प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज थे। वे भगवान की चल मूर्ति को हाथ में लेकर नीचे पेरिस की धरती पर उतरे, प्रार्थना की। जब वापस लौटे प्लेन में, तब योगी जी महाराज ने एक रहस्य का उद्घाटन किया कि आपको नीचे भेजकर भविष्य में एक जो मंदिर होने वाला है उसका भूमि पूजन कर दिया। और वास्तव में ऐसा ही था कि आज जो मंदिर बना है उसका भूमि पूजन 1970 में ही योगी जी महाराज के कर कमलों या उनके संकल्प से हो चुका था। योगी जी महाराज ने भावना व्यक्त की कि यहाँ पर भविष्य में एक मंदिर बनेगा जो पूरे विश्व में शांति, अस्तित्व और सौहार्द की भावना लेकर आएगा।
0: कभी एक संत के सपने से पड़ा बीज आज आस्था का विशाल वृक्ष बनकर फ्रांस की धरती पर लहलहा रहा है। उम्मीद यही है कि अपनी अलौकिक वास्तुकला और पवित्रता के चलते पेरिस का ये नया सनातन मंदिर आने वाली पीढ़ियों के लिए पश्चिमी दुनिया में सनातन धर्म की गौरवशाली पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखेगा। दिल्ली से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इतनी ममता कि नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गाना हमारी पीढ़ियों ने सुना भी है और जिया भी है, लेकिन भारत में हमारे लिए जो जीवन का सच है, फ्रांस वालों के लिए वो फसाना है। क्या आप सोच सकते हैं कि सीन नदी में भक्त जल यात्रा निकाले, पेरिस के सड़कों पर भगवान की पालकी यात्रा निकले और साथ चले नाचते गाते और झूमते हुए सैकड़ों भक्त। ये तस्वीर भारत में तो आम है, लेकिन फ्रांस वालों के लिए एक अलग दुनिया का नजारा है। लेकिन इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ये तस्वीर वाकई पेरिस में नजर आई। यानी ये मंदिर तो भव्य है ही, लेकिन साथ ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी उतना ही अद्भुत और विराट बना दिया गया है।

0: मशहूर अंग्रेजी लेखक चार्ल्स डिकेंस जब पहली बार पेरिस पहुंचे तो इसके प्रभाव से खुद को बचा नहीं पाए। डिकेंस के शब्द थे, मैं आपको बता नहीं सकता कि पेरिस ने मुझ पर कितना गहरा प्रभाव डाला है। ये दुनिया की सबसे असाधारण जगह है। डिकेंस ही क्यों बल्कि दुनिया भर के साहित्यकारों के लिए पेरिस केवल एक शहर नहीं बल्कि एक स्टेट ऑफ माइंड रहा है, प्रेरणा का गहरा एहसास रहा है। आर्ट, रोमांस, फिलोसफी और आजादी की हवा समेटे इस शहर को लेकर वैश्विक साहित्य की महानतम हस्तियों ने कालजयी बातें कही हैं। कवियों की कल्पनाओं वाले इस शहर की जमीन पर अब भारत की छाप भी पड़ चुकी है। पेरिस के कल्चरल कैनवस पर आज भारतीय संस्कृति का उजाला बिखरा है। पेरिस में न केवल स्वामी नारायण मंदिर का आकार लेना खास है बल्कि इस मंदिर का उद्घाटन समारोह भी यहाँ बेहद भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। पेरिस में इस महामंदिर का उद्घाटन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मेनलैंड यूरोप में भारतीय संस्कृति का अब तक का सबसे बड़ा उत्सव बन गया है। उत्सव की शुरुआत में पेरिस की प्रसिद्ध सीन नदी में एक भव्य और रंगारंग जल यात्रा निकाली गई। पारंपरिक भारतीय नौकाओं पर पवित्र कलश रखकर निकाली गई इस यात्रा को देखने के लिए हजारों स्थानीय नागरिक और यूरोपीय पर्यटक नदी के किनारों पर इकट्ठा हुए। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के भाग के रूप में ही मंदिर में भव्य पालकी यात्रा भी निकाली गई। इस मौके पर भारतीय संस्कृति का रंग भी पूरे शहर में दिखाई दे रहा था। रंग बिरंगी झांकियां, फूलों से सजी देव पालकी, हाथों में तिरंगा और ढोल ताशों की थाप, इन सब के बीच श्रद्धालु जमकर झूमते नजर आ रहे थे। प्रतिष्ठा से पहले मंदिर परिसर में वैश्विक शांति, पर्यावरण संरक्षण और भाईचारे के लिए एक विशाल वैदिक यज्ञ का आयोजन भी किया गया। इसमें यूरोप के कई देशों से पहुंचे सैकड़ों अप्रवासी भारतीयों और फ्रांसीसी मेहमानों ने आहुति दी। उत्सव के दौरान हर शाम फ्रांस और भारत के कलाकार भरतनाट्यम, कथक और पारंपरिक लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां दे रहे हैं। साथ ही आगंतुकों को भारतीय दर्शन, मेडिटेशन और शाकाहारी जीवन शैली से परिचित करवाने के लिए विशेष वर्कशॉप्स का आयोजन भी हो रहा है। और पहले दिन से इस जश्न की एक और खास बात रही कि इसमें सिर्फ भारतीय मूल के लोग ही शामिल नहीं हुए बल्कि पेरिस के मूल निवासी भी इस उत्सव के रंग में रंगे नजर आए। ढोल की थाप पर झूमते लोग बता रहे थे कि भले ही देश और भाषा अलग हो लेकिन खुशी और उत्सव की भावना सबको जोड़ सकती है।
1: हमारी प्राचीन भारतीय शास्त्र कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि हमारी भाषाएं अलग हो सकती है, हमारे पहनावे अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा एक धरातल है प्रेम, भाईचारा और सह अस्तित्व। तो इसी मूल्यों पर इस मंदिर का निर्माण परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने किया है।
0: भारत की संस्कृति का ये रंग विदेश की धरती पर पहली बार नहीं दिखा है। साल 2024 में अबुधाबी में भव्य हिंदू मंदिर का लोकार्पण हुआ था और अब पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर की भव्यता भी दुनिया का ध्यान खींच रही है। पेरिस में रहने वाले भारतीयों के लिए ये मौका गर्व और खुशी का है। हालांकि यहाँ उत्सव अभी खत्म नहीं हुआ है। 14 सितम्बर तक चलने वाले इस महाउत्सव में कई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेरिस में मनाया जा रहा ये उत्सव सिर्फ एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है बल्कि ये भारत की आस्था, उसकी संस्कृति, उसकी शिल्प कला और उसकी परंपराओं की भी झलक है। साथ ही ये मंदिर भारत और फ्रांस की तकनीक और कारीगरी के मेल की कहानी भी कहता है। और सबसे बड़ी बात, ये उस आस्था की तस्वीर है जो अब देश की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: ये तो थी पेरिस के अक्षरधाम मंदिर की बात, लेकिन आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों में पहले से कई दिव्य और भव्य सनातन मंदिर मौजूद हैं। शताब्दियों पुराने इन मंदिरों में करोड़ों लोगों की आस्था बसती है। इन मंदिरों के रूप में भारत की धरती के बाहर भी सनातन की पताका सदियों से लहराती आई है

आज सनातन आस्था की जो धारा पेरिस में बहती नजर आ रही है वो एक लंबे अरसे से दुनिया के कई और देशों में यूं ही अनवरत बह रही है। दुनिया भर में कई देशों में बेहद भव्य हिंदू मंदिर पहले से मौजूद हैं। ये मंदिर न केवल आस्था के केंद्र हैं, बल्कि पर्यटन के भी केंद्र हैं। इनमें से कई मंदिर बेहद प्राचीन हैं, कई इतने खास हैं कि उन्हें यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है।

ये मंदिर करीब 500 एकड़ क्षेत्र में बना है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1112 से लेकर 1153 के बीच हुआ था और इसे राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। कालांतर में इसे बौद्ध रूप दे दिया गया। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है।

अमेरिका में मौजूद राधा माधव मंदिर की गिनती भी दुनिया के भव्य और दिव्य सनातन मंदिरों में होती है। यह मंदिर अमेरिका के टेक्सास राज्य में मौजूद है और ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है, जिसके चलते इसे बरसाना धाम के नाम से भी जाना जाता है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

इसके बाद बारी आती है मलेशिया के बातु गुफा मंदिर की। ये मंदिर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से 13 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये शानदार मंदिर भगवान शिव, माँ पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। इस मंदिर की गुफाएं चूना पत्थर की पहाड़ी पर बनी हुई हैं। बताया जाता है कि ये गुफाएं करोड़ों साल पुरानी हैं।

दुनिया में पहले सनातन धर्म से जुड़े मंदिरों में इंडोनेशिया का बिस्केह मंदिर भी शामिल है। ये हिंदू मंदिर इंडोनेशिया की राजधानी बाली में अगुंग पर्वत पर मौजूद है।

इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का श्री शिव विष्णु मंदिर भी एक बेहद भव्य और दिव्य सनातन मंदिर है। ये मंदिर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में मौजूद है। ये शानदार मंदिर भगवान विष्णु और शिव को समर्पित है।

सनातन के अनुयायियों में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का नाम बेहद श्रद्धा और आदर से लिया जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के किनारे मौजूद ये मंदिर भगवान शिव के श्री पशुपतिनाथ रूप को समर्पित है।

इस मंदिर की स्थापना वैसे तो 13वीं सदी में हुई, लेकिन कालांतर में ये कई बार टूटा और बनाया गया। इस मंदिर में हर शिवरात्रि पर भव्य उत्सव का आयोजन होता है।

इसी तरह फिजी की राजधानी नाडी में मौजूद श्री शिव सुब्रमण्य मंदिर भी एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ये मंदिर भगवान कार्तिकेय के अवतार मुरुगन को समर्पित है। इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1926 में हुआ था। मंदिर को द्रविड़ शैली में बनवाया गया है।

इंडोनेशिया के जावा में मौजूद प्रम्बनन त्रिमूर्ति मंदिर भी विदेश में हिंदू देवी देवताओं के चर्चित मंदिरों में शामिल है। ये जावा का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इस मंदिर में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा होती है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में हुआ था।

इसी तरह मॉरिशस का महेश्वरनाथ मंदिर भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये मॉरिशस के ट्रायोलेट शहर में मौजूद है और इसे ग्रैंड शिवाला ऑफ ट्रायोलेट भी कहा जाता है।

महादेव को समर्पित ये मंदिर मॉरिशस द्वीप के सबसे पुराने और सुंदर मंदिरों में गिना जाता है। इसकी स्थापना 1888 में कलकत्ता से आए पंडित सजीवन लाल राम सुंदर ने की थी।

1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के हाथों रमना काली मंदिर के नष्ट होने के बाद से ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू पूजा स्थल के रूप में जाना जाता है। ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है।

0: बना लेते हैं और कौन सी राशि के लोग हमेशा भावनाओं के चक्कर में शत्रुता कर बैठते हैं। कैसे करें शत्रुता और विवाद से बचाव, जानिए राशियों के अनुसार सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: मिस्र के अल अलामीन एयर शो में आज दिखेगा भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर का दम, डॉल्फिन लीप और स्पॉट स्टॉल ट्रांसफॉर्मेशन भी करेगी पेश। नागपुर में गणेश उत्सव से पहले सजे भव्य गणपति पंडाल, ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर बापा का स्वागत, उत्साह से झूमे भक्त। वडोदरा के पीएम मोदी आज पीएम मोदी जेन जी से सीधा संवाद करेंगे, 6000 से ज्यादा छात्र और युवा शामिल होंगे, जिले को 35,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले। कश्मीर में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ, कलाकारों की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने बांधा समा, 41 देशों की 135 फिल्में होंगी प्रदर्शित। विश्व पैरा तीरंदाजी में भारत के दो मेडल पक्के, तीरंदाज शीतला देवी की गोल्ड पर निगाहें, फाइनल में कजाकिस्तान की एजादा सीडान से मुकाबला, सरिता का ब्रॉन्ज के लिए मैच। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।
4: कहे स्वामी जी हस्बैंड बेबू बताओ बेलन कहां है, तो तुम्हें उल्लू ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, सिर पे छोरा है नगर में खोज रहे हो, अब तुम्हें उल्लू ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। वैसे ही परमात्मा तुम्हारे भीतर है और तुम बाहर खोज रहे हो, तुम्हें उल्लू ना कहा जाए तो क्या कहा जाएगा। तुम मेरे पागलो, परमात्मा खोजने से प्राप्त नहीं होता है, परमात्मा तो खो जाने से प्राप्त होता है। जो उसमें खो जाता वो पा जाता, तो जिन खोजा तिन पाइया, खो जाने का मतलब उसमें डूब जाओ, अंधर में डूब जाओ, घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। बादल हटते ही सूर्य दिखाई देने लगता है, सूरज की रोशनी नीचे आ जाती है, सूर्य की रोशनी तो हमेशा रहती है, अभी थोड़ा बादल है ढका हुआ है, बादल हटने दो सूर्य अपने आप दिखाई पड़ेगा। वैसे ही अंदर परमात्मा है, वो ढका हुआ है माया में, थोड़ा माया को हटने दो परमात्मा तुम्हें दिखाई पड़ेगा। और तुम खोजते मंदिरों में, तुम खोजते तीर्थों में हो, तुम खोजते यहां वहां हो, खोजो यहां देखना भैया कोई जगत जननी चिल्ला रही उनकी सुनो कोई, बाकी प्रवचन बाद में, पहले जगत जननी की सुनो, नहीं तो वो पृथ्वी तोड़ देंगे, लगता है उन्होंने चैन या हार खो दिया है, वो खोजने आई थी भगवान को, लगता है उनका चैन चली गई है या हार चला गया है और पकड़ भी लिया है हमें लगता है।

0: ठीक है बैठो जगत जननी, आते हैं रक्षक। हाँ सुनो, तो परमात्मा को पाने का सर्वोत्तम मार्ग है खो जाना। मेरे पागलों, अंत में हम एक ही बात कहेंगे, तुम सदा सदा के लिए भगवान के हो जाओ, तुम भगवान के हो जाओगे तो भगवान भी तुम्हारे हो जाएंगे। तुम्हारी मुसीबतें कम होनी नहीं है। आदमी की मुसीबतें कहां कम होती हैं, आदमी चाहे कम हो जाता है, मुसीबतें कम नहीं होती। सिर का दर्द ठीक हो तो पेट दर्द करता, पेट का दर्द ठीक हो तो पड़ोसी दर्द करता है, पड़ोसी का दर्द ठीक हो तो पड़ोसन दर्द करती, वो ठीक हो तो घरवाली प्राण नहीं छोड़ते, फिर बच्चे, फिर झंझट लगे ही रहते हैं। हम चाहते हैं तुम्हारा एक ऐसा पर्चा बन जाए कि समस्याएं जितनी आती जाएं सो आती जाएं, समाधान सबका होता जाए। क्या तुम भी ऐसा चाहते? आप एक समस्या का समाधान चाहते या प्रत्येक का? हैं? जोर से बोलो जी। प्रत्येक का कौन कौन चाहता? वाह, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। हमारी तीन बातें मानना। पहली, आज से लहसुन प्याज बंद कर देना। दूसरी, पेशी शुरू कर देना। और तीसरी, जब भी उनके चरणों में जाना कह देना तुम हमारे और हम तुम्हारे। तुम हमारे और हम तुम्हारे। एक बात और, प्रश्न कभी खत्म नहीं होते। न जिंदगी के न जीवन के, न शंका के न समस्या के। मानो कि हम बता दें कि चलो तुम्हारी शादी 2027 में हो जाए, तो अगला प्रश्न तुरंत उठेगा, किससे होगी? भाई लड़की से होगी? क्या नाम होगा? मुन्नी भाई। कैसी दिखती होगी गुरुजी? गोरी। कहां की? दिल्ली की। दिल्ली तो बहुत बड़ी है, दिल्ली में कहां? लाजपत नगर, वो भी बहुत बड़ा है। बाप का नाम फोकन लाल। फिर भी प्रश्न खत्म होंगे कि नहीं? जीवन में प्रश्न आते ही रहना है और आते रहेंगे, और तुम उत्तर पाने कभी हमारे पास, कभी किसी गुरु के पास, कभी YouTube पर, कभी गूगल बाबा पर, कभी Facebook पर, उत्तर खोजते ही रहते। हम चाहते हैं तुम्हें हर समस्या का समाधान मिले, हर प्रश्न का उत्तर मिले, और एक दिन ऐसा आए कि तुम उत्तर बन जाओ, प्रश्न खत्म हो जाए। और ऐसा हो सकता है, कि तुम अपने आप में उत्तर बन सकते हो, प्रश्न खत्म हो जाए। और उसका उपाय और उपादान इतना ही है कि या तो भगवान को छोड़ो या भगवान पर छोड़ो, या तो भगवान को छोड़ो या भगवान पर छोड़ो। अब भगवान पे छोड़ दिया, जो जलते हैं उन्हें जलाओ। तुम हमारे पास आए हो, कुछ लोग विरोध करेंगे और करना भी चाहिए, जो अपना सामना नहीं कर सकते वो विरोध करेंगे। अपन आदमी ही ऐसे हैं कि या तो कोई हमारी तारीफ करेगा या गाली बकेगा, छोड़ तो सकता नहीं है अपन को, दो में से कुछ एक करेगा। और जिसने हमें जाना नहीं वो विरोध करेगा, जो जान लेगा वो विरोध थोड़ी करेगा, यहीं का होकर के रह जाएगा। इसलिए मेरे पागलो, हम तुमसे भी कहेंगे कि जीना सीखना है तो आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ पल तुम मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से हूं लड़ा, हर पल मुसीबत में रहा हूं खड़ा, मेरे पीछे जिसका हाथ है वो बजरंग मली मेरे साथ है, मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी मुड़ा नहीं, मैं कभी रुका नहीं। इसलिए आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ पल तो मेरे साथ गुजार, दुख दर्द पीना सिखाता हूं। हमने इतनी मुसीबतें झेल ली कि अब मुसीबत आती है तो लगता है खुजली हो रही, और तुम्हें मुसीबत आती है तो हाय दैया, छाती फट गई, हाय दैया, मरे राम, हाय दैया, अरे बाप रे मर गए, तुम छाती पीटने लगते हो। बस हम में और तुम में इतना ही अंतर है, तुम पर विपत्ति आती है तो तुम हाय दैया करके छाती पीटते हो, हम पे विपत्ति आते तो हम भीतर कहते चाय बनाओ रे। देखा जाएगा, और कर भी क्या सकते भैया, अब आ गई मुसीबत तो आ गई, बुलाने थोड़ी गए थे हम मुसीबत को, आ गई है तो देखा जाएगा, और अपन को ही तो झेलना है। तुम चाहे रो चाहे गाओ, मुसीबत तो रहनी ही है। अब मान लो तुम्हें फोड़ा हो गया, अब क्या करोगे, चाहे रो चाहे गाओ, हमें जुखाम हो गया, अब चाहे हम जो करें, अब हो गया सो हो गया, बाहर में गया, जुखाम के भी मजे ले रहे। हम बीच बीच में नाक बंद कर लेते हैं तो शरीर ही फड़फड़ाता, तो भीतर से आवाज आती है तो सांस तो छोड़ो, हम कहते तुम पहले जुखाम छोड़ो। लो चल रही लड़ाई, अब जुखाम खुद कंफ्यूज है कि इसके शरीर में रहे कि छोड़े। इसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। खैर घर पे तुम ट्राई मत करना हमारी आदतें, वरना सांस ना छोड़ी तो तुम्हें छूट गए। राम नाम सत्य है, ना जुखाम रहेगा ना जुखाम वाला। हम बता रहे हैं अपने अपने तरीके हैं जीने के मुसीबतों से। हम पे भी मुसीबत आती है, हम पे भी झंझट आते हैं, कुछ लोग हमारे लिए भी लगे रहते हैं, विपत्तियां आती हैं, क्या नहीं। आज दरबार वहां मैदान में लगाना था, यहां वहां बारिश हो गई, साउंड वहां गया नहीं, तो हमने हाय दैया थोड़ी किया, छाती थोड़ी पीटी, ना ना ना, दो घंटा लेट से ही यहां टीन सेट में लगा लेंगे, लो बढ़िया, पानी भी कल बरसता रहे नो प्रॉब्लम, आज बरसता रहे नो प्रॉब्लम, यहां दरबार लग रहा है आनंद है। अब मान लो वहां दरबार ना लगता, फिर छाती पीटते, लो हद हो गई, हमारे चेले सुनते नहीं, ये नहीं करते, अब भाड में गया, कौन किसकी सुनता, और चेले कहां हमारी सुनेंगे, ये अपने बाप की नहीं सुनते थे, आओ हमारी कहां सुनेंगे, हलवा में सुनेंगे, और जो अपने बाप की सुनते होते तो यहां होते ही, जब इनने अपने बाप की नहीं मानी हमारी क्या मानेंगे, खाक, जब हमारी नहीं माननी है तो हम पहले ही माइंड सेट में बाहर में जाओ, तुम अपनी ठठरी बराओ, जब तुम्हें मानना हो सो मानना, हम ना तुम्हें कहेंगे। एक आदमी हमसे बोला, बोला कि यदि आप ऐसा करोगे हम अनशन पे बैठ जाएंगे, उनका तुम्हें बाप की कसम है अनशन पे बैठ जाना, हम कोई गुरुजी होंगे तुम्हें अनशन से उठने नहीं देंगे, तुम उठोगे भी तब भी हम कहेंगे कि नहीं बिल्कुल नहीं उठना चाहिए इस आदमी को अनशन से। हाँ बोला हम भोजन छोड़ देंगे, हमका तुम भोजन की बात करते, हम तुमसे पानी छोड़वाएंगे, जल्दी निपटो। और आदमी होंगे कोई जो डर जाए तुम्हारी धमकियों से, तुम्हारी भपकियों से कि हम तुम्हारा, एक व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले धमकी दे रहा था कि बाबा बागेश्वर का हम घेराव करेंगे, हमका चेले वैसे ही घेरे रहते हैं, तुम और आ जाओ हम सेल्फी तुम्हें भी देंगे बेटा, भभूति देंगे, हमारा तुम घेराव करने आओ, तुम्हें ये भरोसा हो कि हम डर जाए तो तुम ऐसे गुरु ना समझना कोई, हम तो थोड़ा उल्टे ही गुरु है, तो हमारे पास आओगे घेराव करने, हम तुम्हें भभूति बांट देंगे और दो चार को भूत और खिलवा देंगे, लो करो घेराव। तो तुम्हें लग रहा होगा कि कोई और गुरु है तो डर जाएंगे, अपन तो बहुत उल्टे आदमी है, हम हर चीज उल्टी ही सोचते हैं, उल्टी ही चलते, पर तुमसे हम यही कहेंगे मेरे पागलो हर परिस्थिति में मुस्कुराओ, हर बात पर मुस्कुराओ, बालाजी के चरण शरण को पकड़ लो। हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं कितनी भी जिंदगी में मुसीबत संकट तो आएंगे, पर संकट मोचन यदि जीवन में रहेंगे तो तुम घबरा ना पाओगे। और हम तुम्हें संकट मोचन देना चाहते हैं, हम तुम्हारी बाह को बालाजी के चरणों में पकड़ना चाहते, और सुनो एक दिन के लिए नहीं सदा सदा के लिए, क्योंकि तुम पे मुसीबतें तो आनी ही आनी है भैया, हमसे दोस्ती कर लो काम आएंगे, हम बड़े काम आएंगे, ऐसा आदमी तुम्हें मिलेगा भी नहीं, कर लो दोस्ती बड़े काम आएंगे, सब लुट जाएगा तब भी तुम हमारी तरह मुस्कुराओगे, भाड़ में गया लुट गया कौन सा अपने बाप का गया, यहीं से मिला था यहीं लुट गया, जय बजरंग बली की, चलो भैया भंडारा खाएंगे अपन आओ। हाँ कुछ साल पहले हमको एक अधिकारी ने धमकी दी कि बाबा तुम बहुत बोलते हो, एक आध दिन जेसीबी चलवा दी जाए, हमका कल चलाते हो आज चला दो। बड़ा चौंक गया अधिकारी, सामने ही बैठा था, चौंक गया, बोले कैसी बातें करते हो बहकी बहकी, हमका ये तुम भपकियां किसी और को देना, हम तो डरने वाले नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये आश्रम हमने नहीं बनाया, जनता के पैसे से बना, जनता के लिए बना, हमारे बाप पे तो मकान भी नहीं था, जनता ने चंदा दिया दान दिया, हमने जनता के लिए बनवा दिया, और गिरेगा भी तो जनता का गिरेगा, अपने बाप का हलवा गिरेगा। वो भी चौंक गया, बोले बहुत खतरनाक आदमी हो तुम, हमका तुम फंसे नहीं हो अभी हम, और तुम कभी हवेली पे आ मत जाना वरना इतना छीलेंगे हम तुम्हें, इतना छीलेंगे कि तुम हमारा मकान गिराओगे बेटा, हमारा आश्रम गिराओगे, हम तुम्हारा घर ऐसा गिरवाएंगे, तुम्हारे घरवाली के बारे में बताएंगे, घरवाली के साथ ना बैठ पाओगे तुम, हाँ इतनी टेंशनें भर देंगे तुम्हारे दिमाग में। फिर चुप हो गया, उस दिन के बाद आज भी हमारी दीक्षा लिए है, चेला बन गया है आजकल हमारा, बना एक साल बाद, पर अपन ने उन्हें दीक्षा दे रखी है, रोज ओम बागेश्वराय नमः जप रहा है, हमका बने रहो चेला खुश रहो। अब वो जब भी हमारे पास आता है हम पूछ लेते कहो जेसीबी आएगी क्या, तो तुरंत दूर से ही हाथ जोड़ता कि कृपा करो बहुत पुरानी बात हो गई, अब नई बातें करो गुरु जी, अब छोड़ दो, तब अनजाने में हम बोल गए, अब थोड़ी बोलेंगे, कोई बात नहीं खुश बने रहो, यही हम तुमको सिखाना चाहते, हम तो सिर्फ गुरु हैं जीना सिखा सकते तुम्हें, आओ तुम्हें पागल बनाएं। और पागल बनने का मतलब मेंटल नहीं होता, पागल होने का मतलब तुम आज से घर जाना और ऐसी हरकतें करना हंस के कि घर वाले भी टेंशन में हो जाएं कि कहां से आए, हाँ और वो पड़ोसी तो टेंशन में हो ही जाए जो तुम्हारे रोने का इंतजार कर रहा था, वो पूछे जरा इसका पता करो कौन से दरबार में जा रहा है, तब बता देना लगा के आग सोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले, बागेश्वर धाम की, बाकी तुम्हारी जिंदगी तुम्हें काटनी है, हमारी हम काट रहे हैं।
1: कौन सी राशि के लोगों का विवाद धन के चक्कर में होता है? कौन सी राशि के लोग अपने अहंकार में दुश्मन बना लेते हैं? और कौन सी राशि के लोग हमेशा भावनाओं के चक्कर में शत्रुता कर बैठते हैं। कैसे करें शत्रुता और विवाद से बचाव, जानिए राशियों के अनुसार सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: सेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: मिस्र के एल अलामीन एयर शो में आज दिखेगा भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर का दम, डॉल्फिन लीप और स्पॉट स्टॉल टर्न फॉर्मेशन भी करेगी पेश। नागपुर में गणेश उत्सव से पहले सजे भव्य गणपति पंडाल, ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर बप्पा का स्वागत किया गया, उत्साह से झूमे भक्त। वडोदरा में पीएम मोदी आज जेनजी से सीधी बातचीत करेंगे, 6,000 से ज्यादा छात्र और युवा शामिल होंगे, जिले के 35,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी मिलने जा रही है। कश्मीर में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हुआ शुभारंभ, कलाकारों की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने बांधा समा, 41 देशों की 135 फिल्में प्रदर्शित होंगी। विश्व पैरा तीरंदाजी में भारत के 2 मेडल पक्के हुए, तीरंदाज शीतल देवी की गोल्ड पर नजर, फाइनल में कजाकिस्तान की एजादा सीडान से मुकाबला, सरिता का ब्रॉन्ज के लिए मैच।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: कश्मीर में सजा सिनेमा और संस्कृति का महामंच, घाटी में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हुआ शुभारंभ, सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया उद्घाटन। शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर गीत संगीत से गूंज उठा, कलाकारों की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने बांधा समा, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हुए। फिल्म फेस्टिवल से कश्मीर को मिली नई पहचान, सिनेमा के जरिए दुनिया से जुड़ रहा है कश्मीर, फिल्म फेस्टिवल ने खोले कश्मीर के सिनेमाई दरवाजे। एक्ट्रेस फातिमा सना शेख समेत कई सितारे फेस्टिवल में पहुंचे। निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा और रमेश सिप्पी भी बने आयोजन का हिस्सा। कश्मीर को ग्लोबल सिनेमा से जोड़ने की शानदार पहल। 41 देशों की 135 फिल्में प्रदर्शित होंगी। 10 सितंबर तक चलेगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। उज्जैन में सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा महाकाल की भव्य सवारी निकाली गई। रजत पालकी में सवार बाबा ने भक्तों को दर्शन दिए। पूरा शहर जय महाकाल के नारों से गूंज उठा। बाबा महाकाल की सवारी ने करीब 11 किलोमीटर का सफर तय किया। सवारी में पुलिस बैंड, घुड़सवार दल के साथ साथ भजन मंडलियां और कलाकार शामिल हुए। सवारी में बाबा महाकाल ने 6 अलग अलग दिव्य रूपों में भक्तों को दर्शन दिए। शिव तांडव, उमा महेश और मन महेश समेत कई रूपों में श्रद्धालुओं को मोह लिया। महाकाल की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु घंटों तक सड़क किनारे खड़े रहे। सवारी के दौरान फूलों की बारिश हुई और हर तरफ डमरू, शंख और भजनों की आवाज सुनाई दी। नगर भ्रमण के बाद बाबा महाकाल की सवारी शिप्रा नदी पहुंची। यहां पवित्र जल से भगवान का अभिषेक और पूजन किया गया। सवारी में सिंहस्थ की झांकियां भी दिखी। अकोला में विशाल कांवड़ यात्रा और पालकी उत्सव में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंजे और माहौल शिव भक्ति से भर गया। उज्जैन के जूना अखाड़े से आए नागा साधु भी इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। भस्म लगाए और हाथों में त्रिशूल लिए नागा साधु लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। नागा साधुओं ने उत्सव में पारंपरिक कलारी, क्रीड़ा और युद्ध कला का प्रदर्शन किया। हाथों में शस्त्र लेकर किए गए करतब देखकर श्रद्धालु रोमांचित हो उठे। कांवड़ लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पालकी उत्सव में पहुंचे, भगवान शिव की पूजा की। नागा साधुओं ने अकोला में लोगों की शिव भक्ति की जमकर तारीफ की। अकोला का पालकी और कांवड़ उत्सव आस्था और परंपरा का बड़ा संगम बन गया। नागा साधुओं की मौजूदगी में भक्तों के उत्साह ने आयोजन को और खास बना दिया। रायपुर के मूर्तिकार शिवचरण यादव करीब 25 साल से गणेश प्रतिमाएं बना रहे हैं। हर साल उनका परिवार कुछ नया और अनोखा करके पापा को आकार देता है। शिवचरण यादव इस बार 80 से ज्यादा प्राकृतिक और पूजन सामग्री से गणेश प्रतिमा बना रहे हैं। शंख, नारियल, बांस, जूट, मौली और धूप के साथ साथ अगरबत्ती जैसी चीजें इसमें शामिल हैं। शिवचरण यादव ने पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजों को ही गणेश प्रतिमा का हिस्सा बनाया है। उनकी कोशिश है कि भक्ति के साथ पर्यावरण बचाने का संदेश भी लोगों तक पहुंचे। प्राकृतिक सामान से तैयार होती हैं गणेश प्रतिमाएं। इन मूर्तियों के जरिए पर्यावरण के अनुकूल गणेश उत्सव मनाने का संदेश दिया जा रहा है। रायपुर के शिवचरण यादव की अलग तरह की गणेश प्रतिमाएं लोगों का ध्यान खींच रही हैं। उनकी कला में परंपरा, आस्था और पर्यावरण तीनों का मेल देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बच्चों ने अपने हाथों से बनाई गणेश प्रतिमाएं। शाडू मिट्टी से करीब 60 बच्चों ने पापा और उनके वाहन मूषक की मूर्ति तैयार की। बच्चों को मोबाइल से दूर रखने और उनकी रचनात्मकता बढ़ाने के लिए वर्कशॉप रखी गई। बच्चों ने मूर्तिकारों से गणेश प्रतिमा बनाना सीखा और खूब उत्साह दिखाया। सेल्फ क्रिएशन ग्रुप ने लगातार 6 साल पापा मेकिंग वर्कशॉप कराई। वहीं इनर व्हील क्लब और आर्य वैश्य महिला महासभा ने भी इस आयोजन में साथ दिया। बच्चों ने गणेश प्रतिमा को शुरुआत से लेकर आखिरी चरण तक अपने हाथों से बनाया। मूर्ति तैयार होने के बाद सभी बच्चे अपनी कलाकृतियां खुशी से घर ले गए। बच्चे अपनी बनाई गणेश प्रतिमाओं को 2 से 3 दिन तक सुखाएंगे, इसके बाद खुद रंगों से बप्पा को सजाएंगे। गुजरात और राजस्थान के 25 गांवों के आदिवासी किसान बारिश की आस में कोटेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। किसानों ने भगवान शिव को पानी में डुबोकर बारिश के लिए प्रार्थना की। किसानों ने सरस्वती कुंड से मटकों और बाल्टियों से भरा पानी, इसके बाद सभी ने मिलकर मंदिर के गर्भगृह को पानी से भर दिया। करीब 30 मिनट में मंदिर का गर्भगृह पानी से भर गया। इस दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। किसानों का कहना है ये उनके समाज की पुरानी परंपरा है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा से इंद्रदेव खुश होते हैं और बारिश होती है। बनासकांठा में करीब 20 दिनों से बारिश नहीं हुई है, जिससे किसान परेशान हैं। फसल सूखने लगी है और पानी की भी दिक्कत बढ़ रही है। प्रयागराज में इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं हो रही हैं तैयार। गंगा की मिट्टी, धान के पैरे और प्राकृतिक रंगों से बनाई जा रही हैं मूर्तियां। गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को मनाई जाएगी। अब अंतिम दौर में है प्रयागराज में गणपति बाप्पा के स्वागत की तैयारियां। इस बार गणेश प्रतिमाओं में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कारीगर पर्यावरण को बचाने के लिए प्राकृतिक चीजों से मूर्तियां बना रही हैं। छोटी गणेश प्रतिमाओं को गमले में विसर्जन किया जा सकेगा। मूर्ति धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगी और पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की मांग बढ़ गई है। घर और बड़े पंडालों के लिए कारीगरों को लगातार मूर्तियों के लिए ऑर्डर मिल रहे हैं। राजस्थान का एक कारीगर परिवार पिछले 6 महीने से गणपति बप्पा की मूर्तियां बना रहा है। परिवार के 8 लोग मिलकर सैकड़ों मूर्तियां तैयार कर चुके हैं। एक गणपति मूर्ति बनाने में लगते हैं 10 से 12 दिन। मूर्ति बनाने में बेहद बारीक काम होता है, इसलिए इसमें लगती है काफी मेहनत। इन कारीगरों की बनाई गई गणपति मूर्तियों की मांग दूर दूर तक है। लोग पहले से ही बुक कर रहे हैं। गणपति की मूर्तियां बनाने में परिवार के बच्चे, महिलाएं और पुरुष सभी मदद कर रहे हैं। कई साल से यह परिवार मूर्तियां बनाकर भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है। इस बार 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। घर घर गणपति बप्पा की पूजा होगी। लोग मूर्तियां स्थापित करेंगे और उत्सव के बाद उन्हें विधि विधान से विसर्जित करेंगे। गणपति बप्पा के आगमन का उत्साह जोरों पर है। दिल्ली में मूर्तिकार दिन रात गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। मूर्तिकार मिट्टी को आकार देकर गणेश जी की सुंदर प्रतिमाएं बना रहे हैं। कहीं चेहरा तैयार हो रहा है तो कहीं मुकुट और आभूषणों पर काम जारी है। 2 बहनें पिछले 20 सालों से मिलकर कर रही हैं गणेश प्रतिमा तैयार। पिता के निधन के बाद दोनों बहनों ने परिवार की इस कला को आगे बढ़ाया। गणेश उत्सव से पहले बड़ी प्रतिमाओं को तैयार करने का काम जारी है। मूर्तिकार हर छोटी बारीकी पर ध्यान दे रहे हैं ताकि प्रतिमा सबसे खास दिखे। इस बार मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं पर भी खास जोर दिया जा रहा है। लोगों का संदेश है कि गणपति उत्सव आस्था के साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखें। नागपुर में गणपति बापा के आगमन की धूम। गणेश उत्सव से पहले सजे भव्य गणपति पंडाल, ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर बापा का स्वागत किया गया। गणपति बप्पा मौर्य की जयकारों की गूंज सुनने को मिली। गणपति आगमन के साथ शहर की बढ़ी उत्सव की रौनक, बप्पा के भक्तों में जबरदस्त उत्साह। दिल्ली में श्री धरणीधर जन्मोत्सव का भव्य आयोजन, धाकड़ समुदाय ने धूमधाम से मनाई भगवान धरणीधर की जयंती। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। मिस्टर केएल अलामीन एयर शो में आज दिखेगा भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर का दम, स्वदेशी एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर से सारंग दिखाएगी हवाई करतब। आसमान में सटीक फॉर्मेशन से दर्शक होंगे रोमांचित, सारंग टीम पेश करेगी डॉल्फिन लीप और स्पॉट स्टॉल टर्न। 10 सितंबर तक चलेगा ये एयर शो।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: कौन सी राशि के लोगों का विवाद धन के चक्कर में होता है? कौन सी राशि के लोग अपने अहंकार में दुश्मन बना लेते हैं? और कौन सी राशि के लोग हमेशा भावनाओं के चक्कर में शत्रुता कर बैठते हैं? कैसे करें शत्रुता और विवाद से बचाव, जानिए राशियों के अनुसार सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी ग्रह का दान करना चाहते हैं तो किस ग्रह के लिए किस वस्तु का दान किया जाएगा और किस समय दान करना चाहिए। तो अलग अलग ग्रहों के दान की वस्तुएं क्या हैं और अलग अलग ग्रहों के दान के नियम क्या हैं, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 8 सितंबर 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, बुध कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और चंद्रमा तथा बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम ग्रहों के दान के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि दान का महत्व क्या है। देखिए, दान एक ऐसा काम है जिसके माध्यम से हम धर्म का ठीक ठीक पालन कर पाते हैं और दान करके दूसरों की सहायता तो करते ही हैं, अपने जीवन की तमाम समस्याओं से भी निकल सकते हैं। आयु रक्षा के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दान को अचूक माना जाता है, लेकिन आयु और स्वास्थ्य के अलावा अन्य समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी दान का बहुत महत्व है। जीवन की बहुत सारी समस्याओं के लिए अगर आप दान करते हैं तो उस दान की शुभता से आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभदायक होता है। आपके लिए किसी खराब ग्रह की दशा चल रही हो, किसी खराब ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर हो और उस ग्रह से संबंधित चीजों का अगर आप दान करें तो आपका कल्याण अवश्य होगा। दान पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। देखिए, आप ग्रहों की शांति के लिए दान करने जा रहे हो या किसी की सहायता के लिए दान करने जा रहे हो, दान के नियम क्या हैं वो भी समझिए। देखिए, दान कभी भी किसी दबाव में नहीं करना चाहिए। पंडित जी ने कह दिया है, मन मार के प्रेशर में दबाव में दान कर रहे हैं, ऐसा दान फलीभूत नहीं होगा। दबाव में आके, प्रेशर में आके, तनाव में आके जबरदस्ती दान मत करिए। दान किसी ऐसे व्यक्ति को मत करिए जो कुपात्र हो। आपको पता है कि कोई व्यक्ति शराब पीता है, मदिरा पान करता है, उसको धन का दान करेंगे वो मदिरा ही पिएगा। इसलिए कुपात्र व्यक्ति को दान मत करिए।
जो भी वस्तु आप दान करें वो वस्तु उत्तम कोटि की होनी चाहिए, बढ़िया तरीके की होनी चाहिए। घटिया और खराब वस्तुओं का दान ना करें। आपकी कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण है, जो ग्रह आपके लिए लाभकारी है, उसका दान कभी मत करिएगा। दान में मांस मदिरा जैसी तामसिक वस्तुएं न दें तो ज्यादा अच्छा है। और दान देते समय मन में ये भावना लें, ये सोचें कि दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूं, ईश्वर की वस्तु ईश्वर को दे रहा हूं। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। इस भावना से दान करेंगे तो दान करने से कल्याण होगा। दान पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जानते हैं कि अलग अलग ग्रहों के लिए किस चीज का दान करना चाहिए और कब दान करना चाहिए। सूर्य देव की अगर बात करें तो सूर्य देव के लिए तांबे के बर्तन, गुड़, गेहूं के आटे का दान कर सकते हैं रविवार को दोपहर के समय में। चंद्रमा के लिए दूध, चावल, चांदी, चीनी और जल का दान कर सकते हैं सोमवार की रात को। मंगल के लिए लाल मसूर की दाल का, तांबे का, लाल फल का मंगलवार को दोपहर में दान कर सकते हैं। बुध, हरी सब्जियां, हरी दाल, सुगंधित वस्तुएं और कांसा ब्रॉन्ज, इसका दान बुधवार को प्रातः कर सकते हैं। बृहस्पति, केला, पीली दाल, हल्दी, शिक्षा की वस्तुएं, पीतल और सोना, ये बृहस्पतिवार को प्रातः दान कर सकते हैं। शुक्र, दही, शक्कर, सफेद वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन, ये दान कर सकते हैं शुक्रवार की रात को। शनि के लिए काले तिल, काली उड़द की दाल, काले वस्त्र और लोहे की वस्तुओं का दान कर सकते हैं शनिवार की शाम को। तो अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग वस्तुओं का दान करना लाभकारी होगा। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो ग्रह आपकी कुंडली में फेवरेबल है, जो ग्रह आपकी कुंडली में अनुकूल है, उसकी वस्तुओं का दान मत करिएगा। देखिए, दान के साथ हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि दान पवित्र भावना से, पवित्र मन से किया जाए। और देखिए, ग्रहों के दान के लिए बहुत परेशान मत होइए।
आप बिना मन में ये सोचे हुए कि मैं ग्रह का दान कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, आप वैसे किसी को वस्त्र देना चाहें, भोजन कराना चाहें, किसी की सहायता करना चाहें, तो उस हिसाब से आप कोई भी दान कभी भी कर सकते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि ये दान मैंने इस ग्रह के लिए किया है, तब वो दान उस ग्रह का दान होता है, बिना मन में भाव लिए हुए। सामान्य स्थिति से किसी भी वस्तु का दान आप किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आप सप्ताह में एक दिन भी किसी दिन निर्धन को भोजन करवाते हैं या अनाज का दान कर देते हैं, तो ऐसा करने से आपको रोजगार की समस्या कभी परेशान नहीं करेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 8 सितंबर 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: मिस्र के अल अलामीन एयर शो में आज दिखेगा भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर का दम, डॉल्फिन लीप और स्पॉट स्टॉल ट्रांसफॉर्मेशन भी करेगी पेश। नागपुर में

0: पीएम मोदी आज में आज पीएम मोदी जेनजी से सीधा संवाद करेंगे। 6000 से ज्यादा छात्र और युवा शामिल होंगे। जिले को 35,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले। कश्मीर में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ। कलाकारों की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने बांधा समा। 41 देशों की 135 फिल्में होंगी प्रदर्शित। विश्व पैरा तीरंदाजी में भारत के दो मेडल पक्के। तीरंदाज शीतला देवी की गोल्ड पर निगाहें। फाइनल में कजाकिस्तान की एजादा सिडान से मुकाबला। सरिता का ब्रॉन्ज के लिए मैच।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर है।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
3: जी नमस्कार।
2: तो गुड लक टुडे के आज के शो में हम बात करने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार विवादों से, तमाम तरह की शत्रुता से बचने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं आपकी राशि के अनुसार। पंडित जी आज आपके बारे में बताने वाले हैं, उससे पहले वक्त हो चला है जानने का कि आज का गुड लक मंत्र क्या है।
3: अगर आपको चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के फील्ड में सफलता पानी है तो हर हाल में भगवान शिव और सूर्य देव की उपासना करें। शिव आयु रक्षा के देवता हैं और सूर्य देव चिकित्सा के, औषधि के, मेडिकल के स्वामी हैं। तो हर हाल में शिव जी और सूर्य देव की अगर आप उपासना करें तो आपको लाभ होगा।
2: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि 8 सितंबर 2026 यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है।
3: दिनांक 8 सितंबर 2026 दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 2:42 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, शाम के 4:39 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
2: और चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जान लेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले लोग जो हैं वो शत्रुता और विवाद से बचने के लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं।
3: जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी दुश्मनी ना हो, शत्रुता ना हो, विवाद ना हो, और इससे बचने के उपाय क्या करने चाहिए। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। देखिए, अगर आपकी राशि मेष है तो धन के लेन देन में सावधानी रखें। धन के लेन देन में गड़बड़ी करने पर विवाद हो सकते हैं। हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना करें। आप विवादों से, मुश्किलों से, शत्रुता से

0: रहेंगे। वृषभ राशि, देखिए दुश्मनी से बचना है जितना हो सके, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखिए, अपने वाणी और क्रोध पर काबू रखिए और भगवान शिव को हर शुक्रवार को इत्र अर्पित करिए, गुलाब का या चंदन का। ऐसा नियमित रूप से करें तो आप वाद विवाद और शत्रुता से बच जाएंगे। मिथुन राशि, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गड़बड़ियां होती हैं आपकी, तो कृपा करके अति विश्वास से, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और हर मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन और पूजन अगर आप ये लगातार करते रहें तो किसी भी तरह के विवाद से और शत्रुता से बचे रहेंगे।
1: और चलिए अब दैनिक राशिफल जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों का।
0: मेष राशि, पारिवारिक तनाव से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, जल्दबाजी में निर्णय न लें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, कोई शुभ सूचना मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, सेहत में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए उपाय जानने का। अगर आपको शत्रुता से दूर रहना है, किसी भी विवाद से बचना है तो क्या कुछ उपाय करने चाहिए?
0: अब कर्क राशि वालों की शत्रुता को कैसे रोका जाए? देखिए, जोश में आकर, भावनाओं में बहकर रिश्ते मत बिगाड़िए, क्योंकि आपके नजदीकी लोग ही आपके शत्रु बन जाते हैं। हर बृहस्पतिवार को पीला तिलक लगाइए, ऐसा नियमित रूप से करिए, परिणाम आपको बेहतर मिलेंगे, आपके विवाद और शत्रुता समाप्त होगी। सिंह राशि, अपने क्रोध पर और अपने अहंकार पर काबू रखिएगा, विवाद और शत्रुता नहीं होगी और हर शनिवार को प्रकाश का दान करिएगा शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते रहिएगा। कन्या राशि, अत्यधिक स्वार्थ और बड़बोलापन, ज्यादा बोलने से बचिए और हर जगह अपना स्वार्थ मत दिखाइए। हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न जल का या खाने पीने की वस्तु का दान करिएगा, आपकी शत्रुता समाप्त होगी, आपके विवाद हल होंगे।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों का दैनिक राशिफल क्या है।
0: कर्क राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, परिवार में विवादों से बचें, करियर में लापरवाही ना करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी से जान लेते हैं। सर पंडित जी, सबसे पहला सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी आज का पहला प्रश्न आरके सैनी जी ने हमें लिखा है, चंडीगढ़ से लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 17 जनवरी 1992, 9:15 रात को, अमृतसर, पंजाब। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी कोई बात नहीं मानता, विवाह नहीं करना चाहता और मोबाइल का एडिक्शन बहुत है उसको। हालांकि वो एक बैंक में क्लर्क की नौकरी करता है, नौकरी ठीक चल रही है, लेकिन वो नियंत्रण के बाहर है, तो क्या उपाय करना चाहिए? सैनी जी, आपके पुत्र की कुंडली है सिंह लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा राहु की चल रही है। सबसे बड़ी मुश्किल है ना, तो चंद्रमा जो मन का अधिपति है वो केतु के साथ बैठ गया है, राहु केतु के एक्सिस में आ गया है और अंतर दशा भी फिलहाल राहु की चल रही है। तो अगर बेटे की काउंसलिंग की जरूरत पड़े, किसी साइकेट्रिस्ट से मिलने की जरूरत पड़े, तो वो व्यवस्था करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी मानसिक स्थिति में थोड़ी गड़बड़ी दिखाई दे रही है। जहां तक विवाह का प्रश्न है, अपनी इच्छा से कोई विचित्र विवाह 2027 के अंत में या 2028 के आरंभ में करेंगे, ऐसी संभावना बनती है। फिलहाल बात तो ये कोई मानेंगे नहीं, लेकिन अगर मान जाएं तो इनको एक माणिक्य बनवा के पहनाइए, लगभग 8-9 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य धारण करवाइए और आप अपने पुत्र के लिए सुबह और शाम दोनों समय शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करिए, उससे काफी लाभ होगा।
1: चलिए अब दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, आज दूसरा सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
0: जी

0: सूरजवान खेड़े ने हमें लिखा है, नासिक से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 4 जनवरी 2004, 11:15 प्रातः, बुलढाणा, महाराष्ट्र। वर्षा कह रही हैं कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग पूरी कर चुका है, आगे की पढ़ाई करने के लिए क्या विदेश जा सकेगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा। वर्षा जी, आपके पुत्र की कुंडली है मीन लग्न की और वृषभ राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा शनि की चल रही है। सबसे पहली बात यह है कि आपके पुत्र की कुंडली में विदेश जाने के, विदेश में जाकर के पढ़ाई करने के योग काफी बेहतर हैं। इन क्षेत्रों में सफलता मिलने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है, तो आप अपने बेटे को बिल्कुल विदेश भेज सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल सिचुएशन की वजह से अगर प्रॉब्लम आए तो बात दूसरी है, अन्यथा व्यक्तिगत तौर पर इनकी कुंडली की दशाएं ठीक हैं। आप अपने बेटे को जब बाहर भेजें तो दो बातों का ध्यान रखें। एक तो आपका बेटा वहां जाकर के ड्राइविंग वगैरह में सावधान रहे, कोई एडवेंचरस काम, समुद्र में तैरना, पहाड़ पर चढ़ना, कोई भी रोमांच देने वाले काम, एडवेंचरस काम नहीं करने हैं, क्योंकि उससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। क्या उपाय किया जाए? अपने बेटे को एक मोती बनवा के पहनाइए, लगभग 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती धारण कराएं और इनको सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहें तो वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोग शत्रुता से और विवाद से बचने के लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं।
0: अब जानते हैं कि तुला वालों को किन बातों का ध्यान देना है ताकि बेवजह के वाद विवाद और बेवजह की शत्रुता ना हो। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोग जो हैं वो शत्रुता और विवाद से कैसे बचेंगे? तुला वालों की बात करें तो धन की लिखा पढ़ी में हमेशा सावधानी रखिए, क्योंकि लिखा पढ़ी की दिक्कत में आप फंस सकते हैं। हर बृहस्पतिवार को भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा, गेंदे के, कनेर के, जैसे भी हो, पीले फूल भगवान को चढ़ाइएगा, बेवजह के विवादों से, शत्रुता से बचे रहेंगे। वृश्चिक राशि, हर आदमी से बदला लेना, हर आदमी के विरुद्ध षड्यंत्र करना, इस आदत से बचिए वरना ये दुश्मन बनाएगी। और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा, आपको लाभ होगा। धनु राशि, आपको जबरदस्ती झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपके क्रोध की वजह से, आपके टेम्परामेंट की वजह से अपने लोग, परिवार, जन शत्रु हो जाते हैं, बाहर तो खैर होते ही हैं। बेवजह झगड़ा करके दुश्मनी मत बढ़ाइए। हर शुक्रवार को शिव जी को सफेद फूल अर्पित करिएगा, निश्चित निश्चित रूप से आप विवादों से शत्रुता से बचे रहेंगे।
1: और चलिए अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानने का वक्त हो चला है।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचें, जल्दबाजी में काम ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और चलिए अब जान लेंगे कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों को शत्रुता और विवाद से बचने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए।
0: अब जानते हैं मकर राशि के लोग क्या उपाय करें। अगर आपकी राशि मकर है तो शत्रुता से बचने, विवाद से बचने के लिए क्या उपाय करें। देखिए, अपने वाणी से, अपने अहंकार से, अपनी क्रोध से लोगों को शत्रु मत बनाइए। हर बुधवार को भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करिएगा, बहुत बेहतर रहेगा, कर्ज से छुटकारा जल्दी मिलेगा। कुंभ राशि, आपको हमेशा अपने करीब के लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो आपके निकटवर्ती लोग हैं, जो आपके नजदीक हैं, वहां से शत्रुता जल्दी हो सकती है। हर सोमवार को शिव जी को केवल जल अर्पित करते जाइए, आप विवादों से शत्रुता से बचे रहेंगे। मीन राशि, देखिए, विवादों से शत्रुता से बचने के लिए पारिवारिक मामलों में सावधानी रखें, क्योंकि परिवार में दुश्मनी विवाद होने की संभावना ज्यादा है। और रोज सुबह जल में एक लाल फूल डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, आपके विवाद और आपकी शत्रुता दूर हो जाएगी।
1: और चलिए अब जान लेते हैं इन लोगों, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, काम का दबाव थोड़ा सा इस समय कम होगा, धन की प्राप्ति होगी, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, धन का लाभ होगा, व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको भी पंडित जी से कोई प्रश्न पूछना है तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर दी गई हमारी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं और प्रश्न पंडित जी तक पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। पंडित जी, आप तीसरा सवाल आज किसका लेंगे?
0: जी, अगला प्रश्न कामिनी जी ने हमें लिखा है और कामिनी जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 17 मई 1986, शाम के 7:55, जन्म स्थान है मऊ, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं लखनऊ से। ये कह रही हैं कि मेरा एक विवाह पहले टूट चुका है, क्या आगे मेरे दूसरे विवाह की संभावना बनती है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? कामिनी जी, आपकी कुंडली में दूसरे विवाह की संभावना जरूर बनती है। साल 2027 के शुरुआती समय में, जनवरी से जून 2027 वाले समय में आपके विवाह के योग बनते हैं और सेकेंड मैरिज आपकी कुल मिला जुला के सफल रहेगी, उसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा कर लीजिए, एक ओपल बनवा करके पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार एक मंत्र पढ़िएगा। मंत्र होगा ओम गौरी शंकराय नमः। अगर इस मंत्र का निरंतर जप करें और ओपल पहने तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब ले लेते हैं आज का चौथा और अंतिम सवाल। पंडित जी, चौथा सवाल किसका रहने वाला है?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न ब्रजेश जी ने हमें लिखा है और ब्रजेश जी हमें मुजफ्फरनगर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 नवंबर 1978, जन्म का समय रात में 10:30, जन्म का स्थान है लखनऊ। ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी अभी छूट गई है और मैं लगातार नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे नौकरी मिल नहीं पा रही है, तो मुझे नौकरी कब तक मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी मिलने की जो संभावना है वो फिलहाल बनी हुई है और लगभग 24 नवंबर 2026 के पहले आप नौकरी पा जाएंगे, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुजफ्फरनगर से जगह बदलना पड़ेगा। आपकी कुंडली में चेंज ऑफ प्लेस की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब बात उनकी जिनका बर्थडे 8 सितंबर को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे। अब पंडित जी से आपके बारे में जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 8 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन और संपत्ति की स्थिति मध्यम रहेगी, हालांकि करियर में स्थिरता आती जाएगी। विवाह और संतान के मामले इस साल में हल होंगे। क्या उपाय किया जाए? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोती कोई भी पहन सकता है, मोती किसी को नुकसान नहीं करता, क्या ऐसा है? देखिए, मोती चंद्रमा का रत्न है और बहुत धीमे धीमे काम करता है। अब चूंकि बहुत स्लो मोशन में काम करता है तो लोगों को लगता है कि मोती से नुकसान नहीं होता, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना सलाह के अगर आपने बिना सोचे समझे मोती धारण कर लिया तो एक समय बाद काफी नुकसान आपको धीरे धीरे हो सकता है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है 8 सितंबर 2026 यानी कि मंगलवार के शुभ पहर के बारे में जान लेने का।
0: दिनांक 8 सितंबर, दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके कर्ज की समस्या में सुधार होगा।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेंगे आज की गुड लक राशि के बारे में।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग कौन सी धातु का, कौन से मेटल का प्रयोग करें जिससे उनको लाभ हो। आज की गुड लक राशि है सिंह। आपको तांबा अवश्य धारण करना चाहिए। तांबा धारण करने से जीवन का संघर्ष कम होता जाएगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है पंडित जी से यह जान लेने का कि आज का महा उपाय क्या है।
0: अब बात करते हैं आज के महा उपाय की। अगर आपका बच्चा परीक्षा में नर्वस हो जाता हो, परीक्षा में घबरा जाता हो, तो क्या करेंगे? बच्चे के नहाने के पानी में जब भी वो नहाए, एक चम्मच, छोटा चम्मच या एक चुटकी नमक डालिए। सुबह शाम में नियम बना लीजिए कि बच्चे को साथ में बैठा कर एक बार सुबह या एक बार शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और बच्चे को रोज सुबह तुलसी के दो पत्ते मिश्री के साथ खिलाइए। अगर कर सकें तो बच्चे की दाहिनी कलाई में लाल कलावा बांध दें, इसको 6-6 महीने पर बदलते रहें।
1: तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: क्या है दान की महिमा, दान करने के नियम और सावधानियां क्या हैं, अलग अलग ग्रहों के दान की वस्तुएं क्या हैं और दान का उचित समय क्या है, क्या है दान और भाग्य का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन से उत्सव के भव्य रंग छाएंगे, लेकिन बप्पा के भक्तों में अभी भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रही हैं। मूर्तियों का रंग रोगन चल रहा है तो बप्पा का आगमन स्वागत भी धूमधाम से हो रहा है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश तक गणेश उत्सव को लेकर रौनक बढ़ती जा रही है।

0: बाप्पा यानी करोड़ों भक्तों की आस्था, विश्वास, उम्मीद और खुशियों के देव। बाप्पा जब पधारते हैं तो भक्तों के चेहरे की चमक देखने वाली होती है। बाप्पा सुख समृद्धि के साथ ही हर मुश्किल में हौसला देने वाले देवता हैं। इसीलिए बाप्पा के आगमन का इंतजार भक्त पूरे साल करते हैं। इस वर्ष भी महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणेशोत्सव की तैयारी अब तेजी से अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। महाराष्ट्र के जालना में मूर्तिकार गणपति प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। अंबड़ तालुका स्थित मच पिंपल गांव में मूर्तियों पर रंग रोगन के साथ ही फिनिशिंग का काम तेजी से चल रहा है। इस वर्ष मूर्तिकार श्रीनिवास ढवलमपुरे ने गणेश भक्तों के लिए राधा कृष्ण, भोलेनाथ, मयूरासन, कस्तुभ मणि, मुंबई का मानाचा गणपति और सरकार जैसे अलग अलग पैटर्न की गणेश मूर्तियां तैयार की हैं, जो अलग अलग मुद्राओं और आकर्षक डिजाइन में हैं।
1: 3 फीट में जा रहा है 4,000-5,000 रुपए, उसमें बाद 10,000 वाली, 15,000 वाली, 20,000 वाली, ऐसी 25,000 तो का भी मेरे पास होती है।
0: जालना में जिला प्रशासन की पहल पर विशेष पर्यावरण अनुकूल गणेश मूर्ति निर्माण कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें एक साथ लगभग 7,000 स्कूली बच्चों ने शाड़ू मिट्टी से आकर्षक गणेश मूर्तियां तैयार की। इन सब के साथ ही जालना में गणपति की मूर्तियों के आगमन का सिलसिला भी चल रहा है। यहां धूमधाम के साथ मान के दूसरे गणपति की भव्य आगमन शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल ताशों की गूंज के बीच जालना का राजा गणपति के इस भव्य शोभा यात्रा में भक्तों का उत्साह देखते ही बना। बजरंग गणेश मंडल के गणपति उत्सव का इस बार 77वां वर्ष है, जिसके लिए जालना का राजा को पूरे धूमधाम के साथ लाया गया। अकोला से लेकर अमरावती तक गणपति बाप्पा मोरिया का जय घोष पूरे वातावरण में गूंज रहा है। कहीं जबरदस्त आतिशबाजी के बीच बाप्पा की शोभा यात्रा निकल रही है, तो कहीं 25 फीट ऊंची गणपति प्रतिमा के साथ ढोल ताशों की गूंज के साथ बाप्पा का आगमन हो रहा है। अकोला में 20,000 स्कूली बच्चों ने शाड़ू मिट्टी से पर्यावरण के अनुकूल गणपति प्रतिमाएं तैयार की। यहां बच्चे अपने नन्हे हाथों से विघ्नहर्ता की प्रतिमा बनाते दिखे, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया।
2: यूपी के मुद्दे से मतलब जब हम विसर्जित करते हैं तब हमारी नदियाँ खराब हो जाती है और जहाँ का जो परिसर होता है वो भी खराब हो जाता है, पर शाडू माती का ऐसा है कि हम घर पे ही अपना ये शाडू माती का गणपति विसर्जन कर सकते हैं और इसी माती से हम मतलब रोप लगा सकते हैं, जैसे कि तुलसी के झाड़ लगा सकते हैं, आम के झाड़ लगा सकते हैं।
3: अकोला यह पूरे भारत में गर्म शहर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ गर्मी का पारा हर साल थोड़ा थोड़ा चढ़ता जाता है, तो पर्यावरण का संदेश देकर हम इस पारे को निश्चित रूप से कम करेंगे। लोगों के दिनचर्या में पर्यावरण का महत्व कितना है ये दिखाने के लिए यह कार्यक्रम एक प्रयास है।
0: आयोजकों के मुताबिक पिछले वर्ष इसी तरह की कार्यशालाओं में करीब 10,000 बच्चों ने हिस्सा लिया था और इस वर्ष ये आंकड़ा बढ़कर 20,000 तक पहुँच गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी गणेशोत्सव की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। गणेशोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। यहां पुलिस की ओर से गणपति एक कांस्टेबल अभियान की पहल की गई है, ताकि गणेशोत्सव के आयोजकों और पुलिस प्रशासन के बीच सीधा संवाद बना रहे। चंद्रपुर मंडल के 353 छोटे बड़े सार्वजनिक गणेश मंडलों की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस कर्मियों ने गोद लिया है।
4: चंद्रपुर पुलिस की तरफ से इस गणेश उत्सव में हम एक नया उपक्रम कर रहे हैं कि जैसे कि जो गणेश मंडल है तो उनको हम अधिकारी और अमलदार अलॉट कर रहे हैं, जिसके कारण ये होगा कि जो अधिकारी अमलदार जिस गणेश मंडल के साथ अटैच रहेंगे तो वो कोऑर्डिनेशन में उनके इस पूरे गणेश उत्सव के दौरान रहेंगे, जिसका ये फायदा होगा कि गणेश मंडल को जो भी उनकी जो समस्या है वो प्रशासन तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी और प्रशासन की जो भी सूचनाएं है वो गणेश मंडल को तत्परता से पहुंच जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेशन के लिए हम दत्तक योजना हम इसको बोलेंगे कि हर एक गणेश मंडल को अधिकारी और अमलदार ऐसे दत्तक दिए जाए।
0: महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात में भी गणेशोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। ये तस्वीरें सूरत शहर के वेसू इलाके की हैं, जहां गुजरात का सबसे बड़ा गणेश पंडाल बन रहा है।
5: ये तस्वीरें सूरत के वेसू इलाके की हैं, जहां पर आप देखेंगे तो मंडप का ये काम चल रहा है, पंडाल का काम चल रहा है और इसी तरह से यहाँ पर पंडाल का काम चल रहा है और उत्सव जब गणेश उत्सव शुरू होगा तब यहाँ का जो माहौल है वो भी देखने लायक होगा। तो सूरत में अलग अलग जगह पर गणेश पंडालों में भगवान गणेश के आने की तैयारियां की जा रही हैं, तो वैसे यहां पर सूरत के वेशु इलाके में भगवान गणेश के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। 22 फीट की मूर्ति टिश्यू पेपर से बनाई गई है और यहां पर धर्म के साथ साथ सामाजिक कार्यों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
0: लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव समिति की ओर से विशाल महल के रूप में गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है, जिसमें 22 फीट ऊंची बापा की प्रतिमा स्थापित होगी। 700 किलो टिश्यू पेपर से मुंबई में प्रतिमा तैयार हो रही है।
6: हमारे बापा की प्रतिमा अगर हम बिठाएंगे, वो हमारे राजा है, तो राजा के लिए उनका दरबार ही सजना चाहिए। तो हमारी जो थीम है वो राजा के दरबार की थीम है, और हमारी जो मूर्ति है, जो बापा की प्रतिमा रहेगी, वो 22 फुट की इको फ्रेंडली टिश्यू पेपर की मूर्ति बनवाई है हमने, कि 10-11 दिन हम उनकी पूजा करते हैं, इतनी श्रद्धा हमारी उनके साथ रहती है, फिर जब हम उनका विसर्जन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं खंडित होती है, उनका अपमान होता है, तो वो हमें नहीं करना था। इसलिए हमने ये, हमारे मंडल ने मिलकर ये सोचा कि बापा की प्रतिमा रहेगी, वो इको फ्रेंडली रहेगी और टिश्यू पेपर की रहेगी, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।
7: 11 दिन बापा के आशीर्वाद से हम यहाँ पे हेल्थ चेकअप का 11 दिन की व्यवस्था रखी है। 11 दिन का हमने भोजन प्रसाद की व्यवस्था रखी है और 11 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का कार्यक्रम की भी व्यवस्था।
0: सूरत में जगह जगह भव्य स्तर पर गणेशोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ के अड़ाजन इलाके में शक्ति फाइटर ग्रुप की ओर से भगवान गणेश के आगमन पर अनोखी यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें किसी हॉरर फिल्म के सेट की तरह का नजारा दिखा।
5: एक यूनिक प्रकार से भगवान गणेश का आगमन किया, जो आगमन की यात्रा निकली उसके वीडियो सामने आए हैं, जिसके अंदर भूत प्रेत पिशाच सभी तरह के कैरेक्टर्स को बुलाया गया था। दिल्ली से अलीगढ़ से बुलाए गए थे और पूरा एक माहौल भूतमय बन चुका था, क्योंकि महादेव पार्वती माता का भी एक स्वरूप यहाँ पर आगमन में देखा गया।
0: भगवान शिव से जुड़े भूत पिशाच नरमुंड और बाकी गणों को भी इस गणपति आगमन यात्रा का हिस्सा बनाया गया।
8: देव सभी है पर महादेव सिर्फ एक ही है, और महादेव का पुत्र का जब आगमन होता है तो उनके साथ जो बोलते हैं कि सैतानी जो होती है, हमारे सैतान हमारे जो होते हैं, उनके भी देव है महादेव। तो पूरी हमने उनकी टोली लाके हमने गणपति का एक आगमन किया, और एक अलग टाइप से हमने आगमन किया कि भूत प्रेत वाला आगमन आज तक नहीं हुआ है। सबको लग रहा है कि भूत प्रेत वाला आगमन क्यों किया, पर बोलते हैं कि इंसान के अंदर भी एक अच्छा इंसान भी है और एक सैतानी इंसान भी है, तो इसीलिए हमने इस बार ये आगमन किया है।
0: मध्य प्रदेश में भी गणेशोत्सव को लेकर मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आगर मालवा में कारीगर बापा की प्रतिमाओं की साफ सफाई से लेकर रंग रोगन तक में जुटे हुए हैं। इस बार यहां 2 इंच से लेकर 10-12 फीट तक की आकर्षक मूर्तियां बनाई जा रही हैं।
9: हमारे पास 2 इंच से लेकर तो 6 फीट तक की मूर्तियां है, और सब अलग अलग वेरायटी में है। 4 फीट वाली है, 5 फीट वाली है, 3 फीट वाली है, और अलग अलग डिजाइन में भी है। जैसे कि भोलेनाथ वाली है 6 फीट वाली, जिसमें भोलेनाथ दिया गया है उसमें, और एक 4 फीट वाली जो सरकार मूर्ति जो सूरत की है उसका भी पैटर्न हम इस बार लाए हैं, और एक बंगाली पैटर्न वाली मूर्ति भी है जो कि 4 फीट में है।
0: कुछ प्रतिमाओं में गणेश जी डमरू पर विद्यमान हैं, तो कुछ में बापा के ऊपर शेषनाग का रूप दिखाई दे रहा है। इस बार ऐसी कई मुद्राओं वाली बापा की मूर्तियां तैयार की गई हैं। यहां की आकर्षक प्रतिमाएं राजस्थान तक जाती हैं। जालना से गौरव विजयसाली, अकोला से धनंजय साबले, चंद्रपुर से विकास राजूरकर, सूरत से संजय सिंह राठौड़ और आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: महाराष्ट्र के चंद्रपुर से महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सभी को हैरान भी करती है और प्रेरित भी। आपको बता दें, कारपेंटरी को अब तक आमतौर पर पुरुषों का काम माना जाता रहा है, लेकिन चंद्रपुर की महिलाएं इस सोच को बदलती हुई नजर आ रही हैं। वो कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए।
11: ये शानदार कलाकृतियाँ देवी देवताओं की प्रतिमाएं, शोपीस और एक से बढ़कर एक फर्नीचर, इन सब का निर्माण इस वर्कशॉप पे काम कर रही इन महिलाओं ने ही किया है। यहाँ पर मौजूद महिलाओं के हाथ अब सिर्फ घरेलू काम करने तक सीमित नहीं है, इनके कोमल हाथ अब कठोर औजार थाम कर लकड़ियों को शानदार आकार दे रहे हैं और बारीकी से तराश कर खूबसूरत सामान तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्र वन विकास महामंडल यानी FDCM की ओर से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यहां पर महिलाओं को कारपेंट्री का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिला इस पहल से काफी खुश नजर आ रही है।
12: अभी टेबल बना रहे और उधर पॉलिश घसाई करके ऐसे सब मैडम लोग ही ने प्रशिक्षण में FDCM के मैडम लोग प्रशिक्षण के तौर पे ऐसे सब ये कुछ ये बनाया। सीखने का है अपने को, कुछ करने का है, खाली पीली बैठ के क्या करना, चलो अपन भी कुछ कर लेते करके आए, सीख रहे हैं, रोजगार मिलेगा अपने को, थोड़ा घर में हेल्प होंगी करके आए, अपने भी अपने को भी होना ना।
11: चंद्रपुर जिले के बल्लार शाह डिपो और गढ़चिरौली जिले के अल्लापल्ली डिपो में महिलाओं को एक संस्था की मदद से कारपेंट्री की ट्रेनिंग दी जा रही है। बल्लार शाह वर्कशॉप में फिलहाल 30 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं, जबकि 15 महिलाएं अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुकी हैं। वहीं अल्लापल्ली वर्कशॉप में करीब 30 महिलाएं प्रशिक्षण पूरा कर चुकी है। FDCM ने करीब 200 महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है।
13: हमने सोचा कि जो कारपेंटर है, पुरुष कारपेंटर, वो लिमिटेड है, ज्यादा है नहीं, तो हमने सोचा कि फिर महिलाएं यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता उनको, तो उनको एंगेज करके उनको घर का भी रोजी रोटी भी चलेगी, उनके हाथ से कुछ अच्छा काम भी होगा और अपना बल्लार शाह टीक ऑलरेडी फेमस है, वो भी और प्रसिद्धि मिलेगी।
11: चंद्रपुर और गढ़चिरौली का सागवान अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। यहाँ की लकड़ी के बने फर्नीचर देश भर में मशहूर है और अब इसी शानदार लकड़ी को ये महिलाएं अपने हुनर से नया आकार दे रही हैं। स्टडी टेबल और डेस्क सहित क्या क्या नहीं बना रही है ये महिलाएं।
13: अभी महिलाएं ये जो टेबल है आप देख पा रहे होंगे कि जो टेबल है महिलाएं इस टाइप के टेबल वगैरह भी बना के वो हम दे रहे हैं उनसे, तो धीरे धीरे धीरे धीरे टेबल के बाद बाकी भी चीजें वो कर पाएंगी और हमारा टारगेट ये है कि अगले 6 महीने में या 1 साल में पूरा जो फर्नीचर आता है जैसे डाइनिंग टेबल हो गया, सोफा सेट हो गया, वो महिलाएं काम कर पाएंगी।
11: यहाँ बने फर्नीचर और दूसरे सामान की अच्छी डिमांड है, खासकर सरकारी दफ्तरों से इन्हें अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। लिहाजा ये पहल अगर इसी तरह आगे बढ़ती रही तो आने वाले समय में चंद्रपुर और गढ़चिरौली की महिलाएं कारपेंट्री के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना सकती हैं।
14: खास बात यह है कि जिन महिलाओं का प्रशिक्षण पूरा हो गया है वही महिलाएं अब दूसरे महिलाओं को भी प्रशिक्षण दे रही है, यानी इसका मतलब अब महिलाएं सिर्फ फर्नीचर ही नहीं बना रही है बल्कि अपने इस हुनर से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम कर रही है। विकास राजूरकर, चंद्रपुर, गुड न्यूज टुडे।
10: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी वायरल वीडियोस जिनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ भावुक कर जाएंगे।
15: घर में माहौल पूजा पाठ भक्ति और आराधना का हो तो इसे सीखने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद दिनचर्या में शामिल हो जाता है। देखिए इस छोटे से बच्चे को कैसे अपनी प्यारी प्यारी टूटी फूटी आवाज में भगवान जगन्नाथ के सामने प्रणाम मंत्र गाने की कोशिश कर रहा है, मानो उसे सब आता है। बच्चे का ये अंदाज लोगों का दिल छू रहा है।

सीखने की चाह हो तो उम्र मायने नहीं रखती, और फिर छोटे बच्चे तो कॉपी करने में माहिर होते हैं, बस दिलचस्पी होनी चाहिए। अब इस नन्हे उस्ताद को ही देख लीजिए, स्केटिंग में डबल क्रॉस ऐसे कर रहा है मानो कोई डांस मूव हो। जो भी हो, छोटे बच्चे का ये हुनर देखने लायक है।

0: एक्टिंग में उस्ताद है ये लड़की। मौत का सामना कैसे करते हैं अलग अलग देशों के लोग बताने की कोशिश हो रही है। कोशिश है कि इसमें वहाँ के लोगों के जीने का अंदाज भी झलके। लोग बच्चे के सपने की जमकर तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं इन्हें भला ऑस्कर की क्या जरूरत। देखते जाइए इन दोनों भाइयों की हरकतें, कोई कम नहीं है शरारत में। कपड़े सूख रहे हैं, एक को लगा कि चलो झूला झूल लेते हैं, दूसरा भी पीछे हो लिया, लेकिन इन्होंने जो किया उसने पहले की सांस से अटका दी। देखिए कैसे हवा में झूल गया बेचारा, रो रो कर बुरा हाल है। दोनों मासूम बच्चों की यह हरकत सोशल मीडिया यूजर्स के चेहरों पर मुस्कान ला रही है। मानना पड़ेगा करने वाले तो बस कमाल करते हैं और इनके जुगाड़ का तो कोई जवाब ही नहीं। देखिए क्या तरकीब भिड़ाई है बारिश से बचाव के लिए। सही है, छाता कहाँ बचा पाता है पूरी तरह पानी से, और बारिश तेज हो तो बस सिर ही बच पाता है। लेकिन ये इंतजाम तो रेनकोट से भी आजादी दिला रहा है, इनके दिमाग की दाद तो देनी पड़ेगी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: क्या है दान की महिमा, दान करने के नियम और सावधानियां क्या हैं, अलग अलग ग्रहों के दान की वस्तुएं क्या हैं और दान का उचित समय क्या है, क्या है दान और भाग्य का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में नोएडा की बड़ी छलांग, देश भर में 8वीं रैंक हासिल, पिछले साल 9वें स्थान पर था, 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की रैंकिंग। मिस्टर केएल अलीमान एयर शो में आज दिखेगा भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर का दम, डॉल्फिन लीप और स्पॉट स्टॉल टर्न फॉर्मेशन भी करेगी पेश। देशभर में गणेश उत्सव की तैयारी, नागपुर में गणेश उत्सव से पहले सजे भव्य गणपति पंडाल, ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर बप्पा का स्वागत।
10: वडोदरा में पीएम मोदी आज जेनजी से करेंगे सीधा संवाद, 6000 से ज्यादा छात्र युवा होंगे शामिल, जिले को 35,000 करोड़ की परियोजना की भी देंगे सौगात।
9: कश्मीर में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ, कलाकारों की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने बांधा समा, 41 देशों की 135 फिल्में होंगी प्रदर्शित।

0: पक्के तीरंदाज शीतल देवी की गोल्ड पर निगाहें। फाइनल में कजाकिस्तान की अजादास ईरान से मुकाबला। सरिता का ब्रॉन्ज के लिए मैच।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा। बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन पांच खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
0: शुभ समाचार की शुरुआत करते हैं बापा के स्वागत की तैयारियों के साथ। सूरत से लेकर मुंबई तक गणपति उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। हर तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। गलियां और बाजार बापा के स्वागत के लिए सज चुके हैं और भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। कहीं भव्य पंडाल आकार ले रहे हैं तो कहीं बापा की भव्य प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गणपति बापा के आगमन को लेकर हर उम्र के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। इसी गणपति उत्सव से पहले इको फ्रेंडली गणपति भी चर्चा में है। गणेश उत्सव की शुरुआत 14 तारीख से होने जा रही है। ऐसे में जैसे जैसे गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आ रहा है, मूर्ति निर्माण से जुड़े कारीगर बापा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। दिल्ली, यूपी और छत्तीसगढ़ में भी इको फ्रेंडली गणपति लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। कहीं पर पराली तो कहीं पर बांस और चिकनी मिट्टी से मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं आपको मिस्र भी लिए चलेंगे, जहां पर एयर शो में आज भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर का दम देखने को मिलेगा। इस दौरान वायुसेना की सटीकता और फोकस क्षमता का प्रदर्शन होगा। ये शानदार एयर शो 10 सितंबर तक चलेगा और क्या कुछ खास होगा इसमें आपको आगे बताएंगे। इधर कश्मीर में सिनेमा और संस्कृति का महामंच सजा हुआ है। घाटी में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया। एक्ट्रेस फातिमा सना शेख समेत कई सितारे फेस्टिवल में पहुंचे। वहीं निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा और रमेश सिप्पी भी आयोजन का हिस्सा बने। तो इसमें कितने देश ले रहे हैं हिस्सा और कितनी होंगी फिल्में, ये सब बताएंगे आगे। और साथ ही आपको बेल्जियम भी लिए चलेंगे। ये सोचिए, एक रोबोट आपके घर में आए और सिर्फ चलने या बोलने की बजाय फ्रिज खोले, सामान उठाए, चीजों को सही तरीके से पकड़े और आपके साथ मिलकर काम करे। सुनने में ये भविष्य की कहानी लगती है, लेकिन रिजल्ट्स में यूरोपीय संसद के सामने इसकी झलक दिखाई गई। इस दौरान कैसा रहा नजारा दिखाएंगे आगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 9 बजे के 9 गुड न्यूज का।
2: गणेश चतुर्थी के लिए पूरे देश में तैयारियां जारी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बच्चों ने अपने हाथों से गणेश प्रतिमाएं बनाई। शाडू मिट्टी से करीब 60 बच्चों ने बापा और उनके वाहन मूषक की मूर्ति तैयार की। सेल्फ क्रिएशन ग्रुप ने लगातार छठे साल बापा मेकिंग वर्कशॉप कराई और दरअसल इस क्लब और आर्य वैश्य महिला महासभा ने भी इस आयोजन में साथ दिया है। बच्चों को मोबाइल से दूर रखने, उनकी रचनात्मकता बढ़ाने के लिए वर्कशॉप आयोजित की गई।
0: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को मनाई जाएगी। अब प्रयागराज में गणपति बापा के स्वागत की तैयारियां अंतिम दौर में हैं, जहां इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं तैयार हो रही हैं। गंगा की मिट्टी, धान के पैरे और प्राकृतिक रंगों से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इस बार गणेश प्रतिमाओं में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल नहीं हो रहा। कारीगर पर्यावरण को बचाने के लिए प्राकृतिक चीजों से मूर्तियां बना रहे हैं।
2: राजस्थान का एक कारीगर परिवार पिछले 6 महीने से गणपति बापा की मूर्तियां बना रहा है। परिवार के 8 लोग मिलकर सैकड़ों मूर्तियां तैयार कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। एक गणपति मूर्ति बनाने में लगभग 10 से 12 दिन लगते हैं। मूर्ति बनाने में बेहद बारीक का काम होता है, इसलिए इसमें काफी मेहनत लगती है। इन कारीगरों की बनाई गणपति मूर्तियों की मांग दूर दूर तक है।
0: भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण जहाज आईएनएस सुदर्शनी बार्सिलोना का दौरा पूरा कर चुका है। दौरे में स्पेन की नौसेना के अधिकारियों से मुलाकात हुई। आईएनएस सुदर्शनी पर एक खास कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नौसेना और प्रशासन के बड़े अधिकारी शामिल हुए। जहाज को आम लोगों के लिए भी खोला गया। आईएनएस सुदर्शनी का बार्सिलोना दौरा भारत और स्पेन की समुद्री दोस्ती को मजबूत करने वाला रहा। इस दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग और आपसी रिश्तों को बढ़ावा भी मिला।
2: मिस्र के एल अलामीन एयर शो में आज भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर का दम देखने को मिलेगा। सारंग टीम डॉल्फिन लीप और स्पॉट स्टॉल टर्न भी पेश करेगी। इन इंफॉर्मेशन से दर्शक रोमांचित होंगे और साथ ही वायुसेना की सटीकता और फोकस क्षमता का प्रदर्शन भी होगा। ये शानदार एयर शो 10 सितंबर तक चलने वाला है।
0: इस बार कश्मीर में सिनेमा और संस्कृति का महामंच सजा हुआ है। घाटी में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस फेस्ट का उद्घाटन किया। एक्ट्रेस फातिमा सना शेख समेत कई सितारे इस फेस्टिवल में पहुंचे। निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा और रमेश सिप्पी भी आयोजन का हिस्सा बने। इसमें 41 देशों की 135 फिल्में प्रदर्शित होंगी। ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 10 सितंबर तक चलेगा।
2: एक्टर डायरेक्टर कुणाल खेमू की नई फिल्म वाइब का गाना ऐसी मेरी वाइब रिलीज हुआ। खास बात यह है कि इस फिल्म में कुणाल खेमू की सास और दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर भी नजर आएंगे और ये पहला मौका है कि जब शर्मिला अपने दामाद के साथ काम कर रही हैं। शर्मिला फिल्म में एक छोटे से रोल में दिखाई देंगी।
0: जापान ने भारत के खिलाफ 22 सितंबर को होने वाले T20 मैच के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। जापान के सानो शहर में होने वाले इस मुकाबले में केंडल कोडावाकी फ्लेमिंग टीम के कैप्टन होंगे। उन्होंने T20 में जापान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन 75 साल पूरे होने पर यह एकमात्र मुकाबला खेला जा रहा है और इसे सुजुकी कप नाम दिया गया है।
2: अब फैशन में एआई की एंट्री हो गई है। चीन के बीजिंग में एआई स्कार्फ सर्विस लॉन्च की गई। एआई से डिजाइन मशीन से प्रिंट होने से सिर्फ 5 मिनट में सिल्क स्कार्फ तैयार किया जा सकता है। इसके लिए एआई पावर्ड स्कार्फ कस्टमाइजेशन बूथ लॉन्च किए गए हैं जो कि स्कार्फ के पर्सनल टच देते हुए एआई यूनिक डिजाइन बनाएगा।

0: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सूरत से लेकर मुंबई तक और नागपुर से लेकर अकोला तक गणपति उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। हर तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। गलियां और बाजार बप्पा के स्वागत के लिए सज चुके हैं।
1: भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। कहीं पर भव्य पंडाल आकार ले रहे हैं तो कहीं पर बप्पा की भव्य प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गणपति बप्पा के आगमन को लेकर हर उम्र के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। गणेश उत्सव की शुरुआत 14 तारीख से होने जा रही है। ऐसे में जैसे जैसे गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आ रहा है, मूर्ति निर्माण से जुड़े कारीगर बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीर यूपी के नोएडा से आई है, जहां पर कारीगर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय पराली, बांस और चिकनी मिट्टी से मूर्तियों का निर्माण भी कर रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब शहर शहर में उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। गणपति बप्पा की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, इको फ्रेंडली मूर्तियां भी बनाई जा रही है। और ऐसे में अब बस इंतजार है गणेश उत्सव का, जिसकी तैयारियां हर जगह पर नजर आ रही है।
0: आपको बता दें 14 सितंबर को गणेश उत्सव शुरू हो रहा है और अब बापा के आगमन की तैयारियां जगह जगह पर शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शहर शहर में गणेश उत्सव को लेकर किस तरह से प्रतिमाओं को आकार दिया जा रहा है, तो वहीं बापा के स्वागत की, उनके आगमन की तैयारियां जारी हैं। खास सजावट की गई है, पंडालों को तैयार किया जा रहा है और दूसरी ओर इको फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड भी बाजारों में बढ़ी हुई दिखाई दे रही है।

0: विघ्नहर्ता भगवान गणेश की एक से बढ़कर एक खूबसूरत प्रतिमाएं, कोई छोटे आकार की प्रतिमा और कोई बड़े आकार की प्रतिमा, किसी में भरा जा रहा है रंग और किसी का किया जा रहा है श्रृंगार। ये तैयारी है उस महापर्व की जिसकी शुरुआत 5 दिन बाद यानी 14 तारीख से होने जा रही है। जैसे जैसे गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आ रहा है, मूर्ति निर्माण से जुड़े कारीगर बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के नोएडा से आई है, जहाँ कारीगर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय पराली, बांस और चिकनी मिट्टी से मूर्तियों को तैयार करने में दिन रात जुटे हैं।
1: नोएडा में गणेश चतुर्थी को लेकर जो तैयारियां हैं वो अब जोर पकड़ने लगी है, और इन्हीं तैयारियों के बीच जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है वो है गणपति बप्पा की मूर्तियां। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, कितनी मेहनत, लगन और आस्था के साथ इन मूर्तियों को जो है वो तैयार किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि पर्यावरण को देखते हुए जो है इन सभी मूर्तियों को जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो आप जितनी भी मूर्तियां यहाँ पर देख रहे हैं वो किस तरीके से बनाई जा रही है, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये जितनी भी मूर्तियां आपको यहाँ पे नजर आएगी इनमें किसी भी तरीके से पीओपी का इस्तेमाल जो है वो नहीं होता आपको दिखेगा। यहाँ पर
0: तैयार मूर्तियों को आकर्षक और मनोहारी बनाने के लिए इन्हें वाटर कलर से रंगा जाता है, यानी पूरी तरह से इको फ्रेंडली मूर्तियाँ, जिन्हें नदियों में विसर्जित करने पर पर्यावरण नुकसान का खतरा नहीं होता है। लोगों की डिमांड और ट्रेंड के हिसाब से ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं।
1: इन कलाकारों की जो मेहनत है वो सिर्फ मूर्ति को बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके बाद जो उसको रंगने की प्रक्रिया है उसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत होती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारीकी चीजों का ध्यान दिया जाता है, चाहे फिर वो भगवान के वस्त्र की बात हो, भगवान के आभूषण की बात हो, उनके नयन नक्श की बात हो, हर चीज जो है बड़े ही बारीकी रंग से, बड़े ही बारीकी ब्रश के साथ जो है उसको रंगा जाता है। और खासतौर पर ये इस्तेमाल भी जो है वैसे रंग करते हैं जो पर्यावरण को जो है नुकसानदायक ना हो, तो जिसमें चंदन हो गया, हल्दी हो गई, कुमकुम हो गया, उस रंगों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात आंख बनाने की हो, कुछ चीजें उसको और टच, फाइनल टच फिनिशिंग की हो, तो उसमें वाटर कलर्स का भी इस्तेमाल करते।
0: नोएडा की तरह ही दिल्ली में भी गणेश प्रतिमाओं के निर्माण का काम जोरों शोर से इन दिनों चल रहा है। इस काम से जुड़े कई कारीगर बप्पा की मूर्तियों को डिमांड के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। इन मूर्तिकारों के लिए ये सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि आस्था और कला को एक साथ पेश करने का मौका भी है। इन्हीं में से ये दो बहनें भी 20 साल से गणेश प्रतिमा तैयार कर रही हैं। पहले ये काम इनके पिता करते थे, लेकिन उनके गुजरने के बाद दोनों बहनों ने इस काम को आगे बढ़ाया, और ये दोनों बहनें न सिर्फ मूर्तियां बनाती हैं, बल्कि वो खुद गणपति बैठाती भी हैं।
2: गणेश पूजा, गणेश उत्सव, गणेश जी की मूर्ति को तैयार करना, उसको सजाना संवारना, इसके क्या मायने हैं ये आप इन दो बहनों से समझ सकते हैं, मंजू और वसुंधरा। ये दो बहनें सालों से इसी काम में लगी हुई हैं, हर साल मूर्ति को अपने हाथ से तैयार करती हैं, फिर उसे बेचती हैं, कुछ पैसे कमाती हैं। 20 साल से दोनों बहनें एक साथ ये काम कर रही हैं। इसके पहले ये काम इनके पिताजी किया करते थे, वो चल बसे, तो उसके बाद दोनों बहनों ने मोर्चा संभाला हुआ है।
3: मूर्ति में सजावट करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, जो काम आते हैं वो कर लेते हैं।
2: ये काम सीखा किससे, अपने आप से या फिर पिताजी सिखा गए थे?
3: पिताजी सिखा के गए थे, वैसे तो अब देखते देखते सीख गए हम भी।
0: मूर्ति निर्माण से जुड़े कारीगर बताते हैं कि बीते साल के मुकाबले इस साल मूर्ति निर्माण से जुड़े कच्चे माल की कीमत थोड़ी बढ़ी है, जिस वजह से मूर्तियों की कीमत में भी इजाफा हुआ है। बावजूद इसके मूर्तियों के लिए ऑर्डर में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है।
2: गणेश जी की जब तैयार मूर्ति आप देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे उनकी आंखें बोल उठेंगी, लेकिन इन मूर्तियों में जान कैसे डाली जा रही है, कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा, कितनी मेहनत के साथ इनको तैयार किया जा रहा है, ये आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, लेकिन अब उनको सजाने, उनको संवारने, उनके श्रृंगार का काम यहाँ पर कई लोग लगातार कर रहे हैं। ये मेहनत एक दिन की नहीं है बल्कि कई दिनों की होती है। इस तरह की अलग अलग डिज़ाइन के साथ ये तमाम कलाकार इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि मूर्तियाँ पूरी तरह से इको फ्रेंडली बने और जब ये पानी में जाएं तो आसानी से घुल जाएं। हालांकि कुछ चीज़ें ज़रूर हर मूर्ति में होती हैं जो आपको विसर्जित करने से पहले हटानी होती हैं, जैसे जो उनके श्रृंगार का सामान होता है। लेकिन इन सारी बातों के बीच बात यही है कि जो तैयारी है वो अपने जोर शोर पर है, और यही वो कारीगर हैं, उनके हाथ हैं, इनके हाथों से मूर्तियों में एक आपको जान सी महसूस होती है। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी 3-4 दिन में पूरी हो जाएगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।
4: तो देखिए, कुछ सालों से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए गणेश उत्सव पर खासतौर से प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय इको फ्रेंडली यानी कि मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, जिनका उपयोग करना जल प्रदूषण से बचाव का सबसे बेहतरीन विकल्प है।
5: और ऐसे में कई मूर्तिकार जहां मिट्टी और दूसरे सॉल्यूबल चीजों से बनी एक से बढ़कर एक मनोहरी मूर्तियों को आकार दे रहे हैं, इनकी डिमांड भी मार्केट में खूब बनी हुई है। यही वजह है कि इको फ्रेंडली मूर्तियां बप्पा इस गणेशोत्सव में भी रायपुर में काफी ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं। दरअसल यहां पर एक परिवार पिछले 25 सालों से गणेश जी की ऐसी ही प्यारी मूर्तियों को आकार दे रहा है।

0: बीते कुछ सालों से गणेशोत्सव पर प्रकृति का भरपूर ख्याल रखने का संदेश दिया जा रहा है। नेचर को नुकसान पहुंचाने वाले जहर से कोसों दूर बाप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां आज मूर्ति कारीगरों के साथ आस्थावानों की पहली पसंद है। ऐसे में कुछ मूर्तिकार परिवार अपनी गणेश भक्ति को ही पीढ़ियों से चली आ रही कला परंपरा में बदले हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर का एक परिवार है जो हर साल आस्थामयी और कलात्मक माहौल में भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय बांस, नारियल की छाल और मौली धागा से बेहद खूबसूरत और पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों को आकार दे रहा है। इस परिवार के मुखिया हैं शिवचरण यादव, जो कभी सरकारी मुलाजिम रहे, घर चलाने के लिए भेल भी बेची, लेकिन जब इस काम में मन नहीं रमा तो फिर कलाकारी करने का महज ख्याल ही मानो पैशन बन गया है।
1: बच्चे लोग सबसे पहले मेरे को वहाँ अध्यक्ष बनाए, उसके बाद फिर मैंने अपना धीरे धीरे स्थल सजावट का काम किया। स्थल सजावट करने के बाद अब उसमें भी मजा नहीं आया, तो फिर मैं बोला उसको बंद करके मूर्ति का काम स्टार्ट किया।
0: मूर्तिकार शिवचरण को इन मनोहारी मूर्तियों को आकार देते हुए 25 साल से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान उन्होंने ठेले पर भी बाप्पा की मूर्तियां रखकर बेची। साल 2011 से शिवचरण ने घर पर ही मौली धागा, नारियल की लकड़ी, नारियल की बुच जैसी कई इको फ्रेंडली चीजों से मूर्तियों को आकार देना शुरू किया। वहीं इस बार के गणेशोत्सव में शिवचरण ने धूप दीप, पेड़ की छाल और बांस की लकड़ी जैसी कई और पर्यावरण सुरक्षित जैसी चीजों से खूबसूरत बप्पा बनाए हैं, जिनके डिमांड काफी है।
1: इस बार हम लोग बनाए हैं धूप दीप का बनाए हैं राम भगवान के रूप में, और पेड़ के छाल से बनाया गया है, और उसके बाद बांस की लकड़ी से बनाया गया है, और नारियल की बूच को नारियल का स्वरूप दिया गया है।
2: बिंदी से शंख और सीप से
1: बनाया गया है, और ये क्या बोलते हैं,
2: बिंदी से
1: ये मोती से बनाया गया है।
0: शिवचरण और उनके परिवार की नज़र में प्रकृति का सम्मान ही बाप्पा की सच्ची भक्ति है। शिवचरण अपनी पत्नी, दो बेटे और एक बहू के सहयोग से विघ्नहर्ता की ऐसी ऐसी सुंदर मूर्तियां बना रहे हैं जिनके चाहने वाले ग्राहक हर साल बढ़ रहे हैं।
3: बाकी मूर्तियां तो अलग अलग बनाए जाते हैं मिट्टी से और बाकी अन्य चीजों से, लेकिन हम लोग गणेश जी को किसी भी चीज में अलग अलग रूप में बनाकर, मतलब आप देख सकते हैं कि पीछे एक लकड़ी की छाल है, सामने धूप अगरबत्ती है, उसके हिसाब से अलग अलग चीजों में बनाते हैं।
2: आस्था भी है गणेश
3: जी, बहुत आस्था है हमारी।
0: फिलहाल तो मिट्टी की ये सुंदर सुंदर इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा हमारी प्रकृति को मुस्कुराने की वजह दे रहे हैं। रायपुर का ये परिवार गणेश मूर्ति को बनाने की कला को जिस अंदाज में जिंदा रखे हुए हैं, उससे न केवल समाज को अपना पर्यावरण बचाने की प्रेरणा मिल रही है, बल्कि खुशहाल प्रकृति बने रहने का संकेत भी मिल रहा है। तो हो जाए एक बार फिर विघ्नहर्ता का ये प्यारा सा उत्सव इको फ्रेंडली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: पूरे देश में अभी से गणेश उत्सव की रौनक दिखाई देने लगी है। जगह जगह पर दस्तकार बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। प्रतिमाओं में रंग भरने का काम जारी है।
5: वहीं गणेश भक्त अभी से मूर्तियों का ऑर्डर दे रहे हैं ताकि कोई उत्सव में कोई भी कमी ना आ पाए।

0: संगम नगरी में पूरे उत्साह के साथ गणेशोत्सव की तैयारियां जारी हैं। मूर्तिकार बड़ी ही लगन और आस्था के साथ बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। खास बात यह है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। इन मूर्तियों में गंगा की मिट्टी, धान का पैरा और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे विसर्जन के बाद पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा।
1: गणेश जी का मिट्टी पूरा प्योर मिट्टी और गंगा जी का शुद्ध मिट्टी से बनता है, और इसमें धान का पैरा है और लकड़ी है, बांस है, ये इको फ्रेंडली, पूरा कलर भी हमारा इको फ्रेंडली है।
0: इन दिनों गणेश प्रतिमाओं को रंगने और सजाने का काम तेजी से चल रहा है। कारीगर दिन रात मेहनत कर भगवान गणेश की आकर्षक प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। इस बार प्लास्टर ऑफ पेरिस और सिंथेटिक रंगों से दूरी बनाई गई है। यहाँ के मूर्तिकार दस्तकार उत्साहित हैं, क्योंकि लगातार बारिश के बावजूद इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की मांग बढ़ी है। घरों से लेकर बड़े बड़े पंडालों तक के लिए बड़ी संख्या में ऑर्डर मिल रहे हैं।
2: उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में गणेश चतुर्थी अब मनाई जाने लगी है, तो प्रयागराज में यहाँ गणेश मूर्तियां तैयार की जा रही हैं, उसमें रंग भरा जा रहा है, और जो यहाँ मूर्तिकार हैं तपसपाल, यहाँ पर इन मूर्तियों में रंग भरने का काम कर रहे हैं। छोटी से बड़ी मूर्तियां यहाँ पर बनाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मूर्तियों में रंग भरने का काम किया जा रहा है, और छोटी से बड़ी मूर्तियां, सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पर 10 फीट की है, और छोटी जो मूर्ति है यहाँ पर उनमें रंग भरने का काम किया जा रहा है। तमाम कलाकार इन मूर्तियों को बना रहे हैं।
0: ये तस्वीरें राजकोट की हैं, जहां इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं को सजाने का काम चल रहा है। कोलकाता के दीपक जाना पिछले 30 सालों से लगातार यहां आकर बप्पा की प्रतिमाओं को तैयार करते हैं। राजकोट के गणेशोत्सव में अपने हुनर के रंग भरते हैं। दीपक जाना का कहना है कि इस बार मूर्ति निर्माण की लागत बढ़ गई है, इसके बावजूद इन्होंने बप्पा की प्रतिमाओं की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया। ये सिर्फ मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल करते हैं।
3: तो लेटेस्ट डिजाइन इंटरनेट में आया, उसी को ढूंढ ढूंढ के कलेक्शन करके मैं लोग बनाया मूर्ति।
4: कौन सा वो खास मूर्ति है?
3: खास मूर्ति जो पहले नंबर है, नव दुर्गा का स्वरूप में, उसका नव दुर्गा है, उसका गोद में बैठा हुआ गणपति बापा 9 फीट का ऊपर है। ऐसा और भी बहुत सारे थीम है, सभी अलग अलग है, एक ही डिजाइन एक में नहीं है, सभी जितना भी मूर्ति है सब अलग अलग डिजाइन का है।
0: करनाल में राजस्थान से आया मूर्तिकारों का ये परिवार पिछले 6 महीने से बप्पा की मूर्तियों को आकार देने में जुटा है। इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि बप्पा की सैकड़ों प्रतिमाएं अब यहाँ गणेश भक्तों को लुभा रही हैं।
5: अभी गणेश तो तैयार करने के मेरे 6 महीना हो गया बनाते बनाते, अभी एक एक मूर्ति में 10 से 12 दिन लग जाते जी, बारीकी काम है।
0: गणेशोत्सव को लेकर यहाँ लोगों में खासा उत्साह है, लिहाजा अपने घरों और पंडालों के लिए गणेश भक्त यहाँ मूर्तियों का ऑर्डर देने पहुँच रहे हैं।
6: बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां हैं, मतलब ये सोचते हैं कि भाई हम तो ऐसा मन करता है कि भाई हम सारी मूर्ति उठा लें, लेकिन उठानी एक ही होती है हमको, तो बहुत अच्छा लगता है त्योहार मनाने में। बहुत मतलब काफी धूमधाम से मनाया जाता है हमारे करनाल में, तो बहुत ज्यादा मनाने लग गए,
7: और मूर्तियां इतनी प्यारी प्यारी कि हमारे दिल भर जाते हैं इन मूर्तियों को देख के। काफी टाइम से हम आ रहे हैं यहाँ पे लेने के लिए, आज भी हम मूर्ति देखने आए, अपनी बुकिंग कराने आए मूर्तियों की हम अपने लिए।
0: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तो बच्चे मिट्टी से बप्पा की मूर्त गढ़ रहे हैं। यहाँ सेल्फ क्रिएशन ग्रुप ने लगातार 6ठी साल बप्पा मेकिंग वर्कशॉप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप का मकसद बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ने का था, लिहाजा मोबाइल से दूरी बनाकर बच्चों ने मिट्टी से दोस्ती कर ली और अपने हुनर के रंग से बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुट गए। 60 बच्चों ने इस बार बप्पा मेकिंग वर्कशॉप में हिस्सा लिया। अब इनकी बनाई प्रतिमाएं इस साल गणेशोत्सव की शान बनेंगी। राजकोट से रौनक मजीठिया, करनाल से कमलदीप, चंद्रपुर से विकास राजुरकर और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: चलिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद देखिए कश्मीर में फिल्म फेस्टिवल के रंग।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: सीपीसीबी सर्वे में देश के टॉप 10 शहरों में उत्तर प्रदेश के 3 शहर, लखनऊ की हवा देश में सबसे साफ, आगरा दूसरा, चौथे नंबर पर आगरा, तो वहीं 8वें नंबर पर नोएडा और 9वें नंबर पर गाजियाबाद। तिरुपति बालाजी मंदिर में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा अर्चना, वीआईपी दर्शन एंट्री की जगह आम रास्ते से किए दर्शन, सीएम को भेंट की गई बालाजी की तस्वीर। देशभर में गणेश उत्सव की तैयारी, नागपुर में गणेश उत्सव से पहले सजी भव्य गणपति पंडाल, ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर बप्पा का स्वागत। मिस्र के अलिमीन एयर शो में आज दिखेगा भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर का दम। डॉल्फिन लीप और स्पॉट स्टॉल टर्न फॉर्मेशन भी करेगी पेश।
16: वडोदरा में पीएम मोदी आज जेन जी से करेंगे सीधा संवाद। 6,000 से ज्यादा छात्र युवा होंगे शामिल। तो वहीं जिले को 35,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: और चलिए अब आपको कश्मीर के श्रीनगर लिए चलते हैं, जहां पर शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसका उद्घाटन किया। 10 सितंबर तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल के लिए देश और दुनिया भर के फिल्म मेकर्स ने उत्साह दिखाया है।
1: घाटी में पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, जिसमें कि चार दिन के इवेंट में स्क्रीनिंग के लिए 41 देशों की 135 फिल्में चुनी गई हैं। इस फिल्म फेस्टिवल को लेकर कश्मीर के युवाओं में भी खास उत्साह दिख रहा है। कश्मीर में हो या फिर कश्मीर में, ये पहला फिल्म फेस्टिवल घाटी को एक नई पहचान भी दिला रहा है। कश्मीर में ये फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें काफी युवा भी पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का मेला यहाँ पर लगा रहा, चार दिनों तक ये मेला चलने वाला है, जिसमें सीएम की भी मौजूदगी रही।
0: आपको बता दें सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसका उद्घाटन किया है। देश और दुनिया भर के फिल्म मेकर्स ने उत्साह दिखाया है, इसमें शामिल हुए हैं।

0: कश्मीर की हसीन वादियों में सिनेमा और संस्कृति का महामंच सज चुका है, जिसका आगाज कलाकारों की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ हुआ तो पूरा शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर गीत संगीत और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये घाटी में हो रहा पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया। इसके साथ ही सिनेमा और जम्मू कश्मीर के पुराने और गहरे रिश्ते का एक और नया अध्याय शुरू हो गया है।
1: गवर्नमेंट की तरफ से पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दो तीन मकसद हैं। एक तो दुनिया भर की कुछ फिल्में जो हैं, यहाँ जो लोग या तो शौकीन हैं या मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इस तरह का एक्सपोजर देना। फिर जो हमारे लोकल फिल्म इंडस्ट्री है, उन्हें भी थोड़ा सा इसमें एक एक्सपोजर मिल जाता है। और कोशिश की जा रही है कि हम मुल्क के फिल्म इंडस्ट्री को याद दिलाएं कि स्विट्ज़रलैंड और बाकी मुल्कों से पहले अगर फिल्में बनती थीं तो कश्मीर में बनती थीं, और हम चाहेंगे कि वो सिलसिला दोबारा शुरू हो जाए।
0: कश्मीर में आयोजित हो रहे इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें बॉलीवुड एक्टर फातिमा सना शेख, फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा, रमेश सिप्पी और संतोष सिवन के साथ साथ बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई हस्तियां शामिल रही, जिन्होंने घाटी में हो रहे इस बड़े आयोजन पर खुशी जताई।
2: हमारे यहाँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया जा रहा है और वो भी गवर्नमेंट लेवल पे, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। हमने भी कई फेस्टिवल्स और कार्निवल्स किए हैं यहाँ पे, और ये एक बड़ी लेवल पे जो हुआ है, ये दैट्स आई कैन से कि बहुत अच्छा है। इस पे फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है यहाँ, उसको बूस्ट मिले।
0: भारतीय सिनेमा और कश्मीर का रिश्ता नया नहीं है। 1960 और 70 के दशक में कश्मीर की कली, जंगली, आरजू और कभी कभी जैसी कई हिट फिल्मों ने घाटी को प्रेम, संगीत और प्राकृतिक सौंदर्य की सिनेमाई कल्पना का हिस्सा बना दिया था। इन फिल्मों के जरिए देश ही नहीं दुनिया भर के दर्शक भी कश्मीर की खूबसूरती से रूबरू हुए। लेकिन 90 के दशक में आतंकवाद के चलते कश्मीर के सिनेमा घरों के दरवाजे बंद हो गए और फिल्मों की शूटिंग लगभग रुक गई थी। हालांकि आज हालात तेजी से बदले हैं, जिसके चलते न सिर्फ घाटी में फिर से सिनेमा घर खुले हैं, बल्कि पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी हो रहा है।
3: जब हम सिनेमा से महरूम रहे, और ये तो वो इलाका है जिसका हिंदुस्तानी सिनेमा के साथ चोली दामन का साथ रहा, आपने हमने वो दौर भी देखा जब कश्मीर के हर गली, हर कूचे में, हर बागीचे में शूटिंग हुआ करती थी। ये होटल, ये हाउस बोर्ड फिल्मी दुनिया के मेहमानों से आवाज थे। तो मुझे लगता है कि एक तरह से अनेकों तरह से वादी कश्मीर का बॉलीवुड से भी नाता रहा। कश्मीर एनरिच्ड बॉलीवुड एंड बॉलीवुड इन टर्न एनरिच्ड कश्मीर।
4: आखिरी बात, जो यहाँ के लोकल हमारे आर्टिस्ट हैं, वो कभी कभार शिकायत करते हैं कि जितना ज्यादा बॉलीवुड आएगा यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को इन्वॉल्व करने की जरूरत है।
3: ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि लोकल आर्टिस्ट के लिए आउटलेट है।
0: जम्मू कश्मीर प्रशासन को उम्मीद है कि ये आयोजन कश्मीर के लोगों को दुनिया भर के प्रोफेशनल्स से बातचीत करने का मौका भी देगी, और वो फिल्म मेकर से जुड़ पाएंगे, आइडिया एक्सचेंज कर पाएंगे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों की फिल्में भी देख पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: बाबा खाटू श्याम की भक्ति और उनकी महिमा की कहानी अब मंदिरों और भजनों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि बड़े पर्दे तक पहुंचने जा रही है। आध्यात्मिक और धार्मिक कहानियों को लेकर दर्शकों की बढ़ती दिलचस्पी ने फिल्म मेकर्स का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। खासतौर पर हनुमान अंश जैसी फिल्मों के बाद आध्यात्मिक सिनेमा को मिल रहे रिस्पॉन्स ने इस रुझान को और मजबूत किया है, और इसी कड़ी में बाबा खाटू श्याम की महिमा और उनकी भक्ति की कहानी को सिनेमा के जरिए लोगों तक पहुंचाने की तैयारी है। खा
6: खाटू श्याम जी की भक्ति का रंग बड़े पर्दे पर चढ़ने वाला है। करोड़ों श्रद्धालुओं के आराध्य श्री खाटू श्याम जी पर बनने जा रही एक खास भक्ति फिल्म, नाम है हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। फिल्म की कहानी श्री खाटू श्याम जी से जुड़ी उस पवित्र और लोकप्रिय कथा से प्रेरित होगी जिसमें बाबा को उनके भक्त श्याम बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। और इस फिल्म के लिए एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट और सेलेक्ट मीडिया होल्डिंग्स ने हाथ मिलाया है। फिल्म को सिनेमा घरों में 2027 में रिलीज करने की तैयारी है। हालांकि अभी फिल्म के डायरेक्टर और कलाकारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया।
7: जय श्री खाटू श्याम बोलो, जय श्री खाटू श्याम, जय श्री खाटू श्याम बोलो, जय श्री खाटू श्याम।
6: अबडंशा एंटरटेनमेंट ने सिलेक्ट मीडिया के साथ मिलकर हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम हमारे का ऐलान किया है। फिल्म महाभारत के वीर योद्धा बर्बरिक और उनके खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजे जाने की कहानी पर आधारित होगी और 2027 में थिएटर्स में रिलीज होगी।
5: उम्र महज 21 साल लेकिन हौसला ऐसा कि अपनी पहली ही फिल्म के लिए लगा दी है 3 साल की कमाई और पूरी जमा पूंजी। ये कहानी है फिल्म अनुमान अंश की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर की, जिन्होंने विदेश में पढ़ाई की, ज्यूरिख में नौकरी का मौका भी मिला लेकिन भारत लौटकर एक ऐसी कहानी का हिस्सा वो बन गई जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया है। दर्शक फिल्म की कहानी और भावनाओं की तारीफ कर रहे हैं लेकिन इस फिल्म के पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। महज 21 साल की अनुप्रिया नागर ने अपनी कहानी अपनी पहली फिल्म में अपनी 3 साल की कमाई और बचाए हुए पैसे लगा दिए। अनुप्रिया के लिए ये फैसला सिर्फ एक फिल्म में पैसा लगाने का नहीं था बल्कि एक ऐसी कहानी को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश भी थी।

0: राजस्थानी कला, संस्कृति, शिल्प और लोक परंपराओं की कहानियां अब केवल म्यूजियम, आर्ट गैलरी या हवेलियों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि एक चलती फिरती आर्ट कार के जरिए राजस्थान की सड़कों पर नजर आएंगी। दरअसल जयपुर की संस्था कार्टिस्ट का ये एक नया इनिशिएटिव है जिसका नाम है स्टोरीज ऑफ इंडियन सिटीज। इस नाम से ही एक सजीली कार में कठपुतली कला से लेकर पारंपरिक शिल्प को शोकेस किया गया है, जिससे सजी ये आर्ट कार जयपुर से जैसलमेर तक राजस्थानी विरासत की कहानी सुनाने के लिए बीते 4 सितंबर को निकल चुकी है और यह सफर 23 सितंबर को बाड़मेर पर जाकर खत्म होगा।
1: जिस धरती पर रेत भी सुनाती है गीत, पग पग पर मुस्कुराती है संस्कृति, रंग बिरंगी पगड़ियों में नजर आती है मिट्टी की शान, वही है अलबेला राजस्थान। राजस्थान जो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि दिल में बस जाने वाला एक एहसास है, और ये एहसास राजस्थान की लोक कला, शिल्प, खान पान और परंपराओं में नजर आता रहा है। इसी लोक कला के दर्शन करा रही है ये अनोखी आर्ट कार, जो करीब 3500 किलोमीटर का सफर तय कर इस सूबे की जीवंत संस्कृति की अनकही कहानियों को सामने लाएगी।
2: लग्जरी कार्स हर किसी को पसंद है, क्लासिक और विंटेज गाड़ियों के बारे में भी हर कोई जानता है, पर किसी ने ये नहीं सुना होगा कि कोई गाड़ी कल्चरल है। बिल्कुल ये थॉट आएगा ही आएगा कि कोई गाड़ी कल्चरल कैसे हो सकती है, ट्रेडिशनल कैसे हो सकती है, पर मैं जिस गाड़ी में बैठ के आपको गुड न्यूज टुडे पे सफर करवा रही हूँ वो गाड़ी ट्रेडिशनल है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से कलरफुल काम हमें इस गाड़ी पे दिख रहा है, इसको पूरा कस्टमाइज किया गया है। राजस्थान में जयपुर की सड़कों पे नजर आ रही है, तो पिंक सिटी में ये पिंक इंटीरियर वाली गाड़ी अभी छाई हुई है।
1: स्टोरीज ऑफ इंडियन सिटीज के नाम से इस सजीली कार में कठपुतली कला से लेकर पारंपरिक शिल्प का शोकेस है, जो जयपुर से जैसलमेर तक करीब 20 शहरों से गुजरते हुए राजस्थानी विरासत की कहानी सुनाएगी।
2: इसके दो आर्टिस्ट हैं, या कह सकते हैं कि कार्टिस्ट हैं, और ये जो दो कार्टिस्ट हैं उनमें से एक ने इसका इंटीरियर किया है तो दूसरे ने इसका एक्सटीरियर में जो राजस्थानी लुक है, जो कठपुतलियां हैं, वो इस पे बनाई है।
1: यहाँ की विविध परंपराओं से सजी इस आर्ट कार की खूब चर्चा है, क्योंकि इसको सजाने सवारने में ही करीब 45 दिन लग गए। इसके डोर्स पैनल और कार्पेट एरिया को डेकोरेट करने के लिए 3 लोगों ने दिन रात मेहनत की, और देखते ही देखते इस आर्ट कार का पूरा इंटीरियर और एक्सटीरियर राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपरा के शोकेस बन गए। दरअसल सैलानी जब भी राजस्थान आते हैं वो यहाँ के ऐतिहासिक किले, बावड़ी या महल देखते हैं, लेकिन ये रंग बिरंगी आर्ट कार रंगीलो राजस्थान की लोक कला, परंपरा, शिल्प और खान पान की अनकही कहानियों को ही ढूंढने निकली है। इस आर्ट कार का एक्सटीरियर हो या इंटीरियर, दोनों को कार में दिखाने की बड़ी ही रोचक कहानी है, क्योंकि ये राजस्थान के किले और महलों की कहानियों से एकदम परे है।
3: इसका एक्सटीरियर हमारे आर्टिस्ट श्रीकांत रंगा ने करा है। ही हैज पेंटेड कठपुतलीज और राजस्थान का ट्रेडिशनल फोक को रिप्रेजेंट करा है बाहर। इंटीरियर में हम लोग बड़े सोच विचार के बाद हमने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमने बाड़मेर का पैच वर्क जिसे एप्लिक बोलते हैं उसको हमने इधर यूज करा है। तो यूज करने का मेन पर्पज ये कि एक तो ये सस्टेनेबल क्लोथ है और इसको वहां की महिलाएं अपने घरों में ही बनाती हैं और स्टिच करके उस वेस्ट को कैसे ना एक नया रूप दे देते हैं, इसलिए हमने कोशिश करी है कि उनको सेलिब्रेट करा जाए, उनके आर्ट फॉर्म को सेलिब्रेट करा जाए, इसलिए इसका इंटीरियर हमने डेकोरेट करा है।
1: जाहिर है ये आर्ट कार एक चलता फिरता कैनवस ही है जो खुद में राजस्थान की लोक विरासत के समृद्धशाली इतिहास को समेटे हुए है। दरअसल इस कार को हिमांशु ने कभी खूब ड्राइव किया, एक समय तो ये कार कार्टिस्ट यात्रा का हिस्सा भी रही और पूरा हिंदुस्तान घूम चुकी है, जो अब अकेले इस अलबेले राजस्थान के सफर पर निकली है।
3: हमारा मेन पर्पस है कि हम उन आर्टिजन से मिलें, वो किस तरीके से इन आर्ट क्राफ्ट को, अपना हेरिटेज को संभाल के अभी तक नेक्स्ट जनरेशन को वापस देते हैं, तो क्राफ्ट स्टोरीज पे हमारा ज्यादा फोकस है इस बार।
1: इस सफर में हिमांशु और उनके साथी राजस्थान में बरसों पहले अपनाए गए जल संरक्षण के तौर तरीकों को भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस अनोखे काम को हिमांशु बाड़मेर में ही सेलिब्रेट करने की भी सोच रहे हैं, क्योंकि वहीं की महिलाओं ने कार का ये खास पैच वर्क तैयार किया।
2: फाइनली ये काम जो है उसको जस्टिस मिलेगा, जिस जगह से वो आया है वहां पहुंचकर वहां की महिलाएं जब देखेगी कि उनके बनाए हुए ये जो पैचवर्क है ये कहाँ इस्तेमाल किए गए हैं, कौन से शहर और कौन से प्रदेशों में ये घूम रहे हैं, पूरे भारत में राजस्थान की आन बान शान बने हुए हैं और यहाँ की जो धरोहर है वो हर जगह पहुंचा रहे हैं। ये सफर तो हमने शुरू कर दिया है गुड न्यूज टूडे पर और हम देखना चाहते हैं कि इसकी मंजिल क्या रंग रूप लेकर आती है, क्या कुछ ऐसी कहानियां हैं जो अब तक कहीं पे भी नहीं पहुंची हैं पर अब आगे जरूर आप तक पहुंचने वाली है। कैमरन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
4: सोचिए एक रोबोट आपके घर में आए और सिर्फ चलने या बोलने के बजाय फ्रिज खोले, सामान उठाए, चीजों को सही तरीके से पकड़े और आपके साथ मिलकर काम करने लगे।
0: सुनने में ये भविष्य की कहानी लगती है, लेकिन ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद के सामने इसकी झलक दिखाई गई। एआई पावर्ड रोबोट्स ने अपनी ऐसी क्षमताओं का प्रदर्शन किया जो आने वाले वक्त में घर से लेकर फैक्ट्री तक काम करने का तरीका बदल सकती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: ये तस्वीर उस भविष्य की है जहां मशीनें सिर्फ मशीन नहीं रहेंगी। ब्रसेल्स में यूरोपियन संसद के खास रोबोटिक शोकेस में एआई पावर्ड रोबोट्स ने ताकत दिखाई। चलते रोबोट्स, चीजें उठाते रोबोट्स और बारीकी से काम करते रोबोट्स। 14 देशों के 31 एकेडमिक और इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के 15 रोबोट्स ने दिखाया कि मशीनें अब सिर्फ प्रोग्राम किए गए काम दोहराने से आगे बढ़ रही हैं। इन रोबोट्स की सबसे बड़ी खासियत है अपने आसपास की दुनिया के साथ तालमेल, किसी वस्तु को पहचानना, उसके आकार और स्थिति को समझना, फिर उतनी ही ताकत से पकड़ना जितना जरूरी हो। इंसान के हाथ के लिए ये सब बेहद स्वाभाविक है, लेकिन एक रोबोट के लिए हर मूवमेंट के पीछे सेंसर, एआई और बेहद सटीक गणना काम करती है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है फ्रिज खोलना, हमारे लिए रोज का मामूली काम, लेकिन रोबोट के लिए एक पूरा मिशन। उसे फ्रिज देखना है, हैंडल पहचानना है, सही जगह हाथ ले जाना है, ग्रिप बनानी है और फिर सही ताकत लगाकर डोर खोलना है।
1: So they have to interact with our environment, open doors, open door, drawers. In the case of our robot has to open the fridge, which seems like a simple task, we do it all the time. But imagine when you do it and your hand is very soft and compliant and is doing very quick movement.
0: असली कमाल सिर्फ रोबोट्स के चलने में नहीं, कमाल तब है जब वो देखकर फैसला करे, हाथ बढ़ाए और काम पूरा करे। और यही क्षमता इन्हें घर, अस्पताल और दूसरी जगहों पर इंसान का मददगार बनाने की दिशा में ले जा रही है। लेकिन इस तकनीकी दौड़ में यूरोप के सामने बड़ी चुनौती भी है। चीन और अमेरिका ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में भारी निवेश के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यूरोप के पास मजबूत रिसर्च है, लेकिन उसे लैब से निकालकर बड़े पैमाने पर उत्पादन तक पहुंचाने की रफ्तार अभी चुनौती बनी हुई है।
2: Huge ecosystem of suppliers, of technology, manufacturing facility that allow to accelerate and go very, very fast as China is doing or how US is doing because of the large investment that they are receiving.
0: ये सिर्फ तकनीक की दौड़ नहीं है, बुजुर्ग होती आबादी और घटते वर्कफोर्स के बीच आने वाले वक्त में ऐसे रोबोट्स की जरूरत और बढ़ सकती है।
3: It's definitely lack of funding and lack of political willingness. It's not that we don't get funding. It's not that the politicians do not pay attention to robotics, but clearly not at the same level as what happens in China.
0: फ्रिज के डोर खोलने से शुरू हुई ये कहानी घर के काम से लेकर फैक्ट्री के मुश्किल काम तक पहुंच सकती है। बेशक रोबोट्स इंसान नहीं बन सकते, लेकिन उन्हें इंसान की तरह काम सिखाने की कोशिश अब पूरी रफ्तार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं हैं। देखिए आयशा जुल्का की फनी इंस्टा स्टोरी।
5: सुनो हा? अगर तुम्हारे पास कोई हुनर है तो उस हुनर को कमाई का जरिया बनाओ।
6: मतलब मैं लड़ने के भी पैसे लूं क्या?
5: हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक बार आई लव यू बोल दीजिए ना।
6: दो तीन दिन बाद बोलेंगे।
5: दो तीन दिन बाद का है, अभी बोल दीजिए ना।
6: पहले वाले से ब्रेकअप करने में दो तीन दिन तो लगेगा ना।
4: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: क्या है दान की महिमा, दान करने के नियम और सावधानियां क्या हैं? अलग अलग ग्रहों के दान की वस्तुएं क्या हैं और दान का उचित समय क्या है? क्या है दान और भाग्य का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: सीपीसीबी सर्वे में देश के टॉप 10 शहरों में उत्तर प्रदेश के 3 शहर, लखनऊ की हवा देश में सबसे साफ, चौथे नंबर पर आगरा, आठवें नंबर पर नोएडा और नौवें नंबर पर गाजियाबाद। आगरमालवा में बाबा भूतेश्वर महादेव की निकाली गई शाही सवारी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, विशाल नंदी और खाटू श्याम जी की झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। तिरुपति बालाजी मंदिर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, वीआईपी दर्शन, एंट्री की जगह आम रास्ते से दर्शन किए, सीएम को भेंट की गई बालाजी की तस्वीर। देश भर में गणेशोत्सव की तैयारी, नागपुर में गणेशोत्सव से पहले सज गए भव्य गणपति पंडाल, ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर बप्पा का स्वागत। मिस्र के एल अलामीन एयर शो में आज दिखेगा भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी ग्रह का दान करना चाहते हैं तो किस ग्रह के लिए किस वस्तु का दान किया जाएगा और किस समय दान करना चाहिए। तो अलग अलग ग्रहों के दान की वस्तुएं क्या हैं और अलग अलग ग्रहों के दान के नियम क्या हैं, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 सितंबर 2026 दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 2:42 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, शाम के 4:39 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 8 सितंबर 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, बुध कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और चंद्रमा तथा बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम ग्रहों के दान के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि दान का महत्व क्या है। देखिए, दान एक ऐसा काम है जिसके माध्यम से हम धर्म का ठीक ठीक पालन कर पाते हैं और दान करके दूसरों की सहायता तो करते ही हैं, अपने जीवन की तमाम समस्याओं से भी निकल सकते हैं। आयु रक्षा के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दान को अचूक माना जाता है, लेकिन आयु और स्वास्थ्य के अलावा अन्य समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी दान का बहुत महत्व है। जीवन की बहुत सारी समस्याओं के लिए अगर आप दान करते हैं तो उस दान की शुभता से आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभदायक होता है। आपके लिए किसी खराब ग्रह की दशा चल रही हो, किसी खराब ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर हो और उस ग्रह से संबंधित

करे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। दान पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, पारिवारिक तनाव से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, जल्दबाजी में निर्णय न लें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, कोई शुभ सूचना मिलेगी, अनाज का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर ले तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आप ग्रहों की शांति के लिए दान करने जा रहे हो या किसी की सहायता के लिए दान करने जा रहे हो, दान के नियम क्या हैं वो भी समझिए। देखिए, दान कभी भी किसी दबाव में नहीं करना चाहिए। पंडित जी ने कह दिया है, मन मार के प्रेशर में दबाव में दान कर रहे हैं, ऐसा दान फलीभूत नहीं होगा। दबाव में आके, प्रेशर में आके, तनाव में आके जबरदस्ती दान मत करिए। दान किसी ऐसे व्यक्ति को मत करिए जो कुपात्र हो। आपको पता है कि कोई व्यक्ति शराब पीता है, मदिरा पान करता है, उसको धन का दान करेंगे वो मदिरा ही पिएगा। इसलिए कुपात्र व्यक्ति को दान मत करिए। जो भी वस्तु आप दान करें वो वस्तु उत्तम कोटि की होनी चाहिए, बढ़िया तरीके की होनी चाहिए। घटिया और खराब वस्तुओं का दान ना करें। आपकी कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण है, जो ग्रह आपके लिए लाभकारी है, उसका दान कभी मत करिएगा। दान में मांस मदिरा जैसी तामसिक वस्तुएं ना दें तो ज्यादा अच्छा है। और दान देते समय मन में ये भावना लें, ये सोचें कि दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूं, ईश्वर की वस्तु ईश्वर को दे रहा हूं। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। इस भावना से दान करेंगे तो दान करने से कल्याण होगा। दान पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक
राशिफल। सिंह राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर ले तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि अलग अलग ग्रहों के लिए किस चीज का दान करना चाहिए और कब दान करना चाहिए। सूर्य देव की अगर बात करें तो सूर्य देव के लिए तांबे के बर्तन, गुड़, गेहूं के आटे का दान कर सकते हैं रविवार को दोपहर के समय में। चंद्रमा के लिए दूध, चावल, चांदी, चीनी और जल का दान कर सकते हैं सोमवार की रात को। मंगल के लिए लाल मसूर की दाल का, तांबे का, लाल फल का मंगलवार को दोपहर में दान कर सकते हैं। बुध, हरी सब्जियां, हरी दाल, सुगंधित वस्तुएं और कांसा, ब्रॉन्ज, इसका दान बुधवार को प्रातः कर सकते हैं। बृहस्पति, केला, पीली दाल, हल्दी, शिक्षा की वस्तुएं, पीतल और सोना, ये बृहस्पतिवार को प्रातः दान कर सकते हैं। शुक्र, दही, शक्कर, सफेद वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन, ये दान कर सकते हैं शुक्रवार की रात को। शनि के लिए काले तिल, काली उड़द की दाल, काले वस्त्र और लोहे की वस्तुओं का दान कर सकते हैं शनिवार की शाम को। तो अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग वस्तुओं का दान करना लाभकारी होगा। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो ग्रह आपकी कुंडली में फेवरेबल है, जो ग्रह आपकी कुंडली में अनुकूल है, उसकी वस्तुओं का दान मत करिएगा।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचें, जल्दबाजी में काम ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, काम का दबाव कम होगा, धन की प्राप्ति होगी, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई यात्रा हो सकती है, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर ले तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, धन का लाभ होगा, व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है, अनाज का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। देखिए, दान के साथ हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि दान पवित्र भावना से, पवित्र मन से किया जाए। और देखिए, ग्रहों के दान के लिए बहुत परेशान मत होइए। आप बिना मन में ये सोचे हुए कि मैं ग्रह का दान कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, आप वैसे किसी को वस्त्र देना चाहें, भोजन कराना चाहें, किसी की सहायता करना चाहें, तो उस हिसाब से आप कोई भी दान कभी भी कर सकते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि ये दान मैंने इस ग्रह के लिए किया है, तब वो दान उस ग्रह का दान होता है। बिना मन में भाव लिए हुए सामान्य स्थिति से किसी भी वस्तु का दान आप किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आप सप्ताह में एक दिन भी किसी दिन निर्धन को भोजन करवाते हैं या अनाज का दान कर देते हैं, तो ऐसा करने से आपको रोजगार की समस्या कभी परेशान नहीं करेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 8 सितंबर 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा, घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: કે હે સ્વામીજી, હસબેન્ડ, બેબુ, બતાવ બેલન કહાં હૈ? તો તુમે ઉલ્લુ ના કહા જાય તો ક્યાં કહા જાય? સિર પે છોરા હૈ, નગર મેં ખોજ રહે હો, અબ તુમે ઉલ્લુ ના કહા જાય તો ક્યાં કહા જાય? વૈસે હી પરમાત્મા તુમ્હારે ભીતર હૈ, તુમ બહાર ખોજ રહે હો, તુમે ઉલ્લુ ના કહા જાય તો ક્યાં કહા જાયેગા? તુમ મેરે પાગલો, પરમાત્મા ખોજને સે પ્રાપ્ત નહીં હોતા હૈ, પરમાત્મા તો ખો જાને સે પ્રાપ્ત હોતા હૈ. જો ઉસમેં ખો જાતા વો પા જાતા, તો જિન ખોજા તિન પાઈયા. ખો જાને કે મતલબ ઉસમેં ડૂબ જાઓ, અંદર મેં ડૂબ જાઓ, ઘૂંઘટ કે પટ ખોલ તો હી પિયા મિલેંગે. બાદલ હટતે હી સૂર્ય દિખાઈ દેને લગતા હૈ, સૂરજ કી રોશની નીચે આ જાતી હૈ. સૂર્ય કી રોશની તો હમેશા રહેતી હૈ, અભી થોડા બાદલ હૈ, ઢકા હુઆ હૈ, બાદલ હટને દો, સૂર્ય અપને આપ દિખાઈ પડેગા. વૈસે હી અંદર પરમાત્મા હૈ, વો ઢકા હુઆ હૈ માયા મેં, થોડા માયા કો હટને દો, પરમાત્મા તુમે દિખાઈ પડેગા. તુમ ખોજતે મંદિરો મેં, તુમ ખોજતે તીર્થો મેં હો, તુમ ખોજતે યહાં વહાં હો. ખોજો યહાં, દેખના ભૈયા કોઈ જગત જનની ચિલ્લા રહી, ઉનકી સુનો કોઈ, બાકી પ્રવચન બાદ મેં, પહેલે જગત જનની કી સુનો, નહીં તો વો પૃથ્વી તોડ દેંગે. લગતા હૈ ઉન્હોને ચૈન યા હાર ખો દિયા હૈ, વો ખોજને આઈ થી ભગવાન કો લગતા હૈ ઉનકા ચૈન ચલી ગઈ હૈ યા હાર ચલા ગયા હૈ, પકડ ભી લિયા હૈ હમે લગતા હૈ. ઠીક હૈ, બેઠો જગત જનની, આતે હૈ રક્ષક. હા સુનો, તો પરમાત્મા કો પાને કા સર્વોત્તમ માર્ગ હૈ ખો જાના. મેરે પાગલો, અંત મેં હમે એક હી બાત કહેંગે, તુમ સદા સદા કે લિયે ભગવાન કે હો જાઓ, તુમ ભગવાન કે હો જાઓગે તો ભગવાન ભી તુમ્હારે હો જાયેંગે. તુમ્હારી મુસીબતે કમ હોની નહીં હૈ, આદમી કી મુસીબતે કહાં કમ હોતી હૈ, આદમી ચાહે કમ હો જાતા હૈ, મુસીબતેં કમ નહીં હોતી. સિર કા દર્દ ઠીક હો તો પેટ દર્દ કરતા, પેટ કા દર્દ ઠીક હો તો પડોસી દર્દ કરતા, પડોસી કા દર્દ ઠીક હો તો પડોસન દર્દ કરતી, વો ઠીક હો તો ઘરવાલી પ્રાણ નહીં છોડતી, ફિર બચ્ચે, ફિર ઝંઝટ લગે હી રહેતે હૈ. હમ ચાહતે હૈ તુમ્હારા એક એસા પરચા બન જાય કે સમસ્યાએ જીતની આતી જાય સો આતી જાય, સમાધાન સબકા હોતા જાય. ક્યા તુમ ભી એસા ચાહતે? આપ એક સમસ્યા કા સમાધાન ચાહતે યા પ્રત્યેક કા?
1: જોર સે બોલો જી.
0: પ્રત્યેક કા કોણ કોણ ચાહતા? વાહ, હાથ નીચે કરો, પીટને કે કામ આયેંગે. હમારી તીન બાતે માનના. પહેલી, આજ સે લહેસુન પ્યાજ બંધ કર દેના. દૂસરી, પેશી શરૂ કર દેના. ઓર તીસરી, જબ ભી ઉનકે ચરણો મેં જાના કહે દેના તુમ હમારે ઓર હમ તુમ્હારે. તુમ હમારે ઓર હમ તુમ્હારે. एक बात और, प्रश्न कभी खत्म नहीं होते। न जिंदगी के न जीवन के, न शंका के न समस्या के। मानो कि हम बता दें कि चलो तुम्हारी शादी 2027 में हो जाएगी, तो अगला प्रश्न तुरंत उठेगा, किससे होगी भाई? लड़की से होगी? क्या नाम होगा? मुन्नी भाई। कैसी दिखती होगी गुरुजी? गोरी। कहां की? दिल्ली की। दिल्ली तो बहुत बड़ी है, दिल्ली में कहां? लाजपत नगर, वो भी बहुत बड़ा है। बाप का नाम फोकन लाल। फिर भी प्रश्न खत्म होंगे कि नहीं? जीवन में प्रश्न आते ही रहना है और आते रहेंगे, और तुम उत्तर पाने कभी हमारे पास, कभी किसी गुरु के पास, कभी यूट्यूब पर, कभी गूगल बाबा पर, कभी फेसबुक पर, उत्तर खोजते ही रहते। हम चाहते हैं तुम्हें हर समस्या का समाधान मिले, हर प्रश्न का उत्तर मिले, और एक दिन ऐसा आए कि तुम उत्तर बन जाओ, प्रश्न खत्म हो जाएं। और ऐसा हो सकता है कि तुम अपने आप में उत्तर बन सकते हो, प्रश्न खत्म हो जाए, और उसका उपाय और उपादान इतना ही है कि या तो भगवान को छोड़ो या भगवान पर छोड़ो, या तो भगवान को छोड़ो या भगवान पर छोड़ो। अब भगवान पे छोड़ दिया, जो जलते हैं उन्हें जलाओ। तुम हमारे पास आए हो, कुछ लोग विरोध करेंगे, और करना भी चाहिए, जो अपना सामना नहीं कर सकते वो विरोध करेंगे। अपन आदमी ही ऐसे हैं कि या तो कोई हमारी तारीफ करेगा या गाली बकेगा, छोड़ तो सकता नहीं है अपन को, दो में से कुछ एक करेगा। और जिसने हमें जाना नहीं वो विरोध करेगा, जो जान लेगा वो विरोध थोड़ी करेगा, यहीं का होकर के रह जाएगा। इसलिए मेरे पागलो, हम तुमसे भी कहेंगे कि जीना सीखना है तो आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं। कुछ पल तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं, क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से हूं लड़ा, हर पल मुसीबत में रहा हूं खड़ा, मेरे पीछे जिसका हाथ है वो बजरंग मली मेरे साथ है, मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी मुड़ा नहीं, मैं कभी रुका नहीं। इसलिए आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ पल तो मेरे साथ गुजार, दुख दर्द पीना सिखाता हूं। हमने इतनी मुसीबतें झेल ली कि अब मुसीबत आती है तो लगता है खुजली हो रही, और तुम्हें मुसीबत आती है तो हाय दैया, छाती फट गई, हाय दैया, मरे राम, हाय दैया, अरे बाप रे मर गए, तुम छाती पीटने लगते हो। बस हम में और तुम में इतना ही अंतर है, तुम पर विपत्ति आती है तो तुम हाय दैया करके छाती पीटते हो, हम पे विपत्ति आते तो हम भीतर कहते चाय बनाओ रे, देखा जाएगा। और कर भी क्या सकते भैया, अब आ गई मुसीबत तो आ गई, बुलाने थोड़ी गए थे हम मुसीबत को, आ गई है तो देखा जाएगा और अपन को ही तो झेलना है। तुम चाहे रो चाहे गाओ, मुसीबत तो रहनी है। अब मान लो तुम्हें फोड़ा हो गया, अब क्या करोगे, चाहे रो चाहे गाओ। हमें जुखाम हो गया, अब चाहे हम जो करें, अब हो गया सो हो गया, बाहर में गया, जुखाम के भी मजे ले रहे। हम बीच बीच में नाक बंद कर लेते हैं तो शरीर ही फड़फड़ाता, तो भीतर से आवाज आती है तो सांस तो छोड़ो। हम कहते तुम पहले जुखाम छोड़ो। लो चल रही लड़ाई, अब जुखाम खुद कंफ्यूज है कि इसके शरीर में रहे कि छोड़े। इसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। खैर घर पे तुम ट्राई मत करना हमारी आदतें, वरना सांस ना छोड़ी तो तुम ही छूट गए। राम नाम सत्य है, न जुखाम रहेगा न जुखाम वाला। हम बता रहे हैं अपने अपने तरीके हैं जीने के मुसीबतों से। हम पे भी मुसीबत आती है, हम पे भी झंझट आते हैं, कुछ लोग हमारे लिए भी लगे रहते हैं, विपत्तियां आती हैं। क्या नहीं, आज दरबार वहां मैदान में लगाना था, यहाँ वहां बारिश हो गई, साउंड वहां गया नहीं, तो हमने हाय दैया थोड़ी किया, छाती थोड़ी पीटी, ना ना ना, दो घंटा लेट से ही यहाँ टीन सेट में लगा लेंगे, लो बढ़िया, पानी भी कल बरसता रहे नो प्रॉब्लम, आज बरसता रहे नो प्रॉब्लम, यहाँ दरबार लग रहा है आनंद है। अब मान लो वहाँ दरबार ना लगता, फिर छाती पीटते, लो हद हो गई, हमारे चेले सुनते नहीं, ये नहीं करते। अब भार में गया, कौन किसकी सुनता, और चेले कहाँ हमारी सुनेंगे, ये अपने बाप की नहीं सुनते थे, आओ हमारी कहाँ सुनेंगे, हलवा में सुनेंगे। और जो अपने बाप की सुनते होते तो यहाँ होते ही, जब इनने अपने बाप की नहीं मानी हमारी क्या मानेंगे, खाक। जब हमारी नहीं माननी है तो हम पहले ही माइंड सेट में बाहर में जाओ, तुम अपनी ठठरी बढ़ाओ, जब तुम्हें मानना हो सो मानना, हम ना तुम्हें कहेंगे। एक आदमी हमसे बोला बोला कि यदि आप ऐसा करोगे हम अनशन पे बैठ जाएंगे। हमका तुम्हें बाप की कसम है अनशन पे बैठ जाना, हम कोई गुरुजी होंगे तुम्हें अनशन से उठने नहीं देंगे, तुम उठोगे भी तब भी हम कहेंगे कि नहीं बिल्कुल नहीं उठना चाहिए इस आदमी को अनशन से। बोला हम भोजन छोड़ देंगे, हमका तुम भोजन की बात करते, हम तुमसे पानी छोड़वाएंगे, जल्दी निपटो। और आदमी होंगे कोई जो डर जाए तुम्हारी धमकियों से, तुम्हारी भपकियों से कि हम तुम्हारा, एक व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले धमकी दे रहा था कि बाबा बागेश्वर का हम घेराव करेंगे। हमका चेले वैसे ही घेरे रहते हैं, तुम और आ जाओ, हम सेल्फी तुम्हें भी देंगे बेटा, भभूति देंगे, हमारा तुम घेराव करने आओ, तुम्हें ये भरोसा हो कि हम डर जाए तो तुम ऐसे गुरु ना समझना कोई, हम तो थोड़ा उल्टे ही गुरु है, तो हमारे पास आओगे घेराव करने, हम तुम्हें भभूति बांट देंगे और दो चार को भूत और खिलवा देंगे, लो करो घेराव। तो तुम्हें लग रहा होगा कि कोई और गुरु है तो डर जाएंगे, अपन तो बहुत उल्टे आदमी है, हम हर चीज उल्टी ही सोचते हैं, उल्टी ही चलते। पर तुमसे हम यही कहेंगे मेरे पागलो, हर परिस्थिति में मुस्कुराओ, हर बात पर मुस्कुराओ, बालाजी के चरण शरण को पकड़ लो। हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं कितनी भी जिंदगी में मुसीबत संकट तो आएंगे, पर संकट मोचन यदि जीवन में रहेंगे तो तुम घबरा ना पाओगे। और हम तुम्हें संकट मोचन देना चाहते हैं, हम तुम्हारी बाएं को बालाजी के चरणों में पकड़ना चाहते, और सुनो एक दिन के लिए नहीं, सदा सदा के लिए, क्योंकि तुम पे मुसीबतें तो आनी ही आनी है भैया। हमसे दोस्ती कर लो, काम आएंगे, हम बड़े काम आएंगे, ऐसा आदमी तुम्हें मिलेगा भी नहीं, कर लो दोस्ती बड़े काम आएंगे, सब लुट जाएगा तब भी तुम हमारी तरह मुस्कुराओगे। भाड़ में गया, लुट गया कौन सा, अपने बाप का गया, यहीं से मिला था यहीं लुट गया, जय बजरंग बली की, चलो भैया भंडारा खाएंगे अपन, आओ। हाँ कुछ साल पहले हमको एक अधिकारी ने धमकी दी कि बाबा तुम बहुत बोलते हो, एक आध दिन जेसीबी चलवा दी जाए। हमका कल चलाते हो आज चला दो। बड़ा चौंक गया अधिकारी, सामने ही बैठा था, चौंक गया, बोले कैसी बातें करते हो, बहकी बहकी। हमका ये तुम भपकियां किसी और को देना, हम तो डरने वाले नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये आश्रम हमने नहीं बनाया, जनता के पैसे से बना, जनता के लिए बना, हमारे बाप पे तो मकान भी नहीं था, जनता ने चंदा दिया दान दिया, हमने जनता के लिए बनवा दिया, और गिरेगा भी तो जनता का गिरेगा, अपने बाप का हलवा गिरेगा। वो भी चौंक गया, बोले बहुत खतरनाक आदमी हो तुम। हमका तुम फंसे नहीं हो अभी हम, और तुम कभी हवेली पे आ मत जाना, वरना इतना छीलेंगे हम तुम्हें, इतना छीलेंगे कि तुम हमारा मकान गिराओगे बेटा, हमारा आश्रम गिराओगे, हम तुम्हारा घर ऐसा गिरवाएंगे, तुम्हारे घरवाली के बारे में बताएंगे, घरवाली के साथ ना बैठ पाओगे तुम, हाँ इतनी टेंशन भर देंगे तुम्हारे दिमाग में। फिर चुप हो गया। उस दिन के बाद आज भी हमारी दीक्षा लिए है, चेला बन गया है आजकल हमारा, बना एक साल बाद, पर अपन लोगों ने दीक्षा दे रखी है, रोज ओम बागेश्वराय नमः जप रहा है, हम का बने रहो चेला, खुश रहो। अब वो जब भी हमारे पास आता है हम पूछ लेते कहो जेसीबी आएगी क्या, तो तुरंत दूर से ही हाथ जोड़ता कि कृपा करो बहुत पुरानी बात हो गई, अब नई बातें करो गुरु जी, अब छोड़ दो, तब अनजाने में हम बोल गए, अब थोड़ी बोलेंगे। कोई बात नहीं, खुश बने रहो, यही हम तुमको सिखाना चाहते, हम तो सिर्फ गुरु हैं, जीना सिखा सकते तुम्हें, आओ तुम्हें पागल बनाए। और पागल बनने का मतलब मेंटल नहीं होता, पागल होने का मतलब तुम आज से घर जाना और ऐसी हरकतें करना हंस के कि घर वाले भी टेंशन में हो जाएं कि कहां से आए। हाँ, अब वो पड़ोसी तो टेंशन में हो ही जाए जो तुम्हारे रोने का इंतजार कर रहा था, वो पूछे जरा इसका पता करो कौन से दरबार में जा रहा है, तब बता देना। लगा के आग सोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले। बागेश्वर धाम की, बाकी तुम्हारी जिंदगी तुम्हें काटनी है, हमारी हम काट रहे हैं।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूं, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: दो साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
17: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
18: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
19: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुके चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की लुका छिपी। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों

0: विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्रा आज से संभालेंगे कार्यभार। सुरक्षा, सेवा, पूजा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर करने पर होगा जोर। सीपीसीबी सर्वे में देश के टॉप 10 शहरों में उत्तर प्रदेश के 3 शहर हैं। लखनऊ की हवा देश में सबसे साफ, चौथे नंबर पर आगरा, आठवें नंबर पर नोएडा और नौवें नंबर पर गाजियाबाद। देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार। झांसी में भोलेनाथ के साथ गणेश के अनोखे स्वरूप ने खींचा लोगों का ध्यान। आगर मालवा में बाबा भूतेश्वर महादेव की निकली शाही सवारी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, विशाल नंदी और खाटू श्याम जी की झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। तिरुपति बालाजी मंदिर में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा अर्चना, वीआईपी दर्शन एंट्री की जगह आम रस्ते से किए दर्शन, सीएम को भेंट की गई बालाजी की तस्वीर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए इसमें शामिल। यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 में देश भर से आए बुनकरों ने लिया हिस्सा, बुनकरों कौशल विकास और निवेश को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की शुरुआत। इस कॉन्क्लेव से प्रदेश को वैश्विक वस्त्र उद्योग केंद्र के रूप में मिलेगी पहचान, खुलेंगे रोजगार के कई अवसर। अयोध्या दौरे पर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल वाटिकाओं में आओ सुने और सुनाए कहानी अभियान की करेंगे शुरुआत। अयोध्या में राम मंदिर के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र से भी करेंगे मुलाकात औपचारिक तौर पर। आज से राम मंदिर के प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था संभालेंगे जितेंद्र मिश्र। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में सीएम योगी ने प्रसिद्ध तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में किए दर्शन, भगवान वेंकटेश्वर का लिया आशीर्वाद। इस दौरान सीएम ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम व्यवस्थाओं की सराहना की। सीएम योगी ने आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूरे देश की सुख समृद्धि की कामना की। तमिलनाडु दौरे के दौरान नेल्लोर भी गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अक्षरा विद्यालय परिसर में सोमा स्किल डेवलपमेंट सेंटर का किया दौरा।

0: सीएम योगी के स्वागत में छात्रों ने दी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों से किया संवाद। दौरे के दौरान सीएम ने कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी उनके साथ मौजूद रहे। लखनऊ की हवा देश में सबसे साफ। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्वे में देश भर के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के सर्वे में टॉप पर लखनऊ। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वे में दूसरे नंबर पर इंदौर, तीसरे नंबर पर जबलपुर। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची जारी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में नोएडा की भी बड़ी छलांग। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश भर में 8वीं रैंक हासिल। पिछले साल 9वें पायदान पे था नोएडा। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम। ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेस वे के बीच 30 मिनट की कनेक्टिविटी की योजना पे मंथन। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गंगा एक्सप्रेस वे के साथ कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का दिया प्रस्ताव। जनता की सुविधा का ख्याल। कश्मीर में सजा सिनेमा और संस्कृति का महामंच घाटी में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हुआ शुभारंभ। सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया इसका उद्घाटन। शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर गीत संगीत से गूंज उठा। कलाकारों की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने बांधा समा। सांस्कृतिक कार्यक्रम देख दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। फिल्म फेस्टिवल से कश्मीर को मिली नई पहचान। सिनेमा के जरिए दुनिया से जुड़ रहा है कश्मीर। फिल्म फेस्टिवल ने खोले कश्मीर के सिनेमाई दरवाजे। एक्ट्रेस फातिमा सना शेख समेत कई सितारे फेस्टिवल में पहुंचे। निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा, रमेश सिप्पी भी आयोजन का हिस्सा बने। कश्मीर को ग्लोबल सिनेमा से जोड़ने की शानदार पहल। 41 देशों की 135 फिल्में होंगी प्रदर्शित। 10 सितंबर तक चलेगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। श्रीनगर में होम शेफ कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया इसमें हिस्सा। होम शेफ कुकिंग प्रतियोगिता के जरिए कश्मीर की महिलाओं ने दिखाए अपने कुकिंग स्किल्स। फूड बिजनेस शुरू करने की संभावनाओं को तलाशने का मिलेगा मौका। श्रीनगर के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के साथ मिलकर प्राइवेट होटल में आयोजित किया गया ये कॉम्पिटिशन। लगभग 500 महिलाओं ने कराया इसके लिए रजिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर के रजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह दरगाह पर श्रद्धालु की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बनाया जा रहा है बेहतर। विकास कार्य लगातार जारी। श्रद्धालु के लिए आवास, विश्राम हॉल और मेहमान खानों का किया जा रहा है विस्तार। देश विदेश से आते हैं हजारों श्रद्धालु। गुवाहाटी पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में किए दर्शन पूजन। पुरी में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। साध्वी रितंबरा हुई इसमें शामिल। अयोध्या में लघु उद्योग भारतीय औद्योगिक सम्मेलन का हुआ आयोजन। देश भर में लघु उद्योगों और स्टार्टअप से जुड़े लोग इसमें शामिल। देहरादून में हिमालय दिवस पे हिमालय नाम नगादे राज कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री धामी ने लिया इसमें हिस्सा। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना की शुरू, जिसके तहत 11,000 छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दी जाएगी निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग। आगर मालवा में दिखा परंपरा और आस्था का संगम। निकाली गई बाबा भूतेश्वर महादेव की शाही सवारी में शान से निकली भगवान भोलेनाथ की भूतों की बारात। माता पार्वती, विशाल नंदी और खाटू श्याम जी की झांकी रही आकर्षण का मुख्य केंद्र। ढोल की थाप और डीजे बैंड पर गूंजते शिव भजनों पर जमकर नाचे श्रद्धालु। नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया गया बाबा का स्वागत। आगर मालवा के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से निकली शाही सवारी फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया मंदिर। श्रावण माह के अंतिम सोमवार को बड़ी धूमधाम और उल्लास के साथ निकाली जाती है बाबा भूतेश्वर महादेव की शाही सवारी। देश भर से भक्त होते हैं इसमें शामिल। उज्जैन में सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा महाकाल की भव्य सवारी निकाली गई। रजत पालकी में सवार बाबा ने भक्तों को दर्शन दिए। पूरा शहर जय महाकाल के नारों से गूंज उठा। बाबा महाकाल की सवारी ने करीब 11 किलोमीटर का सफर तय किया। सवारी में पुलिस बैंड, घुड़सवार दल, भजन मन किया और कलाकार शामिल हुए। सवारी में बाबा महाकाल ने 6 अलग अलग दिव्य रूपों में भक्तों को दर्शन दिए। शिव तांडव, उमा महेश और मन महेश समेत कई रूपों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। महाकाल की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु घंटों तक सड़क किनारे खड़े रहे। सवारी के दौरान फूलों की बारिश हुई और हर तरफ डमरू, शंख और भजनों की आवाज सुनाई दी। नगर भ्रमण के बाद बाबा महाकाल की सवारी शिप्रा नदी पहुंची। यहां पवित्र जल से भगवान का अभिषेक और पूजन किया गया। सवारी में सिंहस्थ की झांकियां भी दिखी। रामपुर के मूर्तिकार शिवचरण यादव करीब 25 साल से गणेश प्रतिमाएं बना रहे हैं। हर साल उनका परिवार कुछ नया और अनोखा करके बप्पा को आकार देता है। शिवचरण यादव इस बार 80 से ज्यादा प्राकृतिक और पूजन सामग्री से गणेश प्रतिमा बना रहे हैं। शंख, नारियल, बांस, जूट, मौली और धूप अगरबत्ती जैसी चीजें इसमें शामिल हैं। शिवचरण यादव ने पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजों को एक गणेश प्रतिमा का हिस्सा बना दिया है। उनकी कोशिश है कि भक्ति के साथ पर्यावरण बचाने का संदेश भी लोगों तक पहुंचे। प्राकृतिक सामान से तैयार होती है गणेश प्रतिमाएं। इन मूर्तियों के जरिए पर्यावरण के अनुकूल गणेश उत्सव मनाने का दिया जा रहा है संदेश। रायपुर के शिवचरण यादव की अलग तरह की गणेश प्रतिमाएं लोगों का ध्यान कर रही है अपनी ओर आकर्षित। उनकी कला में परंपरा, आस्था और पर्यावरण तीनों का मेल देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बच्चों ने अपने हाथों से बनाई गणेश प्रतिमाएं। शाडू मिट्टी से करीब 60 बच्चों ने बप्पा और उनके वाहन मूषक की मूर्ति तैयार की। बच्चों को मोबाइल से दूर रखने और उनकी रचनात्मकता बढ़ाने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। बच्चों ने मूर्तिकारों के से गणेश प्रतिमा बनाना सीखा और खूब उत्साह दिखाया। सेल्फ क्रिएशन ग्रुप ने लगातार 6 साल बप्पा मेकिंग वर्कशॉप कराई। आर्य वैश्य महिला महासभा ने भी आयोजन में उनका साथ दिया। बच्चों ने गणेश प्रतिमा को शुरुआत से लेकर आखिरी चरण तक अपने हाथों से बनाया। मूर्ति तैयार होने के बाद सभी बच्चे अपनी कलाकृतियां खुशी से घर में ले गए। बच्चे अपनी बनाई गणेश प्रतिमाओं को 2-3 दिन सुखाएंगे, उसके बाद वो खुद रंगों से बप्पा को सजाएंगे। नागपुर में गणपति बप्पा के आगमन की धूम। गणेश उत्सव से पहले सजे भव्य गणपति पंडाल, ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पे बप्पा का स्वागत। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों की गूंज। गणपति आगमन के साथ शहर में बड़ी उत्सव की रौनक। बप्पा के भक्तों में जबरदस्त उत्साह। दिल्ली में श्री धरणीधर जन्मोत्सव का भव्य आयोजन। धाड़क समुदाय ने धूमधाम से मनाई भगवान धरणीधर की जयंती। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उसमें शामिल। मिस्र के एल अलामीन एयर शो में आज दिखेगा भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर का दम। स्वदेशी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर से सारंग दिखाई गया हवाई करतब। आसमान में सटीक फॉर्मेशन से दर्शक होंगे रोमांचित। सारंग टीम पेश करेगी डॉल्फिन लीप और स्पॉट स्टॉल टर्न। 10 सितंबर तक चलेगा यह शो। वाराणसी में गंगा का जलस्तर गिरावट के बाद हुआ स्थिर। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। बाराबंकी में सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर से जनजीवन हुआ प्रभावित। प्रशासन ने ग्रामीणों को पहुंचाई राहत सामग्री।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की लुका छिपी। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाइयों और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो 2-3 बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद। यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को
10: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ जितेंद्र मिश्रा आज से संभालेंगे कार्यभार, सुरक्षा, सेवा, पूजा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर करने पर होगा जोर। भारतीय सेना की बड़ी सफलता, अल्ट्रा लाइट होविट्ज़र का चुनौतीपूर्ण इलाकों में तैनात करने का सफल प्रदर्शन किया। सीपीसीबी सर्वे में देश के टॉप 10 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहर हैं। लखनऊ की हवा देश में सबसे साफ, चौथे नंबर पर आगरा, 8वें नंबर पर नोएडा और 9वें नंबर पर गाजियाबाद है। देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, मूर्तियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। झांसी में भोलेनाथ के साथ गणेश के अनोखे स्वरूप ने खींचा लोगों का ध्यान।

हनुमान अंश से क्या बदल रहा है बॉलीवुड का ट्रेंड, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। दरअसल बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है हनुमान अंश। दर्शकों का जो प्यार इस फिल्म को मिल रहा है, उसने धुरंधर जैसी फिल्मों की कमाई के तमाम रिकॉर्ड्स खतरे में डाल दिए हैं। फिल्म 31 दिनों में न केवल 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है, बल्कि 150 करोड़ की कमाई भी की है। तो फिल्म हनुमान अंश ने कैसे धुरंधर को पछाड़ा है, दर्शकों का विश्वास, फिल्म ने कैसे रचा इतिहास, क्या हनुमान अंश से बदल रहा है बॉलीवुड का ट्रेंड, ये तमाम ऐसे सवाल होंगे जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे फिल्मी जगत के जानकार। तो फिल्म हनुमान अंश ने इतिहास रच दिया है। फिल्म की कमाई 150 करोड़ के करीब पहुंच गई है और फिल्म ने रविवार को 21 करोड़ रुपए की कमाई की है। ग्रॉस कलेक्शन की अगर हम बात करें तो 144 करोड़ के पार हो गया है, जबकि पहले दिन 10 लाख की कमाई से ओपनिंग हुई थी। फिर शुरुआती दो हफ्तों में 1.5 करोड़ कमाए गए, तीसरे हफ्ते में 10 करोड़ की कमाई हुई, चौथे हफ्ते में 59 करोड़ कलेक्शन हुआ। अब 11 सितंबर को ये फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। हनुमान जी और बाबा नीम करोड़ी पर ये फिल्म बनी है, 2 करोड़ में बनी फिल्म कमाल कर रही है, धुरंधर 2 समेत कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिल्म हनुमान अंश 5वें हफ्ते की टॉपर बन चुकी है और इस वक्त चर्चा बस यही हो रही है कि क्या अब धार्मिक फिल्मों का चलन बढ़ सकता है, क्योंकि अब खबर ये आई है कि साईं बाबा और खाटू श्याम जी पर भी फिल्में बन रही हैं। 5 फरवरी 2027 को फिल्म 13 साई रिलीज होगी। साईं बाबा की भूमिका में अभिनेता संजय मिश्रा होंगे। वहीं बाबा खाटू श्याम जी पर भी फिल्म का ऐलान किया गया है। हरे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा फिल्म आएगी और हनुमान अंश की सफलता के बाद अब धार्मिक फिल्मों का ट्रेंड नजर आने लगा है, क्योंकि इसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए कीर्तिमान गढ़ दिए हैं। तो लग रहा है कि बॉलीवुड में नया ट्रेंड अब बन सकता है। दरअसल 2 और धार्मिक फिल्में जल्दी ही बड़े पर्दे पर आने वाली हैं। साईं बाबा और खाटू श्याम जी पर भी फिल्में बन रही हैं। 5 फरवरी 2027 को फिल्म 13 साई रिलीज होगी। फिल्म में संजय मिश्रा साईं बाबा की भूमिका में होंगे। वहीं एक और प्रोडक्शन हाउस की ओर से बाबा खाटू श्याम जी पर फिल्म का ऐलान किया गया है। फिल्म का नाम है हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा, यानी कि हनुमान अंश की सफलता के बाद धार्मिक फिल्मों का दौर तेजी से बढ़ सकता है। वैसे हमने हाल ही में फिल्म हनुमान अंश की टीम से भी बातचीत की थी और इस दौरान टीम ने फिल्म के दौरान आए संघर्षों पर खुल के

0: 7 बजे की शिफ्ट होती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था 10 बजे तक कैमरा ही नहीं रोल हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो सर कहते थे कि ऐसा करो हनुमान चालीसा करते हैं,
1: तो हमारे गणपति रोल बोलते हैं।
0: हाँ, गणपति रोल
1: बोलते हैं। गणपति रोल क्या, फिर पूरी पूरी
0: हनुमान चालीसा
1: करी, फिर हनुमान एक्सटेंडेड हनुमान चालीसा होता
0: है। हाँ, आराम से मस्ती
1: में। जब तक हनुमान चालीसा खत्म हुई तब तक
0: सब सब सॉल्व
1: फंसा ही पड़ा है,
0: तो क्या कर सकते हैं,
1: ये करते हैं तब तक जब तक हमारा फिनिश।
2: तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त फिल्म क्रिटिक अजय जी मौजूद हैं, प्रदीप सरदाना मेरे साथ स्टूडियो में फिल्म क्रिटिक मौजूद हैं, शोएब चौधरी फिल्म प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं, और प्रतीक भारद्वाज हैं, आरजे हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरदाना जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी। देखिए, ये जब फिल्म रिलीज हुई हनुमानंश, ये वो हफ्ता था जब आवारापन 2, बंटवारा, और इन दोनों के चक्कर में केवल 27 थिएटर्स मिले फिल्म को। और क्या आज की तारीख में हम चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा इसी बात को कर रहे हैं, ना तो हम बंटवारा ना आवारापन की बात कर रहे हैं, हनुमानंश की बात हो रही है, 27 थिएटर के बावजूद कैसे ये 100 करोड़ पार कर चुकी है?
3: देखिए, इसको सीधे सीधे शब्दों में कहते तो चमत्कार बोल सकते हैं, लेकिन फिल्मों में खाली चमत्कार नहीं होता। मैं मानता हूँ कथानक और बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। तो ये जब पहले जो हुई, तो पहले सबसे पहले 250 स्क्रीन पर रिलीज हुई पहले हफ्ते में, लेकिन उसमें कुल पहले दिन में 10 लाख का बिजनेस किया, उसके बाद पूरे हफ्ते में सिर्फ 90 लाख का नेट बिजनेस किया। तो उससे क्या किया कि अगले हफ्ते में सीधा इसको 40 थिएटर दिए गए, और 40 के भी घटके वो 25-27 ही रह गए, तब देखा कहीं कोई आ ही नहीं रहा दर्शक। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो इसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं विशाल चतुर्वेदी, और जो उनकी टीम है, रागनी है, नम्रता है, अनुप्रिया है, ये चारों इसके प्रोड्यूसर हैं, तो इन्होंने ये सोचा कि अब क्या किया जाए। सिनेपॉलिस जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, एग्जीबिटर भी है, पूरे देश में सब अपने सभी थिएटर्स में दिखा रहा है, वो भी चौंक गए कि इस फिल्म से बहुत उम्मीद थी, क्या हुआ। तो इन लोगों ने क्या किया कि पूरी मेहनत की, अपनी एक टीम बनाई, और जगह जगह गाड़ियों पर पैदल जहाँ जहाँ जा सकते थे, राजस्थान में, गुजरात में, अलग अलग थिएटर्स में गए जहाँ पिक्चर चल रही थी, और जहाँ ये मंदिर थे वहाँ गए, कभी हनुमान मंदिर में गए, कहीं जहाँ इनकी समाधि है बाबा की वहाँ पर गए। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे इसके एटमोसफेयर बनना शुरू हुआ। फिर जो इसके जो गायक हैं सुनील लोधी, उनका जो गाना है जो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डर दई, तो वो भी इतना वायरल हो गया। तो एक साथ क्या हुआ, इन लोगों की बेहतर रंग लाई, और जब दर्शक थिएटर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा ये फिल्म तो बहुत अच्छी है, हमको पता ही नहीं था, तो उससे क्या फिल्म के प्रति उनका लगाव बढ़ा, और उन्होंने खुद माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करके इस पिक्चर को और दमदार बना दिया। और देखते ही देखते क्या हुआ कि सारे लोग थिएटर में उमड़ पड़े, और इतनी भीड़ हो गई, अब उसको चमत्कार भी कर सकते हैं। लेकिन कंटेंट इसका क्या है कि इसके अंदर जो बाबा की आस्था है वो तो है ही है, जो धार्मिक भावना है हनुमान जी के प्रति, जो भक्ति है वो भी है, उनकी कहानी भी है कि जो बाबा नीम करोली हैं वो किस तरह उन्होंने 1964 में आश्रम बनाया, किस तरह धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता हुई और विदेशों से सब इतने बड़े बड़े लोग आने लगे, तो वो सब तो है। लेकिन साथ में जो फिल्म के अंदर जो पारिवारिक मूल्यों की बात दिखाई है, हाँ। जो हमारे पारिवारिक मूल्य हैं, संस्कृति है, वो सब इसके अंदर बहुत अहम रखती है। मुझे लगता है इस फिल्म की सफलता के अंदर इस पूरी टीम की मेहनत, और जो इसका गीत संगीत है वो, और जो धार्मिक आस्था जो इसके अंदर के साथ साथ जो एक पारिवारिक मूल्य दिखाए हैं, उस सब से ये हुआ है। आप देखिए उसके बाद 1 सितंबर से चमत्कार हो गया,
2: बिल्कुल
3: 1 सितंबर को पूरा इतिहास ही बदल गया।
2: मैं बस शोएब आपके पास आऊंगी, आप प्रोड्यूसर भी हैं, लक फैक्टर कितना काम करता है?
4: देखिए, लक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही इसमें, लेकिन लग से ज्यादा आपकी जो मेहनत है, जो स्क्रिप्ट अगर आपकी अच्छी है तो वो काम कर ही जाती है कभी ना कभी। देखिए, जो अभी अजय जी ने कहा, इनकी कुछ चीजों से मैं अग्री करता हूं। ये पहले भी मैंने कहा, ये सिर्फ एक धार्मिक फिल्म नहीं है, इसमें एक रिलीजियस जॉनर ना देखा जाए, एक नया सब जॉनर उभर रहा है जिसके अंदर आपको रियलिस्टिक स्टोरीज पे जो बेस्ड सिनेमा है आजकल, वो थोड़ा ऑडियंस को ज्यादा एक्सेप्टेबल लग रहा है। अब इस फिल्म को भी अगर आप देखें तो इसमें फेथ के साथ थोड़ा इमोशनल कनेक्ट भी ऑडियंस के साथ हुआ है, इसीलिए ये फिल्म चली है। हो सकता है अजय जी ने फिल्म देखी हो, टेक्निकली बहुत ग्रैंड फिल्म ना हो, जैसे धुरंधर टेक्निकली बहुत ग्रैंड थी लेकिन स्क्रिप्ट बहुत वाहियात थी उसकी, रिसर्च बहुत खराब थी, उस तरह ये हो सकता है इमोशनल कनेक्ट इस फिल्म ने जनरेट कर दिया। टेक्निकली बहुत ग्रैंड नहीं हो सकती है क्योंकि टीम नहीं है, बजट बहुत कम था, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स उसमें देखने पड़ते हैं। तो वही वाला है, मुझे लक इसमें कोई नजर नहीं आ रहा है।
2: ठीक है, सरदाना जी, ठीक है सरदाना जी, एक और बात, ये भी एक कारण हो सकता है कि नीम करोड़ी बाबा के हनुमान जी के भक्त बहुत ज्यादा हैं और ये अक्सर लोगों को रहता है कि ठीक है हम इस तरह की जो आस्था वाला फैक्टर है वो कितना यहाँ काम किया है।
3: देखिए आस्था का फैक्टर तो बिल्कुल है, उसको इंकार नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि नीम करोड़ी बाबा पे जो मई के अंदर लास्ट वीक में फिल्म आई वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। जिसका बजट ज्यादा था, पब्लिसिटी भी बहुत की, उत्तरांचल जो उत्तराखंड की सरकार है उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया उस फिल्म को, लेकिन वो उस तरह का बिजनेस नहीं कर पाई। लेकिन ये क्योंकि इसकी कहानी में पारिवारिक मूल्य भी साथ साथ है, संगीत भी इसका अलग है। अब देखिए क्या लोक गायक जो उन्होंने गाया है सुनील लोधी ने, कितना अच्छा है, बिल्कुल दिल से निकली हुई आवाज है, कोई बनावटीपन नहीं है, कोई ऐसा संगीत नहीं है। इनका तो यही काफी दिन तक ये फैसला नहीं हो पाया संगीतकार कौन होगा, गायक कौन होगा, ये सब अपने आप मिलते चले गए। तो ये सभी बात है कि सब लोग, जितनी भी टीम के लोगों से मैं बात करता हूँ, सब ये कहते हैं कि बाबा सबको मिलाता गया, कोई कहीं था कोई कहीं था कोई कहीं था, लेकिन सब आके टोली बनती गई और कारवा चलता गया। अच्छा, बोले हमें शुरू में भी उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि फिल्म नहीं चलेगी, तो बोले नहीं मुझे बाबा का, विशाल चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे बाबा का फोटो दिखाई दिया कि नहीं अपना काम करो बाकी मैं कर लूंगा। तभी उन्होंने वो यात्रा शुरू की सब जगह जाके।
2: ठीक है, नहीं नहीं प्रतीक ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रखी है कि जितनी सोशल मीडिया पावर यहाँ पर नजर आई, जैसे सोशल मीडिया पब्लिसिटी अब बहुत सारी ऐसी बड़ी बजट की फिल्में हैं कि फिल्म रिलीज होने से पहले होती है, लेकिन यहाँ पर जब रिलीज हो गई उसके बाद कैसे उन्होंने सोशल मीडिया को एक टूल बनाया ताकि लोगों तक पहुंचे और फिर उसके बाद कहानी किस तरीके से पसंद आती गई, वर्ड ऑफ माउथ जिसका जिक्र आपने बिल्कुल शुरुआत में किया था, वो कितना बड़ा फैक्टर था, वो कितना काम किया?
3: सोशल मीडिया का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसको इंक्वायर कर नहीं सकते, लेकिन यह कि सोशल मीडिया पे भी जब कोई नैरेटिव फैलाया जाता है तो वो कुछ दिन में पता लग जाता है कि अरे नहीं सब ये बेकार है, लोग शुरू में जरूर उसके भ्रम जाल में फंस जाते हैं। लेकिन इसके अंदर सोशल मीडिया पे भी जो लोग गए वो कोई पीआर कंपनी सोशल मीडिया नहीं कर रही थी, मैंने जिस तरह बताया कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, दर्शकों ने खुद ही आगे इसके कारवां को आगे बढ़ाया। तब दर्शकों को लगा फिल्म अच्छी है, उन्होंने आके लिखा कि ये फिल्म बहुत अच्छी है आप देखिए, उसके बाद एक के बाद एक लोग देखते गए, लिखते गए, कमेंट देते गए। तो सोशल मीडिया का रोल है ही है, इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास कोई बजट नहीं था। आप ये देखिए, मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, 50 साल मुझे इंडस्ट्री में हो गए, करोड़ों की फिल्म एक मिनट के अंदर कौड़ी हो जाती है, जबकि करोड़ों रुपये से प्रचार पे लगा दिए जाते हैं। इसमें 2 करोड़ का बजट था, लेकिन जो बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ बजट रखा जाता है सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, उसके बावजूद इस फिल्म को उन्होंने इस तरीके से बनाया। तो ये बताता है कि समय बदल रहा है, जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत करोड़ रुपए हो तभी आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं, आप प्रचार करें बहुत धुआंधार तभी फिल्म कामयाब हो सकती है। इस फिल्म ने ये बताया ये फिल्म अच्छी है कि लोगों तक पहुंचने में देर लगेगी, क्योंकि प्रचार होता है लोगों को पता लग जाता है ये फिल्म आ रही है, इसका प्रचार ही नहीं था, लोगों को पता ही लगा कब फिल्म आई कब वो आई। तो उसके बाद ये फिल्म जैसे लोगों को पता लगा और धीरे धीरे इसकी कहानी पहुंची, पहले भी मैं आपको बहुत पुरानी बात बताता हूं, 1989 की तारचंद बड़जात्या राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म आई थी मैंने प्यार किया, जो सलमान खान की हीरो के रूप में पहली पिक्चर थी। तो सलमान खान भाग्यश्री दोनों नए थे, तो मेरे राजश्री परिवार से तारचंद बड़जात्या से बहुत अच्छे संबंध रहे। तो ये जब फिल्म लगी दिसंबर 1989 के अंदर, 1989 में, तो मैं लास्ट में लगी थी, तो जनवरी 89 के अंदर मैं कलकत्ता के अंदर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा था वहां गया हुआ था। तो मुझे तारचंद बड़जात्या ने बताया कि हमने सभी लोगों को बोल दिया अपनी टीम में, अपने सभी ऑफिस को संदेश भेज दिया कि इस फिल्म पे प्रचार में पैसा खर्च ना करें, ये फिल्म ऐसी है जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से अपने आप चलेगी। और देखिए वही हुआ, उसके बाद कितनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो ये पहले भी होता था, लेकिन आज इसलिए नहीं होता कि आज जो है जो भी आता है प्रोड्यूसर, चाहे कोई एग्जीबिटर है चाहे कोई डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है, वो चाहता है कि बस मेरी फिल्म लगे एकदम 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ का मेरा बिजनेस हो जाए। तो वो जो चीज है वो उसको खत्म कर देती है, उसकी भावना सिर्फ कमाने की होती है। लेकिन इनकी भावना बहुत अच्छी थी, इन्होंने बड़े ढंग से बनाई। और चमत्कार की जो बात हो रही है, देखिए चमत्कार हम खाली ये नहीं होता धार्मिक की आस्था से होता है, हम और भी कई बार कहते हैं बहुत चमत्कार हो गया, चमत्कार इस सेंस में भी है कि आप ये देखिए जो सिर्फ 2 करोड़ की फिल्म थी जो 250 थिएटर से अगले हफ्ते 27 थिएटर में पहुंच गई, वही अगले हफ्ते 1200 थिएटर में पहुंच गई, अब वो 2000 थिएटर में पहुंच गई है और अब वो 2022 पे हो गई है। और 11 तारीख से आप देखिए जो बाबा का महानिर्वाण दिवस है 11 तारीख से विदेशों में भी लग रही है, 11 को रिलीज होगी कुछ देशों में, अभी मेरी कल बात हो रही थी सिनेपोलिस से, और फिर 18 तारीख को होगी, तो पूरे वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। तो ये चमत्कार ही है कि जो फिल्म बिल्कुल बैठ गई थी, जो बिल्कुल मूर्छित हो गई थी, उसको संजीवनी मिल गई और आप ये देखिए वो फिल्म कहां से कहां पहुंची।
2: बिल्कुल प्रतीक आपके पास आना चाहूंगी, देखिए एक और चीज उसमें बहुत खास हुई है क्योंकि हम भी आसपास देख रहे हैं, जो कोई भी फिल्म देख के आ रहा ना वो आके इस तरीके से इस फिल्म के बारे में बताता है कि आप जाइए इस फिल्म को आप देखिए, न सिर्फ आप देखिए बल्कि अपने बच्चों को भी दिखाइए, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, लोग वर्ड टू वर्ड माउथ पब्लिसिटी करते हैं।
5: ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और मैं ना इसमें 2-3 चीजें एड ऑन करना चाहूंगा जो बहुत अच्छी बात है। एक तो लोग खुद रिव्यू कर रहे हैं, आम आदमी की फिल्म बाबा की फिल्म और अपनी खुद की कहानी को आम इंसानों के साथ ही तो वो चमत्कार हुए हैं, उसी गांव में ही तो चमत्कार हुए, वो उन्हीं जगहों की तो कहानियां हैं जिसको बताया जा रहा है। अब आप सोचिए दो तीन चीजें, आपने ट्रेंड की बात करी कि क्या ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया है, मुझे इसमें एक बात ये कहनी है कि ट्रेंड शुरू हो नहीं गया है, ट्रेंड तो फॉलो कर रहे हैं लोग। अगर आप देखेंगे म्यूजिक इंडस्ट्री सडनली बड़े बड़े भजन कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज कर रही है, भजन जैमिंग्स कर रहे हैं हम लोग। अगर आप देखेंगे आज आप तो ये एक फिल्म ये देख रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें रणबीर कपूर राम बन करके आने वाले, नितेश तिवारी की रामायण आने वाली है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अब गाली गलौज की फिल्में, अब इन्हें मालूम है कि जो फुहरता वाली फिल्में ये चलनी नहीं है, चलनी है कहानियां आम आदमी की कहानियां और कहीं ना कहीं ऐसे सनातन की कहानियां जो हमसे जुड़ी हुई है, जो हमें शिक्षा दे रही है। एक चीज इस पे और बहुत छोटी सी मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जहां पर बड़े बड़े बजट की फिल्में कुछ नहीं कर पा रही, मैं जब जिस वक्त ये फिल्म देखने के लिए गया, मैं हनुमान देख रहा था और मेरे ठीक बगल वाली स्क्रीन में मिर्जापुर लगी हुई थी। अब आपको एक बात बताऊं, ये जो 100 करोड़ है ना, ये मुझे नहीं लगता है कि ये 100 करोड़ उसी उन्हीं लोगों ने दिए जो रोज फिल्म देखने जाते हैं या जिनको हर फिल्म में फिल्म देखने के शौकीन लोग हैं। इन 100 करोड़ रुपयों में उन लोगों का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो बरसों से फिल्म देखने ही नहीं गए, जिनको लगता था कि मेरे टाइप की फिल्में नहीं बनती या परिवार के साथ देखने वाली फिल्में नहीं बनती है। तो क्योंकि जो मिर्जापुर देख रही थी वो क्राउड बिल्कुल अलग थी, और जो व्यक्ति हनुमानंच देख रहा था सिनेमा हॉल में वो क्राउड, वो पारिवारिक लोग थे। अकेला नहीं जा रहा था, अपने साथ में कम से कम 5-5, 6-6 लोगों को लेकर।
2: ये भी एक अजय जी, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि देखिए आप अपने परिवार के साथ जाके फिल्म को देख सकते हैं, और ये पॉइंट इस पर आपकी एक रिएक्शन चाहूंगी कि बहुत से लोग शायद इसलिए गए क्योंकि उनका यह भी मानना था कि बहुत समय से मेरे टाइप की फिल्म नहीं बनी है।
5: यस
2: अजय जी,
6: जी मैं इसको फोमो फैक्टर कह रहा हूं।
2: फोमो
6: ये चल रहा है आजकल की भाई इतना बिजनेस कर गई है, जरा देखे तो क्या है इसके अंदर।
2: ये फोमो फैक्टर धुरंधर के टाइम पे बहुत चला है सर,
6: फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं हम पीछे न रह जाए, कहीं हमसे ये फिल्म छूट न जाए। हाँ, सारे लोग चर्चा कर रहे हैं तो हमको भी चर्चा करनी है। मुंबई में मेट्रो में लोग इसके रील देख रहे हैं लगातार, इसके कट वो चोरी के जो होते हैं वो सारे देखे जा रहे हैं, तो वो प्रचार तो हुआ है वो। और जो सोशल मीडिया आप कह रही है ना, वो सोशल मीडिया तो बहुत पेनिट्रेट कर गया है। सोशल मीडिया आजकल आप जानते ही है, सोशल मीडिया पर मोदी जी को आ जाना पड़ता है, सोशल मीडिया का ऐसा दबाव है। तो ये तो फिल्म है, ये सारा सब कुछ तो होना ही है। मैं बार बार इस बात पर जोर देना चाह रहा हूँ कि प्लीज आप इसको चमत्कार कहना बंद कीजिए। इसमें विशाल चतुर्वेदी और उनकी टीम की मेहनत को देखिए, उस प्रोसेस को देखिए, उन्होंने जिस तरीके से ईमानदारी से मेहनत की, हिम्मत नहीं हारी और वे लगातार इस फिल्म के साथ जुटे रहे, डटे रहे और उसको लेकर के आगे गए। अब जब दर्शक जुट गए हैं तो थिएटर वाले भी आ रहे हैं, PVR भी आएगा, सिनेपोलिस भी आएगा, विदेशों में भी फिल्में जाएंगी। यहाँ सबको ही नमस्कार करते हैं, कमाई को, मुनाफे को, हर किसी को मुनाफा दिख रहा है इसमें। मुझे नहीं मालूम कि जो डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं विदेश में रिलीज करने के लिए वो किस धार्मिक आस्था से आए हैं, वो बिजनेस करने आए।
2: हाँ, ये फैक्टर तो अभी सना यही बता रही थी कि बॉलीवुड में तो वैसे भी चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। शोएब, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
7: जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए किसी भी फिल्म की सक्सेस का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। बस कोई एक स्टोरी जो लोगों को कनेक्ट कर जाती है, किसी को कुछ फिल्में नहीं कनेक्ट करती है। अब जैसे इन्होंने कहा, जो हमारे प्रतीक ने, एक एक सिनेमा में, एक एक थिएटर में ये देख रहे हैं स्क्रीन पर हनुमान हंस और बराबर वाली स्क्रीन पर मिर्जापुर। आप सोचिए जरा, मिर्जापुर जैसी वाहियत फिल्म, जिसमें कौन सा मिर्जापुर ऐसा है दुनिया के कोने में जहां इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, वो किसी एक डॉन की प्रॉपर्टी है और उसकी उसके आसन बेचे जा रहे हैं और सुबह शाम गाली गलौज, उन महिलाओं का कौन सा कैरेक्टराइजेशन है और किसी को उस पर कोई एतराज नहीं है, वो भी 132 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। तो हर फिल्म का, हर ऑडियंस का एक बिजनेस, हर फिल्म की एक ऑडियंस है। तो इसको कौन सी फिल्म किससे कनेक्ट कर जाती है, उसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं।
2: सरदाना जी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि देखिए ऐसी फिल्में ये होता है ना कि आप परिवार के साथ जाके देख सकते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन साफ सुथरी फिल्में है। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं रियल स्टोरीज हैं, आप खुद को भी इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है।
3: नहीं बिल्कुल होता है फैक्टर, देखिए रियल स्टोरी तो जिस तरह बायोपिक हमारे यहाँ चल रही है, इसके अंदर भी काफी हिस्सा बायोपिक है उनका, तो ये सब चीजें लोगों को पसंद आती हैं, ये सब करती हैं। मैं आप अभी बात चल रही थी फिल्म की अलग अलग की, तो अभी कुछ दिन पहले मैं जितेंद्र जी के साथ बैठा था, इतने बड़े पुराने स्टार हैं, एक्टर हैं, तो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हर फिल्म की एक कुंडली होती है और उस कुंडली में क्या लिखा है वो खुद पता नहीं होता, इसलिए कोई भी, मैं भी ये कहता हूँ, कोई भी चाहे हम हो या कोई भी फिल्म पंडित हो, चाहे कोई ज्योतिष हो, जोशी हो बड़ा बड़ा, वो ये सटीक घोषणा नहीं करता था कि ये फिल्म चलेगी, कितना बिजनेस करेगी, कितना नहीं। और आजकल क्योंकि माहौल ये बन गया है कि फिल्म आती है वो देखते हैं, कुछ रश नहीं ले रही, कोई थिएटर्स के हायर किराए बहुत हैं, खर्चे बहुत हैं, तो वो कहते हैं फिल्म को उतारिए, इसको देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एग्जीबिटर हो चाहे कोई प्रोड्यूसर हो। आप इसी के साथ एक फिल्म और लगी, ओ माई डॉग, आप ये देखिए वो एक हफ्ते भी नहीं चल पाई कई जगह, तो उसको पांचवें दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन उतारना पड़ा। तो ये सब जो चीजें हैं, अब जो सनी देओल की जो फिल्म थी बंटवारा 2, इससे भी बहुत ज्यादा उम्मीद थी, इतना बड़ा वो था, लेकिन ये भी इतना बिजनेस नहीं कर पाई। तो ये फिल्म की सच में कुंडली है और उसमें कथानक है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप भगवान के भरोसे बैठ जाइए कि हाँ जी हमारी फिल्म चलेगी, हमने बहुत अच्छा काम किया है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये चमत्कार खाली आस्था का नहीं है, ये मेहनत का भी चमत्कार है।
2: हाँ, नहीं,
3: मैं इसको आस्था के साथ
2: रिलीज के बाद भी वो आए ना।
3: हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा कि शुरू में मैंने कहा कि इसके अंदर जो मेहनत की उन्होंने, जब वो निकले वो घबराए नहीं, अरे मेरी फिल्म तो 2 हफ्ते में हो गया, ये हाल हो गया, सिर्फ 40-45 लाख बिजनेस में आ गई है, इतने स्क्रीन कम हो गए, थिएटर्स कम हो गए, उन्होंने मेहनत की, वो निकल पड़े उस पर, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक हफ्ते फिल्म और चले तो हम देखते कुछ करते हैं। तो सिनी पुलिस ने भी उनको सहयोग दिया, उनकी मेहनत भी रंग लाई, सोशल मीडिया भी चला, उधर गाने संगीत भी चल पड़े, फिर लोगों ने जब फिल्म देखी तो उनको पसंद आई। फिल्म में हर में कमियां होती हैं, इसके अंदर भी कमियां मैं इंकार नहीं करूंगा, जिस तरह हमारे अजय भाई बोल रहे हैं, लेकिन जो है देखिए कमियां कई फिल्में तो बिल्कुल कमियों का वो होती है, पूरा उसको क्या बोले, पिटारा होती है, इतनी कमियां होती है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत क्योंकि एक नया प्रोड्यूसर है, नए डायरेक्टर्स हैं, बहुत कम बजट है, तो उसके हिसाब से कमियों को हम नजरअंदाज कर दें तो फिल्म ईमानदारी से बनाई फिल्म लगती है। एक ऐसी फिल्म जो लोगों को इसलिए दिलों में घर कर रही है कि उनको ये लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ बनावटीपन नहीं है, जो बनावटीपन होता है वो होता है। अब आप देखिए अभी जिस तरह बात हुई, अब ब्रह्मांड पिक्चर है वो आ रही है रणबीर कपूर की, दिवाली पर रिलीज हो रही है, 2 भाग में आ रही है, 4,000 करोड़ का बजट है, 2,000 करोड़ एक प्रिंट का, एक सीक्वल का भी मान लें, 2 हिस्से हैं, एक हिस्से का भी मान लें, तो कितना बड़ा बजट है। अभी उसका यहाँ दिल्ली के अंदर ट्रेलर लॉन्च से पहले एक स्पेशल स्क्रीनिंग की गई भारत मंडपम में, मैं भी उसमें गया, इतना पानी की तरह से पैसा बहा गया था प्रचार के अंदर, उतने में एक फिल्म भी बन सकती है जितना पैसा प्रचार के अंदर एक इवेंट में लगाया जाता है।
2: बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए जो चर्चा हो रही थी, पूरी टीम की मेहनत है, पूरी टीम ने अपनी तरफ से मेहनत की है और कहानी सबसे बड़ा हीरो है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
7: घर में माहौल पूजा पाठ भक्ति और आराधना का हो तो इसे सीखने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद दिनचर्या में शामिल हो जाता है। देखिए इस छोटे से बच्चे को कैसे अपनी प्यारी प्यारी टूटी फूटी आवाज में भगवान जगन्नाथ के सामने प्रणाम मंत्र गाने की कोशिश कर रहा है, मानो उसे सब आता है। बच्चे का ये अंदाज लोगों का दिल छू रहा है।

सीखने की चाह हो तो उम्र मायने नहीं रखती, और फिर छोटे बच्चे तो कॉपी करने में माहिर होते हैं, बस दिलचस्पी होनी चाहिए। अब इस नन्हे उस्ताद को ही देख लीजिए, स्केटिंग में डबल क्रॉस ऐसे कर रहा है मानो कोई डांस मूव हो। जो भी हो, छोटे बच्चे का ये हुनर देखने लायक है।

0: एक्टिंग में उस्ताद है ये लड़की। मौत का सामना कैसे करते हैं अलग अलग देशों के लोग बताने की कोशिश हो रही है। कोशिश है कि इसमें वहाँ के लोगों के जीने का अंदाज भी झलके। लोग बच्चे के सपने की जमकर तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं इन्हें भला ऑस्कर की क्या जरूरत। देखते जाइए इन दोनों भाइयों की हरकतें, कोई कम नहीं है शरारत में। कपड़े सूख रहे हैं, एक को लगा कि चलो झूला झूल लेते हैं, दूसरा भी पीछे हो लिया, लेकिन इन्होंने जो किया उसने पहले की सांस अटका दी। देखिए कैसे हवा में झूल गया बेचारा, रो रो कर बुरा हाल है। दोनों मासूम बच्चों की यह हरकत सोशल मीडिया यूजर्स के चेहरों पर मुस्कान ला रही है। मानना पड़ेगा करने वाले तो बस कमाल करते हैं और इनके जुगाड़ का तो कोई जवाब ही नहीं। देखिए क्या तरकीब भिड़ाई है बारिश से बचाव के लिए। सही है, छाता कहाँ बचा पाता है पूरी तरह पानी से, और बारिश तेज हो तो बस सिर ही बच पाता है। लेकिन ये इंतजाम तो रेनकोट से भी आजादी दिला रहा है, इनके दिमाग की दाद तो देनी पड़ेगी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की लुका छिपी। दोपहर 1:28

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ जितेंद्र मिश्रा आज से संभालेंगे कार्यभार, सुरक्षा, सेवा, पूजा, श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर करने पर होगा जोर। भारतीय सेना की बड़ी सफलता, चिनूक से अल्ट्रा लाइट होविट्सर का चुनौतीपूर्ण इलाकों में तैनात करने का सफल प्रदर्शन किया। सीपीसीबी सर्वे में देश के टॉप 10 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहर, लखनऊ की हवा देश में सबसे साफ, चौथे नंबर पर आगरा, आठवें नंबर पर नोएडा और नौवें नंबर पर गाजियाबाद। देशभर में गणेश उत्सव की तैयारी, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार, झांसी में भोलेनाथ के साथ गणेश के अनोखे स्वरूप ने खींचा लोगों का ध्यान। आगरमालवा में बाबा भूतेश्वर महादेव की निकली शाही सवारी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, विशाल नंदी और खाटू श्याम जी की झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
2: सज गए हैं खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है, हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: नागपुर में गणपति बप्पा के आगमन की धूम, गणेश उत्सव से पहले सजे भव्य गणपति पंडाल, ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर बप्पा का स्वागत हुआ। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बच्चों ने अपने हाथों से बनाई गणेश की प्रतिमाएं, शाडू मिट्टी से करीब 60 बच्चों ने बप्पा और उनके वाहन मूषक की मूर्ति तैयार की। दिल्ली में श्री धरणीधर जन्मोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, धाकड़ समुदाय ने धूमधाम से मनाई भगवान धरणीधर की जयंती। आगरमालवा में निकाली गई बाबा भूतेश्वर महादेव की शाही सवारी, माता पार्वती, विशाल नंदी और खाटू श्याम जी की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्रा आज से संभालेंगे कार्यभार, सुरक्षा, सेवा, पूजा, श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर करने पर रहेगा जोर।
3: कश्मीर में सजा सिनेमा और संस्कृति का महामंच, घाटी में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ, सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया उद्घाटन। श्रीनगर में होम शेफ कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ हुआ, मुख्यमंत्री योगी हुए शाह। मिस्र के अल अलामीन एयर शो में आज दिखेगा भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर का दम, स्वदेशी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर से सारंग दिखाएगी हवाई करता। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण, जहाज INS सुदर्शनी कर चुका है बार्सिलोना का दौरा पूरा, दौरे में स्पेन की नौसेना के अधिकारियों से मुलाकात हुई।
2: लखनऊ की हवा देश में सबसे साफ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्वे में देश भर के 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के सर्वे में टॉप पर लखनऊ। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में नोएडा की भी बड़ी छलांग, 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश भर में 8वीं रैंक हासिल, पिछले साल 9वें पायदान पर था नोएडा। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम, ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे के बीच में 30 मिनट की कनेक्टिविटी की योजना पर मंथन। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना की शुरू, जिसके तहत 11,000 छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दी जाएगी निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग।

0: श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, साध्वी रितंभरा हुई इसमें शामिल। एक्टर डायरेक्टर कुणाल खेमू की नई फिल्म वाइब का गाना ऐसी मेरी वाइब रिलीज, फिल्म में दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर भी आएंगी नजर। फिल्म प्रेम कीटाणु का रोमांटिक ट्रैक वाला तीसरा गाना आया सामने, इस फिल्म में एक्टर वीर पहाड़िया, अपार शक्ति खुराना और आफिया सैयद आएंगे नजर। फिल्म तेरा साईं की रिलीज डेट आई सामने, अगले साल 5 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी ये फिल्म। भक्ति भाव से भरपूर फिल्म हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा नाम की फिल्म की घोषणा, अगले साल रिलीज की जाएगी, श्री खाटू श्याम जी पर आधारित ये फिल्म। फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, 32 दिन में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 155 करोड़ के पार पहुंचा। टर्की में बोगीमैन बनकर उतरे कारीगर, बाली के सीर की परेड में दिखी 100 साल पुरानी जंग की परंपरा। चीन के बीजिंग में एआई स्कार्फ सर्विस लॉन्च की गई, एआई से डिजाइन मशीन से प्रिंट, सिर्फ 5 मिनट में सिल्क स्कार्फ बनकर तैयार। संगीत डांस रंगों से सराबोर हुई न्यूयॉर्क की सड़कें, वेस्ट इंडियन डे परेड में जमकर थिरके लोग, दिखा कैरेबियाई विरासत पर गर्व। बेरूत में प्राउड दहिये फेस्टिवल में बांटी गई उम्मीद, दहिये में स्थानीय कारोबार और परिवार एक साथ जुटे। 93 साल की एलन बर्स्टीन को वेनिस का लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, एलन बर्स्टीन को मिला प्रतिष्ठित गोल्डन लाइन।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
0: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए, खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। कश्मीर में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ, कलाकारों की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने बांधा समा, 41 देशों की 135 फिल्में होंगी प्रदर्शित। देशभर में गणेशोत्सव की तैयारी, मूर्तियों का अंतिम रूप देने में जुटे हैं कलाकारी को फ्रेंडली मूर्तियों की भारी डिमांड यहां पर।
2: स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में नोएडा की बड़ी छलांग, देशभर में 8वीं रैंक हासिल हुई, पिछले साल 9वें स्थान पर था, 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की रैंकिंग।
0: भारतीय सेना की बड़ी सफलता, चिनूक से अल्ट्रा लाइट होवित्जर का चुनौतीपूर्ण इलाकों में तैनात करने का सफल प्रदर्शन किया गया।
2: मिस्र के एल अलामीन एयर शो में आज दिखेगा भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर का दम, डॉल्फिन लीप और स्पॉट स्टॉल स्टर्न फॉर्मेशन भी करेगी पेश।

0: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत कर लेते हैं लाइट कैमरा एक्शन के साथ, मतलब बात फिल्मों की करेंगे। और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में, जहां देखिए कैमरा और फिल्मकार फिर से घाटी में लौट रहे हैं। लेकिन इस बार कश्मीर सिर्फ किसी फिल्म की खूबसूरत पृष्ठभूमि बनकर नहीं, बल्कि सिनेमा के एक मंच के रूप में आपके सामने आ गया है।
1: दरअसल श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में घाटी का पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को इसका उद्घाटन किया। 10 सितंबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल में देश और दुनिया भर के फिल्म मेकर्स ने उत्साह दिखाया। घाटी में यह पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, जिसमें कि 4 दिन के इवेंट में स्क्रीनिंग के लिए 41 देशों की 135 फिल्में चुनी गई हैं।
0: और देखिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समुदाय की नजर में कश्मीर अब सिर्फ डल झील, शिकारा, बर्फीले पहाड़ और चिनार की लोकेशन तक सीमित नहीं, कश्मीर एक ऐसे सिनेमाई क्षेत्र के रूप में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां फिल्म दिखाई जाएं, फिल्मकार मिले बैठें, चर्चा करें और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। इस फिल्म फेस्टिवल को लेकर कश्मीर के युवाओं में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर कश्मीर में हो रहा ये पहला फिल्म फेस्टिवल वैश्विक मंच पर घाटी को एक नई पहचान भी दिला रहा है।

0: कश्मीर की हसीन वादियों में सिनेमा और संस्कृति का महामंच सज चुका है, जिसका आगाज कलाकारों की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ हुआ तो पूरा शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर गीत संगीत और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये घाटी में हो रहा पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया। इसके साथ ही सिनेमा और जम्मू कश्मीर के पुराने और गहरे रिश्ते का एक और नया अध्याय शुरू हो गया है।
1: गवर्नमेंट की तरफ से पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दो तीन मकसद हैं। एक तो दुनिया भर की कुछ फिल्में जो हैं, यहाँ जो लोग या तो शौकीन हैं या मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इस तरह का एक्सपोजर देना। फिर जो हमारे लोकल फिल्म इंडस्ट्री है, उन्हें भी थोड़ा सा इसमें एक एक्सपोजर मिल जाता है। और कोशिश की जा रही है कि हम मुल्क के फिल्म इंडस्ट्री को याद दिलाएं कि स्विट्ज़रलैंड और बाकी मुल्कों से पहले अगर फिल्में बनती थीं तो कश्मीर में बनती थीं, और हम चाहेंगे कि वो सिलसिला दोबारा शुरू हो जाए।
0: कश्मीर में आयोजित हो रहे इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें बॉलीवुड एक्टर फातिमा सना शेख, फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा, रमेश सिप्पी और संतोष सिवन के साथ साथ बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई हस्तियां शामिल रही, जिन्होंने घाटी में हो रहे इस बड़े आयोजन पर खुशी जताई।
2: हमारे यहाँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया जा रहा है और वो भी गवर्नमेंट लेवल पे, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। हमने भी कई फेस्टिवल्स और कार्निवल्स किए हैं यहाँ पे, और ये एक बड़ी लेवल पे जो हुआ है, ये दैट्स आई कैन से कि बहुत अच्छा है। इस पे फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है यहाँ, उसको बूस्ट मिले।
0: भारतीय सिनेमा और कश्मीर का रिश्ता नया नहीं है। 1960 और 70 के दशक में कश्मीर की कली, जंगली, आरजू और कभी कभी जैसी कई हिट फिल्मों ने घाटी को प्रेम, संगीत और प्राकृतिक सौंदर्य की सिनेमाई कल्पना का हिस्सा बना दिया था। इन फिल्मों के जरिए देश ही नहीं दुनिया भर के दर्शक भी कश्मीर की खूबसूरती से रूबरू हुए। लेकिन 90 के दशक में आतंकवाद के चलते कश्मीर के सिनेमा घरों के दरवाजे बंद हो गए और फिल्मों की शूटिंग लगभग रुक गई थी। हालांकि आज हालात तेजी से बदले हैं, जिसके चलते न सिर्फ घाटी में फिर से सिनेमा घर खुले हैं, बल्कि पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी हो रहा है।
3: जब हम सिनेमा से महरूम रहे, और ये तो वो इलाका है जिसका हिंदुस्तानी सिनेमा के साथ चोली दामन का साथ रहा, आपने हमने वो दौर भी देखा जब कश्मीर के हर गली, हर कूचे में, हर बागीचे में शूटिंग हुआ करती थी। ये होटल, ये हाउस बोर्ड फिल्मी दुनिया के मेहमानों से आवाज थे। तो मुझे लगता है कि एक तरह से अनेकों तरह से वादी कश्मीर का बॉलीवुड से भी नाता रहा। कश्मीर एनरिच्ड बॉलीवुड एंड बॉलीवुड इन टर्न एनरिच्ड कश्मीर।
4: आखिरी बात, जो यहाँ के लोकल हमारे आर्टिस्ट हैं, वो कभी कभार शिकायत करते हैं कि जितना ज्यादा बॉलीवुड आएगा यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को इन्वॉल्व करने की जरूरत है।
3: ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि लोकल आर्टिस्ट के लिए आउटलेट है।
0: जम्मू कश्मीर प्रशासन को उम्मीद है कि ये आयोजन कश्मीर के लोगों को दुनिया भर के प्रोफेशनल्स से बातचीत करने का मौका भी देगी, और वो फिल्म मेकर से जुड़ पाएंगे, आइडिया एक्सचेंज कर पाएंगे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों की फिल्में भी देख पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अशरफ वानी जुड़ गए हैं। अशरफ, देखिए काफी लंबा ये फिल्म फेस्टिवल चलने वाला है, आज अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, कश्मीर को कितना बड़ा फायदा इससे मिलेगा?
6: बहुत बड़ा फायदा मिलेगा कश्मीर को, क्योंकि जैसे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अभी हमारी रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि कश्मीर और सिनेमा जो है वो सदी, हम कहें दशकों का साथ रहा है, और जब स्विट्जरलैंड और यूरोप के अलग अलग देशों में भारतीय या बॉलीवुड की फिल्म नहीं जाती थी तो कश्मीर पहली पसंद थी सिनेमा और फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की, राइटर्स की। तो कहीं ना कहीं वही इतिहास जो है दोबारा दोहराने की कोशिश है। पिछले कई सालों से काम चल रहा था कि बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड को भी किस तरह से आकर्षित किया जाए कश्मीर की खूबसूरत वादियों की ओर, ताकि वो फिल्में बनाए यहाँ पर, उससे यहाँ का व्यवसाय भी बढ़े, यहाँ का पर्यटन भी बढ़े। उसी के चलते जो है पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रहा है। तीन जगहों पर ये इसका आयोजन है, श्रीनगर में, गुलमर्ग में और फिर आईनॉक्स जो कि एक मल्टीप्लेक्स है यहाँ पर, वहां पर दुनिया के अलग अलग प्रोड्यूसर्स की फिल्में जो है दिखाई जाएंगी, 40 देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। और यहाँ खासतौर से जो सिनेमा से जुड़े लोग हैं, क्योंकि सिनेमा और फिल्म जो है वो भी एक बहुत बड़ा उद्योग बनता जा रहा है दुनिया भर में, खासतौर से जब से स्मार्टफोन्स लोगों के हाथों में आए हैं तब से कोई भी फिल्में बना सकता है। इसी के आकर्षण में जो है जम्मू कश्मीर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो कि जिसने इसका आयोजन किया है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के फिल्म मेकर्स के लिए भी एक प्रतियोगिता रखी है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है अपनी डॉक्यूमेंट्री, अपनी शॉर्ट फिल्म बनाकर वहां पर न सिर्फ पेश कर सकता है, वहां पर चलाई जा सकती है और उसमें उन लोगों को पुरस्कार दिए जाएंगे जो उनके हौसला अफजाई होगी जो उसमें भाग लेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो इस फिल्म फेस्टिवल का मकसद है वो यही है कि कश्मीर जिसको पर्यटन के साथ साथ आप कहीं ना कहीं बॉलीवुड और हॉलीवुड का भी इंतजार है, वो फिल्म मेकर्स कैसे कश्मीर की मेहमान नवाजी को परखें, यहाँ की खूबसूरती को परखें और यहाँ पर अपने क्रूज के साथ, अपने लोगों के साथ फिल्में बनाएं।
5: बिल्कुल अशफ, एक और चीज, जब हम ये चीज बोलते हैं ना कि लोकल इज बिकमिंग ग्लोबल नाउ, तो आई थिंक कश्मीर के लिए अभी जो ये इवेंट होने जा रहा है ये ठीक तरह से ये जो नारा है यहाँ पर अप्लाई होगा। अब ये बताइए कश्मीर में जो लोकल फिल्म मेकर्स होंगे जो वहां पर फिल्में रहकर बनाते हैं उनके लिए कितना बड़ा एक्सपोजर होगा? जाहिर सी बात है हॉलीवुड बॉलीवुड जब यहां पर आएंगे, वो फिल्मकार यहां पर आएंगे, आप साथ में बैठेंगे चर्चा करेंगे तो आपको बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है, कितने स्कोप इनके लिए खुलेंगे?
6: बिल्कुल खुलेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जैसे मैंने आपको कहा कि एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में अब सिनेमा और फिल्म मेकिंग जो है वो उद्योग बढ़ रहा है। उस बीच कश्मीर में भी कई सारे युवा हैं जो जिनमें प्रतिभा की कमी नहीं है लेकिन प्लेटफॉर्म की कमी है, जिनके पास टैलेंट है माफ कीजिएगा लेकिन उनको मंच नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फेस्टिवल न सिर्फ देश के अच्छे अच्छे कलाकारों को, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स को, यहाँ की प्रतिभा को समझने का मौका देगा, बल्कि साथ ही साथ एक इंटरेक्शन का सेशन भी होगा जहाँ पर यहाँ के जो यंग डायरेक्टर्स हैं, जो यहाँ के यंग फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए भी एक अवसर होगा अपने जीवन और अपने फिल्म मेकिंग टैलेंट को आगे बढ़ाने के, और उनको जाहिर तौर पर क्योंकि वन टू वन बात करने से ही जो है चीजें आगे बढ़ती हैं, वर्चुअल दुनिया में आप दुनिया को आप उतना नहीं समझ सकते जितना एक्चुअल में। तो जाहिर है कि ये जो है ये एक मंच होगा उन सभी लोगों के लिए, खासतौर से उन प्रतिभाओं के लिए, उन टैलेंटेड लोगों के लिए, युवाओं के लिए जो फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड और हॉलीवुड जैसे इंडस्ट्री में अपने अपने मुस्तकबल यानी अपने फ्यूचर को देखना चाहते हैं।
5: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ तमाम जानकारी हमें साझा करने के लिए। वहीं कश्मीर का फिल्मों से पुराना नाता ऐसे में रहा है, एक लंबे अरसे तक जम्मू कश्मीर शूटिंग के लिए बॉलीवुड की पहली पसंद भी रहा है, यहां पर कई यादगार फिल्मों की शूटिंग हुई लेकिन 90 के दशक के बाद आतंक के चलते कश्मीर सिनेमा से दूर होता चला गया। और देखिए जैसे जैसे वक्त गुजरा अब एक बार फिर से वही पुराना वक्त लौट रहा है, अनुच्छेद 370 हटने के बाद माहौल में आए बदलाव और फिर 2021 की नई फिल्म नीति आने के बाद पिछले कुछ सालों में कई फिल्में, सीरियल्स और वेब सीरीज की शूटिंग यहां पर हुई, इनमें हिंदी के साथ साथ दक्षिण भारतीय और पंजाबी फिल्में भी शामिल हैं। तो चलिए देख लेते हैं कश्मीर का बॉलीवुड से नाता कितना पुराना है और कितना गहरा है।

कश्मीर की बेपनाह खूबसूरती को न जाने कितने सिनेमा ने सिल्वर स्क्रीन पर शोकेस किया। जिस डल झील के किनारे आज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उस डल के किनारों पर उगते डूबते सूरज और चांद के सहारे फिल्मी पर्दे पर न जाने कितनी ही कहानियों को टाका।

0: जिस कश्मीर में अब तक 50 से ज्यादा हिंदी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, वहां इस सिलसिले की शुरुआत आधी सदी पहले हुई थी। 1964 में आई शर्मिला टैगोर और शमी कपूर की फिल्म कश्मीर की कली के साथ कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला शुरू हुआ था। शर्मिला टैगोर ने इस फिल्म के साथ बॉलीवुड डेब्यू किया था। ये फिल्म पर्दे पर उतरी तो मानो एक एक शॉट में कश्मीर की खूबसूरती की झलक जिंदा हो उठी। 1979 में आई अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्म मिस्टर नटवरलाल की कई सीन और गाने भी कश्मीर की वादियों में ही फिल्माए गए थे। लेकिन कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग का ये सिलसिला वास्तव में परवान चढ़ा साल 1981 के बाद, जब यशराज चोपड़ा की फिल्म सिलसिला ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यश चोपड़ा के कैमरे की आंखों से दुनिया ने कश्मीर की वो रंगत देखी जो अब से पहले सिनेमा पर कभी नजर नहीं आई थी। अनसुलझे रिश्तों के धागों से बुनी इस कहानी में कश्मीर की अहमियत एक किरदार से कम नहीं थी। सिलसिला ही नहीं बल्कि यश चोपड़ा ने अपने शुरुआती करियर में कभी कभी समेत कई सुपरहिट फिल्मों को कश्मीर में शूट किया था। इसी क्रम में ऋषि कपूर और पाकिस्तानी एक्ट्रेस सेबा बख्तियार की फिल्म हिना बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म के ज्यादातर हिस्से की शूटिंग कश्मीर में की गई थी, लेकिन 90 का दशक आते आते कश्मीर में हालात बदलने लगे। तब रूमानी कहानियों और गानों को फिल्मों के लिए बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर कश्मीर छोड़ स्विट्जरलैंड का रुख करने लगे। इस दौरान हमारी फिल्मों की कहानी में बदले कश्मीर की झलक दिखने लगी। पहले जिस कश्मीर को लेकर सिर्फ प्रेम की कहानियां बनाई गई, सुनाई और दिखाई जाती थी, अब वहां कहानियों का प्लॉट भी बदलने लगा। अब कश्मीर पर फिल्माई जाने वाली कहानियों में आतंक और उसके साए में बनते ढलते बदलते किरदारों की दास्तानें शामिल होने लगी। साल 2000 में आई ऋतिक रोशन की फिल्म मिशन कश्मीर ऐसी ही एक कहानी थी। इस फिल्म में ऋतिक और प्रीति जिंटा के किरदार ने लोगों का दिल छू लिया था। तो इसी क्रम में कश्मीर को केंद्र में रखकर शेक्सपियर के नॉवल हैमलेट पर आधारित विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर भी एक मास्टरपीस साबित हुई। इस फिल्म की कहानी का बैकग्राउंड भले ही आतंक से जुड़ा था, हैदर के अलग अलग सीक्वेंस की शूटिंग पहलगाम, अनंतनाग, निषाद बाग, डल झील, नसीम बाग, सोनमर्ग समेत कश्मीर की कई खूबसूरत लोकेशंस पर हुई थी। लेकिन साल 2010 आते आते जब कश्मीर में हालात बदलने लगे तो एक बार फिर कश्मीर की कहानियों में रूमानियत का उजाला रंग भरने लगा। जिन यशराज चोपड़ा ने कभी कभी के बाद 36 सालों तक कश्मीर में कोई फिल्म शूट नहीं की, वो पूरे 36 साल बाद अपनी फिल्म जब तक है जा के साथ कश्मीर की वादियों में लौटे। यशराज चोपड़ा ने एक बार फिर अपने कैमरे के जरिए दुनिया को कश्मीर की बेमिसाल खूबसूरती से रूबरू कराया। इसी तरह साल 2014 में आई कैटरीना कैफ और आदित्य रॉय कपूर की फिल्म फितूर के एक बड़े हिस्से को भी कश्मीर में ही फिल्माया गया। भारत पाकिस्तान के उलझे रिश्तों के बीच फंसी एक छोटी बच्ची की कहानी पर बनी बजरंगी भाईजान फिल्म के कई सीन कश्मीर में शूट किए गए थे। कश्मीर को ध्यान में रखकर ही प्लॉट लिखा गया था और उन्हें वास्तविक लोकेशंस पर ही फिल्माया गया। इसी तरह आलिया भट्ट की सुपरहिट फिल्म राजी की कहानी में भी कश्मीर को बुना गया। तो वहीं फिल्म नोटबुक की पूरी कहानी ही कश्मीर पर आधारित थी। मतलब ये कि आतंकवाद के चलते अपनी पहली पसंद कश्मीर से दूर हुआ बॉलीवुड अब फिर घाटी की हसीन वादियों में लौट चुका है। खास तौर पर 370 हटने के बाद बॉलीवुड शूटिंग के लिए माहौल को सुरक्षित महसूस किया जा रहा है और घाटी लाइट कैमरा एक्शन से एक बार फिर गुलजार हो उठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर है भक्ति की, जिसे देखकर शिव भक्तों का हृदय आशा उल्लास के साथ भर जाएगा। पहली तस्वीर है आगरमालवा की, जहां नलखेड़ा में प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी पूरे लाव लश्कर के साथ नगर भ्रमण पर निकली। फूलों से सुसज्जित पालकी में दूल्हे के रूप में सजे बाबा गुप्तेश्वर महादेव विराजित थे। भगवान भोलेनाथ की बारात से लेकर माता पार्वती, विशाल नंदी और खाटू श्याम जी की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। कलाकारों ने देवी देवताओं भोलेनाथ के स्वरूप धारण कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। डीजे बैंड पर गूंजते शिव भजनों और ढोल की थाप पर श्रद्धालु जमकर नाचे। नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर बाबा का स्वागत हुआ और आरती उतारी गई। दूसरी तस्वीर उज्जैन के बाबा महाकाल की, जिनके शाही सवारी उज्जैन की सड़कों पर शान से निकली और उनकी डोली के साथ भक्त नाचते झूमते चले। करीब 7 किलोमीटर लंबे सवारी मार्ग पर बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। सवारी में बाबा महाकाल के 6 स्वरूप शामिल रहे। क्षिप्रा नदी के रामघाट पर पूजा अर्चना के बाद सवारी वापस महाकाल मंदिर पहुंचे।

तो देखिए, सावन समाप्त हो चुका है, लेकिन जैसे कि परंपरा है, भादो के महीने में भी महाकाल की दो सवारियां निकलती हैं। देश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों की परंपरा के मुताबिक आखिरी सोमवार पर महाकाल की छठी सवारी निकली और उनकी डोली के साथ भक्त नाचते झूमते चले। महाकाल उज्जैन के राजा माने जाते हैं और जब वो नगर भ्रमण पर होते हैं तो उनके दर्शन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। चलिए आपको महाकाल की सवारी की अब भव्य तस्वीरें ये दिखाते हैं।

0: ये धमाका दरअसल मुनादी है कि उज्जैन के राजा की सवारी आने वाली है, लेकिन उससे पहले तो नाचते गाते उनके भक्तों की बारी है। वैसे तो उत्तर भारत में सावन बीत चुका है, लेकिन दक्षिण पश्चिम परंपरा के मुताबिक जब सावन का आखिरी सोमवार आया तो हर साल की तरह महाकाल की छठी और आखिरी राजसी सवारी निकाली। राजा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने और उनका हाल देखने निकले। राजा चले तो उनके साथ सवारी में पुलिस बैंड चला। पुलिस के सशस्त्र बल की टुकड़ी चली और साथ चली 70 भजन मंडलियां। दो हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी और इनके साथ आधा दर्जन बैंड। लेकिन महाकाल की सवारी में तो नजर उनके भक्तों पर होती है, ऐसे भक्त जो बहुरूपियों की टोली में होते हैं। सोमवार को दोपहर 4 बजे रजत पालकी में सवार होकर भगवान चंद्रमौलेश्वर नगर भ्रमण पर निकले। शंख ध्वनि और भगवान महाकाल के जयकारे से आसमान गूंज उठा। महाकाल ने 6 दिव्य स्वरूपों में अपने भक्तों को दर्शन दिए। रजत पालकी में भगवान चंद्रमौलेश्वर, गरुड़ पर शिवतांडव, नंदी पर उमा महेश, डोल पर होलकर मुखौटा, इसके बाद सप्तधान मुखौटा और अंत में हाथी पर मन महेश स्वरूप। सवारी मार्ग पर 1,00,000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्र में रंगोली बनाई गई और जब सवारी चली तो ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई। सवारी में कोई शिव पार्वती के रूप में था तो कोई बालाजी के रूप में।
1: हमने भगवान की भव्य सवारी देखी। हम दिल्ली से आए हैं और स्पेशली भगवान के दर्शन करने आए थे। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर दर्शन हुए।
0: भगवान शिव के रूप में जब बच्चों ने नृत्य शुरू किया तो लोग देखते रह गए। भूतों की टोली देखकर लगा कि महादेव की फौज जमीन पर आ गई। डमरू, झांझ, मंजीरे बजाते श्रद्धालु और नृत्य करती महिलाएं सभी शिव भक्ति में रंगे नजर आए। और इस छोटे बच्चे ने अपनी तलवारबाजी से मन मोह लिया। बोलबम और जय महाकाल के उद्घोष ने सृष्टि के अधिपति का अभिवादन किया, जबकि सड़क के दोनों ओर खड़े श्रद्धालु भगवान की एक झलक पाने के लिए पालकी की ओर टकटकी लगाए रहे। सवारी में भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस साल भी आए और बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए घंटों डटे रहे। जब दर्शन हुए तो पुष्प वर्षा के साथ अपने आराध्य की अगवानी की। नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सवारी शिप्रा नदी पहुंची, जहां शिप्रा के पावन जल से भगवान का अभिषेक पूजन किया गया। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ लंच टाइम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक कार कैसे सुनाएगी अनसुनी कहानियां।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की लुका छिपी। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: वडोदरा में पीएम मोदी का मेगा इवेंट, जेन जी से करेंगे सीधा संवाद, वडोदरा को देंगे 32,200 करोड़ की विकास की सौगात। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल, 11 सितंबर से शुरू हो रहा है सम्मेलन। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ जितेंद्र मिश्रा आज से संभालेंगे कार्यभार, सुरक्षा सेवा पूजा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर करने पर होगा जोर। भारतीय सेना की बड़ी सफलता, चिनूक में अल्ट्रा लाइट होविट्सर का चुनौतीपूर्ण इलाकों में तैनात करने का सफल प्रदर्शन किया। सीपीसीबी सर्वे में देश के टॉप 10 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहर, लखनऊ की हवा देश में सबसे साफ, 4थे नंबर पर आगरा, 8वें नंबर पर नोएडा और 9वें नंबर पर गाजियाबाद। देश भर में गणेश उत्सव की तैयारी, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार, झांसी में भोलेनाथ के साथ गणेश के अनोखे स्वरूप ने खींचा लोगों का ध्यान।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।

0: सूरत से लेकर मुंबई तक, नागपुर से लेकर अकोला तक गणपति उत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हर तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। गलियों और बाजार बप्पा के स्वागत के लिए सज चुके हैं।
1: और देखिए, भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। कहीं भव्य पंडाल आकार ले रहे हैं तो कहीं बप्पा की भव्य प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गणपति बप्पा के आगमन को लेकर हर उम्र के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। पूरा माहौल भक्तिमय है। गणेश उत्सव की शुरुआत 14 तारीख से होने जा रही है। ऐसे में जैसे जैसे गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आ रहा है, मूर्ति निर्माण से जुड़े कारीगर बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ये तस्वीर यूपी के नोएडा से आई है, जहां कारीगर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय पराली, बांस और चिकनी मिट्टी से मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं।

0: विघ्नहर्ता भगवान गणेश की एक से बढ़कर एक खूबसूरत प्रतिमाएं, कोई छोटे आकार की प्रतिमा और कोई बड़े आकार की प्रतिमा, किसी में भरा जा रहा है रंग और किसी का किया जा रहा है श्रृंगार। ये तैयारी है उस महापर्व की जिसकी शुरुआत 5 दिन बाद यानी 14 तारीख से होने जा रही है। जैसे जैसे गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आ रहा है, मूर्ति निर्माण से जुड़े कारीगर बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के नोएडा से आई है, जहाँ कारीगर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय पराली, बांस और चिकनी मिट्टी से मूर्तियों को तैयार करने में दिन रात जुटे हैं।
1: नोएडा में गणेश चतुर्थी को लेकर जो तैयारियां हैं वो अब जोर पकड़ने लगी है, और इन्हीं तैयारियों के बीच जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है वो है गणपति बप्पा की मूर्तियां। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, कितनी मेहनत, लगन और आस्था के साथ इन मूर्तियों को जो है वो तैयार किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि पर्यावरण को देखते हुए जो है इन सभी मूर्तियों को जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो आप जितनी भी मूर्तियां यहाँ पर देख रहे हैं वो किस तरीके से बनाई जा रही है, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये जितनी भी मूर्तियां आपको यहाँ पे नजर आएगी इनमें किसी भी तरीके से पीओपी का इस्तेमाल जो है वो नहीं होता आपको दिखेगा। यहाँ पर
0: तैयार मूर्तियों को आकर्षक और मनोहारी बनाने के लिए इन्हें वाटर कलर से रंगा जाता है, यानी पूरी तरह से इको फ्रेंडली मूर्तियाँ, जिन्हें नदियों में विसर्जित करने पर पर्यावरण नुकसान का खतरा नहीं होता है। लोगों की डिमांड और ट्रेंड के हिसाब से ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं।
1: इन कलाकारों की जो मेहनत है वो सिर्फ मूर्ति को बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके बाद जो उसको रंगने की प्रक्रिया है उसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत होती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारीकी चीजों का ध्यान दिया जाता है, चाहे फिर वो भगवान के वस्त्र की बात हो, भगवान के आभूषण की बात हो, उनके नयन नक्श की बात हो, हर चीज जो है बड़े ही बारीकी रंग से, बड़े ही बारीकी ब्रश के साथ जो है उसको रंगा जाता है। और खासतौर पर ये इस्तेमाल भी जो है वैसे रंग करते हैं जो पर्यावरण को जो है नुकसानदायक ना हो, तो जिसमें चंदन हो गया, हल्दी हो गई, कुमकुम हो गया, उस रंगों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात आंख बनाने की हो, कुछ चीजें उसको और टच, फाइनल टच फिनिशिंग की हो, तो उसमें वाटर कलर्स का भी इस्तेमाल करते।
0: नोएडा की तरह ही दिल्ली में भी गणेश प्रतिमाओं के निर्माण का काम जोरों शोर से इन दिनों चल रहा है। इस काम से जुड़े कई कारीगर बप्पा की मूर्तियों को डिमांड के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। इन मूर्तिकारों के लिए ये सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि आस्था और कला को एक साथ पेश करने का मौका भी है। इन्हीं में से ये दो बहनें भी 20 साल से गणेश प्रतिमा तैयार कर रही हैं। पहले ये काम इनके पिता करते थे, लेकिन उनके गुजरने के बाद दोनों बहनों ने इस काम को आगे बढ़ाया, और ये दोनों बहनें न सिर्फ मूर्तियां बनाती हैं बल्कि वो खुद गणपति बैठाती भी हैं।
2: गणेश पूजा, गणेश उत्सव, गणेश जी की मूर्ति को तैयार करना, उसको सजाना संवारना, इसके क्या मायने हैं ये आप इन दो बहनों से समझ सकते हैं, मंजू और वसुंधरा। ये दो बहनें सालों से इसी काम में लगी हुई हैं, हर साल मूर्ति को अपने हाथ से तैयार करती हैं, फिर उसे बेचती हैं, कुछ पैसे कमाती हैं। 20 साल से दोनों बहनें एक साथ ये काम कर रही हैं। इसके पहले ये काम इनके पिताजी किया करते थे, वो चल बसे, तो उसके बाद दोनों बहनों ने मोर्चा संभाला हुआ है।
3: मूर्ति में सजावट करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, जो काम आते हैं वो कर लेते हैं।
2: ये काम सीखा किससे, अपने आप से या फिर पिताजी सिखा गए थे?
3: पिताजी सिखा के गए थे, वैसे तो अब देखते देखते सीख गए हम भी।
0: मूर्ति निर्माण से जुड़े कारीगर बताते हैं कि बीते साल के मुकाबले इस साल मूर्ति निर्माण से जुड़े कच्चे माल की कीमत थोड़ी बढ़ी है, जिस वजह से मूर्तियों की कीमत में भी इजाफा हुआ है। बावजूद इसके मूर्तियों के लिए ऑर्डर में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है।
2: गणेश जी की जब तैयार मूर्ति आप देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे उनकी आंखें बोल उठेंगी, लेकिन इन मूर्तियों में जान कैसे डाली जा रही है, कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा, कितनी मेहनत के साथ इनको तैयार किया जा रहा है, ये आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, लेकिन अब उनको सजाने, उनको संवारने, उनके श्रृंगार का काम यहाँ पर कई लोग लगातार कर रहे हैं। ये मेहनत एक दिन की नहीं है बल्कि कई दिनों की होती है। इस तरह की अलग अलग डिज़ाइन के साथ ये तमाम कलाकार इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि मूर्तियाँ पूरी तरह से इको फ्रेंडली बने और जब ये पानी में जाएं तो आसानी से घुल जाएं। हालांकि कुछ चीज़ें ज़रूर हर मूर्ति में होती हैं जो आपको विसर्जित करने से पहले हटानी होती हैं, जैसे जो उनके श्रृंगार का सामान होता है। लेकिन इन सारी बातों के बीच बात यही है कि जो तैयारी है वो अपने जोर शोर पर है, और यही वो कारीगर हैं, उनके हाथ हैं, इनके हाथों से मूर्तियों में एक आपको जान सी महसूस होती है। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी 3-4 दिन में पूरी हो जाएगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
0: देखिए, कुछ सालों से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए गणेशोत्सव पर खास तौर से प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय इको फ्रेंडली यानी मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, जिनका उपयोग करना जल प्रदूषण से बचाव का सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है। ऐसे में कई मूर्तिकार जहां मिट्टी और दूसरे सॉल्यूबल चीजों से बनी एक से बढ़कर एक मनोहारी मूर्तियों को आकार दे रहे हैं, तो इनकी डिमांड भी मार्केट में खूब बढ़ती जा रही है।
1: यही वजह है कि इको फ्रेंडली बप्पा इस गणेश उत्सव में भी रायपुर में काफी ट्रेंड में है। दरअसल यहां पर एक परिवार पिछले 25 सालों से गणेश जी की ऐसी ही प्यारी मूर्तियां बना रहा है।

0: बीते कुछ सालों से गणेशोत्सव पर प्रकृति का भरपूर ख्याल रखने का संदेश दिया जा रहा है। नेचर को नुकसान पहुंचाने वाले जहर से कोसों दूर बाप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां आज मूर्ति कारीगरों के साथ आस्थावानों की पहली पसंद है। ऐसे में कुछ मूर्तिकार परिवार अपनी गणेश भक्ति को ही पीढ़ियों से चली आ रही कला परंपरा में बदले हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर का एक परिवार है जो हर साल आस्थामयी और कलात्मक माहौल में भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय बांस, नारियल की छाल और मौली धागा से बेहद खूबसूरत और पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों को आकार दे रहा है। इस परिवार के मुखिया हैं शिवचरण यादव, जो कभी सरकारी मुलाजिम रहे, घर चलाने के लिए भेल भी बेची, लेकिन जब इस काम में मन नहीं रमा तो फिर कलाकारी करने का महज ख्याल ही मानो पैशन बन गया है।
1: बच्चे लोग सबसे पहले मेरे को वहाँ अध्यक्ष बनाए, उसके बाद फिर मैंने अपना धीरे धीरे स्थल सजावट का काम किया। स्थल सजावट करने के बाद अब उसमें भी मजा नहीं आया, तो फिर मैं बोला उसको बंद करके मूर्ति का काम स्टार्ट किया।
0: मूर्तिकार शिवचरण को इन मनोहारी मूर्तियों को आकार देते हुए 25 साल से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान उन्होंने ठेले पर भी बाप्पा की मूर्तियां रखकर बेची। साल 2011 से शिवचरण ने घर पर ही मौली धागा, नारियल की लकड़ी, नारियल की बुच जैसी कई इको फ्रेंडली चीजों से मूर्तियों को आकार देना शुरू किया। वहीं इस बार के गणेशोत्सव में शिवचरण ने धूप दीप, पेड़ की छाल और बांस की लकड़ी जैसी कई और पर्यावरण सुरक्षित जैसी चीजों से खूबसूरत बप्पा बनाए हैं, जिनके डिमांड काफी है।
1: इस बार हम लोग बनाए हैं धूप दीप का बनाए हैं राम भगवान के रूप में, और पेड़ के छाल से बनाया गया है, और उसके बाद बांस की लकड़ी से बनाया गया है, और नारियल की बूच को नारियल का स्वरूप दिया गया है।
2: बिंदी से शंख और सीप से
1: बनाया गया है, और ये क्या बोलते हैं,
2: बिंदी से
1: ये मोती से बनाया गया है।
0: शिवचरण और उनके परिवार की नजर में प्रकृति का सम्मान ही बाप्पा की सच्ची भक्ति है। शिवचरण अपनी पत्नी, दो बेटे और एक बहू के सहयोग से विघ्नहर्ता की ऐसी ऐसी सुंदर मूर्तियां बना रहे हैं जिनके चाहने वाले ग्राहक हर साल बढ़ रहे हैं।
3: बाकी मूर्तियां तो अलग अलग बनाए जाते हैं मिट्टी से और बाकी अन्य चीजों से, लेकिन हम लोग गणेश जी को किसी भी चीज में अलग अलग रूप में बनाकर, मतलब आप देख सकते हैं कि पीछे एक लकड़ी की छाल है, सामने धूप अगरबत्ती है, उसके हिसाब से अलग अलग चीजों से बनाते हैं।
2: आस्था भी है गणेश
3: जी, बहुत आस्था है हमारी।
0: फिलहाल तो मिट्टी की ये सुंदर सुंदर इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा हमारी प्रकृति को मुस्कुराने की वजह दे रहे हैं। रायपुर का ये परिवार गणेश मूर्ति को बनाने की कला को जिस अंदाज में जिंदा रखे हुए हैं, उससे न केवल समाज को अपना पर्यावरण बचाने की प्रेरणा मिल रही है, बल्कि खुशहाल प्रकृति बने रहने का संकेत भी मिल रहा है। तो हो जाए एक बार फिर विघ्नहर्ता का ये प्यारा सा उत्सव इको फ्रेंडली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए इसी के साथ लंच टाइम में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
6: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की लुका छिपी। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: राजस्थानी कला संस्कृति शिल्प और लोक परंपराओं की कहानियां आप केवल म्यूजियम आर्ट गैलरी या फिर हवेलियों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि एक चलती फिरती आर्टकार के जरिए राजस्थान की सड़कों पर नजर आएंगी। दरअसल जयपुर की संस्था कार्टिस्ट का ये एक नया इनिशिएटिव है जिसका नाम है स्टोरीज ऑफ इंडियन सिटीज।
7: और देखिए इस नाम से ही एक सजी धजी कार में कठपुतली कला से लेकर पारंपरिक शिल्प को शोकेस किया गया है, जिसे सजी हुई ये कार इसको आर्ट कार कहा जा रहा है। और ये आर्ट कार जयपुर से जैसलमेर तक राजस्थानी विरासत की कहानी सुनाने के लिए बीते 4 सितंबर को निकल चुकी है, और ये सफर 23 सितंबर को बाड़मेर तक जाकर खत्म होगा।
8: जिस धरती पर रेत भी सुनाती है गीत, पग पग पर मुस्कुराती है संस्कृति, रंग बिरंगी पगड़ियों में नजर आती है मिट्टी की शान, वही है अलबेला राजस्थान। राजस्थान जो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि दिल में बस जाने वाला एक एहसास है, और ये एहसास राजस्थान की लोक कला शिल्प खान पान और परंपराओं में नजर आता रहा है। इसी लोक कला के दर्शन करा रही है ये अनोखी आर्ट कार, जो करीब 3500 किलोमीटर का सफर तय कर इस सूबे की जीवंत संस्कृति की अनकही कहानियों को सामने लाएगी।
9: लग्जरी कार्स हर किसी को पसंद है, क्लासिक और विंटेज गाड़ियों के बारे में भी हर कोई जानता है, पर किसी ने ये नहीं सुना होगा कि कोई गाड़ी कल्चरल है। बिल्कुल ये थॉट आएगा ही आएगा कि कोई गाड़ी कल्चरल कैसे हो सकती है, ट्रेडिशनल कैसे हो सकती है, पर मैं जिस गाड़ी में बैठ के आपको गुड न्यूज टुडे पे सफर करवा रही हूँ वो गाड़ी ट्रेडिशनल है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से कलरफुल काम हमें इस गाड़ी पे दिख रहा है, इसको पूरा कस्टमाइज किया गया है। राजस्थान में जयपुर की सड़कों पे नजर आ रही है, तो पिंक सिटी में ये पिंक इंटीरियर वाली गाड़ी अभी छाई हुई है।
8: स्टोरीज ऑफ इंडियन सिटीज के नाम से इस सजीली कार में कठपुतली कला से लेकर पारंपरिक शिल्प का शोकेस है, जो जयपुर से जैसलमेर तक करीब 20 शहरों से गुजरते हुए राजस्थानी विरासत की कहानी सुनाएगी।
9: इसके दो आर्टिस्ट हैं, या कह सकते हैं कि कार्टिस्ट हैं, और ये जो दो कार्टिस्ट हैं उनमें से एक ने इसका इंटीरियर किया है तो दूसरे ने इसका एक्सटीरियर में जो राजस्थानी लुक है, जो कठपुतलियां हैं वो इस पे बनाई है।
8: यहाँ की विविध परंपराओं से सजी इस आर्ट कार की खूब चर्चा है, क्योंकि इसको सजाने सवारने में ही करीब 45 दिन लग गए। इसके डोर्स पैनल और कार्पेट एरिया को डेकोरेट करने के लिए 3 लोगों ने दिन रात मेहनत की, और देखते ही देखते इस आर्ट कार का पूरा इंटीरियर और एक्सटीरियर राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपरा के शोकेस बन गए। दरअसल सैलानी जब भी राजस्थान आते हैं वो यहाँ के ऐतिहासिक किले, बावड़ी या महल देखते हैं, लेकिन ये रंग बिरंगी आर्ट कार रंगीलो राजस्थान की लोक कला परंपरा शिल्प और खान पान की अनकही कहानियों को ही ढूंढने निकली है। इस आर्ट कार का एक्सटीरियर हो या इंटीरियर, दोनों को कार में दिखाने की बड़ी ही रोचक कहानी है, क्योंकि ये राजस्थान के किले और महलों की कहानियों से एकदम परे है।
10: इसका एक्सटीरियर हमारे आर्टिस्ट श्रीकांत रंगा ने करा है। ही हैज पेंटेड कठपुतलीज और राजस्थान का ट्रेडिशनल फोक को रिप्रेजेंट करा है बाहर। इंटीरियर में हम लोग बड़े सोच विचार के बाद हमने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमने बाड़मेर का पैच वर्क जिसे एप्लिक बोलते हैं उसको हमने इधर यूज करा है। तो यूज करने का मेन पर्पस ये कि एक तो सस्टेनेबल क्लोथ है और इसको वहां की महिलाएं अपने घरों में ही बनाती हैं और स्टिच करके उस वेस्ट को कैसे ना एक नया रूप दे देते हैं, इसलिए हमने कोशिश करी है कि उनको सेलिब्रेट करा जाए, उनके आर्ट फॉर्म को सेलिब्रेट करा जाए, इसलिए इसका इंटीरियर हमने डेकोरेट करा है।
8: जाहिर है ये आर्ट कार एक चलता फिरता कैनवस ही है जो खुद में राजस्थान की लोक विरासत के समृद्धशाली इतिहास को समेटे हुए है। दरअसल इस कार को हिमांशु ने कभी खूब ड्राइव किया, एक समय तो ये कार कार्टिस्ट यात्रा का हिस्सा भी रही और पूरा हिंदुस्तान घूम चुकी है जो अब अकेले इस अलबेले राजस्थान के सफर पर निकली है।
10: हमारा मेन पर्पस है कि हम उन आर्टिजन से मिले, वो किस तरीके से इन आर्ट क्राफ्ट को अपना हेरिटेज को संभाल के अभी तक नेक्स्ट जनरेशन को वापस देते हैं, तो क्राफ्ट स्टोरीज पे हमारा ज्यादा फोकस है इस बार।
8: इस सफर में हिमांशु और उनके साथी राजस्थान में बरसों पहले अपनाए गए जल संरक्षण के तौर तरीकों को भी समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही इस अनोखे काम को हिमांशु बाड़मेर में ही सेलिब्रेट करने की भी सोच रहे हैं क्योंकि वहीं की महिलाओं ने कार का ये खास पैच वर्क तैयार किया।
9: फाइनली ये काम जो है उसको जस्टिस मिलेगा, जिस जगह से वो आया है वहां पहुंचकर वहां की महिलाएं जब देखेगी कि उनके बनाए हुए ये जो पैचवर्क है ये कहाँ इस्तेमाल किए गए हैं, कौन से शहर और कौन से प्रदेशों में ये घूम रहे हैं, पूरे भारत में राजस्थान की आन बान शान बने हुए हैं और वहां की जो यहाँ की जो धरोहर है वो हर जगह पहुंचा रहे हैं। ये सफर तो हमने शुरू कर दिया है गुड न्यूज टूडे पर और हम देखना चाहते हैं कि इसकी मंजिल क्या रंग रूप लेकर आती है, क्या कुछ ऐसी कहानियां हैं जो अब तक कहीं पे भी नहीं पहुंची हैं पर अब आगे जरूर आप तक पहुंचने वाली है। कैमरन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
7: और चलिए अब बात फिल्म हनुमान अंश की कर लेते हैं। बाबा नीम करौली की जिंदगी पर आधारित हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर वो करके दिखाया है जिसकी किसी ने शायद कल्पना नहीं की थी। महज 2 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई हनुमान अंश ने 31 दिन के अंदर ही 150 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है।
11: ऐसे कमाल तो मेन स्ट्रीम की कमर्शियल फिल्मों ने भी नहीं किए हैं, जो कि मिनी बजट की फिल्म हनुमान अंश ने मेगा कमाई कर दिखा दिया है।
12: चमत्कारिक रूप से हनुमान अंश लगातार बिजनेस करती जा रही है, 100 करोड़ के पार मूवी पहुंच चुकी है, रफ्तार अब 150 करोड़ के आसपास है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कि फिल्म देख कर निकले हैं। कैसी लगी फिल्म आप?
13: बहुत अच्छी पिक्चर थी और यहाँ हमें ना नीम करौली बाबा की पूरी स्टोरी समझ में आई कि मतलब पहले उतना नहीं पता था लेकिन पिक्चर देख के मन खुश हो गया बहुत।
12: इतना लेट क्यों आए आप लोग?
13: टिकट नहीं मिल रही थी, हाउसफुल जा रहा था इसीलिए आ गए, इसीलिए जो है ना हम जो है लेट हो गए, तो हमने कहा चलो आज मौका है तो आज देख के आ जाते हैं।
12: चलिए, अब पहले से प्लान था मूवी देखने का या फिर सोशल मीडिया पर इतना बज क्रिएट हो गया, इतनी चर्चा शुरू हो गई इसलिए आप लोग पहुंचे?
14: हाँ, इतनी चर्चा सुन के ही हमने शुरू देखने आए हम लोग। बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, आप सबको देखनी चाहिए।
12: इसके पहले कुछ पता था आपको नीम करौली बाबा के बारे में?
14: नहीं पता था, मूवी देख के ही मतलब पता लगा मैं, लेकिन हमने सोशल मीडिया पे देख के ही इतना मतलब वो हुए कि मूवी देखनी चाहिए।
12: सोशल मीडिया पर लोग जिस तरह बहुत तारीफ कर रहे थे, यहाँ आकर वैसे ही लगा या कुछ और था?
15: नहीं, हमें बिल्कुल वैसे ही लगा। और वैसे मैं वेकेशन में गर्मियों में हर साल नीम करौली बाबा जाती भी हूँ और यहाँ देख के तो मुझे बहुत लगा कि उसी मंदिर में मैं आ गई हूँ।
12: तो ये भक्ति थी जो मूवी के लिए लेके आई, सोशल मीडिया का बस था या आपका अपना मन था कि देखना?
15: सोशल मीडिया का बस था
13: और भक्ति भी थी,
15: ज्यादा नॉलेज भी हुई उससे ज्यादा,
13: और भक्ति भी थी। मतलब पहले हमें बाबा के बारे में जितना पता नहीं था जितना हमें अब पता चला उनके बारे में।
12: जब मूवी शुरू हुई तो कलेक्शन था शुरुआती का 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, आज वो 100 करोड़ के पास जा चुकी है, तो लग रहा है कि मूवी डिजर्व करती है 150 करोड़, 200 करोड़ जाने में?
13: बिल्कुल डिजर्व करती है, बिल्कुल डिजर्व करती है।
15: थर्ड टाइम देखी है मैंने आज ये मूवी,
12: अब लग रहा है कि मूवी जाएगी 200 करोड़ के आसपास?
13: जाएगी, पक्का जाएगी, जरूर जाएगी। हाँ, बाबा का आशीर्वाद है, जरूर जाएगी।
12: जैसे चमत्कार बाबा के बारे में पढ़े हम लोगों ने कि कई लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ, वैसा ही फिल्म में था या कुछ अलग था?
14: बिल्कुल वैसे ही था, सेम दिखाया था उसमें।
12: ऐसी फिल्में और बननी चाहिए?
13: बननी चाहिए, समाज को जागृत करने के लिए ऐसी फिल्में बननी चाहिए।
12: चलिए, ये पूरा एक ग्रुप है, प्लान किया मूवी देखनी है, आज मूवी देखने आए, देखिए और कह रहे कि सबसे ज्यादा खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से चर्चा शुरू हुई फिल्म की, उसके बाद इन्हें इंस्पिरेशन मिली कि इन्हें भी जाकर फिल्म देखनी चाहिए। हालांकि ये सब पहले से ही अधिकतर लोग इनमें से नीब करोरी बाबा के बारे में जानते थे, कई लोग वहां जाते भी हैं, दर्शन भी करते हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर फिल्म को अनुभव करना इनके लिए बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। कह रहे हैं कि जो बातें पहले हमको भी नहीं पता थी वो बातें आज इस फिल्म ने बताई हैं। चमत्कारिक रूप से फिल्म आगे बढ़ रही है और अब इसके दर्शक, इसके फैन, इनके भक्त ये उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म बहुत जल्द 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
11: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही।
7: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए, अच्छे पॉजिटिव खबरें दिन भर जा रही हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का दिया गिफ्ट, कहा यह विकास का उत्सव है। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल, 11 सितंबर से शुरू हो रहा है सम्मेलन। भारतीय सेना की बड़ी सफलता, चिनूक से अल्ट्रा लाइट होविट्ज़र का चुनौतीपूर्ण इलाके में तैनात करने का सफल प्रदर्शन किया। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ जितेंद्र मिश्रा आज संभालेंगे कार्यभार, सुरक्षा, सेवा, पूजा और श्रद्धालुओं की सुविधा को बेहतर करने पर होगा जोर। देशभर में गणेश उत्सव की तैयारी, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे एक कलाकार, झांसी में भोलेनाथ के साथ गणेश के अनोखे स्वरूप ने खींचा लोगों का ध्यान। जूनियर हॉकी एशिया कप, भारतीय मेंस टीम की लगातार दूसरी जीत, साउथ कोरिया को 7-3 से हराया, आखिरी क्वार्टर में 3 गोल हुए।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: वडोदरा में पीएम मोदी का जेएनजी से सीधा संवाद, नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में 6,000 से ज्यादा छात्र और युवा शामिल हुए। देश के युवाओं और जेएनजी को प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से जोड़ने के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम, युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीएम मोदी के मेगा इवेंट के लिए पहली बार बुक माई शो से रजिस्ट्रेशन, एक घंटे में फुल हुई सारी सीट्स। डिजिटल एम टिकट और QR कोड से कार्यक्रम में एंट्री, पहली बार निजी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए रजिस्ट्रेशन और एंट्री व्यवस्था को बड़े स्तर पर किया जा रहा है इस्तेमाल। वडोदरा के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया, 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 में देश भर से आए बुनकरों ने लिया हिस्सा, बुनकरों कौशल विकास और निवेश को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की शुरुआत। इस कॉन्क्लेव से प्रदेश को वैश्विक वस्त्र उद्योग के केंद्र के रूप में मिलेगी पहचान, खुलेंगे रोजगार के कई अवसर। अयोध्या के दौरे पर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल वाटिकाओं में आओ सुने और सुनाएं कहानी अभियान की शुरुआत करेंगे, नव नियुक्त आंगनबाड़ी कर्मियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। अयोध्या में राम मंदिर के नए सीईओ जितेंद्र मिश्रा से भी करेंगे मुलाकात, औपचारिक तौर पर आज से राम मंदिर की प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था संभालेंगे जितेंद्र मिश्रा। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में सीएम योगी ने प्रसिद्ध तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किए, भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम तिरुमला तिरुपति देवस्थानम व्यवस्थाओं की सराहना की, सीएम योगी ने आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूरे देश की सुख समृद्धि की कामना की। तमिलनाडु दौरे के दौरान नेल्लोर में भी गए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, अक्षरा विद्यालय परिसर में सोमा स्किल डेवलपमेंट सेंटर का दौरा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत में छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, सीएम योगी ने छात्रों से संवाद किया। दौरे के दौरान सीएम ने कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली।

पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी साथ मौजूद रहे। लखनऊ की हवा देश में सबसे साफ। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्वे में देश भर के 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के सर्वे में टॉप पर लखनऊ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वे ने दूसरे नंबर पर इंदौर और तीसरे नंबर पर जबलपुर। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची जारी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में नोएडा की भी बड़ी छलांग। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश भर में 8वीं रैंक हासिल। पिछले साल 9वें पायदान पर भी था नोएडा। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम। ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच 30 मिनट की कनेक्टिविटी की योजना पर मंथन। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गंगा एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का दिया प्रस्ताव। जनता की सुविधा का ख्याल रखा। दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा चाक चौबंद। एनएसजी और दिल्ली पुलिस ने किया मॉक मेगा ड्रिल। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई हाई लेवल काउंटर टेररिज्म मॉक ड्रिल। हर तरह के आतंकी हमले या इमरजेंसी से निपटने के लिए ब्लैक कैट कमांडोज का खास अभ्यास। भारतीय सेना की बड़ी सफलता। चिनूक से अल्ट्रालाइट होवित्ज़र का चुनौतीपूर्ण इलाकों में तैनात करने का किया गया सफल प्रदर्शन। मिस्र के अल अलामीन एयर शो में आज दिखेगा भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर कदम। स्वदेशी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर से सारंग दिखाएगा हवाई करता। आसमान में सटीक फॉर्मेशन से दर्शक होंगे रोमांचित। सारंग टीम पेश करेगी डॉल्फिन लीप और स्पॉट स्टॉल टर्न। 10 सितंबर तक चलेगा एयर शो। कश्मीर में सजा सिनेमा और संस्कृति का महामंच। घाटी से पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ सीएम उमर अब्दुल्ला ने उद्घाटन किया। शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर गीत संगीत से गूंज उठा। कलाकारों के धमाकेदार परफॉर्मेंस ने बांधा समा। सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हुए।

फिल्म फेस्टिवल से कश्मीर को मिली नई पहचान. सिनेमा के जरिए दुनिया से जुड़ रहा है कश्मीर. फिल्म फेस्टिवल ने खोले कश्मीर के सिनेमाई दरवाजे. एक्ट्रेस फातिमा सना शेख समेत कई सितारे फेस्टिवल में पहुंचे. निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा और रमेश सिप्पी भी आयोजन का हिस्सा बने. कश्मीर को ग्लोबल सिनेमा से जोड़ने की शानदार पहल. 41 देशों की 135 फिल्में होंगी प्रदर्शित. 10 सितंबर तक चलेगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. श्रीनगर में होम शेफ कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन. महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. होम शेफ कुकिंग प्रतियोगिता के जरिए कश्मीर की महिलाओं ने दिखाई अपनी कुकिंग स्किल्स. फूड बिजनेस शुरू करने की संभावनाओं को तलाशने का मौका मिला. श्रीनगर के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के साथ मिलकर प्राइवेट होटल में आयोजित किया गया ये कॉम्पिटिशन. लगभग 500 महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन. जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह दरगाह पर श्रद्धालुओं की सुविधा और बुनियादी ढांचे को बनाया जा रहा है बेहतर. विकास कार्य लगातार जारी. श्रद्धालुओं के लिए आवास विश्राम हॉल और मेहमान खानों का किया जा रहा है विस्तार. देश विदेश से आते हैं हजारों श्रद्धालु. ग्यारह सितंबर को दिल्ली में बंद रहेंगे स्कूल. ब्रिक्स समिट को देखते हुए लिया गया फैसला. दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के घायलों से मिलने के लिए एम्स हॉस्पिटल पहुंची रेखा गुप्ता. जाना घायलों का हालचाल. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने घायलों को सौंपे 5-5 लाख के चेक. इलाज का पूरा खर्च उठाएगी दिल्ली सरकार. कर्नाटक के सीएम ने यशवंतपुर एपीएमसी मार्केट का औचक निरीक्षण किया तो वहीं किसानों से संवाद किया. दौरे के दौरान सीएम ने मार्केट में किसानों और मजदूरों के साथ नाश्ता किया. उपज की क्वालिटी और कीमत के बारे में जानकारी ली. गुवाहाटी पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन. प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में किए दर्शन पूजन. पुरी में श्रीमद भागवत कथा महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन. साध्वी रतंभरा हुई शामिल. अयोध्या में लघु उद्योग भारतीय औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन. देश भर में लघु उद्योगों और स्टार्टअप से जुड़े लोग हुए शामिल. देहरादून में हिमालय दिवस पर हिमालय नाम नागाधिराज कार्यक्रम का आयोजन. बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री धामी ने हिस्सा लिया. सीएम धामी ने मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना की शुरुआत की जिसके तहत 11,000 छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दी जाएगी निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग. गणेश चतुर्थी को लेकर झांसी के बाजारों में बढ़ी रौनक. बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार. भोलेनाथ के साथ गणेश के अनोखे स्वरूप ने खींचा लोगों का ध्यान. मिट्टी की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की सबसे ज्यादा मांग. नागपुर में गणपति बप्पा के आगमन की धूम देखने को मिली. गणेश उत्सव से पहले सजे भव्य गणपति पंडाल. ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर बप्पा का स्वागत. गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों की गूंज सुनने को मिली. गणपति आगमन के साथ शहर में बढ़ी उत्सव की रौनक. बप्पा के भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. दिल्ली में श्री धरणीधर जन्मोत्सव का भव्य आयोजन हुआ. धाकर समुदाय ने धूमधाम से मनाई भगवान धरणीधर की जयंती. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए. आगर मालवा में दिखा परंपरा और आस्था का संगम. निकाली गई बाबा भूतेश्वर महादेव की शादी.
सवारी में शान से निकली भगवान भोलेनाथ की भूतों की बारात, माता पार्वती, विशाल नंदी और खाटू श्याम जी की झांकियां आकर्षण का केंद्र।

0: के थाप और डीजे और बैंड पर गूंजते शिव भजनों पर जमकर नाचे श्रद्धालु। नगर में जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर किया गया बाबा का स्वागत। आगरमालवा के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में निकाली शाही सवारी, फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया मंदिर। श्रावण महीने के अंतिम सोमवार को बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ निकाली जाती है बाबा भूतेश्वर महादेव की शाही सवारी। देश भर में भक्त होते हैं शाम। हरिद्वार में बारिश के उफान पर चलते बरसाती नाले एक बच्चे का सफल रेस्क्यू किया गया। मालदा में गंगा के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ के हालात, स्वास्थ्य केंद्र भी हुआ प्रभावित, घुसा पानी। लगातार बारिश से बढ़ा गंगक नदी का जलस्तर, रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से जनजीवन हुआ प्रभावित। मोतिहारी में भीषण बारिश से इलाकों में भरा पानी, स्थानीय लोगों की बढ़ी मुसीबत। पटना के दीघा में बाढ़ प्रभावितों से मिले पप्पू यादव, हर परिवार को 500 रुपए की मदद की। वाराणसी में गंगा का जलस्तर गिरावट के बाद स्थिर हुआ, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। बाराबंकी में सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर से जनजीवन प्रभावित हुआ, प्रशासन ने ग्रामीणों को पहुंचाई राहत सामग्री। मुरादाबाद में राम गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, इलाकों में बाढ़ जैसे बन रहे हालात। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर पर बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नदियों के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी से 236 गांव और 10 शहरी वार्ड प्रभावित हुए, घरों सड़कों में भरा पानी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की लुका छिपी। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
6: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ वायरल वीडियोस, जिनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ भावुक कर जाएंगे।

0: एक्टिंग में उस्ताद है ये लड़की। मौत का सामना कैसे करते हैं अलग अलग देशों के लोग बताने की कोशिश हो रही है। कोशिश है कि इसमें वहाँ के लोगों के जीने का अंदाज भी झलके। लोग बच्चे के सपने की जमकर तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं इन्हें भला ऑस्कर की क्या जरूरत। देखते जाइए इन दोनों भाइयों की हरकतें, कोई कम नहीं है शरारत में। कपड़े सूख रहे हैं, एक को लगा कि चलो झूला झूल लेते हैं, दूसरा भी पीछे हो लिया, लेकिन इन्होंने जो किया उसने पहले की सांस ही अटका दी। देखिए कैसे हवा में झूल गया बेचारा, रो रो कर बुरा हाल है। दोनों मासूम बच्चों की यह हरकत सोशल मीडिया यूजर्स के चेहरों पर मुस्कान ला रही है। मानना पड़ेगा करने वाले तो बस कमाल करते हैं और इनके जुगाड़ का तो कोई जवाब ही नहीं। देखिए क्या तरकीब भिड़ाई है बारिश से बचाव के लिए। सही है, छाता कहाँ बचा पाता है पूरी तरह पानी से, और बारिश तेज हो तो बस सिर ही बच पाता है। लेकिन ये इंतजाम तो रेनकोट से भी आजादी दिला रहा है, इनके दिमाग की दाद तो देनी पड़ेगी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: वडोदरा में 6,000 से ज्यादा युवाओं के साथ पीएम का मेगा इवेंट, पीएम का हुआ ग्रैंड वेलकम, 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का दिया गिफ्ट, कहा ये विकास का उत्सव है। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल, 11 सितंबर से शुरू हो रहा है सम्मेलन। भारतीय सेना की बड़ी सफलता, चिनूक से अल्ट्रा लाइट होविट्ज़र का चुनौतीपूर्ण इलाकों में तैनात करने का सफल प्रदर्शन किया गया। देश भर में गणेशोत्सव की तैयारी, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार, झांसी में भोलेनाथ के साथ गणेश के अनोखे स्वरूप ने खींचा लोगों का ध्यान। जूनियर हॉकी एशिया कप, भारतीय मेंस टीम की लगातार दूसरी जीत, साउथ कोरिया को 7-3 से हराया, आखिरी क्वार्टर में हुए 3 गोल।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: नमस्कार, मैं हूं रिंकी भाभी और लेकर आई हूं आपके लिए मनोरंजन जगत की मसालादार खबरें। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं सास बहू और बेटियां। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर।
1: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, आरंभी के घर होगा गणेशोत्सव, त्योहार पर लगेगा ट्विस्ट का तड़का।

दलपति ब्रह्मचारी में नई पड़ोसन ईशा और सूरज के घर में छुपेगी। शुरू होगा नया ड्रामा। सलाखों के पीछे जाएगी जगधात्री, शिवाय की दिखेगी बेबसी,

मन सुंदर की रुचिता यानी कि ध्रुति मंगेशकर संग करेंगे डे आउट, जानेंगे उनके बारे में ढेर सारी बातें सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में सूरज की नई पड़ोसन क्यों छिपी उनके घर के अंदर, और आखिर ईशा ने क्यों की कृति की मदद, और क्यों हुई सूरज और ईशा में बहस, सीरियल का ये नया गोलमाल क्या है, देखना होगा दिलचस्प।
1: घर में छुपी कृति। ईशा हुई परेशान। शुरू हुई ईशा सूरज की लुका छिपी। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आई हुई नई पड़ोसन कृति ईशा और सूरज के घर में छुपी है, और इस बात से सभी अनजान है। असल में जिस जगह वो छुपी थी वहाँ से कृति को भागने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मोनिका भाभी और पूरा परिवार यहाँ आ गया और इनकी बातें और मस्ती शुरू हो गई।
2: मेरे हाथ के अंदर।

0: बनाने जा ही रहे होते हैं कि सूरज से टकरा कर ये गुलदस्ता गिर जाता है और ईशा उसे उठाने जाती है। और जैसे ही वो ये फ्लावर पॉट उठाने जाती है, उसे सोफे के नीचे छुपी हुई कृति दिख जाती है। लेकिन इससे पहले कि ईशा सभी घर वालों को बताती, कृति ने ईशा को इशारा कर दिया कि वो किसी को कुछ ना बताए, और ईशा ने भी ऐसा ही किया।
1: अब तो यहाँ खड़ा खड़ा लड़ता ही रहेगा या ईशा के भैया से चाय बना के लाया।
2: मैं चला दुकान, भाई मेरा काम हो गया।

0: कृति का मकसद बहुत ही फनी है। तो बेसिकली हम यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए हैं, तो अभी हमारे घर में मतलब कुछ भी सेट वेट कुछ है नहीं, और सब ऐसे तैसे उलट पुलट पड़ा हुआ है। तो एक दिन हम रात में सो रहे होते हैं तो बहुत गर्मी लगती है, तो फिर मैं ऐसी इधर उधर चलती हूँ, तो मैं पानी पीने जाती हूँ, देखती हूँ कि सामने वाले घर की खिड़की खुली है, यानी सूरज और ईशा के घर की। तो मेरा खुराफाती दिमाग चलता है और मैं उनके घर में छुप के चली जाती हूँ। उसमें भी थोड़ा स्ट्रगल होता है कि ईशा आ जाती है, फिर कभी सूरज आ जाता है, तो मैं ऐसे छुपती हूँ और फिर मैं मस्त एसी की हवा खाने के लिए यहाँ पे आई हूँ।
1: कृति को तो बस मौका चाहिए यहाँ से भागने का। बाकी घर वाले तो यहाँ से चले गए, लेकिन इससे पहले कि कृति भाग पाती, सूरज चाय लेकर हाजिर हो गए। ऐसे में अब ईशा को सूरज को भटकाना है, इसीलिए कभी वो सूरज से कहती कि वो अपने हाथों से उसे चाय पिलाए, तो कभी सूरज ईशा को जोक सुनाने लगता। भाई इन्हीं सब में कृति को मौका ही नहीं मिल रहा इस घर से बाहर भागने का।
2: तुम्हें अपनी पति पर भरोसा नहीं है? तुम्हारे हाथ की बनी चाय तो पीने का मौका मिली, पर तुम्हारे हाथ से चाय पीने का मौका नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने हाथ से चाय पिला। हाँ सूरज, ये सब फिर तो ठीक है, पर तुम्हारी तो खराब है। अब पिलाओ ना चाय।

0: अरे ईशा जी, एक नया ऐप आया है मेरे पास जिसमें बहुत सारे जोक्स हैं। एक जोक सुनाओ, आपको सुनेंगे आप?
1: हाँ हाँ।
0: तो सुनिए, ओ सुबह सुबह अपने बच्चे को क्या कहता है?
1: क्या कहता है?
0: चलो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। अब उसी ऊंट को अगर अपनी पत्नी को सुबह सुबह जगाना होगा तो क्या बोलेंगे? नहीं है ना जवाब आपके पास? कुछ नहीं ईशा जी, क्योंकि दुनिया में किसी भी पति में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी पत्नी को जगा सके।
1: ये तो बहुत अच्छा
2: सब चीजों से भी जब बात नहीं बनी तो ईशा ने चलाया अपने रोमांस का जादू और देखिए मौका पाते ही कृति यहाँ से भाग गई।

0: मेरा जो कैरेक्टर है वो ऐसा नहीं है कि किसी से दोस्ती, हम बेसिकली चोर वी आर, तो हम लोग नए लोग हैं तो ऐसे नहीं कि किसी से दोस्ती वोस्ती किसी से नहीं बनाई है हमने. बट ईशा का स्वभाव अच्छा है हमारी तरफ, वो हमारे लिए खाना भी लेके आई थी. तो एक वो है कि वो आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है ना कि आपने एक दूसरे के लिए कुछ काम किया, तो ईशा हमारे लिए थोड़ा सेफ प्ले कर रही है कि चलो बच्ची है छोटी, सूरज का क्या है, सूरज तो थोड़ा चिल्ला देता है ऐसा कुछ. तो उस वे में ईशा मुझे सेव कर रही है. एंड फ्यूचर में अगर कोई बॉन्डिंग हुई तो क्या पता रियल लाइफ में हंसी आई कि मतलब कुछ भी लिखा है, मतलब वो कुछ भी जोक्स ही हैं, लिखा क्या है, मतलब जोक्स ही कुछ भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक एंड द मोमेंट वाले कुछ भी एप्स में दिखाए हुए जोक्स हैं. तो हाँ मतलब है फनी, बट मुझे तो टेंशन है ना कि मुझे तो बाहर निकलना है वरना वो दादा भाई बैंड बजा देगा.
1: भाई कृतिका तो कहना है कि उसके इरादे नेक है, वो तो बस एसी की हवा खाने आई थी. लेकिन क्या वाकई कृति एसी की हवा खाने आई थी या फिर चोरी करने, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये पड़ोसी करने वाले हैं बवाल, जो देखना होगा काफी दिलचस्प.
2: आपको क्या लगा कि ये पति ब्रह्मचारी आपके जाल में फंस जाए?
3: तो नहीं फंसते ना, मेरी मुझे बनाने की क्या जरूरत थी?
2: और आपको अपने ये पाल खोल के मुझे रिझाने की क्या जरूरत है?
1: मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
4: सीरियल तू ही रे में आ गया है बड़ा ट्विस्ट. जहां जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के बीच किसी को देख बुरी तरह घबरा गई है वृंदा, और वृंदा को परेशान देख स्वाति भी परेशान हो गई. आखिर वो है कौन जिसे देख परेशान है वृंदा? चलिए जानते हैं और चलते हैं सेट पर.

वृंदा की तबीयत। घर वाले हुए परेशान।

0: जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में मनाया जा रहा था जन्माष्टमी का त्योहार, लेकिन इस त्योहार के बीच वृंदा बुरी तरह से डर गई। ऐसे में स्वाति और बाकी के घर वाले वृंदा को कमरे में ले आए हैं। असल में वृंदा ने किसी को देख लिया है, जिस वजह से वो बुरी तरह से घबरा गई है। और यही बात बुआ जी जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वृंदा ने पूजा बीच में रुकवा कर ये सब कुछ किया।
1: क्या हुआ था तुझे? इतनी जोर से चीखी थी तुम, नीचे सब मजे से नंद गोपाल का जन्मोत्सव मना रहे थे, खुश थे, उसमें तुम्हारी ये चीख, पता है जान निकल गई थी सबकी, कैसे कैसे भाग के आए हैं सब लोग, नंद गोपाल को अकेले छोड़ के। अब तो बता, इतनी जोर से चीखी, कुछ तो देखा होगा।
0: डरी हुई वृंदा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। ऐसे में स्वाति वृंदा की ढाल बनकर आती है और बुआ जी से शांत रहने के लिए कहती है। इस बात पर बुआ जी स्वाति पर ही भड़क जाती है।
1: क्या देखा था वो?
0: खैर, स्वाति ने वृंदा को शांत किया और वृंदा थोड़ी नॉर्मल हो गई। ऐसे में स्वाति के साथ संजू की माँ भी है और साथ संजोग भी है। लेकिन आपको बता दें कि वृंदा दिनेश को देखकर डरी है। उसे पता चला है कि ये वही शख्स है जिसने उस पर हमला किया था और गहने लूटे थे, लेकिन ये बात वो घर वालों को बताना नहीं चाहती क्योंकि दिनेश परिवार का ही हिस्सा है और अगर वृंदा ने ये बात बता दी तो बवाल बढ़ जाएगा।

0: आप इनसे सीखिए, मुझे कौन सिखाएगा।
1: लेकिन इन सब तमाशों के बीच भी बुआ जी संजू की माँ को ताने मारने से चूक नहीं रही। वही दूसरी तरफ माधवी बन गई है जग्गा जासूस। देखिए वो पहुंच गई है इस गांव में और कर रही है किसी की तहकीकात। अब वो वृंदा है या कोई और, ये देखना तो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे वृंदा का सच सबके सामने आएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: सीरियल्स की दुनिया में जो ट्विस्ट आते हैं उससे कहानियां हो जाती हैं और भी ज्यादा मजेदार। तो चलिए देखते हैं कौन से सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट।

0: स्टार प्लस की सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में आज हो रही है रक्षित के भाई की हल्दी। ऐसे में पूरा परिवार खुशियों से झूम उठा है।
1: अरे भैया, आपको स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? आइए ना, किसका वेट कर रहे हैं?
2: अपने मौके का।
1: लगाओ भैया, शर्माओ मत।
2: नहीं शर्माएंगे।
1: अरे आओ लगाओ अच्छे से।
2: ये इस पौधे से क्या ही होगा।
3: अरे नहीं नहीं नहीं भैया, अरे अरे होली नहीं है भैया, हल्दी है हमारी।
1: अब तू बचेगा कैसे?
3: कौवा।
2: अरे कौवा और मुर्गा यहाँ है।
3: नहीं,
4: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नही

0: थे।
1: भाई लड़के वाले अब पहुंच गए हैं लड़की वालों के घर, जहां वो दुल्हनिया को लगाएंगे दूल्हे की झूठी हल्दी। ऐसे में उससे पहले देखिए कैसे देखने को मिल रहा है रक्षित और अपराजिता के बीच रोमांस, साथ ही साथ नुकझुक भी।
0: ये क्या है?
2: क्या है ये? क्या है?
0: क्या क्या है?
2: मुझे क्या पता क्या है? क्या दिखा रही हो? देखो मैं जानता हूँ हमारी शादी होने वाली है, पर इतना भी फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है ना, और शादी के बिना सब दिखाना ठीक नहीं है।
0: मैं फ्रैंक हूँ? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आपने मुझे ये गिफ्ट भेजा है, ऊपर से हिम्मत ये है कि बोल रहे हैं कि पहन के फोटो भेजो।
2: मैं तुम्हें ये गिफ्ट क्यों भेजूंगा? ये तो तुम्हारे साइज का भी नहीं है। आई नो, हो सकता है कि ये पार्सल ही गलत हो, क्योंकि ये पार्सल मैंने तुम्हें नहीं भेजा है।
0: पार्सल में नहीं है, आप गलत हैं। मुझे लगता था कि आप शरीफ हैं, मासूम हैं, लेकिन आप तो ये सब
2: और आता क्या है मुझे?

लिया था कल कैद में, पैतीस का तो बोरिंग रोमांस का मेरे अंदर की जनरेशन सी को जनरेशन अल्फा जनरेशन बीटा को रोमांस सिखा सकता हूँ। उसके बाद शादी हो जाना, उसके बाद रोमांस की रेल लगा दूंगा मैं। अकेले टेलर तो देख ही सकते होता हूँ।

0: ये क्या है?
1: जी मैं आपको नहीं जानना कि मैं क्या कर सकती
0: हूँ। क्या कर सकती हो?
1: कर सकते।
0: सॉरी सॉरी सॉरी।
1: आपको याद रखना चाहिए अपराजिता टुम्बा कुछ भी कर सकती है।
0: कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है तो तुम्हें अपने आप को ये पार्सल भेजाऊंगा।
2: क्या
0: क्या क्या है? क्या
2: मैं ये भेजूंगी खुद को?
0: क्यों नहीं?
2: तो समझ में नहीं आ रहा, एड्रेस घर का था तो पार्सल गलत कैसे हो सकता है?
0: गलत कैसे हो सकता है?
3: अनुपमा,
4: ये तो पैसों के लिए अपनी माँ को जेल तक दे सकता है।
5: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में फिर एक बार शुरू होने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि अनुपमा के सामने आ गई है तुषु की असलियत।
4: पुलिस स्टेशन जाएगा।
5: उससे पहले भी भाई आज घर में हो रहा है बहुत हंगामा, क्योंकि बापूजी ने अनुपमा के घर के सपने को पूरा करने के लिए अपने आशियाने को गिरवी रख दिया है, जिसके बाद बाप बेहद गुस्से में है।
6: घर बेचा नहीं जा रहा, गिरवी रखा जा रहा है।
4: अरे पर इस घर को अगर हम छुड़वा नहीं पाए तो छुड़ाने के पैसे कहाँ से आएंगे?
6: काम करेंगे।
4: अरे तो ये खुद भी तो काम करके पैसे कमा सकती है ना, और अपना घर बना सकती है, चाहे 2 साल बाद घर बनाए। और भी के अभी नया अपना घर बनाना है, ऐसा आग्रह क्यों है इसका?
7: सही कह रही है बाप, सही कह रही है।
4: अनुपमा, तेरा सपना मेरे सपने से बड़ा कैसे हो सकता है? तेरा घर बनने के लिए मेरा घर क्यों टूटे और तेरी खुशी के लिए हमारा चैन क्यों बर्बाद हो? और तू बराबर जानती है कि तेरे बापूजी ना तेरी बातों पे पिघल जाएंगे, तो तूने इन्हें रोका क्यों नहीं? और तू कितने सपने देखती है, साल में 12 सपने देखती है, और फिर वही नई उड़ान, नई राह, नया सफर। पर ये सब सपने और सफर पूरे करने के लिए ना हमारी जिंदगी बर्बाद होती है। तू एक काम कर, हम सबको ना यहाँ जेर दे दे और फिर निकल पड़ अपने नए सफर पे।
0: बाप इतना गुस्सा मत कीजिए।
4: तो क्या करूँ, कितना करूँ गुस्सा बता? वो इंटरनेट पे सर्च करके बता कि भाई जिसका घर टूट रहा हो, बर्बाद हो रहा ना, वो इतने प्रतिशत गुस्सा करे।
5: वही जहाँ एक तरफ शाह हाउस में अनुपमा के सपने को लेकर हंगामा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ये हंगामा कोठारी परिवार में भी हो रहा है, जहाँ मोटी बा परी को लताड़ रही हैं।
4: और हम अपनी मेहनत की कमाई दुश्मनों को खैरात में नहीं देते। जिनकी नियत ही मांगने की हो, उनकी हैसियत बढ़ जाए तो वो सोने चांदी के कटोरे में मांगना शुरू कर देते हैं।
0: मोटी बाबू, हमारी फैमिली है।
4: वो औरत हमारी कोई नहीं है।
0: वो परी की अनुमा है, परी आपकी बहू है।
4: तो फिर कह दे अपनी बीवी से, उनसे रिश्ता तोड़ ले।
3: महादेवन सन्स।
8: जब तुम्हारे माँ बाप को रज्जी और नर्मदा ने पकड़ा था, तब तुम हमारे सामने गिड़गिड़ा रही थी।
9: पहले आप हमें और हमारे परिवार को माफ करिए, वरना आज हम खून से अपना नाम साफ करेंगे।
8: तब हमने तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को माफ किया था।
5: कलर्स टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में भाई अब आशीष के सब्र का बांध टूट चुका है, तभी तो देखिए कैसे भाई आज वो मोगरा पर बरस पड़ा।
8: एक बेटे के तौर पे आज हम फेल हो चुके हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमारे पापा पर झूठे इल्जाम लग रहे थे और हम चुपचाप बैठे थे वहां पे।
9: आशीष जी, आप हमारी बात तो सुनिए।
8: नहीं सुनना, तुम सुनो। हमारे पापा ने कब तुम पर हाथ उठाया था, कब अत्याचार किया था, बताओ जरा।
9: आशीष जी, मुकदमे के दौरान इस तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं दबाव बनाने के लिए।
8: तो ठीक है, तुम ये केस अभी के अभी वापस लो। हम अपने फैमिली के खिलाफ अब केस नहीं लड़ेंगे।
10: ठीक है दामाद जी, ले लेंगे केस वापस, लेकिन फिर अभी तक की हुई सारी मेहनत पे पूरी तरीके से पानी फिर जाएगा। और घर वापस जाने की बात तो भूल ही जाइए।
8: अगर आप इस केस को वापस नहीं लेंगे तो हम खुद ये केस बंद करवा देंगे, और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।
10: पति बेलगाम हो रहा है तुम्हारा, तभी उसके अंदर का बेटा दुलत्ती मार रहा है। उसे काबू में रखो, वरना उसका ये परिवार प्रेम हमारे गले की हड्डी बन जाएगा।
5: भाई मोगरा बेहद कोशिश कर रही है कि वो आशीष को फिर एक बार अपनी बातों में फंसा सके, लेकिन इस बार आशीष ने ठान लिया है कि वो मोगरा का नहीं बल्कि अपने परिवार का साथ देगा।
9: कोशिश कर चुके हैं आपके परिवार वालों को कि हम ये केस समझौता करने के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन आपका परिवार ये बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आप खुद गए माफी मांगने के लिए, केस वापस करने का वादा करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, आपको खदेड़ दिया ना घर से बाहर, क्योंकि वो हमेशा से आपसे यही उम्मीद करते हैं कि वो किसी भी तरह से आपसे पेश आए, किसी भी तरह का बर्ताव करे, लेकिन आप हमेशा सहते रहे, क्योंकि वो लोग आपकी कीमत नहीं जानते। आशीष जी, अच्छा ठीक है, चलिए खाना खा लीजिए, आराम कर लीजिए थोड़ा, आज भले ही आपकी कीमत ना हो, लेकिन एक दिन आपके परिवार वाले जरूर समझेंगे, इसलिए ये केस जरूरी है आपको आपका हक दिलाने के। जब अगली पेशे में कोई लॉयर नहीं मिलेगा ना, तब इनको समझ में आएगा कि आपकी कीमत क्या है, तब होगा समझौता। चलिए अब ये अब तनाव छोड़िए, कल पेशी भी है।
8: ना ये जंग हमारी है, ना ये केस हमारा है, तुमने किया है और तुम ही संभालो।
3: ये फिदूर तेरा,
5: स्टार प्लस के सीरियल ये फितूर तेरा में भाई हो रही है सौम्या की सगाई, और देखिए कैसे झूम कर नाच रहा है जीत।
11: हमारे परिवार का एक बहुत बड़ा राज है जो हम सब लोगों ने आपसे छिपा कर रखा है।
12: कौन सा राज और किसके बारे में?
11: ये राज हमारी बिटिया सौम्या के बारे में, और ये राज ये है कि हमारी जो सौम्या बिटिया है ना, उसके साथ बचपन में

भाई सगाई में भी देखिए कैसे सौम्या के बड़े पापा उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। भाई वो कोई ना कोई मौका तलाश रहे हैं कि वो सौम्या को परेशान कर सके और उसकी ये सगाई टूट जाए।

0: उसकी पहचान।
1: समय पीछे खड़ी है, लगता समय से वो पीछे हट गई थी। हे कन्हैया, मेरा लाख लाख शुक्र।
2: वो आपकी कल वाली स्माइल काफी अच्छी थी। मेरी ना फोटोग्राफिक मेमोरी है, तो आप एक बार प्लीज मेरे लिए।
3: भाई फिर एक बार जीत ने सौम्या को बड़े पापा के कहर से बचा लिया है, लेकिन अब भी सौम्या घबराई और सहमी है। तभी तो अपने होने वाले मंगेतर से भी खुलकर बात नहीं कर पा रही है।
4: सौम्या थोड़ा ज्यादा ही शर्मीली है।
2: मुझे तो ऐसे लगता है कि जो लड़कियां दिल से स्माइल करती है ना, उनके घर का बिजली का बिल बहुत कम आता होगा, क्योंकि उनका घर तो उनकी स्माइल से ही ब्राइट हो जाता होगा। तो क्या आप एक बार मेरे लिए वो दुनिया को रोशन कर देने वाली, जगमग कर देने वाली स्माइल करेंगे प्लीज?

0: अपने वादा निभाया।
1: सीरियल मन सुंदर में रुचिता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस धृति मंगेशकर संग सास बहू और बेटियां की टीम ने किया एक स्पेशल वाला डे आउट, जहां हमने पहले की उनके घर की सैर और फिर किया धृति संग घर से सेट तक का सफर। तो चलिए चलते हैं धृति के घर पर और करते हैं उनके साथ इस मजेदार डे आउट की शुरुआत।

सीरियल हो या फिर हो रियल का व्यवहार, कूट कूट कर भरे हैं इनके अंदर संस्कार। कलाकार एक लेकिन कई किरदार, ये है दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर की रुचिता यानी कि ध्रुति मंगेशकर, जो जैसा किरदार निभा रही हैं रियल में उनका अंदाज भी बिल्कुल वैसा ही है, सीधी सादी भोली भाली, अपने मम्मी पापा की लाडली और बेहद संस्कारी।

0: सेट पर जाकर अपने किरदार में ढला। और खुशी से झूमना नाचना, शूटिंग में अपने लिए समय निकालना, यही तो है इनका डेली का रूटीन। ऐसे में आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है ध्रुति मंगेशकर के घर में, जहां पर ये दरवाजे पर बैठकर बना रही हैं रंगोली।
1: गुड मॉर्निंग सास और बेटिया। सो अभी मैं रंगोली बना रही हूँ सुबह सुबह, एंड आप भी यहाँ पहुँच गए हो सुबह सुबह। सो दिस इज द रंगोली, ट्राई तो करती हूँ मैं, बट मुझसे इतनी अच्छी बनती है नहीं। जो बनता है वो सिर्फ ऐसे नॉर्मल बन जाता है, बड़े से रंगोली मुझसे नहीं बनती क्योंकि वे नेल्स पर अटक जाते हैं, फिर वे डिजाइन कैसे भी बन जाते हैं, बट स्टिल आई ट्राई एंड देन ऐसे सब। तो अभी मैं ये मस्त सा फ्लावर बना रही हूँ यहाँ पे ऐसे दो दो, सो क्यूट सी डिज़ाइन बन जाएगी एक।

0: सुबह सुबह ये टेडी बेयर आ गया क्यूट सा गुनगुन के लिए. छोरी सी क्यूट है वो, तो उसके लिए हमने ये मंगाया क्योंकि कल उसने मुझे एक बहुत प्रिटी सा गिफ्ट किया था. सो प्रिटी सा गिफ्ट करा था तो उसको आज मैं चॉकलेट एंड ये क्यूट सा टेडी बेयर दूंगी. एंड यस, मैं आपको दिखाऊंगी उसे मुझे क्या गिफ्ट किया. सो दिस इज़ व्हाट शी गिफ्टेड मी. ये मेरी और उसकी पिक्चर है जो ऐसा 3D में करके दिया है. एंड इसके साथ उसने मुझे पेंट भी दिया था. सो इसको पेंट करना है. सो इट्स वेरी क्यूट. सो उसको मैं दूंगी ये क्यूट सा टेडी बेयर उसकी तरह.
1: भाई ध्रुति तो अपने दिन की शुरुआत रंगोली बनाने से करती है क्योंकि ये इनका शौक है और तो और साथ ही ये मल्टी टैलेंटेड भी है. ऐसे में आज ध्रुति न सिर्फ अपने घर की सैर कराएंगी बल्कि अपने मम्मी पापा से भी मिलाएंगी और अपना एक और नया टैलेंट भी दिखाएंगी.
0: सो अभी मेरी रंगोली फाइनली रेडी हो चुकी है. द टू फ्लावर्स विच आई मेड एंड परफेक्ट तो नहीं बनी है बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट कि अच्छे से बन पाए. तो इट इज़ रेडी. तो अभी मैं आपको होम टूर दिखाऊंगी मेरा. चलो लेट्स गो.

0: एक्चुअली मुझे स्पेक्स है तो मैं पहन लेती हूँ, वरना मेरी आंखें जलने लग जाती है. सो ये है हमारा डाइनिंग टेबल, एकदम छोटा सा बट बहुत प्यारा है. एंड हम ये यूजुअली यूज़ तो करते हैं नहीं, बट जब भी करते हैं तो बहुत कंफर्टेबल सा फील होता है. एंड यहाँ पे है हमारी पिक्चर, फैमिली पिक्चर. तो ये मेरे बचपन की पिक्चर है जब मैं फ़ोटोशूट किया करती थी. मस्त प्यारी सी पिक्चर जो हमने फ्रेम कर रखी है, बिकॉज ये मेरी फेवरेट है. देन दिस ये मेरे पेरेंट्स की पिक्चर है एंड ये है हम तीनों की पिक्चर. सो या ये हम गए थे शायद से इंडिया गेट पे. सो वहाँ पे हमने क्लिक की थी. सो ये मस्त ऐसा यहाँ पे फ्रेम कर रखा है, क्यूट सा डाइनिंग के बाजू में. एंड ये है मेरा फेवरेट, मेरी फेवरेट प्लेस, बिकॉज मैं जब भी कुछ भी लाइक टायर हो जाती हूँ या फिर बोर हो जाती हूँ तो मैं आके यहीं पे बैठती हूँ. बिकॉज आपको दिखाऊंगी कैसे, बिकॉज ऐसे सी दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल टू बी यहाँ पे बैठ के. मैं बस लेट के मैं फ़ोन देखती हूँ या फिर टीवी देखती हूँ कर्टन्स ऑफ करके, बिकॉज इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड इट्स अ वाइब टू ऐसा सिट हियर. सो इट्स माई फेवरेट प्लेस. एंड ये है मेरा स्टडी टेबल जहाँ पे बैठ के मैं पढ़ाई करती थी. एंड यहाँ पे मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था मेरे 10th स्टैंडर्ड में, बहुत दिन रात. आई यूज़ टू वेक अप एट 6 AM एंड मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई करती थी, तब जाके 86 आया था मुझे. सो ऐसे बहुत सारे कोट्स एंड ऑल लिखे थे मैंने यहाँ पे कि टू मोटिवेट माई सेल्फ टू स्टडी. सो ये है मेरा स्टडी टेबल. एंड यहाँ पे एक छोटू सा मंदिर है, ये पढ़ाई के लिए मंत्र है, ये भी सब भगवान जी का है. अम्बितमे नदीतमे देवीतमे सरस्वती अप्रशस्ता एव समसी परस्तति ममम नसकर्दी. वो मैं 10th स्टैंडर्ड में एग्ज़ाम्स देने के पहले पढ़ के जाती थी, जिससे मेरे पेपर्स बहुत इजी हुआ करते थे. एंड ये बस ऐसे ही मेरी ट्रॉफीज़ है जो मुझे मिले थे स्कूल टाइम्स में. एंड ये मेरा सबसे पहला ट्रॉफी है जो मुझे डांडिया में मिला था व्हेन आई वाज अ किड. बाकी तो मुझे स्कूल से मिले थे. एंड ये है मेरी दो फेवरेट बुक्स जो मैं बहुत पढ़ती थी बीच में, बिकॉज मुझे सस्पेंस एंड हॉरर बहुत पसंद है. अभी मैं आपको मिलाऊंगी मेरी मॉम से जो करंटली किचन में ब्रेकफास्ट बना रही है. सो यस दैट्स माय मॉम.
1: हाय.
0: यस सो अभी ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं पोहे. सो यहाँ पे सब चॉपिंग्स एंड ऑल कर रखे हैं मेरे मॉम ने. मैं बनाती हूँ खाना मस्त सा, बट मैं जैसे बनाती हूँ क्वालिटी उसके लिए टाइम भी उतार लेती हूँ. एक चीज़ बनाने में मुझे 1-2 घंटा लग जाता है, वो भी कम बोला मैंने, बिकॉज मैं जैसे टाइम लेती हूँ वैसे मैं बनाती भी हूँ. एक्चुअली अच्छा तो बनता है मेरे से. सो एंड यहाँ पे मिल्क वो रहा है, आई डोंट नो कॉफ़ी या पनीर के लिए. तो अभी मैं आपको मिलाऊँगी मेरे डैड से. लेट्स गो.
2: हाय, ये मेरी बेटी है रुचिता, जिसको आप जानते हो रुचिता नाम से, और उसका शो आप देख रहे हो. ऐसे ही आपका प्यार उसे रोज़ देते रहिए, उनका शो देखते रहिए दंगल टीवी पे रोज़ 8 बजे शाम. मतलब मुझे लोग ना उसके नाम से जानते हैं. कभी भी किधर कोई मिलता है ना तो आप द्रुति के डैडी हो क्या, ऐसे बोलते हैं, तो वो मुझे बहुत प्राउड फील होता है. और ये ऐसे आगे बढ़े और वो पढ़ाई के साथ साथ ये कर रही है, उसका मुझे बहुत मतलब प्राउड फील होता है, बिकॉज वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, वो दोनों बैलेंस करती है.
0: ओके सो अभी मैं आपको दिखाऊंगी हमारा बेडरूम. सो हॉल से जब बेडरूम में आते हैं तो बहुत डिफरेंट वाइब हो जाती है, क्योंकि पूरा कलर ही चेंज हो जाता है, आई डोंट नो. सो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये वो जगह है जहाँ पे मैं बैठ के रेडी हो जाती हूँ. ये तो मेरी सबसे फेवरेट जगह है, इधर ढेर सारे परफ्यूम्स दुनिया भर का सब आके रख दिया है. एंड मुझे रेडी होना, मुझे ड्रेसअप होना, मुझे बॉडी एसेंशियल्स मेकअप करना सब बहुत पसंद है. सो मैं यहाँ पे पूरा दिन भी बिता सकती हूँ, ये मेरी इतनी फेवरेट जगह है. मैं रेडी हो जाने के बाद यहाँ पे सेल्फीज लेती हूँ, बिकॉज

थोड़ी वो आदत सी है. सो या इट्स बाय सब मोस्ट फेवरेट थिंग टू डू. एंड ये है हमारी विंडो जिसका व्यू तो बहुत ही वो है, बट ये प्लांट्स मेरे मम्मी ने ग्रो किए हैं. She loves growing plants. Love you, zindagi. So, abhi hum plants ko water karenge jab tak hamara nashta ban raha hai. So, let's go and get some water.

मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी जो मैंने बनाए हैं फ्रॉम एयर ड्राई क्ले, एंड मुझे करना बहुत पसंद है. सो मुझे हेलो किटी बहुत पसंद है, लाइक माय पर्सनल फेवरेट. तो मेरे पास, अगर आप देखोगे, आई लव द कलर पिंक, एंड मेरे पास हर एक चीज़ पिंक कलर की होती है बिकॉज दैट्स माई फेवरेट कलर. सो एंड आई विल लव हेलो किटी. सो मैंने हेलो किटी का ये बनाया है, ये स्पेक्स होल्डर है. सो आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स. सो ये बस ऐसा स्पेक्स रखने के लिए. सो इट्स वेरी क्यूट. एंड नेक्स्ट है, ये एक घर है. सो ये बस घर नहीं है, इसका यूज़ ऐसा है कि जो वो रहता है, धूप रहती है, हम इसमें धूप को रख सकते हैं एंड इसको कवर करते हैं. तो जो धूप का वो जो स्मोक होता है वो यहाँ से आता है बाहर, इट्स कॉल्ड चिमनी या जो भी है. सो वहाँ से धूप का वो जो स्मोक आता है वो आता है बाहर. सो ये बहुत ट्रिटी लगता है. एंड ये इतना परफेक्ट बना नहीं है क्योंकि मैं बस ट्राई कर रही थी. सो इसमें बहुत सारे ब्रेक्स एंड ऑल हुआ है, बट मैंने बस ट्राई किया था एंड मुझे ये क्यूट लगा तो मैंने इसको रख दिया. एंड नेक्स्ट है ये हार्ट शेप्ड, ये इसमें तो बस ऐसे ज्वेलरीज या नेकलेस एंड ऑल रहता है, वो रख सकते हैं. एंड ये है लेमन लाइम, ये तो बस ऐसे ही मैंने किचन मैग्नेट, जो मैग्नेट लगाते हैं किचन पे, उसके लिए बनाया था. ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है. एंड ये है, ये तो बहुत मेरा पर्सनल फेवरेट है बिकॉज इसका जो शेड्स है, जो कलर एंड ऑल है, आई जस्ट लव इट. ये तो बस ऐसे ही रखने के लिए या फिर आई कैन कीप समथिंग, बट मेरा मन नहीं करता कुछ इसमें रखने बिकॉज ये बहुत प्रिटी दिखता है. सो आई एम लाइक जस्ट आई जस्ट कीप इट द वे इट इज. सो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी. हाँ, मुझे ना एक वो बनाना था कैमरा जैसा फ्रॉम ड्राई क्ले. सो इट्स लाइक अ कैमरा जिसमें हम अपनी फ़ोटो रख सकते हैं डाल के या. सो मुझे ऐसा बहुत पसंद है कि मैं ऐसे बनाऊँ एंड मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको, फैमिली, उनको सब गिफ्ट करूँ. सो मैंने, मेरा छोटू सा एक नीस नेफ्यू है, उसको मैंने क्यूट से ऐसे ही बना के दिए थे. उससे मुझे बोला था कि ही लव्स ऑरेंज कलर. सो उससे मुझे कहा था मुझे ऑरेंज कलर की कार, रेफ्रिजरेटर एंड एसी का रिमोट, वो सब बना के दो. तो मैंने उसको ऐसे टाइनी टाइनी से बना के दिए थे एंड ही लव्ड इट अ लॉट. सो ऐसे मुझे बना के देना बहुत पसंद है बिकॉज आई पर्सनली लव डूइंग ये चीज़. इट्स लाइक माई फेवरेट थिंग. सो या छोटी

भाई ध्रुति के कमरे की सैर तो हो गई, अब बारी है नाश्ते की। लेकिन नाश्ता बनने में थोड़ा सा समय है। ऐसे में ध्रुति ने न सिर्फ सास बहू और बेटियां के कैमरे के सामने अपने डांस का जलवा दिखाया, बल्कि सेट पर जाने के लिए अपना बैग पैक भी किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि वो अपने बैग में क्या क्या रखती हैं।

तो जब तक हमारे पोहे रेडी हो रहे हैं हम शूट के लिए बैग पैक कर लेते हैं क्योंकि हमें फिर से लेट नहीं होना है शूट पे. सो लेट्स गो एंड गेट माई बैग. सो आई विल शो यू व्हाट ऑल आई कीप इन इट.

सो अब हम जल्दी जल्दी से हमारी बैग पैक कर लेते हैं. सो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट हेडफोन्स, बिकॉज मुझे जाते वक्त गाने सुनना बहुत पसंद है. उसके सिवा अगर मैं गाने सुने बिना चली गई तो मेरा मूड बहुत ख़राब सा हो जाता है, बिकॉज म्यूज़िक हील्स समथिंग इन. सो नेक्स्ट अब हम रखेंगे ये पाउच जिसके अंदर सारे ओके जिसके अंदर ब्रशेज एंड ऑल है. सो ब्रशेज एंड सब वो सब है. सो ये भी पिंक है. नेक्स्ट अब हम रखेंगे बॉडी एसेंशियल्स, क्रीम, परफ्यूम, क्रीम, देन मॉइस्चराइजर, परफ्यूम, मिस्ट मिस्ट, देन ये है हेयर केयर का, देन ये है मेरी कैप, क्यूट सी पिंक कलर की, अगेन पिंक कलर. देन ये है हेयरबैंड जो मैं कभी कभी मेकअप करते वक्त लगाती हूँ. नेक्स्ट मैं रखूँगी वैक्स स्ट्रिप्स, बिकॉज कभी कभार लग जाते हैं मुझे अर्जेंटली, तो वो. एंड ये है बॉडी ऑयल जो बहुत मस्त स्मेल करता है. एंड ये है मेरी क्यूट सी पर्स जिसमें सब कॉइन्स रखती हूँ. नेक्स्ट है ऊनो कार्ड्स जो अगर मुझे बोर हो गया तो मैं खेल सकती हूँ. ये तो मैं आज पहली बार लेके जा रही हूँ. मुझे रोज़ रहता है कि मैं ऊनो लेके जाऊँ बट याद नहीं रहता, अभी याद दिख गया. सो ये वेरी स्पेशल ऊनो कार्ड्स है बिकॉज़ ये हेलो किटी के है, सी. सो आई लव देम एंड मैं आपको अंदर से दिखाऊँगी, ये बहुत प्रिटी है, सी. ऐसे है एंड ईच कार्ड इज लाइक दिस, इट्स वेरी प्रिटी. सो I can't say how much I love the color pink and Hello Kitty, everything. So it's like my most favorite thing. So ये है मेरा tumbler, again pink color, and ये मेरा favorite है because मैं इसमें से अपना water intake complete करती हूँ जो आजकल हो नहीं रहा है, बट जब मैं घर पे रहा करती थी तब मैं इसको दो बार पिया करती थी ये फुल टम्बलर का. सो आई यूज़ टू बी वेरी गुड गर्ल हु यूज़ टू ड्रिंक लोड्स एंड लोड्स ऑफ वाटर. एंड ये है स्कार्फ जो हम यूज़ करते हैं कभी कभी रिक्शा में, बिकॉज बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है फेस पे. एंड ये है एक बहुत क्यूट सा, ये मैं कीचेन था मेरा बट इस पर ना वाइट कलर के बीड्स थे जो टूट गए. सो आई शो यू वॉट इट इज़. सो इट इज़ अ मिरर, लाइक ये बाहर से लगता है कि फ़ोन है बट जब आप ओपन करोगे सो ये मिरर है. सो एक 2x लाइक एक छोटू सा है एंड एक वाइड दिखता है. सो ये बहुत क्यूट सा है. सो ये भी हम रखेंगे. एंड ये है मेरी फेवरेट कुरोमी, आई लव हर सो मच, शी सो क्यूट. सो ये मुझे बहुत पसंद है बिकॉज आई डोंट नो, शी इज़ वेरी क्यूट. सो मुझे कुरोमी एंड हेलो किटी एंड मेलोडी ये तीन चीज़ें बहुत पसंद है. आई स्टिल वॉच उनका कार्टून ऑन यूट्यूब बिकॉज इट्स वेरी क्यूट. एंड हैंकी रखेंगे. एंड ये है न्यू लिप बाम जो माई डैड गॉट मी. लिपस्टिक्स इतने नहीं पसंद है बट लिप बाम, लिप ग्लॉसेस, लिप ऑयल्स बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड ये मैं नेल पेंट कैरी कर रही हूँ बिकॉज ये जो मैंने लगाई है करेंटली ये हट गई है. इस पर सब मेहंदी, मार्कर, आलता सब लग चुका है जो सीन्स में लगता है. सो अभी मुझे इसको निकाल के फिर से नया लगाना पड़ेगा. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा फ़ोन जो मैं कभी भूल नहीं सकती. सो अभी हमारी बैग जो है पैक हो चुकी है. अब हम चेक करते हैं कि हमारे पोहे और कॉफ़ी रेडी है या नहीं. ओ वाओ, सो आर पोहा इज रेडी एंड मुझे अब बहुत भूख लग रही है ज़ोर से. सो अभी हम बनाएंगे कॉफ़ी. वी जस्ट पुट द कॉफ़ी. अब हम डालेंगे शुगर जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है बिकॉज बहुत अनहेल्दी होता है. मैंने कट कर दिया शुगर इसलिए मुझे बड़ा मज़ा आता है फ्लेक्स करने में, शुगर नहीं लेती. सो यस, अब हम इसको करेंगे मिक्सी. सो आ कॉफ़ी इज़ रेडी. अब मैं सर्व करती हूँ पोहा. मुझे पोहा बहुत पसंद है ब्रेकफास्ट के लिए बिकॉज बहुत यम होता है. एंड आई लव पोहा विथ पटेटोज, आई लव द टेस्ट.

0: खैर, ध्रुति ने फटाफट अपना ब्रेकफास्ट किया और अब बारी है काम पर जाने की। लेकिन जाने से पहले ये साईं बाबा का आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलती, क्योंकि साईं बाबा से इनके बचपन का नाता जो है, क्योंकि ये मेरे साईं की झिपरी जो थी।
1: सो गाइस, अभी ब्रेकफास्ट हो चुका है, सब हो चुका है। अभी हम शूट के लिए निकलते हैं। निकलने से पहले हम भगवान के दर्शन लेंगे, साईं बाबा के और एवरी गॉड के, बिकॉज ऑफ देम एवरीथिंग इज पॉसिबल।

सो मैं साईं बाबा पे बहुत बचपन से बिलीव कर रही हूँ, बिकॉज मैंने बचपन में ही उनका शो किया था जो उनकी प्यारी झिपरी थी छोटी सी. सो मैंने उसका रोल किया था एंड तब से मैं साईं बाबा पे बहुत बिलीव कर रही हूँ आज तक. एंड आई एक्चुअली लाइक यू नो हैव फेथ ओवर ऑल द गॉड्स, बट ही इज़ वेरी स्पेशल टू माई हार्ट बिकॉज मैंने बचपन में उनका शो किया था एंड बहुत प्यारा शो था. मेरा फर्स्ट शो था जो सोनी पे आता था मेरे साई, एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया था वो शूट करते हुए बिकॉज बहुत मज़े आते थे. मेरे साथ बहुत और बच्चे हुआ करते थे, सो हम पूरा दिन सेट पे घूमा करते थे, खेलते थे, कूदते थे. सो वो मेमोरीज़ आज तक मुझे बहुत याद आती है. एनीवेज अब हम निकलते हैं सेट के लिए बिकॉज हमें लेट नहीं होना है फिर से. सो लेट्स गो एंड सी यू इन द कैब.

0: ध्रुति तैयार होकर निकल चुकी हैं। इनकी गाड़ी भी आ गई। गाड़ी में सवार होकर इन्होंने न सिर्फ सफर तय किया बल्कि पहुंच गए अपने सीरियल मन सुंदर के सेट पर, और पहुंचते के साथ ही इन्होंने अपनी हाजिरी लगाई और हाजिरी लगाते ही पहुंच गई अपने मेकअप रूम में। मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। अपने किरदार में ढलने के लिए, और किरदार में ढलने के लिए सबसे पहले इन्होंने किया है चेंज, क्योंकि ये पहले चेंज करती हैं और फिर होता है इनका मेकअप।
1: सो अभी मैंने रेडी हो चुकी हूँ शादी वाले आउटफिट में, एंड अभी हम करेंगे मेकअप। एंड ये है अजय भैया, बोलो हाय।
2: हाय।
1: ये बहुत क्या बोलो क्या कुछ नहीं यार, मैं कुछ बहुत अच्छे भैया ऐसा मस्त क्रेजी मेकअप करते हैं, मुझे गोरा गोरा बना दे। और ये है प्रिया दीदी जो रोज चेंज कराती है। रेडी होंगे मेकअप का।

0: background usually in a moisturizer like that. This only skin a TC later.
1: बिल्कुल सही कहा, मेकअप से पहले स्किन को प्रेप करना बहुत जरूरी है ताकि मेकअप आपकी स्किन को नुकसान ना पहुंचा सके। खैर, स्किन को मॉइस्चराइज करने के बाद बारी आती है मेकअप की। ऐसे में मेकअप दादा ने ध्रुति का मेकअप करना शुरू किया। सबसे पहले लगाया गया इनके चेहरे पर बेस, जो स्किन को करता है इवन टोन, और ये बेस सारे डार्क स्पॉट्स को छिपा देता है जो कैमरे में भी नजर नहीं आते।

बेस को अच्छे से मर्ज करने के बाद बारी आती है आंखों को चमकाने की। ऐसे में सबसे पहले आई शेडो लगाया गया, फिर आंखों को निखारा गया, साथ ही साथ हुई ध्रुति की हेयर स्टाइलिंग भी, क्योंकि कैमरा रोल होने वाला है और कैमरा रोल करने से पहले ध्रुति को अपने किरदार यानी रुचिता के अंदाज में ढलना भी है।

आंखों में गजरा लगाकर, बालों में गजरा सजाकर और सारी ज्वेलरीज पहनकर रुचिता तैयार है अपनी बहन जानवी की शादी में अपना जलवा दिखाने के लिए।

0: सो फाइनली अभी मैं रचिता के लुक में रेडी हूँ. नो नॉट टोटली, अभी तो रचिता बाकी है. सो नाउ आई एम रचिता फाइनली. ये प्यारा सा लहंगा पहन के आई एम फाइनली रेडी विद दीज प्रिटी बैंगल्स. सो अभी मेरा हेयर ये अच्छा सा विद गजरा एंड मेरा प्यारा सा मेकअप जो है वो फाइनली हो चुका है. तो अभी हम सीन के लिए रेडी हैं.
1: भाई सीन में जाने से पहले शरीर में एनर्जी लाना बनता है और ये एनर्जी ध्रुति को मिलती है डांस से, और रुचिता उसे भी डांस से बेहद लगाव है. ऐसे में रुचिता के अंदाज में ढलकर ध्रुति ने जमकर ठुमके लगाए और फिर वो चली गई अपने शूट के लिए.

अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ. सो अभी हम जा रहे हैं बैलेंस का जो भी बैलेंस बचा है सीन्स वो शूट करने. सो लेट्स गो. क्योंकि एक्चुअली अभी मैं अकेली हूँ सेट पे, कोई आया नहीं है क्योंकि सबका कॉल टाइम लेट है और मेरा थोड़ा जल्दी था क्योंकि बैलेंस बचा था. सो अभी लेट्स गो टू द सेट टू शूट फाइनली.

0: सीन एंड अभी आई एम फाइनली बैक. सो आज हमने सुबह से मेरे घर से सेट तक का मेरा जो सफ़र था, जो रूट था, जो भी मैं करती हूँ, वो सब हमने देखा. एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट. हमने मेरा होम टूर दिया, देन आज हम ऑटो से आए, देन आज मैंने मेरे मम्मी पापा से मिलाया आपको. एंड आज बहुत मज़े आए मुझे तो. एंड गॉड से लाइक साईं बाबा एंड सारा हमारा मंदिर दिखाया आपको. एंड येस, इट वॉज वेरी मच फन. एंड आई होप आपको भी मज़ा आया देख के. एंड मेरा कैरेक्टर रुचिता को आप ढेर सारा प्यार देते रहे, सपोर्ट देते रहे.
1: No desvíes la mirada. Quédate cerca de mí. खैर, रुचिता से हम लेते हैं विदा क्योंकि अब इनके काम का समय हो गया है. उम्मीद करते हैं कि सास बहू और बेटियां के जरिए आपको धृति के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.

0: jamás podré.
1: गणेश उत्सव के बीच भेष बदल घर में घुसी अवंतिका, लेकिन आरंभी के रहते अवंतिका अपने इरादों में कामयाब हो जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? जिसके बाद होती है आरंभी और अवंतिका के बीच बहस, आखिर क्या है अवंतिका के इरादे, चलिए जानते हैं।

गणेशोत्सव पर आएगा ट्विस्ट। कलर्स टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में मनाया जा रहा है गणेशोत्सव। ऐसे में घर में चल रही हैं त्योहार की तैयारियां, लेकिन फिलहाल आरंभी घर पर नहीं है और इसी बात का फायदा उठाकर बहरूपिया बन पहुंच गई है घर में अवंतिका। और देखिए कैसे अवंतिका दाढ़ी मूछ लगाकर पगड़ी पहनकर यहाँ पहुंची है कुछ षड्यंत्र रचने के लिए। असल में अवंतिका के हाथ एक पैम्पलेट लगा है जिसकी हेरा फेरी वो कर रही है टंडन परिवार में अपना नाम शामिल करने के लिए।

0: ये हेरा फेरी कर अवंतिका जा ही रही होती है कि वो नंदिता से टकरा जाती है। नंदिता अवंतिका का पर्दाफाश करने ही वाली होती है कि उसे बुलावा आ जाता है। हालांकि नंदिता पहचानती भी नहीं है कि ये भेष बदल कर कोई आदमी नहीं बल्कि अवंतिका ही है।
1: इसलिए गणपति जी की तैयारियां चल रही हैं। गणपति जी आने वाले हैं हमारे घर पे, तो यू कैन सी वेरी वेल डेकोरेटेड हाउस और सब लोग बहुत खुश है, हड़बड़ी में है। और अवंतिका आई है बहरूपिया बन के, जो नंदिता को नहीं पता है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। तो अवंतिका आई है, शी हैज़ सम प्लान इन हर माइंड, बट वो तो दर्शकों को देखने के बाद ही पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली प्लान है क्या। बस हाँ, मैं इतना बता सकती हूँ कि टंडन्स का जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स हर, मतलब वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं टंडन परिवार का हिस्सा होने की, उनके नज़दीक आने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पा रही है। तो इस बात से कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेटेड है अभी, और बस चाल पे चाल चले जा रही है। सो वी कैन से उन्हीं चालों में से ये एक चाल है उसकी, क्योंकि मीडिया आएगी, टंडन्स के घर का गणपति है तो मीडिया आएगी कवर करने, तो बस वो एक्सपोज करना चाहती हैं थोड़ा बहुत टंडन्स को, तो बस उसी का प्लानिंग चल रहा है। नंदिता अब ऑलरेडी क्या है ना, नंदिता लेट हो गई है, और आपको तो पता ही है नंदिता को हर बात की कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। अब रेडी भी होना है, गणपति जी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी डर है नंदिता को कि डिंपल भाभी डांट ना दे कि इतनी देर लगा दी, और इसमें ये कोई बंदा आके मुझे टकरा जाता है, टाइम वेस्ट किए जा रहा है, तो बस वो इरिटेट हो जाती है।
0: वैसे इन सब बातों से बेखबर आरम भी हॉस्पिटल में है ध्रुव की दादी के साथ। दादी की फ्रेंड का कर रही है इलाज।
2: क्या होता है ना कि अच्छे लोगों को अच्छे लोगों का साथ मिले ना तो जीवन और अच्छा हो जाता है।
3: मेरी बात सही है, लेकिन वो शादी के लिए हाँ करे तब ना, उसके भी लगते कम थोड़े ना है।
2: क्यों, उसकी जिंदगी कोई बात है?
3: तू बताता कहाँ है आलम भी? अब तो तेरी डीसी से अच्छी दोस्ती हो गई है, तुझसे कुछ कहा क्या कभी? उसकी लाइफ में कोई है क्या?
2: मुझे ना सिर्फ एक बात बताऊंगी कि वो अपनी लाइफ में कभी कुछ सीरियसली लेते ही नहीं है, सिर्फ मजेदारी करवा रहे हैं।
0: वैसे अवंतिका के साथ साथ कोई और भी है जो इस त्योहार पर कुछ प्लान कर रहा है। अवंतिका के तो काले इरादे हैं, लेकिन ध्रुव के नहीं। ध्रुव ही है जो कर रहा है कुछ प्लानिंग जो दादी को पता है, तभी तो दादी वीडियो कॉल पर बातें करती है। और देखिए कैसे ध्रुव की बातों से दादी के आंसू बह गए। लेकिन तभी वहाँ आरंभी पहुँच जाती है और ध्रुव बातों को घुमा देता है और आरंभी को सच का पता नहीं लगता है।
4: तू अपने मकसद के बहुत करीब है और पापा के आशीर्वाद से सब अच्छा हो।
2: आगे का प्लान क्या है?
5: क्या डॉक्टर आरंभी ने आपको ऐसा बोला? आरंभी तुमने झूठ क्यों बोला दादी से कि आया वो गर्लफ्रेंड?
2: नौटंकी करेंगे तो कभी गर्लफ्रेंड बनेगी भी नहीं। आपकी नौटंकी को संभालने के लिए भी तो कोई स्पेशल लड़की होनी चाहिए।
0: खैर, अपना काम खत्म कर आरंभी पहुंच गई है त्योहार में शामिल होने के लिए, और देखिए कैसे आज वो सजी धजी है, साड़ी पहनी है और पहनी है ये नथनी। भाई गणेशोत्सव है, ऐसे में सजना धजना तो बनता है। लेकिन आरंभी अवंतिका को पकड़ लेती है। अवंतिका भाग रही होती है कि उसका सामना आरंभी से हो जाता है, और फिर क्या, दोनों सौतनों में बहस छिड़ जाती है, क्योंकि आरंभी अवंतिका के हाथ में वो पैम्पलेट भी देख लेती है और उसे खूब खरी खोटी भी सुनाती है।
2: विश्वास के अफेयर के बारे में कम प्यार के बारे में बताओ।
0: इतना ही नहीं, आरंभी ने तो अवंतिका के सामने ही ये पैम्पलेट फाड़ दिया और दे दिया उसे चैलेंज कि वो उसके परिवार को उससे नहीं छीन सकती है। भाई इस गणेशोत्सव के त्योहार में कई राज खुलने वाले हैं, अतीत के पन्ने खुलेंगे और सच सामने आएगा जो देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
6: टीवी के सीरियल जगधात्री में आया है बड़ा ट्विस्ट, जहां रुद्र की मौत के कारण जगधात्री जेल में है और शिवाय चाहकर भी जगधात्री की मदद नहीं कर सकता है। एक तरफ जहां सीरियल में टेंशन का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ सीरियल ने पूरे कर लिए हैं 300 एपिसोड। तो चलते हैं जगधात्री के सेट पर।
7: प्यार

0: मायावी हुई जगधात्री के खिलाफ।
1: दे दे कोई जान भी अगर दिल भर पे हो न, दिल भर पे हो न कोई असर।
0: जी टीवी के सीरियल जगधात्री में जगधात्री सलाखों के पीछे पहुंच गई है। उस पर रुद्र के कत्ल का इल्जाम लग गया है और दौर शिवाय भी उससे मिलने आया है। जगधात्री को लगता है कि शिवाय फिर से उसका साथ देगा, इसलिए देखिए कैसे जगधात्री उसे सामने देकर अंदर ही अंदर खुश तो होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि शिवाय का दिल उसे लूटने लगा है। और ये उसे तब पता चला जब शिवाय ने अपने हाथ जगधात्री से दूर कर लिए, वो भी उस वक्त जिस वक्त जगधात्री अपना हाल दिल शिवाय को बता रही थी कि वो भी उससे प्यार करती है। लेकिन अब शिवाय को लगता है कि जगधात्री सिर्फ और सिर्फ उससे झूठ बोल रही है। ऐसे में ये सुनकर जगधात्री हैरान है।
2: मुझे लगा कि हमेशा की तरह इस तुम तो मुझे समझोगे, और एक सेकंड, तुम ही ने तो मुझे वो फोटोज दिए थे।
3: हाँ दिए, क्योंकि भरोसा क्या है, प्रोटोकॉल तोड़ के भरोसा मैंने तुम्हें दिया, क्योंकि एक मौका था इसे, वो फोटोज वो फाइल्स वो सब कुछ मैंने तुम्हें, मुझे लगा शायद तुम्हें मुझे कुछ दिख जाएगा, कुछ ऐसा दिख जाएगा जो हमें ना फोटो सीख वो उसमें भी ना मैं देख पाया, शायद तुम कुछ ऐसा देख पाए फिर भी कुछ।
0: आज शिवाय की जितनी भी बातें हैं उसे सुनकर जगधात्री हैरान है और तो और उसका दिल छलनी छलनी हो रहा है। इतना ही नहीं, जगधात्री को लगता है कि शिवाय को यकीन हो चला है कि रुद्र का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि जगधात्री ने ही किया है।
2: मैं लगता है कि मैं इस हद तक मुझे
3: लगता है तुम्हारा ये जो ऑब्सेशन अपनी आई के कातिल को ढूंढने का, अपनी आई को बेगुनाह साबित करने का, एम को ढूंढने का, ये तुम्हें किसी भी हद तक ले जा सकता है। पता है बहुत सच क्या है, सच ये है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक देश हूँ, पर तुम्हारा पूरा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार के अगेंस्ट है, पहले पापा अब रुद्र उसके बाद मैं।
2: क्या कह रहे हो तुम?
3: मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रही हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा अगर तुम्हें मेरी फैमिली के खिलाफ कुछ भी मिले तो आओ तुम मेरे साथ बैठ के बात करो, अगर तुम्हें मेरे परिवार के खिलाफ कुछ भी मिले तो एक बार मुझे बताना, पर नहीं, तुमने एग्जैक्टली वही किया जो तुम्हें सही लगा। उसका रिजल्ट क्या तो देख लिया था, तो चलो बस और मुझे बताओ कि सबके पीछे तुम्हारा मोटिव बदला देने के लिए क्या, अपनी आई की मौत का बदला देने। अरे ये बात तो मैं भूल ही गया, यस साधु सर ने कहा था कि तुम्हारे आई की मौत के कारण देशभक्त परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, तो तुम्हारी नजरों में पूरा देशभक्त परिवार तुम्हारा दुश्मन है, तो मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हारे बदले की आग इस कदर बढ़ चुकी है ना कि जब तक तुम सबको मार नहीं देती जब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए वो सदिया बना जिसके थ्रू तुम इस परिवार में इजीली घुस सकते, असली मास्टर प्लान तो ये।
0: सिर्फ एक ही था जो हमेशा जगधात्री के साथ खड़ा रहता था, लेकिन आज वो भी जगधात्री के खिलाफ हो गया है। ऐसे में जगधात्री अकेली पड़ती जा रही है। इसी बीच जेल में जानवी भी उससे मिलने आ जाती है। उसे देखकर जगधात्री को लगता है कि वो उसका साथ देगी, इसलिए जगधात्री उसे सब सच बताने की कोशिश करती है। लेकिन जानवी का रवैया देखकर जगधात्री हैरान है, क्योंकि कहीं ना कहीं जानवी भी अब जगधात्री का साथ देना नहीं चाहती। वो तो चाहती है कि जगधात्री हमेशा ही सलाखों के पीछे रहे।
2: नहीं किया है और आपको भी पता है मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। खूबसूरत जिंदा राइट कि रुद्रा इस पिक्चर में आया कैसे तुम्हारी इमोशंस देखकर
0: बेचारी जगधात्री एक एक कर उसे हार मिल रही है क्योंकि अब तो जानवी ने भी साफ साफ कह दिया है कि जेल में ही वो रहेगी। बस फिर क्या, ये सब जानकर अब जगधात्री वाकई हारने लगी है। इतना ही नहीं, अब तो जो माया जगधात्री का साथ देती थी वो भी कहीं ना कहीं जगधात्री के खिलाफ होती जा रही है। तभी तो देखिए कैसे शिवाय को जैसे ही न्यूज़पेपर मिला जिसमें जगधात्री के खिलाफ लिखा हुआ था, वो वही न्यूज़पेपर लेकर पहुंच गया अपनी बहन माया के पास और ये बताने के लिए कि शिशि ने जो लिखा है वो गलत लिखा है। लेकिन माया ने भी शिवाय को बता दिया कि ये हेडलाइंस सृष्टि ने नहीं बल्कि उसने खुद ने दी है।
2: उसने हमारे घर के बेटे को हमसे छीन लिया, तो तुम ही बताओ ऐसे इंसान के साथ हम और क्या करें। Tell me.
3: देखिए मायावती, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसे सीधा उल्टी कर बोल देना ये तो सही नहीं है। और वैसे भी जगधात्री सिर्फ इस घर में मेरे लिए आई थी मायावती, ताकि मेरा अपना परिवार मुझे अपना सके। आपको लग रहा है कि उसने ये सब पैसों के लिए किया है? नहीं भाई,
2: शायद तुम पैसों की ताकत जानते नहीं हो, इसलिए तो मैं उसे पैसा है नहीं, नाम पोजीशन स्टेटस इन सब की ज्यादा चाहे उसे तुमसे इस ज्यादा। गलत सही मैं नहीं जानती हूँ शिवाय, मैं नहीं जानती हूँ कि सही क्या है गलत क्या है। मैं बस इतना जानती हूँ कि जगधात्री की वजह से मैंने अपना भाई खोया है और इसीलिए उसके साथ मैं जो भी करूँ सो कम है। तुम भी मत बोलो कि रुद्र तुम्हारा भी भाई है, इसीलिए स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ देशमुख, स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ देशमुख।
0: भाई माया ने जिस तरीके से शिवाय को अपनी बात बताई है उस हिसाब से कहीं ना कहीं शिवाय को माया की बातों पर यकीन होने लगा है। अब देखना होगा कि शिवाय का प्यार हार जाएगा, क्या जगधात्री से उसका विश्वास टूट जाएगा। खैर ये तो सीरियल की कहानी है। आज तो सेट पर सेलिब्रेशन का माहौल भी बन गया है क्योंकि सीरियल ने पूरे कर लिए हैं 300 एपिसोड। ऐसे में आज सेट पर सभी मौजूद हैं और पूरी कास्ट एंड क्रू मिलकर केक काट रही है, एक दूसरे का मुंह मीठा कर रही है और दे रही है एक दूसरे को बधाइयां। उम्मीद करते हैं कि सीरियल में आने वाले ट्विस्ट दर्शकों को इसी तरह बांध कर रखें। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल।
1: जनहित में जारी जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप वो फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आके नाचे गाए।
2: तो आपको दिखाते हैं मनोरंजन की दुनिया की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो हम खास आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आपके चेहरे पर भी आ जाएगी एक हल्की सी मुस्कान। तो पेश है आज की रॉकिंग खबरें।
3: बच्चा बोल दिया,
4: बस कर बस।
3: मैं बच्ची लगती हूँ, मेरा दिमाग आपसे शार्प होगा।
5: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं बिग बॉस सीजन 20 की। भाई आते ही घर में बवाल शुरू हो गया है और इस बार बवाल मचाया है अरिशवा खान ने। देखिए कैसे वो लड़ रही है।
3: उन्होंने मुझे बच्चा बोल दिया,
4: बस कर बस।
3: मैं बच्ची लगती हूँ, मेरा दिमाग आपसे शार्प होगा।
4: इतनी सी बात लेके बैठती नहीं अगर तेरा दिमाग शार्प है। यार कट रही है, रील कट रही है,
6: बस रील कटवाने की जरूरत नहीं है, मेरी रील यूं ही कटती है।
4: हाथ लगाने नहीं,
6: हाथ नहीं,
4: आज
6: उंगली मार दी। तो हिपोक्रेट लोग हैं।
7: कहां हिपोक्रेट?
6: आपको बोला
4: संस्कार भी क्या करे, मैं हिपोक्रेट हूँ तो तू बच्ची है। चल
5: इसी के साथ बिग बॉस के सेट से खबर आ रही है कि फरहाना भट्ट और मुनावर फारूकी करेंगे शो में स्पेशल एंट्री, यानी कि कई और धमाके बिग बॉस के सीजन में होने बाकी हैं।

परिणीति फेम एक्ट्रेस तन्वी डोगरा ने कर ली है सगाई अपने बॉयफ्रेंड और एक्टर चिवाश चड्ढा से। ऐसे में तन्वी ने शेयर की है अपनी सगाई की ये तस्वीरें। आप भी डाल लीजिए इन पर एक नज़र।

0: द ट्रेटर्स का ये सीजन जीत चुकी है क्रिस्टल डिसूजा। ऐसे में क्रिस्टल के फ्रेंड्स ने उन्हें दिया है ये प्यारा सा सरप्राइज, जिसे देखकर क्रिस्टल हो गई हैं काफी इमोशनल।
1: ओके क्रिस्टल,
2: वजह से कुछ ना कुछ तो नया होगा, सो जस्ट आप लोगों को पता है ना।
0: भाई गौरव खन्ना ने ये खुद कहा है कि जल्द ही वो नजर आने वाले हैं एक नए सीरियल में। भाई रियलिटी शोज में तो वो अपना कमाल दिखा चुके हैं और फिक्शन के स्टार तो हैं ही, और अब वो करने वाले हैं सीरियल्स में अपना कमबैक।
2: तो जो भी नया आएगा उसको सपोर्ट करिएगा, क्योंकि कुछ तो नया आएगा। थैंक यू। बस अपने टीवी की डायरेक्शन में।
3: डू नॉट पैनिक, आराम से।
4: ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक गलती करना मतलब किसी की जान चले जाना।
5: साइंस मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो प्रोटोकॉल या इंसानियत।
6: सारे डिस्चार्ज पेपर साइन करवा लिया, अगर किसी ने सवाल उठाया
7: तो अक्षत का नाम सामने आएगा।
0: आ गया है हार्ट बीट सीजन 2, जिसमें नजर आ रही हैं शिवांगी जोशी। देख लीजिए इसकी खास झलक।
8: सपने अब डर से नहीं टूटते, हार मानने से टूटते हैं।
9: सांझ, मेरे और सांझ के बीच में जो कोई है ना, सब रियल है, सो बैक ऑफ।
10: एक रिकॉर्डिंग और आपके पूरे करियर का दी एंड।
0: सुनने में आ रहा है कि स्टार प्लस का सीरियल सैराब जल्द ही ऑफ एयर होने जा रहा है, और साथ ही होगी शो की हैप्पी एंडिंग। लेकिन अब तक इस खबर पर कोई कंफर्मेशन नहीं है।

0: इंडियन गेम शो के सेट के बाहर नजर आए भारती हर्ष और साथ है उनका काजू। साथ ही नजर आए कई और सितारे जैसे कि जन्नत जुबैर, प्रिंस युविका, मनीषा रानी, सोंदोस जो तैयार हैं खेल खेलने के लिए। के साथ नजर डाल लीजिए इंडियन गेम शो के इस नए प्रोमो पर, जहां पर खेल के साथ साथ है मस्ती अनलिमिटेड।
1: अगर तुम ना आती ना तो आज छोटे छोटे मार्केट में बल्ब घूम रहे होते।
2: आज सारी गेम नानी की कहानियों पे बेस्ड होगी।
3: ये भूल मत तेरे को ऊंचाई पे भारती लेके गई है।
1: ज्यादा बोला ना तो सब भी ले आऊंगा।
0: जल्द आने वाला है स्टूडेंट ऑफ द ईयर का थर्ड इंस्टॉलमेंट, जो कि होगी एक वेब सीरीज जिसे डायरेक्ट करने वाली हैं रीमा माया, और इस सीरीज में नजर आएंगी शनाया कपूर, और ये सीरीज रिलीज होगी जियो हॉटस्टार पर।

0: राकेश रोशन ने अपने फैमिली और फ्रेंड्स संग मनाया अपना जन्मदिन। देख लीजिए सेलिब्रेशन का ये वीडियो।
1: Thank you.

जल्द आने वाली है नई फिल्म ओम का हरी, जिसका बीती शाम हुआ म्यूजिक लॉन्च। वैसे इसमें खास बात ये है, लेट आशा भोसले ने इसमें गाना गाया था और ये है इनका लास्ट सॉन्ग। और इस म्यूजिक लॉन्च में नजर आए कई सितारे जैसे कि श्वेता बासु प्रसाद, आयशा कपूर, रघुबीर यादव और कई और सितारे जो हुए इस म्यूजिक लॉन्च में शामिल।

आज के लिए खत्म होता है सास बहू और बेटियां का सफर। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और इसी तरह जारी रहेगा एंटरटेनमेंट का सिलसिला। तब तक के लिए नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: वडोदरा में 6,000 से ज्यादा युवाओं के साथ पीएम का मेगा इवेंट, पीएम का हुआ ग्रैंड वेलकम, 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का दिया गिफ्ट, कहा ये विकास का उत्सव है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल, 11 सितंबर से शुरू हो रहा है समिट। भारतीय सेना की बड़ी सफलता, चिनूक से अल्ट्रा लाइट होविट्ज़र का चुनौतीपूर्ण इलाकों में तैनात करने का सफल प्रदर्शन किया गया। देशभर में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार, झांसी में भोलेनाथ के साथ गणेश के अनोखे स्वरूप ने खींचा लोगों का ध्यान। जूनियर हॉकी एशिया कप, भारतीय मेंस टीम की लगातार दूसरी जीत, साउथ कोरिया को 7-3 से हराया, आखिरी क्वार्टर में हुए 3 गोल।

प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था संभाली। राम मंदिर के सीईओ जितेंद्र मिश्रा बोले, जल्द बताएंगे मंदिर की आगे की कार्य योजना। राम मंदिर कार्यालय में कोषाध्यक्ष महेश भागचंदका के साथ की बैठक। सूरत में साई युवक मंडल की ओर से भगवान गणेश के भव्य आगमन यात्रा आयोजित। भगवान के 12 अवतार को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया। आगमन यात्रा में भगवान शिव के तांडव की विशेष प्रस्तुति भी पेश की गई। आग के लपटों के बीच शिव तांडव का दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में जमा हुए लोग। कोणार्क सूर्य मंदिर की तर्ज पे बन रहा है गणेश पंडाल। हर वर्ष अपनी अनूठी कला और थीम के लिए पूरे सूरत में जाना जाता है मंदिर। गणेश चतुर्थी को लेकर झांसी के बाजार में बड़ी रौनक। बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। भोलेनाथ के साथ गणेश के अनोखे स्वरूप ने खींचा लोगों का ध्यान। मिट्टी की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की सबसे ज्यादा डिमांड। नागपुर में गणपति बाबा के आगमन की धूम। गणेश उत्सव से पहले सजे भव्य गणपति पंडाल। ढोल नगाड़ों और डीजे की धूम पे बाप्पा का स्वागत। गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारों की गूंज। गणपति आगमन के साथ शहर में बड़ी उत्सव की रौनक। बाप्पा के भक्तों में जबरदस्त उत्साह। दिल्ली में श्री धरणीधर जन्मोत्सव का भव्य आयोजन। धाकड़ समुदाय ने धूमधाम से मनाई भगवान धरणीधर की जयंती। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उसमें शामिल। आगर मालवा में देखा परंपरा और आस्था का अनूठा संगम। निकाली गई बाबा भूतेश्वर महादेव की शाही सवारी। सवारी में शान से निकली भगवान भोलेनाथ की भूतों की बारात। माता पार्वती, विशाल नंदी और खाटू श्याम जी की झांकियां रही आकर्षण का मुख्य केंद्र। ढोल की थाप और डीजे बैंड पर गूंजते शिव भजनों पर जमकर नाच श्रद्धालु। नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया गया बाबा का स्वागत। आगर मालवा के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से निकली शाही सवारी। फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया मंदिर। श्रावण माह के अंतिम सोमवार को बड़ी धूमधाम और उल्लास के साथ निकाली जाती है बाबा भूतेश्वर महादेव की शाही सवारी। देशभर से भक्त होते हैं इसमें शामिल। वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेनजी से सीधा संवाद। नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में 6,000 से ज्यादा छात्र युवा शामिल। देश के युवाओं और जेनजी को प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से जोड़ने के लिए आयोजित किया गया यह कार्यक्रम। युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया इसमें हिस्सा। पीएम मोदी का मेगा इवेंट के लिए पहली बार बुक माई शो से हुआ रजिस्ट्रेशन। एक घंटे में फुल हुई सारी सीटें। डिजिटल एम टिकट और क्यूआर कोड से कार्यक्रम में हुई एंट्री। पहली बार निजी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए रजिस्ट्रेशन और एंट्री व्यवस्था को बड़े स्तर पर किया जा रहा है इस्तेमाल। वडोदरा दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और लोकार्पण। 35,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को दिखाई हरी झंडी। श्रीलंका के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पे कोलंबो पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 38 वर्षों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की ये पहली श्रीलंका यात्रा। लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए इसमें शामिल। यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 में देश भर से आए बुनकरों ने लिया हिस्सा। बुनकरों कौशल विकास और निवेश को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की शुरुआत। कॉन्क्लेव से प्रदेश को वैश्विक वस्त्र उद्योग केंद्र के रूप में मिलेगी पहचान। खुलेंगे रोजगार के कई अवसर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख टेक्सटाइल और एपरल उद्यमियों के साथ बैठक की। टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश और एक्सपोर्ट को मिलेगी रिकॉर्ड उड़ान। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रसिद्ध तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में किए दर्शन पूजन। भगवान वेंकटेश्वर का लिया आशीर्वाद। इस दौरान सीएम ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम व्यवस्थाओं की सराहना की। सीएम योगी ने आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूरे देश की सुख समृद्धि की कामना भी की। तमिलनाडु दौरे के दौरान नेल्लोर भी गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अक्षरा विद्यालय परिसर में सोमा स्किल डेवलपमेंट सेंटर का दौरा किया। सीएम योगी के स्वागत में छात्रों ने दी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों से संवाद भी किया। दौरे के दौरान सीएम ने कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी उनके साथ मौजूद रहे। लखनऊ की हवा देश में सबसे साफ। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्वे में देश भर के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के सर्वे में टॉप पर लखनऊ। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वे में 2 नंबर पर इंदौर और 3 नंबर पर जबलपुर। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची जारी।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2000

0: 2026 में नोएडा की भी बड़ी छलांग। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश भर में 8वीं रैंक हासिल। पिछले साल 9वें पायदान पर था नोएडा। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम। ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेस वे के बीच 30 मिनट की कनेक्टिविटी की योजना पर हुआ मंथन। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गंगा एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का दिया प्रस्ताव। जनता की सुविधा का रखा गया ख्याल। दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा चाक चौबंद। एनएसजी और दिल्ली पुलिस ने किया मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई हाई लेवल काउंटर टेररिज्म मॉक ड्रिल। हर तरह के आतंकी हमले या इमरजेंसी से निपटने के लिए ब्लैक कैट कमांडो का खास अभ्यास। भारतीय सेना की बड़ी सफलता। चिनूक से अल्ट्रा लाइट हुविट्ज़र का चुनौतीपूर्ण इलाकों में तैनात करने का किया गया सफल प्रदर्शन। मिस्र के एल अलामीन एयर शो में आज दिखेगा भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर का दम। स्वदेशी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर से सारंग दिखाएगी हवाई करतब। आसमान में सटीक फॉर्मेशन से दर्शक होंगे रोमांचित। सारंग टीम पेश करेगी डॉल्फिन लीप और स्पॉट स्टॉल टर्न। 10 सितंबर तक चलेगा ये शो। 11 सितंबर को दिल्ली में बंद रहेंगे स्कूल। ब्रिक्स समिट को देखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे के घायलों से मिलने एम्स अस्पताल पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। जाना घायलों का हालचाल। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने घायलों को सौंपे 5-5 लाख के चेक। इलाज का पूरा खर्च उठाएगी दिल्ली सरकार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यशवंतपुर APMC मार्केट का किया औचक अचानक दौरा। किसानों से किया संवाद। दौरे के दौरान सीएम ने मार्केट में किसानों और मजदूरों के साथ किया नाश्ता। उपज की क्वालिटी और कीमत के बारे में भी ली जानकारी। गुवाहाटी पहुंचे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में किए दर्शन पूजन। पूरी में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। साध्वी रिदम्बरा इसमें शामिल। अयोध्या में लघु उद्योग भारतीय औद्योगिक सम्मेलन का हुआ आयोजन। देश भर में लघु उद्योगों और स्टार्टअप से जुड़े लोग इसमें शामिल हुए। देहरादून में हिमालय दिवस पे हिमालय नाम नगाधिराज कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री धामी ने लिया इसमें हिस्सा। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना की गई शुरुआत, जिसके तहत 11,000 छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दी जाएगी निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो यह है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: हनुमान चालीसा की किस पंक्ति का पाठ करने से रोग और बीमारियां दूर हो जाते हैं? हनुमान चालीसा की किस पंक्ति का पाठ करने से बड़ी से बड़ी समस्या मिट जाती है? क्या है हनुमान चालीसा की महिमा और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: वडोदरा में 6,000 से ज्यादा युवाओं के साथ पीएम का मेगा इवेंट, पीएम का हुआ ग्रैंड वेलकम, 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का दिया गिफ्ट, कहा ये विकास का उत्सव। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल, 11 सितंबर से शुरू हो रहा है सम्मेलन। भारतीय सेना की बड़ी सफलता, चिनूक से अल्ट्रा लाइट होविट्जर का चुनौतीपूर्ण इलाकों में तैनात करने का सफल प्रदर्शन किया गया। देशभर में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार, झांसी में भोलेनाथ के साथ गणेश के अनोखे स्वरूप ने खींचा लोगों का ध्यान। जूनियर हॉकी एशिया कप, भारतीय मेंस टीम की लगातार दूसरी जीत, साउथ कोरिया को 7-3 से हराया, आखिरी क्वार्टर में हुए 3 गोल।

नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। कोई उन्हें हनुमान जी का परम भक्त कहता है तो कोई उन्हें हनुमान जी का ही अवतार मानता है, कोई उन्हें करिश्माई बाबा कहता है तो कोई उन्हें सिर्फ एक संत मानता है। आज हम आपको बाबा नीव करोरी की महिमा बताएंगे जिसके चमत्कार से भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी अभिभूत हो उठते हैं। माना जाता है कि बाबा ने जिस पर कृपा कर दी वो शून्य से शिखर पर पहुंच जाता है। तो आखिर क्या है कैंची धाम से जुड़ी महिमा और कौन है बाबा नीव करोरी, आइए जानते हैं।

0: ये तस्वीरें हैं नीब करोरी बाबा की, एक ऐसे बाबा की जिनके चमत्कार की कहानियों से पूरी दुनिया अभिभूत है। कोई उन्हें चमत्कारिक संत मानता है तो कोई उन्हें हनुमान जी का अवतार मानता है। बाबा नीब करोरी के भक्तों का दावा है कि वो सर्व ज्ञाता थे, वो सब कुछ जानते थे। माना जाता है कि नीब करोरी बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे, जिनके जीवन से संकट दूर हो गया। वो बाबा के चमत्कार की ऐसी ऐसी कहानियां बताते हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, सहसा विश्वास नहीं होगा। लेकिन सच्चाई तो यही है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। उन्हें किस्मत चमकाने वाला बाबा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज कलयुग के देवता हैं, कलयुग में हनुमान जी महाराज साक्षात पृथ्वी पर हैं, तो किसी न किसी रूप में हमारे बीच में हैं। तो नीम करोली बाबा के रूप में हैं, किसी और संत के रूप में हैं, लेकिन जो नीम करोली बाबा हैं, इनके ऊपर हनुमान जी महाराज की या तो बड़ी कृपा रही या फिर हनुमान जी महाराज के अवतार के रूप में ये थे।
0: पूरी दुनिया में एप्पल कंपनी का साम्राज्य खड़ा करने वाले स्टीव जॉब हो या फेसबुक के कर्ता धर्ता मार्क जुकरबर्ग, ये दोनों किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। ये स्वयं मानते हैं कि इनकी चमकती किस्मत का सीधा कनेक्शन नीब करोरी बाबा से है। उत्तराखंड का हिल स्टेशन है नैनीताल, और इसी शहर के पास में बना हुआ है बाबा नीब करोरी का चमत्कारी कहा जाने वाला धाम। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग खुद ये मान चुके हैं कि उनके जीवन में बाबा नीब करोरी का बहुत ही प्रभाव रहा है।
1: भारत सहित विश्व में इनके शिष्य हैं, इनके अनुयायी हैं, इनको मानने वाले, इनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने वाले हैं, इनका आशीर्वाद लेने वाले लोग हैं, जिसमें प्रमुख नामों में स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग भी हैं। अपने चमत्कारों से बाबा अपने भक्तों पर, भक्तों के हृदय में राज करते थे। दूसरे की बीमारी को अपने ऊपर लेकर खत्म कर देना, लोगों के कष्ट को जान लेना, भविष्य की घटनाओं को भांप लेना, लोगों के मन में ईश्वर के प्रति लगाव उत्पन्न करना, इन्हीं सब कारणों से नीम करोली बाबा पूजनीय हो गए।
0: इस धाम का सीधा संबंध दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली एप्पल कंपनी से माना जाता है। आज हम बाबा नीब करोरी से जुड़े इन सारे चमत्कारों की चर्चा एक एक कर करेंगे, साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा के नाम के साथ आखिर इतने बड़े बड़े दिग्गजों का वास्ता आखिर कैसे हो गया। माना जाता है कि जो भी उनके दरबार में जाता है और बाबा की उस पर कृपा हो गई तो समझो वो शून्य से शिखर पर पहुंच सकता है। इन्हीं चमत्कारों की वजह से ही लोग उन्हें चमत्कारी बाबा कहते हैं। कोई उन्हें नीब करोली बाबा कहता है तो कोई नीम करोली बाबा, कोई महाराज जी कहता है तो कोई हांडी वाले बाबा, कोई तिकोनिया बाबा और तलैया बाबा के नाम से भी ये जाने जाते हैं।
1: कहा जाता है कि यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी की मन्नतें पूरी होती हैं, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, घर से संबंधित हो, जीवन के उद्देश्य से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर आप सामान्य रूप से जाकर दर्शन करें और दर्शन करने के बाद हो सके, संभव हो तो सेव और जलेबी का प्रसाद चढ़ाएं, बैठ करके अगर संभव हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनका ध्यान करके घर पर भी अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
0: दरअसल अपने जीवन काल में बाबा अलग अलग जगहों पर रहे और वहां उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा गया, लेकिन मशहूर वो नीब करोरी बाबा के नाम से ही है। इस नाम के पीछे भी बड़ी ही रोचक कहानी है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, साथ ही करेंगे बाबा के चमत्कारों की पड़ताल। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: बाबा के चमत्कारों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बाबा की जिंदगी के बारे में क्या कुछ खास है। देखिए, बाबा आखिर क्यों सन्यास मार्ग पर चलने लगे और उनके चमत्कारों का सिलसिला आखिर शुरू कब से हुआ। लोग दावा करते हैं कि बाबा की जिंदगी ही चमत्कारों से भरी हुई है। अगर उनकी जिंदगी को समझेंगे तो उनके चमत्कारों को समझना और भी आसान हो जाएगा।

0: ये भीड़ बताती है कि न्यू करोरी बाबा के प्रति भक्तों में कितनी आस्था है। हर साल 15 जून को यहाँ मेला लगता है, जिसमें हजारों भक्त यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि इसी दिन माना जाता है कि कैंची धाम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। कुछ भक्त तो हर साल यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ आने पर उनकी मुरादें पूरी हुई थीं। जाहिर है ये भक्ति बनावटी नहीं है, ये भक्तों की गहरी आस्था का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि नीव करोरी बाबा के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। सबकी मनोकामना पूरी करने वाले नीव करोरी बाबा का जन्म 1900 के आसपास हुआ था। सही सही साल की जानकारी किसी को नहीं है। माना जाता है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के अकबरपुर में हुआ था। 11 सितंबर 1973 को उन्होंने अपना देह त्याग किया।
1: इनका मूल नाम था लक्ष्मण नारायण शर्मा। उत्तर प्रदेश राज्य के फिरोजाबाद के अकबरपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। एक महान संत और हनुमान जी महाराज के अनन्य भक्त के रूप में इनको जाना जाता है। 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है और 17 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद पुनः पिता के आग्रह पर घर आते हैं और इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री होती हैं। पुनः 58 वर्ष की आयु में ये घर और परिवार छोड़ देते हैं।
0: दावा किया जाता है कि बाबा जी हनुमान जी के भक्त थे और अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों हनुमान मंदिर बनवाए। साथ ही वो अपने भक्तों को हनुमान चालीसा भी पढ़ने को दिया करते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 11 साल की उम्र में ही उनकी शादी करा दी गई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद वो घर छोड़कर चले गए। वो घुमक्कड़ साधु बन गए। ऐसा माना जाता है कि 17 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाबा गृहस्थ जीवन में भी लौटे। उनके पिता को किसी ने बताया कि नीब करोरी नामक स्थान पर उनके बेटे जैसा कोई युवक दिखा है। जब पिता ने उन्हें घर वापस लौटने और गृहस्थ जीवन शुरू करने का आदेश दिया तो बाबा तुरंत लौट आए। बाबा ने गृहस्थ जीवन जीना शुरू कर दिया। उनके 2 बेटे और 1 बेटी भी हुई। गृहस्थ जीवन के दौरान वो लगातार सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहे, लेकिन जल्द ही गृहस्थ जीवन से बाबा का मोह भंग हो गया। बाबा तो अपने कर्म पथ चुन चुके थे। उन्हें एक गांव की सेवा नहीं करनी थी, बल्कि समूची दुनिया की सेवा करनी थी। इसलिए आखिरकार 1958 में उन्होंने घर छोड़ दिया। वो नीव करोरी कैसे बन गए, इसकी भी एक दिलचस्प कथा सामने आती है। जब वो घर से निकले तो बिना टिकट ही ट्रेन पर सवार हो गए। टीसी ने उन्हें बिना टिकट पकड़ लिया। नीव करौरी में ट्रेन रुकवाकर टीसी ने उन्हें उतार दिया। दावा किया जाता है कि इसके बाद पहली बार दुनिया ने बाबा का चमत्कार देखा। उनको ट्रेन से तो उतार दिया गया, लेकिन उसके बाद ट्रेन ही स्टार्ट नहीं हो रही थी। तमाम कोशिशें कर ली गईं, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी तो नहीं बढ़ी। कहते हैं कि ये देख यात्रियों ने टीसी से अनुरोध किया कि जिस बाबा को ट्रेन से उतारा गया है उन्हें वापस बुला लिया जाए। बताते हैं कि इस घटना के बाद टीसी के पास कोई चारा नहीं था। टीसी ने बाबा से वापस आने का अनुरोध किया। कहते हैं कि इसके बाद बाबा मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि रेलवे नीव करौरी में एक स्टेशन बनवाए। रेलवे अधिकारियों ने इस शर्त को मान लिया। कहते हैं कि जैसे ही बाबा ट्रेन पर सवार हुए और तब रुकी हुई ट्रेन चल पड़ी।
1: वहां पर एक चमत्कार होता है। चमत्कार यह है, नीम करौली नामक एक रेलवे स्टेशन है, वहां पर ये ट्रेन में बैठ गए। उनके पास टिकट नहीं था। टीटी आया और इनको ट्रेन से उतार दिया। जैसे ट्रेन से उतार दिया, फिर ट्रेन चली नहीं तब तक जब तक कि बाबा उस ट्रेन में पुनः सवार नहीं हो गए।
0: दावा किया जाता है कि बाद में यहाँ न्यू करोरी नाम से स्टेशन बना। बाबा कुछ दिनों तक इस गांव में रहीं। यहीं के भक्तों ने उनका नाम न्यू करोरी बाबा रख दिया और धीरे धीरे बाबा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। बाबा ने पूरे उत्तर भारत का भ्रमण किया। इस दौरान उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा गया। उनके जीवन काल में दो आश्रम बने, एक वृंदावन में और दूसरा कैंची धाम में। वो गर्मी के दिनों में कैंची धाम में रहते थे। अब तो देश विदेश में उनके सैकड़ों मंदिर और आश्रम हैं।
1: ये पूरे भारत वर्ष में 108 मंदिर का निर्माण हनुमान जी महाराज का किए। 1964 में उत्तराखंड के नैनीताल में कैंची धाम की इन्होंने स्थापना की और अपने आध्यात्मिक ऊर्जा का, आध्यात्मिक साधना का केंद्र बनाए। यद्यपि ये कब कहां रहे इसका आकलन नहीं हो पाया, क्योंकि अपने चमत्कारों में लोग जो बताते हैं कि कमरे में बंद हैं, दरवाजा बंद है और निकलकर चले गए। इसी कारण से, इन्हीं चमत्कारों के कारण इनको हनुमान जी महाराज का अवतार भी कहा जाता है।
0: उनके कैंची धाम पहुंचने, वहां डेरा जमाने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। कैंची धाम नैनीताल से करीब 17 किलोमीटर दूर है। नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर है। 1964 में पहले यहां हनुमान मंदिर बना, फिर धीरे धीरे आश्रम बना। कैंची धाम को ही बाबा का मुख्य धाम माना जाता है। अपने जीवन के आखिरी वक्त बाबा ज्यादातर कैंची धाम में ही रहे, लेकिन उन्होंने देह त्याग वृंदावन में किया। बाबा के वृंदावन में देह त्याग की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। कहते हैं उस रात ट्रेन से भक्तों के साथ आगरा से कैंची जा रहे थे। सीने में दर्द होने के बाद वो दिल के डॉक्टर को दिखाने के लिए आगरा गए थे, लेकिन ट्रेन में ही उनकी तबीयत खराब हो गई। उनके साथ सफर कर रहे भक्तों ने उन्हें मथुरा में उतार लिया। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। तत्काल इलाज शुरू हुआ। अस्पताल के मुताबिक वो डायबिटिक कोमा में थे, लेकिन उनका पल्स रेट सामान्य था। उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था। अस्पताल में महाराज जी ने अचानक आंखें खोली और ऑक्सीजन मास्क निकालकर फेंक दिया। उन्होंने गंगा जल मांगा। गंगा जल उपलब्ध नहीं था तो उन्हें सामान्य पानी ही दिया गया। इसके बाद उन्होंने कई बार जय जगदीश हरे का जाप किया और फिर देह त्याग दिया। वृंदावन आश्रम परिसर में उनकी समाधि बनाई गई। यह आश्रम समाधि मंदिर के नाम से मशहूर है। नीम करोरी बाबा हमेशा लोगों की सेवा करते रहे। उन्होंने हर इंसान से प्रेम किया। उनके बारे में कहा जाता है कि वो सब कुछ जानते थे, सबके दिल की बात समझ लेते थे।
2: नीव करौरी बाबा के प्रति आस्था ऐसी कि नामचीन लोग भी उनके शरण में पहुंचने लगे और उनके आशीर्वाद से कामयाबी का सफर तय करने लगे। देखिए, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को बाबा का भक्त माना जाता है, तो फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग भी बाबा के धाम पहुंचे। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स तो तस्वीर देखकर ही बाबा की भक्त बन गई। दिग्गजों के मन में बाबा के प्रति आस्था बढ़ती ही जा रही है।

0: वो हमेशा कंबल ओढ़ कर बैठते थे। कभी तख्त पर बैठे तो कभी पेट के बल लेट जाते। भक्तों की मन की बात तुरंत समझ लेते और उनकी दुविधा को दूर कर देते थे। ऐसा ही था बाबा का अंदाज। वो कभी भी लंबा प्रवचन नहीं देते थे। वो भक्तों की मुक्ति में विश्वास करते थे। कहते हैं जब फेसबुक संकट में था तो कंपनी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कंपनी बिक जाएगी। तब कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग नीब करोरी बाबा की शरण में ही आए थे।
1: और मार्क जुकरबर्ग किसकी सलाह पर आए? तो स्टीव जॉब्स के सलाह पर आए। फेसबुक की शुरुआती दौर में जब वे व्यवसाय को लेकर संशय में थे, तब उन्होंने स्टीव जॉब्स के कहने पर कैंची धामा करके बाबा नीम करोली का दर्शन किया। और आकर उन्होंने स्वयं कहा कि उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला, मानसिक शांति मिली, जीवन में क्लैरिटी प्राप्त हुई।
0: फेसबुक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कंपनी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। कंपनी बिकने के कगार पर थी। ऐसे में मार्क जुकरबर्ग एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स से मिले। स्टीव ने उन्हें नीब करोरी बाबा की शरण में जाने को कहा। दावा किया जाता है कि कैंची धाम में सिर झुकाकर लौटने के बाद उनकी किस्मत चमक गई। कंपनी पर मंडरा रहे संकट के बादल छट गए। एक और चमत्कार की बात 1974 की है। स्टीव जॉब्स का करियर ठीक नहीं चल रहा था। ऐसे में वो आध्यात्मिक शांति के लिए भारत आ गए। नीब करोरी बाबा की चर्चा उन तक भी पहुंची थी।
1: 1974 में एप्पल मोबाइल के संस्थापक उत्तराखंड के कैंची धाम में आते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में। यद्यपि उनके आने के पहले ही बाबा ने अपना देह त्याग दिया था। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की तलाश में आए थे और उनको जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो अद्भुत थी। इसी कारण नीम करोली बाबा को अपना आध्यात्मिक गुरु आज भी मानते हैं।
0: स्टीव जॉब्स अप्रैल 1974 में कैंची धाम पहुंचे थे, लेकिन बाबा सितंबर 1973 में देह त्याग चुके थे। वो बाबा का सदैव दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन बाबा का आशीर्वाद उन पर खूब बरसा। स्टीव जब कैंची धाम पहुंचे थे तब उनकी आंखों में सपने तो खूब थे, लेकिन जेब खाली थी, नौकरी भी नहीं थी। लेकिन कैंची धाम आने के बाद उनकी किस्मत और जिंदगी दोनों बदल गई। कैंची धाम से अमेरिका लौटने के बाद स्टीव ने काम शुरू किया, एप्पल की नींव रखी और देखते ही देखते एप्पल पूरी दुनिया में छा गया। स्टीव जॉब्स जब तक जिंदा रहे बाबा का गुणगान हर किसी से करते रहे। उनकी जेब में हमेशा बाबा की एक तस्वीर रहती थी। ऐसा बताया जाता है कि जब उन्होंने आखिरी सांस ली तब भी उनके सिरहाने बाबा की तस्वीर थी। हनुमान जी के भक्त नीब करोरी बाबा भी अपने आराध्य की तरह ही चमत्कारों के लिए ही जाने जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा चमत्कार है सामने वाले के मन को पढ़ लेना। अब हम आपको बाबा के चमत्कार की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये रिचर्ड एल्पोर्ट की तस्वीर है। ये गणितज्ञ हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों के साथ जुड़े हैं। वो 60 का दशक था। हैरान परेशान रिचर्ड शांति की तलाश में भारत आए हुए थे। 6 महीना पहले ही रिचर्ड की मां का निधन हुआ था। इस बात से तो वो परेशान थे ही, उनका मन भी काफी अशांत था। कहते हैं कि अपनी भारत यात्रा के दौरान रिचर्ड की मुलाकात भगवान दास से हुई, जो अमेरिकी नागरिकता ले चुके थे और बाबा नीब करोरी के शिष्य बन चुके थे। भगवान दास ने रिचर्ड को नीब करोरी बाबा से मिलने की सलाह दी। नीब करोरी बाबा से मिलने को लेकर रिचर्ड दुविधा में थे। बाद में वो मन मार कर नीब करोरी बाबा से मिलने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि रास्ते में रात को आसमान में टिमटिमाते तारे को देख रिचर्ड को अपनी माँ की याद आ गई। वो और उदास हो गए। रिचर्ड भगवान दास के साथ बाबा के आश्रम कैंची धाम पहुंचे। भगवान दास ने साक्षांग होकर बाबा को प्रणाम किया, लेकिन रिचर्ड ने ऐसा नहीं किया। रिचर्ड ने बाद में खुद ही बताया कि मैं ये सोच रहा था कि हार्वर्ड का गणित का प्रोफेसर इस तरह किसी को लेट कर प्रणाम करेगा, वो चुपचाप खड़े रहे। इस पर बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि वो तारों में अपनी माँ को ढूंढ रहे थे। नीप करौरी बाबा की बात सुन रिचर्ड सकते में रह गए। वो समझ ही नहीं पाए कि बाबा उनके मन की बात कैसे जान गए। उनका अहंकार छू हो गया, वो बाबा की चरणों में गिर गए। वो समझ गए कि जिस गुरु की तलाश में वो भटक रहे थे वो उनके सामने बैठे हैं। नीप करौरी बाबा से मुलाकात के बाद उनकी जिंदगी बदल गई, वो उसी वक्त बाबा के शिष्य बन गए। नाम रिचर्ड एल्पर्ट से रामदास हो गया।
1: इनके पास अलौकिक शक्तियां थी ऐसा माना जाता है। ये लोगों के मन को जान जाते थे और उनका दुख दूर कर देते थे। इनका जीवन अत्यंत सरल था, एक कंबल, सामान्य पहनावा और पूरा जीवन ये हनुमान जी महाराज की सेवा में, भक्ति में व्यतीत कर दिए। हनुमान जी का चालीसा पढ़ते थे और अपने भक्तों से भी हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए प्रेरित करते थे।
0: नीप करौरी बाबा के चमत्कारों की फेहरिस्त काफी लंबी है। चमत्कारों की कहानी खुद भक्त ही बयां करते हैं। चमत्कार की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है, यह आस्था और विश्वास की चीज है और जाहिर तौर पर किसी भी तरह की तार्किकता से परे है।
2: प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
7: घर में माहौल पूजा पाठ भक्ति और आराधना का हो तो इसे सीखने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद दिनचर्या में शामिल हो जाता है। देखिए इस छोटे से बच्चे को कैसे अपनी प्यारी प्यारी टूटी फूटी आवाज में भगवान जगन्नाथ के सामने प्रणाम मंत्र गाने की कोशिश कर रहा है, मानो उसे सब आता है। बच्चे का ये अंदाज लोगों का दिल छू रहा है।

देखने की चाह हो तो उम्र मायने नहीं रखती, और फिर छोटे बच्चे तो कॉपी करने में माहिर होते हैं, बस दिलचस्पी होनी चाहिए। अब इस नन्हे उस्ताद को ही देख लीजिए, स्केटिंग में डबल क्रॉस ऐसे कर रहा है मानो कोई डांस मूव हो। जो भी हो, छोटे बच्चे का ये हुनर देखने लायक है।

0: एक्टिंग में उस्ताद है ये लड़की, मौत का सामना कैसे करते हैं अलग अलग देशों के लोग बताने की कोशिश हो रही है। कोशिश है कि इसमें वहाँ के लोगों के जीने का अंदाज भी झलके। लोग बच्चे के सपने की जमकर तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं इन्हें भला ऑस्कर की क्या जरूरत। देखते जाइए इन दोनों भाइयों की हरकतें, कोई कम नहीं है शरारत में। कपड़े सूख रहे हैं, एक को लगा कि चलो झूला झूल लेते हैं, दूसरा भी पीछे हो लिया, लेकिन इन्होंने जो किया उसने पहले की सांस अटका दी। देखिए कैसे हवा में झूल गया बेचारा, रो रो कर बुरा हाल है। दोनों मासूम बच्चों की यह हरकत सोशल मीडिया यूजर्स के चेहरों पर मुस्कान ला रही है। मानना पड़ेगा करने वाले तो बस कमाल करते हैं, और इनके जुगाड़ का तो कोई जवाब ही नहीं। देखिए क्या तरकीब भिड़ाई है बारिश से बचाव के लिए। सही है, छाता कहाँ बचा पाता है पूरी तरह पानी से, और बारिश तेज हो तो बस सिर ही बच पाता है। लेकिन ये इंतजाम तो रेनकोट से भी आजादी दिला रहा है, इनके दिमाग की दाद तो देनी पड़ेगी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: हनुमान चालीसा की किस पंक्ति का पाठ करने से रोग और बीमारियां दूर हो जाते हैं? हनुमान चालीसा की किस पंक्ति का पाठ करने से बड़ी समस्या मिट जाती है? क्या है हनुमान चालीसा की महिमा और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: वडोदरा में 6000 से ज्यादा युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का मेगा इवेंट, पीएम का हुआ ग्रैंड वेलकम, 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का दिया गिफ्ट, कहा ये विकास का उत्सव है। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल, 11 सितंबर से शुरू हो रहा है सम्मेलन। भारतीय सेना की बड़ी सफलता, चिनूक से अल्ट्रालाइट होविट्जर का चुनौतीपूर्ण इलाकों में तैनात करने का सफल प्रदर्शन किया गया। देशभर में गणेशोत्सव की तैयारी, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार, झांसी में भोलेनाथ के साथ गणेश के अनोखे स्वरूप ने खींचा लोगों का ध्यान। जूनियर हॉकी एशिया कप, भारतीय मेंस टीम की लगातार दूसरी जीत, साउथ कोरिया को 7-3 से हराया, आखिरी क्वार्टर में हुए 3 गोल,

कभी खिलाड़ी कभी अनाड़ी, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत श्रद्धावा। दरअसल पिछले करीब 9 महीने में सोने और चांदी में बहुत सारे बदलाव, बहुत

0: गिर जाता है। 4 लाख वाली चांदी 2.5 लाख से नीचे क्यों है? कीमतों पर जंग का कितना असर है? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर हम आज देश के जाने माने मार्केट एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। सोने चांदी में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज भी अगर चांदी की बात की जाए तो सुबह करीब 2500 रुपए महंगी थी, लेकिन फिर दोपहर बाद चांदी में फिर से गिरावट दर्ज की गई। सोने की बात करें तो सोना भी सुबह के मुकाबले काफी सस्ता हुआ है। सोना सुबह करीब 1500 रुपए ऊपर खुला था। सोने और चांदी में सोमवार को यानी कि कल कमजोरी देखी गई थी। सोने और चांदी में तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है और सोना चांदी जनवरी में अपने हाई पर था। इसी साल जनवरी में अगर बात की जाए चांदी की तो आपको याद होगा कि 4 लाख के पार चली गई थी, जब हर जगह केवल चांदी की ही चर्चा हो रही थी। लेकिन आज की बात करें तो चांदी करीब करीब 2.5 लाख के नीचे है। तो चांदी का गहनों समेत कई जगहों में इस्तेमाल होता है। चांदी का 50% हिस्सा इंडस्ट्री में भी जाता है। गहने और सिक्कों में 20-30% इसका इस्तेमाल होता है। स्पेशली अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक वाहनों की तो वहां सबसे ज्यादा चांदी का इस्तेमाल होता है। चिप्स में सबसे ज्यादा चांदी का इस्तेमाल होता है और यही चांदी बैटरी चार्जिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा उपयोगी है। हालांकि अब उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है, लिहाजा सोने और चांदी का आगे क्या हाल होगा? क्या और गिरेंगे दाम या फिर उठेगा सोना? क्या गोल्ड सिल्वर की फिर होगी चांदी? इसके लिए हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे उनकी राय। लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी साक्षी बत्रा से समझ लेते हैं कि इस उतार चढ़ाव के मायने क्या हैं।
1: पहला तो जो US डॉलर है वो वीक हो रहा है, जिससे कि सपोर्ट मिल रहा है प्रेशियस मेटल्स को। दूसरा, इन्फ्लेशन डेटा जो US का है वो एक अगला बड़ा ट्रिगर हो सकता है। तो क्या टेक्निकल लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोने का जो सपोर्ट है 1.5 लाख रुपए के आसपास रहेगा, वहीं सोने का जो रेजिस्टेंस है 1,54,000 रुपए के आसपास रहेगा। यानी कि इस रेंज में अभी सोना मूव कर सकता है हाल फिलहाल में। अगर आप सिल्वर की भी बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2,35,000-2,36,000 के आसपास इसका जो सपोर्ट लेवल है, यानी कि इससे नीचे अभी जाने की उम्मीद नहीं है। रेजिस्टेंस जो है 2,44,000 रुपए का है। अगर आप सिल्वर के प्राइसेस को देखेंगे तो हाल फिलहाल के ट्रेड को देखते हुए ये ट्रेडिंग लेवल्स दिए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स द्वारा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, फेस्टिव सीजन या फिर उसके बाद अगले 1-2 साल में किस तरीके का ट्रेंड रहने वाला है, तो एक्सपर्ट्स जैसे कि नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल के, उनका मानना है कि थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड चल रहा है सोने और चांदी में पिछले कुछ महीनों से, लेकिन ये ग्रेजुअली पॉजिटिव हो सकता है। जैसे ही फेस्टिव सीजन आएगा आपको दिखेगा कि सोने और चांदी के दाम एक बार फिर से धीरे धीरे करके बढ़ते हुए नजर आएंगे। और मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, अगले 6 महीने से 1 साल भर के इन्वेस्टर्स के लिए, उन्होंने कहा है कि एक अच्छा समय है अक्यूमुलेट करने का सोने और चांदी को। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि अगले 12 से 18 महीने में यानी कि 1 से 1.5 साल के भीतर ही आप सोने में 30-35% तक का रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अक्यूमुलेशन की स्ट्रैटेजी है, यानी कि एकदम से आप खरीदारी ना करें, धीरे धीरे करके सोने और चांदी में आप निवेश करें। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं और कुछ क्वांटिटी अपने लिए बनाना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे करके हर महीने आप सोने और चांदी में निवेश कर सकते हैं।
0: चलिए अब हम सीधा चलेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साक्षी से हमने जान लिया लेकिन अब अपने एक्सपर्ट से इसी को लेकर चर्चा करेंगे। अनुराग रस्तोगी हेड हैं नॉर्थ इंडिया इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के। कुछ ही देर में प्रोफेसर अमन अग्रवाल जो कि डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के, हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर धीरेज कुलश्रेष्ठ भी मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेज जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप क्या समझते हैं, कल अगर सोमवार के दिन की बात की जाए तो सोना चांदी कम हुआ और आज की डेट में सुबह भले ही चढ़े हैं दाम लेकिन वापस से कम हुए हैं, क्या इसके पीछे का कारण देखते हैं?
2: जी नवजोत जी, बहुत अच्छे विषय पे हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जो ग्लोबल डिसऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है, 2-3 घटनाएं हैं। एक जियोपॉलिटिकल रिस्क प्लस साथ में सेफ हैवन डिमांड, जैसा कि साक्षी ने अपने वक्तव्य में कहा कि US में इन्फ्लेशन, फेडरेशन जो उनका फेडरल बैंक है उसका रेट का हाइक होने की एक्सपेक्टेशन और गोल्ड पर शॉर्ट टर्म प्रेशर, और इससे इतर मैं आपके दर्शकों को, GNT के दर्शकों को आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूँगा, मुझे ये लगता है कि जो ब्रिक्स हम लोग करने जा रहे हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, लगभग 11 देश हैं, अभी हम लोग

0: लोग बात कर रहे हैं रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन की, और दूसरी बात डॉलर डिपेंडेंस पर अब बहस होने लगी है, और तीसरी सबसे बड़ी बात जो गोल्ड है उसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस। मुझे ये लगता है कि नवजोत जी अभी टिम्बर को भारत ब्रिक्स की समिट का लीड करने जा रहे हैं, इसमें 11 देश जो डिबेट कर रहे हैं, हालांकि रसिया ने स्पष्ट कर दिया है कि मेरा अभी क्लियर नहीं है कि हम डीडॉलराइजेशन के ऊपर बढ़ेंगे,
1: हाँ
0: लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर कमजोर हो रहा है और डॉलर पे डिपेंडेंसी घट रही है। इस कारण से लोग या इन्वेस्टर्स जो जा रहे हैं वो सेफ हेवन बचता है हमारे पास गोल्ड और सिल्वर, तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए ये गोल्ड में जो उतार चढ़ाव हमें लगता है, जैसा कि एक्सपर्ट भी कह रहे हैं और आपके वक्तव्य में भी देखने को मिल रहा है, और जो स्टडी है जो जो मैकिन्से की स्टडी है, या हम लोग उसको स्टडी को पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये आने वाले टाइम में, आने वाले लगभग 1.5 साल के अंदर इस टाइप के अप्स एंड डाउन्स देखेंगे। अभी ये प्री समिट हमें रिपरकेशंस नवजोत जी देखने को मिल रहे हैं, पोस्ट समिट जैसे ही समिट के बाद जब उसकी हमें जो उसके आउटकम्स निकलेंगे, निश्चित रूप से सोने में ये उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा। त्योहारी सीजन है भारत के अंदर, वो एक अलग कारण है, लेकिन इंटरनेशनल कारण के बात की तो मैं अगर इसको समअप करूं तो ग्लोबल डिसऑर्डर, जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड सेफ हेवन डिमांड के कारण हमें गोल्ड में अभी इस वक्त उतार चढ़ाव
1: ठीक
0: देखने
1: है,
0: को मिल।
1: एक बार अनुराग रस्तोगी जी से भी समझ लेते हैं कि क्या इसके पीछे का कारण आप देख रहे हैं। अनुराग जी,
2: देखिए, धीरेन जी ने बहुत ही कायदे से आपको सारी बातें समझाई, लेकिन मैंने आपके लास्ट शो पे भी मैंने यही बात बोली थी और आज फिर भी आपके वही बात एक बार फिर आ रही है कि देखिए, जो अमेरिका का एक प्रोसीजर है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो दिन में कुछ बयान देता है, रात को कुछ बयान देता है और दोपहर में कुछ बयान देता है। ये एक सबसे बड़ा फैक्ट आज की तारीख में बन चुका है कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ये समझ के चलिए कि उनका एक स्टेटमेंट पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देता है। उनका एक स्टेटमेंट आता है और चीजें बिगड़ जाती हैं। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हमको अपने द्वारा जो हम उनके बॉन्ड्स जारी किए गए थे उसको बायबैक करने का, उन्होंने उसको बायबैक करने की जो योजना बनाई उसका सीधा असर गोल्ड पे आया। दूसरा, अभी आपने देखा कि पुरानी जो ये लड़ाई इतने दिन से बंद थी वापस शुरू हो गई। ये दो प्रमुख जो कारण बने इस लड़ाई के दोबारा शुरू होने की वजह से पूरा प्रेशर आकर के गोल्ड पे खड़ा हो गया। और गोल्ड के ऊपर जब खड़ा होता है, रैली आती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आम जो ग्लोबल लेवल पे जो आम इन्वेस्टर है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। उसको लगता है सोना और चांदी भागा, एकदम से भागा, हमारे तो कमाने के दिन आ गए, वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। ये जो एकदम से रैली आती है, इसका सारा जो एक पूरा जो सिनेरियो क्रिएट होता है वो सारी चीजें मिला करके उसका प्रेशर, और जो फेड की जो प्रेशर है कि किसी भी तरीके से महंगाई को रोकना और ब्याज दरों में कटौती करना, तथा साथ साथ आपने देखा पीछे बैंक ने, सॉरी, अमेरिका की जो खस्ता हाल इकोनॉमी की रिपोर्ट आई उसने भी इसमें आग में घी डालने का काम किया। मैं आपको बताऊं, सोना और चांदी का अभी कोई ऐसा बढ़ने का कोई ऐसा रीजन भी नहीं था, ना कोई बढ़ने के चांस थे। मार्केट 1,50,000 के समथिंग एकदम स्टेबिलिटी में चल रहा था, अच्छे तरीके से कस्टमर भी वापस आने लग गए थे मार्केट में, लोगों का 1,50,000 रुपए के आसपास लोगों का विश्वास जमने लग गया था। अभी एकदम से चेंज आया जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक अफरा तफरी का माहौल है, लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने आपके सारे व्यूवर्स को भी यही सलाह दी थी कि जब भी कोई देश या कोई अचानक कोई घटना घटे या कुछ भी हो तो हम लोगों को स्टैंड बाई मोड पे ही रहना चाहिए, एकदम से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ना ही कोई सेल ना ही कोई परचेज।
1: यानी थोड़ा इंतजार करना चाहिए।
2: जी
1: प्रोफेसर
2: बिल्कुल,
1: अमन अग्रवाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के। अमन जी, आपसे समझना चाहूंगी क्या कारण इसके पीछे देख रहे हैं उतार चढ़ाव सोने और चांदी में।
3: देखिए जी, जो सोने और चांदी में और स्पेसिफिकली सोने में जो चढ़ाव हमें देखने को मिला है पिछले 3-4 सालों में, उसका कारण ये रहा है कि पहले सिर्फ एक आम आदमी या इन्वेस्टर्स या जो साहूकार जो सोने का काम करते हैं वो सोने को खरीदते थे। पिछले 3-4 साल से, जब से ये कोविड के बाद से देशों की स्थिति बिगड़ी है और बैंकिंग प्रणाली संभलने में नहीं आई है, स्पेशली डेवलप्ड देशों के अंदर, तब से जो गोल्ड बाइंग है सेंट्रल बैंक के द्वारा, जैसे हमारे हिंदुस्तान में आरबीआई, बाकी और सेंट्रल बैंक अलग अलग देशों के, उन्होंने खरीदारी बहुत ज़्यादा तीव्रता से बढ़ा दी है। आरबीआई भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहा है, जबकि और देश भी इसी तरीके से खरीद रहे हैं, वो अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। इस वजह से जो है मार्केट के अंदर उछाल थोड़ा देखने को मिला। दूसरा, जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, और क्योंकि देश अपना मॉनेटरी पॉलिसी, अपनी स्ट्रक्चर को संभाल नहीं पा रहे थे, अमेरिका में अभी भी जो है संभल नहीं पाया है फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा, तो इस वजह से जो है इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी कुछ लोग उसको उसकी तरफ निछाव कर रहे थे कि निवेश कर रहे थे। उसके अलावा हर्ट बिहेवियर था, गोल्ड का इतना तेज या सिल्वर का इतना तेज गदा से पिछले 2 सालों के अंदर बढ़ोतरी जो देखने को मिली है, वो कोई कारण नहीं है कि इसकी वजह से वो बढ़े। थोड़ा एक और कारण ये आया है कि सिल्वर के केस में कि जो कुछ सेमीकंडक्टर मेटल्स होते हैं वहाँ पे सिल्वर का प्रयोग किया जाता है, तो उसकी भी एक्सेसिव बाइंग हुई है। बिकॉज हिंदुस्तान में आपने देखा होगा भारत सरकार ने भी बड़ी सारी स्कीम्स और पॉलिसीज निकाली हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कोलैबोरेशंस भी की हैं अलग अलग देशों के साथ, एफटीए के अंदर प्रावधान भी किए हैं, और जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर जो फ्रेमवर्क है हिंदुस्तान में थोड़ा सा पिछले 2-4 सालों में बढ़ा है, और उसके अंदर वहाँ पे सिल्वर का जो है रिक्वायरमेंट आता है, सिल्वर का यूजेज होता है, तो वो एक इंडस्ट्री ने जरूर सिल्वर को थोड़ा खरीदा है। पर जितना उछाल देखने को मिला है, कोई भी ऐसा चीज नहीं थी कि उछाल हो, तो इसलिए जो गिरावट हो रही है मेरे विचार में करेक्शन है, और इसको हमें किसी और तरीके से नहीं देखना चाहिए।
1: एक बार धीरेज जी, करेक्शन है या फिर हम कहें कि आने वाले दिनों में दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं?
0: नवजोत जी, देखिए जिस तरीके की वैश्विक आर्थिक स्थिति और भू राजनीतिक अनिश्चितता है, ऐसे माहौल में जो कि अनुराग रस्तोगी जी ने अपनी बात को रखा और बड़े अच्छे से कहा कि स्पॉट गोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उसमें हमें कभी 7 सितंबर को दिखता है कि वो बढ़ा फिर घटा, जिस तरीके से ये अल्पकालिक गिरावट और बढ़ावट हमें जो दिख रही है, ये उसके पीछे अमेरिका है। बहुत स्पष्ट रूप से रस्तोगी जी ने कहा, और मैं इससे इत्तफाक रखता हूँ, कि मजबूत अमेरिकी रोजगार आंकड़ों से फेडरल बैंक की जो दर है उसके बढ़ने की संभावना के कारण, और वैश्विक स्तर पर जो युद्ध की स्थिति, युद्ध ऊर्जा संकट जिसको हम लोग एनर्जी क्राइसिस, या व्यापार का तनाव जो ट्रेड में जो हमें टेंशन दिखती है, आईएमएफ का डेटा रिलीज किया, आईएमएफ कहता है ऐसी स्थिति में जो जो वर्ल्ड है वो शॉक से गुजर रहा है, और ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों के लिए इससे जोखिम बढ़ रही है। हम देख पा रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, चाइना की ग्रोथ रेट लगभग 7.4% है, इन्फ्लेशन किस स्तर पर पहुंच गया है। तो जब हाई रिस्क होती है ऐसे वातावरण में, केवल और केवल नवजोत जी जो बचता है वो सेफ हैवन के रूप में, जिसमें कि हम कहें कि कहाँ पैसा लगा जाए। अब देखो, डॉलर पहले लोग खरीदते थे, उसको रखते थे रिजर्व के रूप में, अब क्या हो रहा है कि डॉलर में ना खरीदते हुए गोल्ड में खरीद रहे हैं। अब देखो, मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आईएमएफ की हैं, वो कहते हैं जुलाई 2026 में दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक्स ने लगभग 23 टन सोना रिजर्व के रूप में जोड़ा, अकेले चीन ने 20 टन खरीदा। इससे ये दिख रहा है कि गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन अब डॉलर से और अन्य रिजर्व असेट से बढ़ के कहां जा रहा है, वो गोल्ड की तरफ जा रहा है। यानी कि गोल्ड अब दीर्घ, मतलब लॉन्ग टर्म हम देखें, मुझे लगता है कि उसकी मांग बढ़ेगी।
1: हाँ, भारत इसको इसके साथ भी सर जोड़िए। देखिए, आपने अभी अपनी बातचीत में जो पहला सवाल मैंने आपसे किया था, डी डॉलराइजेशन की जो चर्चा हो रही है, अभी ब्रिक्स में जो भारत 13 को मीटिंग हो रही है उसको लेकर भी चर्चा हो रही है, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा कि डी डॉलराइजेशन हो जाए? क्या डॉलर को इग्नोर किया जाएगा, और क्या एक मेटल को करेंसी के तौर पर एक्सेप्ट किया, क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर क्या ये उसका असर है कि उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है?
0: नवजोत जी, मैं फिर से आपको साधुवाद देना चाहूँगा जीएनटी को, आपने एक ऐसे विषय पर बात की है जो डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ा विषय है इस वक्त, क्योंकि चाइना इज प्रेशराइजिंग टू इंडिया करेंटली कि कम विद डी डॉलराइजेशन। बट मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रसिया कहीं ना कहीं यूक्रेन के साथ उलझने के कारण चाइना पर डिपेंडेंसी बढ़ी है। एशियन इकोनॉमी में चाइना एक फुल पावर के साथ, मतलब इतने बड़े ग्रोथ रेट के साथ, इतनी बड़ी इकोनॉमी साइज के साथ, 44 ट्रिलियन डॉलर का जो है ना उसका जो इकोनॉमिक अमेरिका के बाद आता है। तो अब हम देखते हैं कि जो यूएस है मैडम नवजोत जी, 31-32 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के ऊपर 40 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा कर्ज हो चुका है, यानी कि वो फिस्कल डेफिसिट में है, आप समझिए। और ये प्रेशर है इंटरनेशनल कि ब्रिक्स अगर 11 देश जिसमें कि केवल इंडिया को डिसीजन लेना है, चाइना चाहता है कि डी डॉलराइजेशन की ओर जाएं और ब्रिक्स एक अपनी करेंसी बना ले, लेकिन मुझे कहना जल्दबाजी होगा और मुश्किल होगा कि इस वक्त भारत चाहता है, वो एक अलग बात है, हम सब चाहते हैं कि डॉलर में हम मतलब डी डॉलर की तरफ जाएं, डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएं, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी होगा रिवील करना कि अभी भारत ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि डी डॉलराइजेशन। हालांकि 7 सितंबर को मैडम कल रशिया ने स्पष्ट किया है कि डी डॉलराइजेशन हम चाहते हैं, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम,
1: राइट टाइम बिल्कुल, यानी सिर्फ अभी चर्चाएं हो रही है। अब अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए कीमतें बढ़ी हैं, बढ़ी कीमतों का कारण क्या है ये तो हम आप सभी से समझ भी रहे हैं, क्या आम लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है या कीमतें बढ़ने के बाद लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम हुई है, भरोसा लोगों का किस में? हालांकि सेफ हेवन ठीक है, आज भी सोना ही माना जाता है। सर ऑडियो म्यूट है अनुराग जी आपका, अनुराग दस्तोगी जी, जी फिर से सर अपनी बात रखिएगा।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी मैं कह रहा हूं कि देखिए ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि जब से भाव एकदम से बढ़े हैं तो इसका असर कहीं ना कहीं आम गृहिणी की और जो आम कस्टमर है उसके ऊपर तो बहुत फर्क पड़ा है। देखो जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनको तो चलिए किसी भी भाव में लिया, उन्होंने अपना लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट किया, शॉर्ट टाइम किया, प्रॉफिट लिया, निकल गए, लेकिन जो कस्टमर है उसकी जेब पे तो निश्चित फर्क पड़ा है। और मैंने कई बार आपको इस विषय पे बोला भी है कि जिसका 50 ग्राम की कैपेसिटी थी वो 30 ग्राम पे आ गई, 30 ग्राम वाला 10 ग्राम पे आ गया, 15 ग्राम पे आ गया, और काफी लोगों ने अपने गोल्ड को ही रिसाइकिल करके अपना काम चलाने के ज्यादा ही आधार बना लिया।
1: अच्छा,
2: है
1: इस पे मैं आती हूँ, आपने कहा रिसाइकिल करके, यहाँ से फिर वही बात आ जाती है सर, प्रधानमंत्री की अपील की बात, आपको लग रहा है कि लोगों ने घरों से सोना निकाला है?
2: डेफिनेटली निकाला है
1: सही बताइएगा।
2: नहीं नहीं मैं
1: कोई
2: मैं
1: भी गृहिणी अपना सोना देगी नहीं?
2: नहीं नहीं मैं बताता हूँ, मैं उसके ऊपर आपको क्लियर कर देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन से ये आह्वान किया था प्रथम बार, उसके बाद से देखिए प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए एक बहुत बड़ा वर्ग है जो प्रधानमंत्री जी को बहुत चाहता है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनकी बातों को बहुत ही अप्रिशिएट करता है और उनकी बातों को कही हुई बातों पे अमल करता है। जिस समय ये प्रक्रिया आई तो क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब भी कोई बात करते हैं तो देश हित में करते हैं, और जब बात देश हित की होती है तो सारी चीजों से आदमी ऊपर निकल करके पहले देश हित के बारे में, ठीक है कुछ लोग नहीं होंगे लेकिन आज भी 80% लोग ऐसे हैं जो देश हित को सोचते हैं कहीं ना कहीं, इसका एक असर आया। और जो आपने कहा गृहिणी सोना नहीं निकालती, तो गृहिणी को भी पता है कि हम सोने को निकाल करके वो बेच नहीं रही है, वो मार्केट में ला करके उसने कोई बेच नहीं दिया, अपनी ज्वेलरी से ही ज्वेलरी में कन्वर्ट किया है। और बहुत सारे ज्वेलर्स ने भी उसके लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स निकाली अपने मेकिंग चार्जेस में, और काफी चीजों में उन्होंने अपने अपने चीजों को चेंज किया ताकि गृहिणी अपने रिसाइकिल गोल्ड को, इंडिया गुड डिलीवरी को, जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है इंडिया गुड डिलीवरी, और वो चाहते हैं कि भारत का सोना भारत में ही बने और हम विदेश से डोरे पे डिपेंड ना हो करके इंडियन गोल्ड को ही रिसाइकिल करें और उसी को ही हम ले जा करके उसी से ही हम अपनी, ताकि हम जो ये डॉलर की बात हो रही है कि हमारा डॉलर का जो हमारा स्टॉक है वो हम बचा सके किसी
1: ने, मेरी बाइंग कैपेसिटी वाला सवाल इसी पर था।
2: बिल्कुल
1: रिसाइकिल हुआ है या लोगों में
2: डेफिनेटली हुआ है,
1: लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम हुई है, इसको क्लियर कीजिए।
2: बाइंग कैपेसिटी घटी है, बाइंग कैपेसिटी 100% घटी है, लोगों का बहुत बड़ा फर्क आया है क्योंकि सोना उनकी पहुंच से दूर हुआ है, इसीलिए रिसाइकिल पे फोकस ज्यादा हुआ है।
1: अमन जी इस पर आप क्या कहेंगे, आपने आपने कितना चेंज देखा है इसमें?
3: देखिए जी ऐसा है कि पहली बात तो जो आपने रिसाइकिल की बात करी, काफी गृहणियां जो मॉडर्न गृहणियां हैं वो रिसाइकिल कर रही हैं गोल्ड जो पुराना गोल्ड था, और उसमें क्या हो रहा है आप देखेंगे बड़े बड़ी कंपनियां हैं जो गोल्ड के अंदर है, सिर्फ एक छोटे गोल्ड स्मिथ्स नहीं है, जो पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कंपनियां हैं जो पूरे उनके आउटलेट्स हैं वो भी अब ओल्ड गोल्ड को लेने को तैयार हो रहे हैं जबकि पहले नहीं करते थे, क्योंकि पहली बात तो ओल्ड गोल्ड में प्योरिटी भी अच्छी आ रही थी, सेकेंडली जो ओल्ड गोल्ड है काफी ग्रेनियां क्योंकि वो डिजाइन हैं, वो सिस्टम्स हैं, वो मॉडर्न दौर पे नहीं चलते हैं, पहले बहुत भारी भारी गोल्ड पहने जाते थे अब बड़े हल्के पहने जाते हैं, तो इस वजह से और उसमें ज्यादा गहने बन जाते हैं, गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं। इस वजह से जो है काफी सारी गृहणियां जो है उसको रिसाइकिल करके नए अपने आभूषण बनाने में लगी हुई हैं, ताकि वो अलग अलग उसको करते हुए और बिना ज्यादा खर्चा किए, मेकिंग चार्जेस थोड़ा बहुत जरूर बनता है उसमें, बाकी उसको तरीके से उसको करके कर सकें, इसलिए रिसाइकलिंग का जो सिस्टम है पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिल पा रहा है। पर जो गोल्ड गोल्ड का खरीदारी है, देखिए हर एक फैमिली ज्यादातर जो गोल्ड है अगर हम देखें पूरे विश्व के अंदर, पूरा जो अब तो चाइना भी बहुत ज्यादा गोल्ड खरीद रहा है, हिंदुस्तान से भी ज्यादा गोल्ड खरीद रहा है एज अ कंट्री, बट ज्यादातर गोल्ड जो है जो पब्लिक डीलिंग में होता है, एक आम आदमी आपके पास मेरे पास जैसे आदमी के पास जो होता है, उसमें हिंदुस्तान की खरीदारी सबसे ज्यादा है। और कहा जाता है, काफी सारे डेटा भी पहले आए हैं, कि करीबन 2/3 गोल्ड जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का है वो हिंदुस्तान की मार्केट में आता है आम आदमी के कंजम्पशन के लिए, जो 1/3 बचता है उसमें से भी 50% स्मगल होके आता है। तो कंजम्पशन एटीट्यूड अभी भी चेंज नहीं हुआ है, वो वैसा ही है। फर्क यह है कि हर एक फैमिली का बजट होता है कि मैं 50 लाख खर्च करूंगा, 1 लाख खर्च करूंगा, 10 लाख खर्च करूंगा, और ज्यादातर फैमिली चाहे वो लड़की की तरफ से हो या लड़के की वालों की तरफ से हो, वो कुछ ना कुछ शुरुआत से इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करते हैं कि जिस दिन शादी करने जा रहे हैं उसी दिन सारा कुछ खरीदेंगे, काफी कुछ जो है उन्होंने पहले से इकट्ठा करना शुरू कर दिया होता है ये सोच के कि बच्चे की शादी 20, 22, 24, 25, 30 साल की उम्र में हमें करनी है, तो उसके लिए हम इकट्ठा करना शुरू कर दें। और हिंदुस्तान में तो लड़कियों की जब शादी होती है तो माँ बाप शुरू से जब से पैदा होती है तब से इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, तो ये कहना कि उसी दिन जाके वो खरीद रहे हैं और उसको कम खरीदना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। जरूर बजट हिलते हैं, चीजें हिलती हैं, महंगाई की वजह से हमेशा हिलती आई हैं, कोई भी खर्चा करना हो चाहे वो घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, बच्चे की एजुकेशन पे खर्चा करना हो, वो हमेशा महंगा ही लगता है जब करने जाते हैं,
1: बिल्कुल,
3: बट
1: हाँ।
3: वो करते ही हैं। तो इसलिए ये सोचना कि आज के समय में ज्यादा महंगा हो गया है, कल के समय में कम था, ये चीजें एक थोड़ी बहुत वेरिएबल है, जिसको जितना खर्चा करना होता है वो बजट लेके चलता है।
1: इस पर आगे चर्चा करेंगे, त्योहारी सीजन भी आ रहा है, शादियों का सीजन भी आ रहा है, सोने पर बात करेंगे, लेकिन अमन जी चांदी पर एक राय मैं आपकी लेना चाहूंगी। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवीज, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। लग रहा था कि चांदी की डिमांड बढ़ेगी, 4 लाख आपको याद होगा कि एक बार चलेगी, लेकिन अब जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि 2.5 से भी नीचे, और आने वाले समय में 2.5 से नीचे ही रह सकती है। इस पर एक आपकी राय।
3: देखिए चांदी जो है, चांदी भी काफी ज्यादा शादियों और त्योहारों में यूज होती है, कुछ फेस्टिवल्स भी हैं जिसमें सिर्फ चांदी ही खरीदी जाती है, तो चांदी की डिमांड बढ़ती है बट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है। एक मोड आया था जहां पे एकदम से लगा कि डिमांड बढ़ने जा रही है और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उस चांदी को इस्तेमाल करेगी, पर वो देखा गया कि काफी ज्यादा उस स्टेज पे होर्डिंग की गई, और होर्डिंग की वजह से जो है वो डिमांड इस समय हमें ज्यादा बढ़ने की भी नजर नहीं आ रही है जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। दूसरा, जो आपने अभी इंडस्ट्रीज बताए चाहे वो ईवी हो और बाकी हो, वो सिर्फ चांदी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और भी मेटल्स अब जनरेट कर रहे हैं जिसकी वजह से जिसको यूज किया जा सकता है, बिकॉज ये जो एकदम से चांदी के रेट बढ़े उससे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एकदम से फर्क पड़ा। और आप देखेंगे आजकल चाहे लैपटॉप हो चाहे कोई और चीजें हो, उनके भी दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसी वजह से कि वो जो दाम बढ़े उसकी वजह से जो कॉस्ट, जो बेसिक कॉस्ट है वो बढ़नी शुरू हो गई। और इसको देखते हुए काफी सारी इंडस्ट्रीज ने ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के ऊपर अब सोच काम करना शुरू कर दिया कि हम किस चीज को लगाएं जो चांदी से मिलता जुलता हो, जो काम कर सके। कहीं कहीं जगह, कुछ जगहों पे तो उनको ऐसे मेटल मिल गए हैं जो चांदी से भी बेटर काम कर पा रहे हैं। तो इसलिए चांदी के ऊपर जो प्रेशर बीच में थोड़े समय के लिए आया था कुछ महीनों के लिए, वो प्रेशर अब इंडस्ट्री की तरफ से कम हो गया है।
1: दिनेश जी देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें, चाहे हम खासतौर पर अगर अमेरिका की भी बात करें, तो महंगाई के आंकड़े लगातार घटते नजर नहीं आ रहे हैं, बढ़ेगी ही, तो आने वाले दिनों में क्या प्रेडिक्ट करेंगे सोने और चांदी के दामों को लेकर?
0: देखिए नवजोत जी, यूएस की जो स्थिति है और जो IMF प्रेडिक्ट कर रहा है कि 2026 का जो डेटा है, इसमें जो डिफेंस के ऊपर, मतलब डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऊपर लगभग 2.7% से ज्यादा की GDP में बोझ आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा और फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, और जैसा कि आपका प्रश्न है कि आने वाले टाइम में क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लगभग 7% से ज्यादा की GDP में जब वृद्धि होगी, और स्पेशली किधर, केवल और केवल युद्ध के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए हम डिफेंस इक्विपमेंट तब पब्लिक डेब्ट बढ़ेगा और फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि सोना आगे जाएगा, बढ़ेगा और आने वाले टाइम में हम इसकी कीमतों में उछाल देखेंगे। क्योंकि उसके पीछे केवल एक ही कारण नहीं है, अगर मैं कारणों की बात करूं तो दो रीजन है, जैसा कि आपने यूएस को जोड़ा, एक एग्जोजीनियस फैक्टर और एक एंडोजीनियस फैक्टर। अगर मैं घरेलू उसकी बात करूं तो घरेलू कारणों में सोने और चांदी दोनों की ही बात करें तो सोने के कारण तो ये जो फेडरल रिजर्व से या रिजर्व बैंक के द्वारा जो सेंट्रल बैंक के द्वारा डिमांड्स है, और केवल क्योंकि सेफ हेवन है अपनी जीडीपी को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबिलिटी इन द फिस्कल कंसोलिडेशन एंड फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का फोकस है, फिस्कल पॉलिसीज का फोकस है और मॉनिटरी पॉलिसीज भी इस तरीके से, जैसा कि अनुराग रस्तोगी जी ने भी कहा, प्रोफेसर अमन जी ने भी कहा कि रिजर्व बैंक लगातार इस चीज को खरीद रहा है। बहुत सारे दुनिया के सेंट्रल बैंक इस वक्त डॉलर से अपने आप को पैराडाइम शिफ्ट करके गोल्ड को खरीद रहे हैं। रही बात चांदी की, अगर मैं चांदी की बात करूं तो मैडम चांदी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो दुनिया का जो चांदी की डिमांड है, वैश्विक चांदी की जो कुल औद्योगिक मांग का लगभग 19% केवल केवल और केवल सोलर जो पैनल्स हैं उनमें यूज होता है। अब इसकी डिमांड लगभग 12 गुना बढ़ी। अभी ये जैसा कि आपने अपने शुरुआती कार्यक्रम के शुरुआती उसमें कहा कि 4 लाख से 2.5 लाख पे क्यों आ गई, तो चाइना ने उसकी डिमांड बढ़ा रखी थी, चाइना ने अपना रिजर्व कर लिया है गोल्ड का, सॉरी चांदी का, सिल्वर का, और अब चाइना ने जैसे ही स्टॉप किया तो धड़ाम से उसके रेट जो है ना लगभग लगभग आधे हो गए। और उसकी जो डिमांड है लास्ट पिछले 10 वर्षों में अगर हम लोग माइन्यूटली उसको देखें तो सिल्वर की डिमांड लगभग लगभग जो है ना 12 गुना बढ़ी है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जैसे कि प्रोफेसर अमन ने कहा, अगर मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखूं तो 25 से 40 45 ग्राम जो कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की चांदी लगती है, तो चांदी की डिमांड अब ईवीज के, चूंकि वाहनों की डिमांड भी बढ़ेगी, गवर्नमेंट भी इन्वायरमेंटली बहुत ज्यादा फोकस है कि हमें इको सिस्टम बना के रखना है, तो इसकी डिमांड भी बढ़नी है, चांदी भी धीरे धीरे करके बढ़ेगी। बट चांदी के बढ़ने की जो स्पीड होगी वो कम होगी बनस्पत आपका जो गोल्ड
1: सोना की, बिल्कुल वो तो वैसे भी कहा जाता है कि गोल्ड सेफ हेवन है ही। चलिए यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: हनुमान चालीसा की किस पंक्ति का पाठ करने से रोग और बीमारियां दूर हो जाते हैं? हनुमान चालीसा की किस पंक्ति का पाठ करने से बड़ी समस्या मिट जाती है? क्या है हनुमान चालीसा की महिमा और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: सोना चांदी कभी खिलाड़ी कभी अनाड़ी, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब अनुराग जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे इस सेगमेंट में। सर, त्योहारी सीजन भी आ रहा है और शादी ब्याह का सीजन भी आ रहा है। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे यहाँ सोना चाहे कितना भी महंगा हो जाए, सबकी फर्स्ट चॉइस सोना ही रहती है। तो ऐसे में अनुराग रस्तोगी जी, आप ही से जानना चाहूंगी, पहली बात तो ये कि कितना लोगों का इंटरेस्ट सोने में अभी भी बरकरार है, और दूसरी बात ये है कि क्या आने वाले समय में अक्टूबर नवंबर के मंथ में क्या गोल्ड के रेट ज्यादा बढ़ेंगे, अभी से उनको खरीद लेना चाहिए या थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए? यहां पर मैं लॉन्ग टर्म निवेशकों की बात नहीं करूंगी, मैं उन घरेलू लोगों की बात करूंगी जो खास तौर पर त्योहारी सीजन में, जो मैंडेटरी हो जाता है कि खरीदना ही खरीदना है, चाहे वो अक्षय तृतीया हो या फिर शादी के सीजन में देने के लिए हो।
2: देखिए, पहले दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो, जब तक रहेगी नारी तब तक रहेगी सुनारी, पहला महामंत्र है ये। दूसरी बात, सोने पे विश्वास तो कभी घटने वाला नहीं। दूसरा, एक नारी अगर अपने पति के बाद सबसे ज्यादा भरोसा किसी पे करती है तो वो सोने पे करती है। लिहाजा ये तो बिल्कुल क्लियर है कि त्योहार का सीजन हो या कोई फेस्टिवल हो या कोई शादी विवाह का मौका हो, गृहिणी कभी भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती कि वो सोना ना खरीदे। असर जरूर पड़ा है, तकलीफ जरूर आई है, लेकिन फिर भी हमारे देश की गृहिणी की एक खास बात है कि वो थोड़ी थोड़ी बचत करके भी कहीं ना कहीं अपने लिए कहीं ना कहीं किसी तरीके से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करती है, क्योंकि पता है कि बुरे वक्त में यही हमारे काम आने वाली चीज़ है। आज की तारीख में इससे बढ़ के कोई दूसरा उपाय नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि रह गई बात कि दीपावली के सीजन के टाइम की आप बात कर रहे हैं, भाव क्या होगा। मुझे लगता है कि दिवाली के बारे में भाव की अगर हम बात करें, एक अनुमान जरूर लगाया जा सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना इसलिए जल्दबाजी होगी क्योंकि कई देशों के छोटे छोटे असर का बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, मार्केट एकदम से चेंज हो जाता है, बदलाव हो जाता है, तो उसके ऊपर अभी से कोई कमेंट करना जल्दबाजी होगी। लेकिन मैं एक बात आपको, जो हम लोगों का अनुमान है उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि दिवाली हम 1,65,000 रुपए के आसपास दिवाली हमारी होनी चाहिए, 65 से 70 के बीच की, और चांदी भी 2,50,000 से 260-270 के बीच होना चाहिए, ऐसा एक अनुमान है। और आम कस्टमर के लिए यही सलाह है कि जब जेब में पैसे हो तब ले लेने चाहिए, कोई भाव का उसका कोई फर्क नहीं आता उसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात है कि वो चाहे तो अभी इन भावों में बहुत सारे ज्वेलर्स ने ऐसी ऐसी स्कीम भी निकाल रखी हैं कि वो अपनी बुकिंग अभी से कर सकता है, थोड़े थोड़े पैसे दे करके अपनी चीजों को बुक कर सकता है। तो दीपावली के लिए लोग तैयार हैं,
1: यानी कि बढ़ेंगे,
2: डेफिनेटली बढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको हमेशा बताया है, सोना और चांदी ने हमेशा अपने पिछले हाई को तोड़ा है, इतिहास गवाह है, उठाकर देख लीजिए मेरी इस बात को, कभी भी जो हाई बना है हमेशा वो हाई टूटा है, ये हाई भी टूटेगा, चाहे 1,90,000 का हो चाहे 4,00,000 का हो, हाई ये भी टूटेगा, भले वो आज टूटे या थोड़े दिन के बाद टूटे, उसके उसका कारण बनेगा, लेकिन ये हाई टूटेगा। तो जो भी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर या जो गृहिणी या जो आम कस्टमर इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका कभी भी कोई नुकसान नहीं है, और लोग इसी वजह से अपना शौक भी पूरा करते हैं और आराम से सोने में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आज युवा भी समझ गया। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका एक मिनट और लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जो देश का एक युवा वर्ग है, जो पहले सोने और चांदी की तरफ उसका कभी भी रुझान नहीं होता था, गाड़ियों की तरफ, अच्छे कपड़ों की तरफ या इलेक्ट्रिक की तरफ ज्यादा होता था, मोबाइल्स की तरफ होता था, आज उस युवा का भी जो है वापस मोड़ गोल्ड और सिल्वर की तरफ उसने टर्न किया है, और ये हमारे इस ज्वेलरी सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छी बात है।
1: प्रोफेसर अमन, ज्वेलरी या डिजिटल गोल्ड, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस समय क्या सलाह देंगे आप? मैं यहाँ इन्वेस्टर्स की बात कर रही हूँ सर।
3: देखिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ऑलरेडी गोल्ड बॉन्ड हैं, डिजिटल गोल्ड की बात है वो भी की जा सकती है, बट डिजिटल गोल्ड में थोड़ा ध्यान रखें कि काफी सारी क्रिप्टो बेस्ड कंट्री का वो आ रही है, कंपनीज आ रही है जो इस तरीके की चीजें निकाल रही है, जो लोगों को पता नहीं हो तो उसमें जा सकती है। उसकी जगह अगर वो बॉन्ड्स में, गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, गोल्ड बॉन्ड ट्रेड भी होते हैं, उसमें निवेश करें तो बेटर है, अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। देखिए, गोल्ड के अंदर जैसे अभी बताया जा रहा था, हिंदुस्तान हमेशा जैसे पहले भी कहा निवेश करता रहा है और आगे भी निवेश करेगा। मेरे विचार में ज़्यादा बढ़ाव होने की उम्मीद नहीं है गोल्ड के अंदर, अभी और गिरावट हमें देखने को मिलेगी गोल्ड के अंदर भी और सिल्वर के अंदर भी, क्योंकि जो मार्केट है उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। मार्केट से में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, मनी सप्लाई स्क्वीज होगी, अभी आरबीआई भी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में और बढ़ाएगा आप देखेंगे, तो उस वजह से जो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो इसलिए लोगों को अपने पैसे के रखने की जरूरत है। हाँ, जब दिवाली आ जाएगी, दिवाली और शादी जब सीजन शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत उछाल हमेशा आता है, वो इस बार भी आएगा, पर तब तक मेरे को उम्मीद है कि दाम जो है गिरेंगे ही, अभी बढ़ने की उम्मीद नहीं है। तो जो निवेश जो खरीदना चाहते हैं अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, पर जो निवेशकर हैं जिनको डे ट्रेडिंग करनी है, वीक ट्रेडिंग करनी है, महीने की ट्रेडिंग करनी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना खरीद बेच कर सकते हैं देख के कि मार्केट कैसी चल रही है।
1: इसी के साथ जो छोटा निवेशक है उसको आप सलाह क्या देंगे, सोना या चांदी किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए?
3: मेरे विचार में छोटे निवेशकों को यह समझना जरूरी है कि कोई भी एसेट कोई भी चीज हो उसको डिवाइड करे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट करे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के केस में वो जो है फिक्स डिपॉजिट्स में कर सकता है, रिजर्व जो बॉन्ड्स होते हैं सरकारी बॉन्ड्स होते हैं या फिर ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज के बॉन्ड्स होते हैं उनमें कर सकता है छोटे ड्यूरेशन के लिए। मिड टर्म होते हैं उनमें जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं जैसे आरबीआई के बॉन्ड्स हैं और भी कुछ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स लॉन्च हुए उनमें कर सकता है, और फिर अगर बहुत लंबे समय के लिए करना है तो गोल्ड भी अच्छा है, रियल एस्टेट भी अच्छा है, पर एक मिक्स पोर्टफोलियो बनाना किसी को भी जरूरी है। कोई भी ऐसी चीज एसेट क्लास में नहीं होनी चाहिए कि जो है बहुत ज्यादा हम एक ही तरफ, चाहे गोल्ड खरीदने लगे तो गोल्ड खरीद लिया, रियल एस्टेट खरीदने लगे तो रियल एस्टेट खरीद लिया, या सिर्फ पैसा बैंक में रखने लगे तो बैंक में रख लिया। थोड़ा एक मिक्स अप्रोच किसी भी एक निवेशकर को, खासकर जो छोटे और मध्यम वर्ग निवेशकर होते हैं उनको ये लेके चलनी चाहिए।
1: बिल्कुल प्रोफेसर धीरेश, 5 लाख अगर किसी के पास है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, सोने में कितना लगाएं, कितना चांदी में लगाएं, कहां कहां निवेश वो कर सकते हैं?
4: देखिए मैडम, 5 लाख रुपए हैं तो कम से कम उसको अपने पास कैश में नहीं रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि अगर हम लोग उसको अपने पास रखते हैं तो 5 लाख के 5 लाख ही रहने। मुझे लगता है कि 2026 में जो IBEF का डेटा है वो कहता है कि 600 से 700 टन की गोल्ड की डिमांड का उम्मीद कर रहा है, जो कि लगभग Q1 में देखने को मिला लगभग 53.4 के आसपास, लगभग 54% के आसपास वृद्धि हमें देखने को मिल रही है Q1 की इंडिया के। अब बात आती है कि सिल्वर ज्वेलरी और गोल्ड की ज्वेलरी, तो मुझे लगता है कि उसे गोल्ड में लॉन्ग टर्म प्लान अगर रखना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो गोल्ड इज द अगेन वेरी गुड एंड सेफ हेवन। व्हाई? बिकॉज गोल्ड की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है कंपैरेटिवली छोटी है और सिल्वर की जो डिमांड है वो ज्यादा, बट सिल्वर ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेगी लेकिन गोल्ड बढ़ेगा, तो मुझे लगता है वहां इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी मैडम नवजोत जी, हम देख रहे हैं कि अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहा है, और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है कि देखो इंटरनेशनल डायनेमिक्स को अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश करें, रीड करने की कोशिश करें और उसको डिकोड करें, 12-13 सितंबर को ब्रिक्स का हो रहा है, 11 देश एक साथ आ रहे हैं, 15-16 को फेडरल रिजर्व बैंक की जो है ना मीटिंग हो रही है, ये समझना होगा कि उसके आउटकम से वहां चर्चा होगी और उससे मार्केट, वर्ल्ड का मार्केट है ना, वो अपने आप में शिफ्ट होगा, और वो शिफ्ट होगा कि डॉलर में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें। और जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा, जो प्रश्न था आपका बड़ा ही व्यापक प्रश्न था, बड़ा ही एक आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि 5 लाख रुपए हैं तो कहां, मुझे लगता है कि आज भी गोल्ड एक सेफ हेवन है, और अगर दूसरा ऑप्शन है तो वो है आपका जो है ना रियल एस्टेट। एक मार्केट में लॉन्ग टर्म प्लान अगर करना है तो वो अभी भी एक ऐसा मार्केट है जहां पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। रही बात इसकी डिमांड की, त्योहारी सीजन में गोल्ड में डिमांड बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी वो डिपेंड करेगा 15-16 को जो फेडरल रिजर्व्स के जो आउटकम्स होंगे आने वाले वीक में, मुझे लगता है सितंबर के एंड तक वो सब चीजें क्लियर होंगी, और भारत के अंदर घरेलू डिमांड इसकी गोल्ड की और ज्वेलरी की निश्चित रूप से बढ़ने जा रही है। आई थिंक मेरे से रस्तोगी जी मतलब इस चीज को समझ के जान के, क्योंकि वो लोग मार्केट में लगातार, जैसा उन्होंने कहा कि जब तक नारी है तब तक जो है ना सुनारी है, ये बात सच है, वो एक्सपीरियंशियल बात कर रहे हैं, मैं डेटा पे इस बात कर रहा हूँ।
1: हाँ, तो आपके डेटा से एक एक जवाब रस्तोगी जी से ले लेते हैं, तो क्या सितंबर में सुस्ती और फिर अक्टूबर में तेजी देखने को मिलेगी रस्तोगी जी?
2: डेफिनेटली मुझे लगता है कि जिस तरीके के, अगर ये अगर अमेरिका ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया और वापस कोई परिवर्तन नहीं आया और ये लड़ाई रुकी नहीं, और कई देश इसमें और भी कूद रहे हैं। अभी आपने देखा कि पीछे एक डेटा आया था कि कई देशों ने अपना गोल्ड वापस बेचा है। उस समय कहीं ना कहीं मार्केट स्टेब्लिश हो रहा था, लोगों को लगा कि मार्केट में गोल्ड वापस भी आया है, तो कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहराव आया था। लेकिन पलट करके अमेरिका का जो ये एक तरीका है, वो उस तरीके की वजह से फिर दिक्कत आई है। मैं फिर कहूंगा आपके सारे इन्वेस्टर से भी और सबसे, अगर किसी भी तरीके से अमेरिका ने अपने ये स्टेटमेंट्स वापस नहीं लिए, लड़ाई नहीं रुकी, तो ये सोना अभी आगे और जा सकता है। मैंने जो 1,65,000 से 70,000 की रेंज दी है दिवाली के आसपास, ये अक्टूबर मिड से के बाद से भी हम हाई देख सकते हैं, और अगर ये कहीं पर स्टेबिलिटी आ जाती है तो एक बार हम वापस सोने को 1.5 लाख रुपए के आसपास भी जाता हुआ देख सकते हैं।
1: ठीक है, एक बार प्रोफेसर अमन आपकी राय क्या है, ऐसा कौन सा वैश्विक घटनाक्रम है जो सोने और चांदी की कीमतों पर सबसे ज्यादा असर डालेगा, जिसमें नीचे आ सकती कीमतें?
3: देखिए जी, जो इस समय स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मार्केट और कंट्रीज की है, क्योंकि इन्फ्लेशन उनका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और ये वॉर की स्थिति भी चल रही है, ट्रेड के अंदर भी बैलेंसेस ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ऑल्दो ट्रेड टैरिफ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में अपना डिसीजन दे दिया है और वो उनको वापस करना पड़ा है जो उन्होंने किया था, बट फिर भी जो डिसबैलेंसेस हुए हैं, अब ब्रिक्स में भी बात हो रही है कि अपनी करेंसीज में ट्रेडिंग करें, अलग अलग करेंसीज में ट्रेडिंग करें, डॉलर से हटके करें, नॉट कि डी डॉलराइजेशन की वजह से, बट डॉलर से हटके बिकॉज उसके ऊपर डिपेंडेंस काफी थी और वो ट्रेड सिस्टम्स प्रॉपरली चल नहीं पा रहे हैं। तो इनको देखते हुए, और जैसे मैंने कहा कि मेरे विचार में अभी जो गोल्ड है जिस तरीके से ट्रेंड होता है उससे ओवर प्राइज है और अभी और करेक्शन की इसमें जरूरत है और जो देखने को हमें अगले 1.5-2 महीने मिलेगी। बाकी दिवाली के टाइम पे और उसके बाद शादियों का सीजन रहता है, अगले 4-5 महीने अलग अलग धर्मों की शादियां होती हैं, त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो इसलिए उनमें हमें देखने को मिलेगा कि थोड़ा बहुत उछाल आएगा और वो नॉर्मल आता ही है हर बार। पर जैसे अभी बाकी प्रवक्ताओं ने भी कहा कि काफी ज्वेलर्स ने ओल्ड गोल्ड चेंज करके न्यू गोल्ड और न्यू ऑर्नामेंट्स की बात करी है और काफी लोग अब जो ज्यादा निवेश करके पैसा अटकाना नहीं चाहते हैं, इस वजह से भी हम देखेंगे कि वो जो उछाल पहले हमें आज से 2-3 साल पहले तक दिखाई देखने को मिलता था दिवाली पे या शादियों के ऊपर, वो हमें इतना अब देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज काफी लोग उस चीज को अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और क्योंकि काफी अच्छी स्कीम्स ज्वेलर्स ने दे रखी हैं, तो इस वजह से इतनी तीव्रता नहीं देखने को मिलेगी, थोड़ा गिरावट आएगी और थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, ज्यादा मेरे को उम्मीद बढ़ने की अभी नहीं है। पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सिचुएशन सिर्फ एक ट्रंप या अमरीका की वजह से या रशिया की वजह से नहीं है, क्योंकि वहां पे कोविड के बाद से उनकी इकोनॉमी चरमराई हुई है, ब्रिटेन नहीं संभल पाया है, यूरोप में संभलता नहीं आई है, अमेरिका में संभलता नहीं आई, जापान में संभलता नहीं है, बड़े बड़े देशों में संभलता नहीं आई, चाइना जो है फटफटा रहा है बिकॉज उसकी भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, जबकि पावर मिलिट्री पावर अच्छी है उसकी, बट इकोनॉमिक सिचुएशन उसकी भी ढीली हुई हुई है, तो इसलिए काफी देशों की जो इकोनॉमिक सिचुएशन ढीली हुई है, इसमें कब कौन अपना सोने को डाले मार्केट में ताकि उसके पास लिक्विडिटी आ सके, हम नहीं कह सकते और इससे और गिरावट आ सकती है।
1: अब अगला ट्रिगर अगर प्रोफेसर धीरेश आपसे समझना चाहूं तो सोने चांदी की कीमतों में अगला ट्रिगर कौन सा हो सकता
4: है? निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है मैडम कि गोल्ड की लॉन्ग टर्म डिमांड को सेंट्रल बैंक बाइंग, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन, अभी ये जल्दबाजी होगा 12-13, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि चाइना का प्रेशर है, हम लोग जा सकते हैं डी डॉलराइजेशन की तरफ, नहीं तो कम से कम अपनी करेंसी में ही हम लोग कर सकते हैं, युआन में जा, ईरान ने अभी डिक्लेयर कर ही दिया है लास्ट टू लास्ट वीक के हम जितना अभी अपनी क्रूड ऑयल को कहीं भी सेल करेंगे तो अपनी करेंसी में भेजेंगे। मुझे लगता है कि जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी, इन सब चीजों के कारण गोल्ड उभर के आएगा और निश्चित रूप से जो जियो पोलिटिकल डिमांड है, देखिए ये बात सच है कि केवल अमेरिका ने जो सबसे पहले स्टार्ट किया, देखिए आप अगर हम उसके माइंडसेट्स को पढ़ें, वहाँ के ट्रंप प्रेसिडेंट ट्रंप के माइंडसेट्स को, वो हमेशा ट्रंप प्रेसिडेंट की हैसियत से तो बोलते हैं लेकिन आप उनकी वर्ड्स में सुने तो बिजनेसमैन ज़्यादा देखने को मिलते हैं और बिजनेसमैन के रूप में वो बोलते हैं कि मैं डील कर रहा हूँ, वो कहते हैं युद्ध है तो वो भी डील है, ब्रिक्स हो रहा है तो वो भी डील है, अगर ब्रिक्स की कुछ आउटकम्स आएंगे तो हम फेडरल रिजर्व की अंदर डील करें, मतलब डील वर्ड उनके कितनी बार वो अपने वक्तव्य में बोलते हैं। इससे मुझे लगता है कि गोल्ड इज इक्वल टू वेल्थ प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस सेंट्रल बैंक्स प्लस जियोपॉलिटिकल हेज, मैं इसकी तरफ इशारा करूंगा, और लॉन्ग टर्म अगर हम लोग बात करें तो निश्चित रूप से गोल्ड एक सेफ हेवन के रूप में निकलेगा। रही बात भारत की मैडम, तो जब करेंसी डाइवर्सिफिकेशन होगा तो मुझे आने वाले टाइम में ऐसा लगता है हालांकि ये इजी नहीं होगा और जल्दबाजी है, लेकिन मुझे ऐसा प्रेडिक्शंस है ऑन बिहाफ ऑफ द अवेलेबल डेटा कि करेंसी डाइवर्सिफिकेशन अगर होता है तो डॉलर डाउन होगा, और अभी आप देखेंगे तो रुपए की कंडीशन कुछ मजबूत होती जा रही है। अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आने वाले टाइम में ये कंटिन्यू हो पाया, निश्चित रूप से अमेरिका चाहेगा कि इसको डिसकंटिन्यू किया जाए, डॉलर को अप किया जाए। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इशारा कर रही हैं कि अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है, जिसका कारण मूलतः जो बिग लीडर्स हैं जैसे रसिया यूएसएसआर होता था और यूएसए, ये दोनों ही हैं जो पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। ये अनिश्चितता ही तय कर रही है कि गोल्ड प्रीसियस मेटल होने के बावजूद भी या सिल्वर इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट होने के बावजूद भी जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं उसके पीछे जो एक्सोजीनियस फैक्टर्स हैं वो ये सारे सामने हैं। और जीएनटी ने तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं।
1: बिल्कुल, आप हमेशा रहते ही हैं हमारे साथ चर्चा करते हैं। चलिए जल्दी से, वक्त की कमी, एक छोटा सा जवाब रसोगी जी आपसे, गोल्ड अगर खरीद रहे हैं तो जरा राय दे दीजिए तमाम दर्शकों को, कॉइन्स या फिर ज्वेलरी?
2: नहीं, अगर अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो उसके लिए तो सारे ऑप्शंस हैं,
1: ठीक है,
2: लेकिन अगर शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर या अगर केवल एक गृहिणी है, अगर एक कस्टमर है, तो कस्टमर के लिए मेरा ये सुझाव है कि आप आज मार्केट में जाइए, बहुत सारे लाइट वेट तरीके के नए नए प्रोडक्ट आ चुके हैं और जो आपके लिए इकोनॉमिकल भी हैं, बहुत ही कम मेकिंग पे आए हुए हैं, आप उनको आराम से खरीद सकते हैं, उसमें आपका कोई लॉस भी नहीं है। और पहले की तरह अभी बिल्कुल डिफरेंट टाइप के आ गए हैं, पहले जैसे स्टोन्स की वैरायटी ज्यादा होती थी या मीने की वैरायटी ज्यादा होती थी, आज के टाइम में
1: यानी आप ज्वेलरी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त अभी इतना ही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहे गुड न्यूज़।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: कुछ सालों से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए गणेशोत्सव पर खासतौर से प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय इको फ्रेंडली यानी कि मिट्टी के गणेश प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, जिनका उपयोग करना जल प्रदूषण से बचाव का सबसे बेहतरीन विकल्प है। ऐसे में कई मूर्तिकार जहां मिट्टी और दूसरे सोल्युबल चीजों से बनी एक से बढ़कर एक मनोहारी मूर्तियों को आकार दे रहे हैं, तो इनकी डिमांड भी मार्केट में खूब बनी है। और यही वजह है कि इको फ्रेंडली बप्पा इस गणेशोत्सव में भी रायपुर में काफी ट्रेंड में। दरअसल यहां पर एक परिवार पिछले 25 सालों से गणेश जी की ऐसी ही प्यारी मूर्तियां बना रहा है।

0: बीते कुछ सालों से गणेशोत्सव पर प्रकृति का भरपूर ख्याल रखने का संदेश दिया जा रहा है। नेचर को नुकसान पहुंचाने वाले जहर से कोसों दूर बाप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां आज मूर्ति कारीगरों के साथ आस्थावानों की पहली पसंद है। ऐसे में कुछ मूर्तिकार परिवार अपनी गणेश भक्ति को ही पीढ़ियों से चली आ रही कला परंपरा में बदले हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर का एक परिवार है जो हर साल आस्थामयी और कलात्मक माहौल में भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय बांस, नारियल की छाल और मौली धागा से बेहद खूबसूरत और पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों को आकार दे रहा है। इस परिवार के मुखिया हैं शिवचरण यादव, जो कभी सरकारी मुलाजिम रहे, घर चलाने के लिए भेल भी बेची, लेकिन जब इस काम में मन नहीं रमा तो फिर कलाकारी करने का महज ख्याल ही मानो पैशन बन गया है।
1: बच्चे लोग सबसे पहले मेरे को वहाँ अध्यक्ष बनाए, उसके बाद फिर मैंने अपना धीरे धीरे स्थल सजावट का काम किया। स्थल सजावट करने के बाद अब उसमें भी मजा नहीं आया, तो फिर मैं बोला उसको बंद करके मूर्ति का काम स्टार्ट किया।
0: मूर्तिकार शिवचरण को इन मनोहारी मूर्तियों को आकार देते हुए 25 साल से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान उन्होंने ठेले पर भी बाप्पा की मूर्तियां रखकर बेची। साल 2011 से शिवचरण ने घर पर ही मौली धागा, नारियल की लकड़ी, नारियल की बुच जैसी कई इको फ्रेंडली चीजों से मूर्तियों को आकार देना शुरू किया। वहीं इस बार के गणेशोत्सव में शिवचरण ने धूप दीप, पेड़ की छाल और बांस की लकड़ी जैसी कई और पर्यावरण सुरक्षित जैसी चीजों से खूबसूरत बप्पा बनाए हैं, जिनके डिमांड काफी है।
1: इस बार हम लोग बनाए हैं धूप दीप का बनाए हैं राम भगवान के रूप में, और पेड़ के छाल से बनाया गया है, और उसके बाद बांस की लकड़ी से बनाया गया है, और नारियल की बूच को नारियल का स्वरूप दिया गया है।
2: बिंदी से शंख से
1: सीप, शंख और सीप से बनाया गया है, और ये क्या बोलते हैं,
2: बिंदी से
1: ये मोती से बनाया गया है।
0: शिवचरण और उनके परिवार की नजर में प्रकृति का सम्मान ही बाप्पा की सच्ची भक्ति है। शिवचरण अपनी पत्नी, दो बेटे और एक बहू के सहयोग से विघ्नहर्ता की ऐसी ऐसी सुंदर मूर्तियां बना रहे हैं जिनके चाहने वाले ग्राहक हर साल बढ़ रहे हैं।
3: बाकी मूर्तियां तो अलग अलग बनाए जाते हैं मिट्टी से और बाकी अन्य चीजों से, लेकिन हम लोग गणेश जी को किसी भी चीज में अलग अलग रूप में बनाकर, मतलब आप देख सकते हैं कि पीछे एक लकड़ी की छाल है, सामने धूप अगरबत्ती है, उसके हिसाब से अलग अलग चीजों से बनाते हैं।
2: आस्था भी है गणेश
3: जी? बहुत आस्था है हमारी।
0: फिलहाल तो मिट्टी की ये सुंदर सुंदर इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा हमारी प्रकृति को मुस्कुराने की वजह दे रहे हैं। रायपुर का ये परिवार गणेश मूर्ति को बनाने की कला को जिस अंदाज में जिंदा रखे हुए है, उससे न केवल समाज को अपना पर्यावरण बचाने की प्रेरणा मिल रही है, बल्कि खुशहाल प्रकृति बने रहने का संकेत भी मिल रहा है। तो हो जाए एक बार फिर विघ्नहर्ता का ये प्यारा सा उत्सव इको फ्रेंडली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: हनुमान चालीसा की किस पंक्ति का पाठ करने से रोग और बीमारियां दूर हो जाते हैं? हनुमान चालीसा की किस पंक्ति का पाठ करने से बड़ी समस्या मिट जाती है? क्या है हनुमान चालीसा की महिमा और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज बात होगी उस मेगा इवेंट की जिसके सारे टिकट्स महज एक घंटे में बिक गए और 40,000 से ज्यादा लोग वेटिंग में रह गए। कैसे सुपरहिट रहा प्रधानमंत्री मोदी का ये इवेंट, इसकी तस्वीरें थोड़ी देर में आगे आपको दिखाएंगे।
7: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, एक तरफ वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो हुआ तो वहीं दिल्ली में भी एक बड़े इंटरनेशनल इवेंट की तैयारी चल रही है। ब्रिक्स देशों के नेता दिल्ली पहुंचने वाले हैं, तो इस समिट के लिए कैसे सज सवर रही है दिल्ली, इसकी भी आगे करेंगे बात।
0: नमस्कार, मैं अशोक गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। फेस्टिवल का माहौल श्रीनगर में भी बना हुआ है, यहाँ पहली बार दुनिया भर के फिल्म मेकर्स पहुंचे हैं, अलग अलग देशों की फिल्में यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। तो श्रीनगर में कैसा है सिनेमा का ये मेगा इवेंट, इसकी तस्वीरें आई हैं, दिखाएंगे आपको।
7: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। देखिए, आगे बात गणपति उत्सव की भी करेंगे जिसकी तैयारियों की तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। घर घर बप्पा के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, तो गणपति उत्सव को लेकर कैसा है लोगों में उत्साह, इसकी तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएंगे।
8: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो आज आपको राजस्थानी रंग में सजी उस खास कार के सफर पर भी लेकर चलेंगे जिस पर कठपुतली कला से लेकर राजस्थान के पारंपरिक शिल्प को दिखाया गया है। तो क्या है शाही कार की कहानी, इसके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: वडोदरा में 6,000 से ज्यादा युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का मेगा इवेंट, प्रधानमंत्री का हुआ ग्रैंड वेलकम, 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया दिया गिफ्ट, कहा ये विकास का उत्सव है। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल, 11 सितंबर से शुरू हो रहा है सम्मेलन। भारतीय सेना की बड़ी सफलता, चिनूक से अल्ट्रा लाइट होवित्सर का चुनौतीपूर्ण इलाकों में तैनात करने का सफल प्रदर्शन किया। देश भर में गणेशोत्सव की तैयारी, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार, झांसी में भोलेनाथ के साथ गणेश के अनोखे स्वरूप ने खींचा लोगों का ध्यान।
10: जूनियर हॉकी एशिया कप भारतीय मेंस टीम की लगातार दूसरी जीत, साउथ कोरिया को 7-3 से हराया, आखिरी क्वार्टर में हुए 3 गोल।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा होगी जेन जी संवाद से। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा दौरे की हम बात आज कर रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने जेन जी से संवाद किया, लेकिन सबसे खास बात रही प्रधानमंत्री की इस इवेंट में एंट्री। उन्होंने इस कार्यक्रम में मंच पर धमाकेदार अंदाज में एंट्री की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम किसी आम राजनीतिक सभा जैसा नहीं था, बल्कि किसी बड़े कॉन्सर्ट जैसी तैयारियां यहां पर की गई थी। एंट्री के लिए मोबाइल ऐप रजिस्ट्रेशन, QR कोड से एंट्री और 4K स्क्रीन पर लाइव प्रसारण जैसी तैयारियां की गई थी।
11: और देखिए, ये पहला मौका था जब पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवाई गई। 1 घंटे के अंदर पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए सभी सीटें बुक हो गई। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 7 तस्वीरें, जिससे जाहिर हो जाता है कि पीएम का ये कार्यक्रम

0: दूसरे छोर तक रेड कार्पेट पर चलकर प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री की ग्रैंड एंट्री, बीच में रेड कार्पेट है, दोनों तरफ बड़ी संख्या में युवा बैठे हुए हैं, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री। तो ये मेगा इवेंट वडोदरा में हुआ। और एक और बड़ी खास बात ये कि टिकट्स बहुत जल्दी बिकर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वेटिंग में ही रह गए।
1: तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मेगा इवेंट की तस्वीरें बेहद भव्य हैं। जहां पीएम मोदी ने युवाओं से संवाद किया, तो वहीं कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यहां पे आयोजन किया गया। कई कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। इसके अलावा स्कूली छात्रों ने पिरामिड बनाकर माहौल को और भी ज्यादा यादगार बना दिया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 25 मिनट युवाओं से संवाद किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहां पर आयोजन हुआ। छात्र यहां पर जुटे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेन जी से खास संवाद किया।
2: प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम में गणेश उत्सव की धूम भी देखने को मिली। नमो फॉर विकसित भारत नाम के इस शो में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दी। कलाकारों ने ढोल नगाड़ों के साथ एक जबरदस्त प्रस्तुति देकर समा बांध दिया।

0: संबोधन बहुत अच्छा रहा। पीएम सर ने देश में एआई का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, और ये बहुत बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो एआई है वो इंजीनियरिंग फील्ड या कंप्यूटराइज फील्ड में ज़्यादा पता होते हैं, बट अलग अलग डिपार्टमेंट वाले जैसे आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले या फार्मा डिपार्टमेंट वाले, तो सबको एआई का नॉलेज होना चाहिए। तो ये बहुत अहम और बहुत बड़ा मुद्दा था जिसके ऊपर सर ने बात किया, बहुत अच्छा लगा।
1: उन्होंने जो जेन ज़ी लोगों के लिए जो बात कही, जो गाइडेंस दिया, वो बहुत अच्छा था। उससे बहुत इम्पैक्टफुल पड़ेगा, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया।
2: भारत में जो 2047 तक का लिया है, जो रेलवे का है, जो सोलर का उन्होंने बोला, वो बहुत अच्छा था, हमारे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा होगा।
3: आप क्या मानती है, कौन सा मुद्दा था जो आपको टच किया जेन ज़ी को, खास करके युवाओं के बारे में उन्होंने बात की?
4: जो विकसित भारत के लिए मोदी जी ने बात की, वो बहुत हमें अच्छा लगा कि अगर 2047 तक विकसित भारत बन जाते तो हमें बहुत खुशी होगी एज ए जेन ज़ी भी।
3: आप क्या मानती है, कौन सा वो पॉइंट था जो पीएम ने बात की और वो सीधा युवाओं को इम्पैक्ट करता हो?
5: मुझे ऑलमोस्ट सारे अच्छे लगे। कुछ एआई को रिलेटेड उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छे मार्गदर्शन दिए जो कि काफ़ी ज़रूरी थे जेन ज़ीज़ के लिए, एंड जेन ज़ीज़ जस्ट लव नरेंद्र मोदी एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियंस।
3: आज का उनका वेलकम था, रॉकस्टार की तरह वेलकम रहा, वो कैसा रहा? आप उधर मौजूद थे, क्या फील किया वहाँ पे?
6: सो आई थिंक द ऑरा दैट पीएम मोदी हैव, ये परफेक्ट वेलकम था उनके लिए, और आई बिलीव कि जो हमारी कंट्री है वो राइट हैंड में है, तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर इज द पिलर ऑफ द कंट्री, और जिस तरह उन्होंने हाईलाइट किया इन्वेस्टमेंट ऑन रेलवेज, 43 माल गाड़ीज डेली चल रही है, विच इज इनक्रेडिबल, सो वी लव यू सर।
7: चलिए बात करते हैं दिल्ली में आयोजित होने जा रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, जिसको इस साल 20 साल पूरे हो रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स की अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है, और अध्यक्ष के नाते इस बार के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जिम्मेदारी भी भारत की है। सम्मेलन में शामिल होने वाले राष्ट्राध्यक्षों और वीवीआईपी प्रतिनिधिमंडलों की सुरक्षा के लिए मल्टी लेयर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है।
8: बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट से लेकर होटलों और कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तैयारियां जो हैं काफी लंबे समय से चल रही हैं इसके लिए। जमीनी रास्तों से लेकर आसमान तक राजधानी दिल्ली को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। एनएसजी और दिल्ली पुलिस की स्वैट टीम को तैनात कर दिया गया है खासतौर पर, और सुरक्षा का ऐसा खाका तैयार किया गया है जिसमें चूक की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अपनी सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए एनएसजी टीम्स मॉक ड्रिल लगातार कर रही हैं। एनएसजी के साथ ही एसपीजी और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को भी तैनात कर लिया गया है।
7: तो कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्रिक्स की अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है, और अध्यक्ष के नाते इस बार के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जिम्मेदारी भारत की है। ऐसे में तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुल मिलाकर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी दिल्ली में लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। 12 और 13 सितंबर को इस शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए ब्रिक्स के सदस्य देशों के बड़े नेता जुटेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे

0: में होने जा रहा है जब संगठन के 20 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में समिट के मद्देनजर तैयारियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है।
1: और देखिए, आम लोगों को यात्रा के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने की सलाह दी गई है। लोगों से मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील की गई है। साथ ही एयरपोर्ट जाने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए गए हैं। सुरक्षा के तहत सड़क किनारे पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। साथ ही दिल्ली में 11 सितंबर को सभी स्कूल बंद रखने का भी ऐलान किया गया है।
2: दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन है और उसको लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हूं और यहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एनएसजी के कमांडो इस वक्त ड्रिल कर रहे हैं। दरअसल एनएसजी के तमाम जो कमांडो हैं वो उनकी तैनाती जो है इस ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के लिए इनको किया जा रहा है। यहां पर एक खास तरीके की ड्रिल एनएसजी के कमांडो जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्लीदरिंग के जरिए यानी कि रस्सियों के जरिए नीचे उतर रहे हैं और उसके बाद जिस लोकेशन पर इनको ऑपरेशन करना होता है उसके लिए ये लोग आगे यहां से बढ़ेंगे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो जो है वो पूरी तरीके से यहां पर तैयारी कर रहे हैं। दरअसल इस बार का जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो काफी महत्वपूर्ण है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। आप यहां जो एनएसजी के कमांडो सामने की तरफ देख रहे हैं, साफ तरीके से एनएसजी के तमाम जो कमांडो हैं उनको यहां पर उतारा गया है। और सबसे खास बात यह है कि आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं वो ये दर्शाता है कि किस तरीके से तैयारी जो है वो एनएसजी के कमांडो और जो दूसरी एजेंसियां हैं उनके द्वारा किया गया है। दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन की सुरक्षा के लिए करीब 5000 के आसपास सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि करीब इतने ही जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का जो कमांडो है वो पूरी तरीके से यहां पर तैनात रहेंगे।
3: सबसे बड़ी बात यह है कि एनएसजी की टीमें जो हैं वो भारत मंडपम जहां पर ये ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है वहां की सुरक्षा में ये लोग तैनात रहेंगे। दिल्ली पुलिस और जो दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी इस सुरक्षा में तैनात रहेगी। उससे पहले जो 12 और 13 तारीख को ब्रिक्स सम्मेलन है उसके लिए खास तैयारी एनएसजी के कमांडोज यहां पर कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि वहां पर एनएसजी का एंटी ड्रोन सिस्टम वो भी लगाया जाएगा। जो दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं करीब 5000 के आसपास जो एनएसजी के जवान हैं वो और इसके साथ ही जो दूसरी सुरक्षा बल हैं वो सब तैनात रहेंगे। तो आप यहां तस्वीरों में देख रहे हैं, इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की जो स्वॉट टीम है उसको भी यहां पर तैनात किया गया है। कोऑर्डिनेटेड अप्रोच जो है वो सुरक्षा एजेंसियों का इस वक्त यहां पर दिखाई पड़ रहा है और तमाम एजेंसियां जो है मिल करके इस वक्त यहां पर काम कर रही हैं जिससे कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक न हो।
0: चलिए अब आपको लिए चलते हैं हसीन और दिलकश वादियों की सैर करवाने के लिए। रुक करते हैं कश्मीर के श्रीनगर का, जहां शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसका उद्घाटन किया। 10 सितंबर तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल के लिए देश और दुनिया भर के फिल्म मेकर्स ने उत्साह दिखाया है। घाटी में यह पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसमें 4 दिन के इवेंट में स्क्रीनिंग के लिए 41 देशों की 135 फिल्में चुनी गई हैं। तो इंटरनेशनल फिल्म समुदाय की नजर में अब सिर्फ डल झील, शिकारा, बर्फीले पहाड़ और चिनार की लोकेशन नहीं, कश्मीर एक ऐसे सिनेमाई क्षेत्र के रूप में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है जहां फिल्में दिखाई जाएं, फिल्म मेकर मिले, बैठे, चर्चा करें और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। इस फिल्म फेस्टिवल को लेकर कश्मीर के युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है।

0: कश्मीर की हसीन वादियों में सिनेमा और संस्कृति का महामंच सज चुका है, जिसका आगाज कलाकारों की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ हुआ तो पूरा शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर गीत संगीत और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये घाटी में हो रहा पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया। इसके साथ ही सिनेमा और जम्मू कश्मीर के पुराने और गहरे रिश्ते का एक और नया अध्याय शुरू हो गया है।
1: गवर्नमेंट की तरफ से पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दो तीन मकसद हैं। एक तो दुनिया भर की कुछ फिल्में जो हैं, यहाँ जो लोग या तो शौकीन हैं या मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इस तरह का एक्सपोजर देना। फिर जो हमारे लोकल फिल्म इंडस्ट्री है, उन्हें भी थोड़ा सा इसमें एक एक्सपोजर मिल जाता है। और कोशिश की जा रही है कि हम मुल्क के फिल्म इंडस्ट्री को याद दिलाएं कि स्विट्ज़रलैंड और बाकी मुल्कों से पहले अगर फिल्में बनती थीं तो कश्मीर में बनती थीं, और हम चाहेंगे कि वो सिलसिला दोबारा शुरू हो जाए।
0: कश्मीर में आयोजित हो रहे इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें बॉलीवुड एक्टर फातिमा सना शेख, फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा, रमेश सिप्पी और संतोष सिवन के साथ साथ बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई हस्तियां शामिल रही, जिन्होंने घाटी में हो रहे इस बड़े आयोजन पर खुशी जताई।
2: हमारे यहाँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया जा रहा है और वो भी गवर्नमेंट लेवल पे, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। हमने भी कई फेस्टिवल्स और कार्निवल्स किए हैं यहाँ पे, और ये एक बड़ी लेवल पे जो हुआ है, ये दैट्स आई कैन से कि बहुत अच्छा है। इसमें फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है यहाँ, उसको बूस्ट मिले।
0: भारतीय सिनेमा और कश्मीर का रिश्ता नया नहीं है। 1960 और 70 के दशक में कश्मीर की कली, जंगली, आरजू और कभी कभी जैसी कई हिट फिल्मों ने घाटी को प्रेम, संगीत और प्राकृतिक सौंदर्य की सिनेमाई कल्पना का हिस्सा बना दिया था। इन फिल्मों के जरिए देश ही नहीं दुनिया भर के दर्शक भी कश्मीर की खूबसूरती से रूबरू हुए। लेकिन 90 के दशक में आतंकवाद के चलते कश्मीर के सिनेमा घरों के दरवाजे बंद हो गए और फिल्मों की शूटिंग लगभग रुक गई थी। हालांकि आज हालात तेजी से बदले हैं, जिसके चलते न सिर्फ घाटी में फिर से सिनेमा घर खुले हैं, बल्कि पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी हो रहा है।
3: जब हम सिनेमा से महरूम रहे, और ये तो वो इलाका है जिसका हिंदुस्तानी सिनेमा के साथ चोली दामन का साथ रहा, आपने हमने वो दौर भी देखा जब कश्मीर के हर गली, हर कूचे में, हर बागीचे में शूटिंग हुआ करती थी। ये होटल, ये हाउस बोर्ड फिल्मी दुनिया के मेहमानों से आवाज थे। तो मुझे लगता है कि एक तरह से अनेकों तरह से वादी कश्मीर का बॉलीवुड से भी नाता रहा। कश्मीर एनरिच्ड बॉलीवुड एंड बॉलीवुड इन टर्न एनरिच्ड कश्मीर।
4: आखिरी बात, जो यहाँ के लोकल हमारे आर्टिस्ट हैं, वो कभी कभार शिकायत करते हैं कि जितना ज्यादा बॉलीवुड आएगा यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को इन्वॉल्व करने की जरूरत है।
3: ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि लोकल आर्टिस्ट के लिए आउटलेट है।
0: जम्मू कश्मीर प्रशासन को उम्मीद है कि ये आयोजन कश्मीर के लोगों को दुनिया भर के प्रोफेशनल्स से बातचीत करने का मौका भी देगी, और वो फिल्म मेकर से जुड़ पाएंगे, आइडिया एक्सचेंज कर पाएंगे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों की फिल्में भी देख पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: चलिए, फिल्मों की चुकी बात निकली है तो हम बात तो उसी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हाँ, अब बात करेंगे आध्यात्मिक फिल्मों की, जिसकी एक तरह से बाढ़ सी आ गई है। आपको बता दें कि बाबा नीम करौरी पर बनी उनकी जिंदगी पर आधारित हनुमान अंश, जिसने महज 32 दिनों में 155 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली, रिकॉर्ड बना दिया है। अब इसको लेकर चर्चा हो रही है और साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री में धार्मिक और भक्ति फिल्मों के नए दौर की कह रहे हैं एक तरह से शुरुआत हो गई है। लेकिन अगर आप लोगों को ध्यान हो, जैसे बहुत पहले की अगर हम बात करें, जय संतोषी माँ, वो ब्लॉकबस्टर मूवी थी उस दौर में, अपने आप में पहली आई थिंक आध्यात्मिक फिल्म इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्केल पर आई थी। आप शायद कमेंट
6: किए,
5: क्या बात है, शायद ये कमेंट ना कर पाए।
6: मैंने देखी क्योंकि वो इतनी ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी थी, और उससे ना आपको पता चलता है कि भाई क्या कहानी थी, क्या था। जैसे नीम करौली बाबा पे बनी है तो आधे लोगों को पता ही नहीं होगी कि उन्होंने क्या किया था, किस तरीके से पूरी उनकी जिंदगी थी। तो वो एक बहुत जरूरी है कि ये जो मूवी आई है उससे लोगों को पता चलेगा, और आप यकीन नहीं मानेंगे, लोग बार बार बार यही पूछने को भी मिलता है, देख ली हनुमान अंश देख ली, ऐसे लोग पूछ रहे हैं।
7: मुझे हालांकि मैं किसी और फिल्म को हम ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि एक हॉल में मिर्जापुर लगी थी, एक में करौली लगी थी, तो हम क्योंकि फैमिली के साथ जाना था तो फैमिली के लिए ये फिल्म ज्यादा बेटर
5: है। मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों को नहीं पता है बाबा नीम करौली के बारे में, पहले तो आप जान जाएंगे, और अगर आप एथीस्ट हैं तो आपको स्पेशली ये मूवी जाके देखनी चाहिए, आपका डिवोशनल एंगल जो है ना वो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा इस मूवी को देखने के बाद।
8: शगुफ्ता एक और बात है, जैसे साल 2026 की अगर आप बात करोगे ना तो ये केस स्टडी है, एक गुजराती फिल्म आई थी कृष्ण सदा सहाय थे, ऐसी हाल था बिल्कुल, दो तीन लोग बैठे होते थे थिएटर में, सबको लगा क्या ही करेगी ये फिल्म, दो चार दिन में उतर जाएगी। हुआ कुछ ऐसा कि वर्ड ऑफ माउथ का असर हुआ और ये फिल्म गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी, और ये इस फिल्म के साथ भी हो रहा
7: है। और पता है इसी फिल्म को अब साउथ में भी डब करने की बात हो रही है,
9: अब तो इंटरनेशनली इसको ये रिलीज किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक वो नाम है आध्यात्मिक फिल्मों में जिसके बारे में मुझे लगता है कई बार बन चुकी है, अभी भी बन रही है, साईं बाबा पर, है ना, उनके तो बचपन से ही हम देख रहे हैं, तेरे साईं या फिर कुछ मेरे साईं ऐसा करके कुछ उसको आ गई है। तो चलिए आपको हम बता दें कि ये शुरुआत जो है ताजा तरीन अब राजस्थान के सीकर के बारे में खाटू श्याम को लेकर, वहां पर चुकी एक मंदिर है खाटू श्याम का मंदिर, और कहानी को अब बड़े पर्दे पर इनकी उतारने की अब बात कही जा रही है। इसके अलावा साईं बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म तेरा साईं, उसकी भी रिलीज डेट फाइनल हो गई है।

0: ना कोई शोर शराबा, ना कोई मार्केटिंग, चुपके से एक फिल्म सिनेमाघरों में आई और देखते ही देखते शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। बाबा नीप करौरी की जिंदगी पर आधारित हनुमान अंश ने माउथ पब्लिसिटी के रथ पर सवार होकर चंद दिनों में ही ब्लॉकबस्टर का तकमा हासिल कर लिया। महज 2 करोड़ में बनी मिनी बजट की इस फिल्म ने महज 32 दिनों में 155 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया है जो मेन स्ट्रीम की कमर्शियल फिल्में भी आमतौर पर नहीं कर पाती। और आलम यह है कि हनुमान अंश की अपार सफलता ने फिल्म इंडस्ट्री में धार्मिक और भक्ति फिल्मों के नए दौर की शुरुआत कर दी है। इसका सबसे ताजा तरीन सबूत हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में मौजूद खाटू श्याम का मंदिर प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन अब खाटू श्याम की कहानी को बड़े पर्दे पर रोशन करने की तैयारी है। मेकर्स ने इसकी घोषणा करते हुए लिखा है, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। हमें घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा एक भक्तिमय फिल्म है जो आस्था, त्याग और आशा के शाश्वत प्रतीक श्री खाटू श्याम जी की पवित्र और पूजनीय कथा से प्रेरित है। 2027 में ये फिल्म सिनेमाघरों में होगी।
1: अब अडेंशिया एंटरटेनमेंट ने सिलेक्ट मीडिया के साथ मिलकर हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम हमारे का ऐलान किया है। फिल्म महाभारत के वीर योद्धा बर्बरिक और उनके खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजे जाने की कहानी पर आधारित होगी और 2027 में थिएटर्स में रिलीज होगी।
0: धार्मिक फिल्मों की इस कड़ी में एक और नाम है तेरा साईं। आध्यात्मिक गुरु साईं बाबा के जीवन पर आधारित इस फिल्म की तो रिलीज डेट भी फाइनल हो गई है। अगले साल 5 फरवरी को रिलीज होने जा रही इस फिल्म की जर्नी शुरू करने से पहले राइटर डायरेक्टर पलाश मुच्छल टीम के साथ शिरडी पहुंचे, साईं बाबा के चरणों में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया और तेरा साईं का पोस्टर रिलीज किया। संजय मिश्रा फिल्म में साईं बाबा के किरदार में नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करण जौहर भी धार्मिक फिल्मों को पहले पर्दे पर लाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। उनकी फिल्म राधा और कृष्ण की कहानी पर आधारित होगी। पिछले साल की सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो कृष्ण सदा सहायते के तेलुगु वर्जन पर भी काम चल रहा है। लालो कृष्ण सदा सहायते ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और ये गुजरात की पहली फिल्म बनी थी जिसने 100 करोड़ कमाए। रिपोर्ट के मुताबिक इसके तेलुगु वर्जन को अब लार्ज स्केल पर लाने की तैयारी है और भगवान कृष्ण के रोल के लिए अल्लू अर्जुन, विजय देवरकोंडा और रामचरण जैसे नामों पर विचार हो रहा है। हनुमान अंश के सीक्वल की तो घोषणा हो ही चुकी है। यही नहीं, एनिमेटेड धार्मिक फिल्में भी इस कड़ी में पीछे नहीं है। 2025 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म महावतार नरसिम्हा ने इस सिलसिले की शुरुआत की थी जिसे महावतार परशुराम आगे बढ़ाएगी। इस फिल्म के भी 2027 में ही रिलीज होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज रिपोर्ट।
2: तो देखिए, भक्ति आस्था स्पिरिचुअलिटी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो भक्ति का ये जो माहौल है इसे और ज्यादा भक्तिमय बनाते हैं। और बात करते हैं गणेश उत्सव की, जिसकी तैयारियां बहुत लंबे समय से चल रही हैं। जो मूर्तिकार हैं अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं गणपति बाप्पा की मूर्तियों को। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको गणपति बाप्पा के यानी इस उत्सव के असल रंग देखने, आप तो मुंबई में भी रहे हैं शगुफ्ता, तो मुंबई से बेहतर जगह तो नहीं हो सकती।
3: नहीं, मैं तो हर बार ये स्टेटमेंट होती है कि अगर आपको जाना है तो एक बार जरूर जाइए। हालांकि वो बात डिफरेंट है, हम कहते हैं कि महाराष्ट्रन लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन एक बार उस जगह का रंग, क्योंकि साड़ी कहीं की खरीदनी हो तो आप कहते हैं ना उस स्टेट में जाके साड़ी खरीद लेते हैं, तो वही बात है कि गणपति उत्सव जाके देखना तो एक बार मुंबई जरूर जाइए, रौनक अलग होगी।
4: बिल्कुल, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व है भाई, अगर इसको देखा जाए तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव है। और मुझे लगता है कि इस समय न सिर्फ पंडालों में, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे दुर्गा पूजा भी अगर होता है तो यहाँ भी पंडालों में उनकी प्रतिमा बैठती है, लेकिन महाराष्ट्र में तो घर घर गणपति आते हैं। नहीं,
3: और वहाँ ना दही हांडी भी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा इंतजार रहता है मोदक का, कि कब गणेश उत्सव में भी शुरू। ऑफिस में सब लोग अलग अलग घर से बनाकर लाते हैं, तो वो एक फेवरेट पार्ट है।
5: और मोदक जो यहाँ मिलते हैं ना, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। वो नॉर्थ इंडियंस ने अपने स्वाद के हिसाब से मोदक करते हैं। एक्चुअल मोदक जो होता है, लास्ट ईयर आई थिंक हम लोगों ने खाए थे, वो चावल का उसका आउटर होता है, उसके अंदर नारियल फिलिंग होती है,
4: गुड़ और नारियल ड्राई फ्रूट्स के साथ।
5: पूरा माहौल हमने बना दिया, आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं।
6: किसी के सिर पर सजी है खूबसूरत पगड़ी, तो किसी के सिर पर मोर पंख का श्रृंगार। कहीं बापा मोदक का भोग लगाते नजर आ रहे हैं, तो कहीं भक्तों को आशीर्वाद देते हुए। गणपति की हर प्रतिमा में भक्ति के साथ कलाकारों की अनोखी कल्पना भी नजर आ रही है। झांसी के बाजारों में सजी बापा की ये खूबसूरत मूर्तियां हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है।
7: ज्यादा उत्साह दिखता है, आदमी मंग दिखती है, भीड़ भाड़ भी बहुत ज्यादा लगती है, हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है जी।
8: इको फ्रेंडली मूर्ति है सब।
9: इको फ्रेंडली कैसी?
8: मिट्टी की।
9: अच्छा, इससे पर्यावरण को नुकसान
8: नहीं होता? तालाब में विसर्जित कर सकते हैं, घर में किसी टब में।
6: अब इन प्रतिमाओं के पंडालों तक पहुंचने का सिलसिला भी तेज हो गया है। हर गुजरते दिन के साथ पंडालों में बापा का आगमन बढ़ता जा रहा है। नागपुर के महल इलाके में विराजमान होने वाले गणपति बापा की भव्य मूर्ति भी पूरे धूमधाम के साथ लाई गई। बापा के आगमन पर ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे से पूरा इलाका गूंज उठा। गणपति के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भक्तों ने जयकारों के साथ बापा का स्वागत किया और पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। बीते कुछ वर्षों से गणेश उत्सव के दौरान प्रकृति को बचाने और पर्यावरण का ख्याल रखने का संदेश लगातार दिया जा रहा है। यही वजह है कि अब इको फ्रेंडली गणपति की और भक्तों का रुझान बढ़ा है। मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनी बापा की मूर्तियां आज भक्तों की पसंद बन रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बांस और चिकनी मिट्टी से गणपति बापा की बेहद खूबसूरत और पर्यावरण अनुकूल मूर्तियां तैयार की जा रही है। कारीगरों की मेहनत से आकार ले रही ये मूर्तियां न सिर्फ देखने में आकर्षक है बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रही है।
10: मैंने मूर्ति कम से कम आज मेरे को 25 साल से ऊपर हो गया बनाते हुए, और सबसे पहले मैंने मौली धागा से बनाने का स्टार्ट किया गणेश जी।
6: संगम नगरी में मूर्तिकार पूरी लगन और आस्था के साथ बापा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। खास बात यह है कि यहां भी पर्यावरण संरक्षण का पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
11: प्रयागराज में यहाँ गणेश मूर्तियाँ तैयार की जा रही है, उसमें रंग भरा जा रहा है, और जो यहाँ मूर्तिकार हैं तपसपाल यहाँ पर इन मूर्तियों में रंग भरने का काम कर रहे हैं। छोटी से बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई जा रही हैं।
6: इन मूर्तियों को बनाने में गंगा की मिट्टी, धान के पैरा और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। यानी बापा की भक्ति के साथ पर्यावरण का भी पूरा ख्याल रखा गया। विसर्जन के बाद ये प्रतिमाएं प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना आसानी से मिट्टी में घुल जाती है।
12: यहाँ पे गणेश जी का मिट्टी पूरा प्योर मिट्टी और गंगा जी का शुद्ध मिट्टी से बनता है, और इसमें धान का पैरा है और लकड़ी है, बांस है। ये इको फ्रेंडली, पूरा कलर भी हमारा इको फ्रेंडली है।
6: पर्यावरण संरक्षण की यही मुहिम अब बच्चों को भी बापा से जोड़ रही है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बच्चे खुद मिट्टी से गणपति बापा की प्रतिमा गढ़ रहे हैं। यहाँ बापा की मूर्ति बनाने की वर्कशॉप आयोजित की गई है। यहाँ बच्चों ने पूरे उत्साह और आस्था के साथ मिट्टी से गणपति की सुंदर प्रतिमाएं तैयार की। इस वर्कशॉप का मकसद बच्चों को अपनी जड़ों और मिट्टी से जोड़ना था, इसीलिए बच्चों ने कुछ वक्त मोबाइल से दूरी बनाई और मिट्टी से दोस्ती कर ली। गणपति उत्सव नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और जड़ों से जोड़ने की सीख भी दे रहा है, साथ ही पर्यावरण को बचाने का संदेश भी। झांसी से, नागपुर से योगेश वसंत पांडे, चंद्रपुर से विकास राजकर और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: तो चलिए अब आपको दिखाते हैं भक्ति की एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर शिव भक्तों का हृदय आस्था और उल्लास से भर उठेगा। पहली तस्वीर है आगर मालवा की, जहां नलखेड़ा में प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी पूरे लाभ लश्कर के साथ नगर भ्रमण पर निकली। फूलों से सजी पालकी में दूल्हे के रूप में बाबा गुप्तेश्वर महादेव विराजित थे। भगवान भोलेनाथ की बारात से लेकर माता पार्वती, विशाल नंदी और खाटू श्याम जी की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। देखिए दूसरी तस्वीर उज्जैन के बाबा महाकाल दरबार की है, जिनकी शाही सवारी उज्जैन की सड़कों पर शान से निकली और उनकी डोली के साथ भक्त नाचते झूमते हुए चले। करीब 7 किलोमीटर लंबे सवारी मार्ग पर बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। सवारी में बाबा महाकाल के 6 स्वरूप शामिल रहे। शिप्रा नदी के राम घाट पर पूजा अर्चना के बाद सवारी वापस महाकाल मंदिर। तो चलिए यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कैसे जयपुर में संस्कृति की सवारी बनी हुई है एक कार।
13: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: रामनगरी अयोध्या से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा, मानदेय में 50% इजाफे के साथ मिलेगा 5,00,000 रुपए तक कैशलेस इलाज। वडोदरा में 6,000 से ज्यादा युवाओं के साथ पीएम का मेगा इवेंट, कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम, 35,000 करोड़ की विकास योजनाओं का दिया तोहफा। हथियार में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल, 11 सितंबर से शुरू हो रहा सम्मेलन। देश भर में गणेशोत्सव की तैयारी, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार, झांसी में भोलेनाथ के साथ गणेश के अनोखे स्वरूप ने खींचा लोगों का ध्यान। जूनियर हॉकी एशिया कप, भारतीय मेंस टीम की लगातार दूसरी जीत, साउथ कोरिया को 7-3 से हराया, आखिरी क्वार्टर में हुए 3 गोल।
3: पिंक सिटी जयपुर लिए चलते हैं, राजस्थानी कला संस्कृति शिल्प और लोक परंपराओं की कहानी आप केवल म्यूजियम आर्ट गैलरीज या फिर हवेलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक चलती फिरती आर्ट कार के जरिए राजस्थान की सड़कों पर आप यहाँ की संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे।
4: बिल्कुल, संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। दरअसल जयपुर की एक संस्था का एक नया इनिशिएटिव है जिसका नाम है स्टोरीज ऑफ इंडियन सिटीज, जिसमें कठपुतली कला से लेकर पारंपरिक शिल्प को शोकेस किया गया है। ये आर्ट कार जयपुर से जैसलमेर तक राजस्थानी विरासत की कहानी सुनने के लिए बीते 4 सितंबर को निकल चुकी है और ये जो सफर है वो 23 सितंबर को बाड़मेर पर जाकर खत्म होगा।
5: जिस धरती पर रेत भी सुनाती है गीत, पग पग पर मुस्कुराती है संस्कृति, रंग बिरंगी पगड़ियों में नजर आती है मिट्टी की शान, वही है अलबेला राजस्थान। राजस्थान जो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि दिल में बस जाने वाला एक एहसास है, और ये एहसास राजस्थान की लोक कला, शिल्प, खान पान और परंपराओं में नजर आता रहा है। इसी लोक कला के दर्शन करा रही है ये अनोखी आर्ट कार, जो करीब 3500 किलोमीटर का सफर तय कर इस सूबे की जीवंत संस्कृति की अनकही कहानियों को सामने लाएगी।
6: लग्जरी कार्स हर किसी को पसंद है, क्लासिक और विंटेज गाड़ियों के बारे में भी हर कोई जानता है, पर किसी ने ये नहीं सुना होगा कि कोई गाड़ी कल्चरल है। बिल्कुल ये थॉट आएगा ही आएगा कि कोई गाड़ी कल्चरल कैसे हो सकती है, ट्रेडिशनल कैसे हो सकती है, पर मैं जिस गाड़ी में बैठ के आपको गुड न्यूज टुडे पे सफर करवा रही हूँ वो गाड़ी ट्रेडिशनल है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से कलरफुल काम हमें इस गाड़ी पे दिख रहा है, इसको पूरा कस्टमाइज किया गया है। राजस्थान में जयपुर की सड़कों पे नजर आ रही है, तो पिंक सिटी में ये पिंक इंटीरियर वाली गाड़ी अभी छाई हुई है।
5: स्टोरीज ऑफ इंडियन सिटीज के नाम से इस सजीली कार में कठपुतली कला से लेकर पारंपरिक शिल्प का शोकेस है, जो जयपुर से जैसलमेर तक करीब 20 शहरों से गुजरते हुए राजस्थानी विरासत की कहानी सुनाएगी।
6: इसके दो आर्टिस्ट हैं, या कह सकते हैं कि कार्टिस्ट हैं, और ये जो दो कार्टिस्ट हैं उनमें से एक ने इसका इंटीरियर किया है तो दूसरे ने इसका एक्सटीरियर में जो राजस्थानी लुक है, जो कठपुतलियां हैं वो इस पे बनाई है।
5: यहाँ की विविध परंपराओं से सजी इस आर्ट कार की खूब चर्चा है, क्योंकि इसको सजाने सवारने में ही करीब 45 दिन लग गए। इसके डोर्स पैनल और कार्पेट एरिया को डेकोरेट करने के लिए 3 लोगों ने दिन रात मेहनत की, और देखते ही देखते इस आर्ट कार का पूरा इंटीरियर और एक्सटीरियर राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपरा के शोकेस बन गए। दरअसल सैलानी जब भी राजस्थान आते हैं वो यहाँ के ऐतिहासिक किले, बावड़ी या महल देखते हैं, लेकिन ये रंग बिरंगी आर्ट कार रंगीलो राजस्थान की लोक कला, परंपरा, शिल्प और खान पान की अनकही कहानियों को ही ढूंढने निकली है। इस आर्ट कार का एक्सटीरियर हो या इंटीरियर, दोनों को कार में दिखाने की बड़ी ही रोचक कहानी है, क्योंकि ये राजस्थान के किले और महलों की कहानियों से एकदम परे है।
7: इसका एक्सटीरियर हमारे आर्टिस्ट श्रीकांत रंगा ने करा है। ही हैज पेंटेड कठपुतलीज और राजस्थान का ट्रेडिशनल फोक को रिप्रेजेंट करा है बाहर. इंटीरियर में हम लोग बड़े सोच विचार के बाद हमने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमने बाड़मेर का पैच वर्क जिसे एप्लिक बोलते हैं उसको हमने इधर यूज करा है. तो यूज करने का मेन पर्पस ये कि एक तो सस्टेनेबल क्लोथ है और इसको वहां की महिलाएं अपने घरों में ही बनाती हैं और स्टिच करके उस वेस्ट को कैसे ना एक नया रूप दे देते हैं. इसलिए हमने कोशिश करी है कि उनको सेलिब्रेट करा जाए, उनके आर्ट फॉर्म को सेलिब्रेट करा जाए, इसलिए इसका इंटीरियर हमने डेकोरेट करा है.
5: जाहिर है ये आर्ट कार एक चलता फिरता कैनवस ही है जो खुद में राजस्थान की लोक विरासत के समृद्धशाली इतिहास को समेटे हुए है. दरअसल इस कार को हिमांशु ने कभी खूब ड्राइव किया. एक समय तो ये कार कार्टिस्ट यात्रा का हिस्सा भी रही और पूरा हिंदुस्तान घूम चुकी है जो अब अकेले इस अलबेले राजस्थान के सफर पर निकली है.
7: हमारा मेन पर्पस है कि हम उन आर्टिजन से मिले, वो किस तरीके से इन आर्ट क्राफ्ट को अपना हेरिटेज को संभाल के अभी तक नेक्स्ट जनरेशन को वापस देते हैं, तो क्राफ्ट स्टोरीज पे हमारा ज्यादा फोकस है इस बार.
5: इस सफर में हिमांशु और उनके साथी राजस्थान में बरसों पहले अपनाए गए जल संरक्षण के तौर तरीकों को भी समझने की कोशिश करेंगे. साथ ही इस अनोखे काम को हिमांशु बाड़मेर में ही सेलिब्रेट करने की भी सोच रहे हैं क्योंकि वहीं की महिलाओं ने कार का ये खास पैच वर्क तैयार किया.
6: फाइनली ये काम जो है उसको जस्टिस मिलेगा जिस जगह से वो आया है, वहां पहुंचकर वहां की महिलाएं जब देखेगी कि उनके बनाए हुए ये जो पैचवर्क है ये कहाँ इस्तेमाल किए गए हैं, कौन से शहर और कौन से प्रदेशों में ये घूम रहे हैं, पूरे भारत में राजस्थान की आन बान शान बने हुए हैं और वहां की जो यहाँ की जो धरोहर है वो हर जगह पहुंचा रहे हैं. ये सफर तो हमने शुरू कर दिया है गुड न्यूज टूडे पर और हम देखना चाहते हैं कि इसकी मंजिल क्या रंग रूप लेकर आती है, क्या कुछ ऐसी कहानियां हैं जो अब तक कहीं पे भी नहीं पहुंची हैं पर अब आगे जरूर आप तक पहुंचने वाली है. कैमरन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर.
8: और कहते हैं कि मन में जब भगवान के प्रति अटूट आस्था हो तो मुश्किल हालात भी आसानी से गुजर जाते हैं. ऐसी ही दो तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आए हैं, एक है यूपी के चित्रकूट की, दूसरी है मध्य प्रदेश के मुरैना की. दोनों ही इलाकों में भयंकर बाढ़ है, लोग सुरक्षित ठिकानों का रुख कर रहे हैं.
4: वो देखिए चित्रकूट और मुरैना में दो ऐसे मंदिर हैं जहां के साधुओं ने बाढ़ में घिरे मंदिरों से बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया. प्रशासन की टीम उन्हें वहां से लेने के लिए पहुंची लेकिन उन्होंने अपने आराध्य को अकेला छोड़ने से साफ इनकार कर दिया.
9: जब मन में भगवान के प्रति आस्था हो तो भय का वजूद खत्म हो जाता है. जब भक्ति अटूट हो तो मौत का खौफ भी इंसान के कदम डिगा नहीं सकता. भारत की इस पावन धरा पर ईश्वर के प्रति यही निष्ठा युगों युगों से चलती आई है. इसी की मिसाल मध्य प्रदेश के मुरैना और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में देखने को मिली. चारों तरफ बाढ़ का पानी, हालात ऐसे कि हर कोई महफूज ठिकानों का रुख कर रहा है लेकिन भक्ति की ताकत के आगे बाढ़ की आपदा भी छोटी पड़ जाती है. ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की जहां उफनती आसन नदी ने सिद्ध बाबा मंदिर को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया. चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है. हालात की गंभीरता को देखते हुए जब एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम नाव की मदद से सिद्ध बाबा मंदिर के साधु को वहां से सुरक्षित जगह तक ले जाने के लिए पहुंची लेकिन उन्होंने सुरक्षित स्थान पर जाने से साफ इनकार कर दिया.
10: नहीं तो हम तो आपको लेने आए.
11: नहीं खूब आनंद है, हमने जाग ही जला.
9: बाबा का कहना था कि मंदिर में वर्षों से अखंड ज्योति जल रही है और वो अपने भगवान और इस पावन ज्योति को बीच मझधार में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते. बाढ़ के पानी से घिरे होने के बावजूद संत मंदिर के अंदर ही रुककर अपना भोजन खुद बना रहे हैं और निरंतर पूजा अर्चना में लीन है. अतः भक्ति की ऐसी ही एक और भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई चित्रकूट से जहां मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट का ऐतिहासिक बड़ा मठ मंदिर धीरे धीरे डूबने लगा. हालात बिगड़ते देख खुद डीएम पुलकित गर्ग और एसपी अरुण कुमार भारी प्रशासनिक अमले के साथ मंदिर परिसर पहुंचे. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे अधिकारी मंदिर के पुजारी पुजारी से गुहार लगाते हैं। डीएम ने मिन्नतें की कम से कम बाढ़ उतरने तक मंदिर खाली कर दें, लेकिन पुजारी का जवाब सुन अधिकारी भी निशब्द हो गए। पुजारी ने बेहद शांत भाव से कहा, पूरी जिंदगी भगवान के चरणों में गुजारी है, आज इस संकट की घड़ी में अपने प्रभु को अकेला कैसे छोड़ दो, जो होगा भगवान की इच्छा से अच्छा ही होगा।
12: आप देखिए, आप सब लोगों की जिम्मेदारी, जी उसके लिए जिम्मेदार है ना, और आप जिम्मेदार हैं सभी के लिए, तो आप आइए आइए, लोग आपका वेट कर रहे हैं।
13: ताला लगाई थी
12: ना, ये सुरक्षित रहेगा,
13: तो आप बाकी लोगों को जाने की अनुमति
14: दीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।
9: पुजारी के हठ और निष्ठा के आगे आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। हालांकि पुजारी के कहने पर मंदिर के दूसरे सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन मुख्य पुजारी प्रभु की सेवा में वहीं डटे रहे और अधिकारियों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। चित्रकूट से अखिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: जोश भी और अंदाज भी अनोखा। आगरा के जगनेर में जलभराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विरोध का ऐसा तरीका अपनाया जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हाथों में बैनर, ट्रैक्टर्स में सवार ग्रामीण और जुबां पर शिकायतों की जगह भजन। महिलाएं और पुरुष एक साथ निकले और गूंज उठा गोविंद हरे गोपाल हरे, यानी इस बार ग्रामीणों ने नारेबाजी की जगह भजन को ही अपने विरोध की आवाज बना दिया।
4: दरअसल जगनेर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 और 7 में पिछले करीब 3 साल से जलभराव और गंदगी जैसी समस्या जो है लगातार बनी हुई है। बारिश आते ही गलियां और रास्ते पानी से भर जाया करते हैं। करीब 200 परिवारों के लिए घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ग्रामीणों ने सोचा, क्यों ना अपनी परेशानी प्रशासन तक पहुंचाने का अंदाज ही बदल दिया जाए। ट्रैक्टरों में सवार होकर तहसील वो पहुंचे, रास्ते भर भजन कीर्तन चलता रहा और तहसील पहुंचकर भी गोविंद हरे गोपाल हरे की गूंज सुनाई देती रही। भजन की एक गूंज रंग लाई, लोगों को एसडीएम ने समस्या के समाधान का भरोसा भी दिया।
1: चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कॉलेज जाकर क्यों चर्चा में आ गई स्पेन की राजकुमारी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: हनुमान चालीसा की किस पंक्ति का पाठ करने से रोग और बीमारियां दूर हो जाते हैं? हनुमान चालीसा की किस पंक्ति का पाठ करने से बड़ी समस्या मिट जाती है? क्या है हनुमान चालीसा की महिमा और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: स्पेन की राजकुमारी लियोनोर अब देश की राजनीति समझने की पढ़ाई कर रही है। 20 साल की लियोनोर स्पेन के राजघराने की अगली रानी होंगी और सोमवार को उन्होंने मैड्रिड की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत हुआ, तस्वीरें आप देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में छात्र और आसपास के लोग भी वहां पर जुटे। लियोनोर यहां पर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति की पढ़ाई करेंगी। इस दौरान उन्हें कानून, अर्थव्यवस्था, इतिहास और दुनिया के दूसरे देशों से जुड़े मामलों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा।
3: खास बात यह है कि लियोनोर सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, उन्होंने पहले सेना में ट्रेनिंग ली है। जारागोजा की मिलिट्री एकेडमी में एक साल बिताने के बाद नेवी में भी ट्रेनिंग ली है। नेवी की ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने स्पेन के मशहूर ट्रेनिंग जहाज पर समुद्र का सफर भी किया है। इसके बाद उन्होंने एयरफोर्स की ट्रेनिंग ली है, यानी कि स्पेन की भावी रानी अब सेना की ट्रेनिंग के बाद राजनीति की पढ़ाई कर रही है।
2: चलिए आपको बताते हैं कि कॉलेज जाकर क्यों चर्चा में आ गई आखिर स्पेन की राजकुमारी और क्यों स्पेन के लोग प्रिंसेस लियोनोर को इतना पसंद करते हैं। प्रिंसेस लियोनोर स्पेन की जेन जी के बीच काफी पॉपुलर हैं। उनकी सादगी और आधुनिक अंदाज उन्हें युवाओं के बीच में खास बनाता है। करीब 150 साल बाद स्पेन के सिंहासन पर एक महिला बैठेगी। प्रिंसेस लियोनोर भविष्य में स्पेन की रानी बनकर देश की कमान को संभालने वाली हैं। लियोनोर सिर्फ नाम की रानी नहीं होंगी, संविधान के मुताबिक उन्होंने देश के राष्ट्राध्यक्ष की जिम्मेदारी निभानी होगी।
4: स्पेन की आखिरी महिला शासक क्वीन इसाबेला द्वितीय थी। उनके बाद लंबे समय तक स्पेन की राजशाही पुरुष शासकों के हाथों में रही। स्पेन की राजशाही में लंबे समय से पुरुषों का दबदबा रहा। अब लियोनोर इस परंपरा को बदलने जा रही हैं।
3: 18वीं सदी की शुरुआत से बॉर्बन वंश का स्पेन की राजशाही से गहरा रिश्ता रहा है। इसी शाही विरासत को अब लियोनोर आगे बढ़ाएंगी। 1975 में फ्रांसिस्को फ्रांको की तानाशाही खत्म हुई। इसके बाद स्पेन लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ा और संवैधानिक राजशाही कायम रही।
2: और किंग जुआन कार्लोस के दौर में स्पेन ने तानाशाही से लोकतंत्र की तरफ बड़ा कदम बढ़ाया। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही। साल 2014 में फिलिपे सिक्स स्पेन के राजा बने। उनकी बड़ी बेटी प्रिंसेस लियोनोर ही स्पेन के सिंहासन की अगली उत्तराधिकारी है। 31 अक्टूबर 2005 को जन्मी लियोनोर बचपन से ही शाही जिम्मेदारियों के लिए तैयार की जा रही हैं। आज वो स्पेन के सिंहासन की पहली उत्तराधिकारी हैं। 18 साल की उम्र में लियोनोर ने स्पेन की संसद में संविधान की शपथ ली। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया।
4: लियोनोर को भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी गई है और ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने करीब 140 देशों का समुद्री सफर किया। अब लियोनोर पढ़ाई के अगले पड़ाव पर पहुंच गए हैं। वो मैड्रिड की कार्लोस थर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे।
3: हमारे लिए वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: सोचिए एक रोबोट आपके घर में आए और सिर्फ चलने या बोलने के बजाय फ्रिज खोले, सामान उठाए, चीजों को सही तरीके से पकड़े और आपके साथ मिलकर काम करे। सुनने में भविष्य की कहानी लगती है, लेकिन ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद के सामने इसकी झलक पाई गई है। AI पावर्ड रोबोट्स ने अपनी ऐसी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है जो आने वाले वक्त में घर से लेकर फैक्ट्री तक काम करने का तरीका बदल सकती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: ये तस्वीर उस भविष्य की है जहां मशीनें सिर्फ मशीन नहीं रहेंगी। ब्रसेल्स में यूरोपियन संसद के खास रोबोटिक शोकेस में एआई पावर्ड रोबोट्स ने ताकत दिखाई। चलते रोबोट्स, चीजें उठाते रोबोट्स और बारीकी से काम करते रोबोट्स। 14 देशों के 31 एकेडमिक और इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के 15 रोबोट्स ने दिखाया कि मशीनें अब सिर्फ प्रोग्राम किए गए काम दोहराने से आगे बढ़ रही हैं। इन रोबोट्स की सबसे बड़ी खासियत है अपने आसपास की दुनिया के साथ तालमेल, किसी वस्तु को पहचानना, उसके आकार और स्थिति को समझना, फिर उतनी ही ताकत से पकड़ना जितना जरूरी हो। इंसान के हाथ के लिए ये सब बेहद स्वाभाविक है, लेकिन एक रोबोट के लिए हर मूवमेंट के पीछे सेंसर, एआई और बेहद सटीक गणना काम करती है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है फ्रिज खोलना, हमारे लिए रोज का मामूली काम, लेकिन रोबोट के लिए एक पूरा मिशन। उसे फ्रिज देखना है, हैंडल पहचानना है, सही जगह हाथ ले जाना है, ग्रिप बनानी है और फिर सही ताकत लगाकर डोर खोलना है।
1: So they have to interact with our environment, open doors, open door, drawers. In the case of our robot has to open the fridge, which seems like a simple task, we do it all the time. But imagine when you do it and your hand is very soft and compliant and is doing very quick movement.
0: असली कमाल सिर्फ रोबोट्स के चलने में नहीं, कमाल तब है जब वो देखकर फैसला करे, हाथ बढ़ाए और काम पूरा करे। और यही क्षमता इन्हें घर, अस्पताल और दूसरी जगहों पर इंसान का मददगार बनाने की दिशा में ले जा रही है। लेकिन इस तकनीकी दौड़ में यूरोप के सामने बड़ी चुनौती भी है। चीन और अमेरिका ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में भारी निवेश के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यूरोप के पास मजबूत रिसर्च है, लेकिन उसे लैब से निकालकर बड़े पैमाने पर उत्पादन तक पहुंचाने की रफ्तार अभी चुनौती बनी हुई है।
2: Huge ecosystem of suppliers, of technology, manufacturing facility that allow to accelerate and go very, very fast as China is doing or how US is doing because of the large investment that they are receiving.
0: ये सिर्फ तकनीक की दौड़ नहीं है, बुजुर्ग होती आबादी और घटते वर्कफोर्स के बीच आने वाले वक्त में ऐसे रोबोट्स की जरूरत और बढ़ सकती है।
3: It's definitely lack of funding and lack of political willingness. It's not that we don't get funding. It's not that the politicians do not pay attention to robotics, but clearly not at the same level as what happens in China.
0: फ्रिज के डोर खोलने से शुरू हुई ये कहानी घर के काम से लेकर फैक्ट्री के मुश्किल काम तक पहुंच सकती है। बेशक रोबोट्स इंसान नहीं बन सकते, लेकिन उन्हें इंसान की तरह काम सिखाने की कोशिश अब पूरी रफ्तार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, कल शाम 5 बजे की चाय गुड न्यूज टुडे के साथ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: रामनगरी अयोध्या से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा, मानदेय में 50% इजाफे के साथ मिलेगा 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। वडोदरा में 6,000 से ज्यादा युवाओं के साथ पीएम का मेगा इवेंट, कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम, 35,000 करोड़ की विकास योजनाओं का दिया तोहफा। कठार में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल, 11 सितंबर से शुरू हो रहा सम्मेलन।

राजधानी दिल्ली पर भी चढ़ने लगा गणेशोत्सव का रंग। स्वीट स्टोर्स में जोर शोर से हो रहा बप्पा के प्रिय मोदक का निर्माण। खूबसूरत मूर्तियों से सजे बाजार तो कई घरों में मिट्टी से बने गजानन।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के रंग की करते हैं। आपसे देखिए, पांच दिनों के बाद गणेशोत्सव का श्री गणेश होने वाला है। शहर शहर गजानन की आस्था के रंग दिखने लगे हैं और शहर शहर मूर्तिकार गजानन की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। गणपति पंडालों की सजावट भी अंतिम दौर में पहुंच गई है। घर गलियों में मोदक की खुशबू बिखरने लग गई है। नागपुर से लेकर अकोला तक गणपति उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर शहर बप्पा की भव्य आगमन की यात्राएं चल रही हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज और नाचते झूमते भक्तों के बीच में बप्पा पधार रहे हैं। 14 सितंबर को बेहद श्रद्धा के साथ गजानन की स्थापना की जाएगी। गणपति बप्पा के आगमन को लेकर हर उम्र के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। पूरा माहौल भक्तिमय है। जैसे जैसे गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आ रहा है, मूर्ति निर्माण से जुड़े कारीगर बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तो वहीं बप्पा के प्रिय मोदक को बनाने का काम भी जोर शोर से शुरू हो चुका है। गणपति उत्सव की तैयारियों से जुड़ी तमाम तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बप्पा की भव्य आगमन की

अब जो स्वयं गणराज कहलाते हैं उनका स्वागत किसी राजाधिराज से कम क्या ही होगा। सो नागपुर वालों ने अब की बार वही करने की ठानी। गणेश उत्सव से पहले नागपुर में सार्वजनिक पंडालों में गणपति बाप्पा का आगमन शुरू हो चुका है। ये तस्वीर है नागपुर के महल इलाके में विराजमान होने वाले गणपति बाप्पा की। महल के दक्षिण मूर्ति चौक उत्सव पंडाल में बाप्पा को धूमधाम से लाया गया। डीजे ढोल नगाड़ों की धुन के साथ सैकड़ों लोग अपने लाडले बाप्पा का स्वागत करने पहुँचे। पंडाल को पहले ही सजाया जा चुका है, बस एक बाप्पा की कमी थी, अब वो भी पूरी हो गई। सुनागपुर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। अब 14 सितंबर को गणनायक पूरे विधि विधान के साथ अपने भव्य पंडाल में स्थापित कर दिए जाएंगे और उसके बाद 10 दिनों तक बाप्पा की भक्ति का ये उत्सव यूं ही चलता रहेगा। नागपुर क्या, इन दिनों तो शहर शहर यही सूरत दिख रही है। ये तस्वीर गुजरात के सूरत की है। सूरत में गणेश उत्सव की रौनक नजर आने लगी है। गणेश उत्सव शुरू होने से पहले शहर के अलग अलग इलाकों में गणेश प्रतिमाओं के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है। गणेश पंडालों की चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले सूरत की इस गणेश आगमन यात्रा को देखिए।

शहर की गणेश आगमन यात्राओं में इस बार पारंपरिक आयोजनों के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों की अनोखी कलाकृतियां और आकर्षक प्रस्तुतियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

0: कलाकारों ने अलग अलग रूप धारण कर नृत्य नाटिका का मंचन किया। कोई कलाकार राक्षस के रूप में नजर आया तो किसी ने भगवान का स्वरूप धारण कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आगमन यात्रा के दौरान भगवान शिव के तांडव की विशेष प्रस्तुति भी हुई। कलाकार भगवान शिव का स्वरूप धारण कर तांडव करते नजर आए। उनके चारों ओर जलती आग ने इस प्रस्तुति को और भी प्रभावशाली बना दिया। आगमन यात्रा में भगवान के 12 अवतारों को भी अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया। गणेश चतुर्थी से पहले भव्य आगमन यात्रा का आयोजन करने के मुख्य रूप से दो उद्देश्य थे। एक तो श्रद्धालुओं को गणेश उत्सव की धार्मिक भावना से जोड़ना और दूसरा भारतीय संस्कृति और पौराणिक परंपराओं की भव्य प्रस्तुति। और वाकई कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने पूरी यात्रा को एक अलग ही रंग दे दिया। लोगों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों को अपने मोबाइल फोन में कैद किया और बड़ी संख्या में लोग इन दृश्यों को देखने के लिए यात्रा के मार्ग पर मौजूद रहे। सूरत के भटार इलाके में इस साल गणेश उत्सव के लिए एक और खास तैयारी की जा रही है। यहाँ गणेश मंडल की ओर से ओडिशा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर भव्य गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है।
1: कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उसकी थीम पर इस बार भगवान गणेश की स्थापना की जानी है। और मूर्ति की अगर हम बात करें तो मूर्ति का आगमन हो चुका है। जिस मूर्ति के आगमन के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे और कई राज्यों से कलाकार आए थे, उन्होंने कई अपनी अलग अलग थीम पर यहाँ पर नृत्य किया था, अपना प्रदर्शन किया था। और जो आप मूर्ति देख सकते हैं वो यहाँ पर अभी रखी हुई है भगवान गणेश की, और जब यहाँ पर स्थापना की जाएगी तो गणेश उत्सव के दौरान हजारों की संख्या में भक्त भगवान गणेश के दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो ये जो मूर्ति है वही इस पंडाल में विराजमान की जाएगी। फिलहाल मूर्ति का आगमन हो चुका है।
0: हर साल यह गणेश मंडल एक अलग और अनोखी थीम पर गणेश पंडाल तैयार करवाता है। इस बार आयोजकों ने ओडिशा के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर को अपनी थीम बनाया है।
2: साईराम योग मंडल पिछले 28 सालों से बड़े बड़े थीम पे आयोजन करता है। पिछले साल वनतारा थीम, उसके पहले शीश महल, उसके पहले जयपुर महल, ऐसे अलग अलग महलों में सूरत के अंदर बहुत फेमस है। इस साल हम लोग ओडिशा का कोणार्क मंदिर का भव्य आयोजन कर रहे हैं और हमने शोभा यात्रा पिछले दिनों बहुत भव्य आयोजन किया था, जिसमें हजारों की तादाद में हमने शोभा यात्रा का बहुत बढ़िया आयोजन किया था, जिसमें महाराष्ट्र से ढोल पटक आए थे, महाराष्ट्र के इवेंट द्वारा समुद्र मंथन का कार्यक्रम किया था, उसके बाद गणेश वंदना की थी।
0: आयोजकों ने इस पंडाल का 3D वीडियो भी जारी किया है, जिसमें पंडाल का प्रस्तावित स्वरूप दिखाया गया है। पंडाल तैयार होने के बाद गणेश उत्सव के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। नागपुर से योगेश वसंत पांडे और सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, बात जब गणपति के आगमन की हो रही हो तो ये कैसे मुमकिन है कि मोदक का जिक्र ना हो। दरअसल मोदक को गणपति का प्रिय भोग माना जाता है। वैसे तो मोदक किसे पसंद नहीं होते, लेकिन गौरी पुत्र को मोदक से विशेष प्रेम है। गणपति से जुड़ी कहानियों में वो माँ गौरी से लेकर देवी अनुसुईया तक सबके हाथों से मोदक पाते रहे हैं और बप्पा का ये मोदक प्रेम उनके भक्तों को भी खूब भाता है। तो चलिए, एक वक्त था, ये भी आपको बता देते हैं, जब गणेशोत्सव में मोदक बनाने का चलन महाराष्ट्र तक सिमटा था, लेकिन देखते ही देखते मोदक देश के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच गया, मुंबई से लेकर दिल्ली तक। मिठाई की दुकानों में गणेश चतुर्थी के मौके पर लड्डू के साथ साथ अब मोदक भी खूब बनने और बिकने लगा है। दिल्ली के चांदनी चौक की एक ऐसी ही दुकान मौजूद है जहां के लिए दावा किया जाता है कि मोदक का चस्का दिल्ली वालों की जुबान पर वहीं से चढ़ा।

दरअसल 40 साल पहले इस दुकान के मालिक महाराष्ट्र के दौरे पर गए तो कुछ नया करने की चाह में लौटते समय मोदक बनाने के सांचे वहां से लेते आए। फिर क्या था, चांदनी चौक में मोदक बनने का सिलसिला चल पड़ा और अब यहां लगभग 25 तरह के मोदक तैयार किए जाते हैं। चावल, काजू, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट के अलावा स्ट्रॉबेरी, हेजलनट, कलाकंद के स्वाद वाले मोदक भी यहां पर मौजूद हैं।

0: बप्पा आ रहे हैं और बप्पा के आने की तैयारियां हर तरफ दिखाई पड़ रही है। आज हम आपको दिल्ली के दिल चांदनी चौक में लेकर आए हैं और चांदनी चौक की उस दुकान पर जहां पिछले 35 साल से लगातार मोदक तैयार किया जा रहा है, बप्पा का फेवरेट भोग तैयार हो रहा है। आज भी हम आपको यहां पर अलग अलग तरह के मोदक की तैयारी दिखा रहे हैं, वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं, उनकी मेकिंग दिखा रहे हैं। किचन में हम मौजूद हैं और आपको बात करवाएंगे उन लोगों से भी जो पिछले 35 सालों से लगातार इस काम में लगे हुए हैं। ये दुकान 1910 के आसपास शुरू हुई थी, लेकिन ये इस दुकान के उन लोगों का इनोवेशन ही था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई चीज़ लाई जाए जो कि नॉर्थ इंडिया में भी बहुत तेज़ी से चल जाए। और नए के नाम पर वो पहुँचे महाराष्ट्र और वहाँ से लेकर आए ये सांचा। ये वो पहला सांचा है जो इस दुकान के पूर्वज लेकर आए थे मोदक बनाने के लिए। ये सांचा आया और तब से यहाँ पर बप्पा का फेवरेट भोग मोदक बनना शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक ये लगातार ऐसे ही बन रहा है। 25 से ज़्यादा फ्लेवर ये लोग खुद बनाते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल फ्लेवर ऑर्डर भी करता है तो उसकी पसंद का मोदक भी यहाँ पर तैयार हो जाता है। हम भरत के किचन में हैं, तो कौन कौन सी वैरायटी है इसमें, कितने तरह के मोदक हैं?
1: सर देखिए, यहाँ पे श्याम स्वीट्स के अंदर हम डिफरेंट तरीके के मोदक बनाते हैं। वैसे तो इंडिया हमारा रिच ऑफ कल्चर्स, टेस्ट एंड अलग अलग जगह के अलग अलग स्वाद हैं। जो मोदक असल बनना शुरू हुआ था महाराष्ट्र से, साउथ साइड से, वो बनना शुरू होता है सब अनाज का, बट दिल्ली में आते आते उसके फ्लेवर्स वेरिएशंस चेंज हो गए। जैसे अब आप यहाँ पे इस थाल में देख पा रहे हैं, एक मोतीचूर का है, केसर का है, मोती बूंदी का है, स्ट्रॉबेरी का है, आपका खोए का है, पेड़े का है, ये आपका कीवी का हो गया, मोटे गोले का हो गया, अल्फांसो विद चॉकलेट हो गया, कलाकंद का हो गया, ये केसर मिक्स हो गए। इस तरीके से वेरिएशंस हैं अलग अलग तरीके के, और इसके अलावा ना जाने कितने किस्म के बन जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट है और एक इनोवेशन है जो जिस तरीके से जैसे बना सके। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हमारे को इस तरीके का मोदक चढ़ाने का मन है, क्योंकि भगवान को तो वही अर्पित किया जाता है ना। जो भगवान को एक ही चीज़ कब तक खिलाएंगे कहते हैं ना बहुत से लोग, तो इसलिए जो सामने वाले का स्वाद हो हम वो चीज़ बनाने में सक्सेस करते हैं उसको, ताकि वो अपने मन के हिसाब से वो पूरा कर सके अपनी पूरी श्रद्धा भाव से।
0: जो भाव का है वो भगवान का है, सिंपल सी बात है। तो अभी जब मोदक हम लोग बना रहे हैं, 35 साल पहले जो यात्रा शुरू हुई थी उस समय भी क्या वजह थी कि मतलब, क्योंकि तब यहाँ पर गणेश पूजा उस लेवल से नहीं होती थी, लोग जानते नहीं थे, कैसे इसकी शुरुआत हुई?
1: इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई थी, अब जैसे पुराने लोग बताते हैं, इसमें पुराने मतलब हमारे बड़े बताते हैं, गणेश चौथ तो गणेश चतुर्थी जिसको शॉर्ट में गणेश चौथ बोलते हैं, तो इसको तो ये तो पहले ही मनाई जाती थी, मगर दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ भगवान को लड्डुओं का भोग लगाते थे। तो फिर हमारे बड़े गए, कभी बाहर घूमने गए होंगे या किसी कारणवश गए होंगे किसी काम से, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ डिफरेंट चीज़ देखी, तो वहाँ से मोदक बनाने का सांचा लेके आए, माँ से रेसिपी लेके आए, माँ से कारीगर को लेके आए, वो बनाना सीखा, वो रेसिपी आज तक है हमारे पास, और वो सांचे भी हैं। जैसे ये बहुत पुराने सांचे हैं, मतलब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो करीबन 40 से एक साल तो हो गए होंगे इस सांचे को, जो आज भी हमने संभाल के रख रखा है उनकी याद में।
0: ये सबसे पहले आया था?
1: हाँ जी, ये आया था एक बड़े के लिए और एक छोटे के लिए, ये था इस तरीके से जी। तो पहले तो, अब तो आज की डेट में बहुत सारे स्टील के बनते हैं, स्टेनलेस स्टील के, प्लास्टिक के बनते हैं, बट ये पहले के ज़माने में जो हाथ से बनते थे ये यही थे। इसमें एक पहले लकड़ी का और होता था, लकड़ी का तो अब समय के हिसाब से थोड़ा सा नहीं रहा सही, अभी है भी नहीं हाथ में, तो इसलिए जो आपको है वो दिखा पा रहे हैं। बाकी अब जो हम बनाते हैं,
0: कि आपके पूर्वजों ने कहा था कि भाई नई चीज़ दिखेगी तो वो बिकेगी, अब नई चीज़ के लिए फिर एक्सपेरिमेंट करना था और वो एक्सपेरिमेंट ये था।
2: गणेशोत्सव की शुरुआत से कई दिनों पहले ही कलाकारों ने अलग अलग रूपों में बप्पा को ढालना तो शुरू कर दिया था। ऐसे में अब बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। कहीं गणपति देवा अपने पिता महादेव के वेश में नजर आ रहे हैं, तो कहीं लाल बादशाह राजा के स्वरूप वाली प्रतिमा भी बनकर तैयार है। शहर शहर श्रद्धालु बप्पा की इन प्रतिमाओं को खरीदने पहुंच रहे हैं।

0: जिसकी जैसी भावना वैसे उसके बापा। गणेश उत्सव में बहस कुछ ही दिन बाकी है, सो शहर शहर गणपति की मूर्तियां बनाने का काम भी तेज हो गया है। मूर्तिकार इन मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ये तस्वीरें यूपी के झांसी से आई है। झांसी में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बाजार में इस बार भगवान गणेश के पारंपरिक स्वरूप के साथ साथ कई नए और आकर्षक डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर भगवान भोलेनाथ से जुड़े स्वरूपों वाली गणेश प्रतिमाएं लोगों को खूब पसंद आ रही है। शिवलिंग के साथ गणेश प्रतिमा, भगवान शंकर के वेश में गणेश और लाल बाग के राजा के स्वरूप वाली प्रतिमाओं की मांग खूब है। इसके साथ ही AI डिजाइन से तैयार किए गए नए नए स्वरूप भी भक्तों को भा रहे हैं। स्वरूप के अलावा बात अगर डिजाइन की करें तो घर में गणपति की स्थापना के लिए 1 से 3 फीट तक की प्रतिमाओं की मांग सबसे ज्यादा है। झांसी की तरह ही दिल्ली में भी गणेश प्रतिमाओं के निर्माण का काम जोर शोर से इन दिनों चल रहा है। इस काम से जुड़े कई कारीगर बापा की मूर्तियों को डिमांड के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। इन मूर्तिकारों के लिए ये सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि आस्था और कला का एक साथ पेश करने का मौका भी है। ये दो बहनें भी 20 साल से गणेश प्रतिमा तैयार कर रही हैं। पहले ये काम इनके पिता किया करते थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद दोनों बहनों ने इस काम को आगे बढ़ाया। ये दोनों बहनें न सिर्फ मूर्तियां बनाती हैं, बल्कि वो खुद गणपति बैठाती भी हैं।
1: गणेश पूजा, गणेश उत्सव, गणेश जी की मूर्ति को तैयार करना, उसको सजाना सवारना, इसके क्या मायने हैं ये आप इन दो बहनों से समझ सकते हैं, मंजू और वसुंधरा। ये दो बहनें सालों से इसी काम में लगी हुई हैं। हर साल मूर्ति को अपने हाथ से तैयार करती हैं, फिर उसे बेचती हैं, कुछ पैसे कमाती हैं। 20 साल से दोनों बहनें एक साथ ये काम कर रही हैं। इसके पहले ये काम इनके पिताजी किया करते थे, वो चल बसे तो उसके बाद दोनों बहनों ने मोर्चा संभाला हुआ है।
2: मूर्ति में सजावट करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, जो काम आते हैं वो कर लेते हैं।
1: ये काम सीखा किससे, अपने आप से या फिर पिताजी सिखा गए थे?
3: पिताजी सिखा के गए थे, वैसे तो अब देखते देखते सीख गए हम भी।
0: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को है, सो इस समय शहर शहर ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है। कोई मूर्तियों को आकार दे रहा है तो कोई रंग भरने का काम में जुटा है। खास बात ये है कि कई जगहों पर अब मूर्तियों को बनाने के लिए सिंथेटिक मटेरियल की जगह मिट्टी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन प्रयागराज में बनाई जा रही इन मूर्तियों के निर्माण में गंगा की मिट्टी, धान का पुआल या पराली और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे विसर्जन के बाद पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। यहाँ के मूर्तिकार दस्तकार उत्साहित हैं, क्योंकि लगातार बारिश के बावजूद इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की मांग बढ़ गई है। घरों से लेकर बड़े बड़े पंडालों तक के लिए बड़ी संख्या में ऑर्डर मिल रहे हैं।
4: गणेश जी का मिट्टी पूरा प्योर मिट्टी और प्राय गंगा जी का शुद्ध मिट्टी से बनता है, और इसमें धान का पैड़ा है और लकड़ी है, बांस है। ये इको फ्रेंडली, पूरा कलर भी हमारा इको फ्रेंडली है।
0: ये तस्वीरें राजकोट की है, जहां भी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं को ही सजाने का काम चल रहा है। कोलकाता के दीपक जाना पिछले 30 वर्षों से लगातार यहां आकर बापा की प्रतिमाओं को तैयार करते हैं। राजकोट के गणेश उत्सव में अपने हुनर के रंग भरते हैं।
5: लेटेस्ट डिजाइन इंटरनेट में आया, उसी को ढूंढ ढूंढ के कलेक्शन करके मैं लोग बनाया मूर्ति।
6: कौन सा वो खास मूर्ति?
5: खास मूर्ति जो पहले नंबर है, नव दुर्गा का स्वरूप में, उसका नव दुर्गा है, उसका गोद में बैठा हुआ गणपति बापा 9 फीट का ऊपर है। ऐसा और भी बहुत सारे थीम है, सभी अलग अलग है, एक एक ही एक ही डिजाइन एक में नहीं है, सभी जितना भी मूर्ति है सब अलग अलग डिजाइन का।
0: तो वही करनाल बे राजस्थान से आया मूर्तिकारों का ये परिवार पिछले 6 महीने से बापा की मूर्तियों को आकार देने में जुटा है। इनकी मेहनत का नतीजा ये है कि बापा की सैकड़ों प्रतिमाएं अब यहाँ गणेश भक्तों को लुभा रही है।
6: अभी गणेश तो तैयार करने के मेरे 6 महीना हो गया बनाते बनाते, अभी एक एक मूर्ति में 10 से 12 दिन लग जाते जी, बारीकी काम है जी।
0: तो वही महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तो बच्चे ही मिट्टी से बापा की मूर्त गढ़ रहे हैं। गणेश उत्सव से पहले यहाँ बच्चों के लिए इस खास वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहाँ बच्चों ने मिट्टी से दोस्ती की और अपने हुनर के रंग भरकर बापा की प्रतिमाओं को तैयार करने में जुट गए। अब इनकी बनाई प्रतिमाएं इस साल गणेश उत्सव की शान बनेंगी। झांसी से अजय झा, राजकोट से रौनक मजीठिया, करनाल से कमलदीप, चंद्रपुर से विकास राजूकर, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
7: अब देखिए, कुछ सालों से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए गणेशोत्सव पर खास तौर से प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय इको फ्रेंडली यानी मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं बनाने का चलन भी रहा है। वास्तव में ये जल प्रदूषण से बचाव का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ऐसे में कई मूर्तिकार जहां मिट्टी और दूसरी सॉल्यूबल चीजों से एक से बढ़कर एक मूर्तियों को आकार दे रहे हैं, तो इनकी डिमांड भी मार्केट में खूब बनी हुई है।

0: बीते कुछ सालों से गणेशोत्सव पर प्रकृति का भरपूर ख्याल रखने का संदेश दिया जा रहा है। नेचर को नुकसान पहुंचाने वाले जहर से कोसों दूर बाप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां आज मूर्ति कारीगरों के साथ आस्थावानों की पहली पसंद है। ऐसे में कुछ मूर्तिकार परिवार अपनी गणेश भक्ति को ही पीढ़ियों से चली आ रही कला परंपरा में बदले हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर का एक परिवार है जो हर साल आस्थामयी और कलात्मक माहौल में भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय बांस, नारियल की छाल और मौली धागा से बेहद खूबसूरत और पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों को आकार दे रहा है। इस परिवार के मुखिया हैं शिवचरण यादव, जो कभी सरकारी मुलाजिम रहे, घर चलाने के लिए भेल भी बेची, लेकिन जब इस काम में मन नहीं रमा तो फिर कलाकारी करने का महज ख्याल ही मानो पैशन बन गया है।
1: बच्चे लोग सबसे पहले मेरे को वहाँ अध्यक्ष बनाए, उसके बाद फिर मैंने अपना धीरे धीरे स्थल सजावट का काम किया। स्थल सजावट करने के बाद अब उसमें भी मजा नहीं आया, तो फिर मैं बोला उसको बंद करके मूर्ति का काम स्टार्ट किया।
0: मूर्तिकार शिवचरण को इन मनोहारी मूर्तियों को आकार देते हुए 25 साल से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान उन्होंने ठेले पर भी बाप्पा की मूर्तियां रखकर बेची। साल 2011 से शिवचरण ने घर पर ही मौली धागा, नारियल की लकड़ी, नारियल की बुछ जैसी कई इको फ्रेंडली चीजों से मूर्तियों को आकार देना शुरू किया। वहीं इस बार के गणेशोत्सव में शिवचरण ने धूप दीप, पेड़ की छाल और बांस की लकड़ी जैसी कई और पर्यावरण सुरक्षित जैसी चीजों से खूबसूरत बप्पा बनाए हैं, जिनके डिमांड काफी है।
1: इस बार हम लोग बनाए हैं धूप दीप का बनाए हैं राम भगवान के रूप में, और पेड़ के छाल से बनाया गया है, और उसके बाद बांस की लकड़ी से बनाया गया है, और नारियल की बूच को नारियल का स्वरूप दिया गया है।
2: बिंदी से शंख से
1: सीप, शंख और सीप से बनाया गया है, और ये क्या बोलते हैं,
2: बिंदी से
1: ये मोती से बनाया गया है।
0: शिवचरण और उनके परिवार की नज़र में प्रकृति का सम्मान ही बाप्पा की सच्ची भक्ति है। शिवचरण अपनी पत्नी, दो बेटे और एक बहू के सहयोग से विघ्नहर्ता की ऐसी ऐसी सुंदर मूर्तियां बना रहे हैं जिनके चाहने वाले ग्राहक हर साल बढ़ रहे हैं।
3: बाकी मूर्तियां तो अलग अलग बनाए जाते हैं मिट्टी से और बाकी अन्य चीजों से, लेकिन हम लोग गणेश जी को किसी भी चीज में अलग अलग रूप में बनाकर, मतलब आप देख सकते हैं कि पीछे एक लकड़ी की छाल है, सामने धूप अगरबत्ती है, उसके हिसाब से अलग अलग चीजों में बनाते हैं।
2: आस्था भी है गणेश
3: जी, बहुत आस्था है हमारी।
0: फिलहाल तो मिट्टी की ये सुंदर सुंदर इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा हमारी प्रकृति को मुस्कुराने की वजह दे रहे हैं। रायपुर का ये परिवार गणेश मूर्ति को बनाने की कला को जिस अंदाज में जिंदा रखे हुए है, उससे न केवल समाज को अपना पर्यावरण बचाने की प्रेरणा मिल रही है, बल्कि खुशहाल प्रकृति बने रहने का संकेत भी मिल रहा है। तो हो जाए एक बार फिर विघ्नहर्ता का ये प्यारा सा उत्सव इको फ्रेंडली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि बप्पा पधार रहे हैं। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरें जा रही हैं, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: मारुति सुजुकी ने अपनी मोस्ट पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक का बलेनो को नए अवतार में पेश कर दिया है। बलेनो फेसलिफ्ट नाम से भारत में लॉन्च की गई इस कार में स्टाइल, सेफ्टी और स्मार्टनेस का दम नजर आएगा। कंपनी के मुताबिक नई बलेनो नई पीढ़ी के लिए डिजाइन कार है। युवाओं को आकर्षित करने के लिए कंपनी ने बलेनो फेसलिफ्ट में कई शानदार बदलाव भी किए हैं, जो ग्राहकों को अलग अनुभव देंगे। बलेनो फेसलिफ्ट कार में नया इंजन, सेफ्टी के साथ डिजाइन, फीचर्स के साथ आरामदायक सफर का पूरा इंतजाम किया गया है। 1.2 लीटर से 3 सिलेंडर जेड सीरीज पेट्रोल इंजन कार को बेहतर लो एंड टार्क देगा। इस सेगमेंट में पहली बार लेवल 2 एडस तकनीक दी गई है, जिसमें अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स भी मिलने वाले हैं। गाड़ी के फ्रंट फेसिया को पूरी तरह से नया लुक दिया गया है। इसमें नए हेडलैम्प के अलावा एनिग्मैटिक टील इसे पहले से ज्यादा खूबसूरत बना रही है। बलेनो फेसलिफ्ट में सेगमेंट फर्स्ट फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, क्लेरियन साउंड सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और हेडअप डिस्प्ले जैसे फीचर्स ग्राहकों को निश्चित तौर पर लुभाएंगे। कार की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 6,10,000 रुपए रखी गई है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
6: रामनगरी अयोध्या से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा। मानदेय में 50% इजाफे के साथ मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का कैशलेस इलाज। वडोदरा में 6,000 से ज्यादा युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का मेगा इवेंट। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम, 35,000 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा। आर्मी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल। 11 सितंबर से शुरू हो रहा है सम्मेलन। राजधानी दिल्ली पर भी चढ़ने लगा गणेश उत्सव का रंग। स्ट्रीट स्टोर्स में जोरदार तरीके से बप्पा की प्रिय मोदक का हो रहा है निर्माण। खूबसूरत मूर्तियों से सजे बाजार, तो कहीं पर घरों में मिट्टी से बने गजरा। जूनियर हॉकी एशिया कप, भारतीय मेंस टीम की लगातार दूसरी जीत। साउथ कोरिया को 7-3 से हराया आखिरी क्वार्टर में हुए 3 गोल।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
6: गणेश चतुर्थी को लेकर झांसी के बाजारों में बढ़ी रौनक। बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। भोलेनाथ के साथ गणेश के अनोखे स्वरूप ने खींचा लोगों का ध्यान। मिट्टी की तो फ्रेंडली प्रतिमाओं की सबसे ज्यादा मांग। नागपुर में गणपति बप्पा के आगमन की धूम। गणेशोत्सव से पहले सजे भव्य गणपति पंडाल। ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर बप्पा का स्वागत। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों की गूंज। गणपति आगमन के साथ शहर में बड़ी उत्सव की रौनक। बप्पा के भक्तों में जबरदस्त उत्साह। दिल्ली में श्री धरणीधर जन्मोत्सव का भव्य आयोजन। धाकड़ समुदाय ने धूमधाम से मनाई भगवान धरणीधर की जयंती। दिल्ली की रुचि गुप्ता 8 साल से घर पर गणपति बप्पा की बना रही हैं मूर्तियां। इस बार भी मिट्टी से बप्पा का आकार देकर रंग को सजावट में अंतिम रूप दिया जा रहा है। रुचि गणपति विसर्जन भी घर पर ही करती हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। विसर्जन के बाद पानी पौधों में डालकर इसे परंपरा को इको फ्रेंडली बनाया जाता है। चौड़ी बाजार में 35 साल से मोदक की मिठास कायम। शाम स्वीट्स में आज करीब 25 तरह के मोदक हो रहे हैं तैयार। मोदक बनाने का हुनर महाराष्ट्र से दिल्ली आया। करीब 40 साल पहले दुकान के मालिक का रेसिपी कारीगर और सांचा महाराष्ट्र से लाए। चॉकलेट से लेकर स्ट्रॉबेरी तक मोदक के नए फ्लेवर तैयार। काजू ड्राई फ्रूट्स भी मिलते। अयोध्या में आज से नए सीईओ जितेंद्र मिश्र की नई जिम्मेदारी। राम मंदिर की प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था संभाल। राम मंदिर के सीईओ जितेंद्र मिश्र बोले जल्द बताएंगे मंदिर की आगे की कार्य योजना। राम मंदिर कार्यालय में कोषाध्यक्ष महेश के साथ बैठक। सूरत में साई युवक मंडल की ओर से भगवान गणेश की भव्य आगमन यात्रा का आयोजन। आगमन यात्रा में भगवान शिव के तांडव की विशेष प्रस्तुति भी पेश की गई। आग की लपटों के बीच शिव तांडव का दृश्य। कोणार्क सूर्य मंदिर की तर्ज पर बन रहा गणेश पंडाल। हर वर्ष अपनी अनूठी कला और थीम के लिए पूरे सूरत में जाना जाता है मंदिर। आगरमालवा में दिखा परंपरा और आस्था का संगम। निकाली गई बाबा भूतेश्वर महादेव की शाही सवारी। सवारी में शान से निकली भगवान भोलेनाथ की भूतों वाली बारात। माता पार्वती, विशाल नंदी और खाटू श्याम जी की झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। ढोल की थाप और डीजे बैंड पर गूंजते शिव भजनों पर जमकर नाचे श्रद्धालु। नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा करके बाबा का स्वागत। आगर मालवा के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से निकाली गई शाही सवारी फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया मंदिर। श्रावण माह के अंतिम सोमवार को बड़ी ही धूमधाम से उल्लास के साथ निकाली जाती है बाबा भूतेश्वर महादेव की शाही सवारी। वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनजी से सीधा संवाद। नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में 6,000 से ज्यादा छात्र युवा शामिल। देश के युवाओं और जनजी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से जोड़ने के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा इवेंट के लिए पहली बार बुक माय शो से रजिस्ट्रेशन हुआ। 1 घंटे में फुल हो गई सारी सीटें। डिजिटल एम टिकट और QR कोड से कार्यक्रम में एंट्री। पहली बार निजी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए रजिस्ट्रेशन और एंट्री व्यवस्था को बड़े स्तर पर किया गया। वडोदरा दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। श्रीलंका के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कोलंबो पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 38 वर्षों की भारतीय रक्षा मंत्री की पहली श्रीलंका यात्रा। लखनऊ में 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 में देश भर से आए बुनकरों ने हिस्सा लिया। बुनकरों कौशल विकास और निवेश को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की शुरुआत। कॉन्क्लेव से प्रदेश को वैश्विक वस्त्र उद्योग केंद्र के रूप में मिलेगी पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख टेक्सटाइल और अपैरल उद्यमियों के साथ बैठक की। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को बांटे नियुक्ति पत्र। 4 नए प्रकार की योजनाओं की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख हेल्थ कवर देने की बड़ी घोषणा कर दी। रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग पर जोर। इससे पहले हनुमानगढ़ी जाकर योगी ने पूजा अर्चना की। माता शबरी के नाम पर बने भोजशालायों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आया एक बहुत खूबसूरत इंस्टाग्राम रील। रील में एक बच्ची ड्रम बजाते हुए तो दूसरा तिरंगे के साथ नजर आई। मोदी का कैप्शन भी है बड़ा शानदार। जेनजी के बाद जेन अल्फा को मिल रहा है प्रधानमंत्री का प्यार। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसिद्ध तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किए। भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम व्यवस्थाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी ने आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश और पूरे देश की सुख समृद्धि की कामना की। तमिलनाडु दौरे के दौरान नेल्लोर भी गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अक्षरा विद्यालय परिसर में सोमा स्किल डेवलपमेंट सेंटर का दौरा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत में छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री योगी ने छात्रों से किया संवाद। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी उनके साथ मौजूद रहे। लखनऊ की हवा देश में सबसे साफ। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्वे में देश भर के 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के सर्वे में टॉप। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वे में दूसरे पायदान पर दौर और तीसरे पायदान पर जबलपुर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में नोएडा की बड़ी छलांग। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 8वें नंबर पर। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा कदम। ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच 30 मिनट की कनेक्टिविटी पर योजना बनता। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गंगा एक्सप्रेस के साथ कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए हापुड़ बाईपास 105 मीटर चौड़ा करने पर बनाया प्लान। बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं का 3 महीने का वर्षावास शुरू। बारिश में जमीन पर छोटे छोटे जीव निकलते हैं, इसलिए भिक्षु बाहर नहीं घूमते। बौद्ध धर्म में वर्षावास की परंपरा बहुत खास मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी जगह पर 24 बार वर्षावास किया। वर्षावास के दौरान भिक्षु सुबह शाम ध्यान और साधना करते हैं। 3 महीने का वर्षावास पूरा होने के बाद कठिन शीवर दान की परंपरा निभाई जाती है। दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा चाक चौबंद एनएसजी और दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल की। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई हाई लेवल काउंटर टेररिज्म मॉक ड्रिल। हर तरह के आतंकी हमले और इमरजेंसी से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम। भारतीय सेना की बड़ी सफलता। चिनूक से अल्ट्रा लाइट होविट्ज़र का चुनौतीपूर्ण इलाके में तैनात करने का सफल परीक्षण। मिस्र के एल अलामीन एयरशो में आज देखेगा भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर का दमखम। स्वदेशी एयरलाइश ध्रुव हेलीकॉप्टर से सारंग दिखाएगी हवाई करतब। आसमान में सटीक फॉर्मेशन से दर्शक होंगे रोमांचित। सारंग टीम पेश करेगी डॉल्फिन लीप और स्पॉट स्टॉल टर्न। 11 सितंबर को दिल्ली में बंद रहेंगे स्कूल। ब्रिक्स समिट को देखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे के घायलों से मिलने एम्स अस्पताल पहुंची रेखा गुप्ता। जाना घायलों का हालचाल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घायलों को सौंपे 5-5 लाख रुपए के चेक। इलाज का पूरा खर्च उठाएगी दिल्ली सरकार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के यशवंतपुरम एपीएमसी मार्केट का किया औचक दौरा। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने मार्केट में किसानों और मजदूरों के साथ नाश्ता किया। उपज की क्वालिटी और कीमत के बारे में जानकारी। गुवाहाटी पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में दर्शन पूजन किए। पुरी में श्रीमद भगवत कथा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। साध्वी रितंबरा शामिल हुई। अयोध्या में लघु उद्योग का भारतीय औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। देश भर में लघु उद्योगों और स्टार्टअप से जुड़े लोग शामिल हुए। देहरादून में हिमालय दिवस पर हिमालय नाम नगाधिराज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 11,000 छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दी जाएगी निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग। श्रीनगर में होम शेफ कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। होम शेफ कुकिंग प्रतियोगिता के जरिए कश्मीर की महिलाओं ने दिखाया अपने कुकिंग स्किल्स। फूड बिजनेस शुरू करने की संभावनाओं की तलाश। श्रीनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के साथ मिलकर प्राइवेट होटल में आयोजित किया गया ये कॉम्पिटिशन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह दरगाह पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बनाया जा रहा है बेहतर। श्रद्धालुओं के लिए आवास, विश्राम हॉल और मेहमान खानों के किए जा रहे व्यापक इंतजाम। देश विदेश से आते हैं हजारों श्रद्धालु। हरिद्वार में बारिश के उफान पर चलते बरसाती नाले एक बच्ची का किया गया सफल रेस्क्यू। मालदा में गंगा के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ जैसे हालात। स्वास्थ्य केंद्र भी हुआ प्रभावित। खुशा पानी लगातार बारिश से बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर। रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त। मोतिहारी में भीषण बारिश के चलते इलाकों में भर गया पानी। स्थानीय लोगों की बढ़ी चुनौती। बिहार में गंभीर हुए बाढ़ के हालात, भागलपुर में एनएच 80 पर 2 फीट पानी बढ़ा। एक्टर डायरेक्टर कुणाल खेमू की नई फिल्म वाइब का गाना ऐसी मेरी वाइब रिलीज हुआ। फिल्म में दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर भी नजर आएंगे। फिल्म प्रेम कीटाणु का रोमांटिक ट्रैक वाला तीसरा गाना निकलकर सामने। फिल्म 13 साई की रिलीज डेट निकलकर सामने आई, अगले साल 5 फरवरी को रिलीज होगी। प्रतिभाव से भरपूर फिल्म हारेगा सारा बाबा खाटू श्याम हमारा नाम की फिल्म की हुई घोषणा। फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, 32 दिनों में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 155 करोड़ के पार। चीन में रोबोट फैक्ट्री शुरू, एक्सपेंग ने इंसानों जैसे रोबोट बनाने की प्रोडक्शन लाइन शुरू करी। रोबोट खुद असेंबल होकर फैक्ट्री से बाहर चला, यानी अब रिसर्च से सीधा उत्पादन की ओर। एक्सपेंग के रोबोट में 3 खास AI चिप लगी हुई है, इससे वो बिना इंसानी रिमोट कंट्रोल के मुश्किल काम भी खुद कर सकते हैं। इस ह्यूमनॉइड रोबोट के शरीर में 76 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक्सपेंग 2024 के आखिर तक इन रोबोट का मास प्रोडक्शन शुरू करने की तैयारी। इंसानों की तरह रोबोट ने एक साथ डांस किया और रिपोर्ट्स के अनुसार हाथ भी हिलाया। चीन में ह्यूमनॉइड रोबोट प्रदर्शनी में आने वाले लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, साथ ही साथ ये सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। चीन के कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट अब मेट्रो स्टेशन पर भी तैनात किए जा रहे हैं, वहां पर लोगों की मदद करेंगे। ये रोबोट लोगों को बात समझकर जवाब दे सकते हैं और जरूरत के हिसाब से मदद भी कर सकते हैं। चीन की टीम शानडोंग में नई तकनीक को तेजी से उद्योग तक पहुंचाने में जुटी हुई है। ग्रीस के अटिका जियोलॉजिकल पार्क में 3 सुमात्रन टाइगर शावकों का पहला हेल्थ चेकअप हुआ। 3 शावक पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और मां के साथ अच्छे से बढ़ रहे हैं। टाइगर शावकों के नाम उड़ीसी के प्रेरित रखे जाएंगे। उनके पिता आर्गोस के करीब 1 महीने पहले मौत हो गई थी। सुमात्रन टाइगर दुनिया के सबसे दुर्लभ बाघों में एक हैं। जंगल में अब 600 से भी कम बची है संख्या। शवों की सुरक्षा के लिए चिड़ियाघर अहम भूमिका निभा रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक यहां पर अलग अलग जीव वाले बाघ मौजूद। यूनिट्री रोबोटिक्स के ह्यूमनॉइड रोबोट ने किक बॉक्सिंग में दिखाया कमाल। यूनिट्री ने पहली बार पूरी तरीके से ऑटोनोमस कॉम्बैट किया, यानी इंसान ने उसे दूर से कंट्रोल नहीं किया। वीडियो में रोबोट लगातार हमला और बचाव करता हुआ नजर आया, उसने मुक्के भी मारे। यूनिट्री का दावा है कि ये काम रोबोट की बड़ी तकनीकी क्षमता दिखाता है। कंपनी एक ऐसे रोबोट को विकसित दुनिया में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की संभावना तलाश रहा। इस रोबोट ने दिखाया कि मशीन बिना हर कदम बताए भी तेजी से फैसला ले सकती है।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और आइए अब देखते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
8: घर में माहौल पूजा पाठ भक्ति और आराधना का हो तो इसे सीखने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद दिनचर्या में शामिल हो जाता है। देखिए इस छोटे से बच्चे को कैसे अपनी प्यारी प्यारी टूटी फूटी आवाज में भगवान जगन्नाथ के सामने प्रणाम मंत्र गाने की कोशिश कर रहा है, मानो उसे सब आता है। बच्चे का ये अंदाज लोगों का दिल छू रहा है।

सीखने की चाह हो तो उम्र मायने नहीं रखती, और फिर छोटे बच्चे तो कॉपी करने में माहिर होते हैं, बस दिलचस्पी होनी चाहिए। अब इस नन्हे उस्ताद को ही देख लीजिए, स्केटिंग में डबल क्रॉस ऐसे कर रहा है मानो कोई डांस मूव हो। जो भी हो, छोटे बच्चे का ये हुनर देखने लायक है।

0: एक्टिंग में उस्ताद है ये लड़की। मौत का सामना कैसे करते हैं अलग अलग देशों के लोग बताने की कोशिश हो रही है। कोशिश है कि इसमें वहाँ के लोगों के जीने का अंदाज भी झलके। लोग बच्चे के सपने की जमकर तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं इन्हें भला ऑस्कर की क्या जरूरत। देखते जाइए इन दोनों भाइयों की हरकतें, कोई कम नहीं है शरारत में। कपड़े सूख रहे हैं, एक को लगा कि चलो झूला झूल लेते हैं, दूसरा भी पीछे हो लिया, लेकिन इन्होंने जो किया उसने पहले की सांस अटका दी। देखिए कैसे हवा में झूल गया बेचारा, रो रो कर बुरा हाल है। दोनों मासूम बच्चों की यह हरकत सोशल मीडिया यूजर्स के चेहरों पर मुस्कान ला रही है। मानना पड़ेगा करने वाले तो बस कमाल करते हैं और इनके जुगाड़ का तो कोई जवाब ही नहीं। देखिए क्या तरकीब भिड़ाई है बारिश से बचाव के लिए। सही है, छाता कहाँ बचा पाता है पूरी तरह पानी से, और बारिश तेज हो तो बस सिर ही बच पाता है। लेकिन ये इंतजाम तो रेनकोट से भी आजादी दिला रहा है, इनके दिमाग की दाद तो देनी पड़ेगी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर

0: हनुमान चालीसा की किस पंक्ति का पाठ करने से रोग और बीमारियां दूर हो जाते हैं? हनुमान चालीसा की किस पंक्ति का पाठ करने से बड़ी समस्या मिट जाती है? क्या है हनुमान चालीसा की महिमा और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: थिएटर में हनुमान चालीसा सुन महिला क्यों हुई बेचैन? हनुमान अंश मूवी का महिला पर कैसा असर? नेपाल में बाढ़ से बचने के लिए पढ़ा कुरान शरीफ। पत्ते पर उकेरा पूरा शिव परिवार। वायरल वीडियो की पूरी और पक्की खबर देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
6: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: राजधानी दिल्ली पर भी चढ़ने लगा गणेशोत्सव का रंग, स्वीट स्टोर्स में जोर शोर से हो रहा बप्पा के प्रिय मोदक का निर्माण, खूबसूरत मूर्तियों से सजे बाजार तो कहीं घरों में मिट्टी से बने गजानन। महाराष्ट्र के अकोला में पोला उत्सव के लिए सजे बाजार, बैलों को सजाने के लिए रंग बिरंगी रस्सियां, झूम और घुंघरू खरीद रहे किसान, ऋषभ राजा के प्रति सम्मान दर्शाता है यह पर्व। रामनगरी अयोध्या से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा, मानदेय में 50% इजाफे के साथ मिलेगा 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज।
6: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
1: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। देश भर में गणपति उत्सव की तैयारियां जोरों पर है, हर तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है, गलियां और बाजार बप्पा के स्वागत के लिए सज चुके हैं और भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इसी से जुड़ी आज की हमारी पहली गुड न्यूज है। पंडालों में गूंजने लगे गणपति बप्पा के जयकारे। आपको बता दें कि गणपति बप्पा के आगमन को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है और पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। गणेश उत्सव की शुरुआत 14 तारीख से होने जा रही है। ऐसे में जैसे जैसे गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आ रहा है, मूर्ति निर्माण से जुड़े कारीगर बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।

0: गणपति बाप्पा के स्वागत के लिए शहर सजने लगे हैं। कहीं विशाल पंडाल तैयार हो रहे हैं तो कहीं बाप्पा की भव्य प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रंग बिरंगी रोशनी, फूलों की सजावट और भव्य दिव्य झांकियों ने गणपति उत्सव में रंग भर दिए हैं। गुजरात के सूरत शहर में गणेशोत्सव को लेकर उत्साह और उमंग चरम पर है। गणेश चतुर्थी से पहले ही शहर के अलग अलग इलाकों में गणेश प्रतिमाओं के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है। गणेश आगमन यात्राओं में इस बार पारंपरिक आयोजनों के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों की अनोखी कलाकृतियां और आकर्षक प्रस्तुतियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सूरत के भटार इलाके में इस साल गणेश उत्सव के लिए एक और खास तैयारी की जा रही है। यहां गणेश मंडल की ओर से ओडिशा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के थीम पर भव्य गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है।
1: ये सूरत के भटार इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर एक विशाल गणेश पंडाल बनाया जा रहा है और इस पंडाल में भगवान गणेश की स्थापना की जाएगी और गणेश उत्सव के दौरान यहाँ पर उनकी पूजा पाठ होगी, साथ ही भक्त उनके जो है दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे।
0: हर साल सूरत गणेश मंडल अपनी अलग और अनोखी थीम के लिए जाना जाता है और इस साल भव्य दिव्य कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम है जो इस आयोजन को और अद्भुत और भव्य बनाने वाली है।
2: साईराम योग मंडल पिछले 28 सालों से बड़े बड़े थीम पे आयोजन करता है। पिछले साल वनतारा थीम, उसके पहले शीश महल, उसके पहले जयपुर महल, ऐसे अलग अलग महलों में सूरत के अंदर बहुत फेमस है। इस साल हम लोग ओडिशा का कोणार्क मंदिर का भव्य आयोजन कर रहे हैं और हमने शोभा यात्रा पिछले दिनों बहुत भव्य आयोजन किया था जिसमें हजारों की तादाद में हमने शोभा यात्रा का बहुत बढ़िया आयोजन किया था, जिसमें महाराष्ट्र से ढोल पटक आए थे, महाराष्ट्र के इवेंट द्वारा समुद्र मंथन का कार्यक्रम किया था।
0: गुजरात ही नहीं, गणपति महोत्सव की तैयारी महाराष्ट्र में भी जोरों से चल रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में पंडाल सजने शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु धूमधाम से बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। नागपुर के महल इलाके में विराजमान होने वाले गणपति बाप्पा की भव्य मूर्ति भी पूरे धूमधाम के साथ लाई गई। बाप्पा के आगमन पर ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे संग भक्त नाचते गाते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। वैसे बीते कुछ सालों से इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गणेशोत्सव के दौरान प्रकृति को बचाने और पर्यावरण का ख्याल रखने का संदेश लगातार दिया जा रहा है और यही वजह है कि अब इको फ्रेंडली गणपति की ओर भक्तों का रुझान बढ़ा है। मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनी बाप्पा की मूर्तियां भक्तों को खूब पसंद आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बांस और चिकनी मिट्टी से गणपति बाप्पा की बेहद खूबसूरत और पर्यावरण अनुकूल मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। कारीगरों की मेहनत से आकार ले रही ये मूर्तियां न सिर्फ देखने में आकर्षक हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रही हैं। झांसी के बाजारों में भी रौनक छाई है। बप्पा की खूबसूरत मूर्तियां हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। कहीं बप्पा की पोशाक आकर्षण का केंद्र है तो कहीं उनका अनोखा भव्य दिव्य श्रृंगार बप्पा की प्रतिमा को मनमोहक बना रहा है। गणपति उत्सव में अब कुछ दिन बाकी है। गणेश चतुर्थी से बाप्पा का आगमन पंडालों के साथ साथ भक्तों के घरों में होगा जहां उनकी सेवा और पूजा की जाएगी और खुश होकर बाप्पा उन्हें आशीर्वाद देंगे। झांसी से अजय झा, सूरत से संजय सिंह राठौर, नागपुर से योगेश बसंत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: उज्जैन में सोमवार को भव्य दिव्य स्वरूप में बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले तो पूरा उज्जैन अभिभूत हो गया। परंपरा के मुताबिक भादो के महीने में भी बाबा महाकाल की दो सवारियां निकलती है, यानी कि सावन के बाद भी उज्जैन की सड़कों पर हर ओर गूंजता बाबा महाकाल का जय घोष सुनाई देता है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है रास्ते सवारी में दिखा राजा महाकाल का वैभव। जी हाँ, देश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों की परंपरा के मुताबिक आखिरी सोमवार पर महाकाल की छठी सवारी निकली और उनकी डोली के साथ भक्त नाचते झूमते चले महाकाल। उज्जैन के राजा माने जाते हैं और जब

0: ये धमाका दरअसल मुनादी है कि उज्जैन के राजा की सवारी आने वाली है, लेकिन उससे पहले तो नाचते गाते उनके भक्तों की बारी है। वैसे तो उत्तर भारत में सावन बीत चुका है, लेकिन दक्षिण पश्चिम परंपरा के मुताबिक जब सावन का आखिरी सोमवार आया तो हर साल की तरह महाकाल की छठी और आखिरी राजसी सवारी निकाली। राजा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने और उनका हाल देखने निकले। राजा चले तो उनके साथ सवारी में पुलिस बैंड चला। पुलिस के सशस्त्र बल की टुकड़ी चली और साथ चली 70 भजन मंडलियां। दो 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और इनके साथ आधा दर्जन बैंड। लेकिन महाकाल की सवारी में तो नजर उनके भक्तों पर होती है, ऐसे भक्त जो बहुरूपियों की टोली में होते हैं। सोमवार को दोपहर 4 बजे रजत पालकी में सवार होकर भगवान चंद्रमौलेश्वर नगर भ्रमण पर निकले। शंख ध्वनि और भगवान महाकाल के जयकारे से आसमान गूंज उठा। महाकाल ने 6 दिव्य स्वरूपों में अपने भक्तों को दर्शन दिए। रजत पालकी में भगवान चंद्रमौलेश्वर, गरुड़ पर शिवतांडव, नंदी पर उमा महेश, डोल पर होलकर मुखौटा, इसके बाद सप्तधान मुखौटा और अंत में हाथी पर मन महेश स्वरूप। सवारी मार्ग पर 1,00,000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्र में रंगोली बनाई गई और जब सवारी चली तो ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई। सवारी में कोई शिव पार्वती के रूप में था तो कोई बालाजी के रूप में।
1: हमने भगवान की भव्य सवारी देखी। हम दिल्ली से आए हैं और स्पेशली भगवान के दर्शन करने आए थे। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर दर्शन हुए।
0: भगवान शिव के रूप में जब बच्चों ने नृत्य शुरू किया तो लोग देखते रह गए। भूतों की टोली देखकर लगा कि महादेव की फौज जमीन पर आ गई। डमरू, झांझ, मंजीरे बजाते श्रद्धालु और नृत्य करती महिला, सभी शिव भक्ति में रंगे नजर आए। और इस छोटे बच्चे ने अपनी तलवारबाजी से मन मोह लिया। बोलबम और जय महाकाल के उद्घोष ने सृष्टि के अधिपति का अभिवादन किया, जबकि सड़क के दोनों ओर खड़े श्रद्धालु भगवान की एक झलक पाने के लिए पालकी की ओर टकटकी लगाए रहे। सवारी में भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस साल भी आए और बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए घंटों डटे रहे। जब दर्शन हुए तो पुष्प वर्षा के साथ अपने आराध्य की अगवानी की। नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सवारी शिप्रा नदी पहुंची, जहां शिप्रा के पावन जल से भगवान का अभिषेक पूजन किया गया। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: केदारनाथ धाम में इन दिनों मौसम का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। बारिश के बीच बाबा केदार की नगरी घने कोहरे की चादर में लिपटी हुई है, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। बारिश के बीच भी भक्त लगातार केदारनाथ पहुंचकर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। मानसून में भी केदारनाथ में आस्था का सैलाब। जी हाँ, केदारनाथ धाम में मौसम भले ही करवट ले रहा हो, लेकिन भक्तों के कदम लगातार बाबा के दर्शन के लिए बढ़ रहे हैं। बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं की केदारनाथ धाम में आवाजाही लगातार जारी है। बाबा केदार की नगरी इस वक्त घने कोहरे से ढकी है। पहाड़ों पर छाया धुंध का नजारा धाम की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। ठंडी हवाओं और बारिश के बीच श्रद्धालु कतारों में खड़े होकर बाबा के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक करीब 14,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या के बीच धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं भी जारी है। केदारनाथ मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। मंदिर के सजावट के लिए हजारों टन फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बारिश के बीच फूलों से सजा मंदिर, पीछे पहाड़ों पर छाया कोहरा और बाबा के जयकारों से गूंजता धाम केदारनाथ में प्रकृति और आस्था का यह संगम श्रद्धालुओं को खासा आकर्षित कर रहा है।
3: द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी भगवान केदारनाथ के दरबार में इन दिनों पल पल मौसम बदल रहा है।

0: है। कभी बारिश तो कभी बाबा केदार की नगरी घने कोहरे की चादर में लिपट रही है। हालांकि इस बीच भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। केदारनाथ धाम पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में दिन प्रतिदिन अब इजाफा होने लग गया है। उत्तराखंड में मानसून सीजन समाप्त होने की कगार पे है। कभी धूप हो रही है तो कभी बारिश हो रही है, लेकिन जो भक्त केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। अभी तक रिकॉर्ड 14,83,000 से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। अब मानसून सीजन समाप्त होते होते भक्तों की संख्या में भी इजाफा होने लग गया है। अब हर रोज लगभग 2,500 तीर्थयात्री बाबा केदार के दरबार में पहुंच रहे हैं।
1: गुजरात में आज प्रधानमंत्री मोदी ने 35,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन सब में खास रहा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसके 3 महत्वपूर्ण सेक्शंस को आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित किया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, और वो है गुजरात को रेलवे की विकास परियोजनाओं की सौगात। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई 326 रूट किलोमीटर है। इसे 20,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित किया गया है। इस कॉरिडोर के बनने से औद्योगिक केंद्रों से बंदरगाह तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कार्गो की आवाजाही और तेज होगी।

0: गुजरात में वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया गया है, जिसमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के 3 अहम हिस्सों को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इनके शुरू होने के साथ डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का पश्चिमी नेटवर्क अपनी पूरी लंबाई में चालू हो जाएगा। इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के न्यू सारण से न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव से न्यू सफाले और न्यू सफाले से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित किया। इन तीनों सेक्शन की कुल लंबाई 326 रूट किलोमीटर है और उन्हें 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है।
1: आज यहां से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आखिरी कड़ियां भी जुड़ गई हैं। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया।
0: WDFC के इन सेक्शन के चालू होने से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी तक सीधे लाल ढुलाई की सुविधा मिलेगी। इससे औद्योगिक केंद्रों से बंदरगाह तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो की आवाजाही और तेज होने की उम्मीद है। रेलवे के मुताबिक इससे लॉजिस्टिक लागत और माल पहुंचाने में लगने वाला समय कम होगा और इसके साथ ही मुंबई के मौजूदा रेलवे नेटवर्क पर मालगाड़ियों का दबाव कम होगा और यात्री ट्रेनों के लिए भी क्षमता उपलब्ध हो सकेगी।
1: पूर्वी और पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर पर हर रोज 430 से ज्यादा मालगाड़ियां चलती हैं, प्रतिदिन 430 मालगाड़ी। और पहले जो मालगाड़ी 6.5 घंटे में 100 किलोमीटर का सफर तय करती थी और अब वही मालगाड़ी आधे से भी कम समय में 100 किलोमीटर का सफर तय कर लेगी।
0: वडोदरा में इसके अलावा पीएम मोदी ने रेल की कुछ और महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने 329 किलोमीटर लंबी और 9,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 3 रेल प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। इनमें वडोदरा से रतलाम तीसरी और चौथी रेल लाइन, मियागाम करजन चौरदा मालसर गेज कन्वर्जन और विश्वामित्री से दबोई रेल लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट शामिल है।
2: ये रेलवे का मॉडर्नाइजेशन में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सारे सिस्टम्स रेलवे के, चाहे स्टेशन हो, चाहे ट्रैक हो, चाहे ऊपर जो बिजली का तार होता है OHE या सिग्नलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सबको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। 100 साल पुरानी संस्था है, 100 से ज़्यादा साल पुरानी संस्था है, एक एक करके सिस्टमेटिकली इसको मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है।
0: इस दौरान पीएम मोदी ने युवा छात्रों के साथ करीब 25 मिनट तक संवाद किया। इस कार्यक्रम के दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के लिए करीब 6,000 युवाओं को बुलाया गया था। इसमें पीएम मोदी ने युवाओं से झूठे दावों और भ्रामक बातों से बचने की अपील की।
3: झूठ की गूंज आपको हर चौराहे पे मिल जाएगी जो युवाओं को भरमाना चाहती है, पर युवा जो है वो सच के साथ चलना चाहते हैं और उनको वो सच देखना होगा कि कौन उनके लिए काम कर रहा है। और इसीलिए उन्होंने अपने कामों की लिस्ट गिनाई कि हमने कितने काम किए, पहले की सरकारों में कितने काम होते थे, हम कितनी तेजी से काम कर रहे हैं। साथ में उन्होंने बड़ी बात की कि हम ये जो भी मेहनत कर रहे हैं वो आपके भविष्य के लिए कर रहे हैं, युवाओं का जो भविष्य है वो बेहतर बने। चाहे किसी देश के साथ हम यूरेनियम का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी देश के साथ दूसरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मेड इन इंडिया की बात हो, चिप से लेकर शिप तक हम बना रहे हैं यहाँ पे भारत में।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,780 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने गुजरात सरकार की करीब 2,600 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ब्रिजेश दोषी, वडोदरा, गुड न्यूज टुडे।
4: दिव्यांगता को कमजोरी नहीं बल्कि बदलाव की ताकत बनाकर छत्तीसगढ़ की एक शिक्षिका ने शिक्षा की नई राह दिखाई है। भिलाई की शिक्षिका के शारदा ने दृष्टि बाधित बच्चों के लिए ऑडियो के जरिए पढ़ाई को आसान बनाने की पहल शुरू की है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। स्पेशल बच्चों की स्पेशल पढ़ाई के लिए ऑडियो बुक्स। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के भिलाई की शिक्षिका के शारदा ने दृष्टि बाधित बच्चों के लिए 11,000 से ज्यादा ऑडियो कंटेंट तैयार किया है, जिससे कि दृष्टि बाधित बच्चों की पढ़ाई की नई उम्मीद जगे।
5: किताबों के पन्ने जिन्हें दिव्यांग छात्रों को देख पाना मुश्किल है, उनके लिए अब यही पढ़ाई आवाज के जरिए आसान हो रही है। छत्तीसगढ़ के शिक्षिका के शारदा ने दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए वर्ल्ड ऑडियो बुक की शुरुआत की है ताकि बच्चे सुनकर अपनी पढ़ाई कर सकें।
6: तो मैंने जो है 5 सितंबर 2024 को मुझे माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के हाथों मुझे नेशनल टीचर अवार्ड मिला था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और मैं उसके बाद से दिव्यांग ब्लाइंड बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। और चूंकि मैं एक खुद भी एक दिव्यांग हूँ, 80% डिसेबिलिटी है मेरी, और मुझे लगा कि मैं ऐसे लोगों के लिए काम कर सकूँ, इसी कारण मैंने ये वर्ल्ड ऑडियो बुक का चैनल बनाया।
5: दिव्यांग छात्रों के लिए ये पहल अब केवल भिलाई तक सीमित नहीं रही बल्कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के 33 शिक्षक इस मुहिम से जुड़ गए हैं और मिलकर हजारों ऑडियो कंटेंट तैयार किया गया है जो छात्रों को पढ़ने और समझने में काफी मदद कर रहा है।
6: 25 अक्टूबर 2024 में और ये काम की शुरुआत तब की, और आज की स्थिति में मैंने इसमें हमारे राज्य के 33 जिलों के टीचर्स को जोड़ा है, तो हमारी पूरी टीम ने मिलाकर 11,380 ऑडियो कंटेंट आज की स्थिति में बने हुए हैं और जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।
5: आज इस पहल के तहत 11,300 से ज्यादा ऑडियो कंटेंट और 107 से ज्यादा प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी हैं, और खास बात है कि जिन्हें 8 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है।
6: 8 लाख से अधिक बार इसे देखा जा चुका है, और इसमें यहाँ तक कि अदर स्टेट के टीचर्स, अदर स्टेट के स्कूल के बच्चे भी इसका यूज कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के तो बच्चे यूज कर ही रहे हैं, अदर स्टेट के टीचर्स भी और बच्चे भी इस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यही है डिजिटल एजुकेशन की पहल जिससे हम यहाँ बैठे पूरे वर्ल्ड में छा सकते हैं।
5: 5 सितंबर 2024 ये वो तारीख है जब शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए के शारदा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन ये सम्मान उनके सफर का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बना। दिव्यांग बच्चों की मुश्किलों को करीब से समझने वाले के शारदा ने उनके लिए ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया जहां पढ़ाई का मुश्किल सफर ऑडियो के जरिए आसान हो गया। आज इस पहल के बदौलत दृष्टिबाधित विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को सुनकर समझ रहे हैं और उनके चेहरों पर दिख रही खुशी बता रही है कि जब शिक्षा की राह आसान होती है तो सपनों को भी पंख मिल जाते हैं।
7: अच्छा, जैसे शुरू में सुने कौन सा वाला सुने थे? स्वजाति,
8: स्वजाति लक्षण और समृद्धि लक्षण।
7: अच्छा, जैसे आपने ऑडियो सुना कैसा लगा?
9: बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा है।
10: इसमें 2 से 3 बार
9: रिपीट हो रहा
7: है, तो आप लोग जो चीज छूट जा रहे हैं वो समझने में आसानी
9: हो रहा है।
5: दिव्यांग के शारदा ने साबित कर दिया कि दिव्यांगता कोई सीमा नहीं है बल्कि बदलाव की शुरुआत भी बन सकती है। किताबों के पन्नों से निकली ये आवाज अब उन बच्चों की पढ़ाई को सहारा दे रही है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। रघुनंदन पंडा, दुर्ग, गुड न्यूज टुडे।
4: जलते बाबा खाटू श्याम पर एक फिल्म बनने जा रही है। आस्था और भक्ति से परिपूर्ण ये फिल्म 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ये फिल्म बाबा खाटू श्याम की पवित्र और बहुत ज्यादा मानी जाने वाली कहानी से प्रेरित है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है अब बड़े पर्दे पर दिखेगी बाबा खाटू श्याम की महिमा। जी हाँ, खाटू श्याम जी की भक्ति का रंग अब बड़े पर्दे पर चढ़ने वाला है। करोड़ों श्रद्धालुओं के आराध्य श्री खाटू श्याम जी पर बनने जा रही है एक खास भक्ति फिल्म। नाम है हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा। फिल्म की कहानी श्री खाटू श्याम जी से जुड़ी उस पवित्र और लोकप्रिय कथा से प्रेरित होगी जिसमें बाबा को उनके भक्त श्याम बाबा के नाम से पुकारते हैं। इस फिल्म के लिए अभिनंटानिया और एंटरटेनमेंट और सेलेक्ट मीडिया होल्डिंग ने हाथ मिलाया है। फिल्म को सिनेमाघरों में 2027 में रिलीज करने की तैयारी है। हालांकि अभी फिल्म के डायरेक्टर और कलाकारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली ये फिल्म महाभारत के बहादुर योद्धा बर्बरीक के असाधारण सफर को बड़े पर्दे पर दिखाएगी। बर्बरीक को भगवान कृष्ण ने अमर जीवन का वरदान दिया था और उन्हें खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजा जाने लगा। जम्मू कश्मीर में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस फिल्म फेस्टिवल में देश और दुनिया भर के फिल्म मेकर्स ने उत्साह दिखाया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो सातवीं गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है और वो है कश्मीर में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज। आपको बता दें कि घाटी में ये पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है जिसमें चार दिन के इवेंट में स्क्रीनिंग के लिए 41 देशों की 135 फिल्में चुनी गई हैं।

0: कश्मीर की हसीन वादियों में सिनेमा और संस्कृति का महामंच सज चुका है, जिसका आगाज कलाकारों की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ हुआ तो पूरा शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर गीत संगीत और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये घाटी में हो रहा पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया। इसके साथ ही सिनेमा और जम्मू कश्मीर के पुराने और गहरे रिश्ते का एक और नया अध्याय शुरू हो गया है।
1: गवर्नमेंट की तरफ से पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दो तीन मकसद हैं। एक तो दुनिया भर की कुछ फिल्में जो हैं, यहाँ जो लोग या तो शौकीन हैं या मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इस तरह का एक्सपोजर देना। फिर जो हमारे लोकल फिल्म इंडस्ट्री है, उन्हें भी थोड़ा सा इसमें एक एक्सपोजर मिल जाता है। और कोशिश की जा रही है कि हम मुल्क के फिल्म इंडस्ट्री को याद दिलाएं कि स्विट्ज़रलैंड और बाकी मुल्कों से पहले अगर फिल्में बनती थीं तो कश्मीर में बनती थीं।
0: कश्मीर में आयोजित हो रहे इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें बॉलीवुड एक्टर फातिमा सना शेख, फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा, रमेश सिप्पी और संतोष सिवन के साथ साथ बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई हस्तियां शामिल रही, जिन्होंने घाटी में हो रहे इस बड़े आयोजन पर खुशी जताई।
2: हमारे यहाँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया जा रहा है और वो भी गवर्नमेंट लेवल पे, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप।
0: भारतीय सिनेमा और कश्मीर का रिश्ता नया नहीं है। 1960 और 70 के दशक में कश्मीर की कली, जंगली, आरजू और कभी कभी जैसी कई हिट फिल्मों ने घाटी को प्रेम, संगीत और प्राकृतिक सौंदर्य की सिनेमाई कल्पना का हिस्सा बना दिया था। इन फिल्मों के जरिए देश ही नहीं दुनिया भर के दर्शक भी कश्मीर की खूबसूरती से रूबरू हुए। लेकिन 90 के दशक में आतंकवाद के चलते कश्मीर के सिनेमा घरों के दरवाजे बंद हो गए और फिल्मों की शूटिंग लगभग रुक गई थी। हालांकि आज हालात तेजी से बदले हैं, जिसके चलते न सिर्फ घाटी में फिर से सिनेमा घर खुले हैं बल्कि पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन को उम्मीद है कि ये आयोजन कश्मीर के लोगों को दुनिया भर के प्रोफेशनल्स से बातचीत करने का मौका भी देगी और वो फिल्म मेकर से जुड़ पाएंगे, आइडिया एक्सचेंज कर पाएंगे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों की फिल्में भी देख पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: राजधानी दिल्ली पर चढ़ने लगा गणेशोत्सव का रंग, स्वीट स्टोर्स में जोर शोर से हो रही बप्पा के प्रिय मोदक का निर्माण, खूबसूरत मूर्तियों से सजे बाजार, तो कहीं घरों में मिट्टी से बने गजानन। महाराष्ट्र के अकोला में पोला उत्सव की जोरदार तैयारी, बैलों को सजाने के लिए रंग बिरंगी रस्सियां, झूमर और घूंगर खरीद रहे हैं। किसान वृषभ राजा के प्रति सम्मान दर्शाता ये पर्व। रामनगरी अयोध्या से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा, मानदेय में 50% इजाफे के साथ ही मिलेगा 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़।
0: मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं और इन्हें शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की पड़ताल और झूठ के नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले वायरल हो रहे उस वीडियो की बात होगी, जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि हनुमानंद फिल्म देखने पहुंची एक महिला हनुमान चालीसा सुनते समय अचानक बेहद भावुक हो गई और कुछ ही देर में जोर जोर से चीखने लगी। क्या इसकी सच्चाई आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के से जुड़ी हुई, जिसे नेपाल का बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक शख्स कुरान शरीफ पढ़ने लगा। वीडियो की सच्चाई क्या है आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
0: नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी भक्ति ड्रामा फिल्म हनुमान अंश ने धूम मचाई हुई है। फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हो रही है और सोशल मीडिया पर हनुमान अंश छाई हुई है। कहीं सिनेमा घरों के बाहर लड्डू बांटे जा रहे हैं, कहीं हनुमान सदा सहायते के नारे गूंज रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि महिला हनुमान अंश देखने के बाद थिएटर के अंदर ही चीख चीख कर दहाड़े मारने लगी। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
7: जिसने भी इस दृश्य को देखा वो हैरान हो गया। थिएटर के अंदर एक महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी और अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। महिला की हरकत देखकर आसपास बैठे लोग भी दंग हो गए। आसपास बैठे लोगों ने इसे रोकने की कोशिश में जुट गए। कोई इस लम्हे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने लगा। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि थिएटर में नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर बनी मूवी हनुमान अंश देख रही महिला हनुमान चालीसा सुनते समय अचानक बेहद भावुक हो गई और कुछ ही देर में जोर जोर से चीखने लगी। कुछ लोग इस घटना को गहरी भक्ति का प्रणाम बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स इसे भावनात्मक प्रतिक्रिया मान रहे हैं। वीडियो के साथ एक संदेश भी शेयर किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि जब कोई फिल्म दिल को छू जाती है और इंसान भगवान की भक्ति में पूरी तरह डूब जाता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल हनुमान अंश ने सिनेमाघरों में अब तक आई फिल्मों के सामने पूरी बाजी पलट कर रख दी। इस फिल्म को लेकर न प्रमोशनल कोई प्रमोशन किया गया और न ही लोगों को रिलीज के समय भनक लगी। करीब 2 करोड़ रुपए के बजट में तैयार ये फिल्म अब तेजी से 200 करोड़ के क्लब की तरफ कमाई करती नजर आ रही है। इन सबके बीच सोशल मीडिया के पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि हनुमान अंश फिल्म में हनुमान चालीसा सुनकर ये महिला भावुक हो गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। पड़ताल में सामने आया कि वीडियो एक थिएटर के अंदर का है, जहां पर्दे पर फिल्म चल रही है उसमें नए जमाने के हिसाब से ही रिक्रिएट किया गया हनुमान चालीसा बज रहा है। इन सबके बीच एक महिला अपनी सीट पर दहाड़े मारकर रो रही है। वो इधर उधर लौट भी रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका शरीर काबू में ना हो। आसपास के लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ये चौंकाने वाला दृश्य था। लेकिन जब फैक्ट चेक टीम ने वीडियो में आ रही आवाजों को फ्रेम दर फ्रेम सुना तो ये सामने आया कि ये तेलुगु है। इससे हमें ये इशारा मिल गया कि वायरल हो रहा वीडियो आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना का हो सकता है। इसके बाद हनुमान अंश मूवी में हनुमान चालीसा को नए तरीके से रिक्रिएट नहीं किया गया, जिससे हमें दावे की सत्यता पर संदेह हुआ। साथ ही सर्च के दौरान ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली, जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि वायरल वीडियो हाल फिलहाल का है। क्योंकि अगर वाकई ऐसा हुआ होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर मिलती, लेकिन हमें ऐसा कहीं कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था, हनुमान अंश मूवी थिएटर्स में हिंदी भाषा में ही उपलब्ध है, साउथ के शहरों में भी इसके हिंदी शोज ही चल रहे हैं। अभी फिलहाल मेकर्स की तरफ से इसके आधिकारिक तेलुगु डब वर्जन की थिएटर या फिर ओटीटी रिलीज को लेकर कोई फाइनल डेट अनाउंस भी नहीं हुई है। ऐसे में हमारा सवाल ये कि वायरल हो रहे वीडियो में तेलुगु आवाजें क्यों सुनाई दे रही है। दूसरा सवाल कि हनुमान अंश मूवी में हनुमान चालीसा को रिक्रिएट नहीं किया गया है। ऐसे में हमारा सवाल सीधे तौर पर यह कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। सच और झूठ की इस रिपोर्ट में जानिए।
7: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रही वीडियो के कुछ की फ्रेंड्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो तेलुगु फिल्मों को कवर करने वाले एक इंस्टाग्राम पेज पर मिला। पेज पर वीडियो 30 जनवरी 2024 को अपलोड किया गया था। पोस्ट के मुताबिक ये घटना उपल स्थित एशियन सिनेमा में हुई थी और महिला फिल्म हनुमान के क्लाइमेक्स के दौरान भावुक होकर अजीब तरह से प्रतिक्रिया देने लगी थी। पड़ताल के दौरान हमें ये वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर 30 जनवरी 2024 को अपलोड हुआ मिला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि एक महिला हनुमान मूवी देखते समय असामान्य हरकतें करने लगी थी। इससे स्पष्ट होता है कि वायरल वीडियो हाल में रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश का नहीं है, बल्कि करीब 2.5 साल पुराना है। सर्च के दौरान एक वेबसाइट पर 30 जनवरी 2024 को इस घटना पर प्रकाशित रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में वायरल वीडियो वाले दृश्य भी देखने को मिले। रिपोर्ट के अनुसार महिला फिल्म देखने के दौरान इतनी भावुक हो गई कि वह कांपने लगी और अपनी सीट से नीचे गिर गई। रिपोर्ट में इस घटना को तेलुगु फिल्म हनुमान के क्लाइमेक्स से जोड़ा गया था। हनुमान और हनुमान अंश दो अलग अलग फिल्में हैं। हनुमान तेलुगु सुपर हीरो फिल्म है जो हनुमान से जुड़े पौराणिक संदर्भों को सुपर हीरो कथा के साथ पेश करती है। वही हनुमान अंश नीम करोली बाबा के जीवन और उनके आध्यात्मिक यात्रा पर केंद्रित फिल्म है। हमारे पड़ताल में यह साक्ष्य से स्पष्ट है कि थिएटर में अजीबोगरीब हरकतें करती महिला का वायरल वीडियो नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश से संबंधित नहीं है। ये वीडियो करीब 2.5 साल पुराना है और जनवरी 2024 में तेलुगु फिल्म हनुमान देखते हुए सामने आया था। अब इस पुराने वीडियो को हाल ही रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश से जोड़कर भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। और इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग सड़क पर दुआ करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि नेपाल का है, जहां पर आपदा के बीच लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। लेकिन जब वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में।

0: नेपाल में 26 अगस्त को आए विनाशकारी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। इस हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इन सबके बीच चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। किसी पहाड़ वाली जगह पर कई लोग सड़क किनारे कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां कहीं वर्दीधारी भी मौजूद है और कुछ लोग आते जाते हुए भी देखे जा रहे हैं। वीडियो को इस दावे से शेयर किया जा रहा है कि नेपाल में बाढ़ से बचाव के लिए कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि ये है ईमान की ताकत। ये वीडियो नेपाल का जहां पर कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है और दुआ की जा रही है, माशाल्लाह। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर 11 सेकंड का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कई लोग सड़क किनारे कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां कई वर्दीधारी भी मौजूद हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि नेपाल त्रासदी के बाद कुछ लोग सड़क पर कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। वीडियो को लेकर चौंकाने वाला दावा किया जा रहा था क्योंकि इसके जरिए भी कहा जा रहा था कि नेपाल में बाढ़ से बचाव के लिए लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ा है। हाँ, ये बात सच है कि 26 अगस्त को नेपाल में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है, लेकिन वायरल वीडियो इसी बाढ़ से संबंधित है ये जानना जरूरी हो गया था। लेकिन वीडियो को देखने से हमें इसमें ऐसी कई चीजें देखने को मिली जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। मसलन वीडियो में एक जगह एक वर्दीधारी जवान की जैकेट पर लिखे शब्दों को हमने जब गौर से देखा तो इस पर किर्गिस्तान लिखा हुआ था। हमें यह देखकर काफी हैरानी हुई। वायरल वीडियो नेपाल का है तो फिर यहां पर किर्गिस्तान के जवान का क्या काम? नेपाल में आपदा राहत कार्यों में शामिल जवान नीले रंग की कैमोफ्लाज यानी कि नीली चितकबरी वर्दी में नजर आ रहे थे, जबकि आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान डार्क ग्रे बैकग्राउंड के साथ ही लाइट ग्रे, डार्क ब्लू और फिर ब्लैक मिक्स वाली वर्दी पहनते हैं। ऐसे में हमें वीडियो की सत्यता पर संदेह हुआ। हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यह कि सर्च के दौरान जानकारी जो सामने आई है उसमें किर्गिस्तान के राष्ट्रपति ने नेपाल आपदा पर दुख जरूर जताया, लेकिन वहां कोई सैनिक रेस्क्यू टीम का हिस्सा बना ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। अब सवाल यह है कि अगर वायरल वीडियो नेपाल का है और बाढ़ से बचाव के लिए कुरान शरीफ पढ़ रहा है ये जवान, तो फिर यहां पर किर्गिस्तान रेस्क्यू टीम के जवान नजर क्यों नहीं आ रहे? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नेपाल के साथ जोड़कर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही? सच और झूठ।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 25 जून को अपलोड किया गया था। इसके बाद हमने इस इंस्टाग्राम अकाउंट में मौजूद बायो का अनुवाद किया, जिसके जरिए जानकारी सामने आई कि यह अकाउंट किर्गिस्तान के चुई ओब्लास्ट के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय के प्रेस विभाग से जुड़ा है। इतना ही नहीं, हमें इस अकाउंट पर अपलोड किए गए कई वीडियो में उसी ड्रेस में दिख रहे कई वर्दीधारी भी मिले जो वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियोस में वर्दीधारियों द्वारा पहने गए लाइफ जैकेट पर किर्गिस्तान रेस्क्यू भी साफ साफ लिखा हुआ देखा जा सकता है। इसी दौरान हमें किर्गिस्तान के एक मीडिया पोर्टल के फेसबुक अकाउंट से 26 जून को पोस्ट किया गया वीडियो मिला। इस वीडियो में भी वायरल वीडियो से मिलते जुलते दृश्य मौजूद थे। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में लिखा हुआ था, किर्गिस्तान के केगेती घाटी में एक 6 वर्षीय बच्चा पानी में गिर गया था जिसकी तलाश की जा रही थी। इसमें कई देशों के वॉलंटियर्स भी शामिल हुए थे। इसी दौरान बिरदिक गांव के हाफिजों ने बच्चे की खोज के लिए कुरान पढ़ी थी। जांच में हमें 25 जून को किए गए कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट भी मिले जिनमें वायरल वीडियो से मिलते जुलते दृश्य मौजूद थे। इस संबंध में हमें किर्गिस्तान की एक न्यूज वेबसाइट पर 26 जून का प्रकाशित रिपोर्ट भी मिला। रिपोर्ट में बताया गया था कि 23 जून को एक कार केगेती नदी में गिर गई थी। इसमें 2 महिलाएं और 5 बच्चे मौजूद थे। दोनों महिलाएं और 3 बच्चे गाड़ी से निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन 2 बच्चे उसमें ही फंसे रह गए थे। 12 वर्षीय बच्चे की बॉडी पहले ही रेस्क्यू टीम ने रिकवर कर ली थी। बाद में 26 जून को उस बच्चे का शव भी बरामद हो गया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से साफ है कि नेपाल में बाढ़ से बचाव के लिए कुरान पढ़े जाने के दावे से वायरल ये वीडियो किर्गिस्तान का है।
1: चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: आने वाले हैं विनायक, उज्जैन में आस्था का भव्य कॉरिडोर, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
8: विंटर समर ऑटम स्प्रिंग मॉनसून, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं फाइव सीजन से नहीं आते तो मैं इनका बोला मीनिंग लिखो फटाफट से। चलो बैठो, मेरे पास पेंसिल्स का टाइम भी अपनी लाया करो, गो चलो अपनी पेंसिल यूज करो। या फिर मैं पेंसिल देने वाली बैठी हुई हूँ, वर्क देती हूँ आपको, मैं पेंसिल्स अपनी लाया करो पेंसिल्स कल से। कल से ना 4 बजे अपने अपनी पेंसिल्स लेके आएंगे, आज लास्ट टाइम है।
9: छोटी सी मैडम ने घर में ही लगा ली अपनी क्लास, बच्चे जिस अंदाज में पढ़ा रही है उसे देखकर यूजर्स मुस्कुरा रहे हैं। दरअसल बच्ची ने नोटबुक्स को ही अपने छोटे छोटे स्टूडेंट्स की तरह मान लिया है और बड़े ही ध्यान से उन्हें पढ़ाती नजर आ रही है। कभी वो कॉपी की तरफ देखकर समझाने की कोशिश करती है तो कभी टीचर की तरह अपना पूरा ध्यान क्लास पर लगाती दिखाई देती है। सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान बच्ची के अंदाज ने खींचा है, जिस तरह से वो टीचर बनकर पढ़ाने का खेल खेल रही है वो देखने में बेहद प्यारा और मजेदार है। बच्ची की बॉडी लैंग्वेज और पढ़ाने का तरीका देखकर सोशल मीडिया यूजर्स उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।
8: आपको
9: एक छोटे बच्चे ने अपने परिवार के बारे में लिखे सवाल का ऐसा जवाब दिया कि उसकी कल्पना और बेबाकी दोनों चर्चा का विषय बन गए। तस्वीर में बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आ रहा है और उसके सामने उसकी लिखी हुई कॉपी रखी है। कॉपी में टीचर ने अपने परिवार के बारे में लिखे सवाल दिया था। इसके जवाब में बच्चे ने अपने परिवार के हर सदस्य के बारे में बड़े ही अनोखे अंदाज में लिखा है। बच्चे ने शुरुआत करते हुए लिखा कि उसका परिवार खतरों का खिलाड़ी है। इसके बाद पिता के बारे में उसने लिखा कि उनके पापा शक्तिमान का रूप है। माँ को उसने घर की लक्ष्मी बाई बताया है। यहाँ तक तो जवाब काफी प्यारा और सामान्य लगता है, लेकिन इसके बाद बच्चे की कल्पना कुछ ज्यादा ही मजेदार हो जाती है। बच्चे ने अपनी बहन का जिक्र भी बेहद अनोखे अंदाज में किया है। इसके बाद उसने अपने बारे में जो लिखा वही इस पूरी कॉपी का सबसे मजेदार हिस्सा नजर आता है। बच्चे ने खुद को घर का सबसे नालायक बताया है। उसकी ये बेबाक लाइन पढ़कर लोग हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे हैं। जवाब पढ़ने के बाद टीचर ने लाल पेन से कुछ शब्दों को घेरा और नीचे अपनी टिप्पणी भी लिखी। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि बच्चे को इस जवाब के लिए 10 में से 10 नंबर मिले हैं। टीचर का ये फैसला भी लोगों को खूब गुदगुदा रहा है। गुरु शिष्य के रिश्ते की ये खूबसूरत तस्वीर लोगों को खूब पसंद आ रही है। यहाँ तोहफे की कीमत नहीं बल्कि उसके पीछे छिपा बच्चों का स्नेह मायने रखता है। किसी बच्चे के हाथ में खेत से तोड़ी गई तोरई है, कोई बच्चा अपनी भैंस का दूध लेकर पहुंचा है, तो कोई अपने घर खेत से ककोड़ा लेकर आया है। देखने में चीजें भले ही साधारण लगे, लेकिन बच्चों की नजर में ये उनके पास मौजूद सबसे खास चीजों में से है। इस पूरे भाव को सबसे ज्यादा खास बनाता है शिक्षक का व्यवहार। बच्चों की लाई गई इन चीजों को वो सामान्य सामान की तरह नहीं लेते, वो उन्हें अपने सिर से लगाकर प्रणाम करते हैं, मानो बच्चों ने सामान नहीं बल्कि अपना प्यार और सम्मान उनके हाथों में रखा हो। शिक्षक भी स्नेह को पूरे सम्मान के साथ अपने सिर माथे लगा लेते हैं। इस अद्भुत कलाकारी को देखकर लोग दंग हैं। नीली साड़ी पहने एक महिला अपने हाथों में एक विशालकाय हरा पत्ता थामे हुए दिखाई देती है। महिला पत्ते को पकड़े हुए मुस्कुराती है, जिससे लोगों को लगता है कि ये शायद प्रकृति की सुंदरता को दर्शाने वाला कोई साधारण वीडियो है। लेकिन असली रोमांच तब शुरू होता है जब महिला उस विशाल पत्ते को घुमाती है। पत्ते के दूसरी तरफ का दृश्य देखकर हर कोई हैरान हो गया। पत्ते के कैनवास पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बेहद खूबसूरत और जीवंत चित्रकारी उकेरी गई है। पत्ते की सतह पर किए गए रंगों के संयोजन और बारीकियों को देखकर महिला के हुनर का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। ड्राइवर के लिए उसकी गाड़ी सिर्फ मेटल और टायरों का ढांचा नहीं होती, बल्कि उसका हम सफर होती है, जिसने धूप छांव और आंधी तूफान में उसका साथ निभाया होता है। केरल की एक रोडवेज बस ड्राइवर का रिटायरमेंट का ये भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है, जिसमें वो अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद बस को ऐसे विदाई दे रहे हैं जैसे कोई अपने किसी बेहद करीबी को अलविदा कह रहा हो। ड्राइवर पॉल कुरियन का ये वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इडुक्की जिले के कुमेली डिपो पर 2 सितंबर को शूट किए गए इस 1 मिनट के वीडियो में पॉल कुरियन अपनी आखिरी शिफ्ट पूरी करने के बाद बस के पास खड़े नजर आते हैं। उन्होंने बेहद भावुक अंदाज में बस की स्टेयरिंग व्हील को चूमा, उसके चारों टायरों को छूकर नमन किया और जाने से पहले गाड़ी को सल्यूट किया। इस दौरान पॉल कुरियन की आंखें नम हो गई और वो अपने आंसू पोंछते हुए वहां से विदा हुए। सालों तक जिस बस के जरिए उन्होंने लाखों यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाया और अपने परिवार की आजीविका चलाई, उससे अलग होना उनके लिए बेहद मुश्किल था। इंटरनेट पर ये वीडियो सामने आने के बाद लोग ड्राइवर के अपने काम के प्रति समर्पण और ईमानदारी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी फिटनेस और जज्बे से युवाओं को भी हैरान कर दिया है। हरी साड़ी में एक बुजुर्ग महिला लेग प्रेस मशीन पर लेटी हुई है, वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति खुद लेग प्रेस प्लेट्स के ऊपर बैठे हुए हैं ताकि अम्मा पर अतिरिक्त वजन आ सके। अम्मा बड़े ही सहज अंदाज में लेग प्रेस रेप्स मारती हैं और आसपास खड़े युवा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इसके बाद अम्मा बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से केबल फ्लाई और बटरफ्लाई मशीन पर चेस्ट और शोल्डर वर्कआउट करती नजर आती हैं। बिना किसी झिझक के साड़ी का पल्लू संभाले अम्मा का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लंदन के अंडरग्राउंड ट्रेन में सफर करने वाले लोगों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि एक दिन उन्हें प्लेटफॉर्म पर ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जिसे देखकर ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्री हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। मामला 2 छोटे छोटे चूहों का है जो लंदन के अंडरग्राउंड स्टेशन पर अचानक आपस में भिड़ गए। दोनों की लड़ाई इतनी मजेदार थी कि वहां मौजूद यात्रियों का ध्यान ट्रेन से ज्यादा इन दोनों फाइटर्स पर टिक गया। दोनों चूहे कभी एक दूसरे के पीछे दौड़ते तो कभी सामने आकर पंजों से ऐसे वार करते जैसे किसी बड़े बॉक्सिंग रिंग में मुकाबला चल रहा हो। कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लगा मानो दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी हो और आज हिसाब बराबर करने का दिन आ गया हो। वीडियो बनाने वाली सोनिया मैंसफील्ड अपने दोस्त अरुण के साथ स्टेशन पर मौजूद थी। दोनों की नजर जब इन चूहों पर पड़ी तो उन्होंने इस मजेदार घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। चूहों की हरकत इतनी अजीब और मजेदार थी कि वहां मौजूद लोगों के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया।
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और
1: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढकर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। आने वाले ये विनायक शहर शहर बप्पा के स्वागत की तैयारी कैसी है आगे देखिए। दिल्ली की 116 साल पुरानी दुकान पर मोदक के नए नए फ्लेवर भी चखाएंगे और साथ ही साथ उज्जैन में आस्था का भव्य कॉरिडोर, महाकाल के नगर भ्रमण की भक्ति के रंग भी देखिए। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: राजधानी दिल्ली पर भी चढ़ने लगा गणेशोत्सव का रंग, स्वीट स्टोर्स में जोर शोर से हो रहा बप्पा के प्रिय मोदक का निर्माण, खूबसूरत मूर्तियों से सजे बाजार तो कहीं घरों में मिट्टी से बने गजानन। महाराष्ट्र के कोला में पोला उत्सव की जोरदार तैयारी, बैलों को सजाने के लिए रंग बिरंगी रस्सियां और पट्टे खरीद रहे किसान, वृषभ राजा के प्रति सम्मान दर्शाता है ये पर्व। रामनगरी अयोध्या से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा, मानदेय में 50% इजाफे के साथ मिलेगा 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज। वडोदरा में 6000 से ज्यादा युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का मेगा इवेंट, कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम, 35,000 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा दिया। 18वें ब्रिक्स सम्मेलन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल, 11 सितंबर से शुरू हो रहा है सम्मेलन।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की बात। सबसे पहले गणेशोत्सव की करेंगे, जिसके शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए और इसीलिए तैयारियां अब तेज होती जा रही है। बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है, तो अलग अलग थीम पर पंडालों का निर्माण भी हो रहा है। महाराष्ट्र समेत देश भर में गणेशोत्सव को लेकर अभी से ही भव्य रंग दिखने लगे हैं। गणपति आगमन यात्रा में भक्तों का भी जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है।

0: देवों में प्रथम पूज्य बुद्धि के दाता और हर संकट को हरने वाले विघ्नहर्ता। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के नाम से ही होती है और अब वो स्वयं पधारने वाले हैं। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। बाजार गणेशोत्सव के रंग में रंगने लगे हैं। प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भव्य पंडाल सजाए जा रहे हैं। बापा की प्रतिमाओं का आगमन भी हो रहा है, जिसमें भक्तों के उत्साह के जबरदस्त रंग देखने को मिल रहे हैं। नागपुर में धूमधाम के साथ पंडालों में गणपति की मूर्तियों का आगमन हो रहा है। डीजे और ढोल नगाड़ों की धुन पर शानदार आतिशबाजी के बीच भक्त बापा की जयकार करते हुए उन्हें पंडाल तक ले जा रहे हैं। अब गुजरात के सूरत के भटार इलाके में साई युवक मंडल की ओर से निकाली गई भगवान गणेश की भव्य आगमन यात्रा देखने लायक रही। इस यात्रा में भगवान के रूप में मौजूद कलाकार हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। यात्रा के दौरान भगवान शिव के तांडव की विशेष और दिव्य प्रस्तुति भी देखने को मिले। हरियाणा से आए कलाकारों के अघोरी और महाकाली नृत्य की छटा भी बिखरी, तो देशभक्ति प्रस्तुति के साथ सामूहिक महाआरती भी की गई। भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा पंडाल स्थल पर पहुंच चुकी है। इस वर्ष यहां ओडिशा के मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर भव्य गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है।
1: कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उसकी थीम पर इस बार भगवान गणेश की स्थापना की जानी है। और मूर्ति की अगर हम बात करें तो मूर्ति का आगमन हो चुका है। जहां आप देख सकते हैं फिलहाल गणेश भगवान की जो प्रतिमा है उसको ढक के रखा गया है। तो इस तरह से सूरत में अलग अलग जगहों पर, अनेक जगहों पर गणेश भगवान की स्थापना की जाती है। गणेश उत्सव के दौरान अलग अलग थीम पर भगवान गणेश के पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। अलग अलग प्रकार की मूर्तियां लाई जा रही हैं।
0: महाराष्ट्र और गुजरात के साथ ही देश भर में गणपति प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। दिल्ली NCR में नोएडा से लेकर मयूर विहार तक कलाकार मूर्तियों में रंग रोगन और सजावट के काम में जुटे हुए हैं। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में भी बापा की भव्य मूर्तियां देखने को मिल रही हैं। यहां दो बहनें भी गणेश प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे दिखीं, जो स्वयं भी गणपति बिठाती हैं।
2: हम मौजूद हैं दिल्ली के मयूर विहार में और यहाँ पर आपको तमाम सारी गणेश जी की मूर्तियां दिखाई पड़ रही हैं। कुछ तैयार हो चुकी हैं, कुछ तैयार होने के प्रोसेस में हैं। ये कितने फीट के हैं गणेश जी?
3: ये 8 फीट के।
2: 8 फीट के हैं। उनको तैयार करने में कितना टाइम लगा?
3: उनको बड़े भाई ऐसे मान के चलो 15-20 मिनट लग जाते हैं।
2: इस तरह की अलग अलग डिजाइन के साथ ये तमाम कलाकार इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि मूर्तियाँ पूरी तरह से इको फ्रेंडली बने। नदी वदी के का भी ख्याल रखते हुए कर रहे हो?
3: हाँ, सब वातावरण का करके रख रहे हैं,
2: एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना। हाँ।
0: यूपी में जगह जगह मूर्तिकार गणपति प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं।
4: प्रयागराज में यहाँ गणेश मूर्तियाँ तैयार की जा रही हैं, उसमें रंग भरा जा रहा है और जो यहाँ मूर्तिकार हैं तपसपाल यहाँ पर इन मूर्तियों में रंग भरने का काम कर रहे हैं। छोटी से बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई जा रही हैं। सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पर 10 फीट की है।
0: अच्छी बात यह है कि जगह जगह पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं।
5: ये आज से नहीं है, हम लोग का 1971 से शुरू किया है मेरा पिताजी और हम लोग 4 पीढ़ी से ही है। तो यहाँ पे गणेश जी का मिट्टी पूरा प्योर मिट्टी और गंगा जी का शुद्ध मिट्टी से बनता है।

0: स्वरूप के साथ साथ कई नए और आकर्षक डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ से जुड़ी आकर्षक प्रतिमाओं को लोग खूब पसंद कर रहे हैं।
1: लालबाग के राजा हैं, जैसे हाथ वाली मूर्ति है, जैसे शंकर जी से कोई सी भी रिलेटिव मूर्तियां हैं, सब शंकर जी की ज्यादातर मूर्तियां बिकती हैं।
0: यहाँ मोर पंख से लेकर पगड़ी धारण के बाप्पा मौजूद हैं, तो डमरू पर विराजमान और भगवान शिव की पूजा करते गणपति भी हैं। यही नहीं, मूषक के ऊपर हाथ में शिवलिंग और उस पर विराजमान बाप्पा सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित कर रहे हैं।
2: ये सुंदर सबसे अच्छी लगी है, बाकी सब भी सुंदर है लेकिन मुझे ये अच्छी लगी है। इसमें आपको बताएं, ये जो पिंडी है, शंकर जी हैं, उनके जो शिवलिंग पे विराजमान हैं और वो भी हाथ में हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पार्वती जी के हाथ में शिवलिंग और शिवलिंग के ऊपर श्री गणेश।
0: इसी तरह देश भर में गणपति की एक से एक भव्य प्रतिमाएं पंडालों की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब हरियाणा के करनाल की ये तस्वीरें देखी, जहां राजस्थान के एक कारीगर परिवार ने गणपति बाप्पा की सैकड़ों मूर्तियां तैयार की हैं। मूर्तिकार सीताराम समेत परिवार के सभी सदस्य गणेशोत्सव के लिए पिछले 6 महीने से प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं।
3: अभी गणेश तो तैयार करने के मेरे 6 महीने हो गया बनाते बनाते, अभी एक एक मूर्ति में 10 से 12 दिन लग जाते, बारीकी काम है।
0: छत्तीसगढ़ के एक परिवार की दिव्य कलाकारी भी देखने लायक है। शिवचरण यादव का मौली धागे से शुरू हुआ गणेश प्रतिमाओं के निर्माण का सफर अब अलग अलग दिव्य मूर्तियों तक पहुंच चुका है। लकड़ी के छाल, बांस, धूप, अगरबत्ती, नारियल के रेशे से लेकर धान, दाल जैसे अनाजों के इस्तेमाल से वो दिव्य मूर्तियां तैयार करते हैं, यानी एकदम इको फ्रेंडली प्रतिमाएं। नागपुर से योगेश पांडे, सूरत से संजय सिंह राठौर, नोएडा से मनीष लड्डा, दिल्ली से मनीष चौरसिया, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, झांसी से अजय झा और करनाल से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और अब बात करेंगे विघ्नहर्ता के प्रिय भोग मोदक की। गणपति की स्थापना से लेकर विसर्जन तक पूजा पाठ और भक्ति की परंपरा निभाई जाती है। इस दौरान बप्पा को मोदक का भोग लगाना बहुत अहम है, ये परंपरा भी है। दिल्ली के चावड़ी बाजार आपको लिए चलते हैं, जहां पर एक ऐसी दुकान है जहां पिछले 116 साल पुरानी तो ये दुकान है, लेकिन 35 सालों से लगातार यहां पर मोदक बन रहे हैं।

0: गणेश, गजानन, गणपति, विनायक, लंबोदर, गौरीपुत्र। पापा के नाम अनेक है लेकिन भाव एक ही है, भक्ति और विश्वास का। पापा को सच्चे मन से जिस नाम से भी पुकारो वो अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। गणेश उत्सव के पावन 10 दिनों में श्रद्धा और विश्वास के साथ गणपति के नाम का स्मरण मात्र से जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। मन को नई शक्ति, आशा और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सबसे बड़ी बात, भगवान गणेश को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। गौरीपुत्र का मन मोहने के लिए मोदक सबसे प्रिय और उत्तम भोग माना जाता है। गणेश चतुर्थी या किसी भी शुभ अवसर पर बप्पा को 21 मोदक का भोग लगाने का विधान है। बिना मोदक के गणपति की पूजा अधूरी मानी जाती है। पारंपरिक तौर पर नारियल और गुड़ से बनने वाला मोदक भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोग है। भक्तों की तरफ से बप्पा को मोदक के भोग मात्र से शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि गणेश उत्सव के दौरान मोदक की खुशबू से गणपति अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। दिल्ली के चावड़ी बाजार में मिठाई की कैसी पुरानी दुकान मौजूद है जो बप्पा को भोग लगाने के लिए तरह तरह के मोदक बना रही है। 1910 से यहाँ मौजूद दुकान में मोदक बनाने का काम 35 वर्षों से चल रहा है।
1: बप्पा के आने की तैयारियां हर तरफ दिखाई पड़ रही है। आज हम आपको दिल्ली के दिल चांदनी चौक में लेकर आए हैं और चांदनी चौक की उस दुकान पर जहाँ पिछले 35 साल से लगातार मोदक तैयार किया जा रहा है, बप्पा का फेवरेट भोग तैयार हो रहा है। आज भी हम आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के मोदक की तैयारी दिखा रहे हैं, वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं, उनकी मेकिंग दिखा रहे हैं। किचन में हम मौजूद हैं और आपको बात करवाएंगे उन लोगों से भी जो पिछले 35 सालों से लगातार इस काम में लगे हुए हैं। ये दुकान 1910 के आसपास शुरू हुई थी लेकिन ये इस दुकान के उन लोगों का इनोवेशन ही था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई चीज़ लाई जाए।

0: आए जो कि नॉर्थ इंडिया में भी बहुत तेजी से चल जाए, और नए के नाम पर वो पहुंचे महाराष्ट्र और वहां से लेकर आए ये सांचा। ये वो पहला सांचा है जो इस दुकान के पूर्वज लेकर आए थे मोदक बनाने के लिए। ये सांचा आया और तब से यहाँ पर बप्पा का फेवरेट भोग मोदक बनना शुरू हुआ, और तब से लेकर आज तक ये लगातार ऐसे ही बन रहा है। 25 से ज़्यादा फ्लेवर ये लोग खुद बनाते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल फ्लेवर ऑर्डर भी करता है तो उसकी पसंद का मोदक भी यहाँ पर तैयार हो जाता है।
1: घी, गुड़ और नारियल का मिलन ही मोदक का असली और पारंपरिक स्वाद है। हालांकि 35 साल से मोदक बेचने वाली ये दुकान बदलते वक्त के साथ ग्राहकों के मिजाज के साथ अपने स्वाद में नए नए फ्लेवर जोड़ रही है। दुकान की पुरानी पहचान में कुछ नया जोड़ने के लिए दुकान से जुड़े लोग महाराष्ट्र गए थे, जहां से वो मोदक की रेसिपी, सांचा और उसे तैयार करने वाले दोनों को दिल्ली लेकर आए, और तब से मोदक बनाने का सिलसिला शुरू हो गया।
2: हमारे बड़े गए, कभी बाहर घूमने गए होंगे या किसी कारणवश गए होंगे किसी काम से, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ देखी, तो वहाँ से मोदक बनाने का सांचा लेके आए, वहाँ से रेसिपी लेके आए, वहाँ से कारीगर को लेके आए, वो बनाना सीखा, वो रेसिपी आज तक है हमारे पास। और वो सांचे भी हैं, जैसे ये बहुत पुराने सांचे हैं, मतलब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो करीबन 40 से एक साल तो हो गए होंगे इस सांचे को, जो आज भी हमने संभाल के रख रखा है उनकी याद में।
0: सबसे पहले आया था,
2: हाँ जी ये आया था एक बड़े के लिए और एक छोटे के लिए, ये था इस तरीके से जी है। तो पहले तो, अब तो आज की डेट में बहुत सारे स्टील के बनते हैं, स्टेनलेस स्टील के, प्लास्टिक के बनते हैं, बट ये पहले के जमाने में जो हाथ से बनते थे ये यही थे।
1: यहाँ चावल, काजू, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट के अलावा स्ट्रॉबेरी, हेजलनट, कलाकंद के मोदक भी ग्राहकों को खूब पसंद आते हैं। जेंजी को ध्यान में रखते हुए पिछले कई सालों से चॉकलेट और उसके अलग अलग फ्लेवर के मोदक के स्वाद को भी तैयार कर रहे हैं।
2: मोदक असल बनना शुरू हुआ था महाराष्ट्र से, साउथ साइड से वो बनना शुरू होता है सब अनाज का, बट दिल्ली में आते आते उसके फ्लेवर्स वेरिएशंस चेंज हो गए। जैसे अब आप यहाँ पे इस थाल में देख पा रहे हैं, एक मोतीचूर का है, केसर का है, मोती बूंदी का है, स्ट्रॉबेरी का है, आपका खोए का है, पेड़े का है, या आपका कीवी का हो गया, मोटे गोले का हो गया, अल्फांसो विद चॉकलेट हो गया, कलाकंद का हो गया, ये केसर मिक्स हो गए, इस तरीके से वेरिएशंस हैं अलग अलग तरीके के, और इसके अलावा ना जाने कितने किस्म के बन जाते हैं।
1: मोदक की कीमत उसकी वैरायटी और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री के हिसाब से तय होती है। यहाँ मोदक करीब 600 रुपए प्रति किलो से मिलना शुरू हो जाते हैं। खास बात यह है कि ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से भी मोदक के अलग अलग स्वाद यानी वैरायटी चुन सकते हैं।
0: तो हम लोग इसकी बात करें तो पैकेजिंग का भी आप लोग बहुत खास ख्याल रखते हैं। जो आप प्लेट देख रहे हैं ये भी मेरे ख्याल से गिफ्टिंग की ही प्लेट है, पैकेजिंग की प्लेट है।
2: ये प्लेट भी गिफ्टिंग की है, जैसे ये जर्मन सिल्वर की है प्लेट, इस तरीके से प्लेट्स रहती हैं। मैं आपको एक प्लेट और दिखाता हूँ, ये देखिए एक प्लेट और, ये प्लेट भी है, इसके अंदर भी लगा के दिए जाते हैं। इसके अंदर हम मिठाई लगाएं, मोदक लगाएं, मल्टीपर्पज तरीके से तैयार हो जाती हैं ये, जैसे सामने वाले का मन हो। और इसमें गणेश जी के एक आइडल भी है साथ में।
1: पापा को हर दो बार मोदक का भोग लगता है, ऐसी मान्यता है कि गणेश उत्सव के दौरान मोदक की खुशबू से गणपति अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। दिल्ली से मनीष अरोसे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: बात महाकाल की नगरी उज्जैन की, जहां पर सावन भादो मास की बाबा की छठी और अंतिम राजसी सवारी पूरी धूमधाम के साथ निकाली गई। विशेष अवसर पर सोमवार को महाकाल की पूरी नगरी आस्था की दिव्य छटाओं से सराबोर नजर आई। इस सवारी को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से विशेष रूप से लोग पहुंचे थे और बाबा के अलग अलग रूपों के दर्शन कर धन्य हुए।

0: कराबीन के धमाके, पुलिस बैंड की शानदार धुन, भोले शंकर और मां पार्वती का रूप धरे कलाकार। भूत पिशाच के रूप में भगवान शिव की कथा। पुरुष और महिला भजन मंडलियों का उत्साह। वाद्य यंत्रों की थाप के साथ भक्तों का जबरदस्त जोश। महाकाल की सोमवार को सावन भादो मास की जब छठी और आखिरी राजसी सवारी निकली तो उसकी छटा देखने लायक थी। हर कोई शिव भक्ति में मगन, हर किसी पर छाया था महाकाल के नगर भ्रमण की खुशी का। सवारी निकलने से पहले मंदिर के सभा मंडप में भगवान के सभी स्वरूपों का पूजन किया गया और फिर शंख ध्वनि और जयकारों के साथ शाम 4 बजे रजत पालकी पर सवार होकर भगवान चंद्रमौलेश्वर अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने निकले। सवारी में आगे आगे धमाका करते कड़ाबीन का दल सृष्टि के अधिपति के आने की सूचना दे रहा था। पुलिस का अश्वरोही दल, पुलिस बैंड की मधुर धुन, सशस्त्र बल की टुकड़ी भगवान की राजसी वैभव की गाथा कह रहे थे। डमरू झांझ मजीरे बजाने वाला दल और महिला पुरुषों की भजन मंडलियां माहौल को भक्तिमय बना रही थी। रास्ते में पुष्प वर्षा कर महाकाल की सवारी का स्वागत होता रहा। इस बार सिंहस्थ थीम पर आधारित सवारी में प्रसिद्ध 84 महादेव और सिंहस्थ कुंभ से जुड़ी झांकियां भी शामिल। सवारी में कोई शिव पार्वती के रूप में था तो कोई बालाजी भगवान के रूप में। नन्हे बच्चे भी शिव वेश में आकर्षित करते रहे। सवारी के साथ बच्चे करतब करते भी आगे चल रहे थे। डमरू दल झांझ मजीरे बचाते भक्त पूरी तरह से महाकाल की भक्ति में डूबे नजर आए। महिलाएं भी पूरी तरह से शिव भक्ति में लीन थी।
1: बाबा महाकाल महाराज अवंती में भगवान तो स्वरूप में है ही सही, बाकी पूरे अवंती का के राजा भी है। तो राजा अपने और भगवान महाकाल महाराज और राजा अधिराज भक्त वत्सल है, तो भक्तों को दर्शन देने भी जाते हैं और खुद भी अपने भक्तों के दर्शन करते हैं।
0: सवारी में भगवान महाकाल ने अपने 6 दिव्य रूपों में भक्तों को दर्शन दिए। रजत पालकी में भगवान चंद्रमौलेश्वर, गरुड़ पर शिव तांडव, नंदी पर उमा महेश, डोल पर होलकर मुखौटा, इसके बाद सप्तधान मुखौटा और हाथी पर मन महेश स्वरूप में बाबा के दिव्य स्वरूपों के दर्शन पाकर भक्त धन्य हो गए।
2: भव्य सवारी देखी, हम दिल्ली से आए हैं और स्पेशली भगवान के दर्शन करने आए थे। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर दर्शन हुए और बस बता नहीं सकते, बहुत अच्छा लगा।
0: भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच महाकाल की राजसी सवारी ने भक्तों को दर्शन देने के लिए करीब 11 किलोमीटर का भ्रमण किया। नगर के अलग अलग मार्गों से होते हुए सवारी क्षिप्रा नदी पहुंची, जहां क्षिप्रा के पावन जल से भगवान का अभिषेक पूजन किया गया।
1: क्योंकि ये सावन और भादों की अंतिम सवारी है और श्रद्धा का आस्था का विषय है, तो लाखों लोग पब्लिक दर्शन करने के दर्शन लाभ ले चुके हैं क्षिप्रा नदी पे भगवान का पूजन, क्योंकि क्षिप्रा मोक्षदायिनी है और महाकाल महाराज में क्षिप्रा का बड़ा ही महत्व है। जिस प्रकार से ओमकारेश्वर में नर्मदा का महत्व है, जगत काशी में गंगा का महत्व है, उसी प्रकार महाकाल अवंतिका में क्षिप्रा का महत्व है। क्षिप्रा पूजन भगवान महाकाल महाराज का किया जाता है।
0: महाकाल की नगरी उज्जैन में श्रावण भादो मास में बाबा महाकाल को नगर भ्रमण कराने की सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है। श्रावण मास की प्रतिपदा से भाद्रपद की अमावस्या तिथि तक जितने भी सोमवार आते हैं उनमें महाकाल की दिव्य सवारी यूं ही निकलती है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
4: हनुमान चालीसा की किस पंक्ति का पाठ करने से रोग और बीमारियां दूर हो जाते हैं? हनुमान चालीसा की किस पंक्ति का पाठ करने से बड़ी समस्या मिट जाती है? क्या है हनुमान चालीसा की महिमा और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर
10: जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

का आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भारत में घर घर में जो स्तुति सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है की जाती है, बच्चा बच्चा बचपन से जिस स्तुति को जानता है वो है हनुमान चालीसा। आज आपको बताएंगे हनुमान चालीसा के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में, हनुमान चालीसा के पाठ का महत्व क्या है और हनुमान चालीसा की चमत्कारी पंक्तियां कौन सी हैं, इस विषय में बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशि फल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं श्री हनुमान चालीसा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि चालीसा है क्या और इसका महत्व क्या है। भक्त द्वारा अपने भगवान या अपने ईष्ट को प्रसन्न करने के लिए और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए सरल भाषा में जो प्रार्थना की जाती है वो चालीसा कहलाती है। इसको चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 40 लाइनें होती हैं। सरल भाषा में लिखा होने की वजह से किसी भी चालीसा को आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसमें मंत्र की तरह नियम नहीं है। चूंकि चालीसा पढ़ना सरल है, आसान है, इसीलिए ये जनता में काफी लोकप्रिय हुआ। चालीसा की जो 40 लाइनें होती हैं उसमें अलग अलग लाइन का अलग अलग महत्व होता है और अलग अलग लाइनों का, पंक्तियों का विशेष समस्याओं में विशेष प्रयोग किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई हनुमान चालीसा सर्वाधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय मानी जाती है। वैसे दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, गायत्री चालीसा सब आती है, लेकिन जो स्थान हनुमान चालीसा का है या जितनी पॉपुलैरिटी हनुमान चालीसा की है उतनी शक्तिशाली और उतनी प्रसिद्धि किसी चालीसा की नहीं है। चालीसा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी,
मानसिक चिंता समाप्त होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो उसको पढ़ने का तरीका क्या है ये भी समझ लेते हैं। हनुमान जी और उनके ईष्ट भगवान श्री राम के चित्र की स्थापना करिए या उनकी मूर्ति रखिए। इसके बाद उनके सामने जल से भरा हुआ एक पात्र रखिएगा। कम से कम तीन बार या तीन बार से ज्यादा 108 बार तक आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर समय का बहुत अभाव है तो श्रद्धा पूर्वक एक बार भी पाठ किया जा सकता है। चालीसा के पाठ के बाद उस जल को जो सामने रखा था प्रसाद की तरह ग्रहण करिएगा और प्रयास करिए कि रोज एक समय बना लीजिए कि मैं शाम को 7 बजे या 8 बजे चालीसा का पाठ करूंगा, और उसी समय अगर रोज पाठ करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। विशेष दशाओं में यात्रा करते समय और सोते समय भी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। आप ट्रेन से, प्लेन से यात्रा कर रहे हैं और चालीसा पढ़ने का समय हो गया है तो आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या बहुत बीमार हैं तो पलंग पर लेटे लेटे भी आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा की पंक्तियों को, हनुमान चालीसा की जो अलग अलग 40 लाइनें हैं उनको अलग अलग मंत्र की तरह भी जपा जा सकता है, मंत्र की तरह भी जप कर प्रयोग किया जा सकता है। चालीसा की अलग अलग पंक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे वो आगे आपको बताएंगे, साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन का लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी, लेकिन चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, सेहत बिगड़ सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के निवेश में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आप जब चालीसा की लाइन को मंत्र की तरह पढ़ने जा रहे हैं तो उसके नियम और सावधानियां क्या हैं? देखिए, हनुमान चालीसा में से किसी एक पंक्ति का चुनाव अपनी आवश्यकता के अनुसार करिए। रोज सुबह तुलसी की माला पर मंत्र की तरह 3 से लेकर 11 माला तक जप करिए और जितने समय तक आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या हनुमान चालीसा की पंक्ति का पाठ कर रहे हैं उतने समय तक अपना खान पान सात्विक रखिए और अपने आचरण की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। आप चाहें तो हनुमान चालीसा की पंक्ति को लाल कलम से पीले कागज पर लिखकर अपने पास रख सकते हैं। तो हनुमान चालीसा की वैसे तो हर पंक्ति चमत्कारी है, लेकिन आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी पंक्तियों के बारे में और उनके प्रयोग के बारे में। अगर आप अपनी विद्या बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं तो क्या पढ़ेंगे? बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये निरंतर अगर आप रोज सुबह 108 बार पढ़ें और प्रयास करें तो आपको विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी। अगर स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो पढ़िएगा लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। अगर आप रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं, संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं तो आप पढ़ेंगे रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं, क्रोध से बचना चाहते हैं, स्वास्थ्य को हमेशा अच्छा रखना चाहते हैं तो पढ़िएगा नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और जब आपके जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाएं और समस्या काफी कठिन हो जाए तब क्या पढ़ेंगे? दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। तो आप पूरी हनुमान चालीसा ना भी पढ़ें, अपनी जरूरत के हिसाब से आप किसी एक पंक्ति का चुनाव करें और उसको मंत्र की तरह अगर रोज प्रातः 108 बार पाठ करें तो आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी।
कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, परिवार में समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें, ऑफिस में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो हमने आज आपको बताया हनुमान चालीसा के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में। अब बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। धन रखने की आलमारी इस तरह से रखिए कि आलमारी पूरब या उत्तर दिशा की तरफ खुले। अगर इस तरह से अलमारी रखते हैं कि वो पूरब उत्तर की तरफ खुले और उसमें धन रखते हैं तो इससे धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, बचत सरलता से होगी। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लें। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति बहुत साहसी हो जाता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति के अंदर बहुत आकर्षण पैदा होता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति को बड़ी सारी संपत्ति का फायदा होता है? क्या मंगल दोष होने से भी हो सकता है लाभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: राजधानी दिल्ली पर भी चढ़ने लगा गणेशोत्सव का रंग, स्वीट स्टोर्स में जोर शोर से हो रहा बप्पा के प्रिय मोदक का निर्माण, खूबसूरत मूर्तियों से सजे बाजार, तो कहीं घरों में मिट्टी से बने गजानन। महाराष्ट्र के अकोला में पोला उत्सव की जोरदार तैयारी, बैलों को सजाने के लिए रंग बिरंगी रस्सियां और पट्टे खरीद रहे किसान, वृषभ राजा के प्रति सम्मान दर्शाता है ये पर्व। रामनगरी अयोध्या से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा, मानदेय में 50% इजाफे के साथ मिलेगा 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। वडोदरा में 6,000 से ज्यादा युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का मेगा इवेंट, समारोह में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम, 35,000 करोड़ की विकास योजनाओं का दिया तोहफा। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल, 11 सितंबर से शुरू हो रहा है सम्मेलन।

0: और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा पश्चिम बंगाल के मालदा में 85 साल पुराने शिव मंदिर के गंगा में समा जाने की भी।
1: जम्मू कश्मीर के बनिहाल में नचलना तालाब गांव के निवासियों का 70 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। इस पहाड़ी इलाके में आजादी के बाद पहली बार सड़क बनने जा रही है जिससे गांव के लोगों में खुशी की लहर है। इस सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जा रहा है। 4 किलोमीटर लंबे सड़क को बनाने में करीब 10,81,00,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आजादी के बाद से पहली बार सड़क मार्ग से जोड़ने जा रहे नचलना तालाब गांव के करीब 1,000 से ज्यादा स्थानीय निवासियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस नई सड़क के बन जाने से न केवल दैनिक आवाजाही आसान होगी बल्कि बच्चों की शिक्षा और इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन में भी मदद मिलेगी। भजन कीर्तन करते निकली ये टोली किसी धार्मिक समारोह का हिस्सा नहीं है बल्कि आगरा के जगनेर में ये एक अनूठे प्रदर्शन की तस्वीर है जहां जलभराव की समस्या से परेशान लोगों ने अपनी बात रखने के लिए भजन कीर्तन का सहारा लिया। हाथों में बैनर लिए महिलाएं और पुरुष गोविंद हरे गोपाल हरे का कीर्तन करते हुए ट्रैक्टरों में सवार होकर खेरागढ़ तहसील पहुंच गए। ग्रामीणों का आरोप है कि जगनेर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 और 7 में पिछले करीब 3 साल से जलभराव और गंदगी की समस्या बनी हुई है। बारिश के दिनों में हालात ज्यादा खराब हो जाते हैं। ओडिशा में बालासोर के विचित्रपुर जंगल में मिले ये जानवर यहाँ के लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। असल में ऐसे जानवर ना ही ओडिशा और ना ही देश के किसी और हिस्से में पाए जाते हैं। ऐसे में इन नए नन्हे जानवरों को देखने के लिए बड़ी तादाद में आसपास के लोग जमा हो गए। बताया जा रहा है कि अनोखे जानवर ओरांगुटान हो सकते हैं क्योंकि ये काफी हद तक उनके जैसे ही हैं और इनकी उम्र 1 से 2 साल तक हो सकती है। आज सुबह पेट्रोलिंग करते वक्त वन विभाग के अधिकारियों ने जब इन्हें जंगल में देखा तो उन्हें इनकी तस्करी का अंदेशा हुआ। ऐसे में अब राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तर पर इसकी जाँच की जा रही है और फिलहाल इन नन्हे मेहमानों को सिमलीपाल नेशनल पार्क के डॉक्टरों की एक विशेष टीम की निगरानी में रखा गया है। ओरांगुटान मुख्य रूप से मलेशिया और इंडोनेशिया के वर्षावनों में पाए जाते हैं इसलिए भारतीय जंगल में इनका मिलना बेहद चौंकाने वाला है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की है जहां रतुआ इलाके में गंगा का रौद्र रूप देखिए। 85 साल पुराना शिव मंदिर जो दशकों से हजारों लोगों की आस्था का केंद्र था देखते ही देखते नदी में समा गया। मानो भगवान शिव ने खुद गंगा के अथाह जल राशि में समाधि ले ली हो। ये दृश्य वहां मौजूद लोगों को भावुक कर रहा था। ये दृश्य देखकर लोग फूट फूट कर रो पड़े। बताया जा रहा है कि फरक्का बैराज से करीब 12 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जिससे तेज बहाव के चलते नदी के किनारे कटाव बढ़ गया। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में होम शेफ कुकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई ताकि स्थानीय खान पान और पाक कला को बढ़ावा मिले साथ ही घरेलू महिलाओं की प्रतिभा को एक मंच भी मिले। ये प्रतियोगिता धारा द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर के सहयोग से शहर के बाहरी इलाके में स्थित जाकुरा के एक निजी होटल में आयोजित की गई। आयोजकों के मुताबिक इस प्रतियोगिता के लिए करीब 400 से 500 लोगों ने पंजीकरण कराया था जिनमें से 12 को सेमीफाइनल के लिए चुना गया और आखिर में 6 प्रतिभागी फाइनल राउंड तक पहुंचे।
0: और अब बात करते हैं गणेश उत्सव की। जी हां, देश भर में गणपति उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। बाजारों से लेकर पंडालों तक हर तरफ बप्पा के आगमन की रौनक दिखाई दे रही है। कहीं ढोल नगाड़ों के बीच बप्पा की भव्य सवारी निकल रही है तो कहीं मूर्तिकार अपनी कला से मूर्तियों को अलग अलग रूप दे रहे हैं। गणपति उत्सव की इस भव्यता के बीच पर्यावरण का ख्याल रखने की कोशिश भी है लिहाजा बांस और चिकनी मिट्टी से इको फ्रेंडली गणपति की प्रतिमाएं तैयार की जा रही है।

0: गणपति बाप्पा के स्वागत के लिए पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। गजानन की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पंडालों को कहीं रंग बिरंगी रोशनी तो कहीं फूलों से सजाया जा रहा है। देश भर में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं और नोएडा में भी गणेश के अलग अलग आकार की प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। यहां गणेश प्रतिमाओं के स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए बांस और लकड़ी के फ्रेम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि प्रतिमा को मजबूती और आकार देने के लिए धान के भूसे और चिकनी मिट्टी का प्रयोग हो रहा है। यहां छोटी से लेकर बड़ी प्रतिमाएं लोगों की पसंद के मुताबिक अलग अलग डिजाइन और आकार में बनाई जा रही हैं और मूर्ति तैयार होने के बाद इसे खूबसूरत और आकर्षक फिनिश देने के लिए कुछ जगहों पर रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी पूरी प्रक्रिया में कोशिश यही कि प्रतिमा को इको फ्रेंडली बनाया जाए ताकि विसर्जन के दौरान जल प्रदूषण का खतरा कम हो।
1: नोएडा में गणेश चतुर्थी को लेकर जो तैयारियां हैं वो अब जोर पकड़ने लगी है और इन्हीं तैयारियों के बीच जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है वो है गणपति बप्पा की मूर्तियां। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी मेहनत लगन और आस्था के साथ इन मूर्तियों को जो है वो तैयार किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि पर्यावरण को देखते हुए जो है इन सभी मूर्तियों को जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो आप जितनी भी मूर्तियां यहाँ पर देख रहे हैं वो किस तरीके से बनाई जा रही है मैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये जितनी भी मूर्तियां आपको यहाँ पर नजर आएगी इनमें किसी तरीके से पीओपी का इस्तेमाल जो है वो नहीं होता आपको दिखेगा। यहाँ पर सिर्फ चिकनी मिट्टी का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। तो तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया था और उसके बाद इसके अंदर इन्होंने जो है उस भूसे को भरा है ताकि पूरे तरीके से जो आकार है, जो स्वरूप है वो तैयार किया जा सके। तो हर छोटी छोटी बारीकों पर जो है खास तरीके से यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक मूर्ति बनने तक सीमित नहीं रहते। यहाँ पर हर एक तरीके से कोशिश की जाती है कि जब भी भक्त इस मूर्ति को देखे तो उसके अंदर उनको अपने आराध्य की जो उनका स्वरूप है वो नजर आए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, धान का जो भूसा है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद इसको आकार दिया जाता है। जो ये भूसे से और लकड़ी से जो है ढांचा तैयार करते हैं उसके बाद इस तरीके से इसके ऊपर जो है 4 से 5 जो है कोटिंग लगाई जाती है ताकि इसको सख्त बनाया जा सके। तो ये कितनी देर में भैया सूख जाती है अगर हम चिकनी मिट्टी की बात करें?
2: एक दिन के अंदर सूख जाती है।
1: अच्छा, ठोस होती है ये?
2: नहीं रहती ठोस।
1: तो ये ज्यादा टाइम के लिए ठोस नहीं रहती ताकि जब भी आप विसर्जित इसको करो, विसर्जन का समय जब निकट आता है तो बहुत सी मूर्तियां जो होती है वो जल्दी जो है घुल नहीं पाती पानी में। लेकिन जिस तरीके से चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बाद ये जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा और जब आप इसको विसर्जित करने जाएंगे विसर्जन के समय में जो है ये कुछ ही घंटों में जो है घुल जाती है।
0: कहीं कलाकार मिट्टी को आकार देकर भगवान गणेश का स्वरूप गढ़ रहे हैं तो कहीं रंगों और सजावट के जरिए प्रतिमाओं को आकर्षक बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली में गणपति बाप्पा के स्वागत से पहले की तैयारियों की। हाथों में मिट्टी, सामने गणेश जी की प्रतिमा और चेहरे पर एक अलग ही उत्साह। मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर गणेश प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हैं। कच्ची मिट्टी से शुरू होने वाला ये सफर धीरे धीरे भगवान गणेश के मनमोहक स्वरूप में बदल जाता है। कहीं मूर्ति की आंखों का आकार दिया जा रहा है तो कहीं मुकुट और आभूषणों पर काम चल रहा है।
3: गणेश जी की जब तैयार मूर्ति आप देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे उनकी आंखें बोल उठेंगी, लेकिन इन मूर्तियों में जान

0: उनको सजाने, उनको सवारने, उनके श्रृंगार का काम यहाँ पर कई लोग लगातार कर रहे हैं। ये कितने फीट के हैं गणेश जी?
1: ये 8 फीट के।
0: 8 फीट के हैं। इनको तैयार करने में कितना टाइम लगा?
1: इनको बड़े भाई ऐसे मान के चलो 15-20 दिन लग जाते हैं।
0: 15-20 दिन लग जाते हैं। इनका ऑर्डर मिला हुआ है?
1: हाँ, बना हुआ, ऑर्डर बना हुआ है।
0: तो जब आप लोग इसको बना रहे थे, किन किन चीजों का इस्तेमाल किया? सिर्फ मिट्टी है या फिर अंदर कुछ और भी?
1: हाँ, मिट्टी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उनका इस्तेमाल करके बनाया है।
0: पीओपी भी है?
1: हाँ, पीओपी भी है। क्यों, पीओपी के बिना खड़ी नहीं होती है ना बड़ी मूर्ति।
0: इस तरह की अलग अलग डिजाइन के साथ ये तमाम कलाकार इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि मूर्तियाँ पूरी तरह से इको फ्रेंडली बने और जब ये पानी में जाएं तो आसानी से घुल जाएं। हालांकि कुछ चीज़ें ज़रूर हर मूर्ति में होती हैं जो आपको विसर्जित करने से पहले हटानी होती हैं, जैसे जो उनके श्रृंगार का सामान होता है। लेकिन इन सारी बातों के बीच बात यही है कि जो तैयारी है वो अपने जोर शोर पर है और यही वो कारीगर हैं, उनके हाथ हैं, इनके हाथों से मूर्तियों में एक आपको जान सी महसूस होती है। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है तो थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी 3-4 दिन में पूरी हो जाएगी।
2: नागपुर के महल इलाके में विराजमान होने वाले गणपति बाप्पा की भव्य मूर्ति भी पूरे धूमधाम के साथ लाई गई। बाप्पा के आगमन पर ढोल नगाड़ों और गाजेबाजी से पूरा इलाका गूंज उठा। गणपति के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भक्तों ने जयकारों के साथ बाप्पा का स्वागत किया और पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। सौराष्ट्र की राजधानी माने जाने वाले राजकोट में इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं का निर्माण जोरों पर चल रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से पिछले 30 सालों से लगातार राजकोट आकर मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार दीपक जाना और उनके कारीगरों की टीम पूरी तरह से इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियां बना रही है।
3: मैं आप लोगों का कलकत्ता में पहले से ही बरसों से ही मिट्टी से ही बनाता है सभी प्रकार का मूर्ति। हम लोग पीओपी का काम ही नहीं करते हैं।
4: खास इस साल कौन सी मूर्तियाँ
3: खास इस साल तो 2026 का जो लेटेस्ट डिजाइन इंटरनेट में आया उसी को ढूंढ ढूंढ के कलेक्शन करके मैं लोग बनाया मूर्ति।
2: गुजरात के सूरत शहर में गणेश उत्सव को लेकर उत्साह और उमंग चरम पर है। गणेश उत्सव शुरू होने से पहले ही शहर के अलग अलग इलाकों में गणेश प्रतिमाओं के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है। सूरत के भटार इलाके में इस साल गणेश उत्सव के लिए एक और खास तैयारी की जा रही है। यहां गणेश मंडल की ओर से ओडिशा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर भव्य गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में मूर्तिकार लगन और आस्था के साथ बाप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। कारीगर दिन रात मेहनत कर भगवान गणेश की आकर्षक प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। इस बार प्लास्टर ऑफ पेरिस और सिंथेटिक रंगों से पूरी तरह दूरी बनाई गई है और पर्यावरण संरक्षण का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इन मूर्तियों को बनाने में मिट्टी, धान और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे विसर्जन के बाद ये प्रतिमाएं प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना आसानी से मिट्टी में घुल सकें। राजस्थान से हरियाणा के करनाल पहुंचा ये परिवार गणपति की मूर्तियों को बनाने में तल्लीन है। बच्चों से लेकर महिलाएं और पुरुष तक सभी लोग गणपति बाप्पा की मूर्तियां बना रहे हैं। कारीगर सीताराम ने बताया कि बचपन से ही वो भगवान के स्वरूप की मूर्तियां बनाने के शौकीन थे और तब से लेकर आज तक वो भगवान के कई स्वरूपों की मूर्तियां बना रहे हैं। वो बताते हैं कि एक मूर्ति तैयार करने में 10 से 12 दिन लग जाते हैं। ये कारीगर इतनी सफाई से मूर्तियां बनाते हैं कि इन्हें देखकर दिल खुश हो जाता है। हालांकि गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को है, लेकिन लोग अभी से मूर्तियां बुक कराने के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं।
5: अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, सारी गणेश भगवान बनाते हैं तो भी बहुत अच्छे से बनाते हैं।
6: कितना समय लगता है आज के समय? मिट्टी लाना मुश्किल है।
5: हाँ जी, हाँ जी, मिट्टी भी मिलाते, सॉफ्ट मिट्टी है, प्लास्टर पैर तीनों ही सब सभी बड़ी मूर्ति बनता जी।
6: तो पूरा परिवार है,
5: पूरा परिवार बच्चे तक तक लगते जी।
7: 5-6 सालों का मूर्तियाँ यहीं से लेकर आते, काफी अच्छे और इतने अच्छे अच्छे मूर्तियाँ मिलते हैं कि हमारा भी दिल खुश होता है इस चीज को लेके। और मूर्तियाँ इतनी प्यारी प्यारी कि हमारे दिल भर जाते हैं इन मूर्तियों को देख के। काफी टाइम से हम आ रहे हैं यहाँ पे लेने के लिए, आज भी हम मूर्ति देखने आए हैं, अपनी बुकिंग कराने आए मूर्तियों की हम अपने लिए।
2: झांसी के बाजारों में सजी बाप्पा की ये खूबसूरत मूर्तियाँ हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। यहाँ हर प्रतिमा अपने आप में खास है, कहीं बाप्पा की पोशाक आकर्षण का केंद्र है तो कहीं उनका अनोखा श्रृंगार। हर मूर्ति में बाप्पा की मनमोहक छवि देखते ही बन रही है।
8: बहुत ज्यादा उत्साह दिखता है, आदमी उमंग दिखती है,

0: भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा लगती है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है जी। लालबाग के राजा हैं, जैसे हाथ वाली मूर्ति है, जैसे शंकर जी से कोई सी भी रिलेटिव मूर्तियाँ हैं, सब शंकर जी की ज़्यादातर मूर्तियाँ बिकती हैं हम लोगों को।
1: झांसी में बापा की खूबसूरत मूर्तियां भक्तों को आकर्षित कर रही हैं, तो वहीं अब इन प्रतिमाओं के पंडालों तक पहुंचने का सिलसिला भी तेज हो गया है। गणेशोत्सव इस बार पारंपरिक आयोजनों के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों की अनोखी कलाकृतियां और आकर्षक प्रस्तुतियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। नागपुर से योगेश बसंत पांडे, सूरत से संजय सिंह राठौर, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, नोएडा से मनीष लड्डा के साथ दिल्ली से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
2: गुजरात को मिली 35,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
1: गुजरात को आज बड़ी सौगात मिली है। पीएम मोदी ने आज यहां वडोदरा में 35,000 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने यहां टांडा रोड और वडोदरा के बीच मालगाड़ी और नई पैसेंजर ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। वो यहां नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां बड़ी तादाद में उपस्थित युवाओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नेशनल अवार्ड समारोह अब राजधानी के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी आयोजित होंगे। गुजरात के केवड़िया में 72वें नेशनल अवार्ड आयोजित करने की घोषणा के एक दिन बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ये जानकारी शेयर की है। अब तक ये सम्मान दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते रहे हैं। इस साल ये अवार्ड 22 सितम्बर को दिए जाएंगे। लखनऊ में आज यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन हुआ। इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने यूपी टेक मित्र पोर्टल और हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना भी लॉन्च की। उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि उनका लक्ष्य फाइबर से यार्न, यार्न से फैब्रिक, फैब्रिक से गारमेंट और गारमेंट से ब्रांड होते हुए ग्लोबल मार्केट तक पूरी वैल्यू चेन प्रदेश में विकसित करने का है। इस बार की कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश इंटू अ ग्लोबल टेक्सटाइल हब की थीम पर आधारित है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ऑपरेशन ब्रिक्स कवच के तहत दिल्ली पुलिस और एनएसजी कमांडो ने साझा अभ्यास शुरू किया है। आज करीब 100 एनएसजी कमांडो ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स यूनिट के साथ मिलकर दिल्ली में अलग अलग जगहों पर करीब 4 घंटे तक मॉक ड्रिल किए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 11 सितम्बर से दिल्ली में शुरू हो रहा है। गणेशोत्सव की तैयारियां दिल्ली के चावड़ी बाजार में भी है। पुरानी दिल्ली में श्याम स्वीट्स नाम की ये दुकान पिछले 35 सालों से गणेशोत्सव पर मोदक के लिए मशहूर है। ऐसे में इस बार भी यहां रौनक नजर आ रही है। यहां परंपरागत स्वाद से लेकर आज की पसंद को ध्यान में रखते हुए कई नए फ्लेवर तैयार किए गए हैं। दुकानदार के मुताबिक 35 साल पहले पहली बार मोदक बनाने के लिए कारीगर और साचा दोनों महाराष्ट्र से लाए गए थे।
2: और अब बात कश्मीर में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया। 10 सितंबर तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल के लिए देश और दुनिया भर के फिल्म मेकर्स ने उत्साह दिखाया है। हालांकि कश्मीर और सिनेमा की दोस्ती कोई नई नहीं है, फर्क बस इतना है कि पहले फिल्मकार यहां आते थे और खूबसूरत वादियों को पर्दे पर उतार कर लौट जाते थे, लेकिन अब कोशिश है कि कैमरे के पीछे की कहानी यही लिखी जाए। कश्मीर घाटी में ये पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, जो 10 सितंबर तक चलेगा।

0: कश्मीर की हसीन वादियों में सिनेमा और संस्कृति का महामंच सज चुका है, जिसका आगाज कलाकारों की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ हुआ। इस आयोजन से पूरा शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर गीत संगीत और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फेस्टिवल की शुरुआत जान निसार लोन, रानी हजारिका, पलक मुंछल और आभा हंजूरा की म्यूजिकल परफॉर्मेंस के साथ हुई। कश्मीर घाटी में हो रहा ये पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया और सिनेमा के साथ जम्मू कश्मीर के पुराने और गहरे रिश्ते का एक नया अध्याय शुरू हो गया।
1: पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दो तीन मकसद हैं। एक तो दुनिया भर की कुछ फिल्में जो हैं, यहाँ जो लोग या तो शौकीन हैं या मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इस तरह का एक्सपोजर देना। फिर जो हमारे लोकल फिल्म इंडस्ट्री है, उन्हें भी थोड़ा सा इसमें एक एक्सपोजर मिल जाता है। और कोशिश की जा रही है कि हम मुल्क के फिल्म इंडस्ट्री को याद दिलाएं कि स्विट्ज़रलैंड और बाकी मुल्कों से पहले अगर फिल्में बनती थीं तो कश्मीर में बनती थीं, और हम चाहेंगे कि वो सिलसिला दोबारा शुरू हो जाए।
0: कश्मीर में चल रहे इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी मानी हस्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें बॉलीवुड एक्टर फातिमा सना शेख, ताहा शाह, फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा, रमेश सिप्पी और संतोष सिवन के साथ साथ बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई हस्तियां शामिल रहे, जिन्होंने घाटी में हो रहे इस बड़े आयोजन पर खुशी जताई।
2: बहुत खुशाइंद कदम है ये कि यहाँ पे हमारे यहाँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया जा रहा है, और वो भी गवर्नमेंट लेवल पे। दैट्स अ वेरी गुड स्टेप।
3: तो चाहे सरकारी सतह पे या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए।
2: बिल्कुल,
3: यहाँ के लोगों को भी कुछ काम का एक सिलसिला शुरू हो जाए।
2: बिल्कुल होने चाहिए। और इनफैक्ट आप जैसे जानते हैं, हमने भी कई फेस्टिवल्स और कार्निवल्स किए हैं यहाँ पे, और ये एक बड़ी लेवल पे जो हुआ है, ये दैट्स आई कैन से कि बहुत अच्छा है। इस पे फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है यहाँ, उसको बूस्ट मिलेगा।
0: चार दिन चलने वाले इस फेस्टिवल में दुनिया भर की 135 फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। इसके लिए 92 देशों से करीब 1100 फिल्म सबमिशन मिले थे। इसमें भारत से सबसे ज्यादा 64 फिल्में हैं, उसके बाद फ्रांस से 13 और ईरान से 8 फिल्में हैं। यह आंकड़ा बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समुदाय की नज़र में कश्मीर अब सिर्फ डल झील, शिकारे, बर्फीले पहाड़ और चिनार की लोकेशन नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे सिनेमाई क्षेत्र के रूप में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां फिल्में दिखाई जाएं, फिल्मकार मिलें और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले।
4: कश्मीर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को लेकर जो कार्यक्रम है वो आयोजित हुए, और ख़ास तौर से वो फिल्में यहाँ पर दिखाई जा रही हैं जो दुनिया के 41 देशों के अलग अलग प्रोड्यूसर्स ने बनाई है। कश्मीर में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का थीम रंगीत सिनेमा दिया गया है। दरअसल जो सिनेमा और कश्मीर की बात करें तो वो रिश्ता जो है दशकों पुराना है, लेकिन आतंकवाद के कारण वो रिश्ता कुछ थमा सा था, ज़रूर था, लेकिन दूर कभी नहीं हुआ। पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर सरकार की कोशिश चल रही है कि किस तरह से पर्यटन के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड को भी फिल्में बनाने के लिए आकर्षित किया जाए, वो भी एक खास मुद्दा इस फिल्म फेस्टिवल का था। पहली बार कश्मीर में हो रहे इस फिल्म फेस्टिवल से कश्मीर के कलाकारों और फिल्म बनाने वाले लोगों को भी एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल गया है।
0: भारतीय सिनेमा और कश्मीर का रिश्ता नया नहीं है। 1960 और 70 के दशक में कश्मीर की कली, जंगली, आरजू और कभी कभी जैसी कई हिट फिल्मों ने घाटी को प्रेम, संगीत और प्राकृतिक सौंदर्य की सिनेमाई कल्पना का हिस्सा बना दिया था। इन फिल्मों के जरिए देश ही नहीं दुनिया भर के दर्शक भी कश्मीर की खूबसूरती से रूबरू हुए। डल झील, शिकारे, चिनार और बर्फ से ढके पहाड़ हिंदी फिल्मों के ऐसे दृश्य बन गए जिन्हें देश ही नहीं दुनिया के दर्शकों ने भी कश्मीर की पहचान के रूप में देखा। अपने समय में यश चोपड़ा जैसे दिग्गज फिल्मकारों ने इस रिश्ते को और गहरा किया। बॉलीवुड के लिए लंबे समय तक कश्मीर ऐसा सिनेमाई संसार रहा जहां प्रेम कहानियों को पहाड़ों, झीलों और बर्फ का करिश्माई जादू मिलता था। लेकिन 90 के दशक में आतंकवाद के चलते कश्मीर के सिनेमाघरों के दरवाजे बंद हो गए और फिल्मों की शूटिंग लगभग रुक गई थी। हालांकि आज हालात तेजी से बदले हैं, जिसके चलते न सिर्फ घाटी में फिर से सिनेमाघर खुले हैं बल्कि पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी हो रहा है।
5: एक तवील अरसा लगभग 20-25 वर्ष का गुजरा जब हम सिनेमा से महरूम रहे, और ये तो वो इलाका है जिसका हिंदुस्तानी सिनेमा के साथ चोली दामन का साथ रहा। आपने हमने वो दौर भी देखा जब कश्मीर के हर गली, हर कूचे में, हर बागीचे में शूटिंग हुआ करती थी। ये होटल, ये हाउस बोर्ड फिल्मी दुनिया के मेहमानों से आवाज थे। मुझे लगता है कि एक तरह से अनेकों तरह से वादी कश्मीर का बॉलीवुड से भी नाता रहा। कश्मीर एनरिच्ड बॉलीवुड एंड बॉलीवुड इन टर्न एनरिच्ड कश्मीर।
0: जम्मू कश्मीर प्रशासन को उम्मीद है कि आयोजन कश्मीर के लोगों को दुनिया भर के प्रोफेशनल से बातचीत करने का मौका भी देगा और वो फिल्म मेकर्स से जुड़ पाएंगे, आइडिया एक्सचेंज कर पाएंगे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों की फिल्में भी देख पाएंगे। रंगे सिनेमा थीम पर आयोजित ये महोत्सव श्रीनगर के साथ जम्मू और गुलमर्ग में भी आयोजित होगा। सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड, भारत पनोरमा, JNK सेलेक्ट और डॉक्यूमेंट्री समेत कई कैटेगरी में भारतीय और वर्ल्ड सिनेमा को एक मंच पर लाया गया है। मास्टर क्लास और पैनल डिस्कशन के जरिए स्थानीय युवाओं और उभरते फिल्मकारों को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत से जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। ये फिल्म फेस्टिवल साल 2023 में G20 इवेंट्स के बाद कश्मीर में आयोजित होने वाला पहला इंटरनेशनल इवेंट है। ये समारोह शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया और ये 10 सितंबर तक चलेगा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: न्यूज पद पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपके जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को सेंसेक्स 555 अंक गिरकर 75,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 144 अंक फिसला, ये गिरकर 23,635 पर आ गया। ग्लोबल मार्केट में कमजोरी के कारण दिल्ली में भी सोने की कीमतों में गिरावट आई। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार को सोना 2,150 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,58,100 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी की कीमतों में तेजी आई है, ये 600 रुपए महंगी हुई है। इसके साथ ही अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,41,100 रुपए हो गई। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 28 पैसे की गिरावट आई। इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 94.84 रुपए हो गई।
6: बॉक्स ऑफिस पर कमाई का रिकॉर्ड तोड़ रही हनुमान अंश, इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
0: हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर जलवा लगातार जारी है। पांचवें हफ्ते में फिल्म की कमाई नए रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है। फिल्म के ट्रेंड ने इंडस्ट्री को भी हैरान कर दिया है। अब तक पांचवें हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड धुरंधर के नाम था, जिसने 56,35,00,000 रुपए कमाए थे, लेकिन हनुमान अंश आज ही इस आंकड़े को पार कर सकती है। फिल्म पांचवें हफ्ते की नंबर वन कमाई वाली फिल्म बनने की ओर है। डिस्काउंटेड टिकट ऑफर से भी कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है। मिर्जापुर द मूवी की शानदार कमाई का सिलसिला लगातार जारी है। बेहतरीन वीकेंड के बाद फिल्म ने सोमवार के टेस्ट को भी शानदार अंदाज में पास कर लिया। सोमवार को फिल्म ने 18 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया, जो दर्शकों के बीच फिल्म की मजबूत पकड़ दिखाता है। खास बात यह है कि इसके साथ एक बड़ी प्रतिद्वंदी फिल्म भी सिनेमाघर में चल रही है। इसके बावजूद दोनों फिल्मों को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मेकर्स ने आज के लिए डिस्काउंटेड टिकट ऑफर भी पेश किया है। ऐसे में मंगलवार को भी फिल्म की कमाई में उछाल आने की उम्मीद जताई जा रही है। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान को लेकर दर्शकों का इंतजार लगातार बढ़ रहा है। फिल्म का तीसरा गाना मैं तो हैवान नहीं हूँ रिलीज कर दिया गया है। गाने में अक्षय कुमार, सैफ अली खान के साथ श्रेया पिलगांवकर और सयामी खेर भी नजर आ रहे हैं। इस गाने को प्रीतम ने कंपोज किया है, जबकि इसके बोल कुमार ने लिखे हैं और राघव चैतन्य ने अपनी आवाज दी है। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी ये रोमांचक थ्रिलर 11 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। खास बात यह है कि अक्षय और सैफ 18 साल बाद बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। भारत की समृद्ध संस्कृति और सनातन विरासत को दुनिया तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ी पहल हुई है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने कृष्णावतारम और इसकी ट्रिलॉजी के लिए डॉक्टर साजन राज ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है। गुरुदेव के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से क्रिएटिव लैंड स्टूडियोज के डॉक्टर साजन राज ग्रुप और द आर्ट ऑफ लिविंग के वर्ल्ड फोरम फॉर आर्ट एंड कल्चर ने ये साझेदारी की है। इसका मकसद कृष्णावतारम पार्ट 1 और इसकी पूरी ट्रिलॉजी को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुँचाना है। भारतीय संस्कृति और विरासत को वैश्विक मंच देने की ये कोशिश खास मानी जा रही है।
6: न्यूज वक्त में खबरों के सफर को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
6: राजधानी दिल्ली पर भी चढ़ने लगा गणेशोत्सव का रंग। स्वीट्स स्टोर में जोर शोर से हो रहा बापा के प्रिय मोदक का निर्माण। खूबसूरत मूर्तियों से सजे बाजार, तो कहीं घरों में मिट्टी से बने गजानन। महाराष्ट्र के अकोला में पोला उत्सव की जोरदार तैयारी। बैलों को सजाने के लिए रंग बिरंगी रस्सियां और पट्टे खरीद रहे किसान। ऋषभ राजा के प्रति सम्मान दर्शाता है ये पर्व। रामनगरी अयोध्या से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा। मानदेय में 50% इजाफे के साथ मिलेगा 5 लाख रूपये तक का कैशलेस इलाज। उत्तरा में 6,000 से ज्यादा युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का मेगा इवेंट। समारोह में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम। 35,000 करोड़ की विकास योजनाओं का दिया तोहफा। धार में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल। 11 सितंबर से शुरू हो रहा है सम्मेलन। न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: प्यार और दुलार सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, जानवर भी अपने अंदाज में प्यार जताना जानते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बंदर बेड पर सो रहे बच्चे को बिल्कुल माँ की तरह दुलार करता नजर आ रहा है। कभी बच्चे को प्यार से देखता है तो कभी सिर हिलाकर उसे हंसाने की कोशिश करता है। बंदर का यह मासूम अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखकर लोग भी इस अनोखी दोस्ती पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। उम्र छोटी है लेकिन हुनर किसी बड़े खिलाड़ी से कम नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो एक नन्ही बच्ची की शानदार स्केटिंग का है। बच्ची पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना परफॉर्मेंस शुरू करती है और टाइमर के हिसाब से उसे पूरा भी करती है। स्केटिंग के दौरान उसके शानदार मूव्स और बैलेंस को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इतनी कम उम्र में बच्ची का ये हुनर देखकर लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। सड़क पर चलती इस अनोखी ट्रेन को देखकर हर कोई हैरान है। लकड़ी के पहिए, उस पर लगी कुर्सियां और एक के पीछे एक जुड़ी ये सवारी बिल्कुल ट्रेन जैसी नजर आ रही है। इसे देखने के लिए सड़क पर लोगों की नजरें भी थम जाती हैं। ट्रेन जैसी इस अनोखी सवारी को देखकर कई लोगों की हंसी नहीं रुक रही, वहीं इसे तैयार करने वाले के हुनर की भी खूब तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सड़क पर तेज रफ्तार साइकिलें और उन पर सवार छोटे छोटे बच्चे, लेकिन इनकी रफ्तार से ज्यादा चर्चा इनके हौसलों की हो रही है। वायरल वीडियो में बच्चे साइकिल पर एक से बढ़कर एक शानदार स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। उनका बैलेंस और तालमेल देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्होंने इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग ली हो। बच्चों का ये हुनर देखकर लोग भी हैरान हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है और लोग बच्चों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। खुश रहने की कोई उम्र नहीं होती, और जब साथ में हो अपनी सखियां तो खुशी दोगुनी हो जाती है। वायरल वीडियो में कुछ महिलाएं एक साथ झूले पर बैठकर जमकर झूला झूलते नजर आ रही हैं। झूले पर बैठते ही सभी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आती है जैसे बचपन के दिन फिर लौट आए हों। सखियों के साथ हंसी मजाक और झूले की मस्ती का ये पल लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है। वीडियो देखकर हर कोई उनकी खुशी की तारीफ कर रहा है।
6: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी साफ हवा में सांस लेने के लिहाज से देश के सबसे स्वच्छ शहरों की। स्वच्छ हवा की मुहिम में उत्तर प्रदेश ने देश भर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में लखनऊ ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में देश में पहला स्थान हासिल किया है। रैंकिंग में टॉप पर रहे लखनऊ को 200 में से 195 अंक मिले हैं, जबकि पिछले साल लखनऊ 15वें पायदान पर था। इस बार पहले स्थान पर रहे लखनऊ नगर निगम को 1.50 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है। इसी कैटेगरी में देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को दूसरा और जबलपुर को तीसरा स्थान मिला है। इंदौर को 1 करोड़ और जबलपुर को 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली। खास बात यह है कि इसी श्रेणी में देश के टॉप 15 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 और शहर हैं। आगरा चौथे, गाजियाबाद 9वें, कानपुर 11वें और प्रयागराज 13वें स्थान पर है। लखनऊ नगर निगम करीब 1100 इलेक्ट्रिक वाहनों से घर घर कूड़ा कलेक्शन कर रहा है। इनमें संकरी गलियों के लिए छोटे इलेक्ट्रिक ऑटो ट्रिपर भी शामिल हैं। लखनऊ में लगभग 560 किलोमीटर सड़कों को पूरी तरह से पक्का किया गया है, जिससे कि धूल में कमी आई। कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 2550 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। लखनऊ शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए वर्टिकल गार्डन और ग्रीन जोन विकसित किए गए हैं। इसके साथ ही घरों तक पीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण काम हुआ है। लखनऊ शहर में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 140 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। स्वच्छ वायु अभियान का बड़ा असर ये भी है कि लखनऊ के वार्ड 70 में 30,000 से अधिक आबादी वाले वार्डों की राष्ट्रीय श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। सर्वेक्षण में 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ने 195 अंक के साथ देश में दूसरा स्थान हासिल किया। इसी श्रेणी में झांसी 192.5 अंकों के साथ 5वें और नोएडा और मुरादाबाद 187.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से 8वें स्थान पर रहे। उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में साफ सफाई, कूड़ा निस्तारण और धूल नियंत्रण की कोशिशों को काफी अहम माना जा रहा है, जिससे कि राज्य के कई शहरों की हवा में बड़ा सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी के लिए वाकई ये बड़ी उपलब्धि है कि लखनऊ देश में सबसे साफ हवा वाला शहर बन गया है। इस उपलब्धि को लेकर हमने लखनऊ में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
8: ये लखनऊ वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, जो लखनऊ की स्वच्छता नंबर 1 रैंकिंग पे आई है। और इसके पीछे जो कारण है वो सरकार का है, माननीय महापौर जी का है, जो कूड़ा प्रबंधन है, जो कचरा है इकट्ठा होता रहता था, उस सबको एक सिस्टमेटिक वे से जो है उसको इकट्ठा कर रहे हैं, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, और इसीलिए जो है लखनऊ इस वक्त जो है चमक रहा है सर।
9: ये सब गलत बातें हैं। लखनऊ में न हवा के मामले में टॉप है, लखनऊ पॉल्यूटेड शहर है, आज भी पॉल्यूशन है, कल भी है। झूठ का बुनियाद है, झूठ की बुनियाद पर ही चल रहा है। लखनऊ पूरे हिंदुस्तान की नंबर 1 की सिटी है स्वच्छता के बारे में। अब रह गया सवाल कि साहब स्वच्छता तो अनेरी है, इसी तरह है जब लखनऊ में उद्योग विहीन लखनऊ है। अब जहां उद्योग विहीन लखनऊ है, लखनऊ और मोहनलालगंज में कोई अंतर नहीं है, एक गांव है और एक कस्बा है। अब लखनऊ का वातावरण शुद्ध है, इससे ये प्रमाणित नहीं होता। लखनऊ में जब कुछ है ये नहीं है तो वातावरण तो इसी तरह स्वच्छ है।
10: माननीय के शर्मा जी की ये देन है कि आज प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ नंबर 1 पर चला, और इसी तरीके से जो है मंत्री जी प्रयास करते रहेंगे उत्तर प्रदेश के 75 जिला को नंबर 1 में घोषित कर दिया जाएगा, जो है ये माननीय मंत्री जी का जो है उद्देश्य है।
6: कहते हैं मन में जब भगवान के प्रति अटूट आस्था हो तो मुश्किल हालात भी आसानी से गुजर जाते हैं। ऐसी ही दो तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं, एक है यूपी के चित्रकूट की, दूसरी है मध्य प्रदेश के मुरैना की। चित्रकूट और मुरैना में दो ऐसे मंदिर हैं जहां के साधुओं ने बाढ़ में घिरे मंदिरों से बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया। प्रशासन की टीम उन्हें वहां से लेने पहुंची, लेकिन उन्होंने अपने आराध्य को अकेला छोड़ने से मना कर दिया।
0: जब मन में भगवान के प्रति आस्था हो तो भय का वजूद खत्म हो जाता है। जब भक्ति अटूट हो तो मौत का खौफ भी इंसान के कदम डिगा नहीं सकता। भारत की इस पावन धरा पर ईश्वर के प्रति यही निष्ठा युगों युगों से चलती आई है। इसी की मिसाल मध्य प्रदेश के मुरैना और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में देखने को मिली। चारों तरफ बाढ़ का पानी, हालात ऐसे कि हर कोई महफूज ठिकानों का रुख कर रहा है, लेकिन भक्ति की ताकत के आगे बाढ़ की आपदा भी छोटी पड़ जाती है। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की, जहां उफनती आसन नदी ने सिद्ध बाबा मंदिर को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए जब SDRF की रेस्क्यू टीम नाव की मदद से सिद्ध बाबा मंदिर के साधु को वहां से सुरक्षित जगह तक ले जाने के लिए पहुंची, लेकिन उन्होंने सुरक्षित स्थान पर जाने से साफ इनकार कर दिया। बाबा का कहना था कि मंदिर में वर्षों से अखंड ज्योति जल रही है और वो अपने भगवान और इस पावन ज्योति को बीच मझधार में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। बाढ़ के पानी से घिरे होने के बावजूद संत मंदिर के अंदर ही रुककर अपना भोजन खुद बना रहे हैं और निरंतर पूजा अर्चना में लीन है। अतः भक्ति की ऐसी ही एक और भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई चित्रकूट से, जहां मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट का ऐतिहासिक बड़ा मठ मंदिर धीरे धीरे डूबने लगा। हालात बिगड़ते देख खुद DM पुलकित गर्ग और SP अरुण कुमार भारी प्रशासनिक अमले के साथ मंदिर परिसर पहुंचे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे अधिकारी मंदिर के पुजारी से गुहार लगाते हैं। DM ने मिन्नतें की कम से कम बाढ़ उतरने तक मंदिर खाली कर दें, लेकिन पुजारी का जवाब सुन अधिकारी भी निशब्द हो गए। पुजारी ने बेहद शांत भाव से कहा, पूरी जिंदगी भगवान के चरणों में गुजारी है, आज इस संकट की घड़ी में अपने प्रभु को अकेला कैसे छोड़ दो, जो होगा भगवान की इच्छा से अच्छा ही होगा।
11: आप देखिए, सब लोगों की जिम्मेदारी है, उसके लिए जिम्मेदार है ना, और आप जिम्मेदार हैं सभी के लिए, तो आप आइए आइए, लोग आपका वेट कर रहे हैं। ताला लगाइए ना, ये सुरक्षित रहेगा।
0: पुजारी के हठ और निष्ठा के आगे आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। हालांकि पुजारी के कहने पर मंदिर के दूसरे सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन मुख्य पुजारी प्रभु की सेवा में वहीं डटे रहे और अधिकारियों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। चित्रकूट से अखिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: सोचिए, एक रोबोट आपके घर में आए और सिर्फ चलने या फिर बोलने के बजाय फ्रिज खोले, सामान उठाए, चीजों को सही तरीके से पकड़े और आपके साथ मिलकर काम करें। सुनने में यह भविष्य की कहानी लगती है, लेकिन ब्रसल्स में यूरोपीय संसद के सामने इसकी झलक दिखाई दी। AI पावर्ड रोबोट्स ने अपनी ऐसी क्षमताओं का प्रदर्शन किया जो आने वाले वक्त में घर से लेकर फैक्ट्री तक काम करने का तरीका बदल सकती है।

0: ये तस्वीर उस भविष्य की है जहां मशीनें सिर्फ मशीन नहीं रहेंगी। ब्रसेल्स में यूरोपियन संसद के खास रोबोटिक शोकेस में एआई पावर्ड रोबोट्स ने ताकत दिखाई। चलते रोबोट्स, चीजें उठाते रोबोट्स और बारीकी से काम करते रोबोट्स। 14 देशों के 31 एकेडमिक और इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के 15 रोबोट्स ने दिखाया कि मशीनें अब सिर्फ प्रोग्राम किए गए काम दोहराने से आगे बढ़ रही हैं। इन रोबोट्स की सबसे बड़ी खासियत है अपने आसपास की दुनिया के साथ तालमेल, किसी वस्तु को पहचानना, उसके आकार और स्थिति को समझना, फिर उतनी ही ताकत से पकड़ना जितना जरूरी हो। इंसान के हाथ के लिए ये सब बेहद स्वाभाविक है, लेकिन एक रोबोट के लिए हर मूवमेंट के पीछे सेंसर, एआई और बेहद सटीक गणना काम करती है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है फ्रिज खोलना, हमारे लिए रोज का मामूली काम, लेकिन रोबोट के लिए एक पूरा मिशन। उसे फ्रिज देखना है, हैंडल पहचानना है, सही जगह हाथ ले जाना है, ग्रिप बनानी है और फिर सही ताकत लगाकर डोर खोलना है।
1: So they have to interact with our environment, open doors, open door, drawers. In the case of our robot has to open the fridge, which seems like a simple task. We do it all the time. But imagine when you do it and your hand is very soft and compliant and is doing very quick movement.
0: असली कमाल सिर्फ रोबोट्स के चलने में नहीं, कमाल तब है जब वो देखकर फैसला करे, हाथ बढ़ाए और काम पूरा करे। और यही क्षमता इन्हें घर, अस्पताल और दूसरी जगहों पर इंसान का मददगार बनाने की दिशा में ले जा रही है। लेकिन इस तकनीकी दौड़ में यूरोप के सामने बड़ी चुनौती भी है। चीन और अमेरिका ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में भारी निवेश के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यूरोप के पास मजबूत रिसर्च है, लेकिन उसे लैब से निकालकर बड़े पैमाने पर उत्पादन तक पहुंचाने की रफ्तार अभी चुनौती बनी हुई है।
2: Huge ecosystem of suppliers, of technology, manufacturing facility that allow to accelerate and go very, very fast as China is doing or how US is doing because of the large investment that they are receiving.
0: ये सिर्फ तकनीक की दौड़ नहीं है, बुजुर्ग होती आबादी और घटते वर्कफोर्स के बीच आने वाले वक्त में ऐसे रोबोट्स की जरूरत और बढ़ सकती है।
3: It's definitely lack of funding and lack of political willingness. It's not that we don't get funding. It's not that the politicians do not pay attention to robotics, but clearly not at the same level as what happens in China.
0: फ्रिज के डोर खोलने से शुरू हुई ये कहानी घर के काम से लेकर फैक्ट्री के मुश्किल काम तक पहुंच सकती है। बेशक रोबोट्स इंसान नहीं बन सकते, लेकिन उन्हें इंसान की तरह काम सिखाने की कोशिश अब पूरी रफ्तार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चीन में लॉन्च हुआ एआई पावर्ड स्कार्फ कस्टमाइजेशन बूट। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
5: तुर्की के बालिकेसर में एक अनोखी परेड ने लोगों का ध्यान खींच लिया। काले रंग से पुते चेहरे, जानवरों की खाल और हाथों में पशु खोपड़ी वाले डंडे। यह नजारा किसी डरावनी फिल्म का नहीं, बल्कि करीब 100 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है। तुलुत बकलार ने 1919 से 1923 की तुर्की जंग आजादी की आदमी योद्धाओं का रूप धरा। गले में घंटियां और चेहरे पर कालिख लगाए कारीगर सड़कों पर उतरे। बच्चों में डर दिखा तो दर्शक इस अनोखे रूप को देखकर खूब हंसे। परेड में इतिहास और मनोरंजन का अनोखा संगम देखने को मिला। फैशन की दुनिया में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो गई है। चीन के बीजिंग में एआई पावर्ड स्कार्फ कस्टमाइजेशन बूथ लॉन्च किया गया है। यहां ग्राहक अपनी पसंद के मुताबिक एआई से डिजाइन तैयार करवा सकते हैं। इसके बाद मशीन महज 5 मिनट में सिल्क स्कार्फ पर उस डिजाइन को प्रिंट कर देती है। यानी अब फैशन में मिलेगा पर्सनल टच, और वो भी एआई की मदद से। खासकर जेंजी के लिए ये नया एक्सपीरियंस काफी दिलचस्प माना जा रहा है। एआई का ये इस्तेमाल फैशन में कस्टमाइजेशन का नया दौर शुरू कर रहा है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में कैरेबियाई संस्कृति का रंग देखने को मिला। वेस्ट इंडियन परेड में हजारों लोग संगीत, नृत्य और रंग बिरंगे परिधानों के साथ सड़कों पर उतरे। स्टील ड्रम की धुन पर लोग जमकर थिरके और जुए के जरिए कैरेबियाई परंपराओं की झलक दिखाई। परेड के दौरान अलग अलग रंगों और वेशभूषा ने माहौल को बेहद खास बना दिया। संगीत और डांस के साथ पारंपरिक खान पान ने भी लोगों का ध्यान खींचा। इस आयोजन ने ब्रुकलिन की सड़कों को कैरेबियाई संस्कृति के जश्न में रंग दिया। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में आयोजित प्राउड दहिये फेस्टिवल ने मुश्किल दौर के बीच उम्मीद की तस्वीर दिखाई। स्थानीय कारोबारी और परिवार इस आयोजन में एक साथ जुटे। बाजार में हस्तशिल्प, घरेलू सामान और खाने पीने की चीजों के स्टॉल लगाए गए। स्थानीय महिलाओं ने अपने पारंपरिक उत्पादों के जरिए अपनी कला और हुनर को सामने रखा। वहीं बच्चों के लिए खेल और रंग भरने जैसी गतिविधियां भी आयोजित की गई। फेस्टिवल के जरिए इलाके में सामान्य जिंदगी की झलक देखने को मिली। संकट के बीच लोगों का साथ और उत्साह इस आयोजन की खासियत रहा। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में दिग्गज अभिनेत्री एलेन बर्स्टिन को प्रतिष्ठित गोल्डन लायन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 93 साल की बर्स्टिन ने अवार्ड लेते वक्त भावुक होकर इस खास पल को महसूस किया। सम्मान मिलने पर दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। द एक्सॉर्सिस्ट जैसी मशहूर फिल्म के लिए पहचानी जाने वाली बर्स्टिन ऑस्कर, टोनी और एमी जैसे बड़े पुरस्कार भी अपने नाम कर चुकी हैं। वेनिस में उन्हें मिला यह सम्मान उनके शानदार और लंबे फिल्मी करियर को सलाम है। इस दौरान माहौल बेहद भावुक नजर आया।
6: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मच जाएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच की।
6: एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम एक बार फिर नीली जर्सी में नजर आएगी। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
5: जापान में होने वाले एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम एक बार फिर नीली जर्सी में नजर आएगी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्के के मुताबिक भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से हॉकी इंडिया को टीम किट के लिए नारंगी या ब्लू कलर चुनने का विकल्प दिया गया था और हॉकी इंडिया ने भारतीय टीम के लिए ब्लू जर्सी को चुना है। इससे पहले नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेले गए हॉकी वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय पुरुष और महिला टीमों की प्राइमरी किट नारंगी कर दी गई थी, जिस पर पूर्व खिलाड़ियों ने नाराजगी जताई थी। अहमदाबाद में वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज स्टेज 3 के तीसरे दिन भारत ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। मेंस रिकर्व में हरविंदर सिंह और विजय सुंडे की जोड़ी और मेंस कंपाउंड में तुमान कुमार और श्याम सुंदर स्वामी की जोड़ी चैंपियन बनी। वहीं विमेंस रिकर्व में भावना और पूजा की जोड़ी चीन से हार गई और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। भारत के अंडर 16 नंबर 1 खिलाड़ी तविश पाहवा काहिरा में होने वाले जूनियर डेविस कप फाइनल में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA ने टीम का ऐलान करते हुए ये घोषणा की है। जूनियर डेविस कप 2 से 8 नवंबर तक मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित होगी। तविश मौजूदा नेशनल अंडर 18 और अंडर 16 चैंपियन भी हैं।
11: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
13: क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति बहुत साहसी हो जाता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति के अंदर बहुत आकर्षण पैदा होता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति को बड़ी सारी संपत्ति का फायदा होता है? क्या मंगल दोष होने से भी हो सकता है लाभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति बहुत साहसी हो जाता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति के अंदर बहुत आकर्षण पैदा होता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति को बड़ी सारी संपत्ति का फायदा होता है? क्या मंगल दोष होने से भी हो सकता है लाभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: राजधानी दिल्ली पर भी चढ़ने लगा गणेश उत्सव का रंग। स्ट्रीट स्टोर्स में जोरदार से हो रही है बप्पा के प्रिय मोदक का निर्माण। खूबसूरत मूर्तियों से सजे बाजार, तो कहीं पर घरों में मिट्टी से बने रह जाना। महाराष्ट्र के अकोला में पोला उत्सव की जोरदार तैयारियां। बैलों को सजाने के लिए रंग बिरंगी रस्सियों और पट्टे खरीद रहे हैं किसान। वृषभ राजा के प्रति सम्मान दर्शाता है ये पर्व। रामनगरी अयोध्या से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा। मानदेय में 50% इजाफे के साथ मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का कैशलेस इलाज। लखनऊ में हनुमान अंश की टीम से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा नीब करौरी के जीवन पर बनी फिल्म को देश भर से मिल रहा है प्यार। बॉक्स ऑफिस पर हर दिन बना रही है नए रिकॉर्ड। वडोदरा में 6,000 से ज्यादा युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का मेगा इवेंट समारोह में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम। 35,000 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
3: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं रोज नए कीर्तिमान बना रही फिल्म हनुमान अंश की। शुरुआत में जिस फिल्म को ज्यादा नोटिस नहीं किया गया, आज वो फिल्म 150 करोड़ की कमाई कर चुकी है। और हैरानी की बात नहीं होगी अगर ये फिल्म जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाए। आज आपको इस फिल्म की कामयाबी के आंकड़े और इससे मिल रहे दर्शकों के दुलार की तस्वीरें दिखाएंगे। बात होगी गुजरे जमाने की ऐसी ही सुपरहिट फिल्म जय संतोषी माँ की, जिसने छोटे बजट के बावजूद बड़ी कमाई का ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे दर्शकों तक कोई तोड़ नहीं पाया। क्या समानता है दोनों फिल्मों में, इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा फिल्म हनुमान अंश के स्टारकास्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत भी होगी। देखिए, फिल्म हनुमान अंश जबरदस्त कामयाबी की ओर बढ़ रही है और लोगों तक इस फिल्म को पहुंचाने के लिए फिल्म की टीम अलग अलग शहरों में लगातार जा रही है। देखिए, लखनऊ में फिल्म के डायरेक्टर और स्टारकास्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बाकायदा मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म में गोरखनाथ जी से जुड़ी पंक्तियों वाले अहम दृश्यों को देखा। आपको बता दें कि फिल्म में बाबा नीम करौरी और साथ में नाथ संप्रदाय के संतों के बीच हुई मुलाकातों का भी जिक्र इसमें किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और गोरखनाथ मंदिर के गोरक्ष पीठाधीश्वर और वर्तमान महंत भी हैं। हनुमान अंश फिल्म की टीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिल्म से जुड़े अनुभव बताए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव।
4: उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आज हनुमान अंश के पूरे स्टारकास्ट से मिल रहे हैं कि ये जो आप तस्वीरें हैं अंदर की, यहाँ पर 5KD में वो सभी स्टारकास्ट मौजूद है। इस मूवी की खास बात ये है, क्योंकि ये जो पूरी एक हफ्ते तक अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं लगातार। और आज चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लौटने के बाद सीधे हनुमान अंश मूवी देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें नाथ संप्रदाय को दिखाया गया, क्योंकि नीम करौरी बाबा का नाथ संप्रदाय से भी कनेक्शन था। और कहीं ना कहीं इस पूरे जोड़ को देखा जाता है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी नाथ संप्रदाय से हैं, तो ये कनेक्शन जो है इस मूवी में वो बड़ा अहम हो जाता है, जिसको लेकर माना जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उस टीम को जरूर और देख रहे हैं जिसमें नाथ संप्रदाय के बारे में बात की गई। तो अहम हो जाता है कि हनुमान अंश की पूरी स्टार कास्ट मौजूद है, साथ ही साथ वो मूवी उन्होंने देखी है, साथ साथ अंदर जो आवाज है वहां पर ये पूरी स्टार कास्ट है जिसमें डायरेक्टर से लेकर एक्टर सभी मौजूद है। बहुत खास उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से थे, यहाँ पर पहुंचते हैं और स्टार कास्ट के साथ मूवी देखते हैं और कहीं ना कहीं इसके सफल होने की बात भी कहते हैं।
3: फिल्मी दुनिया में हर फिल्म की अपनी एक कहानी होती है। कोई बड़े बजट और बड़े सितारों के दम पर बॉक्स ऑफिस पर छा जाती है तो कोई छोटे बजट में अपने कंटेंट के दम पर बड़ा कमाल कर जाती है। इन दिनों फिल्म रोमांच की कामयाबी भी कुछ ऐसी ही है जिसने धीमी शुरुआत के बाद बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ी और अब बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। अपनी रिलीज के 32वें दिन यानी 5वें सोमवार को करीब 9 से 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जो किसी भी हिंदी फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा 5वां सोमवार साबित हुआ। आखिर इस फिल्म को दर्शकों का इतना प्यार क्यों मिल रहा है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
5: करना क्या चाहिए?
6: न बड़ा बजट, न बड़ी स्टार कास्ट,
7: क्योंकि मुझे
6: न प्रमोशन,
7: अम्मा के पास
6: न रिलीज होने तक कोई चर्चा,
5: कुछ
6: लेकिन फिल्म हनुमान अंश का कमाल देखिए, आंकड़ों का कीर्तिमान देखिए, इसकी शोहरत देखिए और एक महीना गुजरने के बाद भी दर्शकों में इसे लेकर दीवानगी देखिए।
8: चमत्कारिक रूप से हनुमान अंश लगातार बिजनेस करती जा रही है, 100 करोड़ के पार मूवी पहुंच चुकी है, रफ्तार अब 150 करोड़ के आसपास है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कि फिल्म देखकर निकले हैं, कैसी लगी फिल्म आप?
9: बहुत अच्छी पिक्चर थी और यहाँ हमें ना नीम करौली बाबा की पूरी स्टोरी समझ में आई कि मतलब पहले उतना नहीं पता था लेकिन पिक्चर देख के मन खुश हो गया।
10: बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, आप सबको देखनी चाहिए। मैं लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे देख के ही इतना मतलब वो हुए कि मूवी देखनी चाहिए।
8: सोशल मीडिया पर लोग जिस तरह बहुत तारीफ कर रहे थे, यहाँ आकर वैसे ही लगा या कुछ और था?
10: नहीं, हमें बिल्कुल वैसे ही लगा। और वैसे मैं वेकेशन में गर्मियों में हर साल नीम करौली बाबा जाती भी हूँ और यहाँ देख के तो मुझे बहुत लगा कि उसी मंदिर में

0: आने वाला आंकड़ा ये है कि फिल्म ने 31वें दिन 22 करोड़ 75 लाख की धांसू कमाई की और 32वें दिन भी 9 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया।
1: आंखें वही देखती हैं।
0: और इस तरह 5वें वीकेंड में कमाई करने के मामले में हनुमान अंश ने धुरंधर, छावा और पुष्पा 2 जैसी धाकड़ फिल्मों को पछाड़ दिया है।
2: इतनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, वो वहां से निकाल ही लेंगे।
0: लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकता दिख रहा, असली चमत्कार तो शायद अब होना है। हनुमान अंश का ग्रॉस कलेक्शन करीब 155 करोड़ हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म जल्दी ही 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है, क्योंकि ये फिल्म 11 सितंबर से वर्ल्ड वाइड रिलीज होने जा रही है। दर्शक फिल्म देखकर गदगद हैं और फिल्मी पंडित हैरान,
3: भगवान जी को सोने का चढ़ावा नहीं,
0: क्योंकि जिस फिल्म ने रिलीज होने के 17 दिनों तक किसी का ध्यान नहीं खींचा, 2 हफ्ते तक कमाई सिर्फ लाखों में रही, फिर अचानक 17वें दिन एक चमत्कार हुआ और इसने रविवार को 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की कमाई की। ये इतिहास बनने की शुरुआत थी, जिसके बाद से फिल्म ने फिर पलट कर नहीं देखा है।
4: विशाल चतुर्वेदी की हनुमान अंश एक नया रिकॉर्ड बनाने की कगार पर है। जी हाँ, इस फिल्म ने 100 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर चुका है। बहुत ही छोटे बजट पे बनी ये फिल्म, सिर्फ 2 करोड़ रुपए में बनी थी और आज जाकर ये बड़े बड़े फिल्में जैसे कि टॉक्सिक, आवारापन 2 और यानी यहाँ तक कि मिर्जापुर द मूवी को भी एक पीछे छोड़कर अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग तोड़ रहा है। और ये एक डिवोशनल ड्रामा है, नीम करोली बाबा के जर्नी के पे बेस्ड है और कहीं ना कहीं ये फिल्म की ना जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। जब रिलीज हुई थी तो बिल्कुल 2 हफ्ते तक ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे थे, स्क्रीन्स काफी कम थे एंड सडनली 3रे हफ्ते से जो इस फिल्म ने एक जंप ली है वो बहुत ही एक रिमार्केबल एक अचीवमेंट कहला सकता है।
0: ना कोई प्रचार और ना कोई तामझाम, पर बाबा नीम करौली के चमत्कारिक जीवन से प्रभावित इस फिल्म ने अपने कंटेंट की बदौलत हर पीढ़ी को सिनेमा हॉल तक खींच लिया है।
5: ये जेन जी के अंदर भी क्रेज आ रहा है क्योंकि जेन जी जो है इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से भजन क्लबिंग भी ट्रेंड बन गया उसमें भी जेन जी का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। एज अ जेन जी आप मूवी देखने आए हो तो कैसे, कितने एक्साइटेड हो?
6: मैम बहुत एक्साइटेड है, मेरे पापा जी ने रिकमेंड करी थी मेरे को। हाँ। तो उन्हीं के रिगार्डिंग मैं आया हूँ।
5: अच्छा, उन्हीं के रिगार्डिंग?
6: मेरे पापा जी देख गए।
5: अच्छा, उनको अच्छी लगी?
6: मेरे मम्मी पापा दोनों देख गए मूवी।
5: कैसा रिस्पॉन्ड था?
6: अच्छा था।
5: अच्छा था,
6: बहुत अच्छा।
0: हनुमान अंश की कामयाबी को अलग अलग तरीके से डिकोड किया जा रहा है, लेकिन एक बात सभी मान रहे हैं कि मनोरंजन के अलावा ये फिल्म दर्शकों को एक आध्यात्मिक एहसास से जोड़ती है। भक्ति, सेवा, श्रद्धा के संदेश के साथ साथ नीम करोली बाबा की जीवन यात्रा से जोड़ती है। सबसे बड़ी बात कि फिल्म दर्शकों को हनुमान जी की भक्ति से जोड़ती है और यही इसकी कामयाबी की असली वजह है।
7: मेरी अम्मा के पास पहुंचना है।
8: मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज जाइए थिएटर में एंड वॉच हनुमान अंश। आई जस्ट वेंट विद माय मॉम एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। गो, अपने माता पिता को लेके जाइए, अपने बच्चों को लेके जाइए, गो विद योर फ्रेंड्स। आई हाईली रिकमेंड दिस फिल्म टू एवरीवन। किसी ने मुझे बोला नहीं है ये बनाने के लिए, कोई किसी का फोन वोन कुछ नहीं। आई जस्ट वॉन्टेड टू डू दिस एंड बचपन से मेरा एक कनेक्शन रहा है हनुमान जी के साथ, बट दिस इज समथिंग एल्स। ये देखिए, बहुत ही प्योरली बनी हुई फिल्म है। आई वुडंट इवन कॉल इट अ फिल्म, इट्स जस्ट इट्स समथिंग डिवाइन।
0: फिल्म हनुमान अंश का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। आम दर्शक ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक्टर और निर्देशक इसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। वरुण धवन तो इसे अपनी माँ के साथ देखने पहुंचे और धुरंधर बनाने वाले आदित्य धर ने भी इसे सराहा है। प्रीति जिंटा ने अपने इंस्टाग्राम पर थिएटर के अंदर की तस्वीरें शेयर करके लिखा सीताराम और वाव लिखकर फिल्म के लिए अपना प्यार जताया। वहीं एक्टर विवेक ओबेरॉय ने भी इसकी जमकर तारीफ की है।
9: मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई दायरा फिक्स्ड नहीं है। कुछ लोगों को वेब सीरीज अच्छी लग रही है, कुछ लोगों को फिल्म्स अच्छी लग रही हैं। ये वही भारत है जहां पे मिर्जापुर जैसी फिल्म भी बहुत अच्छी चलती है, हनुमान अंश जैसी फिल्म भी इतनी खूबसूरत चलती है। छोटी से बजट की, कोई स्टार नहीं, लेकिन कई लोग जाके देखते हैं, उसे इतना प्यार देते हैं, इतना सराहना देते हैं। तो आई थिंक ये ऑडियंस के मन में क्या है और ऑडियंस चाहती क्या है, ये तो बहुत मुश्किल है समझना।
0: शानदार विजुअल इफेक्ट्स,

0: जीवंत अभिनय और सनातन संस्कृति के गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ी है और इसीलिए इसे दर्शकों का स्नेह और आशीर्वाद भी मिल रहा है। अब देखिए आंकड़ों का ये कीर्तिमान कहां जाकर ठहरता है। नोएडा से मनीष चौरसिया, दिल्ली से मनीष अलड्डा, मुंबई से सना फरजीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: एक बार बाबा ने अगर आपको अपना लिया तो चाहे आप कहीं पर कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो वो वहाँ से निकाल ही लेंगे।
2: और दूसरे हफ्ते की कमाई की अहम वैल्यू होती है क्योंकि चौथे और पांचवें हफ्ते तक रफ्तार धीमी हो जाती है। हनुमान अंश के मामले में कहानी उल्टी है। फिल्म ने पांचवें हफ्ते में ही रिकॉर्ड बना दिया, कुल 51 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करके इस फिल्म ने रिकॉर्ड बना दिया है। फिल्म को ज्यादा प्रमोट करने के लिए टीम हनुमान अंश इन दिनों उत्तर प्रदेश के सफर पर है और लखनऊ में उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने।
3: बाबा जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये किरदार निभाया है। मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, सब वही कर रहे थे।
4: एक बड़ा रिकॉर्ड बना रहे हैं इस किरदार को लेकर, कहते हैं कि एक हफ्ते में इतना ऊंचा पहुंच गया और नीम करोड़ी बाबा जिसको
3: मेरे लिए रिकॉर्ड मैंने नहीं रखता है, बाबा का नाम जगह जगह जा रहा है ये मेरे लिए मायने रखता है।
4: भी गाना लगातार आपने गाया है इसमें, कैसे ये जो गाने लगातार हिट हो रहे हैं, लगातार लोग सुन रहे हैं उनको, क्या आपने धुन बनाई, किस तरीके से दिमाग में?
5: वो तो जो डायरेक्टर्स के निर्देश होते हैं उन निर्देशों का पालन करके कोई भी कंपोजर गाने कंपोज करता है, लिखता है, तो सौभाग्य से मैंने कंपोज किए इनके निर्देशन में, बात बनी और
4: जंगल। बस अगर आप सुना दें तो बहुत ज्यादा ठीक रहे।
6: युद्ध पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तऋषि सप्तऋषि सप्तऋषि, काय जिद कर रही काय को मर रही, काय जिद कर रही काय को मर रही, ऐसे वर खेलाने कैसे भर के लाने, जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर ऐसा, जाके शीश पे गंगा और गले पे डारे फिर ऐसा, इतने सीधे साधे हैं सब कहते बोले नाथ बोले नाथ।
4: ये आप 16वें दिन तक फिल्म बिल्कुल नहीं गुमनाम बनी रही, 17वें दिन से इसका शुरू हुआ, क्या कहेंगे उसकी?
7: तो 14 दिन तक एक्चुअली फिल्म जो है ना, क्योंकि सिर्फ 27 थिएटर में थी और हमको ऐसा लग रहा था कि फिल्म जो है ना शायद उतर भी जाएगी, बड़ी फिल्म और आ रही थी, लेकिन लेकिन जो है 15वें दिन से हमारी फिल्म के साथ में कुछ ऐसा होना शुरू हो गया, जनता ने ज़मीन से उठा के फिल्म को जो है ना ऊँचाइयों तक पहुँचा दिया और उसके लिए मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि जनता का ही सबसे बड़ा धन्यवाद मुझे देना चाहिए। और क्योंकि उन लोगों ने जो है ना रील्स बनाने शुरू किया और बोला कि ये फिल्म के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा, ये फिल्म जो है ना इतनी अच्छी फिल्म है, हमारे बच्चों को भी दिखाई देनी चाहिए ये फिल्म, तो इस तरह से जो है ना होते होते फिल्म जो है ना अचानक से परवान चढ़ गई और जनता ने इस फिल्म को जमीन से उठा के, क्योंकि इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाए थे हम लोग, तो जनता ने इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया और हमारे जो है वो मतलब हमारी फिल्म को लेकर और अच्छी कहानियों को कहने के को लेकर हमारी जो है ना विश्वास को बढ़ा दिया।
4: नीम करोली बाबा की भी कृपा मानेंगे इसको
7: पूरी तरह से? नीम करोली बाबा की कृपा है। पहले सबसे पहले बात तो ये बात हमको बतानी चाहिए कि उनकी कहानी है ये, हमारी कहानी तो बाद में है, हमने तो कहानी बाद में बोली, लेकिन महाराज जी की कहानी है जिस कहानी को बोल रहे थे हम, और वो कहानी इतनी बड़ी हो गई और महाराज जी की कृपा और हनुमान जी कृपा से के ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें।
4: इस कामयाबी के बाद आगे का क्या प्लान है, प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद क्या प्लान?
7: इस फिल्म को अभी जब तक तो ये थिएटर्स में लगी है तब तक हम इस फिल्म को प्रमोट करते रहेंगे, हम इस फिल्म को जगह जगह ले जाते रहेंगे, ये हमारा उद्देश्य है और इसको जन जन तक पहुंचाना है। बच्चों को फिल्म दिखानी है क्योंकि फिल्म बच्चों को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई गई है कि बच्चों को महत्व पता चले, हनुमान चालीसा का महत्व पता चले।
4: जीवन से कितना आप बदलाव महसूस कर रहे हैं क्योंकि पर्दे पर आपने ईश्वर की पूरी इस एक कृपा को उतारा है और किरदार निभाने वाले के जीवन पर क्या असर पड़ा है, क्योंकि ये बड़ा दिव्यात्मक भूमिका पर्दे पर आप लाए?
7: जी, तो कहीं ना कहीं जो है ना हम सबके जीवन में परिवर्तन हमें महसूस भी हो रहा है, जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है, सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि हमें ईश्वर को सरेंडर करना यानी उनको समर्पित करना अपने आप को सीखा है हमने, क्योंकि जब जब हम किसी समस्या में फंसते थे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते पूरी टीम ने ऐसा महसूस किया कि हमारी जो है ना समस्याएं थी वो रिजॉल्व हो जाती थी, तो इसलिए सब सारी टीम मेम्बर्स ने इस बात को महसूस किया है और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि हमने ईश्वर को ईश्वर में श्रद्धा होने के अलावा आपको उनमें विश्वास रखना बहुत आवश्यक है, उनको सरेंडर करना आपको पता होना।
4: उत्तर प्रदेश में आपको इसको लेकर क्या लग रहा है, कैसे लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितना देख रहे हैं, क्योंकि लोग तो नंगे पैर भी जा रहे हैं मॉल में?
7: जी बहुत सारे उत्तर प्रदेश के, जैसे गोरखपुर में किसी ने प्रसाद बंटवारा को बांटना वितरण करना शुरू कर दिया, आगरा में थिएटर थे जहाँ पे उन्होंने ऐसे जो फटके होते हैं उन्होंने नाम नाम के फटके जो है ना बांटे, हमने वहाँ जाके हनुमान चालीसा भी की, बहुत सारे जगहों पे लोग चप्पलें भी अपने उतार रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादातर हो रहा है और ये इसका कारण ये है कि फिल्म उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की ये लोगों द्वारा बनाई गई है और उत्तर प्रदेश की कहानी, मतलब जी श्री निकोली बाबा महाराज जी यहीं के यहीं पैदा हुए थे और यहीं पे उनका देहावसान।
2: आस्था जब पर्दे पर उतरती है तो कहानी सिर्फ कहानी नहीं रह जाती, वो लोगों की भावनाओं से जुड़ जाती है। कुछ ऐसा ही असर देखने को मिल रहा है फिल्म हनुमान अंश में, जिसकी कामयाबी ने सभी को एक पुरानी मगर ऐतिहासिक फिल्म की याद दिला दी है। 51 साल पहले जब संतोषी माँ रिलीज हुई थी तो लोग फिल्म देखने नहीं बल्कि भक्ति भाव से थिएटर पहुंचते थे, तब जय संतोषी माँ ने रिकॉर्ड बनाया था। आज हनुमान अंश उसी रास्ते पर है। रिपोर्ट देखिए।

सप्तऋषि। ठेठ देसी अंदाज में शिव पार्वती की शादी की कहानी, भोलेनाथ की खूबियां और पार्वती की जिद। फिल्म हनुमान अंश का ये भजन अपनी भाषा बोल साज और आवाज की वजह से वायरल है और फिल्म की कामयाबी में इसका अपना योगदान भी है।

0: भोलेनाथ।
1: लेकिन ये भी गजब का इत्तेफाक है कि 51 साल पहले फिल्म में इस्तेमाल की गई एक आरती इसी तरह आम लोगों की आस्था से जुड़ी थी और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि फिल्म ने कामयाबी का अनोखा कीर्तिमान बना दिया। साल था 1975 जब फिल्म शोले बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही थी। उसी वक्त एक छोटे बजट की फिल्म आई, नाम था जय संतोषी मां, जो देखते ही देखते ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। इस वक्त जब बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश कीर्तिमान पर कीर्तिमान बना रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जय संतोषी मां की सफलता की कहानी दोहराई जा रही है। 30 मई 1975 को रिलीज हुई थी जय संतोषी मां। करीब 25 से 35 लाख के बजट में बनी थी ये फिल्म। 5 करोड़ से ज्यादा कमाकर एक ऐसी मिसाल बनाई जिसे दशकों तक चुनौती नहीं दी जा सकी। फिल्म ने करीब 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों में अपनी पकड़ बनाए रखी और गोल्डन जुबली का दर्जा हासिल कर लिया। उसी साल 15 अगस्त को रिलीज हुई शोले के सामने भी इसका कलेक्शन कमजोर नहीं पड़ा। कहते हैं उस दौर में फिल्म का क्रेज ऐसा था कि सिनेमाघर सिर्फ सिनेमाघर नहीं थे, लोग सिर्फ फिल्म देखने नहीं जाते थे बल्कि भक्ति भाव से आरती की थालियां लेकर थिएटर जाते थे। जब फिल्म में आरती होती थी तो अपनी सीटों से उठकर पूजा करने लगते। यकीनन दौर बदला, दर्शक बदले, फिल्म भी बदल गई, लेकिन आस्था और भक्ति भाव तो जस का तस है। और यकीनन हनुमान अंश की कामयाबी में बजरंगबली से जुड़ी आस्था अहम है, उनके साथ नीप करौरी बाबा से जुड़ी भावना है। गोरखपुर के मॉल की ये तस्वीरें देखिए। जब दर्शक सिनेमा हॉल से फिल्म देखकर निकले तो उन्हें लड्डू और पानी की बोतल के साथ सुंदरकांड या हनुमान चालीसा भेंट की गई। हनुमान अंश की चमत्कारिक सफलता असल में बॉक्स ऑफिस के किसी ट्रेड को फॉलो नहीं करता बल्कि इसके पीछे माउथ पब्लिसिटी की ताकत है। धीमी शुरुआत हुई पर जैसे जैसे लोगों ने इसे देखा और पसंद किया, सोशल मीडिया पर इसके चर्चे होने लगे और कमाई ने रफ्तार पकड़ ली। यहाँ तक कि बाबा का किरदार निभाने वाले शुभनव सत्ते रातों रात स्टार बन गए।
2: जनता बहुत ही फिल्म हमारी पसंद कर रही है और जनता ऐसे ही प्यार हमको देती रहे और खूब सारा प्यार जो हम अभी पा रहे हैं वो उनकी वजह से पा रहे हैं। और फिर से मैं सारी जनता का और आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा।
1: छोटे बजट की इस फिल्म ने बड़ा कीर्तिमान रचा और इस हिसाब से फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को नया रास्ता दिखा रही है। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि ऐसी कामयाबी सिर्फ धार्मिक वजहों से है। जानकार मान रहे हैं कि इसमें फिल्म की कहानी, डायरेक्शन, गीत संगीत यानी कई फैक्टर्स मायने रखते हैं।
3: सबसे पहले तो इन सबको बहुत बहुत बधाई कि इनकी फिल्म इतनी सक्सेसफुल हुई और इन्होंने जिस हिम्मत का परिचय दिया है उसके लिए तो मुझे इनको सलाम करना चाहिए, क्योंकि सबसे मुश्किल काम इस इंडस्ट्री में कम अगर आपके पास पैसे नहीं है, कम पैसे में कोई प्रोजेक्ट को खड़ा करना, उसे बनाना, उसको रिलीज कर देना, वहां तक की जो फाइट है वो इतनी मुश्किल है कि कोई उसको बयान नहीं किया जा सकता।
1: देखा जाए तो हनुमान अंश की कामयाबी दर्शकों के बदलते मिजाज की ओर भी इशारा कर रही है। ये बात सही है कि हाल के दिनों में बड़े बजट की बड़ी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गड़े हैं, लेकिन जब कभी धर्म के साथ समाज और पारिवारिक मूल्यों वाली फिल्में आती हैं उनको भी खूब पसंद किया जाता है।
4: टॉम क्रूज की, शाहरुख खान की, सलमान खान की कहानियों में इंटरेस्ट नहीं है, इंसान को एक अपनी कहानी सुनने में इंटरेस्ट है। जो आपने बोला ना कि पारिवारिक मूल्यों की बात हो रही है यहाँ पे, तो इंसान को अपने परिवार घर की चीजें सुनने का में इंटरेस्ट है। और नो डाउट इन दैट पिछले कुछ सालों में जो धार्मिक पिक्चर्स हैं, आपने नरसिम्हा देखी, वो तो एनिमेटेड मूवी थी, कितनी हिट हुई। जिस वक्त सिनेमा में लोग नहीं जा रहे थे, मैं देख रहा था कि हर मतलब पंथ के लोग वहां पर जा रहे हैं। आपने देखा जब कोविड के दौरान दोबारा से रामानंद सागर जी की रामायण को टेलीकास्ट किया गया था, सबने देखा वो चीज। तो क्या है ना, सनातन धर्म की जितनी भी कहानियां हैं वो पूजा विशेष है ही नहीं, वो लाइफस्टाइल विशेष है, वो आस्था विशेष है और वो कहीं ना कहीं शिक्षा विशेष है। वो शिक्षा आपको बताती है।
1: आपको ये भी बताते चले कि हनुमान अंश इकलौती फिल्म नहीं है जो धार्मिक बैकग्राउंड पर बनी है और खूब कामयाब भी हुई है। हाल के वर्षों में ऐसी कई फिल्मों ने धूम मचाई है। 2022 में आई फिल्म कार्तिकेय 2 भगवान कृष्ण की कहानी पर बनी थी। 15 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 121 करोड़ की कमाई की। साउथ में ही बनी हनुमान ने 2024 में 350 करोड़ का कारोबार किया, जबकि लागत सिर्फ 40 करोड़ की थी। इस लिस्ट में एनिमेटेड फिल्मों में कामयाबी का नया इतिहास रचने वाली महाअवतार नरसिम्हा भी शामिल है। 40 करोड़ में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 325 करोड़ की कमाई की। गुजराती फिल्म लालो कृष्ण सदा सहाय थे भी इस लिस्ट में है। भगवान कृष्ण की भक्ति को समर्पित इस फिल्म ने 122 करोड़ का कारोबार किया है। यानी हर दौर में धार्मिक कहानियों पर बनी अच्छी फिल्मों ने लोगों का दिल जीता है। ये बात और है कि जैसी कामयाबी फिल्म हनुमान अंश को मिली है सभी को नहीं मिलती, इसलिए आप चाहें तो इसे चमत्कार कह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: खास कार्यक्रम में तय देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: महाराज के अकोला में गणेश उत्सव को लेकर गजब का उत्साह। शास्त्री नगर में चिंतामणि गणपति बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का भव्य स्वागत, आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमान। राजधानी दिल्ली पर चढ़ने लगा गणेश उत्सव का रंग, स्ट्रीट स्टोर्स में जोर शोर से हो रहा है बप्पा के प्रिय मोदक का निर्माण। खूबसूरत मूर्तियों से सजे बाजार, तो कहीं घरों में मिट्टी से बने गजरा। अकोला में पोला उत्सव की जोरदार तैयारियां, बैलों को सजाने के लिए रंग बिरंगी रस्सियां, घुंघरू और पट्टे खरीद रहे हैं किसान। ऋषभ राजा के प्रति सम्मान दर्शाता है पर्व। रामनगर अयोध्या से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा, मानदेय में 50% इजाफे के साथ मिलेगा 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। लखनऊ में हरमान अंश की टीम से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा नीब करौरी के जीवन पर बनी फिल्म को देश भर से मिल रहा है प्यार, बॉक्स ऑफिस पर हर दिन बना रही है नए रिकॉर्ड्स। वडोदरा में 6000 से ज्यादा युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का मेगा इवेंट, समारोह में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम, 35000 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: अकोला में 30 फीट ऊंचे चिंतामणि गणपति बप्पा का हुआ भव्य आगमन, ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर भक्त चूमे। सिविल लाइन चौक पर बप्पा के मुख से लाल कपड़ा हटाया गया, दर्शन होते ही पूरा चौक गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष से गुंजायमान हुआ। चिंतामणि बप्पा के भव्य स्वरूप के दर्शन करने के लिए सैकड़ों भक्त पहुंचे, हर कोई बप्पा के दर्शन करने के साथ तस्वीर और वीडियो बनाता हुआ नजर आया। बप्पा के स्वागत में शानदार फायर शो और आतिशबाजी भी की गई। चिंतामणि गणपति यानी सभी की चिंता हरने वाले बप्पा से भक्तों ने प्रार्थना की। जैसलमेर में अनोखा गणेश मंदिर, यहां पर भक्त पत्थरों से छोटा घर बनाकर भगवान से मांगते हैं अपना आशियाना। 1400 साल पुराना है चुंधी गणेश मंदिर, मान्यता है कि यहां पर सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना पूरी होती है। नदी के बीच विराजे हैं गणपति बप्पा, मंदिर की मूर्ति को लेकर मान्यता है कि ये प्रतिमा खुद हुई थी प्रकट। मंदिर के पास बने हैं सैकड़ों छोटे घर, भक्त इन्हें बनाकर अपने लिए भी घर मांगते हैं। गणेश चतुर्थी पर लगता है भव्य मेला, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। दिल्ली की रुचि गुप्ता 8 साल से घर पर गणपति बप्पा की बना रही है मूर्ति, इस बार भी मिट्टी से बप्पा को आकार देने में जुटी। रुचि गणपति विसर्जन भी घर पर ही करती हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। विसर्जन के बाद पानी पौधों में डालकर इस परंपरा को इको फ्रेंडली बनाया जाता है। चावड़ी बाजार में 35 साल से मोदक की मिठास कायम, श्याम स्वीट्स में आज करीब 25 तरह से मोदक हो रहे हैं तैयार। मोदक बनाने का हुनर महाराष्ट्र से दिल्ली आया। चॉकलेट से लेकर स्ट्रॉबेरी तक मोदक के नए फ्लेवर तैयार, काजू, ड्राई फ्रूट्स और हेजलनट्स वाले मोदक। गणेश चतुर्थी को लेकर झांसी के बाजारों में बढ़ी रौनक, बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए मूर्तिकार। भोलेनाथ के साथ गणेश के अनोखे स्वरूप ने खींचा सभी का दान, मिट्टी की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं। नागपुर में गणपति बप्पा के आगमन की धूम, गणेश उत्सव से पहले सजे भव्य गणपति पंडाल। गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष, गणपति आगमन के साथ शहर में बढ़ी उत्सव की रौनक। दिल्ली में श्री धरणीधर जन्मोत्सव का भव्य आयोजन, धाकड़ समुदाय ने धूमधाम से मनाई भगवान धरणीधर की जयंती। अयोध्या में नए सीईओ जितेंद्र मिश्र की जिम्मेदारी, नई राम मंदिर की प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था संभाली। राम मंदिर के सीईओ जितेंद्र मिश्र बोले, जल्द बताएंगे मंदिर की आगे की क्या योजना है। सूरत में साई युवक मंडल की ओर से भगवान गणेश की भव्य आगमन यात्रा आयोजन किया गया। आगमन यात्रा में भगवान शिव के तांडव की विशेष प्रस्तुति भी दी गई। कोणार्क सूर्य मंदिर की तर्ज पर बन रहा गणेश पंडाल, हर वर्ष अपनी अनूठी कला के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र में पोला पर्व की तैयारियां तेज, किसान 364 दिन साथ देने वाले अपने बैल को एक दिन का खास सम्मान देते हैं। करीब 1.5 महीने से बारिश नहीं होने से परेशान किसान, फसलों पर संकट है। अकोला में बाजार बैलों के श्रृंगार के सामान से सज चुके हैं, रस्सी, घुंघरू वाले पट्टे, झूम और झूल खरीदने में जुटे किसान। पोला के लिए दिन में बैल से खेत में कोई काम नहीं कराया जाता। आर्थिक परेशानी के बावजूद किसान बैल का पोला धूमधाम से मनाएगा, बैल को सजा कर पूरण पूली खिलाई जाएगी। वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेन जी से सीधा संवाद, नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में 6000 से ज्यादा छात्र शामिल। देश के युवाओं और जेन जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से जोड़ना मकसद। प्रधानमंत्री मोदी का मेगा इवेंट के लिए पहली बार बुक माई शो से रजिस्ट्रेशन हुआ, 1 घंटे में फुल हुई सारी सीट्स। डिजिटल एम टिकट और क्यूआर कोड से कार्यक्रम में हुई एंट्री। वडोदरा दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को बांटे नियुक्ति पत्र, 4 नए प्रकार की योजनाओं की घोषणा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख हेल्थ कवर देने की भी घोषणा कर दी, रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग पर जोर। इससे पहले हनुमानगढ़ी जाकर योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आया एक बहुत खूबसूरत इंस्टाग्राम रील, रील में एक बच्ची ड्रम बजाते हुए नजर आई, दूसरे तिरंगा थामे। प्रधानमंत्री मोदी का कैप्शन भी है बड़ा शानदार, जेन जी के बाद जेन अल्फा को मिल रहा है प्रधानमंत्री का प्यार। जापान की वायुसेना है जोधपुर में वीर राग अर्जुन 2026 युद्ध अभ्यास करेंगे, 9 से 22 सितंबर तक चलेगा। इस अभ्यास में भारत के तेजस सुखोई 30 और राफेल लड़ाकू विमान शामिल होंगे। वहीं पर जापान अपने F-2A फाइटर जेट के साथ इस अभ्यास में शिरकत करेगा। दोनों देशों के सैनिक मिलकर युद्ध की तैयारी, मिशन प्लानिंग और सुरक्षा पर अभ्यास करेंगे। राजस्थान के पोखरण में 14 से 16 सितंबर तक होगा ड्रोनाथॉन 2026। वायुसेना के इस कार्यक्रम में देश की कंपनियां शिरकत करेंगी। ड्रोनाथॉन में निगरानी, झुंड में उड़ने वाले ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर जोर। बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं का 3 महीने का वर्षावास हुआ शुरू। बारिश में जमीन पर छोटे छोटे जीव निकलते हैं, इसलिए भिक्षु बाहर नहीं घूमते। किसी जीव को पैर से नुकसान न पहुंचे, इसलिए किया जाता है वर्षावास। बौद्ध धर्म में वर्षावास की परंपरा बहुत खास मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी एक जगह पर 24 बार वर्षावास किया। वर्षावास के दौरान भिक्षु सुबह शाम ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। 3 महीने का वर्षावास पूरा होने के बाद कठिन चीवर दान की भी पराई जाती है परंपरा। दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा चाक चौबंद, NSG और दिल्ली पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई हाई लेवल काउंटर टेररिज्म मॉक ड्रिल, हर तरह के आतंकी हमले इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयारी। भारतीय सेना की बड़ी सफलता, चिनूक से अल्ट्रा लाइट होबिट्ज़र का चुनौतीपूर्ण इलाके में तैनात करने का सफल परीक्षण। मिस्र के एल अलमीन एयर शो में आज दिखेगा भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर का दमखम। आसमान में सटीक फॉर्मेशन से दर्शक होंगे रोमांचित, का सारंग टीम पेश करेगी डॉल्फिन टीम। 11 सितंबर को दिल्ली में बंद रहेंगे स्कूल्स, ब्रिक्स समिट को देखते हुए फैसला। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के घायलों से मिलने एम्स अस्पताल पहुंची रेखा गुप्ता, जाना हालचाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घायलों को सौंपे 5-5 लाख रुपए के चेक, इलाज का पूरा खर्च उठाएगी दिल्ली सरकार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यशवंतपुर APMC मार्केट का किया औचक निरीक्षण। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के मार्केट में किसानों और मजदूरों के साथ उन्होंने नाश्ता भी किया, उपज की क्वालिटी और कीमत को लेकर चर्चा की। हरिद्वार में बारिश के उफान पर चलते बरसाती है नाली, एक बच्ची का सफल रेस्क्यू हुआ। मालदा में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बिगड़ गए हालात, स्वास्थ्य केंद्र भी हुआ प्रभावित। लगातार बारिश से बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, रिहायशी इलाकों में गुजरा पानी। मोतिहारी में भीषण बारिश से इलाकों में भरा पानी, स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी। बिहार में गंभीर हुए बाढ़ के हालात, भागलपुर में NH-80 पर 2 फीट पानी बढ़ा। चीन में रोबोट फैक्ट्री शुरू, एक्सपेंग में इंसानों जैसे रोबोट तैयार किए। रोबोट खुद असेंबल होकर फैक्ट्री से बाहर चला, यानी अब रिसर्च से सीधे उत्पादन की ओर कदम। एक्सपेंग के रोबोट में 3 खास AI चिप भी लगी हुई हैं। इस ह्यूमनॉइड रोबोट के शरीर में 76 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक्सपेंग 2026 के आखिर तक इन रोबोट्स का मास प्रोडक्शन शुरू करने की तैयारी में है। इंसानों की तरह रोबोट ने एक साथ डांस किया और रिपोर्ट्स के अनुसार हाथ भी मिलाया। रोबोट प्रदर्शनी में आने वाले लोगों को रास्ता भी दिखा रहे हैं। चीन के कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट अब मेट्रो स्टेशन पर भी तैनात किए गए, यहां पर लोगों को मदद कर रहे हैं। ये रोबोट लोगों की बात समझकर जवाब दे सकते हैं और जरूरत के हिसाब से मदद भी कर सकते हैं। चीनी टीम शानडोंग में नई तकनीक को तेजी से उद्योगों तक पहुंचाने में जुटी हुई है। यूनिट्री रोबोटिक्स के ह्यूमनॉइड रोबोट ने किक बॉक्सिंग में दिखाया कमाल। यूनिट्री ने पहली बार पूरी तरीके से ऑटोनोमस कॉम्बैट, यानी इंसान के उसे दूर से कंट्रोल नहीं किया गया। पीडीओ में रोबोट लगातार हमला और बचाव करता हुआ नजर आया। मिनिट्री का दावा है कि ये काम रोबोट की बड़ी तकनीकी क्षमता दिखाता है। कंपनी अब ऐसे रोबोट्स को असली दुनिया में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने में संभावना दिख रहा है। इस रोबोट ने दिखाया कि मशीन बिना हर कदम बताए तेजी से फैसला ले सकती है। चीन में एक अरब साल पुरानी गुफा में हुआ खासा कॉन्सर्ट पत्थरों से टकराकर संगीत की आवाज ने बनाया माहौल को और शानदार। चीन की इस प्राकृतिक गुफा में संगीत की आवाज चट्टानों से टकराकर दूर तक गूंज रही है। गुफा में बैठे लोगों ने संगीत को बिल्कुल अलग तरीके से महसूस किया। प्राकृतिक माहौल ने बना दिया और शानदार। गुइझोउ में प्रकृति और कला को साथ लाने की हो रही है कोशिश। अब गुफाओं जैसी प्राकृतिक जगहों पर कला और संगीत के मंच में बदल रहा। चीन के इस गुफा में संगीत और प्रकृति का अद्भुत नजारा। ब्रुकलिन की सड़कों पर सुबह 6 बजे से जा ओवर्ट उत्सव हुआ शुरू। सूरज निकलने से पहले ही लोग जा ओवर्ट के लिए सड़कों पर जुटे। संगीत और डांस जा ओवर्ट का मतलब है दिन की शुरुआत और इसकी जड़ें त्रिनिदाद टोबैको के कार्निवल में। जमैका, हैती और क्यूबा जैसे देशों से आए लोगों ने उत्साह में हिस्सा लिया। अमेरिका में बसे इन लोगों ने अपनी पुरानी जड़ों और संस्कृति को जाना। ब्रुकलिन में जा ओवर्ट के बाद बड़े वेस्ट इंडियन डे परेड की तैयारी हो गई। पूरे इलाके में कैरिबियन संगीत। क्यूबा के लोरेंजो सुआरेस ने घर में उगाए 100 से ज्यादा ऑर्किड की किस्म है। लोरेंजो पहले टमाटर, चावल और दूसरी फसलों पर काम करते थे। 2009 में उन्होंने क्यूबा का पहला सजावटी हाइब्रिड ऑर्किड बनाया। क्यूबा के जंगलों में कई दुर्लभ ऑर्किड खतरे में हैं। लोरेंजो ऐसे नए फूल बना रहे हैं। लोरेंजो ऐसे हाइब्रिड ऑर्किड तैयार कर रहे हैं जो बढ़ती गर्मी को सहन भी कर सके। क्यूबा में ऑर्किड की करीब 300 देशी प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इसमें से कई खतरे में हैं। ग्रीस के अटिका जूलॉजिकल पार्क में 3 सुमात्रन टाइगर शावकों का पहला हेल्थ चेकअप हुआ। तीनों शावक पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और मां के साथ अच्छे से बढ़ रहे हैं आगे। डॉक्टर के मुताबिक मां उन्हें जंगल में जीने की जरूरी हुनर सिखा रही हैं। टाइगर शावकों के साथ नाम ओडीसी से प्रेरित रखे जाएंगे। उनके पिता आर्गोस की करीब 1 महीने पहले मौत हो गई थी, इसलिए नाम उनके सम्मान में रखे जाएंगे। सुमात्रा टाइगर दुनिया के सबसे दुर्लभ बाघों में गिने जाते हैं। जंगल में सिर्फ 600 शेष। शवों की सुरक्षा करने के लिए चिड़ियाघर अहम भूमिका निभा रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक यहां पर अलग अलग चीने वाले बाघों को बचाने के लिए भी दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित किया जा रहा है।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोग
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: कहते हैं मन में जब भगवान के प्रति अटूट आस्था हो तो मुश्किल हालात भी आसानी से गुजर जाते हैं। ऐसी दो तस्वीरें अब आपके लिए हम लेकर आए हैं, एक है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की, दूसरी है मध्य प्रदेश के मुरैना की। दोनों ही इलाकों में भयंकर बाढ़ है, लोग सुरक्षित ठिकानों का रुख कर रहे हैं, लेकिन चित्रकूट और मुरैना में दो ऐसे मंदिर हैं जहां के साधुओं ने बाढ़ में गिरे मंदिरों से बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया। प्रशासन की टीम उन्हें वहां से लेने पहुंची, लेकिन उन्होंने अपने आराध्य को अकेला छोड़ने से मना कर दिया।
3: जब मन में भगवान के प्रति आस्था हो तो भय का वजूद खत्म हो जाता है, जब भक्ति अटूट हो तो मौत का खौफ भी इंसान के कदम डिगा नहीं सकता। भारत की इस पावन धरा पर ईश्वर के प्रति यही निष्ठा युगों युगों से चलती आई है। इसी की मिसाल मध्य प्रदेश के मुरैना और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में देखने को मिली। चारों तरफ बाढ़ का पानी, हालात ऐसे कि हर कोई महफूज ठिकानों का रुख कर रहा है, लेकिन भक्ति की ताकत के आगे बाढ़ की आपदा भी छोटी पड़ जाती है। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की, जहां उफनती आसन नदी ने सिद्ध बाबा मंदिर को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए जब SDRF की रेस्क्यू टीम नाव की मदद से सिद्ध बाबा मंदिर के साधु को वहां से सुरक्षित जगह तक ले जाने के लिए पहुंची, लेकिन उन्होंने सुरक्षित स्थान पर जाने से साफ इनकार कर दिया। बाबा का कहना था कि मंदिर में वर्षों से अखंड ज्योति जल रही है और वो अपने भगवान और इस पावन ज्योति को बीच मझधार में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। बाढ़ के पानी से घिरे होने के बावजूद संत मंदिर के अंदर ही रुककर अपना भोजन खुद बना रहे हैं और निरंतर पूजा अर्चना में लीन हैं। अतः भक्ति की ऐसी ही एक और भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई चित्रकूट से, जहां मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट का ऐतिहासिक बड़ा मठ मंदिर धीरे धीरे डूबने लगा। हालात बिगड़ते देख खुद DM पुलकित गर्ग और SP अरुण कुमार भारी प्रशासनिक अमले के साथ मंदिर परिसर पहुंचे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे अधिकारी मंदिर के पुजारी से गुहार लगाते हैं। DM ने मिन्नतें की कम से कम बाढ़ उतरने तक मंदिर खाली कर दें, लेकिन पुजारी का जवाब सुन अधिकारी भी निशब्द हो गए। पुजारी ने बेहद शांत भाव से कहा, पूरी जिंदगी भगवान के चरणों में गुजारी है, आज इस संकट की घड़ी में अपने प्रभु को अकेला कैसे छोड़ दो, जो होगा भगवान की इच्छा से अच्छा ही होगा।
8: आप देखिए, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, उसके लिए जिम्मेदार है ना, और आप जिम्मेदार हैं सभी के लिए। तो आप आइए आइए, लोग आपका वेट कर रहे हैं।
9: ताला लगाई
8: है ना, ये सुरक्षित रहेगा,
9: बाकी लोगों को जाने की अनुमति दीजिए,
10: बाकी लोग जा सकते हैं।
3: पुजारी के हठ और निष्ठा के आगे आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। हालांकि पुजारी के कहने पर मंदिर के दूसरे सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन मुख्य पुजारी प्रभु की सेवा में वहीं डटे रहे और अधिकारियों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। चित्रकूट से अखिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
10: क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति बहुत साहसी हो जाता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति के अंदर बहुत आकर्षण पैदा होता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति को बड़ी सारी संपत्ति का फायदा होता है? क्या मंगल दोष होने से भी हो सकता है लाभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: महाराष्ट्र के अकोला में गणेश उत्सव को लेकर गजब का उत्साह। शास्त्री नगर में चिंतामणि गणपति बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का भव्य स्वागत, आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमान। राजधानी दिल्ली पर भी चढ़ने लगा गणेश उत्सव का रंग, स्वीट स्टोर्स में जोरदार तरीके से बप्पा के प्रिय मोदक का निर्माण, खूबसूरत मूर्तियों से सजे बाजार, तो कहीं घरों में मिट्टी से बने गजानन। अकोला में पोला उत्सव की जोरदार तैयारियां, बैलों को सजाने के लिए रंग बिरंगी रस्सियां, घुंघरू और पट्टे खरीद रहे हैं किसान। वृषभ राजा के प्रति सम्मान दर्शाता है यह पर्व। रामनगरी अयोध्या से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा, मानदेय में 50% इजाफे के साथ मिलेगा 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। लखनऊ में हनुमान अंश की टीम से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाबा नीब करौरी के जीवन पर बनी फिल्म को देश भर से मिल रहा प्यार, बॉक्स ऑफिस पर हर दिन बना रही है नए रिकॉर्ड्स। वडोदरा में 6,000 से ज्यादा युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का मेगा इवेंट समारोह में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम, 35,000 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मंगल दोष के बारे में। अधिकतर लोगों का मानना है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष होता है तो कुछ ना कुछ अशुभ जरूर होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि मंगल दोष होने से भी आपके जीवन में आ सकते हैं बहुत सारे लाभ और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिससे आपकी जिंदगी ही बदल सकती है। लेकिन उस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अपने घर में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन एक ही बर्तन में न तो पकाइए और न परोसिए। ऐसा करने से घर के भोजन में कभी पवित्रता नहीं रह पाएगी और आपके घर में उसी थाल में आप नॉनवेज खाते हैं, उसी थाल में भगवान को भोग लगाते हैं, तो ऐसा भोग स्वीकार नहीं होगा, ऐसी पूजा पवित्र नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिए।
0: और आइए जानते हैं पंडित जी से कि मंगल दोष का आखिर अर्थ क्या है।
1: जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो मंगल दोष के जीवन में फायदे भी होते हैं। क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, मंगल दोष के, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मंगल दोष का अर्थ क्या होता है। किसी भी कुंडली में मंगल की विशेष स्थिति को मंगल दोष कहा जाता है। मंगल अगर कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में बैठा हो तो इसको मंगल दोष कहते हैं। दक्षिण भारत में कुंडली के दूसरे भाव में भी मंगल बैठा हो तो इसको भी मंगल दोष कहा जाता है। माना जाता है, लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कुंडली में मंगल दोष है तो ये स्थिति नकारात्मक ही होती है। इससे वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य में समस्या अवश्य होती है। लोग मंगल दोष को ज्यादातर बुरा और ज्यादातर निगेटिव मानते हैं, लेकिन मंगल दोष के विशेष लाभ भी जीवन में पाए जाते हैं। मंगल के दोष के नुकसान अवश्य हैं, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं है, लेकिन मंगल दोष के कभी कभी बहुत सारे फायदे भी होते हैं जो हम आपको बताएंगे कि मंगल दोष के फायदे और नुकसान क्या हैं।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मंगल दोष के बारे में। अगर मंगल प्रथम भाव में हो तो इसके लाभ और इससे क्या क्या हानि हो सकती है, आइए जानते हैं।
1: अगर मंगल कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हो तो क्या फायदा क्या नुकसान। अगर मंगल कुंडली के लग्न में बैठा है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होता, चेहरे पर खासतौर से गालों पर एक लालिमा रहती है। लग्न में जब मंगल प्रथम भाव में बैठता है तो व्यक्ति अपनी माता और जीवन साथी के प्रति खराब व्यवहार करता है और इस वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या आ जाती है। फायदे क्या हैं? अगर लग्न में मंगल बैठा है तो व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है, कठिन से कठिन स्थितियों में भी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। यानी अगर लग्न में मंगल होगा तो आदमी साहसी होगा, मुश्किलों का सामना कर लेगा। इस मंगल के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए नियमित रूप से गुड़ का सेवन करना चाहिए और लाल रंग का प्रयोग जीवन में कम से कम करना चाहिए।
0: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिख रहा है, परिवार में व्यस्तता रहेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और आइए अब जानते हैं कि अगर मंगल चतुर्थ भाव में हो तो इसके लाभ क्या है और इससे क्या क्या हानि है जो हो सकते हैं।
1: अगर मंगल चतुर्थ भाव में है तो इसकी हानियां क्या हैं और इसके लाभ क्या हैं। चतुर्थ भाव का मंगल दोष सबसे कम अशुभ प्रभाव पैदा करता है, लीस्ट डेंजरस है, सबसे हल्का मंगल दोष है। ये मंगल वैवाहिक जीवन में तालमेल में समस्या देता है, बिना वजह के पति पत्नी के बीच में डिफरेंसेस पैदा होते हैं। ऐसे लोग जिनका चतुर्थ भाव में मंगल होता है, ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली और बड़े आकर्षक होते हैं, ताकतवर बहुत होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। चतुर्थ भाव के मंगल की वजह से अगर दिक्कत आ रही है तो हनुमान जी की उपासना करने से लाभ होगा और घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था

0: रखें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया आज के सवालों का, जिसके जवाब पंडित जी आपको देते हैं। और वक्त है पहले सवाल का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: आज का पहला प्रश्न नम्रता ने हमें लिखा है और नम्रता हमें मेल लिखती हैं बरेली उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 19 जून 1986। जन्म का समय रात में 11:10। जन्म स्थान है मुरादाबाद। मेल लिखती हैं बरेली से। ये लिख रही हैं कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो भविष्य हमारा कैसा रहेगा। नम्रता, आपको बता दें कि आपकी कुंडली के हिसाब से आर्थिक स्थिति देखो कुल मिला के मध्यम रहेगी, लेकिन इतना जरूर रहेगा कि जीवन आराम से चल सके। 2027 के आरंभ होने के साथ स्थितियां बेहतर होंगी, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। दो काम करिए, रोज सुबह और शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिए और रोज सुबह जितना दिन कर सकें सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल डालिए, आपको लाभ होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप हमें सवाल भेजना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का दूसरा सवाल वो किसका लेंगे।
0: जी, अगला प्रश्न प्रशांत जी ने हमें लिखा है और प्रशांत जी हमें अमृतसर पंजाब से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 जनवरी 1973। जन्म का समय शाम के 6:00। जन्म का स्थान है गुरदासपुर पंजाब। ये कह रहे हैं कि मैं काफी समय से अपना मकान बनाने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन मकान नहीं बन पा रहा है,

0: कोई ना कोई अड़चन उसमें आ रही है, तो मैं अपना मकान कब तक बना पाऊंगा और अड़चनों को दूर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? 6 से 8 महीने लगेंगे, अगले साल के अप्रैल मई के बाद आप नए मकान में शिफ्ट हो पाएंगे। मंगल की गड़बड़ी की वजह से इसमें बार बार बाधा आ रही है, तो सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं या गुड़ का दान करें तो काफी बेहतर होगा।
1: तो चलिए जानते हैं कि अगर मंगल सप्तम भाव में हो तो इससे हमारे जीवन में क्या क्या लाभ हो सकते हैं और किस तरह की हानि है जो हमें हो सकती है।
0: अब अगर मंगल किसी की कुंडली के 7वें स्थान में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, तो इसके नुकसान क्या हैं और इसके फायदे क्या हैं? देखिए, सप्तम भाव में जब मंगल बैठता है तो ये व्यक्ति के अंदर उग्रता और हिंसा, एग्रेशन और वायलेंस पैदा करता है। इसकी वजह से व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा उपद्रव करता है और इस मंगल की वजह से अक्सर वैवाहिक जीवन में मारपीट और हिंसा आ जाती है। सब सप्तम भाव के मंगल का फायदा ये है कि ये मंगल संपत्ति और संपत्ति संबंधी कार्यों में लाभकारी होता है। ऐसा व्यक्ति बड़े पद पर रहता है और ढेर सारी संपत्तियों का स्वामी होता है। इस मंगल के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए मंगलवार का उपवास रखें और एक तांबे का छल्ला मंगलवार को अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में धारण करें। सप्तम भाव के मंगल का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा।
1: और आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी, चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, सेहत बिगड़ सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के निवेश में सावधानी रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: इससे पहले हमने जाना कि अगर मंगल सप्तम भाव में है तो उसके क्या लाभ और हानि हो सकते हैं, और अब बारी है मंगल के अष्टम भाव में होने की। तो अगर आपका मंगल अष्टम भाव में है तो उससे क्या है जो आपके जीवन में लाभ हो सकते हैं, खुशियां आ सकती हैं, और किस तरह की हानि है जो आपके जीवन को बदल सकती है, आइए जानते हैं।
0: अगर मंगल कुंडली के आठवें स्थान में बैठा हो तो इसके नुकसान क्या है और इससे फायदा क्या होता है। देखिए, अगर मंगल अष्टम भाव में है तो ये सबसे ज्यादा नकारात्मक मंगल है, सबसे ज्यादा निगेटिव मंगल है। ये मंगल वाणी को और स्वभाव को खराब कर देता है। अष्टम के मंगल की वजह से जीवन में अकेलापन भी पैदा होता है और कभी कभी पाइल्स की और त्वचा की समस्या भी हो जाती है। अष्टम का मंगल वैवाहिक जीवन में अलगाव का या दुर्घटनाओं का कारण बनता है। इसका फायदा यह है कि अष्टम मंगल के कारण आकस्मिक रूप से धन का लाभ होता है और व्यक्ति कभी कभी बहुत अच्छा शल्य चिकित्सक, सर्जरी वाला व्यक्ति सर्जन बन जाता है। अगर अष्टम का मंगल है तो इसके दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए रोज सवेरे मंगल के मंत्र का जप करिएगा और हर मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाइएगा।
1: और अब वक्त हो गया है मंगल के द्वादश भाव के बारे में जानने का। अगर आपका मंगल द्वादश भाव में है तो किस तरह का गेम चेंजर ये हो सकता है, किस तरह के लाभ आपके जीवन में इससे आ सकते हैं और किस तरह की हानि आपके जीवन में हो सकती है, आइए जानते हैं।
0: आखिरी मंगल दोष बनता है अगर मंगल कुंडली के द्वादश भाव में हो, यानी कुंडली के 12वें स्थान में हो। ये मंगल 12वें का मंगल भी उतना ज्यादा नकारात्मक नहीं होता। ये मंगल सुख की, भोग विलास की इच्छा को भड़काता है। द्वादश में अगर मंगल हो, 12वें मंगल हो, तो ऐसे लोग किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते। ये मंगल वैवाहिक जीवन में और रिश्तों में अहंकार की समस्या देता है। 12वें स्थान का जो मंगल दोष है ये भी सामान्य नकारात्मक होता है, बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं होता। इसका फायदा यह है कि अगर 12वें स्थान में मंगल है तो व्यक्ति विदेश में बड़ी सफलता पाता है, ढेर सारे लोगों के प्रेम और आकर्षण का पात्र बनता है। द्वादश का मंगल होगा, आप अपने परिवार से, अपने घर से, अपने नेटिव प्लेस से जितना दूर जाएंगे उतना ही आप सफल होंगे। द्वादश के मंगल के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए मंगलवार का उपवास रखना फायदेमंद होता है।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफलों को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, आपके परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, परिवार में समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें, ऑफिस में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और आइए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का तीसरा सवाल वो किसका और कहां से लेने वाले हैं।
0: जी, अगला प्रश्न स्वाति ने हमें लिखा है और स्वाति हमें मेल लिखती हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 24 मई 1994, जन्म का समय 11:30 सवेरे, जन्म स्थान है दिल्ली। स्वाति कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूं और काफी समय से उसमें अड़चन आ रही है, तो क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो पाएगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। स्वाति, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही होगा, जाने पहचाने बालक के साथ, और इस साल के अंत में आपके विवाह हो जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हो सके तो एक बार कुंडली भी बालक की दिखा लीजिएगा, उसमें कुछ कमी है तो विवाह के पहले उसका उपाय कर लीजिएगा ताकि आगे चल करके उसमें कोई मुश्किल ना आए। एक जरकन बनवा लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का जरकन, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक जरकन धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब समय हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए जानते हैं आज का अंतिम और चौथा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न आलोक अग्रवाल ने हमें लिखा है और आलोक जी हमें मेल लिखते हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1980। जन्म का समय सुबह के 9:10। जन्म का स्थान है आगरा। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी में काफी समय से बदलाव की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी नौकरी में बदलाव नहीं हो पा रहा है, तो नौकरी मेरी कब तक बदलेगी और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। आलोक, ज्योतिष के हिसाब से अभी नौकरी बदलने का उचित समय नहीं है, जहां पर हैं वहीं पर रहिए। अप्रैल 2027 के बाद अगर आप नौकरी बदलने का प्रयास करें तो उस समय नौकरी बदलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखिएगा, बिना जरूरत के बिना वजह व्यापार में मत जाइएगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, एक सवाल था, बहुत से लोग, इनफैक्ट हर घर में शायद ये होता होगा कि अगर आप मांगलिक हैं तो आपकी शादी किसी मांगलिक से ही होगी वरना नहीं होगी, वरना शादी में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती, तो क्या सच में ऐसा होता है कि हमारी शादी जो मांगलिक है वो मांगलिक से ही होनी चाहिए?
0: जी देखिए, अगर आपकी कुंडली मांगलिक है तो लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे बेटे की, मेरी बेटी की कुंडली मांगलिक है तो इसकी शादी तो मंगली से ही कराएंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है कि मंगली की शादी मंगली से ही हो जाए तो ठीक है, लेकिन याद रखिए आपको सिर्फ ये देखना है कि मान लिया लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, लेकिन लड़की की कुंडली से अगर लड़के का मंगल कैंसिल हो रहा है तो मंगली हो या ना हो शादी हो सकती है। यानी अगर मान लिया लड़के की कुंडली में मंगल लग्न में बैठा है, कुंडली मांगलिक है, लड़की की कुंडली मांगलिक नहीं है लेकिन लड़की के लग्न में सूर्य बैठा है या राहु बैठा है या केतु बैठा है, उसी भाव में पाप ग्रह बैठे हैं लड़की के जन्मांग में, तो लड़के का मंगल दोष कैंसिल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर मंगल दोष को मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बिल्कुल मत समझिए कि मंगली की शादी मंगली से ही होनी चाहिए। मंगली की शादी करते समय ये देखिए कि आप जिस लड़की से या जिस लड़के से शादी कर रहे हैं उसकी कुंडली से आपका मंगल कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर मंगल कैंसिल हो रहा है भले ही अगला आदमी मांगलिक ना हो तो भी विवाह किया जा सकता है। ऐसा कोई नियम जरूरी नहीं है कि मंगलिक की शादी मांगलिक से ही कराई जाए।
1: जिनका जन्मदिन है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। करियर में इस समय कोई जोखिम, कोई रिस्क ना लें। आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। पूरे साल भर इस मंत्र का जप करें, वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि बहुत सारे लोग फटे हुए कपड़े फैशन में पहनते हैं, खास तौर से फटी हुई जीन्स। तो क्या फैशन में फटे हुए वस्त्र पहनना उचित है? देखिए, फटे हुए वस्त्र दरिद्रता और दुर्भाग्य के प्रतीक हैं। फैशन के तौर पर फटे वस्त्र पहनना उचित नहीं है। हाँ, मजबूरी है, पैसा ही नहीं है, अभाव बहुत है, तो मजबूरी में फटे वस्त्र पहनना एक अलग बात है।
1: गुड लक में हम जानेंगे शुभ पहर के बारे में, तो आइए जानते हैं आज का शुभ पहर कौन सा है।
0: शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है, जो बाधा चली आ रही है, वो बाधा समाप्त होगी।
1: और आइए जानते हैं कि आपकी गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए सप्ताह का कौन सा दिन बहुत शुभ होता है और कौन सा दिन शुभ नहीं होता है। आज की गुड लक राशि है तुला। इनके लिए शनिवार का दिन सबसे ज्यादा अनुकूल रहता है। इनको बृहस्पतिवार के दिन महत्वपूर्ण काम करने से बचना चाहिए।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: बहुत बार ऐसा होता है कि हम नया घर खरीदते हैं, नया फ्लैट खरीदते हैं, और जब नए घर में चले जाते हैं रहने, नए घर में रहने लगते हैं, तो नए मकान में प्रवेश के बाद से समस्याएं आने लगती हैं। क्या करें अगर नए मकान में प्रवेश के बाद समस्याएं आ रही हैं? घर में लगातार 3 रविवार को गायत्री मंत्र से हवन करवा लीजिए। घर के दक्षिण दिशा में ऊपर एक लाल रंग का ध्वज, लाल रंग का झंडा लगा लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर राइट या लेफ्ट एक अनार का पौधा लगा दीजिए। आपके घर की शुभता बढ़ेगी और घर में प्रवेश करने के बाद जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं गायब हो जाएंगी।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे पर। नमस्कार।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बात करेंगे अब गणेशोत्सव की, देखिए जिसके शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए, इसलिए इसकी तैयारियां भी खास तरीके से देखने को मिल रही हैं। बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है, तो अलग अलग थीम पर पंडालों का निर्माण भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र समेत देश भर में गणेशोत्सव को लेकर अभी से भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। गणपति आगमन यात्रा में भक्तों का जबरदस्त उत्साह दिख रहा है।

0: देवों में प्रथम पूज्य बुद्धि के दाता और हर संकट को हरने वाले विघ्नहर्ता। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के नाम से ही होती है और अब वो स्वयं पधारने वाले हैं। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। बाजार गणेशोत्सव के रंग में रंगने लगे हैं। प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भव्य पंडाल सजाए जा रहे हैं। बापा की प्रतिमाओं का आगमन भी हो रहा है, जिसमें भक्तों के उत्साह के जबरदस्त रंग देखने को मिल रहे हैं। नागपुर में धूमधाम के साथ पंडालों में गणपति की मूर्तियों का आगमन हो रहा है। डीजे और ढोल नगाड़ों की धुन पर शानदार आतिशबाजी के बीच भक्त बापा की जयकार करते हुए उन्हें पंडाल तक ले जा रहे हैं। अब गुजरात के सूरत के भटार इलाके में साई युवक मंडल की ओर से निकाली गई भगवान गणेश की भव्य आगमन यात्रा देखने लायक रही। इस यात्रा में भगवान के रूप में मौजूद कलाकार हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। यात्रा के दौरान भगवान शिव के तांडव की विशेष और दिव्य प्रस्तुति भी देखने को मिले। हरियाणा से आए कलाकारों के अघोरी और महाकाली नृत्य की छटा भी बिखरी तो देशभक्ति प्रस्तुति के साथ सामूहिक महाआरती भी की गई। भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा पंडाल स्थल पर पहुंच चुकी है। इस वर्ष यहां ओडिशा के मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर भव्य गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है।
1: कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उसकी थीम पर इस बार भगवान गणेश की स्थापना की जानी है। और मूर्ति की अगर हम बात करें तो मूर्ति का आगमन हो चुका है, जहां आप देख सकते हैं फिलहाल गणेश भगवान की जो प्रतिमा है उसको ढक के रखा गया है। तो इस तरह से सूरत में अलग अलग जगहों पर, अनेक जगहों पर गणेश भगवान की स्थापना की जाती है। गणेश उत्सव के दौरान अलग अलग थीम पर भगवान गणेश के पंडाल तैयार किए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार की मूर्तियां लाई जा रही हैं।
0: महाराष्ट्र और गुजरात के साथ ही देश भर में गणपति प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। दिल्ली NCR में नोएडा से लेकर मयूर विहार तक कलाकार मूर्तियों में रंग रोगन और सजावट के काम में जुटे हुए हैं। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में भी बापा की भव्य मूर्तियां देखने को मिल रही हैं। यहां दो बहनें भी गणेश प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे दिखी, जो स्वयं भी गणपति बिठाती हैं।
2: हम मौजूद हैं दिल्ली के मयूर विहार में और यहां पर आपको तमाम सारी गणेश जी की मूर्तियां दिखाई पड़ रही हैं। कुछ तैयार हो चुकी हैं, कुछ तैयार होने के प्रोसेस में है। ये कितने फीट के हैं गणेश जी?
3: ये 8 फीट के।
2: 8 फीट के हैं। इनको तैयार करने में कितना टाइम लगा?
3: इनको बड़े भाई ऐसे मान के चलो 15-20 दिन लग जाते हैं।
2: इस तरह की अलग अलग डिजाइन के साथ ये तमाम कलाकार इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि मूर्तियाँ पूरी तरह से इको फ्रेंडली बने। नदी वदी के का भी ख्याल रखते हुए कर रहे हो?
3: हाँ, सब वातावरण का करके रख रहे हैं,
2: एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना।
3: हाँ।
0: यूपी में जगह जगह मूर्तिकार गणपति प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं।
4: प्रयागराज में यहाँ गणेश मूर्तियाँ तैयार की जा रही हैं, उसमें रंग भरा जा रहा है और जो यहाँ मूर्तिकार हैं तपसपाल यहाँ पर इन मूर्तियों में रंग भरने का काम कर रहे हैं। छोटी से बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई जा रही हैं। सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पर 10 फीट की है।
0: अच्छी बात यह है कि जगह जगह पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं।
5: ये आज से नहीं है, हम लोग का 1971 से शुरू किया है मेरा पिताजी और हम लोग 4 पीढ़ी से ही है। तो यहाँ पे गणेश जी का मिट्टी पूरा प्योर मिट्टी और गंगा जी का शुद्ध मिट्टी से बनता है और इसमें धान का पैड़ा है और लकड़ी है, बांस है। ये इको फ्रेंडली, पूरा कलर भी हमारा इको फ्रेंडली है।
0: अब झांसी में तैयार की गई भव्य गणेश प्रतिमाओं को देखिए। इस बार भगवान गणेश के पारंपरिक स्वरूप के साथ साथ कई नए और आकर्षक डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ से जुड़ी आकर्षक प्रतिमाओं को लोग खूब पसंद कर रहे हैं।
6: लालबाग के राजा है, जैसे हाथ वाली मूर्ति है, जैसे शंकर जी से कोई सी भी रिलेटिव मूर्तियाँ हैं, सब शंकर जी की ज्यादातर मूर्तियाँ बिकती हैं।
0: यहाँ मोर पंख से लेकर पगड़ी धारण के बापा मौजूद हैं, तो डमरू पर विराजमान और भगवान शिव की पूजा करते गणपति भी हैं। यही नहीं, मूषक के ऊपर हाथ में शिवलिंग और उस पर विराजमान बापा सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित कर रहे हैं।
7: ये सुंदर सबसे अच्छी लगी है, बाकी सब भी सुंदर है लेकिन मुझे ये अच्छी लगी है। इसमें आपको बताएं, ये जो पिंडी है, शंकर जी हैं, उनके जो शिवलिंग पे विराजमान हैं और वो भी हाथ में हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पार्वती जी के हाथ में शिवलिंग और शिवलिंग के ऊपर श्री गणेश।
0: इसी तरह देश भर में गणपति की एक से एक भव्य प्रतिमाएं पंडालों की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब हरियाणा के करनाल की ये तस्वीरें देखी, जहां राजस्थान के एक कारीगर परिवार ने गणपति बाप्पा की सैकड़ों मूर्तियां तैयार की हैं। मूर्तिकार सीताराम समेत परिवार के सभी सदस्य गणेशोत्सव के लिए पिछले 6 महीने से प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं।
8: अभी गणेश तो तैयार करने के मेरे 6 महीना हो गया बनाते बनाते, अभी एक एक मूर्ति में 10 से 12 दिन लग जाते जी, बारीकी काम है।
0: छत्तीसगढ़ के एक परिवार की दिव्य कलाकारी भी देखने लायक है। शिवचरण यादव का मौली धागे से शुरू हुआ गणेश प्रतिमाओं के निर्माण का सफर अब अलग अलग दिव्य मूर्तियों तक पहुंच चुका है। लकड़ी के छाल, बांस, धूप, अगरबत्ती, नारियल के रेशे से लेकर धान, दाल जैसे अनाजों के इस्तेमाल से वो दिव्य मूर्तियां तैयार करते हैं, यानी एकदम इको फ्रेंडली प्रतिमाएं। नागपुर से योगेश पांडे, सूरत से संजय सिंह राठौर, नोएडा से मनीष लड्डा, दिल्ली से मनीष चौरसिया, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, झांसी से अजय झा और करनाल से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: बात करते हैं विघ्नहर्ता के प्रिय भोग यानी मोदक की। गणपति की स्थापना के लिए विसर्जन तक का पूजा पाठ और भक्ति की परंपरा निभाई जाती है। इस दौरान बप्पा को मोदक का भोग लगाना बहुत अहम परंपरा है। दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में एक ऐसी दुकान मौजूद है जो 116 साल पुरानी है और करीब 35 साल से मोदक बना रही है। बदलते वक्त के साथ भगवान गणेश के प्रिय भोग मोदक का रंग रूप ही नहीं बल्कि उसका स्वाद भी बदल रहा है।

0: गणेश, गजानन, गणपति, विनायक, लंबोदर, गौरीपुत्र। पापा के नाम अनेक है लेकिन भाव एक ही है, भक्ति और विश्वास का। पापा को सच्चे मन से जिस नाम से भी पुकारो वो अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। गणेश उत्सव के पावन 10 दिनों में श्रद्धा और विश्वास के साथ गणपति के नाम का स्मरण मात्र से जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। मन को नई शक्ति, आशा और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सबसे बड़ी बात, भगवान गणेश को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। गौरीपुत्र का मन मोहने के लिए मोदक सबसे प्रिय और उत्तम भोग माना जाता है। गणेश चतुर्थी या किसी भी शुभ अवसर पर बप्पा को 21 मोदक का भोग लगाने का विधान है। बिना मोदक के गणपति की पूजा अधूरी मानी जाती है। पारंपरिक तौर पर नारियल और गुड़ से बनने वाला मोदक भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोग है। भक्तों की तरफ से बप्पा को मोदक के भोग मात्र से शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि गणेश उत्सव के दौरान मोदक की खुशबू से गणपति अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। दिल्ली के चावड़ी बाजार में मिठाई की कैसी पुरानी दुकान मौजूद है जो बप्पा को भोग लगाने के लिए तरह तरह के मोदक बना रही है। 1910 से यहाँ मौजूद दुकान में मोदक बनाने का काम 35 वर्षों से चल रहा है।
1: बप्पा के आने की तैयारियां हर तरफ दिखाई पड़ रही है। आज हम आपको दिल्ली के दिल चांदनी चौक में लेकर आए हैं और चांदनी चौक की उस दुकान पर जहां पिछले 35 साल से लगातार मोदक तैयार किया जा रहा है, बप्पा का फेवरेट भोग तैयार हो रहा है। आज भी हम आपको यहां पर अलग अलग तरह के मोदक की तैयारी दिखा रहे हैं, वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं, उनकी मेकिंग दिखा रहे हैं। किचन में हम मौजूद हैं और आपको बात करवाएंगे उन लोगों से भी जो पिछले 35 सालों से लगातार इस काम में लगे हुए हैं। ये दुकान 1910 के आसपास शुरू हुई थी लेकिन ये इस दुकान के उन लोगों का इनोवेशन ही था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई चीज़ लाई जाए जो कि नॉर्थ इंडिया में भी बहुत तेज़ी से चल जाए। और नए के नाम पर वो पहुँचे महाराष्ट्र और वहाँ से लेकर आए ये सांचा। ये वो पहला सांचा है जो इस दुकान के पूर्वज लेकर आए थे मोदक बनाने के लिए। ये सांचा आया और तब से यहाँ पर बप्पा का फेवरेट भोग मोदक बनना शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक ये लगातार ऐसे ही बन रहा है। 25 से ज़्यादा फ्लेवर ये लोग खुद बनाते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल फ्लेवर ऑर्डर भी करता है तो उसकी पसंद का मोदक भी यहाँ पर तैयार हो जाता है।
0: घी, गुड़ और नारियल का मिलन ही मोदक का असली और पारंपरिक स्वाद है। हालांकि 35 साल से मोदक बेचने वाली ये दुकान बदलते वक्त के साथ ग्राहकों के मिजाज के साथ अपने स्वाद में नए नए फ्लेवर जोड़ रही है। दुकान की पुरानी पहचान में कुछ नया जोड़ने के लिए दुकान से जुड़े लोग महाराष्ट्र गए थे, जहां से वो मोदक की रेसिपी, सांचा और उसे तैयार करने वाले दोनों को दिल्ली लेकर आए और तब से मोदक बनाने का सिलसिला शुरू हो गया।
2: हमारे बड़े गए, कभी बाहर घूमने गए होंगे या किसी कारणवश गए होंगे किसी काम से, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ देखी, तो वहाँ से मोदक बनाने का सांचा लेके आए, वहाँ से रेसिपी लेके आए, वहाँ से कारीगर को लेके आए, वो बनाना सीखा, वो रेसिपी आज तक है हमारे पास। और वो सांचे भी हैं, जैसे ये बहुत पुराने सांचे हैं, मतलब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो करीबन 40 से एक साल तो हो गए होंगे इस सांचे को, जो आज भी हमने संभाल के रख रखा है उनकी याद में।
1: सबसे पहले आया था,
2: हाँ जी ये आया था एक बड़े के लिए और एक छोटे के लिए, ये था इस तरीके से जी है। तो पहले तो, अब तो आज की डेट में बहुत सारे स्टील के बनते हैं, स्टेनलेस स्टील के, प्लास्टिक के बनते हैं, बट ये पहले के जमाने में जो हाथ से बनते थे ये यही थे।
0: यहाँ चावल, काजू, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट के अलावा स्ट्रॉबेरी, हेजलनट, कलाकंद के मोदक भी ग्राहकों को खूब पसंद आते हैं। जेंजी को ध्यान में रखते हुए पिछले कई सालों से चॉकलेट और उसके अलग अलग फ्लेवर के मोदक के स्वाद को भी तैयार कर रहे हैं।
2: मोदक असल बनना शुरू हुआ था महाराष्ट्र से, साउथ साइड से वो बनना शुरू होता है सब अनाज का, बट दिल्ली में आते आते उसके फ्लेवर्स वेरिएशंस चेंज हो गए। जैसे अब आप यहाँ पे इस थाल में देख पा रहे हैं, एक मोतीचूर का है, केसर का है, मोती बूंदी का है, स्ट्रॉबेरी का है, आपका खोए का है, पेड़े का है, या आपका कीवी का हो गया, मोटे गोले का हो गया, अल्फांसो विद चॉकलेट हो गया, कलाकंद का हो गया, ये केसर मिक्स हो गए, इस तरीके से वेरिएशंस हैं अलग अलग तरीके के, और इसके अलावा ना जाने कितने किस्म के बन जाते हैं।
0: मोदक की कीमत, उसकी वैरायटी और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री के हिसाब से तय होती है। यहाँ मोदक करीब 600 रुपए प्रति किलो से मिलना शुरू हो जाते हैं। खास बात यह है कि ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से भी मोदक के अलग अलग स्वाद यानी वैरायटी चुन सकते हैं।
1: तो हम लोग इसकी बात करें तो पैकेजिंग का भी आप लोग बहुत खास ख्याल रखते हैं। जो आप प्लेट देख रहे हैं ये भी मेरे ख्याल से गिफ्टिंग की ही प्लेट है, पैकेजिंग की प्लेट है।
2: ये प्लेट भी गिफ्टिंग की है, जैसे ये जर्मन सिल्वर की है प्लेट, इस तरीके से प्लेट्स रहती हैं। मैं आपको एक प्लेट और दिखाता हूँ, ये देखिए एक प्लेट और, ये प्लेट भी है। इसके अंदर भी लगा के दिए जाते हैं, इसके अंदर हम मिठाई लगाएं, मोदक लगाएं, मल्टीपर्पज तरीके से तैयार हो जाती हैं ये, जैसे सामने वाले का मन हो। और इसमें गणेश जी के एक आइडल भी है साथ में।
0: पप्पा को हर दो बार मोदक का भोग लगता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश उत्सव के दौरान मोदक की खुशबू से गणपति अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। दिल्ली से मनीष चौरसे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: सोचिए एक रोबोट आपके घर में आए और सिर्फ चलने या बोलने की बजाय फ्रिज खोले, सामान उठाए, चीजों को सही तरीके से पकड़े और आपके साथ मिलकर काम करे। सुनने में भविष्य की कहानी लगता है, लेकिन ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद के सामने इसकी झलक दिखाई गई। एआई पावर्ड रोबोट्स ने अपनी ऐसी क्षमताओं का प्रदर्शन किया जो आने वाले वक्त में घर से लेकर फैक्ट्रीज तक काम करने का तरीका बदल सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: ये तस्वीर उस भविष्य की है जहां मशीनें सिर्फ मशीन नहीं रहेंगी। ब्रसेल्स में यूरोपियन संसद के खास रोबोटिक शोकेस में एआई पावर्ड रोबोट्स ने ताकत दिखाई। चलते रोबोट्स, चीजें उठाते रोबोट्स और बारीकी से काम करते रोबोट्स। 14 देशों के 31 एकेडमिक और इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के 15 रोबोट्स ने दिखाया कि मशीनें अब सिर्फ प्रोग्राम किए गए काम दोहराने से आगे बढ़ रही हैं। इन रोबोट्स की सबसे बड़ी खासियत है अपने आसपास की दुनिया के साथ तालमेल, किसी वस्तु को पहचानना, उसके आकार और स्थिति को समझना, फिर उतनी ही ताकत से पकड़ना जितना जरूरी हो। इंसान के हाथ के लिए ये सब बेहद स्वाभाविक है, लेकिन एक रोबोट के लिए हर मूवमेंट के पीछे सेंसर, एआई और बेहद सटीक गणना काम करती है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है फ्रिज खोलना, हमारे लिए रोज का मामूली काम, लेकिन रोबोट के लिए एक पूरा मिशन। उसे फ्रिज देखना है, हैंडल पहचानना है, सही जगह हाथ ले जाना है, ग्रिप बनानी है और फिर सही ताकत लगाकर डोर खोलना है।
1: So they have to interact with our environment, open doors, open door, drawers. In the case of our robot has to open the fridge, which seems like a simple task, because we do it all the time. But imagine when you do it and your hand is very soft and compliant and is doing very quick movement.
0: असली कमाल सिर्फ रोबोट्स के चलने में नहीं, कमाल तब है जब वो देखकर फैसला करे, हाथ बढ़ाए और काम पूरा करे। और यही क्षमता इन्हें घर, अस्पताल और दूसरी जगहों पर इंसान का मददगार बनाने की दिशा में ले जा रही है। लेकिन इस तकनीकी दौड़ में यूरोप के सामने बड़ी चुनौती भी है। चीन और अमेरिका ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में भारी निवेश के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यूरोप के पास मजबूत रिसर्च है, लेकिन उसे लैब से निकालकर बड़े पैमाने पर उत्पादन तक पहुंचाने की रफ्तार अभी चुनौती बनी हुई है।
2: Huge ecosystem of suppliers, of technology, manufacturing facility that allow to accelerate and go very, very fast as China is doing or how US is doing because of the large investment that they are receiving.
0: ये सिर्फ तकनीक की दौड़ नहीं है, बुजुर्ग होती आबादी और घटते वर्कफोर्स के बीच आने वाले वक्त में ऐसे रोबोट्स की जरूरत और बढ़ सकती है।
3: It's definitely lack of funding and lack of political willingness. It's not that we don't get funding. It's not that the politicians do not pay attention to robotics, but clearly not at the same level as what happens in China.
0: फ्रिज के डोर खोलने से शुरू हुई ये कहानी घर के काम से लेकर फैक्ट्री के मुश्किल काम तक पहुंच सकती है। बेशक रोबोट्स इंसान नहीं बन सकते, लेकिन उन्हें इंसान की तरह काम सिखाने की कोशिश अब पूरी रफ्तार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: महाराष्ट्र के अकोला में गणेश उत्सव को लेकर गजब का उत्साह। शास्त्री नगर में चिंतामणि गणपति बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का भव्य स्वागत, आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमान। राजधानी दिल्ली पर भी चढ़ने लगा गणेश उत्सव का रंग, स्वीट स्टोर्स में जोरदार तरीके से बप्पा के प्रिय मोदक का निर्माण, खूबसूरत मूर्तियों से सजे बाजार, तो कहीं घरों में मिट्टी से बने गजाना। अब अकोला में पोला उत्सव की जोरदार तैयारियां, बैलों को सजाने के लिए रंग बिरंगी रस्सियां, घुंघरू और पट्टे खरीद रहे हैं किसान। वृषभ राजा के प्रति सम्मान दर्शाता है ये पर्व। रामनगरी अयोध्या से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा। मानदेय में 50% इजाफे के साथ मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का कैशलेस इलाज। लखनऊ में हनुमान अंश की टीम से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा नीब करौरी के जीवन पर बनी फिल्म को देश भर से मिल रहा प्यार। बॉक्स ऑफिस पर हर दिन बना रही है नए रिकॉर्ड्स। वडोदरा में 6,000 से ज्यादा युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का मेगा इवेंट समारोह में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम। 35,000 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के रंग की करते हैं। आपसे देखिए, पांच दिनों के बाद गणेशोत्सव का श्री गणेश होने वाला है। शहर शहर गजानन की आस्था के रंग दिखने लगे हैं और शहर शहर मूर्तिकार गजानन की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। गणपति पंडालों की सजावट भी अंतिम दौर में पहुंच गई है। घर गलियों में मोदक की खुशबू बिखरने लग गई है। नागपुर से लेकर अकोला तक गणपति उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर शहर बप्पा की भव्य आगमन की यात्राएं चल रही हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज और नाचते झूमते भक्तों के बीच में बप्पा पधार रहे हैं। 14 सितंबर को बेहद श्रद्धा के साथ गजानन की स्थापना की जाएगी। गणपति बप्पा के आगमन को लेकर हर उम्र के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। पूरा माहौल भक्तिमय है। जैसे जैसे गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आ रहा है, मूर्ति निर्माण से जुड़े कारीगर बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तो वहीं बप्पा के प्रिय मोदक को बनाने का काम भी जोर शोर से शुरू हो चुका है। गणपति उत्सव की तैयारियों से जुड़ी तमाम तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बप्पा की भव्य आगमन की यात्रा।

अब जो स्वयं गणराज कहलाते हैं उनका स्वागत किसी राजाधिराज से कम क्या ही होगा। सो नागपुर वालों ने अब की बार वही करने की ठानी। गणेश उत्सव से पहले नागपुर में सार्वजनिक पंडालों में गणपति बाप्पा का आगमन शुरू हो चुका है। ये तस्वीर है नागपुर के महल इलाके में विराजमान होने वाले गणपति बाप्पा की। महल के दक्षिण मूर्ति चौक उत्सव पंडाल में बाप्पा को धूमधाम से लाया गया। डीजे ढोल नगाड़ों की धुन के साथ सैकड़ों लोग अपने लाडले बाप्पा का स्वागत करने पहुँचे। पंडाल को पहले ही सजाया जा चुका है, बस एक बाप्पा की कमी थी, अब वो भी पूरी हो गई। सुनागपुर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। अब 14 सितंबर को गणनायक पूरे विधि विधान के साथ अपने भव्य पंडाल में स्थापित कर दिए जाएंगे और उसके बाद 10 दिनों तक बाप्पा की भक्ति का ये उत्सव यूं ही चलता रहेगा। नागपुर क्या, इन दिनों तो शहर शहर यही सूरत दिख रही है। ये तस्वीर गुजरात के सूरत की है। सूरत में गणेश उत्सव की रौनक नजर आने लगी है। गणेश उत्सव शुरू होने से पहले शहर के अलग अलग इलाकों में गणेश प्रतिमाओं के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है। गणेश पंडालों की चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले सूरत की इस गणेश आगमन यात्रा को देखिए।

शहर की गणेश आगमन यात्राओं में इस बार पारंपरिक आयोजनों के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों की अनोखी कलाकृतियां और आकर्षक प्रस्तुतियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। तस्वीरें सूरत के भटार इलाके में साईं युवक मंडल की ओर से निकाली गई भगवान गणेश की भव्य आगमन यात्रा की है। इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और शहरवासी शामिल हुए। गणेश प्रतिमा के आगमन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आगमन यात्रा में अलग अलग धार्मिक और पौराणिक पात्रों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया।

0: कलाकारों ने अलग अलग रूप धारण कर नृत्य नाटिका का मंचन किया। कोई कलाकार राक्षस के रूप में नजर आया तो किसी ने भगवान का स्वरूप धारण कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आगमन यात्रा के दौरान भगवान शिव के तांडव की विशेष प्रस्तुति भी हुई। कलाकार भगवान शिव का स्वरूप धारण कर तांडव करते नजर आए। उनके चारों ओर जलती आग ने इस प्रस्तुति को और भी प्रभावशाली बना दिया। आगमन यात्रा में भगवान के 12 अवतारों को भी अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया। गणेश चतुर्थी से पहले भव्य आगमन यात्रा का आयोजन करने के मुख्य रूप से दो उद्देश्य थे। एक तो श्रद्धालुओं को गणेश उत्सव की धार्मिक भावना से जोड़ना और दूसरा भारतीय संस्कृति और पौराणिक परंपराओं की भव्य प्रस्तुति। और वाकई कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने पूरी यात्रा को एक अलग ही रंग दे दिया। लोगों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों को अपने मोबाइल फोन में कैद किया और बड़ी संख्या में लोग इन दृश्यों को देखने के लिए यात्रा के मार्ग पर मौजूद रहे। सूरत के भटार इलाके में इस साल गणेश उत्सव के लिए एक और खास तैयारी की जा रही है। यहाँ गणेश मंडल की ओर से ओडिशा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर भव्य गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है।
1: कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उसकी थीम पर इस बार भगवान गणेश की स्थापना की जानी है। और मूर्ति की अगर हम बात करें तो मूर्ति का आगमन हो चुका है। जिस मूर्ति के आगमन के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे और कई राज्यों से कलाकार आए थे, उन्होंने कई अपनी अलग अलग थीम पर यहाँ पर नृत्य किया था, अपना प्रदर्शन किया था। और जो आप मूर्ति देख सकते हैं वो यहाँ पर अभी रखी हुई है भगवान गणेश की, और जब यहाँ पर स्थापना की जाएगी तो गणेश उत्सव के दौरान हजारों की संख्या में भक्त भगवान गणेश के दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो ये जो मूर्ति है वही इस पंडाल में विराजमान की जाएगी। फिलहाल मूर्ति का आगमन हो चुका है।
0: हर साल यह गणेश मंडल एक अलग और अनोखी थीम पर गणेश पंडाल तैयार करवाता है। इस बार आयोजकों ने ओडिशा के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर को अपनी थीम बनाया है।
2: साईराम योग मंडल पिछले 28 सालों से बड़े बड़े थीम पे आयोजन करता है। पिछले साल वनतारा थीम, उसके पहले शीश महल, उसके पहले जयपुर महल, ऐसे अलग अलग महलों में सूरत के अंदर बहुत फेमस है। इस साल हम लोग ओडिशा का कोणार्क मंदिर का भव्य आयोजन कर रहे हैं और हमने शोभा यात्रा पिछले दिनों बहुत भव्य आयोजन किया था, जिसमें हजारों की तादाद में हमने शोभा यात्रा का बहुत बढ़िया आयोजन किया था, जिसमें महाराष्ट्र से ढोल पटक आए थे, महाराष्ट्र के इवेंट द्वारा समुद्र मंथन का कार्यक्रम किया था, उसके बाद गणेश वंदना की थी।
0: आयोजकों ने इस पंडाल का 3D वीडियो भी जारी किया है, जिसमें पंडाल का प्रस्तावित स्वरूप दिखाया गया है। पंडाल तैयार होने के बाद गणेश उत्सव के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। नागपुर से योगेश वसंत पांडे और सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, बात जब गणपति के आगमन की हो रही हो तो ये कैसे मुमकिन है कि मोदक का जिक्र ना हो। दरअसल मोदक को गणपति का प्रिय भोग माना जाता है। वैसे तो मोदक किसे पसंद नहीं होते, लेकिन गौरी पुत्र को मोदक से विशेष प्रेम है। गणपति से जुड़ी कहानियों में वो माँ गौरी से लेकर देवी अनुसुईया तक सबके हाथों से मोदक पाते रहे हैं और बप्पा का ये मोदक प्रेम उनके भक्तों को भी खूब भाता है। तो चलिए, एक वक्त था, ये भी आपको बता देते हैं, जब गणेशोत्सव में मोदक बनाने का चलन महाराष्ट्र तक सिमटा था, लेकिन देखते ही देखते मोदक देश के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच गया। मुंबई से लेकर दिल्ली तक मिठाई की दुकानों में गणेश चतुर्थी के मौके पर लड्डू के साथ साथ अब मोदक भी खूब बनने और बिकने लगा है। दिल्ली के चांदनी चौक की एक ऐसी ही दुकान मौजूद है जहां के लिए दावा किया जाता है कि मोदक का चस्का दिल्ली वालों की जुबान पर वहीं से चढ़ा। दरअसल 40 साल पहले इस दुकान के मालिक महाराष्ट्र के दौरे पर गए तो कुछ नया करने की चाह में लौटते समय मोदक बनाने के सांचे वहां से लेते आए। फिर क्या था, चांदनी चौक में मोदक बनने का सिलसिला चल पड़ा और अब यहां लगभग 25 तरह के मोदक तैयार किए जाते हैं। चावल, काजू, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट के अलावा स्ट्रॉबेरी, हेजलनट, कलाकंद के स्वाद वाले मोदक भी यहां पर मौजूद हैं।

0: दिखा रहे हैं, वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं, उनकी मेकिंग दिखा रहे हैं। किचन में हम मौजूद हैं और आपको बात करवाएंगे उन लोगों से भी जो पिछले 35 सालों से लगातार इस काम में लगे हुए हैं। ये दुकान 1910 के आसपास शुरू हुई थी, लेकिन ये इस दुकान के उन लोगों का इनोवेशन ही था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई चीज लाई जाए जो कि नॉर्थ इंडिया में भी बहुत तेजी से चल जाए। और नए के नाम पर वो पहुंचे महाराष्ट्र और वहां से लेकर आए ये सांचा। ये वो पहला सांचा है जो इस दुकान के पूर्वज लेकर आए थे मोदक बनाने के लिए। ये सांचा आया और तब से यहाँ पर बप्पा का फेवरेट भोग मोदक बनना शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक ये लगातार ऐसे ही बन रहा है। 25 से ज्यादा फ्लेवर ये लोग खुद बनाते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल फ्लेवर ऑर्डर भी करता है तो उसकी पसंद का मोदक भी यहाँ पर तैयार हो जाता है। हम भरत के किचन में हैं, तो कौन कौन सी वैरायटी है इसमें, कितने तरह के मोदक हैं?
1: सर देखिए, यहाँ पे शाम स्वीट्स के अंदर हम डिफरेंट तरीके के मोदक बनाते हैं। वैसे तो इंडिया हमारा रिच ऑफ कल्चर्स, टेस्ट एंड अलग अलग जगह के अलग अलग स्वाद हैं। जो मोदक असल बनना शुरू हुआ था महाराष्ट्र से, साउथ साइड से वो बनना शुरू होता है सब अनाज का, बट दिल्ली में आते आते उसके फ्लेवर्स वेरिएशंस चेंज हो गए। जैसे अब आप यहाँ पे इस थाल में देख पा रहे हैं, एक मोतीचूर का है, केसर का है, मोती बूंदी का है, स्ट्रॉबेरी का है, आपका खोए का है, पेड़े का है, ये आपका कीवी का हो गया, मोटे गोले का हो गया, अल्फांसो विद चॉकलेट हो गया, कलाकंद का हो गया, ये केसर मिक्स हो गए। इस तरीके से वेरिएशन हैं अलग अलग तरीके के, और इसके अलावा ना जाने कितने किस्म के बन जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट है और एक इनोवेशन है जो जिस तरीके से जैसे बना सके। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हमारे को इस तरीके का मोदक चढ़ाने का मन है, क्योंकि भगवान को तो वही अर्पित किया जाता है ना। जो भगवान को एक ही चीज़ कब तक खिलाएंगे कहते हैं ना बहुत से लोग, तो इसलिए जो सामने वाले का स्वाद हो हम वो चीज़ बनाने में सक्सेस करते हैं उसको, ताकि वो अपने मन के हिसाब से वो पूरा कर सके अपनी पूरी श्रद्धा भाव से।
0: जो भाव का है वो भगवान का है, सिंपल सी बात है। तो अभी जब मोदक हम लोग बना रहे हैं, 35 साल पहले जो यात्रा शुरू हुई थी उस समय भी क्या वजह थी कि मतलब, क्योंकि तब यहाँ पर गणेश पूजा उस लेवल से नहीं होती थी, लोग जानते नहीं थे, कैसे इसकी शुरुआत हुई?
1: इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई थी, अब जैसे पुराने लोग बताते हैं, इसमें पुराने मतलब हमारे बड़े बताते हैं, गणेश चौथ तो गणेश चतुर्थी जिसको शॉर्ट में गणेश चौथ बोलते हैं, तो इसको तो ये तो पहले ही मनाई जाती थी, मगर दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ भगवान को लड्डुओं का भोग लगाते थे। तो फिर हमारे बड़े गए, कभी बाहर घूमने गए होंगे या किसी कारणवश गए होंगे किसी काम से, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ देखी, तो वहाँ से मोदक बनाने का सांचा लेके आए, वहाँ से रेसिपी लेके आए, वहाँ से कारीगर को लेके आए, वो बनाना सीखा, वो रेसिपी आज तक है हमारे पास, और वो सांचे भी हैं। जैसे ये बहुत पुराने सांचे हैं, मतलब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो करीबन 40 से एक साल तो हो गए होंगे इस सांचे को, जो आज भी हमने संभाल के रख रखा है उनकी याद में।
0: ये सबसे पहले आया था?
1: हाँ जी, ये आया था एक बड़े के लिए और एक छोटे के लिए, ये था इस तरीके से जी। तो पहले तो, अब तो आज की डेट में बहुत सारे स्टील के बनते हैं, स्टेनलेस स्टील के, प्लास्टिक के बनते हैं, बट ये पहले के ज़माने में जो हाथ से बनते थे ये यही थे। इसमें एक पहले लकड़ी का और होता था, लकड़ी का तो अब समय के हिसाब से थोड़ा सा नहीं रहा सही, अभी है भी नहीं हाथ में, तो इसलिए जो आपको है वो दिखा पा रहे हैं। बाकी अब जो हम बनाते
0: हैं, कि आपके पूर्वजों ने कहा था कि भाई नई चीज़ दिखेगी तो वो बिकेगी, अब नई चीज़ के लिए फिर एक्सपेरिमेंट करना था और वो एक्सपेरिमेंट ये था।
2: गणेशोत्सव की शुरुआत से कई दिनों पहले ही कलाकारों ने अलग अलग रूपों में बप्पा को ढालना तो शुरू कर दिया था। ऐसे में अब बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। कहीं गणपति देवा अपने पिता महादेव के वेश में नजर आ रहे हैं, तो कहीं लाल बादशाह राजा के स्वरूप वाली प्रतिमा भी बनकर तैयार है। शहर शहर श्रद्धालु बप्पा की इन प्रतिमाओं को खरीदने पहुंच रहे हैं।

0: बाजार में इस बार भगवान गणेश के पारंपरिक स्वरूप के साथ साथ कई नए और आकर्षक डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर भगवान भोलेनाथ से जुड़े स्वरूपों वाली गणेश प्रतिमाएं लोगों को खूब पसंद आ रही है। शिवलिंग के साथ गणेश प्रतिमा, भगवान शंकर के वेश में गणेश और लाल बाग के राजा के स्वरूप वाली प्रतिमाओं की मांग खूब है। इसके साथ ही AI डिजाइन से तैयार किए गए नए नए स्वरूप भी भक्तों को भा रहे हैं। स्वरूप के अलावा बात अगर डिजाइन की करें तो घर में गणपति की स्थापना के लिए 1 से 3 फीट तक की प्रतिमाओं की मांग सबसे ज्यादा है। झांसी की तरह ही दिल्ली में भी गणेश प्रतिमाओं के निर्माण का काम जोर शोर से इन दिनों चल रहा है। इस काम से जुड़े कई कारीगर बापा की मूर्तियों को डिमांड के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। इन मूर्तिकारों के लिए ये सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि आस्था और कला का एक साथ पेश करने का मौका भी है। ये दो बहनें भी 20 साल से गणेश प्रतिमा तैयार कर रही हैं। पहले ये काम इनके पिता किया करते थे लेकिन उनके गुजर जाने के बाद दोनों बहनों ने इस काम को आगे बढ़ाया। ये दोनों बहनें न सिर्फ मूर्तियां बनाती हैं, बल्कि वो खुद गणपति बैठाती भी हैं।
1: गणेश पूजा, गणेश उत्सव, गणेश जी की मूर्ति को तैयार करना, उसको सजाना सवारना, इसके क्या मायने हैं ये आप इन दो बहनों से समझ सकते हैं। मंजू और वसुंधरा, ये दो बहनें सालों से इसी काम में लगी हुई हैं। हर साल मूर्ति को अपने हाथ से तैयार करती हैं, फिर उसे बेचती हैं, कुछ पैसे कमाती हैं। 20 साल से दोनों बहनें एक साथ ये काम कर रही हैं। इसके पहले ये काम इनके पिताजी किया करते थे, वो चल बसे तो उसके बाद दोनों बहनों ने मोर्चा संभाला हुआ है।
2: मूर्ति में सजावट करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, जो काम आते हैं वो कर लेते हैं।
1: ये काम सीखा किससे, अपने आप से या फिर पिताजी सिखा गए थे?
3: पिताजी सिखा के गए थे, वैसे तो अब देखते देखते सीख गए हम भी।
0: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को है, सो इस समय शहर शहर ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है। कोई मूर्तियों को आकार दे रहा है तो कोई रंग भरने का काम में जुटा है। खास बात ये है कि कई जगहों पर अब मूर्तियों को बनाने के लिए सिंथेटिक मटेरियल की जगह मिट्टी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन प्रयागराज में बनाई जा रही इन मूर्तियों के निर्माण में गंगा की मिट्टी, धान का पुआल या पराली और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे विसर्जन के बाद पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। यहाँ के मूर्तिकार दस्तकार उत्साहित हैं क्योंकि लगातार बारिश के बावजूद इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की मांग बढ़ गई है। घरों से लेकर बड़े बड़े पंडालों तक के लिए बड़ी संख्या में ऑर्डर मिल रहे हैं।
4: गणेश जी का मिट्टी पूरा प्योर मिट्टी और गंगा जी का शुद्ध मिट्टी से बनता है और इसमें धान का पैड़ा है और लकड़ी है, बांस है, यही इको फ्रेंडली, पूरा कलर भी हमारा इको फ्रेंडली है।
0: ये तस्वीरें राजकोट की है जहां भी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं को ही सजाने का काम चल रहा है। कोलकाता के दीपक जाना पिछले 30 वर्षों से लगातार यहां आकर बापा की प्रतिमाओं को तैयार करते हैं। राजकोट के गणेश उत्सव में अपने हुनर के रंग भरते हैं।
5: लेटेस्ट डिजाइन इंटरनेट में आया, उसी को ढूंढ ढूंढ के कलेक्शन करके मैं लोग बनाया मूर्ति।
6: कौन सा वो खास मूर्ति?
5: खास मूर्ति जो पहले नंबर है, नव दुर्गा का स्वरूप में, उसका नव दुर्गा है, उसका गोद में बैठा हुआ गणपति बापा 9 फीट का ऊपर है। ऐसा और भी बहुत सारे थीम है, सभी अलग अलग है, एक ही डिजाइन एक में नहीं है, सभी जितना भी मूर्ति है सब अलग अलग डिजाइन का।
0: तो वही करनाल में राजस्थान से आया मूर्तिकारों का ये परिवार पिछले 6 महीने से बापा की मूर्तियों को आकार देने में जुटा है। इनकी मेहनत का नतीजा ये है कि बापा की सैकड़ों प्रतिमाएं अब यहाँ गणेश भक्तों को लुभा रही है।
7: अभी गणेश तो तैयार करने के मेरे 6 महीना हो गया,
6: बनाते बनाते अभी एक एक मूर्ति में 10 से 12 दिन लग जाते जी, बारीकी काम है।
0: तो वही महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तो बच्चे ही मिट्टी से पापा की मूर्त गढ़ रहे हैं। गणेश उत्सव से पहले यहाँ बच्चों के लिए इस खास वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहाँ बच्चों ने मिट्टी से दोस्ती की और अपने हुनर के रंग भरकर पापा की प्रतिमाओं को तैयार करने में जुट गए। अब इनकी बनाई प्रतिमाएं इस साल गणेश उत्सव की शान बनेंगी। झांसी से अजय झा, राजकोट से रौनक मजीठिया, करनाल से कमलदीप, चंद्रपुर से विकास राजूकर, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: अब देखिए, कुछ सालों से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए गणेशोत्सव पर खास तौर से प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय इको फ्रेंडली यानी मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं बनाने का चलन भी रहा है। वास्तव में ये जल प्रदूषण से बचाव का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ऐसे में कई मूर्तिकार जहां मिट्टी और दूसरी सॉल्यूबल चीजों से एक से बढ़कर एक मूर्तियों को आकार दे रहे हैं, तो इनकी डिमांड भी मार्केट में खूब बनी हुई है।

जिसकी जैसी भावना वैसे उसके बापा। गणेश उत्सव में बहस कुछ ही दिन बाकी है, सो शहर शहर गणपति की मूर्तियां बनाने का काम भी तेज हो गया है। मूर्तिकार इन मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ये तस्वीरें यूपी के झांसी से आई है। झांसी में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है।

0: बीते कुछ सालों से गणेशोत्सव पर प्रकृति का भरपूर ख्याल रखने का संदेश दिया जा रहा है। नेचर को नुकसान पहुंचाने वाले जहर से कोसों दूर बाप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां आज मूर्ति कारीगरों के साथ आस्थावानों की पहली पसंद है। ऐसे में कुछ मूर्तिकार परिवार अपनी गणेश भक्ति को ही पीढ़ियों से चली आ रही कला परंपरा में बदले हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर का एक परिवार है जो हर साल आस्थामयी और कलात्मक माहौल में भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय बांस, नारियल की छाल और मौली धागा से बेहद खूबसूरत और पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों को आकार दे रहा है। इस परिवार के मुखिया हैं शिवचरण यादव, जो कभी सरकारी मुलाजिम रहे, घर चलाने के लिए भेल भी बेची, लेकिन जब इस काम में मन नहीं रमा तो फिर कलाकारी करने का महज ख्याल ही मानो पैशन बन गया है।
1: बच्चे लोग सबसे पहले मेरे को वहाँ अध्यक्ष बनाए, उसके बाद फिर मैंने अपना धीरे धीरे स्थल सजावट का काम किया। स्थल सजावट करने के बाद अब उसमें भी मजा नहीं आया, तो फिर मैं बोला उसको बंद करके मूर्ति का काम स्टार्ट किया।
0: मूर्तिकार शिवचरण को इन मनोहारी मूर्तियों को आकार देते हुए 25 साल से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान उन्होंने ठेले पर भी बाप्पा की मूर्तियां रखकर बेची। साल 2011 से शिवचरण ने घर पर ही मौली धागा, नारियल की लकड़ी, नारियल की बुच जैसी कई इको फ्रेंडली चीजों से मूर्तियों को आकार देना शुरू किया। वहीं इस बार के गणेशोत्सव में शिवचरण ने धूप दीप, पेड़ की छाल और बांस की लकड़ी जैसी कई और पर्यावरण सुरक्षित जैसी चीजों से खूबसूरत बप्पा बनाए हैं, जिनके डिमांड काफी है।
1: इस बार हम लोग बनाए हैं धूप दीप का बनाए हैं राम भगवान के रूप में, और पेड़ के छाल से बनाया गया है, और उसके बाद बांस की लकड़ी से बनाया गया है, और नारियल की बूच को नारियल का स्वरूप दिया गया है।
2: बिंदी से शंख और सीप से
1: बनाया गया है, और ये मोती से बनाया गया है।
0: शिवचरण और उनके परिवार की नजर में प्रकृति का सम्मान ही बाप्पा की सच्ची भक्ति है। शिवचरण अपनी पत्नी, दो बेटे और एक बहू के सहयोग से विघ्नहर्ता की ऐसी ऐसी सुंदर मूर्तियां बना रहे हैं जिनके चाहने वाले ग्राहक हर साल बढ़ रहे हैं।
3: बाकी मूर्तियां तो अलग अलग बनाए जाते हैं मिट्टी से और बाकी अन्य चीजों से, लेकिन हम लोग गणेश जी को किसी भी चीज में अलग अलग रूप में बनाकर, मतलब आप देख सकते हैं कि पीछे एक लकड़ी की छाल है, सामने धूप अगरबत्ती है, उसके हिसाब से अलग अलग चीजों में बनाते हैं।
2: आस्था भी है गणेश
3: जी? बहुत आस्था है हमारी।
0: फिलहाल तो मिट्टी की ये सुंदर सुंदर इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा हमारी प्रकृति को मुस्कुराने की वजह दे रहे हैं। रायपुर का ये परिवार गणेश मूर्ति को बनाने की कला को जिस अंदाज में जिंदा रखे हुए हैं, उससे न केवल समाज को अपना पर्यावरण बचाने की प्रेरणा मिल रही है, बल्कि खुशहाल प्रकृति बने रहने का संकेत भी मिल रहा है। तो हो जाए एक बार फिर विघ्नहर्ता का ये प्यारा सा उत्सव इको फ्रेंडली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि बप्पा पधार रहे हैं। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छे और पॉजिटिव खबरें जा रही हैं, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति बहुत साहसी हो जाता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति के अंदर बहुत आकर्षण पैदा होता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति को बड़ी सारी संपत्ति का फायदा होता है? क्या मंगल दोष होने से भी हो सकता है लाभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: महाराष्ट्र के अकोला में गणेश उत्सव को लेकर गजब का उत्साह। शास्त्री नगर में चिंतामणि गणपति बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का भव्य स्वागत। आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमान। राजधानी दिल्ली पर भी चढ़ने लगा गणेश उत्सव का रंग। स्वीट स्टोर्स में जोरदार तरीके से बप्पा के प्रिय मोदक का निर्माण। खूबसूरत मूर्तियों से सजे बाजार, तो कई घरों में मिट्टी से बने गजानन। अकोला में पोला उत्सव की जोरदार तैयारियां। बैलों को सजाने के लिए रंग बिरंगी रस्सियां, घुंघरू और पट्टे खरीद रहे हैं किसान। वृषभ राजा के प्रति सम्मान दर्शाता है यह पर्व। रामनगरी अयोध्या से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा। मानदेय में 50% इजाफे के साथ मिलेगा 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। लखनऊ में हनुमान अंश की टीम से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा नेब करौरी के जीवन पर बनी फिल्म को देश भर से मिल रहा है प्यार। बॉक्स ऑफिस पर हर दिन बना रही है नए रिकॉर्ड्स। वडोदरा में 6,000 से ज्यादा युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का मेगा इवेंट समारोह में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम। 35,000 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: यार मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली गिरफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे परखे सच मान लेते हैं और इन्हें शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की पड़ताल और झूठ के नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले वायरल हो रहे उस वीडियो की बात होगी, जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि हनुमान अंश फिल्म देखने पहुंची एक महिला हनुमान चालीसा सुनते समय अचानक बेहद भावुक हो गई और कुछ ही देर में जोर जोर से चीखने लगी। क्या है इसकी सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के से जुड़ी हुई, जिसे नेपाल का बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक शख्स कुरान शरीफ पढ़ने लगा। वीडियो की सच्चाई क्या है, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और
0: नीम करौरी बाबा के जीवन पर बनी भक्ति ड्रामा फिल्म हनुमान अंश ने धूम मचाई हुई है। ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हो रही है और सोशल मीडिया पर हनुमान अंश छाई हुई है। कहीं सिनेमा घरों के बाहर लड्डू बांटे जा रहे हैं, कहीं हनुमान सदा सहायते के नारे गूंज रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि महिला हनुमान अंश देखने के बाद थिएटर के अंदर ही चीख चीख कर दहाड़े मारने लगी। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
5: जिसने भी इस दृश्य को देखा वो हैरान हो गया। थिएटर के अंदर एक महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी और अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। महिला की हरकत देखकर आसपास बैठे लोग भी दंग हो गए। आसपास बैठे लोगों ने इसे रोकने की कोशिश में जुट गए। कोई इस लम्हे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने लगा। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि थिएटर में नीम करौली बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर बनी मूवी हनुमान अंश देख रही महिला हनुमान चालीसा सुनते समय अचानक बेहद भावुक हो गई और कुछ ही देर में जोर जोर से चीखने लगी। कुछ लोग इस घटना को गहरी भक्ति का प्रणाम बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स इसे भावनात्मक प्रतिक्रिया मान रहे हैं। वीडियो के साथ एक संदेश भी शेयर किया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि जब कोई फिल्म दिल को छू जाती है और इंसान भगवान की भक्ति में पूरी तरह डूब जाता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल हनुमान अंश ने सिनेमाघरों में अब तक आई फिल्मों के सामने पूरी बाजी पलट कर रख दी। इस फिल्म को लेकर न प्रमोशनल कोई प्रमोशन किया गया और न ही लोगों को रिलीज के समय भनक लगी। करीब 2 करोड़ रुपए के बजट में तैयार ये फिल्म अब तेजी से 200 करोड़ के क्लब की तरफ कमाई करती नजर आ रही है। इन सबके बीच सोशल मीडिया के पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि हनुमान अंश फिल्म में हनुमान चालीसा सुनकर ये महिला भावुक हो गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। पड़ताल में सामने आया कि वीडियो एक थिएटर के अंदर का है जहां पर्दे पर फिल्म चल रही है, उसमें नए जमाने के हिसाब से ही रिक्रिएट किया गया हनुमान चालीसा बज रहा है। इन सबके बीच एक महिला अपनी सीट पर दहाड़े मारकर रो रही है। वो इधर उधर लौट भी रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका शरीर काबू में ना हो। आसपास के लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ये चौंकाने वाला दृश्य था। लेकिन जब फैक्ट चेक टीम ने वीडियो में आ रही आवाजों को फ्रेम दर फ्रेम सुना तो ये सामने आया कि ये तेलुगु है। इससे हमें ये इशारा मिल गया कि वायरल हो रहा वीडियो आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना का हो सकता है। इसके बाद हनुमान अंश मूवी में हनुमान चालीसा को नए तरीके से रिक्रिएट नहीं किया गया, जिससे हमें दावे की सत्यता पर संदेह हुआ। साथ ही सर्च के दौरान ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि वायरल वीडियो हाल फिलहाल का है, क्योंकि अगर वाकई ऐसा हुआ होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर मिलती, लेकिन हमें ऐसा कहीं कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था, हनुमान अंश मूवी थिएटर्स में हिंदी भाषा में ही उपलब्ध है, साउथ के शहरों में भी इसके हिंदी शोज ही चल रहे हैं। अभी फिलहाल मेकर्स की तरफ से इसके आधिकारिक तेलुगु डब वर्जन की थिएटर या फिर ओटीटी रिलीज को लेकर कोई फाइनल डेट अनाउंस भी नहीं हुई है। ऐसे में हमारा सवाल ये कि वायरल हो रहे वीडियो में तेलुगु आवाजें क्यों सुनाई दे रही है। दूसरा सवाल कि हनुमान अंश मूवी में हनुमान चालीसा को रिक्रिएट नहीं किया गया है। ऐसे में हमारा सवाल सीधे तौर पर यह कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। सच और झूठ की इस रिपोर्ट में जानिए।
5: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रही वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो तेलुगु फिल्मों को कवर करने वाले एक इंस्टाग्राम पेज पर मिला। पेज पर वीडियो 30 जनवरी 2024 को अपलोड किया गया था। पोस्ट के मुताबिक ये घटना उपल स्थित एशियन सिनेमा में हुई थी और महिला फिल्म हनुमान के क्लाइमेक्स के दौरान भावुक होकर अजीब तरह से प्रतिक्रिया देने लगी थी। पड़ताल के दौरान हमें ये वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर 30 जनवरी 2024 को अपलोड हुआ मिला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि एक महिला हनुमान मूवी देखते समय असामान्य हरकतें करने लगी थी। इससे स्पष्ट होता है कि वायरल वीडियो हाल में रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश का नहीं है, बल्कि करीब 2.5 साल पुराना है। सर्च के दौरान एक वेबसाइट पर 30 जनवरी 2024 को इस घटना पर प्रकाशित रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में वायरल वीडियो वाले दृश्य भी देखने को मिले। रिपोर्ट के अनुसार महिला फिल्म देखने के दौरान इतनी भावुक हो गई कि वह कांपने लगी और अपनी सीट से नीचे गिर गई। रिपोर्ट में इस घटना को तेलुगु फिल्म हनुमान के क्लाइमेक्स से जोड़ा गया था। हनुमान और हनुमान अंश दो अलग अलग फिल्में हैं। हनुमान तेलुगु सुपर हीरो फिल्म है जो हनुमान से जुड़े पौराणिक संदर्भों को सुपर हीरो कथा के साथ पेश करती है। वही हनुमान अंश नीम करोली बाबा के जीवन और उनके आध्यात्मिक यात्रा पर केंद्रित फिल्म है। हमारे पड़ताल में यह साक्ष्य से स्पष्ट है कि थिएटर में अजीबोगरीब हरकतें करती महिला का वायरल वीडियो नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश से संबंधित नहीं है। ये वीडियो करीब 2.5 साल पुराना है और जनवरी 2024 में तेलुगु फिल्म हनुमान देखते हुए सामने आया था। अब इस पुराने वीडियो को हाल ही रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश से जोड़कर भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। और इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग सड़क पर दुआ करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि नेपाल का है, जहां पर आपदा के बीच लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। लेकिन जब वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में।

0: नेपाल में 26 अगस्त को आए विनाशकारी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। इस हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इन सबके बीच चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। किसी पहाड़ वाली जगह पर कई लोग सड़क किनारे कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां कहीं वर्दीधारी भी मौजूद है और कुछ लोग आते जाते हुए भी देखे जा रहे हैं। वीडियो को इस दावे से शेयर किया जा रहा है कि नेपाल में बाढ़ से बचाव के लिए कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि ये है ईमान की ताकत। ये वीडियो नेपाल का जहां पर कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है और दुआ की जा रही है, माशाल्लाह। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर 11 सेकंड का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कई लोग सड़क किनारे कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां कई वर्दीधारी भी मौजूद हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि नेपाल त्रासदी के बाद कुछ लोग सड़क पर कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। वीडियो को लेकर चौंकाने वाला दावा किया जा रहा था, क्योंकि इसके जरिए भी कहा जा रहा था कि नेपाल में बाढ़ से बचाव के लिए लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ा है। हाँ, ये बात सच है कि 26 अगस्त को नेपाल में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है, लेकिन वायरल वीडियो इसी बाढ़ से संबंधित है, ये जानना जरूरी हो गया था। लेकिन वीडियो को देखने से हमें इसमें ऐसी कई चीजें देखने को मिली जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। मसलन वीडियो में एक जगह एक वर्दीधारी जवान के जैकेट पर लिखे शब्दों को हमने जब गौर से देखा तो इस पर किर्गिस्तान लिखा हुआ था। हमें यह देखकर काफी हैरानी हुई। वायरल वीडियो नेपाल का है तो फिर यहां पर किर्गिस्तान के जवान का क्या काम? नेपाल में आपदा राहत कार्यों में शामिल जवान नीले रंग की कैमोफ्लाज यानी कि नीली चितकबरी वर्दी में नजर आ रहे थे, जबकि आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान डार्क ग्रे बैकग्राउंड के साथ ही लाइट ग्रे, डार्क ब्लू और फिर ब्लैक मिक्स वाली वर्दी पहनते हैं। ऐसे में हमें वीडियो की सत्यता पर संदेह हुआ। हमने इसे सवालों की कसौटी पर जताया, लेकिन वहां कोई सैनिक रेस्क्यू टीम का हिस्सा बना ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। अब सवाल यह है कि अगर वायरल वीडियो नेपाल का है और बाढ़ से बचाव के लिए कुरान शरीफ पढ़ रहा है ये जवान, तो फिर यहां पर किर्गिस्तान रेस्क्यू टीम के जवान नजर क्यों नहीं आ रहे? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नेपाल के साथ जोड़कर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही? सच और झूठ।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 25 जून को अपलोड किया गया था। इसके बाद हमने इस इंस्टाग्राम अकाउंट में मौजूद बायो का अनुवाद किया, जिसके जरिए जानकारी सामने आई कि यह अकाउंट किर्गिस्तान के चुई ओब्लास्ट के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय के प्रेस विभाग से जुड़ा है। इतना ही नहीं, हमें इस अकाउंट पर अपलोड किए गए कई वीडियो में उसी ड्रेस में दिख रहे कई वर्दीधारी भी मिले जो वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियोस में वर्दीधारियों द्वारा पहने गए लाइफ जैकेट पर किर्गिस्तान रेस्क्यू भी साफ साफ लिखा हुआ देखा जा सकता है। इसी दौरान हमें किर्गिस्तान के एक मीडिया पोर्टल के फेसबुक अकाउंट से 26 जून को पोस्ट किया गया वीडियो मिला। इस वीडियो में भी वायरल वीडियो से मिलते जुलते दृश्य मौजूद थे। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में लिखा हुआ था, किर्गिस्तान के केगेती घाटी में एक 6 वर्षीय बच्चा पानी में गिर गया था जिसकी तलाश की जा रही थी। इसमें कई देशों के वॉलंटियर्स भी शामिल हुए थे। इसी दौरान बिरदिक गाँव के हाफिजों ने बच्चे की खोज के लिए कुरान पढ़ी थी। जांच में हमें 25 जून को किए गए कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट भी मिले जिनमें वायरल वीडियो से मिलते जुलते दृश्य मौजूद थे। इस संबंध में हमें किर्गिस्तान के एक न्यूज वेबसाइट पर 26 जून का प्रकाशित रिपोर्ट भी मिला। रिपोर्ट में बताया गया था कि 23 जून को एक कार केगेती नदी में गिर गई थी। इसमें 2 महिलाएं और 5 बच्चे मौजूद थे। दोनों महिलाएं और 3 बच्चे गाड़ी से निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन 2 बच्चे उसमें ही फंसे रह गए थे। 12 वर्षीय बच्चे की बॉडी पहले ही रेस्क्यू टीम ने रिकवर कर ली थी। बाद में 26 जून को उस बच्चे का शव भी बरामद हो गया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से साफ है कि नेपाल में बाढ़ से बचाव के लिए कुरान पढ़ जाने के दावे से वायरल ये वीडियो किर्गिस्तान का है।
1: चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला
1: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
7: अरे बेटा बोल तो दिया नेम फाइव सीजन्स, विंटर समर ऑटम स्प्रिंग मानसून, क्या दिक्कत है इसमें? नेम फाइव सीजन्स तो नहीं आते तो मैं इनका बोला वन मिनट लिखो फटाफट से। चलो बेटा मेरे पास पेंसिल्स का टाइम भी अपनी लाया करो, गो चलो अपनी पेंसिल यूज करो। या फिर मैं पेंसिल देने वाली बैठी हुई हूँ, वर्क देती हूँ आपको ना कि पेंसिल्स, अपनी लाया करो पेंसिल्स। कल से ना 4 बजे अपने अपनी पेंसिल्स लेके आएंगे, आज लास्ट टाइम है, दे रही हूँ बस मार्क पकड़ो।
8: छोटी सी मैडम ने घर में ही लगा ली अपनी क्लास, बच्चे जिस अंदाज में पढ़ा रही है उसे देखकर यूजर्स मुस्कुरा रहे हैं। दरअसल बच्ची ने नोटबुक्स को ही अपने छोटे छोटे स्टूडेंट्स की तरह मान लिया है और बड़े ही ध्यान से उन्हें पढ़ाती नजर आ रही हैं। कभी वो कॉपी की तरफ देखकर समझाने की कोशिश करती है तो कभी टीचर की तरह अपना पूरा ध्यान क्लास पर लगाती दिखाई देती है। सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान बच्ची के अंदाज ने खींचा है, जिस तरह से वो टीचर बनकर पढ़ाने का खेल खेल रही है वो देखने में बेहद प्यारा और मजेदार है। बच्ची की बॉडी लैंग्वेज और पढ़ाने का तरीका देखकर सोशल मीडिया यूजर्स उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।
7: आपको मैन का बोला जो प्रणाम बोलो का, चलो 2 मिनट आप जस्ट का 4-5-6 मिनट देखो लाइन डाल दी है, मीनिंग देखो उसका, मेरे को नहीं पता क्या खुद लिखो, एक तो बस लेट है और मीनिंग भी मैं भी बताऊं।
8: एक छोटे बच्चे ने अपने परिवार के बारे में लिखे सवाल का ऐसा जवाब दिया कि उसकी कल्पना और बेबाकी दोनों चर्चा का विषय बन गए। तस्वीर में बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आ रहा है और उसके सामने उसकी लिखी हुई कॉपी रखी है। कॉपी में टीचर ने अपने परिवार के बारे में लिखे सवाल दिया था, इसके जवाब में बच्चे ने अपने परिवार के हर सदस्य के बारे में बड़े ही अनोखे अंदाज में लिखा है। बच्चे ने शुरुआत करते हुए लिखा कि उसका परिवार खतरों का खिलाड़ी है। इसके बाद पिता के बारे में उसने लिखा कि उनके पापा शक्तिमान का रूप है, माँ को उसने घर की लक्ष्मी बाई बताया है। यहाँ तक तो जवाब काफी प्यारा और सामान्य लगता है, लेकिन इसके बाद बच्चे की कल्पना कुछ ज्यादा ही मजेदार हो जाती है। बच्चे ने अपनी बहन का जिक्र भी बेहद अनोखे अंदाज में किया है। इसके बाद उसने अपने बारे में जो लिखा वही इस पूरी कॉपी का सबसे मजेदार हिस्सा नजर आता है। बच्चे ने खुद को घर का सबसे नालायक बताया है। उसकी ये बेबाक लाइन पढ़कर लोग हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे हैं। जवाब पढ़ने के बाद टीचर ने लाल पेन से कुछ शब्दों को घेरा और नीचे अपनी टिप्पणी भी लिखी। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि बच्चे को इस जवाब के लिए 10 में से 10 नंबर मिले हैं। टीचर का ये फैसला भी लोगों को खूब गुदगुदा रहा है। गुरु शिष्य के रिश्ते की ये खूबसूरत तस्वीर लोगों को खूब पसंद आ रही है। यहाँ तोहफे की कीमत नहीं बल्कि उसके पीछे छिपा बच्चों का स्नेह मायने रखता है। किसी बच्चे के हाथ में खेत से तोड़ी गई तोरई है, कोई बच्चा अपनी भैंस का दूध लेकर पहुंचा है तो कोई अपने घर खेत से ककोड़ा लेकर आया है। देखने में चीजें भले ही साधारण लगे लेकिन बच्चों की नजर में ये उनके पास मौजूद सबसे खास चीजों में से है। इस पूरे भाव को सबसे ज्यादा खास बनाता है शिक्षक का व्यवहार। बच्चों की लाई गई इन चीजों को वो सामान्य सामान की तरह नहीं लेते, वो उन्हें अपने सिर से लगाकर प्रणाम करते हैं, मानो बच्चों ने सामान नहीं बल्कि अपना प्यार और सम्मान उनके हाथों में रखा हो। शिक्षक भी स्नेह को पूरे सम्मान के साथ अपने सिर माथे लगा लेते हैं। खूबसूरत कलाकारी को देखकर लोग दंग हैं। नीली साड़ी पहने एक महिला अपने हाथों में एक विशालकाय हरा पत्ता थामे हुए दिखाई देती है। महिला पत्ते को पकड़े हुए मुस्कुराती है, जिससे लोगों को लगता है कि ये शायद प्रकृति की सुंदरता को दर्शाने वाला कोई साधारण वीडियो है। लेकिन असली रोमांच तब शुरू होता है जब महिला उस विशाल पत्ते को घुमाती है। पत्ते के दूसरी तरफ का दृश्य देखकर हर कोई हैरान हो गया। पत्ते के कैनवास पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बेहद खूबसूरत और जीवंत चित्रकारी उकेरी गई है। पत्ते की सतह पर किए गए रंगों के संयोजन और बारीकियों को देखकर महिला के हुनर का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। एक ड्राइवर के लिए उसकी गाड़ी सिर्फ मेटल और टायरों का ढांचा नहीं होती, बल्कि उसका हमसफर होती है, जिसने धूप, छांव और आंधी तूफान में उसका साथ निभाया होता है। केरल के एक रोडवेज बस ड्राइवर का रिटायरमेंट का ये भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है, जिसमें वो अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद बस को ऐसे विदाई दे रहे हैं जैसे कोई अपने किसी बेहद करीबी को अलविदा कह रहा हो। ड्राइवर पॉल कुरियन का ये वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इडुक्की जिले के कुमेली डिपो पर 2 सितंबर को शूट किए गए इस 1 मिनट के वीडियो में पॉल कुरियन अपनी आखिरी शिफ्ट पूरी करने के बाद बस के पास खड़े नजर आते हैं। उन्होंने बेहद भावुक अंदाज में बस की स्टेयरिंग व्हील को चूमा, उसके चारों टायरों को छूकर नमन किया और जाने से पहले गाड़ी को सैल्यूट किया। इस दौरान पॉल कुरियन की आंखें नम हो गई और वो अपने आंसू पोंछते हुए वहां से विदा हुए। सालों तक जिस बस के जरिए उन्होंने लाखों यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाया और अपने परिवार की आजीविका चलाई, उससे अलग होना उनके लिए बेहद मुश्किल था। इंटरनेट पर ये वीडियो सामने आने के बाद लोग ड्राइवर के अपने काम के प्रति समर्पण और ईमानदारी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी फिटनेस और जज्बे से युवाओं को भी हैरान कर दिया है। हरी साड़ी में एक बुजुर्ग महिला लेग प्रेस मशीन पर लेटी हुई है, वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति खुद लेग प्रेस प्लेट्स के ऊपर बैठे हुए हैं ताकि अम्मा पर अतिरिक्त वजन आ सके। अम्मा बड़े ही सहज अंदाज में लेग प्रेस रेप्स मारती हैं और आसपास खड़े युवाओं ने देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इसके बाद अम्मा बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से केबल फ्लाई और बटरफ्लाई मशीन पर चेस्ट और शोल्डर वर्कआउट करती नजर आती हैं। बिना किसी झिझक के साड़ी का पल्लू संभाले अम्मा का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लंदन के अंडरग्राउंड ट्रेन में सफर करने वाले लोगों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि एक दिन उन्हें प्लेटफॉर्म पर ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जिसे देखकर ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्री हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। मामला 2 छोटे छोटे चूहों का है जो लंदन के अंडरग्राउंड स्टेशन पर अचानक आपस में भिड़ गए। दोनों की लड़ाई इतनी मजेदार थी कि वहां मौजूद यात्रियों का ध्यान ट्रेन से ज्यादा इन दोनों फाइटर्स पर टिक गया। दोनों चूहे कभी एक दूसरे के पीछे दौड़ते तो कभी सामने आकर पंजों से ऐसे वार करते जैसे किसी बड़े बॉक्सिंग रिंग में मुकाबला चल रहा हो। कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लगा मानो दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी हो और आज हिसाब बराबर करने का दिन आ गया हो। वीडियो बनाने वाली सोनिया मैंसफील्ड अपने दोस्त अरुण के साथ स्टेशन पर मौजूद थी। दोनों की नजर जब इन चूहों पर पड़ी तो उन्होंने इस मजेदार घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। चूहों की हरकत इतनी अजीब और मजेदार थी कि वहां मौजूद लोगों के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
9: सोचिए, एक रोबोट आपके घर में आए और सिर्फ चलने या बोलने के बजाय फ्रिज खोले, सामान उठाए, चीजों को सही तरीके से पकड़े और आपके साथ मिलकर काम करे। सुनने में भविष्य की कहानी लगता है, लेकिन ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद के सामने इसकी झलक दिखाई गई। AI पावर्ड रोबोट्स ने अपनी ऐसी क्षमताओं का प्रदर्शन किया जो आने वाले वक्त में घर से लेकर फैक्ट्रीज तक काम करने का तरीका बदल सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: ये तस्वीर उस भविष्य की है जहां मशीनें सिर्फ मशीन नहीं रहेंगी। ब्रसेल्स में यूरोपियन संसद के खास रोबोटिक शोकेस में एआई पावर्ड रोबोट्स ने ताकत दिखाई। चलते रोबोट्स, चीजें उठाते रोबोट्स और बारीकी से काम करते रोबोट्स। 14 देशों के 31 एकेडमिक और इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के 15 रोबोट्स ने दिखाया कि मशीनें अब सिर्फ प्रोग्राम किए गए काम दोहराने से आगे बढ़ रही हैं। इन रोबोट्स की सबसे बड़ी खासियत है अपने आसपास की दुनिया के साथ तालमेल, किसी वस्तु को पहचानना, उसके आकार और स्थिति को समझना, फिर उतनी ही ताकत से पकड़ना जितना जरूरी हो। इंसान के हाथ के लिए ये सब बेहद स्वाभाविक है, लेकिन एक रोबोट के लिए हर मूवमेंट के पीछे सेंसर, एआई और बेहद सटीक गणना काम करती है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है फ्रिज खोलना, हमारे लिए रोज का मामूली काम, लेकिन रोबोट के लिए एक पूरा मिशन। उसे फ्रिज देखना है, हैंडल पहचानना है, सही जगह हाथ ले जाना है, ग्रिप बनानी है और फिर सही ताकत लगाकर डोर खोलना है।
1: So they have to interact with our environment, open doors, open door, drawers. In the case of our robot has to open the fridge, which seems like a simple task, we do it all the time. But imagine when you do it and your hand is very soft and compliant and is doing very quick movement.
0: असली कमाल सिर्फ रोबोट्स के चलने में नहीं, कमाल तब है जब वो देखकर फैसला करे, हाथ बढ़ाए और काम पूरा करे। और यही क्षमता इन्हें घर, अस्पताल और दूसरी जगहों पर इंसान का मददगार बनाने की दिशा में ले जा रही है। लेकिन इस तकनीकी दौड़ में यूरोप के सामने बड़ी चुनौती भी है। चीन और अमेरिका ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में भारी निवेश के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यूरोप के पास मजबूत रिसर्च है, लेकिन उसे लैब से निकालकर बड़े पैमाने पर उत्पादन तक पहुंचाने की रफ्तार अभी चुनौती बनी हुई है।
2: Huge ecosystem of suppliers, of technology, manufacturing facility that allow to accelerate and go very, very fast as China is doing or how US is doing because of the large investment that they are receiving.
0: ये सिर्फ तकनीक की दौड़ नहीं है, बुजुर्ग होती आबादी और घटते वर्कफोर्स के बीच आने वाले वक्त में ऐसे रोबोट्स की जरूरत और बढ़ सकती है।
3: It's definitely lack of funding and lack of political willingness. It's not that we don't get funding. It's not that the politicians do not pay attention to robotics, but clearly not at the same level as what happens in China.
0: फ्रिज के डोर खोलने से शुरू हुई ये कहानी घर के काम से लेकर फैक्ट्री के मुश्किल काम तक पहुंच सकती है। बेशक रोबोट्स इंसान नहीं बन सकते, लेकिन उन्हें इंसान की तरह काम सिखाने की कोशिश अब पूरी रफ्तार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति बहुत साहसी हो जाता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति के अंदर बहुत आकर्षण पैदा होता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति को बड़ी सारी संपत्ति का फायदा होता है? क्या मंगल दोष होने से भी हो सकता है लाभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: महाराष्ट्र के अकोला में गणेश उत्सव को लेकर गजब का उत्साह। शास्त्री नगर में चिंतामणि गणपति बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का भव्य स्वागत, आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमान। राजधानी दिल्ली पर भी चढ़ने लगा गणेश उत्सव का रंग। स्वीट स्टोर्स में जोरदार तरीके से बप्पा के प्रिय मोदक का निर्माण, खूबसूरत मूर्तियों से सजे बाजार, तो कहीं घरों में मिट्टी से बने गजाना। अकोला में पोला उत्सव की जोरदार तैयारियां, बैलों को सजाने के लिए रंग बिरंगी रस्सियां, घुंघरू और पट्टे खरीद रहे हैं किसान। वृषभ राजा के प्रति सम्मान दर्शाता है यह पर्व। राम नगरी अयोध्या से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा। मानदेय में 50% इजाफे के साथ मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का कैशलेस इलाज। लखनऊ में हनुमान अंश की टीम से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा नेब करौरी के जीवन पर बनी फिल्म को देश भर से मिल रहा प्यार। बॉक्स ऑफिस पर हर दिन बना रही है नए रिकॉर्ड्स। वडोदरा में 6,000 से ज्यादा युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का मेगा इवेंट समारोह में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम। 35,000 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुप्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के रंग की करते हैं। आपसे देखिए, पांच दिनों के बाद गणेशोत्सव का श्री गणेश होने वाला है। शहर शहर गजानन की आस्था के रंग दिखने लगे हैं और शहर शहर मूर्तिकार गजानन की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। गणपति पंडालों की सजावट भी अंतिम दौर में पहुंच गई है। घर गलियों में मोदक की खुशबू बिखरने लग गई है। नागपुर से लेकर अकोला तक गणपति उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर शहर बप्पा की भव्य आगमन की यात्राएं चल रही हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज और नाचते झूमते भक्तों के बीच में बप्पा पधार रहे हैं। 14 सितंबर को बेहद श्रद्धा के साथ गजानन की स्थापना की जाएगी। गणपति बप्पा के आगमन को लेकर हर उम्र के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। पूरा माहौल भक्तिमय है। जैसे जैसे गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आ रहा है, मूर्ति निर्माण से जुड़े कारीगर बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तो वहीं बप्पा के प्रिय मोदक को बनाने का काम भी जोर शोर से शुरू हो चुका है। गणपति उत्सव की तैयारियों से जुड़ी तमाम तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बप्पा की भव्य आगमन की यात्रा

अब जो स्वयं गणराज कहलाते हैं उनका स्वागत किसी राजाधिराज से कम क्या ही होगा। सो नागपुर वालों ने अब की बार वही करने की ठानी। गणेश उत्सव से पहले नागपुर में सार्वजनिक पंडालों में गणपति बाप्पा का आगमन शुरू हो चुका है। ये तस्वीर है नागपुर के महल इलाके में विराजमान होने वाले गणपति बाप्पा की। महल के दक्षिण मूर्ति चौक उत्सव पंडाल में बाप्पा को धूमधाम से लाया गया। डीजे ढोल नगाड़ों की धुन के साथ सैकड़ों लोग अपने लाडले बाप्पा का स्वागत करने पहुँचे। पंडाल को पहले ही सजाया जा चुका है, बस एक बाप्पा की कमी थी, अब वो भी पूरी हो गई। सुनागपुर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। अब 14 सितंबर को गणनायक पूरे विधि विधान के साथ अपने भव्य पंडाल में स्थापित कर दिए जाएंगे और उसके बाद 10 दिनों तक बाप्पा की भक्ति का ये उत्सव यूं ही चलता रहेगा। नागपुर क्या, इन दिनों तो शहर शहर यही सूरत दिख रही है। ये तस्वीर गुजरात के सूरत की है। सूरत में गणेश उत्सव की रौनक नजर आने लगी है। गणेश उत्सव शुरू होने से पहले शहर के अलग अलग इलाकों में गणेश प्रतिमाओं के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है। गणेश पंडालों की चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले सूरत की इस गणेश आगमन यात्रा को देखिए।

शहर की गणेश आगमन यात्राओं में इस बार पारंपरिक आयोजनों के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों की अनोखी कलाकृतियां और आकर्षक प्रस्तुतियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। तस्वीरें सूरत के भटार इलाके में साईं युवक मंडल की ओर से निकाली गई भगवान गणेश की भव्य आगमन यात्रा की है। इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और शहरवासी शामिल हुए। गणेश प्रतिमा के आगमन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आगमन यात्रा में अलग अलग धार्मिक और पौराणिक पात्रों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया।

0: कलाकारों ने अलग अलग रूप धारण कर नृत्य नाटिका का मंचन किया। कोई कलाकार राक्षस के रूप में नजर आया तो किसी ने भगवान का स्वरूप धारण कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आगमन यात्रा के दौरान भगवान शिव के तांडव की विशेष प्रस्तुति भी हुई। कलाकार भगवान शिव का स्वरूप धारण कर तांडव करते नजर आए। उनके चारों ओर जलती आग ने इस प्रस्तुति को और भी प्रभावशाली बना दिया। आगमन यात्रा में भगवान के 12 अवतारों को भी अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया। गणेश चतुर्थी से पहले भव्य आगमन यात्रा का आयोजन करने के मुख्य रूप से दो उद्देश्य थे। एक तो श्रद्धालुओं को गणेश उत्सव की धार्मिक भावना से जोड़ना और दूसरा भारतीय संस्कृति और पौराणिक परंपराओं की भव्य प्रस्तुति। और वाकई कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने पूरी यात्रा को एक अलग ही रंग दे दिया। लोगों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों को अपने मोबाइल फोन में कैद किया और बड़ी संख्या में लोग इन दृश्यों को देखने के लिए यात्रा के मार्ग पर मौजूद रहे। सूरत के भटार इलाके में इस साल गणेश उत्सव के लिए एक और खास तैयारी की जा रही है। यहाँ गणेश मंडल की ओर से ओडिशा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर भव्य गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है।
1: कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उसकी थीम पर इस बार भगवान गणेश की स्थापना की जानी है। और मूर्ति की अगर हम बात करें तो मूर्ति का आगमन हो चुका है। जिस मूर्ति के आगमन के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे और कई राज्यों से कलाकार आए थे, उन्होंने कई अपनी अलग अलग थीम पर यहाँ पर नृत्य किया था, अपना प्रदर्शन किया था। और जो आप मूर्ति देख सकते हैं वो यहाँ पर अभी रखी हुई है भगवान गणेश की, और जब यहाँ पर स्थापना की जाएगी तो गणेश उत्सव के दौरान हजारों की संख्या में भक्त भगवान गणेश के दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो ये जो मूर्ति है वही इस पंडाल में विराजमान की जाएगी। फिलहाल मूर्ति का आगमन हो चुका है।
0: हर साल यह गणेश मंडल एक अलग और अनोखी थीम पर गणेश पंडाल तैयार करवाता है। इस बार आयोजकों ने ओडिशा के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर को अपनी थीम बनाया है।
2: साईराम योग मंडल पिछले 28 सालों से बड़े बड़े थीम पे आयोजन करता है। पिछले साल वनतारा थीम, उसके पहले शीश महल, उसके पहले जयपुर महल, ऐसे अलग अलग महलों में सूरत के अंदर बहुत फेमस है। इस साल हम लोग ओडिशा का कोणार्क मंदिर का भव्य आयोजन कर रहे हैं और हमने शोभा यात्रा पिछले दिनों बहुत भव्य आयोजन किया था, जिसमें हजारों की तादाद में हमने शोभा यात्रा का बहुत बड़ा आयोजन किया था, जिसमें महाराष्ट्र से ढोल पटक आए थे, महाराष्ट्र के इवेंट द्वारा समुद्र मंथन का कार्यक्रम किया था, उसके बाद गणेश वंदना की थी।
0: आयोजकों ने इस पंडाल का 3D वीडियो भी जारी किया है, जिसमें पंडाल का प्रस्तावित स्वरूप दिखाया गया है। पंडाल तैयार होने के बाद गणेश उत्सव के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। नागपुर से योगेश वसंत पांडे और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, बात जब गणपति के आगमन की हो रही हो तो ये कैसे मुमकिन है कि मोदक का जिक्र ना हो। दरअसल मोदक को गणपति का प्रिय भोग माना जाता है। वैसे तो मोदक किसे पसंद नहीं होते, लेकिन गौरी पुत्र को मोदक से विशेष प्रेम है। गणपति से जुड़ी कहानियों में वो माँ गौरी से लेकर देवी अनुसुईया तक सबके हाथों से मोदक पाते रहे हैं और बप्पा का ये मोदक प्रेम उनके भक्तों को भी खूब भाता है। तो चलिए, एक वक्त था, ये भी आपको बता देते हैं, जब गणेशोत्सव में मोदक बनाने का चलन महाराष्ट्र तक सिमटा था, लेकिन देखते ही देखते मोदक देश के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच गया। मुंबई से लेकर दिल्ली तक मिठाई की दुकानों में गणेश चतुर्थी के मौके पर लड्डू के साथ साथ अब मोदक भी खूब बनने और बिकने लगा है। दिल्ली के चांदनी चौक की एक ऐसी ही दुकान मौजूद है जहां के लिए दावा किया जाता है कि मोदक का चस्का दिल्ली वालों की जुबान पर वहीं से चढ़ा। दरअसल 40 साल पहले इस दुकान के मालिक महाराष्ट्र के दौरे पर गए तो कुछ नया करने की चाह में लौटते समय मोदक बनाने के सांचे वहां से लेते आए। फिर क्या था, चांदनी चौक में मोदक बनने का सिलसिला चल पड़ा और अब यहां लगभग 25 तरह के मोदक तैयार किए जाते हैं। चावल, काजू, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट के अलावा स्ट्रॉबेरी, हेजलनट, कलाकंद के स्वाद वाले मोदक भी यहां पर मौजूद हैं।

बप्पा आ रहे हैं और बप्पा के आने की तैयारियां हर तरफ दिखाई पड़ रही है। आज हम आपको दिल्ली के दिल चांदनी चौक में लेकर आए हैं और चांदनी चौक की उस दुकान पर जहां पिछले 35 साल से लगातार मोदक तैयार किया जा रहा है, बप्पा का फेवरेट भोग तैयार हो रहा है। आज भी हम आपको यहां पर अलग अलग तरह के मोदक की तैयारी दिखा रहे हैं, वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं उनकी मेकिंग दिखा रहे हैं। किचन में हम मौजूद हैं और आपको बात करवाएंगे उन लोगों से भी जो पिछले 35 सालों से लगातार इस काम में लगे हुए हैं। ये दुकान 1910 के आसपास शुरू हुई थी, लेकिन ये इस दुकान के उन लोगों का इनोवेशन ही था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई चीज़ लाई जाए जो कि नॉर्थ इंडिया में भी बहुत तेज़ी से चल जाए। और नए के नाम पर वो पहुँचे महाराष्ट्र और वहाँ से लेकर आए ये सांचा। ये वो

0: फेवरेट भोग मोदक बनना शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक ये लगातार ऐसे ही बन रहा है। 25 से ज्यादा फ्लेवर ये लोग खुद बनाते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल फ्लेवर ऑर्डर भी करता है तो उसकी पसंद का मोदक भी यहाँ पर तैयार हो जाता है। हम भरत के किचन में हैं, तो कौन कौन सी वैरायटी है इसमें, कितने तरह के मोदक हैं?
1: सर देखिए, यहाँ पे शाम स्वीट्स के अंदर हम डिफरेंट तरीके के मोदक बनाते हैं। वैसे तो इंडिया हमारा रिच ऑफ कल्चर्स, टेस्ट एंड अलग अलग जगह के अलग अलग स्वाद हैं। जो मोदक असल बनना शुरू हुआ था महाराष्ट्र से, साउथ साइड से, वो बनना शुरू होता है सब अनाज का, बट दिल्ली में आते आते उसके फ्लेवर्स वेरिएशंस चेंज हो गए। जैसे अब आप यहाँ पे इस थाल में देख पा रहे हैं, एक मोतीचूर का है, केसर का है, मोती बूंदी का है, स्ट्रॉबेरी का है, आपका खोए का है, पेड़े का है, ये आपका कीवी का हो गया, मोटे गोले का हो गया, अल्फांसो विद चॉकलेट हो गया, कलाकंद का हो गया, ये केसर मिक्स हो गए। इस तरीके से वेरिएशंस हैं अलग अलग तरीके के, और इसके अलावा ना जाने कितने किस्म के बन जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट है और एक इनोवेशन है जो जिस तरीके से जैसे बना सके। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हमारे को इस तरीके का मोदक चढ़ाने का मन है, क्योंकि भगवान को तो वही अर्पित किया जाता है ना। जो भगवान को एक ही चीज़ कब तक खिलाएंगे, कहते हैं ना बहुत से लोग, तो इसलिए जो सामने वाले का स्वाद हो हम वो चीज़ बनाने में सक्सेस करते हैं उसको, ताकि वो अपने मन के हिसाब से वो पूरा कर सके अपनी पूरी श्रद्धा भाव से।
0: जो भाव का है वो भगवान का है, सिंपल सी बात है। तो अभी जब मोदक हम लोग बना रहे हैं, 35 साल पहले जो यात्रा शुरू हुई थी उस समय भी क्या वजह थी कि मतलब, क्योंकि तब यहाँ पर गणेश पूजा उस लेवल से नहीं होती थी, लोग जानते नहीं थे, कैसे इसकी शुरुआत हुई?
1: इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई थी, अब जैसे पुराने लोग बताते हैं, इसमें पुराने मतलब हमारे बड़े बताते हैं, गणेश चौथ तो गणेश चतुर्थी जिसको शॉर्ट में गणेश चौथ बोलते हैं, तो इसको तो ये तो पहले ही मनाई जाती थी, मगर दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ भगवान को लड्डुओं का भोग लगाते थे। तो फिर हमारे बड़े गए, कभी बाहर घूमने गए होंगे या किसी कारणवश गए होंगे किसी काम से, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ डिफरेंट चीज़ देखी, तो वहाँ से मोदक बनाने का साँचा लेके आए, वहाँ से रेसिपी लेके आए, वहाँ से कारीगर को लेके आए, वो बनाना सीखा, वो रेसिपी आज तक है हमारे पास, और वो साँचे भी हैं। जैसे ये बहुत पुराने साँचे हैं, मतलब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो करीबन 40 से एक साल तो हो गए होंगे इस साँचे को, जो आज भी हमने संभाल के रख रखा है उनकी याद में।
0: ये सबसे पहले आया था?
1: हाँ जी, ये आया था एक बड़े के लिए और एक छोटे के लिए, ये था इस तरीके से जी। तो पहले तो, अब तो आज की डेट में बहुत सारे स्टील के बनते हैं, स्टेनलेस स्टील के, प्लास्टिक के बनते हैं, बट ये पहले के ज़माने में जो हाथ से बनते थे ये यही थे। इसमें एक पहले लकड़ी का और होता था, लकड़ी का तो अब समय के हिसाब से थोड़ा सा नहीं रहा सही, अभी है भी नहीं हाथ में, तो इसलिए जो आपको है वो दिखा पा रहे हैं। बाकी अब जो हम बनाते
0: हैं कि आपके पूर्वजों ने कहा था कि भाई नई चीज़ दिखेगी तो वो बिकेगी, अब नई चीज़ के लिए फिर एक्सपेरिमेंट करना था और वो एक्सपेरिमेंट ये था।
2: गणेशोत्सव की शुरुआत से कई दिनों पहले ही कलाकारों ने अलग अलग रूपों में बप्पा को ढालना तो शुरू कर दिया था। ऐसे में अब बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। कहीं गणपति देवा अपने पिता महादेव के वेश में नजर आ रहे हैं, तो कहीं लाल बादशाह राजा के स्वरूप वाली प्रतिमा भी बनकर तैयार है। शहर शहर श्रद्धालु बप्पा की इन प्रतिमाओं को खरीदने पहुंच रहे हैं।

जिसकी जैसी भावना वैसे उसके बापा। गणेश उत्सव में बहस कुछ ही दिन बाकी है, सो शहर शहर गणपति की मूर्तियां बनाने का काम भी तेज हो गया है। मूर्तिकार इन मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ये तस्वीरें यूपी के झांसी से आई है। झांसी में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बाजार में इस बार भगवान गणेश के पारंपरिक स्वरूप के साथ साथ कई नए और आकर्षक डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर भगवान भोलेनाथ से जुड़े स्वरूपों वाली गणेश प्रतिमाएं लोगों को खूब पसंद आ रही है। शिवलिंग के साथ गणेश प्रतिमा, भगवान शंकर के वेश में गणेश और लाल बाग के राजा के स्वरूप वाली प्रतिमाओं की मांग खूब है। इसके साथ ही AI डिजाइन से तैयार किए गए नए नए स्वरूप भी भक्तों को भा रहे हैं। स्वरूप के अलावा बात अगर डिजाइन की करें तो घर में गणपति की स्थापना के लिए 1 से 3

0: पीठ तक की प्रतिमाओं की मांग सबसे ज्यादा है। झांसी की तरह ही दिल्ली में भी गणेश प्रतिमाओं के निर्माण का काम जोर शोर से इन दिनों चल रहा है। इस काम से जुड़े कई कारीगर बाप्पा की मूर्तियों को डिमांड के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। इन मूर्तिकारों के लिए ये सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि आस्था और कला का एक साथ पेश करने का मौका भी है। ये दो बहनें भी 20 साल से गणेश प्रतिमा तैयार कर रही हैं। पहले ये काम इनके पिता किया करते थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद दोनों बहनों ने इस काम को आगे बढ़ाया। ये दोनों बहनें न सिर्फ मूर्तियां बनाती हैं, बल्कि वो खुद गणपति बैठाती भी हैं।
1: गणेश पूजा, गणेश उत्सव, गणेश जी की मूर्ति को तैयार करना, उसको सजाना सवारना, इसके क्या मायने हैं ये आप इन दो बहनों से समझ सकते हैं, मंजू और वसुंधरा। ये दो बहनें सालों से इसी काम में लगी हुई हैं। हर साल मूर्ति को अपने हाथ से तैयार करती हैं, फिर उसे बेचती हैं, कुछ पैसे कमाती हैं। 20 साल से दोनों बहनें एक साथ ये काम कर रही हैं। इसके पहले ये काम इनके पिताजी किया करते थे, वो चल बसे तो उसके बाद दोनों बहनों ने मोर्चा संभाला हुआ है।
2: मूर्ति में सजावट करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, जो काम आते हैं वो कर लेते हैं।
1: ये काम सीखा किससे, अपने आप से या फिर पिताजी सिखा गए थे?
3: पिताजी सिखा के गए थे वैसे तो, अब देखते देखते सीख गए हम भी।
0: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को है, सो इस समय शहर शहर ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है। कोई मूर्तियों को आकार दे रहा है तो कोई रंग भरने का काम में जुटा है। खास बात ये है कि कई जगहों पर अब मूर्तियों को बनाने के लिए सिंथेटिक मटेरियल की जगह मिट्टी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन प्रयागराज में बनाई जा रही इन मूर्तियों के निर्माण में गंगा की मिट्टी, धान का पुआल या पराली और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे विसर्जन के बाद पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। यहाँ के मूर्तिकार दस्तकार उत्साहित हैं, क्योंकि लगातार बारिश के बावजूद इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की मांग बढ़ गई है। घरों से लेकर बड़े बड़े पंडालों तक के लिए बड़ी संख्या में ऑर्डर मिल रहे हैं।
4: गणेश जी का मिट्टी पूरा प्योर मिट्टी और प्रयाग गंगा जी के शुद्ध मिट्टी से बनता है, और इसमें धान का पैड़ा है और लकड़ी है, बांस है, यही इको फ्रेंडली, पूरा कलर भी हमारा इको फ्रेंडली है।
0: ये तस्वीरें राजकोट की है, जहां भी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं को ही सजाने का काम चल रहा है। कोलकाता के दीपक जाना पिछले 30 वर्षों से लगातार यहां आकर बापा की प्रतिमाओं को तैयार करते हैं। राजकोट के गणेश उत्सव में अपने हुनर के रंग भरते हैं।
5: लेटेस्ट डिजाइन इंटरनेट में आया, उसी को ढूंढ ढूंढ के कलेक्शन करके मैं लोग बनाया मूर्ति।
6: कौन सा वो खास मूर्ति है?
5: खास मूर्ति जो पहले नंबर है, नव दुर्गा का स्वरूप में, उसका नव दुर्गा है, उसका गोद में बैठा हुआ गणपति बापा 9 फीट का ऊपर है। ऐसा और भी बहुत सारे थीम है, सभी अलग अलग है, एक ही डिजाइन एक में नहीं है, सभी जितना भी मूर्ति है सब अलग अलग डिजाइन का।
0: तो वही करनाल में राजस्थान से आया मूर्तिकारों का ये परिवार पिछले 6 महीने से बापा की मूर्तियों को आकार देने में जुटा है। इनकी मेहनत का नतीजा ये है कि बापा की सैकड़ों प्रतिमाएं अब यहाँ गणेश भक्तों को लुभा रही है।
7: अभी गणेश तो तैयार करने के मेरे 6 महीना हो गया बनाते बनाते, अभी एक एक मूर्ति में 10 से 12 दिन लग जाते हैं, बारीकी काम है।
0: तो वही महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तो बच्चे ही मिट्टी से बापा की मूर्त गढ़ रहे हैं। गणेश उत्सव से पहले यहाँ बच्चों के लिए इस खास वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहाँ बच्चों ने मिट्टी से दोस्ती की और अपने हुनर के रंग भरकर बापा की प्रतिमाओं को तैयार करने में जुट गए। अब इनकी बनाई प्रतिमाएं इस साल गणेश उत्सव की शान बनेंगी। झांसी से अजय झा, राजकोट से रौनक मजीठिया, करनाल से कमलदीप, चंद्रपुर से विकास राजूकर, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
8: अब देखिए, कुछ सालों से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए गणेशोत्सव पर खास तौर से प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय इको फ्रेंडली यानी मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं बनाने का चलन भी रहा है। वास्तव में ये जल प्रदूषण से बचाव का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ऐसे में कई मूर्तिकार जहां मिट्टी और दूसरी सॉल्यूबल चीजों से एक से बढ़कर एक मूर्तियों को आकार दे रहे हैं, तो इनकी डिमांड भी मार्केट में खूब बनी हुई है।

0: बीते कुछ सालों से गणेशोत्सव पर प्रकृति का भरपूर ख्याल रखने का संदेश दिया जा रहा है। नेचर को नुकसान पहुंचाने वाले जहर से कोसों दूर बाप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां आज मूर्ति कारीगरों के साथ आस्थावानों की पहली पसंद है। ऐसे में कुछ मूर्तिकार परिवार अपनी गणेश भक्ति को ही पीढ़ियों से चली आ रही कला परंपरा में बदले हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर का एक परिवार है जो हर साल आस्थामयी और कलात्मक माहौल में भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय बांस, नारियल की छाल और मौली धागा से बेहद खूबसूरत और पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों को आकार दे रहा है। इस परिवार के मुखिया हैं शिवचरण यादव, जो कभी सरकारी मुलाजिम रहे, घर चलाने के लिए भेल भी बेची, लेकिन जब इस काम में मन नहीं रमा तो फिर कलाकारी करने का महज ख्याल ही मानो पैशन बन गया है।
1: बच्चे लोग सबसे पहले मेरे को वहाँ अध्यक्ष बनाए, उसके बाद फिर मैंने अपना धीरे धीरे स्थल सजावट का काम किया। स्थल सजावट करने के बाद अब उसमें भी मजा नहीं आया, तो फिर मैं बोला उसको बंद करके मूर्ति का काम स्टार्ट किया।
0: मूर्तिकार शिवचरण को इन मनोहारी मूर्तियों को आकार देते हुए 25 साल से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान उन्होंने ठेले पर भी बाप्पा की मूर्तियां रखकर बेची। साल 2011 से शिवचरण ने घर पर ही मौली धागा, नारियल की लकड़ी, नारियल की बुच जैसी कई इको फ्रेंडली चीजों से मूर्तियों को आकार देना शुरू किया। वहीं इस बार के गणेशोत्सव में शिवचरण ने धूप दीप, पेड़ की छाल और बांस की लकड़ी जैसी कई और पर्यावरण सुरक्षित जैसी चीजों से खूबसूरत बप्पा बनाए हैं, जिनके डिमांड काफी है।
1: इस बार हम लोग बनाए हैं धूप दीप का बनाए हैं राम भगवान के रूप में, और पेड़ के छाल से बनाया गया है, और उसके बाद बांस की लकड़ी से बनाया गया है, और नारियल की बूच को नारियल का स्वरूप दिया गया है।
2: बिंदी से शंख से
1: सीप, शंख और सीप से बनाया गया है, और ये क्या बोलते हैं,
2: बिंदी से
1: ये मोती से बनाया गया है।
0: शिवचरण और उनके परिवार की नजर में प्रकृति का सम्मान ही बाप्पा की सच्ची भक्ति है। शिवचरण अपनी पत्नी, दो बेटे और एक बहू के सहयोग से विघ्नहर्ता की ऐसी ऐसी सुंदर मूर्तियां बना रहे हैं जिनके चाहने वाले ग्राहक हर साल बढ़ रहे हैं।
3: बाकी मूर्तियां तो अलग अलग बनाए जाते हैं मिट्टी से और बाकी अन्य चीजों से, लेकिन हम लोग गणेश जी को किसी भी चीज में अलग अलग रूप में बनाकर, मतलब आप देख सकते हैं कि पीछे एक लकड़ी की छाल है, सामने धूप अगरबत्ती है, उसके हिसाब से अलग अलग चीजों में बनाते हैं।
2: आस्था भी है गणेश
3: जी? बहुत आस्था है हमारी।
0: फिलहाल तो मिट्टी की ये सुंदर सुंदर इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा हमारी प्रकृति को मुस्कुराने की वजह दे रहे हैं। रायपुर का ये परिवार गणेश मूर्ति को बनाने की कला को जिस अंदाज में जिंदा रखे हुए हैं, उससे न केवल समाज को अपना पर्यावरण बचाने की प्रेरणा मिल रही है, बल्कि खुशहाल प्रकृति बने रहने का संकेत भी मिल रहा है। तो हो जाए एक बार फिर विघ्नहर्ता का ये प्यारा सा उत्सव इको फ्रेंडली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि बप्पा पधार रहे हैं। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छे और पॉजिटिव खबरें जारी हैं, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति बहुत साहसी हो जाता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति के अंदर बहुत आकर्षण पैदा होता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति को बड़ी सारी संपत्ति का फायदा होता है? क्या मंगल दोष होने से भी हो सकता है लाभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: महाराष्ट्र के अकोला में गणेश उत्सव को लेकर गजब का उत्साह। शास्त्री नगर में चिंतामणि गणपति बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का भव्य स्वागत। आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमान। राजधानी दिल्ली पर अभी चढ़ने लगा गणेश उत्सव का रंग। स्वीट स्टोर्स में जोरदार तरीके से बप्पा के प्रिय मोदक का निर्माण। खूबसूरत मूर्तियों से सजे बाजार, तो कई घरों में मिट्टी से बने गजाना। अकोला में पोला उत्सव की जोरदार तैयारियां। बैलों को सजाने के लिए रंग बिरंगी रस्सियां, घुंघरू और पट्टे खरीद रहे हैं किसान। वृषभ राजा के प्रति सम्मान दर्शाता है यह पर्व। रामनगरी अयोध्या से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा। मानदेय में 50% इजाफे के साथ मिलेगा 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। लखनऊ में हनुमान अंश की टीम से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा नेब करौरी के जीवन पर बनी फिल्म को देश भर से मिल रहा प्यार। बॉक्स ऑफिस पर हर दिन बना रही है नए रिकॉर्ड। वडोदरा में 6,000 से ज्यादा युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का मेगा इवेंट समारोह में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम। 35,000 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: यार मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली गिरफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे परखे सच मान लेते हैं और इन्हें शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की पड़ताल और झूठ के नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले वायरल हो रहे उस वीडियो की बात होगी जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि हनुमान अंश फिल्म देखने पहुंची एक महिला हनुमान चालीसा सुनते समय अचानक बेहद भावुक हो गई और कुछ ही देर में जोर जोर से चीखने लगी। क्या है इसकी सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के से जुड़ी हुई जिसे नेपाल का बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक शख्स कुरान शरीफ पढ़ने लगा। वीडियो की सच्चाई क्या है, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी भक्ति ड्रामा फिल्म हनुमान अंश ने धूम मचाई हुई है। ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हो रही है और सोशल मीडिया पर हनुमान अंश छाई हुई है। कहीं सिनेमा घरों के बाहर लड्डू बांटे जा रहे हैं, कहीं हनुमान सदा सहायते के नारे गूंज रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि महिला हनुमान अंश देखने के बाद थिएटर के अंदर ही चीख चीख कर दहाड़े मारने लगी। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
5: जिसने भी इस दृश्य को देखा वो हैरान हो गया। थिएटर के अंदर एक महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी और अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। महिला की हरकत देखकर आसपास बैठे लोग भी दंग हो गए। आसपास बैठे लोगों ने इसे रोकने की कोशिश में जुट गए। कोई इस लम्हे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने लगा। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि थिएटर में नीम करौली बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर बनी मूवी हनुमान अंश देख रही महिला हनुमान चालीसा सुनते समय अचानक बेहद भावुक हो गई और कुछ ही देर में जोर जोर से चीखने लगी। कुछ लोग इस घटना को गहरी भक्ति का प्रणाम बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स इसे भावनात्मक प्रतिक्रिया मान रहे हैं। वीडियो के साथ एक संदेश भी शेयर किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि जब कोई फिल्म दिल को छू जाती है और इंसान भगवान की भक्ति में पूरी तरह डूब जाता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल हनुमान अंश ने सिनेमाघरों में अब तक आई फिल्मों के सामने पूरी बाजी पलट कर रख दी। इस फिल्म को लेकर न प्रमोशनल कोई प्रमोशन किया गया और न ही लोगों को रिलीज के समय भनक लगी। करीब 2 करोड़ रुपए के बजट में तैयार ये फिल्म अब तेजी से 200 करोड़ के क्लब की तरफ कमाई करती नजर आ रही है। इन सबके बीच सोशल मीडिया के पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि हनुमान अंश फिल्म में हनुमान चालीसा सुनकर ये महिला भावुक हो गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। पड़ताल में सामने आया कि वीडियो एक थिएटर के अंदर का है जहां पर्दे पर फिल्म चल रही है, उसमें नए जमाने के हिसाब से ही रिक्रिएट किया गया हनुमान चालीसा बज रहा है। इन सबके बीच एक महिला अपनी सीट पर दहाड़े मारकर रो रही है। वो इधर उधर लौट भी रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका शरीर काबू में ना हो। आसपास के लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ये चौंकाने वाला दृश्य था। लेकिन जब फैक्ट चेक टीम ने वीडियो में आ रही आवाजों को फ्रेम दर फ्रेम सुना तो ये सामने आया कि ये तेलुगु है। इससे हमें ये इशारा मिल गया कि वायरल हो रहा वीडियो आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना का हो सकता है। इसके बाद हनुमान अंश मूवी में हनुमान चालीसा को नए तरीके से रिक्रिएट नहीं किया गया, जिससे हमें दावे की सत्यता पर संदेह हुआ। साथ ही सर्च के दौरान ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि वायरल वीडियो हाल फिलहाल का है, क्योंकि अगर वाकई ऐसा हुआ होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर मिलती, लेकिन हमें ऐसा कहीं कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था, हनुमान अंश मूवी थिएटर्स में हिंदी भाषा में ही उपलब्ध है, साउथ के शहरों में भी इसके हिंदी शोज ही चल रहे हैं। अभी फिलहाल मेकर्स की तरफ से इसके आधिकारिक तेलुगु डब वर्जन की थिएटर या फिर ओटीटी रिलीज को लेकर कोई फाइनल डेट अनाउंस भी नहीं हुई है। ऐसे में हमारा सवाल ये कि वायरल हो रहे वीडियो में तेलुगु आवाजें क्यों सुनाई दे रही है। दूसरा सवाल कि हनुमान अंश मूवी में हनुमान चालीसा को रिक्रिएट नहीं किया गया है। ऐसे में हमारा सवाल सीधे तौर पर यह कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। सच और झूठ की इस रिपोर्ट में जानिए।
5: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रही वीडियो के कुछ की फ्रेंड्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो तेलुगु फिल्मों को कवर करने वाले एक इंस्टाग्राम पेज पर मिला। पेज पर वीडियो 30 जनवरी 2024 को अपलोड किया गया था। पोस्ट के मुताबिक ये घटना उपल स्थित एशियन सिनेमा में हुई थी और महिला फिल्म हनुमान के क्लाइमेक्स के दौरान भावुक होकर अजीब तरह से प्रतिक्रिया देने लगी थी। साल के दौरान हमें ये वीडियो एक YouTube चैनल पर 30 जनवरी 2024 को अपलोड हुआ मिला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि एक महिला हनुमान मूवी देखते समय असामान्य हरकतें करने लगी थी। इससे स्पष्ट होता है कि वायरल वीडियो हाल में रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश का नहीं है, बल्कि करीब 2.5 साल पुराना है। सर्च के दौरान एक वेबसाइट पर 30 जनवरी 2024 को इस घटना पर प्रकाशित रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में वायरल वीडियो वाले दृश्य भी देखने को मिले। रिपोर्ट के अनुसार महिला फिल्म देखने के दौरान इतनी भावुक हो गई कि वह कांपने लगी और अपनी सीट से नीचे गिर गई। रिपोर्ट में इस घटना को तेलुगु फिल्म हनुमान के क्लाइमेक्स से जोड़ा गया था। हनुमान और हनुमान अंश दो अलग अलग फिल्में हैं। हनुमान तेलुगु सुपर हीरो फिल्म है जो हनुमान से जुड़े पौराणिक संदर्भों को सुपर हीरो कथा के साथ पेश करती है। वही हनुमान अंश नीम करोली बाबा के जीवन और उनके आध्यात्मिक यात्रा पर केंद्रित फिल्म है। हमारे पड़ताल में यह साक्ष्य से स्पष्ट है कि थिएटर में अजीबोगरीब हरकतें करती महिला का वायरल वीडियो नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश से संबंधित नहीं है। ये वीडियो करीब 2.5 साल पुराना है और जनवरी 2024 में तेलुगु फिल्म हनुमान देखते हुए सामने आया था। अब इस पुराने वीडियो को हाल ही रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश से जोड़कर भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है।
2: अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। और इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग सड़क पर दुआ करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि नेपाल का है, जहां पर आपदा के बीच लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। लेकिन जब वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में।

0: में 26 अगस्त को आए विनाशकारी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। इस हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इन सबके बीच चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। किसी पहाड़ वाली जगह पर कई लोग सड़क किनारे कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां कहीं वर्दीधारी भी मौजूद है और कुछ लोग आते जाते हुए भी देखे जा रहे हैं। वीडियो को इस दावे से शेयर किया जा रहा है कि नेपाल में बाढ़ से बचाव के लिए कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि ये है ईमान की ताकत। ये वीडियो नेपाल का जहां पर कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है और दुआ की जा रही है, माशाल्लाह। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर 11 सेकंड का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कई लोग सड़क किनारे कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां कई वर्दीधारी भी मौजूद हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि नेपाल त्रासदी के बाद कुछ लोग सड़क पर कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। वीडियो को लेकर चौंकाने वाला दावा किया जा रहा था, क्योंकि इसके जरिए भी कहा जा रहा था कि नेपाल में बाढ़ से बचाव के लिए लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ा है। हाँ, ये बात सच है कि 26 अगस्त को नेपाल में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है, लेकिन वायरल वीडियो इसी बाढ़ से संबंधित है, ये जानना जरूरी हो गया था। लेकिन वीडियो को देखने से हमें इसमें ऐसी कई चीजें देखने को मिली जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। मसलन वीडियो में एक जगह एक वर्दीधारी जवान के जैकेट पर लिखे शब्दों को हमने जब गौर से देखा तो इस पर किर्गिस्तान लिखा हुआ था। हमें यह देखकर काफी हैरानी हुई। वायरल वीडियो नेपाल का है तो फिर यहां पर किर्गिस्तान के जवान का क्या काम? नेपाल में आपदा राहत कार्यों में शामिल जवान नीले रंग की कैमफ्लाज यानी कि नीली चितकबरी वर्दी में नजर आ रहे थे, जबकि आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान डार्क ग्रे बैकग्राउंड के साथ ही लाइट ग्रे, डार्क ब्लू और फिर ब्लैक मिक्स वाली वर्दी पहनते हैं। ऐसे में हमें वीडियो की सत्यता पर संदेह हुआ। हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि सर्च के दौरान जानकारी जो सामने आई है उसमें किर्गिस्तान के राष्ट्रपति ने नेपाल आपदा पर दुख जरूर जताया, लेकिन वहां कोई सैनिक रेस्क्यू टीम का हिस्सा बना ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। अब सवाल यह है कि अगर वायरल वीडियो नेपाल का है और बाढ़ से बचाव के लिए कुरान शरीफ पढ़ रहा है ये जवान, तो फिर यहां पर किर्गिस्तान रेस्क्यू टीम के जवान नजर क्यों नहीं आ रहे? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नेपाल के साथ जोड़कर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही? सच और झूठ।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 25 जून को अपलोड किया गया था। इसके बाद हमने इस इंस्टाग्राम अकाउंट में मौजूद बायो का अनुवाद किया, जिसके जरिए जानकारी सामने आई कि यह अकाउंट किर्गिस्तान के चुई ओब्लास्ट के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय के प्रेस विभाग से जुड़ा है। इतना ही नहीं, हमें इस अकाउंट पर अपलोड किए गए कई वीडियो में उसी ड्रेस में दिख रहे कई वर्दीधारी भी मिले जो वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियोस में वर्दीधारियों द्वारा पहने गए लाइफ जैकेट पर किर्गिस्तान रेस्क्यू भी साफ साफ लिखा हुआ देखा जा सकता है। इसी दौरान हमें किर्गिस्तान के एक मीडिया पोर्टल के फेसबुक अकाउंट से 26 जून को पोस्ट किया गया वीडियो मिला। इस वीडियो में भी वायरल वीडियो से मिलते जुलते दृश्य मौजूद थे। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में लिखा हुआ था, किर्गिस्तान के केगेटी घाटी में एक 6 वर्षीय बच्चा पानी में गिर गया था जिसकी तलाश की जा रही थी। इसमें कई देशों के वॉलंटियर्स भी शामिल हुए थे। इसी दौरान बिरदिक गांव के हाफिजों ने बच्चे की खोज के लिए कुरान पढ़ी थी। जांच में हमें 25 जून को किए गए कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट भी मिले जिनमें वायरल वीडियो से मिलते जुलते दृश्य मौजूद थे। इस संबंध में हमें किर्गिस्तान की एक न्यूज वेबसाइट पर 26 जून का प्रकाशित रिपोर्ट भी मिला। रिपोर्ट में बताया गया था कि 23 जून को एक कार केगेटी नदी में गिर गई थी। इसमें 2 महिलाएं और 5 बच्चे मौजूद थे। दोनों महिलाएं और 3 बच्चे गाड़ी से निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन 2 बच्चे उसमें ही फंसे रह गए थे। 12 वर्षीय बच्चे की बॉडी पहले ही रेस्क्यू टीम ने रिकवर कर ली थी। बाद में 26 जून को उस बच्चे का शव भी बरामद हो गया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से साफ है कि नेपाल में बाढ़ से बचाव के लिए कुरान पढ़े जाने के दावे से वायरल ये वीडियो किर्गिस्तान का है।
1: चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
3: अरे बेटा बोल तो दिया नेम फाइव सीजन्स, विंटर समर ऑटम स्प्रिंग मॉनसून, क्या दिक्कत है इसमें? नेम फाइव सीजन्स तो नहीं आते तो मैं इनका वाला वो मीनिंग लिखो फटाफट से। चलो बेटा मेरे पास पेंसिल्स का टाइम नहीं, अपनी लाया करो, चलो अपनी पेंसिल यूज करो। अब मैं पेंसिल देने वाली बैठी हुई हूँ, वर्क देती हूँ आपको, बाकी पेंसिल्स अपनी लाया करो पेंसिल्स घर से। कल से ना सारे बच्चे अपने अपनी पेंसिल्स लेके आएंगे, आज लास्ट टाइम है, दे रही हूँ बस मार्क पकड़ो।
4: छोटी सी मैडम ने घर में ही लगा ली अपनी क्लास, बच्चे जिस अंदाज में पढ़ा रही है उसे देखकर यूजर्स मुस्कुरा रहे हैं। दरअसल बच्ची ने नोटबुक्स को ही अपने छोटे छोटे स्टूडेंट्स की तरह मान लिया है और बड़े ही ध्यान से उन्हें पढ़ाती नजर आ रही है। कभी वो कॉपी की तरफ देखकर समझाने की कोशिश करती है तो कभी टीचर की तरह अपना पूरा ध्यान क्लास पर लगाती दिखाई देती है। सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान बच्ची के अंदाज ने खींचा है, जिस तरह से वो टीचर बनकर पढ़ाने का खेल खेल रही है वो देखने में बेहद प्यारा और मजेदार है। बच्ची की बॉडी लैंग्वेज और पढ़ाने का तरीका देखकर सोशल मीडिया यूजर्स उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।
3: आपको पैन को वाला चैप्टर ना दोनों का, चलो दो मिनट आप जस्ट का चार पांच छह मीनिंग देखो, लाइन डाल दिया मीनिंग देखो, मेरे को नहीं पता क्या खुद लिखो, एक तो ऊपर से लेटर और मीनिंग्स भी मैं बताऊं।
4: एक छोटे बच्चे ने अपने परिवार के बारे में लिखे सवाल का ऐसा जवाब दिया कि उसकी कल्पना और बेबाकी दोनों चर्चा का विषय बन गए। तस्वीर में बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आ रहा है और उसके सामने उसकी लिखी हुई कॉपी रखी है। कॉपी में टीचर ने अपने परिवार के बारे में लिखे सवाल दिया था, इसके जवाब में बच्चे ने अपने परिवार के हर सदस्य के बारे में बड़े ही अनोखे अंदाज में लिखा है। बच्चे ने शुरुआत करते हुए लिखा कि उसका परिवार खतरों का खिलाड़ी है। इसके बाद पिता के बारे में उसने लिखा कि उनके पापा शक्तिमान का रूप है। माँ को उसने घर की लक्ष्मी बाई बताया है। यहाँ तक तो जवाब काफी प्यारा और सामान्य लगता है, लेकिन इसके बाद बच्चे की कल्पना कुछ ज्यादा ही मजेदार हो जाती है। बच्चे ने अपनी बहन का जिक्र भी बेहद अनोखे अंदाज में किया है। इसके बाद उसने अपने बारे में जो लिखा वही इस पूरी कॉपी का सबसे मजेदार हिस्सा नजर आता है। बच्चे ने खुद को घर का सबसे नालायक बताया है। उसकी ये बेबाक लाइन पढ़कर लोग हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे हैं। जवाब पढ़ने के बाद टीचर ने लाल पेन से कुछ शब्दों को घेरा और नीचे अपनी टिप्पणी भी लिखी। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि बच्चे को इस जवाब के लिए 10 में से 10 नंबर मिले हैं। टीचर का ये फैसला भी लोगों को खूब गुदगुदा रहा है। गुरु शिष्य के रिश्ते की ये खूबसूरत तस्वीर लोगों को खूब पसंद आ रही है। यहाँ तोहफे की कीमत नहीं बल्कि उसके पीछे छिपा बच्चों का स्नेह मायने रखता है। किसी बच्चे के हाथ में खेत से तोड़ी गई तोरई है, कोई बच्चा अपनी भैंस का दूध लेकर पहुंचा है तो कोई अपने घर खेत से ककोड़ा लेकर आया है। देखने में चीजें भले ही साधारण लगे लेकिन बच्चों की नजर में ये उनके पास मौजूद सबसे खास चीजों में से है। इस पूरे भाव को सबसे ज्यादा खास बनाता है शिक्षक का व्यवहार। बच्चों की लाई गई इन चीजों को वो सामान्य सामान की तरह नहीं लेते, वो उन्हें अपने सिर से लगाकर प्रणाम करते हैं, मानो बच्चों ने सामान नहीं बल्कि अपना प्यार और सम्मान उनके हाथों में रखा हो। शिक्षक भी स्नेह को पूरे सम्मान के साथ अपने सिर माथे लगा लेते हैं। इस अद्भुत कलाकारी को देखकर लोग दंग हैं। नीली साड़ी पहने एक महिला अपने हाथों में एक विशालकाय हरा पत्ता थामे हुए दिखाई देती है। महिला पत्ते को पकड़े हुए मुस्कुराती है, जिससे लोगों को लगता है कि ये शायद प्रकृति की सुंदरता को दर्शाने वाला कोई साधारण वीडियो है। लेकिन असली रोमांच तब शुरू होता है जब महिला उस विशाल पत्ते को घुमाती है। पत्ते के दूसरी तरफ का दृश्य देखकर हर कोई हैरान हो गया। पत्ते के कैनवास पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बेहद खूबसूरत और जीवंत चित्रकारी उकेरी गई है। पत्ते की सतह पर किए गए रंगों के संयोजन और बारीकियों को देखकर महिला के हुनर का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। एक ड्राइवर के लिए उसकी गाड़ी सिर्फ मेटल और टायरों का ढांचा नहीं होती, बल्कि उसका हम सफर होती है, जिसने धूप, छांव और आंधी तूफान में उसका साथ निभाया होता है। केरल की एक रोडवेज बस ड्राइवर का रिटायरमेंट का ये भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है, जिसमें वो अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद बस को ऐसे विदाई दे रहे हैं जैसे कोई अपने किसी बेहद करीबी को अलविदा कह रहा हो। ड्राइवर पॉल कुरियन का ये वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इडुक्की जिले के कुमेली डिपो पर 2 सितंबर को शूट किए गए इस 1 मिनट के वीडियो में पॉल कुरियन अपनी आखिरी शिफ्ट पूरी करने के बाद बस के पास खड़े नजर आते हैं। उन्होंने बेहद भावुक अंदाज में बस की स्टेयरिंग व्हील को चूमा, उसके चारों टायरों को छूकर नमन किया और जाने से पहले गाड़ी को सल्यूट किया। इस दौरान पॉल कुरियन की आंखें नम हो गई और वो अपने आंसू पोंछते हुए वहां से विदा हुए। सालों तक जिस बस के जरिए उन्होंने लाखों यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाया और अपने परिवार की आजीविका चलाई, उससे अलग होना उनके लिए बेहद मुश्किल था। इंटरनेट पर ये वीडियो सामने आने के बाद लोग ड्राइवर के अपने काम के प्रति समर्पण और ईमानदारी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी फिटनेस और जज्बे से युवाओं को भी हैरान कर दिया है। हरी साड़ी में एक बुजुर्ग महिला लेग प्रेस मशीन पर लेटी हुई है, वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति खुद लेग प्रेस प्लेट्स के ऊपर बैठे हुए हैं ताकि अम्मा पर अतिरिक्त वजन आ सके। अम्मा बड़े ही सहज अंदाज में लेग प्रेस रेप्स मारती हैं और आसपास खड़े युवाओं ने देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इसके बाद अम्मा बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से केबल फ्लाई और बटरफ्लाई मशीन पर चेस्ट और शोल्डर वर्कआउट करती नजर आती हैं। बिना किसी झिझक के साड़ी का पल्लू संभाले अम्मा का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लंदन के अंडरग्राउंड ट्रेन में सफर करने वाले लोगों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि एक दिन उन्हें प्लेटफॉर्म पर ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जिसे देखकर ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्री हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। मामला 2 छोटे छोटे चूहों का है जो लंदन के अंडरग्राउंड स्टेशन पर अचानक आपस में भिड़ गए। दोनों की लड़ाई इतनी मजेदार थी कि वहां मौजूद यात्रियों का ध्यान ट्रेन से ज्यादा इन दोनों फाइटर्स पर टिक गया। दोनों चूहे कभी एक दूसरे के पीछे दौड़ते तो कभी सामने आकर पंजों से ऐसे वार करते जैसे किसी बड़े बॉक्सिंग रिंग में मुकाबला चल रहा हो। कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लगा मानो दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी हो और आज हिसाब बराबर करने का दिन आ गया हो। वीडियो बनाने वाली सोनिया मैंसफील्ड अपने दोस्त अरुण के साथ स्टेशन पर मौजूद थी। दोनों की नजर जब इन चूहों पर पड़ी तो उन्होंने इस मजेदार घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। चूहों की हरकत इतनी अजीब और मजेदार थी कि वहां मौजूद लोगों के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सोचिए एक रोबोट आपके घर में आए और सिर्फ चलने या बोलने की बजाय फ्रिज खोले, सामान उठाए, चीजों को सही तरीके से पकड़े और आपके साथ मिलकर काम करे। सुनने में भविष्य की कहानी लगता है, लेकिन ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद के सामने इसकी झलक दिखाई गई। एआई पावर्ड रोबोट्स ने अपनी ऐसी क्षमताओं का प्रदर्शन किया जो आने वाले वक्त में घर से लेकर फैक्ट्रीज तक काम करने का तरीका बदल सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: ये तस्वीर उस भविष्य की है जहां मशीनें सिर्फ मशीन नहीं रहेंगी। ब्रसेल्स में यूरोपियन संसद के खास रोबोटिक शोकेस में एआई पावर्ड रोबोट्स ने ताकत दिखाई। चलते रोबोट्स, चीजें उठाते रोबोट्स और बारीकी से काम करते रोबोट्स। 14 देशों के 31 एकेडमिक और इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के 15 रोबोट्स ने दिखाया कि मशीनें अब सिर्फ प्रोग्राम किए गए काम दोहराने से आगे बढ़ रही हैं। इन रोबोट्स की सबसे बड़ी खासियत है अपने आसपास की दुनिया के साथ तालमेल, किसी वस्तु को पहचानना, उसके आकार और स्थिति को समझना, फिर उतनी ही ताकत से पकड़ना जितना जरूरी हो। इंसान के हाथ के लिए ये सब बेहद स्वाभाविक है, लेकिन एक रोबोट के लिए हर मूवमेंट के पीछे सेंसर, एआई और बेहद सटीक गणना काम करती है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है फ्रिज खोलना, हमारे लिए रोज का मामूली काम, लेकिन रोबोट के लिए एक पूरा मिशन। उसे फ्रिज देखना है, हैंडल पहचानना है, सही जगह हाथ ले जाना है, ग्रिप बनानी है और फिर सही ताकत लगाकर डोर खोलना है।
1: So they have to interact with our environment, open doors, open door, drawers. In the case of our robot has to open the fridge, which seems like a simple task, we do it all the time. But imagine when you do it and your hand is very soft and compliant and is doing very quick movement.
0: असली कमाल सिर्फ रोबोट्स के चलने में नहीं, कमाल तब है जब वो देखकर फैसला करे, हाथ बढ़ाए और काम पूरा करे। और यही क्षमता इन्हें घर, अस्पताल और दूसरी जगहों पर इंसान का मददगार बनाने की दिशा में ले जा रही है। लेकिन इस तकनीकी दौड़ में यूरोप के सामने बड़ी चुनौती भी है। चीन और अमेरिका ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में भारी निवेश के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यूरोप के पास मजबूत रिसर्च है, लेकिन उसे लैब से निकालकर बड़े पैमाने पर उत्पादन तक पहुंचाने की रफ्तार अभी चुनौती बनी हुई है।
2: Huge ecosystem of suppliers, of technology, manufacturing facility that allow to accelerate and go very, very fast as China is doing or how US is doing because of the large investment that they are receiving.
0: ये सिर्फ तकनीक की दौड़ नहीं है, बुजुर्ग होती आबादी और घटते वर्कफोर्स के बीच आने वाले वक्त में ऐसे रोबोट्स की जरूरत और बढ़ सकती है।
3: It's definitely lack of funding and lack of political willingness. It's not that we don't get funding. It's not that the politicians do not pay attention to robotics, but clearly not at the same level as what happens in China.
0: फ्रिज के डोर खोलने से शुरू हुई ये कहानी घर के काम से लेकर फैक्ट्री के मुश्किल काम तक पहुंच सकती है। बेशक रोबोट्स इंसान नहीं बन सकते, लेकिन उन्हें इंसान की तरह काम सिखाने की कोशिश अब पूरी रफ्तार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
5: क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति बहुत साहसी हो जाता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति के अंदर बहुत आकर्षण पैदा होता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति को बड़ी सारी संपत्ति का फायदा होता है? क्या मंगल दोष होने से भी हो सकता है लाभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: महाराष्ट्र के अकोला में गणेश उत्सव को लेकर गजब का उत्साह। शास्त्री नगर में चिंतामणि गणपति बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का भव्य स्वागत, आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमान। राजधानी दिल्ली पर भी चढ़ने लगा गणेश उत्सव का रंग, स्वीट स्टोर्स में जोरदार तरीके से बप्पा के प्रिय मोदक का निर्माण, खूबसूरत मूर्तियों से सजे बाजार, तो कहीं घरों में मिट्टी से बने गजानन। अकोला में पोला उत्सव की जोरदार तैयारियां, बैलों को सजाने के लिए रंग बिरंगी रस्सियां, घुंघरू और पट्टे खरीद रहे हैं किसान। वृषभ राजा के प्रति सम्मान दर्शाता है यह पर्व। रामनगरी अयोध्या से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा। मानदेय में 50% इजाफे के साथ मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का कैशलेस इलाज। लखनऊ में हनुमान अंश की टीम से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा नेब करौरी के जीवन पर बनी फिल्म को देश भर से मिल रहा प्यार। बॉक्स ऑफिस पर हर दिन बना रही है नए रिकॉर्ड्स। वडोदरा में 6,000 से ज्यादा युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का मेगा इवेंट समारोह में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम। 35,000 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के रंग की करते हैं। आपसे देखिए, पांच दिनों के बाद गणेशोत्सव का श्री गणेश होने वाला है। शहर शहर गजानन की आस्था के रंग दिखने लगे हैं और शहर शहर मूर्तिकार गजानन की मूर्तियों को अंतिम रूप देने लगे हैं। गणपति पंडालों की सजावट भी अंतिम दौर में पहुंच गई है। घर गलियों में मोदक की खुशबू बिखरने लग गई है। नागपुर से लेकर अकोला तक गणपति उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर शहर बप्पा की भव्य आगमन की यात्राएं चल रही हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज और नाचते झूमते भक्तों के बीच में बप्पा पधार रहे हैं। 14 सितंबर को बेहद श्रद्धा के साथ गजानन की स्थापना की जाएगी। गणपति बप्पा के आगमन को लेकर हर उम्र के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। पूरा माहौल भक्तिमय है। जैसे जैसे गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आ रहा है, मूर्ति निर्माण से जुड़े कारीगर बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तो वहीं बप्पा के प्रिय मोदक को बनाने का काम भी जोर शोर से शुरू हो चुका है। गणपति उत्सव की तैयारियों से जुड़ी तमाम तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बप्पा की भव्य आगमन की

जो स्वयं गणराज कहलाते हैं उनका स्वागत किसी राजाधिराज से कम क्या ही होगा। सो नागपुर वालों ने अब की बार वही करने की ठानी। गणेश उत्सव से पहले नागपुर में सार्वजनिक पंडालों में गणपति बाप्पा का आगमन शुरू हो चुका है। ये तस्वीर है नागपुर के महल इलाके में विराजमान होने वाले गणपति बाप्पा की। महल के दक्षिण मूर्ति चौक उत्सव पंडाल में बाप्पा को धूमधाम से लाया गया। डीजे ढोल नगाड़ों की धुन के साथ सैकड़ों लोग अपने लाडले बाप्पा का स्वागत करने पहुँचे। पंडाल को पहले ही सजाया जा चुका है, बस एक बाप्पा की कमी थी, अब वो भी पूरी हो गई। सुनागपुर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। अब 14 सितंबर को गणनायक पूरे विधि विधान के साथ अपने भव्य पंडाल में स्थापित कर दिए जाएंगे और उसके बाद 10 दिनों तक बाप्पा की भक्ति का ये उत्सव यूं ही चलता रहेगा। नागपुर क्या, इन दिनों तो शहर शहर यही सूरत दिख रही है। ये तस्वीर गुजरात के सूरत की है। सूरत में गणेश उत्सव की रौनक नजर आने लगी है। गणेश उत्सव शुरू होने से पहले शहर के अलग अलग इलाकों में गणेश प्रतिमाओं के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है। गणेश पंडालों की चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले सूरत की इस गणेश आगमन यात्रा को देखिए।

शहर की गणेश आगमन यात्राओं में इस बार पारंपरिक आयोजनों के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों की अनोखी कलाकृतियां और आकर्षक प्रस्तुतियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। तस्वीरें सूरत के भटार इलाके में साई युवक मंडल की ओर से निकाली गई भगवान गणेश की भव्य आगमन यात्रा की है। इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और शहरवासी शामिल हुए। गणेश प्रतिमा के आगमन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आगमन यात्रा में अलग अलग धार्मिक और पौराणिक पात्रों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया।

0: कलाकारों ने अलग अलग रूप धारण कर नृत्य नाटिका का मंचन किया। कोई कलाकार राक्षस के रूप में नजर आया तो किसी ने भगवान का स्वरूप धारण कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आगमन यात्रा के दौरान भगवान शिव के तांडव की विशेष प्रस्तुति भी हुई। कलाकार भगवान शिव का स्वरूप धारण कर तांडव करते नजर आए। उनके चारों ओर जलती आग ने इस प्रस्तुति को और भी प्रभावशाली बना दिया। आगमन यात्रा में भगवान के 12 अवतारों को भी अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया। गणेश चतुर्थी से पहले भव्य आगमन यात्रा का आयोजन करने के मुख्य रूप से दो उद्देश्य थे। एक तो श्रद्धालुओं को गणेश उत्सव की धार्मिक भावना से जोड़ना और दूसरा भारतीय संस्कृति और पौराणिक परंपराओं की भव्य प्रस्तुति। और वाकई कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने पूरी यात्रा को एक अलग ही रंग दे दिया। लोगों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों को अपने मोबाइल फोन में कैद किया और बड़ी संख्या में लोग इन दृश्यों को देखने के लिए यात्रा के मार्ग पर मौजूद रहे। सूरत के भटार इलाके में इस साल गणेश उत्सव के लिए एक और खास तैयारी की जा रही है। यहाँ गणेश मंडल की ओर से ओडिशा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर भव्य गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है।
1: कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उसकी थीम पर इस बार भगवान गणेश की स्थापना की जानी है। और मूर्ति की अगर हम बात करें तो मूर्ति का आगमन हो चुका है। जिस मूर्ति के आगमन के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे और कई राज्यों से कलाकार आए थे, उन्होंने कई अपनी अलग अलग थीम पर यहाँ पर नृत्य किया था, अपना प्रदर्शन किया था। और जो आप मूर्ति देख सकते हैं वो यहाँ पर अभी रखी हुई है भगवान गणेश की, और जब यहाँ पर स्थापना की जाएगी तो गणेश उत्सव के दौरान हजारों की संख्या में भक्त भगवान गणेश के दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो ये जो मूर्ति है वही इस पंडाल में विराजमान की जाएगी। फिलहाल मूर्ति का आगमन हो चुका है।
0: हर साल यह गणेश मंडल एक अलग और अनोखी थीम पर गणेश पंडाल तैयार करवाता है। इस बार आयोजकों ने ओडिशा के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर को अपनी थीम बनाया है।
2: साईराम योग मंडल पिछले 28 सालों से बड़े बड़े थीम पे आयोजन करता है। पिछले साल वनतारा थीम, उसके पहले शीश महल, उसके पहले जयपुर महल, ऐसे अलग अलग महलों में सूरत के अंदर बहुत फेमस है। इस साल हम लोग ओडिशा का कोणार्क मंदिर का भव्य आयोजन कर रहे हैं और हमने शोभा यात्रा पिछले दिनों बहुत भव्य आयोजन किया था, जिसमें हजारों की तादाद में हमने शोभा यात्रा का बहुत बड़ा आयोजन किया था, जिसमें महाराष्ट्र से ढोल पटक आए थे, महाराष्ट्र के इवेंट द्वारा समुद्र मंथन का कार्यक्रम किया था, उसके बाद गणेश वंदना की थी।
0: आयोजकों ने इस पंडाल का 3D वीडियो भी जारी किया है, जिसमें पंडाल का प्रस्तावित स्वरूप दिखाया गया है। पंडाल तैयार होने के बाद गणेश उत्सव के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। नागपुर से योगेश वसंत पांडे और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, बात जब गणपति के आगमन की हो रही हो तो ये कैसे मुमकिन है कि मोदक का जिक्र ना हो। दरअसल मोदक को गणपति का प्रिय भोग माना जाता है। वैसे तो मोदक किसे पसंद नहीं होते, लेकिन गौरी पुत्र को मोदक से विशेष प्रेम है। गणपति से जुड़ी कहानियों में वो माँ गौरी से लेकर देवी अनुसुईया तक सबके हाथों से मोदक पाते रहे हैं और बप्पा का ये मोदक प्रेम उनके भक्तों को भी खूब भाता है। तो चलिए, एक वक्त था, ये भी आपको बता देते हैं, जब गणेशोत्सव में मोदक बनाने का चलन महाराष्ट्र तक सिमटा था, लेकिन देखते ही देखते मोदक देश के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच गया। मुंबई से लेकर दिल्ली तक मिठाई की दुकानों में गणेश चतुर्थी के मौके पर लड्डू के साथ साथ अब मोदक भी खूब बनने और बिकने लगा है। दिल्ली के चांदनी चौक की एक ऐसी ही दुकान मौजूद है जहां के लिए दावा किया जाता है कि मोदक का चस्का दिल्ली वालों की जुबान पर वहीं से चढ़ा। दरअसल 40 साल पहले इस दुकान के मालिक महाराष्ट्र के दौरे पर गए तो कुछ नया करने की चाह में लौटते समय मोदक बनाने के सांचे वहां से लेते आए। फिर क्या था, चांदनी चौक में मोदक बनने का सिलसिला चल पड़ा और अब यहां लगभग 25 तरह के मोदक तैयार किए जाते हैं। चावल, काजू, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट के अलावा स्ट्रॉबेरी, हेजलनट, कलाकंद के स्वाद वाले मोदक भी यहां पर मौजूद हैं।

0: बप्पा आ रहे हैं और बप्पा के आने की तैयारियां हर तरफ दिखाई पड़ रही है। आज हम आपको दिल्ली के दिल चांदनी चौक में लेकर आए हैं और चांदनी चौक की उस दुकान पर जहां पिछले 35 साल से लगातार मोदक तैयार किया जा रहा है, बप्पा का फेवरेट भोग तैयार हो रहा है। आज भी हम आपको यहां पर अलग अलग तरह के मोदक की तैयारी दिखा रहे हैं, वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं, उनकी मेकिंग दिखा रहे हैं। किचन में हम मौजूद हैं और आपको बात करवाएंगे उन लोगों से भी जो पिछले 35 सालों से लगातार इस काम में लगे हुए हैं। ये दुकान 1910 के आसपास शुरू हुई थी, लेकिन ये इस दुकान के उन लोगों का इनोवेशन ही था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई चीज़ लाई जाए जो कि नॉर्थ इंडिया में भी बहुत तेज़ी से चल जाए। और नए के नाम पर वो पहुँचे महाराष्ट्र और वहाँ से लेकर आए ये सांचा। ये वो पहला सांचा है जो इस दुकान के पूर्वज लेकर आए थे मोदक बनाने के लिए। ये सांचा आया और तब से यहाँ पर बप्पा का फेवरेट भोग मोदक बनना शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक ये लगातार ऐसे ही बन रहा है। 25 से ज़्यादा फ्लेवर ये लोग खुद बनाते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल फ्लेवर ऑर्डर भी करता है तो उसकी पसंद का मोदक भी यहाँ पर तैयार हो जाता है। हम भरत के किचन में हैं, तो कौन कौन सी वैरायटी है इसमें, कितने तरह के मोदक हैं?
1: सर देखिए, यहाँ पे शाम स्वीट्स के अंदर हम डिफरेंट तरीके के मोदक बनाते हैं। वैसे तो इंडिया हमारा रिच ऑफ कल्चर्स, टेस्ट एंड अलग अलग जगह के अलग अलग स्वाद हैं। जो मोदक असल बनना शुरू हुआ था महाराष्ट्र से, साउथ साइड से, वो बनना शुरू होता है सब अनाज का, बट दिल्ली में आते आते उसके फ्लेवर्स वेरिएशंस चेंज हो गए। जैसे अब आप यहाँ पे इस थाल में देख पा रहे हैं, एक मोतीचूर का है, केसर का है, मोती बूंदी का है, स्ट्रॉबेरी का है,

0: गोले का हो गया, अल्फांसो विद चॉकलेट हो गया, कलाकंद का हो गया, ये केसर मिक्स हो गए, इस तरीके से वेरिएशन हैं अलग अलग तरीके के, और इसके अलावा ना जाने कितने किस्म के बन जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट है और एक इनोवेशन है जो जिस तरीके से जैसे बना सके। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हमारे को इस तरीके का मोदक चढ़ाने का मन है, क्योंकि भगवान को तो वही अर्पित किया जाता ना, जो भगवान को एक ही चीज़ कब तक खिलाएंगे कहते हैं ना बहुत से लोग, तो इसलिए जो सामने वाले का स्वाद हो हम वो चीज़ बनाने में सक्सेस करते हैं उसको, ताकि वो अपने मन के हिसाब से वो पूरा कर सके अपनी पूरी श्रद्धा भाव से।
1: जो भाव का है वो भगवान का है, सिंपल सी बात है। तो अभी जब मोदक हम लोग बना रहे हैं, 35 साल पहले जो यात्रा शुरू हुई थी उस समय भी क्या वजह थी कि मतलब क्योंकि तब यहाँ पर गणेश पूजा उस लेवल से नहीं होती थी, लोग जानते नहीं थे, कैसे इसकी शुरुआत हुई?
0: इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई थी, अब जैसे पुराने लोग बताते हैं, इसमें पुराने मतलब हमारे बड़े बताते हैं, गणेश चौथ तो गणेश चतुर्थी जिसको शॉर्ट में गणेश चौथ बोलते हैं, तो इसको तो ये तो पहले ही मनाई जाती थी, मगर दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ भगवान को लड्डुओं का भोग लगाते थे। तो फिर हमारे बड़े गए, कभी बाहर घूमने गए होंगे या किसी कारणवश गए होंगे किसी काम से, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ डिफरेंट चीज़ देखी, तो वहाँ से मोदक बनाने का साँचा लेके आए, वहाँ से रेसिपी लेके आए, वहाँ से कारीगर को लेके आए, वो बनाना सीखा, वो रेसिपी आज तक है हमारे पास, और वो साँचे भी हैं, जैसे ये बहुत पुराने साँचे हैं, मतलब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो करीबन 40 से एक साल तो हो गए होंगे इस साँचे को, जो आज भी हमने संभाल के रख रखा है उनकी याद में।
1: ये सबसे पहले आया था?
0: हाँ जी, ये आया था एक बड़े के लिए और एक छोटे के लिए, ये था इस तरीके से जी। तो पहले तो अब तो आज की डेट में बहुत सारे स्टील के बनते हैं, स्टेनलेस स्टील के, प्लास्टिक के बनते हैं, बट ये पहले के ज़माने में जो हाथ से बनते थे ये यही थे, इसमें एक पहले लकड़ी का और होता था, लकड़ी का तो अब समय के हिसाब से थोड़ा सा नहीं रहा सही, अभी है भी नहीं हाथ में, तो इसलिए जो आपको है वो दिखा पा रहे हैं, बाकी अब जो हम बनाते
1: हैं। आपके पूर्वजों ने कहा था कि भाई नई चीज़ दिखेगी तो वो बिकेगी, अब नई चीज़ के लिए फिर एक्सपेरिमेंट करना था और वो एक्सपेरिमेंट ये था।
2: गणेशोत्सव की शुरुआत से कई दिनों पहले ही कलाकारों ने अलग अलग रूपों में बप्पा को ढालना तो शुरू कर दिया था, ऐसे में अब बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। कहीं गणपति देवा अपने पिता महादेव के वेश में नजर आ रहे हैं, तो कहीं लाल बादशाह राजा के स्वरूप वाली प्रतिमा भी बनकर तैयार है। शहर शहर श्रद्धालु बप्पा की इन प्रतिमाओं को खरीदने पहुंच रहे हैं।

0: जिसकी जैसी भावना वैसे उसके बापा। गणेश उत्सव में बहस कुछ ही दिन बाकी है, सो शहर शहर गणपति की मूर्तियां बनाने का काम भी तेज हो गया है। मूर्तिकार इन मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ये तस्वीरें यूपी के झांसी से आई है। झांसी में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बाजार में इस बार भगवान गणेश के पारंपरिक स्वरूप के साथ साथ कई नए और आकर्षक डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर भगवान भोलेनाथ से जुड़े स्वरूपों वाली गणेश प्रतिमाएं लोगों को खूब पसंद आ रही है। शिवलिंग के साथ गणेश प्रतिमा, भगवान शंकर के वेश में गणेश और लाल बाग के राजा के स्वरूप वाली प्रतिमाओं की मांग खूब है। इसके साथ ही AI डिजाइन से तैयार किए गए नए नए स्वरूप भी भक्तों को भा रहे हैं। स्वरूप के अलावा बात अगर डिजाइन की करें तो घर में गणपति की स्थापना के लिए 1 से 3 फीट तक की प्रतिमाओं की मांग सबसे ज्यादा है। झांसी की तरह ही दिल्ली में भी गणेश प्रतिमाओं के निर्माण का काम जोर शोर से इन दिनों चल रहा है। इस काम से जुड़े कई कारीगर बापा की मूर्तियों को डिमांड के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। इन मूर्तिकारों के लिए ये सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि आस्था और कला का एक साथ पेश करने का मौका भी है। ये दो बहनें भी 20 साल से गणेश प्रतिमा तैयार कर रही हैं। पहले ये काम इनके पिता किया करते थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद दोनों बहनों ने इस काम को आगे बढ़ाया। ये दोनों बहनें न सिर्फ मूर्तियां बनाती हैं, बल्कि वो खुद गणपति बैठाती भी हैं।
1: गणेश पूजा, गणेश उत्सव

0: गणेश जी की मूर्ति को तैयार करना, उसको सजाना सवारना, इसके क्या मायने हैं, ये आप इन दो बहनों से समझ सकते हैं, मंजू और वसुंधरा। ये दो बहनें सालों से इसी काम में लगी हुई हैं, हर साल मूर्ति को अपने हाथ से तैयार करती हैं, फिर उसे बेचती हैं, कुछ पैसे कमाती हैं। 20 साल से दोनों बहनें एक साथ ये काम कर रही हैं। इसके पहले ये काम इनके पिताजी किया करते थे, वो चल बसे तो उसके बाद दोनों बहनों ने मोर्चा संभाला हुआ है।
1: मूर्ति में सजावट करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, जो काम आते हैं वो कर लेते हैं।
0: ये काम सीखा किससे, अपने आप से या फिर पिताजी सिखा गए थे?
2: पिताजी सिखा के गए थे वैसे तो, अब देखते देखते सीख गए हम भी।
3: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को है, सो इस समय शहर शहर ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है। कोई मूर्तियों को आकार दे रहा है तो कोई रंग भरने का काम में जुटा है। खास बात यह है कि कई जगहों पर अब मूर्तियों को बनाने के लिए सिंथेटिक मटेरियल की जगह मिट्टी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन प्रयागराज में बनाई जा रही इन मूर्तियों के निर्माण में गंगा की मिट्टी, धान का पुआल या पराली और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे विसर्जन के बाद पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। यहाँ के मूर्तिकार दस्तकार उत्साहित हैं, क्योंकि लगातार बारिश के बावजूद इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की मांग बढ़ गई है। घरों से लेकर बड़े बड़े पंडालों तक के लिए बड़ी संख्या में ऑर्डर मिल रहे हैं।
4: गणेश जी का मिट्टी पूरा प्योर मिट्टी और गंगा जी का शुद्ध मिट्टी से बनता है, और इसमें धान का पैड़ा है और लकड़ी है, बांस है, ये इको फ्रेंडली, पूरा कलर भी हमारा इको फ्रेंडली है।
3: ये तस्वीरें राजकोट की है, जहां भी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं को ही सजाने का काम चल रहा है। कोलकाता के दीपक जाना पिछले 30 वर्षों से लगातार यहां आकर बापा की प्रतिमाओं को तैयार करते हैं। राजकोट के गणेश उत्सव में अपने हुनर के रंग भरते हैं।
5: लेटेस्ट डिजाइन इंटरनेट में आया, उसी को ढूंढ ढूंढ के कलेक्शन करके मैं लोग बनाया मूर्ति।
6: कौन सा वो खास मूर्ति?
5: खास मूर्ति जो पहले नंबर है, नव दुर्गा का स्वरूप में, उसका नव दुर्गा है, उसका गोद में बैठा हुआ गणपति बापा 9 फीट का ऊपर है, ऐसा। और भी बहुत सारे थीम है, सभी अलग अलग है, एक ही डिजाइन एक में नहीं है, सभी जितना भी मूर्ति है सब अलग अलग डिजाइन का।
3: तो वही करनाल में राजस्थान से आया मूर्तिकारों का ये परिवार पिछले 6 महीने से बापा की मूर्तियों को आकार देने में जुटा है। इनकी मेहनत का नतीजा ये है कि बापा की सैकड़ों प्रतिमाएं अब यहाँ गणेश भक्तों को लुभा रही है।
7: अभी गणेश तो तैयार करने के मेरे 6 महीना हो गया बनाते बनाते, अभी एक एक मूर्ति में 10 से 12 दिन लग जाते जी, बारीकी काम है।
3: तो वही महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तो बच्चे ही मिट्टी से बापा की मूर्त गढ़ रहे हैं। गणेश उत्सव से पहले यहाँ बच्चों के लिए इस खास वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहाँ बच्चों ने मिट्टी से दोस्ती की और अपने हुनर के रंग भरकर पापा की प्रतिमाओं को तैयार करने में जुट गए। अब इनकी बनाई प्रतिमाएं इस साल गणेश उत्सव की शान बनेंगी। झांसी से अजय झा, राजकोट से रौनक मजीठिया, करनाल से कमलदीप, चंद्रपुर से विकास राजूकर, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: अब देखिए, कुछ सालों से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए गणेशोत्सव पर खास तौर से प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय इको फ्रेंडली यानी मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं बनाने का चलन भी रहा है। वास्तव में ये जल प्रदूषण से बचाव का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ऐसे में कई मूर्तिकार जहां मिट्टी और दूसरी सॉल्यूबल चीजों से एक से बढ़कर एक मूर्तियों को आकार दे रहे हैं, तो इनकी डिमांड भी मार्केट में खूब बनी हुई है।

0: बीते कुछ सालों से गणेशोत्सव पर प्रकृति का भरपूर ख्याल रखने का संदेश दिया जा रहा है। नेचर को नुकसान पहुंचाने वाले जहर से कोसों दूर बाप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां आज मूर्ति कारीगरों के साथ आस्थावानों की पहली पसंद है। ऐसे में कुछ मूर्तिकार परिवार अपनी गणेश भक्ति को ही पीढ़ियों से चली आ रही कला परंपरा में बदले हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर का एक परिवार है जो हर साल आस्थामयी और कलात्मक माहौल में भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय बांस, नारियल की छाल और मौली धागा से बेहद खूबसूरत और पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों को आकार दे रहा है। इस परिवार के मुखिया हैं शिवचरण यादव, जो कभी सरकारी मुलाजिम रहे, घर चलाने के लिए भेल भी बेची, लेकिन जब इस काम में मन नहीं रमा तो फिर कलाकारी करने का महज ख्याल ही मानो पैशन बन गया है।
1: बच्चे लोग सबसे पहले मेरे को वहाँ अध्यक्ष बनाए, उसके बाद फिर मैंने अपना धीरे धीरे स्थल सजावट का काम किया। स्थल सजावट करने के बाद अब उसमें भी मजा नहीं आया तो फिर मैं बोला उसको बंद करके मूर्ति का काम स्टार्ट किया।
0: मूर्तिकार शिवचरण को इन मनोहारी मूर्तियों को आकार देते हुए 25 साल से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान उन्होंने ठेले पर भी बाप्पा की मूर्तियां रखकर बेची। साल 2011 से शिवचरण ने घर पर ही मौली धागा, नारियल की लकड़ी, नारियल की बुच जैसी कई इको फ्रेंडली चीजों से मूर्तियों को आकार देना शुरू किया। वहीं इस बार के गणेशोत्सव में शिवचरण ने धूप दीप, पेड़ की छाल और बांस की लकड़ी जैसी कई और पर्यावरण सुरक्षित जैसी चीजों से खूबसूरत बप्पा बनाए हैं, जिनके डिमांड काफी है।
1: इस बार हम लोग बनाए हैं धूप दीप का बनाए हैं राम भगवान के रूप में, और पेड़ के छाल से बनाया गया है, और उसके बाद बांस की लकड़ी से बनाया गया है, और नारियल की बूच को नारियल का स्वरूप दिया गया है।
2: बिंदी से शंख से
1: सीप, शंख और सीप से बनाया गया है, और ये क्या बोलते हैं,
2: बिंदी से
1: ये मोती से बनाया गया है।
0: शिवचरण और उनके परिवार की नजर में प्रकृति का सम्मान ही बाप्पा की सच्ची भक्ति है। शिवचरण अपनी पत्नी, दो बेटे और एक बहू के सहयोग से विघ्नहर्ता की ऐसी ऐसी सुंदर मूर्तियां बना रहे हैं जिनके चाहने वाले ग्राहक हर साल बढ़ रहे हैं।
3: बाकी मूर्तियां तो अलग अलग बनाए जाते हैं मिट्टी से और बाकी अन्य चीजों से, लेकिन हम लोग गणेश जी को किसी भी चीज में अलग अलग रूप में बनाकर, मतलब आप देख सकते हैं कि पीछे एक लकड़ी की छाल है, सामने धूप अगरबत्ती है, उसके हिसाब से अलग अलग चीजों से बनाते हैं।
2: आस्था भी है गणेश
3: जी, बहुत आस्था है हमारी।
0: फिलहाल तो मिट्टी की ये सुंदर सुंदर इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा हमारी प्रकृति को मुस्कुराने की वजह दे रहे हैं। रायपुर का ये परिवार गणेश मूर्ति को बनाने की कला को जिस अंदाज में जिंदा रखे हुए हैं, उससे न केवल समाज को अपना पर्यावरण बचाने की प्रेरणा मिल रही है, बल्कि खुशहाल प्रकृति बने रहने का संकेत भी मिल रहा है। तो हो जाए एक बार फिर विघ्नहर्ता का ये प्यारा सा उत्सव इको फ्रेंडली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि बप्पा पधार रहे हैं। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरें जा रही हैं, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर।
1: मंगल दोष होने से व्यक्ति बहुत साहसी हो जाता है। क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति के अंदर बहुत आकर्षण पैदा होता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति को बड़ी सारी संपत्ति का फायदा होता है? क्या मंगल दोष होने से भी हो सकता है लाभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: महाराष्ट्र के अकोला में गणेश उत्सव को लेकर गजब का उत्साह। शास्त्री नगर में चिंतामणि गणपति बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का भव्य स्वागत। आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमान। राजधानी दिल्ली पर भी चढ़ने लगा गणेश उत्सव का रंग। स्वीट स्टोर्स में जोरदार तरीके से बप्पा के प्रिय मोदक का निर्माण। खूबसूरत मूर्तियों से सजे बाजार, तो कहीं घरों में मिट्टी से बने गजाना। अकोला में पोला उत्सव की जोरदार तैयारियां। बैलों को सजाने के लिए रंग बिरंगी रस्सियां, घुंघरू और पट्टे खरीद रहे हैं किसान। वृषभ राजा के प्रति सम्मान दर्शाता है यह पर्व। रामनगरी अयोध्या से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा। मानदेय में 50% इजाफे के साथ मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का कैशलेस इलाज। लखनऊ में हनुमान अंश की टीम से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा नेब करौरी के जीवन पर बनी फिल्म को देश भर से मिल रहा प्यार। बॉक्स ऑफिस पर हर दिन बना रही है नए रिकॉर्ड्स। वडोदरा में 6,000 से ज्यादा युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का मेगा इवेंट समारोह। में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम। 35,000 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: यार मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं और इन्हें शेयर कर देते हैं, और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की पड़ताल और झूठ के नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले वायरल हो रहे उस वीडियो की बात होगी, जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि हनुमान अंश फिल्म देखने पहुंची एक महिला हनुमान चालीसा सुनते समय अचानक बेहद भावुक हो गई और कुछ ही देर में जोर जोर से चीखने लगी। क्या है इसकी सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के से जुड़ी हुई, जिसे नेपाल का बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक शख्स कुरान शरीफ पढ़ने लगा। वीडियो की सच्चाई क्या है, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नीम करौरी बाबा के जीवन पर बनी भक्ति ड्रामा फिल्म हनुमान अंश ने धूम मचाई हुई है। फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हो रही है और सोशल मीडिया पर हनुमान अंश छाई हुई है। कहीं सिनेमा घरों के बाहर लड्डू बांटे जा रहे हैं, कहीं हनुमान सदा सहायते के नारे गूंज रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि महिला हनुमान अंश देखने के बाद थिएटर के अंदर ही चीख चीख कर दहाड़े मारने लगी। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
5: जिसने भी इस दृश्य को देखा वो हैरान हो गया। थिएटर के अंदर एक महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी और अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। महिला की हरकत देखकर आसपास बैठे लोग भी दंग हो गए। आसपास बैठे लोगों ने इसे रोकने की कोशिश में जुट गए। कोई इस लम्हे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने लगा। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि थिएटर में नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर बनी मूवी हनुमान अंश देख रही महिला हनुमान चालीसा सुनते समय अचानक बेहद भावुक हो गई और कुछ ही देर में जोर जोर से चीखने लगी। कुछ लोग इस घटना को गहरी भक्ति का प्रणाम बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स इसे भावनात्मक प्रतिक्रिया मान रहे हैं। वीडियो के साथ एक संदेश भी शेयर किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि जब कोई फिल्म दिल को छू जाती है और इंसान भगवान की भक्ति में पूरी तरह डूब जाता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल हनुमान अंश ने सिनेमाघरों में अब तक आई फिल्मों के सामने पूरी बाजी पलट कर रख दी। इस फिल्म को लेकर न प्रमोशनल कोई प्रमोशन किया गया और न ही लोगों को रिलीज के समय भनक लगी। करीब 2 करोड़ रुपए के बजट में तैयार ये फिल्म अब तेजी से 200 करोड़ के क्लब की तरफ कमाई करती नजर आ रही है। इन सबके बीच सोशल मीडिया के पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि हनुमान अंश फिल्म में हनुमान चालीसा सुनकर ये महिला भावुक हो गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। पड़ताल में सामने आया कि वीडियो एक थिएटर के अंदर का है, जहां पर्दे पर फिल्म चल रही है उसमें नए जमाने के हिसाब से ही रिक्रिएट किया गया हनुमान चालीसा बज रहा है। इन सबके बीच एक महिला अपनी सीट पर दहाड़े मारकर रो रही है। वो इधर उधर लौट भी रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका शरीर काबू में ना हो। आसपास के लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ये चौंकाने वाला दृश्य था। लेकिन जब फैक्ट चेक टीम ने वीडियो में आ रही आवाजों को फ्रेम दर फ्रेम सुना तो ये सामने आया कि ये तेलुगु है। इससे हमें ये इशारा मिल गया कि वायरल हो रहा वीडियो आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना का हो सकता है। इसके बाद हनुमान अंश मूवी में हनुमान चालीसा को नए तरीके से रिक्रिएट नहीं किया गया, जिससे हमें दावे की सत्यता पर संदेह हुआ। साथ ही सच के दौरान ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली, जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि वायरल वीडियो हाल फिलहाल का है। क्योंकि अगर वाकई ऐसा हुआ होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर मिलती, लेकिन हमें ऐसा कहीं कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था, हनुमान अंश मूवी थिएटर्स में हिंदी भाषा में ही उपलब्ध है, साउथ के शहरों में भी इसके हिंदी शोज ही चल रहे हैं। अभी फिलहाल मेकर्स की तरफ से इसके आधिकारिक तेलुगु डब वर्जन की थिएटर या फिर ओटीटी रिलीज को लेकर कोई फाइनल डेट अनाउंस भी नहीं हुई है। ऐसे में हमारा सवाल ये कि वायरल हो रहे वीडियो में तेलुगु आवाजें क्यों सुनाई दे रही है। दूसरा सवाल कि हनुमान अंश मूवी में हनुमान चालीसा को रिक्रिएट नहीं किया गया है। ऐसे में हमारा सवाल सीधे तौर पर यह कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। सच और झूठ की इस रिपोर्ट में जानिए।
5: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रही वीडियो के कुछ की फ्रेंड्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो तेलुगु फिल्मों को कवर करने वाले एक इंस्टाग्राम पेज पर मिला। पेज पर वीडियो 30 जनवरी 2024 को अपलोड किया गया था। पोस्ट के मुताबिक ये घटना उपल स्थित एशियन सिनेमा में हुई थी और महिला फिल्म हनुमान के क्लाइमेक्स के दौरान भावुक होकर अजीब तरह से प्रतिक्रिया देने लगी थी। पड़ताल के दौरान हमें ये वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर 30 जनवरी 2024 को अपलोड हुआ मिला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि एक महिला हनुमान मूवी देखते समय असामान्य हरकतें करने लगी थी। इससे स्पष्ट होता है कि वायरल वीडियो हाल में रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश का नहीं है, बल्कि करीब 2.5 साल पुराना है। सर्च के दौरान एक वेबसाइट पर 30 जनवरी 2024 को इस घटना पर प्रकाशित रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में वायरल वीडियो वाले दृश्य भी देखने को मिले। रिपोर्ट के अनुसार महिला फिल्म देखने के दौरान इतनी भावुक हो गई कि वह कांपने लगी और अपनी सीट से नीचे गिर गई। रिपोर्ट में इस घटना को तेलुगु फिल्म हनुमान के क्लाइमेक्स से जोड़ा गया था। हनुमान और हनुमान अंश दो अलग अलग फिल्में हैं। हनुमान तेलुगु सुपर हीरो फिल्म है जो हनुमान से जुड़े पौराणिक संदर्भों को सुपर हीरो कथा के साथ पेश करती है। वही हनुमान अंश नीम करोली बाबा के जीवन और उनके आध्यात्मिक यात्रा पर केंद्रित फिल्म है। हमारे पड़ताल में ये साक्ष्य से स्पष्ट है कि थिएटर में अजीबोगरीब हरकतें करती महिला का वायरल वीडियो नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश से संबंधित नहीं है। ये वीडियो करीब 2.5 साल पुराना है और जनवरी 2024 में तेलुगु फिल्म हनुमान देखते हुए सामने आया था। अब इस पुराने वीडियो को हाल ही रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश से जोड़कर भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। टीवी फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। और इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग सड़क पर दुआ करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि यह नेपाल का है, जहां पर आपदा के बीच लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। लेकिन जब वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में।

0: नेपाल में 26 अगस्त को आए विनाशकारी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। इस हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इन सबके बीच चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। किसी पहाड़ वाली जगह पर कई लोग सड़क किनारे कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां कहीं वर्दीधारी भी मौजूद है और कुछ लोग आते जाते हुए भी देखे जा रहे हैं। वीडियो को इस दावे से शेयर किया जा रहा है कि नेपाल में बाढ़ से बचाव के लिए कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि ये है ईमान की ताकत। ये वीडियो नेपाल का जहां पर कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है और दुआ की जा रही है, माशाल्लाह। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर 11 सेकंड का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कई लोग सड़क किनारे कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां कई वर्दीधारी भी मौजूद हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि नेपाल त्रासदी के बाद कुछ लोग सड़क पर कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। वीडियो को लेकर चौंकाने वाला दावा किया जा रहा था, क्योंकि इसके जरिए भी कहा जा रहा था कि नेपाल में बाढ़ से बचाव के लिए लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ा है। हाँ, ये बात सच है कि 26 अगस्त को नेपाल में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है, लेकिन वायरल वीडियो इसी बाढ़ से संबंधित है ये जानना जरूरी हो गया था। लेकिन वीडियो को देखने से हमें इसमें ऐसी कई चीजें देखने को मिली जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। मसलन वीडियो में एक जगह एक वर्दीधारी जवान के जैकेट पर लिखे शब्दों को हमने जब गौर से देखा तो इस पर किर्गिस्तान लिखा हुआ था। हमें यह देखकर काफी हैरानी हुई। वायरल वीडियो नेपाल का है तो फिर यहां पर किर्गिस्तान के जवान का क्या कहा? नेपाल में आपदा राहत कार्यों में शामिल जवान नीले रंग की कैमोफ्लाज यानी कि नीली चितकबरी वर्दी में नजर आ रहे थे, जबकि आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान डार्क ग्रे बैकग्राउंड के साथ ही लाइट ग्रे, डार्क ब्लू और फिर ब्लैक मिक्स वाली वर्दी पहनते हैं। ऐसे में हमें वीडियो की सत्यता पर संदेह हुआ। हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि सर्च के दौरान जानकारी जो सामने आई है उसमें किर्गिस्तान के राष्ट्रपति ने नेपाल आपदा पर दुख जरूर जताया, लेकिन वहां कोई सैनिक रेस्क्यू टीम का हिस्सा बना ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। अब सवाल यह है कि अगर वायरल वीडियो नेपाल का है और बाढ़ से बचाव के लिए कुरान शरीफ पढ़ रहा है ये जवान, तो फिर यहां पर किर्गिस्तान रेस्क्यू टीम के जवान नजर क्यों नहीं आ रहे? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नेपाल के साथ जोड़कर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही? सच और झूठ।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 25 जून को अपलोड किया गया था। इसके बाद हमने इस इंस्टाग्राम अकाउंट में मौजूद बायो का अनुवाद किया, जिसके जरिए जानकारी सामने आई कि यह अकाउंट किर्गिस्तान के चुई ओब्लास्ट के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय के प्रेस विभाग से जुड़ा है। इतना ही नहीं, हमें इस अकाउंट पर अपलोड किए गए कई वीडियो में उसी ड्रेस में दिख रहे कई वर्दीधारी भी मिले जो वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियोस में वर्दीधारियों द्वारा पहने गए लाइफ जैकेट पर किर्गिस्तान रेस्क्यू भी साफ साफ लिखा हुआ देखा जा सकता है। इसी दौरान हमें किर्गिस्तान के एक मीडिया पोर्टल के फेसबुक अकाउंट से 26 जून को पोस्ट किया गया वीडियो मिला। इस वीडियो में भी वायरल वीडियो से मिलते जुलते दृश्य मौजूद थे। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में लिखा हुआ था, किर्गिस्तान के केगेटी घाटी में एक 6 वर्षीय बच्चा पानी में गिर गया था जिसकी तलाश की जा रही थी। इसमें कई देशों के वॉलंटियर्स भी शामिल हुए थे। इसी दौरान बिरदिक गांव के हाफिजों ने बच्चे की खोज के लिए कुरान पढ़ी थी। जांच में हमें 25 जून को किए गए कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट भी मिले जिनमें वायरल वीडियो से मिलते जुलते दृश्य मौजूद थे। इस संबंध में हमें किर्गिस्तान की एक न्यूज वेबसाइट पर 26 जून का प्रकाशित रिपोर्ट भी मिला। रिपोर्ट में बताया गया था कि 23 जून को एक कार केगेटी नदी में गिर गई थी। इसमें 2 महिलाएं और 5 बच्चे मौजूद थे। दोनों महिलाएं और 3 बच्चे गाड़ी से निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन 2 बच्चे उसमें ही फंसे रह गए थे। 12 वर्षीय बच्चे की बॉडी पहले ही रेस्क्यू टीम ने रिकवर कर ली थी। बाद में 26 जून को उस बच्चे का शव भी बरामद हो गया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से साफ है कि नेपाल में बाढ़ से बचाव के लिए कुरान पढ़े जाने के दावे से वायरल ये वीडियो किर्गिस्तान का है।
1: चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
4: अरे बेटा बोल तो दिया नेम फाइव सीजन्स, विंटर समर ऑटम स्प्रिंग मानसून, क्या दिक्कत है इसमें? नेम फाइव सीजन्स तो नहीं आते तो मैं इनका वाला मीनिंग लिखो फटाफट से। चलो बेटा मेरे पास पेंसिल्स का टाइम भी अपनी लाया करो, चलो अपनी पेंसिल यूज करो। अब मैं पेंसिल देने वाली बैठी हुई हूँ, वर्क देती हूँ आपको, मैं पेंसिल्स अपनी लाया करो। पेंसिल कल से ना 4 बजे अपने अपनी पेंसिल्स लेके आएंगे, आज लास्ट टाइम है, दे रही हूँ बस मैं, पकड़ो।
5: छोटी सी मैडम ने घर में ही लगा ली अपनी क्लास, बच्चे जिस अंदाज में पढ़ा रही है उसे देखकर यूजर्स मुस्कुरा रहे हैं। दरअसल बच्ची ने नोटबुक्स को ही अपने छोटे छोटे स्टूडेंट्स की तरह मान लिया है और बड़े ही ध्यान से उन्हें पढ़ाती नजर आ रही है। कभी वो कॉपी की तरफ देखकर समझाने की कोशिश करती है तो कभी टीचर की तरह अपना पूरा ध्यान क्लास पर लगाती दिखाई देती है। सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान बच्ची के अंदाज ने खींचा है, जिस तरह से वो टीचर बनकर पढ़ाने का खेल खेल रही है वो देखने में बेहद प्यारा और मजेदार है। बच्ची की बॉडी लैंग्वेज और पढ़ाने का तरीका देखकर सोशल मीडिया यूजर्स उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।
4: आपको मैन को बोला जो प्रणाम दोनों का, चलो 2 मिनट आप जस्ट का 4-5-6 मीनिंग देखो, लाइन डाल दिए मीनिंग देखो, मेरे को नहीं पता क्या खुद लिखो, एक तो ऊपर से लेट है और मीनिंग भी मैं भी तो
5: एक छोटे बच्चे ने अपने परिवार के बारे में लिखे सवाल का ऐसा जवाब दिया कि उसकी कल्पना और बेबाकी दोनों चर्चा का विषय बन गए। तस्वीर में बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आ रहा है और उसके सामने उसकी लिखी हुई कॉपी रखी है। कॉपी में टीचर ने अपने परिवार के बारे में लिखे सवाल दिया था, इसके जवाब में बच्चे ने अपने परिवार के हर सदस्य के बारे में बड़े ही अनोखे अंदाज में लिखा है। बच्चे ने शुरुआत करते हुए लिखा कि उसका परिवार खतरों का खिलाड़ी है। इसके बाद पिता के बारे में उसने लिखा कि उनके पापा शक्तिमान का रूप है। माँ को उसने घर की लक्ष्मी बाई बताया है। यहाँ तक तो जवाब काफी प्यारा और सामान्य लगता है, लेकिन इसके बाद बच्चे की कल्पना कुछ ज्यादा ही मजेदार हो जाती है। बच्चे ने अपनी बहन का जिक्र भी बेहद अनोखे अंदाज में किया है। इसके बाद उसने अपने बारे में जो लिखा वही इस पूरी कॉपी का सबसे मजेदार हिस्सा नजर आता है। बच्चे ने खुद को घर का सबसे नालायक बताया है। उसकी ये बेबाक लाइन पढ़कर लोग हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे हैं। जवाब पढ़ने के बाद टीचर ने लाल पेन से कुछ शब्दों को घेरा और नीचे अपनी टिप्पणी भी लिखी। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि बच्चे को इस जवाब के लिए 10 में से 10 नंबर मिले हैं। टीचर का ये फैसला भी लोगों को खूब गुदगुदा रहा है। गुरु शिष्य के रिश्ते की ये खूबसूरत तस्वीर लोगों को खूब पसंद आ रही है। यहाँ तोहफे की कीमत नहीं बल्कि उसके पीछे छिपा बच्चों का स्नेह मायने रखता है। किसी बच्चे के हाथ में खेत से तोड़ी गई तोरई है, कोई बच्चा अपनी भैंस का दूध लेकर पहुंचा है तो कोई अपने घर खेत से ककोड़ा लेकर आया है। देखने में चीजें भले ही साधारण लगे लेकिन बच्चों की नज़र में ये उनके पास मौजूद सबसे खास चीजों में से है। इस पूरे भाव को सबसे ज्यादा खास बनाता है शिक्षक का व्यवहार। बच्चों की लाई गई इन चीजों को वो सामान्य सामान की तरह नहीं लेते, वो उन्हें अपने सिर से लगाकर प्रणाम करते हैं, मानो बच्चों ने सामान नहीं बल्कि अपना प्यार और सम्मान उनके हाथों में रखा हो। शिक्षक भी स्नेह को पूरे सम्मान के साथ अपने सिर माथे लगा लेते हैं। अद्भुत कलाकारी को देखकर लोग दंग हैं। नीली साड़ी पहने एक महिला अपने हाथों में एक विशालकाय हरा पत्ता थामे हुए दिखाई देती है। महिला पत्ते को पकड़े हुए मुस्कुराती है, जिससे लोगों को लगता है कि ये शायद प्रकृति की सुंदरता को दर्शाने वाला कोई साधारण वीडियो है। लेकिन असली रोमांच तब शुरू होता है जब महिला उस विशाल पत्ते को घुमाती है। पत्ते के दूसरी तरफ का दृश्य देखकर हर कोई हैरान हो गया। पत्ते के कैनवास पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बेहद खूबसूरत और जीवंत चित्रकारी उकेरी गई है। पत्ते की सतह पर किए गए रंगों के संयोजन और बारीकियों को देखकर महिला के हुनर का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। एक ड्राइवर के लिए उसकी गाड़ी सिर्फ मेटल और टायरों का ढांचा नहीं होती, बल्कि उसका हमसफर होती है, जिसने धूप, छांव और आंधी तूफान में उसका साथ निभाया होता है। केरल के एक रोडवेज बस ड्राइवर का रिटायरमेंट का ये भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है, जिसमें वो अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद बस को ऐसे विदाई दे रहे हैं जैसे कोई अपने किसी बेहद करीबी को अलविदा कह रहा हो। ड्राइवर पॉल कुरियन का ये वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इडुक्की जिले के कुमेली डिपो पर 2 सितंबर को शूट किए गए इस 1 मिनट के वीडियो में पॉल कुरियन अपनी आखिरी शिफ्ट पूरी करने के बाद बस के पास खड़े नजर आते हैं। उन्होंने बेहद भावुक अंदाज में बस की स्टेयरिंग व्हील को चूमा, उसके चारों टायरों को छूकर नमन किया और जाने से पहले गाड़ी को सल्यूट किया। इस दौरान पॉल कुरियन की आंखें नम हो गई और वो अपने आंसू पोंछते हुए वहां से विदा हुए। सालों तक जिस बस के जरिए उन्होंने लाखों यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाया और अपने परिवार की आजीविका चलाई, उससे अलग होना उनके लिए बेहद मुश्किल था। इंटरनेट पर ये वीडियो सामने आने के बाद लोग ड्राइवर के अपने काम के प्रति समर्पण और ईमानदारी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी फिटनेस और जज्बे से युवाओं को भी हैरान कर दिया है। हरी साड़ी में एक बुजुर्ग महिला लेग प्रेस मशीन पर लेटी हुई है, वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति खुद लेग प्रेस प्लेट्स के ऊपर बैठे हुए हैं ताकि अम्मा पर अतिरिक्त वजन आ सके। अम्मा बड़े ही सहज अंदाज में लेग प्रेस रेप्स मारती हैं और आसपास खड़े युवा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इसके बाद अम्मा बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से केबल फ्लाई और बटरफ्लाई मशीन पर चेस्ट और शोल्डर वर्कआउट करती नजर आती हैं। बिना किसी झिझक के साड़ी का पल्लू संभाले अम्मा का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लंदन के अंडरग्राउंड ट्रेन में सफर करने वाले लोगों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि एक दिन उन्हें प्लेटफॉर्म पर ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जिसे देखकर ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्री हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। मामला 2 छोटे छोटे चूहों का है जो लंदन के अंडरग्राउंड स्टेशन पर अचानक आपस में भिड़ गए। दोनों की लड़ाई इतनी मजेदार थी कि वहां मौजूद यात्रियों का ध्यान ट्रेन से ज्यादा इन दोनों फाइटर्स पर टिक गया। दोनों चूहे कभी एक दूसरे के पीछे दौड़ते तो कभी सामने आकर पंजों से ऐसे वार करते जैसे किसी बड़े बॉक्सिंग रिंग में मुकाबला चल रहा हो। कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लगा मानो दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी हो और आज हिसाब बराबर करने का दिन आ गया हो। वीडियो बनाने वाली सोनिया मैंसफील्ड अपने दोस्त अरुण के साथ स्टेशन पर मौजूद थी। दोनों की नजर जब इन चूहों पर पड़ी तो उन्होंने इस मजेदार घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। चूहों की हरकत इतनी अजीब और मजेदार थी कि वहां मौजूद लोगों के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया।
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: सोचिए, एक रोबोट आपके घर में आए और सिर्फ चलने या बोलने की बजाय फ्रिज खोले, सामान उठाए, चीजों को सही तरीके से पकड़े और आपके साथ मिलकर काम करे। सुनने में भविष्य की कहानी लगता है, लेकिन ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद के सामने इसकी झलक दिखाई गई। एआई पावर्ड रोबोट्स ने अपनी ऐसी क्षमताओं का प्रदर्शन किया जो आने वाले वक्त में घर से लेकर फैक्ट्रीज तक काम करने का तरीका बदल सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: ये तस्वीर उस भविष्य की है जहां मशीनें सिर्फ मशीन नहीं रहेंगी। ब्रसेल्स में यूरोपियन संसद के खास रोबोटिक शोकेस में एआई पावर्ड रोबोट्स ने ताकत दिखाई। चलते रोबोट्स, चीजें उठाते रोबोट्स और बारीकी से काम करते रोबोट्स। 14 देशों के 31 एकेडमिक और इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के 15 रोबोट्स ने दिखाया कि मशीनें अब सिर्फ प्रोग्राम किए गए काम दोहराने से आगे बढ़ रही हैं। इन रोबोट्स की सबसे बड़ी खासियत है अपने आसपास की दुनिया के साथ तालमेल, किसी वस्तु को पहचानना, उसके आकार और स्थिति को समझना, फिर उतनी ही ताकत से पकड़ना जितना जरूरी हो। इंसान के हाथ के लिए ये सब बेहद स्वाभाविक है, लेकिन एक रोबोट के लिए हर मूवमेंट के पीछे सेंसर, एआई और बेहद सटीक गणना काम करती है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है फ्रिज खोलना, हमारे लिए रोज का मामूली काम, लेकिन रोबोट के लिए एक पूरा मिशन। उसे फ्रिज देखना है, हैंडल पहचानना है, सही जगह हाथ ले जाना है, ग्रिप बनानी है और फिर सही ताकत लगाकर डोर खोलना है।
1: So they have to interact with our environment, open doors, open door, drawers. In the case of our robot has to open the fridge, which seems like a simple task, because we do it all the time. But imagine when you do it and your hand is very soft and compliant and is doing very quick movement.
0: असली कमाल सिर्फ रोबोट्स के चलने में नहीं, कमाल तब है जब वो देखकर फैसला करे, हाथ बढ़ाए और काम पूरा करे। और यही क्षमता इन्हें घर, अस्पताल और दूसरी जगहों पर इंसान का मददगार बनाने की दिशा में ले जा रही है। लेकिन इस तकनीकी दौड़ में यूरोप के सामने बड़ी चुनौती भी है। चीन और अमेरिका ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में भारी निवेश के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यूरोप के पास मजबूत रिसर्च है, लेकिन उसे लैब से निकालकर बड़े पैमाने पर उत्पादन तक पहुंचाने की रफ्तार अभी चुनौती बनी हुई है।
2: Huge ecosystem of suppliers, of technology, manufacturing facility that allow to accelerate and go very, very fast as China is doing or how US is doing because of the large investment that they are receiving.
0: ये सिर्फ तकनीक की दौड़ नहीं है, बुजुर्ग होती आबादी और घटते वर्कफोर्स के बीच आने वाले वक्त में ऐसे रोबोट्स की जरूरत और बढ़ सकती है।
3: It's definitely lack of funding and lack of political willingness. It's not that we don't get funding. It's not that the politicians do not pay attention to robotics, but clearly not at the same level as what happens in China.
0: फ्रिज के डोर खोलने से शुरू हुई ये कहानी घर के काम से लेकर फैक्ट्री के मुश्किल काम तक पहुंच सकती है। बेशक रोबोट्स इंसान नहीं बन सकते, लेकिन उन्हें इंसान की तरह काम सिखाने की कोशिश अब पूरी रफ्तार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति बहुत साहसी हो जाता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति के अंदर बहुत आकर्षण पैदा होता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति को बड़ी सारी संपत्ति का फायदा होता है? क्या मंगल दोष होने से भी हो सकता है लाभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: महाराष्ट्र के अकोला में गणेश उत्सव को लेकर गजब का उत्साह। शास्त्री नगर में चिंतामणि गणपति बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का भव्य स्वागत, आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमान। राजधानी दिल्ली पर भी चढ़ने लगा गणेश उत्सव का रंग, स्वीट स्टोर्स में जोरदार तरीके से बप्पा के प्रिय मोदक का निर्माण, खूबसूरत मूर्तियों से सजे बाजार, तो कहीं घरों में मिट्टी से बने गजानन। अकोला में पोला उत्सव की जोरदार तैयारियां, बैलों को सजाने के लिए रंग बिरंगी रस्सियां, घुंघरू और पट्टे खरीद रहे हैं किसान। वृषभ राजा के प्रति सम्मान दर्शाता है यह पर्व। रामनगरी अयोध्या से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रामनगरी अयोध्या से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। बाबा नीब करौरी के जीवन पर बनी फिल्म को देश भर से मिल रहा प्यार, बॉक्स ऑफिस पर हर दिन बना रही है नए रिकॉर्ड्स। वडोदरा में 6,000 से ज्यादा युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का मेगा इवेंट समारोह में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम, 35,000 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुप्ता, साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के रंग की करते हैं। आपसे देखिए, पांच दिनों के बाद गणेशोत्सव का श्री गणेश होने वाला है। शहर शहर गजानन की आस्था के रंग दिखने लगे हैं और शहर शहर मूर्तिकार गजानन की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। गणपति पंडालों की सजावट भी अंतिम दौर में पहुंच गई है। घर गलियों में मोदक की खुशबू बिखरने लग गई है। नागपुर से लेकर अकोला तक गणपति उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर शहर बप्पा की भव्य आगमन की यात्राएं चल रही हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज और नाचते झूमते भक्तों के बीच में बप्पा पधार रहे हैं। 14 सितंबर को बेहद श्रद्धा के साथ गजानन की स्थापना की जाएगी। गणपति बप्पा के आगमन को लेकर हर उम्र के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। पूरा माहौल भक्तिमय है। जैसे जैसे गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आ रहा है, मूर्ति निर्माण से जुड़े कारीगर बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तो वहीं बप्पा के प्रिय मोदक को बनाने का काम भी जोर शोर से शुरू हो चुका है। गणपति उत्सव की तैयारियों से जुड़ी तमाम तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बप्पा की भव्य आगमन की यात्रा।

अब जो स्वयं गणराज कहलाते हैं उनका स्वागत किसी राजाधिराज से कम क्या ही होगा। सो नागपुर वालों ने अब की बार वही करने की ठानी। गणेश उत्सव से पहले नागपुर में सार्वजनिक पंडालों में गणपति बाप्पा का आगमन शुरू हो चुका है। ये तस्वीर है नागपुर के महल इलाके में विराजमान होने वाले गणपति बाप्पा की। महल के दक्षिण मूर्ति चौक उत्सव पंडाल में बाप्पा को धूमधाम से लाया गया। डीजे ढोल नगाड़ों की धुन के साथ सैकड़ों लोग अपने लाडले बाप्पा का स्वागत करने पहुँचे। पंडाल को पहले ही सजाया जा चुका है, बस एक बाप्पा की कमी थी, अब वो भी पूरी हो गई। सुनागपुर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। अब 14 सितंबर को गणनायक पूरे विधि विधान के साथ अपने भव्य पंडाल में स्थापित कर दिए जाएंगे और उसके बाद 10 दिनों तक बाप्पा की भक्ति का ये उत्सव यूं ही चलता रहेगा। नागपुर क्या इन दिनों तो शहर शहर यही सूरत दिख रही है। ये तस्वीर गुजरात के सूरत की है। सूरत में गणेश उत्सव की रौनक नजर आने लगी है। गणेश उत्सव शुरू होने से पहले शहर के अलग अलग इलाकों में गणेश प्रतिमाओं के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है। गणेश पंडालों की चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले सूरत की इस गणेश आगमन यात्रा को देखिए।

शहर की गणेश आगमन यात्राओं में इस बार पारंपरिक आयोजनों के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों की अनोखी कलाकृतियां और आकर्षक प्रस्तुतियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। तस्वीरें सूरत के भटार इलाके में साईं युवक मंडल की ओर से निकाली गई भगवान गणेश की भव्य आगमन यात्रा की है। इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और शहरवासी शामिल हुए। गणेश प्रतिमा के आगमन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आगमन यात्रा में अलग अलग धार्मिक और पौराणिक पात्रों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया।

0: कलाकारों ने अलग अलग रूप धारण कर नृत्य नाटिका का मंचन किया। कोई कलाकार राक्षस के रूप में नजर आया तो किसी ने भगवान का स्वरूप धारण कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आगमन यात्रा के दौरान भगवान शिव के तांडव की विशेष प्रस्तुति भी हुई। कलाकार भगवान शिव का स्वरूप धारण कर तांडव करते नजर आए। उनके चारों ओर जलती आग ने इस प्रस्तुति को और भी प्रभावशाली बना दिया। आगमन यात्रा में भगवान के 12 अवतारों को भी अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया। गणेश चतुर्थी से पहले भव्य आगमन यात्रा का आयोजन करने के मुख्य रूप से दो उद्देश्य थे। एक तो श्रद्धालुओं को गणेश उत्सव की धार्मिक भावना से जोड़ना और दूसरा भारतीय संस्कृति और पौराणिक परंपराओं की भव्य प्रस्तुति। और वाकई कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने पूरी यात्रा को एक अलग ही रंग दे दिया। लोगों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों को अपने मोबाइल फोन में कैद किया और बड़ी संख्या में लोग इन दृश्यों को देखने के लिए यात्रा के मार्ग पर मौजूद रहे। सूरत के भटार इलाके में इस साल गणेश उत्सव के लिए एक और खास तैयारी की जा रही है। यहाँ गणेश मंडल की ओर से ओडिशा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर भव्य गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है।
1: कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उसकी थीम पर इस बार भगवान गणेश की स्थापना की जानी है। और मूर्ति की अगर हम बात करें तो मूर्ति का आगमन हो चुका है। जिस मूर्ति के आगमन के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे और कई राज्यों से कलाकार आए थे, उन्होंने कई अपनी अलग अलग थीम पर यहाँ पर नृत्य किया था, अपना प्रदर्शन किया था। और जो आप मूर्ति देख सकते हैं वो यहाँ पर अभी रखी हुई है भगवान गणेश की, और जब यहाँ पर स्थापना की जाएगी तो गणेश उत्सव के दौरान हजारों की संख्या में भक्त भगवान गणेश के दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो ये जो मूर्ति है वही इस पंडाल में विराजमान की जाएगी। फिलहाल मूर्ति का आगमन हो चुका है।
0: हर साल यह गणेश मंडल एक अलग और अनोखी थीम पर गणेश पंडाल तैयार करवाता है। इस बार आयोजकों ने ओडिशा के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर को अपनी थीम बनाया है।
2: साईराम योग मंडल पिछले 28 सालों से बड़े बड़े थीम पे आयोजन करता है। पिछले साल वनतारा थीम, उसके पहले शीश महल, उसके पहले जयपुर महल, ऐसे अलग अलग महलों में सूरत के अंदर बहुत फेमस है। इस साल हम लोग ओडिशा का कोणार्क मंदिर का भव्य आयोजन कर रहे हैं और हमने शोभा यात्रा पिछले दिनों बहुत भव्य आयोजन किया था, जिसमें हजारों की तादाद में हमने शोभा यात्रा का बहुत बढ़िया आयोजन किया था, जिसमें महाराष्ट्र से ढोल पटक आए थे, महाराष्ट्र के इवेंट द्वारा समुद्र मंथन का कार्यक्रम किया था, उसके बाद गणेश वंदना की थी।
0: आयोजकों ने इस पंडाल का 3D वीडियो भी जारी किया है, जिसमें पंडाल का प्रस्तावित स्वरूप दिखाया गया है। पंडाल तैयार होने के बाद गणेश उत्सव के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। नागपुर से योगेश वसंत पांडे और सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, बात जब गणपति के आगमन की हो रही हो तो ये कैसे मुमकिन है कि मोदक का जिक्र ना हो। दरअसल मोदक को गणपति का प्रिय भोग माना जाता है। वैसे तो मोदक किसे पसंद नहीं होते, लेकिन गौरी पुत्र को मोदक से विशेष प्रेम है। गणपति से जुड़ी कहानियों में वो माँ गौरी से लेकर देवी अनुसुईया तक सबके हाथों से मोदक पाते रहे हैं और बप्पा का ये मोदक प्रेम उनके भक्तों को भी खूब भाता है। तो चलिए, एक वक्त था, ये भी आपको बता देते हैं, जब गणेशोत्सव में मोदक बनाने का चलन महाराष्ट्र तक सिमटा था, लेकिन देखते ही देखते मोदक देश के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच गया। मुंबई से लेकर दिल्ली तक मिठाई की दुकानों में गणेश चतुर्थी के मौके पर लड्डू के साथ साथ अब मोदक भी खूब बनने और बिकने लगा है। दिल्ली के चांदनी चौक की एक ऐसी ही दुकान मौजूद है जहां के लिए दावा किया जाता है कि मोदक का चस्का दिल्ली वालों की जुबान पर वहीं से चढ़ा। दरअसल 40 साल पहले इस दुकान के मालिक महाराष्ट्र के दौरे पर गए तो कुछ नया करने की चाह में लौटते समय मोदक बनाने के सांचे वहां से लेते आए। फिर क्या था, चांदनी चौक में मोदक बनने का सिलसिला चल पड़ा और अब यहां लगभग 25 तरह के मोदक तैयार किए जाते हैं। चावल, काजू, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट के अलावा स्ट्रॉबेरी, हेजलनट, कलाकंद के स्वाद वाले मोदक भी यहाँ पर मौजूद हैं।

0: बप्पा आ रहे हैं और बप्पा के आने की तैयारियां हर तरफ दिखाई पड़ रही है। आज हम आपको दिल्ली के दिल चांदनी चौक में लेकर आए हैं और चांदनी चौक की उस दुकान पर जहां पिछले 35 साल से लगातार मोदक तैयार किया जा रहा है, बप्पा का फेवरेट भोग तैयार हो रहा है। आज भी हम आपको यहां पर अलग अलग तरह के मोदक की तैयारी दिखा रहे हैं, वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं, उनकी मेकिंग दिखा रहे हैं। किचन में हम मौजूद हैं और आपको बात करवाएंगे उन लोगों से भी जो पिछले 35 सालों से लगातार इस काम में लगे हुए हैं। ये दुकान 1910 के आसपास शुरू हुई थी, लेकिन ये इस दुकान के उन लोगों का इनोवेशन ही था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई चीज़ लाई जाए जो कि नॉर्थ इंडिया में भी बहुत तेज़ी से चल जाए। और नए के नाम पर वो पहुँचे महाराष्ट्र और वहाँ से लेकर आए ये सांचा। ये वो पहला सांचा है जो इस दुकान के पूर्वज लेकर आए थे मोदक बनाने के लिए। ये सांचा आया और तब से यहाँ पर बप्पा का फेवरेट भोग मोदक बनना शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक ये लगातार ऐसे ही बन रहा है। 25 से ज़्यादा फ्लेवर ये लोग खुद बनाते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल फ्लेवर ऑर्डर भी करता है तो उसकी पसंद का मोदक भी यहाँ पर तैयार हो जाता है। हम भरत के किचन में हैं, तो कौन कौन सी वैरायटी है इसमें, कितने तरह के मोदक हैं?
1: सर देखिए, यहाँ पे श्याम स्वीट्स के अंदर हम डिफरेंट तरीके के मोदक बनाते हैं। वैसे तो इंडिया हमारा रिच ऑफ कल्चर्स, टेस्ट एंड अलग अलग जगह के अलग अलग स्वाद हैं। जो मोदक असल बनना शुरू हुआ था महाराष्ट्र से, साउथ साइड से, वो बनना शुरू होता है सब अनाज का, बट दिल्ली में आते आते उसके फ्लेवर्स वेरिएशंस चेंज हो गए। जैसे अब आप यहाँ पे इस थाल में देख पा रहे हैं, एक मोतीचूर का है, केसर का है, मोती बूंदी का है, स्ट्रॉबेरी का है, आपका खोए का है, पेड़े का है, ये आपका कीवी का हो गया, मोटे गोले का हो गया, अल्फांसो विद चॉकलेट हो गया, कलाकंद का हो गया, ये केसर मिक्स हो गए। इस तरीके से वेरिएशंस हैं अलग अलग तरीके के, और इसके अलावा ना जाने कितने किस्म के बन जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट है और एक इनोवेशन है जो जिस तरीके से जैसे बना सके। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हमारे को इस तरीके का मोदक चढ़ाने का मन है, क्योंकि भगवान को तो वही अर्पित किया जाता है ना। जो भगवान को एक ही चीज़ कब तक खिलाएंगे, कहते हैं ना बहुत से लोग, तो इसलिए जो सामने वाले का स्वाद हो हम वो चीज़ बनाने में सक्सेस करते हैं उसको, ताकि वो अपने मन के हिसाब से वो पूरा कर सके अपनी पूरी श्रद्धा भाव से।
0: जो भाव का है वो भगवान का है, सिंपल सी बात है। तो अभी जब मोदक हम लोग बना रहे हैं, 35 साल पहले जो यात्रा शुरू हुई थी उस समय भी क्या वजह थी कि मतलब, क्योंकि तब यहाँ पर गणेश पूजा उस लेवल से नहीं होती थी, लोग जानते नहीं थे, कैसे इसकी शुरुआत हुई?
1: इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई थी, अब जैसे पुराने लोग बताते हैं, इसमें पुराने मतलब हमारे बड़े बताते हैं, गणेश चौथ तो गणेश चतुर्थी, जिसको शॉर्ट में गणेश चौथ बोलते हैं,

0: सीखा, वो रेसिपी आज तक है हमारे पास और वो साँचे भी हैं। जैसे ये बहुत पुराने साँचे हैं, मतलब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो करीबन 40 से एक साल तो हो गए होंगे इस साँचे को, जो आज भी हमने संभाल के रख रखा है उनकी याद में।
1: ये सबसे पहले आया था?
0: हाँ जी, ये आया था एक बड़े के लिए और एक छोटे के लिए ये था। किस तरीके से जी है? तो पहले तो अब तो आज की डेट में बहुत सारे स्टील के बनते हैं, स्टेनलेस स्टील के, प्लास्टिक के बनते हैं, बट ये पहले के ज़माने में जो हाथ से बनते थे ये यही थे। इसमें एक पहले लकड़ी का और होता था, लकड़ी का तो अब समय के हिसाब से थोड़ा सा नहीं रहा सही, अभी है भी नहीं हाथ में, तो इसलिए जो आपको है वो दिखा पा रहे हैं। बाकी अब जो हम बनाते
1: हैं कि आपके पूर्वजों ने कहा था कि भाई नई चीज़ दिखेगी तो वो बिकेगी, अब नई चीज़ के लिए फिर एक्सपेरिमेंट करना था और वो एक्सपेरिमेंट ये था।
2: गणेशोत्सव की शुरुआत से कई दिनों पहले ही कलाकारों ने अलग अलग रूपों में बप्पा को ढालना तो शुरू कर दिया था। ऐसे में अब बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। कहीं गणपति देवा अपने पिता महादेव के वेश में नजर आ रहे हैं, तो कहीं लाल बादशाह राजा के स्वरूप वाली प्रतिमा भी बनकर तैयार है। शहर शहर श्रद्धालु बप्पा की इन प्रतिमाओं को खरीदने पहुंच रहे हैं।

0: जिसकी जैसी भावना वैसे उसके बापा। गणेश उत्सव में बहस कुछ ही दिन बाकी है, सो शहर शहर गणपति की मूर्तियां बनाने का काम भी तेज हो गया है। मूर्तिकार इन मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ये तस्वीरें यूपी के झांसी से आई है। झांसी में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बाजार में इस बार भगवान गणेश के पारंपरिक स्वरूप के साथ साथ कई नए और आकर्षक डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर भगवान भोलेनाथ से जुड़े स्वरूपों वाली गणेश प्रतिमाएं लोगों को खूब पसंद आ रही है। शिवलिंग के साथ गणेश प्रतिमा, भगवान शंकर के वेश में गणेश और लालबाग के राजा के स्वरूप वाली प्रतिमाओं की मांग खूब है। इसके साथ ही AI डिजाइन से तैयार किए गए नए नए स्वरूप भी भक्तों को भा रहे हैं। स्वरूप के अलावा बात अगर डिजाइन की करें तो घर में गणपति की स्थापना के लिए 1 से 3 फीट तक की प्रतिमाओं की मांग सबसे ज्यादा है। झांसी की तरह ही दिल्ली में भी गणेश प्रतिमाओं के निर्माण का काम जोर शोर से इन दिनों चल रहा है। इस काम से जुड़े कई कारीगर बापा की मूर्तियों को डिमांड के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। इन मूर्तिकारों के लिए ये सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि आस्था और कला का एक साथ पेश करने का मौका भी है। ये दो बहनें भी 20 साल से गणेश प्रतिमा तैयार कर रही हैं। पहले ये काम इनके पिता किया करते थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद दोनों बहनों ने इस काम को आगे बढ़ाया। ये दोनों बहनें न सिर्फ मूर्तियां बनाती हैं, बल्कि वो खुद गणपति बैठाती भी हैं।
1: गणेश पूजा, गणेश उत्सव, गणेश जी की मूर्ति को तैयार करना, उसको सजाना सवारना, इसके क्या मायने हैं ये आप इन दो बहनों से समझ सकते हैं, मंजू और वसुंधरा। ये दो बहनें सालों से इसी काम में लगी हुई हैं। हर साल मूर्ति को अपने हाथ से तैयार करती हैं, फिर उसे बेचती हैं, कुछ पैसे कमाती हैं। 20 साल से दोनों बहनें एक साथ ये काम कर रही हैं। इसके पहले ये काम इनके पिताजी किया करते थे, वो चल बसे तो उसके बाद दोनों बहनों ने मोर्चा संभाला हुआ है।
2: मूर्ति में सजावट करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, जो काम आते हैं वो कर लेते हैं।
1: ये काम सीखा किससे, अपने आप से या फिर पिताजी सिखा गए थे?
3: पिताजी सिखा के गए थे वैसे तो, अब देखते देखते सीख गए हम भी।
0: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को है, सो इस समय शहर शहर ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है। कोई मूर्तियों को आकार दे रहा है तो कोई रंग भरने का काम में जुटा है। खास बात ये है कि कई जगहों पर अब मूर्तियों को बनाने के लिए सिंथेटिक मटेरियल की जगह मिट्टी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन प्रयागराज में बनाई जा रही इन मूर्तियों के निर्माण में गंगा की मिट्टी, धान का

0: पुआल या पराली और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे विसर्जन के बाद पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। यहाँ के मूर्तिकार दस्तकार उत्साहित हैं, क्योंकि लगातार बारिश के बावजूद इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की मांग बढ़ गई है। घरों से लेकर बड़े बड़े पंडालों तक के लिए बड़ी संख्या में ऑर्डर मिल रहे हैं।
1: गणेश जी का मिट्टी पूरा प्योर मिट्टी और प्राय गंगा जी के शुद्ध मिट्टी से बनता है, और इसमें धान का पैड़ा है और लकड़ी है, बांस है, ये इको फ्रेंडली, पूरा कलर भी हमारा इको फ्रेंडली है।
0: ये तस्वीरें राजकोट की है, जहां भी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं को ही सजाने का काम चल रहा है। कोलकाता के दीपक जाना पिछले 30 वर्षों से लगातार यहां आकर बापा की प्रतिमाओं को तैयार करते हैं। राजकोट के गणेश उत्सव में अपने हुनर के रंग भरते हैं।
2: लेटेस्ट डिजाइन इंटरनेट में आया, उसी को ढूंढ ढूंढ के कलेक्शन करके मैं लोग बनाया मूर्ति।
3: कौन सा वो खास मूर्ति?
2: खास मूर्ति जो पहले नंबर है, नव दुर्गा का स्वरूप में, उसका नव दुर्गा है, उसका गोद में बैठा हुआ गणपति बापा 9 फीट का ऊपर है। ऐसा और भी बहुत सारे थीम है, सभी अलग अलग है, एक ही डिजाइन एक में नहीं है, सभी जितना भी मूर्ति है सब अलग अलग डिजाइन का।
0: तो वही करनाल में राजस्थान से आया मूर्तिकारों का ये परिवार पिछले 6 महीने से बापा की मूर्तियों को आकार देने में जुटा है। इनकी मेहनत का नतीजा ये है कि बापा की सैकड़ों प्रतिमाएं अब यहाँ गणेश भक्तों को लुभा रही है।
4: अभी गणेश तो तैयार करने के मेरे 6 महीना हो गया बनाते बनाते, अभी एक एक मूर्ति में 10 से 12 दिन लग जाते जी, बारीकी काम है।
0: तो वही महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तो बच्चे ही मिट्टी से बापा की मूर्त गढ़ रहे हैं। गणेश उत्सव से पहले यहाँ बच्चों के लिए इस खास वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहाँ बच्चों ने मिट्टी से दोस्ती की और अपने हुनर के रंग भरकर बापा की प्रतिमाओं को तैयार करने में जुट गए। अब इनकी बनाई प्रतिमाएं इस साल गणेश उत्सव की शान बनेंगी। झांसी से अजय झा, राजकोट से रौनक मजीठिया, करनाल से कमलदीप, चंद्रपुर से विकास राजूगर, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: अब देखें, कुछ सालों से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए गणेशोत्सव पर खास तौर से प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय इको फ्रेंडली यानी मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं बनाने का चलन भी रहा है। वास्तव में ये जल प्रदूषण से बचाव का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ऐसे में कई मूर्तिकार जहां मिट्टी और दूसरी सॉल्यूबल चीजों से एक से बढ़कर एक मूर्तियों को आकार दे रहे हैं, तो इनकी डिमांड भी मार्केट में खूब बनी हुई है।

0: बीते कुछ सालों से गणेशोत्सव पर प्रकृति का भरपूर ख्याल रखने का संदेश दिया जा रहा है। नेचर को नुकसान पहुंचाने वाले जहर से कोसों दूर बाप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां आज मूर्ति कारीगरों के साथ आस्थावानों की पहली पसंद है। ऐसे में कुछ मूर्तिकार परिवार अपनी गणेश भक्ति को ही पीढ़ियों से चली आ रही कला परंपरा में बदले हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर का एक परिवार है जो हर साल आस्थामयी और कलात्मक माहौल में भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय बांस, नारियल की छाल और मौली धागा से बेहद खूबसूरत और पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों को आकार दे रहा है। इस परिवार के मुखिया हैं शिवचरण यादव, जो कभी सरकारी मुलाजिम रहे, घर चलाने के लिए भेल भी बेची, लेकिन जब इस काम में मन नहीं रमा तो फिर कलाकारी करने का महज ख्याल ही मानो पैशन बन गया है।
1: बच्चे लोग सबसे पहले मेरे को वहाँ अध्यक्ष बनाए, उसके बाद फिर मैंने अपना धीरे धीरे स्थल सजावट का काम किया। स्थल सजावट करने के बाद अब उसमें भी मजा नहीं आया, तो फिर मैं बोला उसको बंद करके मूर्ति का काम स्टार्ट किया।
0: मूर्तिकार शिवचरण को इन मनोहारी मूर्तियों को आकार देते हुए 25 साल से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान उन्होंने ठेले पर भी बाप्पा की मूर्तियां रखकर बेची। साल 2011 से शिवचरण ने घर पर ही मौली धागा, नारियल की लकड़ी, नारियल की बुच जैसी कई इको फ्रेंडली चीजों से मूर्तियों को आकार देना शुरू किया। वहीं इस बार के गणेशोत्सव में शिवचरण ने धूप दीप, पेड़ की छाल और बांस की लकड़ी जैसी कई और पर्यावरण सुरक्षित जैसी चीजों से खूबसूरत बप्पा बनाए हैं, जिनके डिमांड काफी है।
1: इस बार हम लोग बनाए हैं धूप दीप का बनाए हैं राम भगवान के रूप में, और पेड़ के छाल से बनाया गया है, और उसके बाद बांस की लकड़ी से बनाया गया है, और नारियल की बूच को नारियल का स्वरूप दिया गया है।
2: बिंदी से शंख से
1: सीप, शंख और सीप से बनाया गया है, और ये क्या बोलते हैं,
2: बिंदी से
1: ये मोती से बनाया गया है।
0: शिवचरण और उनके परिवार की नजर में प्रकृति का सम्मान ही बाप्पा की सच्ची भक्ति है। शिवचरण अपनी पत्नी, दो बेटे और एक बहू के सहयोग से विघ्नहर्ता की ऐसी ऐसी सुंदर मूर्तियां बना रहे हैं जिनके चाहने वाले ग्राहक हर साल बढ़ रहे हैं।
3: बाकी मूर्तियां तो अलग अलग बनाए जाते हैं मिट्टी से और बाकी अन्य चीजों से, लेकिन हम लोग गणेश जी को किसी भी चीज में अलग अलग रूप में बनाकर, मतलब आप देख सकते हैं कि पीछे एक लकड़ी की छाल है, सामने धूप अगरबत्ती है, उसके हिसाब से अलग अलग चीजों से बनाते हैं।
2: आस्था भी है गणेश
3: जी? बहुत आस्था है हमारी।
0: फिलहाल तो मिट्टी की ये सुंदर सुंदर इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा हमारी प्रकृति को मुस्कुराने की वजह दे रहे हैं। रायपुर का ये परिवार गणेश मूर्ति को बनाने की कला को जिस अंदाज में जिंदा रखे हुए है, उससे न केवल समाज को अपना पर्यावरण बचाने की प्रेरणा मिल रही है, बल्कि खुशहाल प्रकृति बने रहने का संकेत भी मिल रहा है। तो हो जाए एक बार फिर विघ्नहर्ता का ये प्यारा सा उत्सव इको फ्रेंडली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि बप्पा पधार रहे हैं। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरें जा रही हैं, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति बहुत साहसी हो जाता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति के अंदर बहुत आकर्षण पैदा होता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति को बड़ी सारी संपत्ति का फायदा होता है? क्या मंगल दोष होने से भी हो सकता है लाभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
4: महाराष्ट्र के अकोला में गणेश उत्सव को लेकर गजब का उत्साह, शास्त्री नगर में चिंतामणि गणपति बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का भव्य स्वागत, आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमान। राजधानी दिल्ली पर भी चढ़ने लगा गणेश उत्सव का रंग, स्वीट स्टोर्स में जोरदार तरीके से बप्पा के प्रिय मोदक का निर्माण, खूबसूरत मूर्तियों से सजे बाजार, तो कहीं घरों में मिट्टी से बने गजानन। अकोला में पोला उत्सव की जोरदार तैयारियां, बैलों को सजाने के लिए रंग बिरंगी रस्सियां, घुंघरू और पट्टे खरीद रहे हैं किसान, वृषभ राजा के प्रति सम्मान दर्शाता है ये पर्व। रामनगरी अयोध्या से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा, मानदेय में 50% इजाफे के साथ मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का कैशलेस इलाज। लखनऊ में हनुमान अंश की टीम से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाबा नीब करौरी के जीवन पर बनी फिल्म को देश भर से मिल रहा प्यार, बॉक्स ऑफिस पर हर दिन बना रही है नए रिकॉर्ड्स। वडोदरा में 6,000 से ज्यादा युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का मेगा इवेंट समारोह में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम, 35,000 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
0: मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली गिरफ्तार की तरह फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है, हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है, कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं और इन्हें शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की पड़ताल और झूठ के नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले वायरल हो रहे उस वीडियो की बात होगी जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि हनुमान अंश फिल्म देखने पहुंची एक महिला हनुमान चालीसा सुनते समय अचानक बेहद भावुक हो गई और कुछ ही देर में जोर जोर से चीखने लगी, क्या इसकी सच्चाई आगे जानी है। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के से जुड़ी हुई जिसे नेपाल का बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक शख्स कुरान शरीफ पढ़ने लगा, वीडियो की सच्चाई क्या है आगे आपको बताएंगे, शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
0: नीम करौरी बाबा के जीवन पर बनी भक्ति ड्रामा फिल्म हनुमान अंश ने धूम मचाई हुई है। ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हो रही है और सोशल मीडिया पर हनुमान अंश छाई हुई है। कहीं सिनेमा घरों के बाहर लड्डू बांटे जा रहे, कहीं हनुमान सदा सहायते के नारे गूंज रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि महिला हनुमान अंश देखने के बाद थिएटर के अंदर ही चीख चीख कर दहाड़े मारने लगी। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
5: जिसने भी इस दृश्य को देखा वो हैरान हो गया। थिएटर के अंदर एक महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी और अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। महिला की हरकत देखकर आसपास बैठे लोग भी दंग हो गए। आसपास बैठे लोगों ने इसे रोकने की कोशिश में जुट गए। कोई इस लम्हे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने लगा। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि थिएटर में नीम करौली बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर बनी मूवी हनुमान अंश देख रही महिला हनुमान चालीसा सुनते समय अचानक बेहद भावुक हो गई और कुछ ही देर में जोर जोर से चीखने लगी। कुछ लोग इस घटना को गहरी भक्ति का प्रणाम बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स इसे भावनात्मक प्रतिक्रिया मान रहे हैं। वीडियो के साथ एक संदेश भी शेयर किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि जब कोई फिल्म दिल को छू जाती है और इंसान भगवान की भक्ति में पूरी तरह डूब जाता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल हनुमान अंश ने सिनेमाघरों में अब तक आई फिल्मों के सामने पूरी बाजी पलट कर रख दी। इस फिल्म को लेकर न प्रमोशनल कोई प्रमोशन किया गया और न ही लोगों को रिलीज के समय भनक लगी। करीब 2 करोड़ रुपए के बजट में तैयार ये फिल्म अब तेजी से 200 करोड़ के क्लब की तरफ कमाई करती नजर आ रही है। इन सबके बीच सोशल मीडिया के पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि हनुमान अंश फिल्म में हनुमान चालीसा सुनकर ये महिला भावुक हो गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। पड़ताल में सामने आया कि वीडियो एक थिएटर के अंदर का है जहां पर्दे पर फिल्म चल रही है। उसमें नए जमाने के हिसाब से ही रिक्रिएट किया गया हनुमान चालीसा बज रहा है। इन सब के बीच एक महिला अपनी सीट पर दहाड़े मारकर रो रही है। वो इधर उधर लौट भी रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका शरीर काबू में ना हो। आसपास के लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये चौंकाने वाला दृश्य था। लेकिन जब फैक्ट चेक टीम ने वीडियो में आ रही आवाजों को फ्रेम दर फ्रेम सुना तो ये सामने आया कि ये तेलुगु है। इससे हमें ये इशारा मिल गया कि वायरल हो रहा वीडियो आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना का हो सकता है। इसके बाद हनुमान अंश मूवी में हनुमान चालीसा को नए तरीके से रिक्रिएट नहीं किया गया, जिससे हमें दावे की सत्यता पर संदेह हुआ। साथ ही सर्च के दौरान ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि वायरल वीडियो हाल फिलहाल का है, क्योंकि अगर वाकई ऐसा हुआ होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर मिलती, लेकिन हमें ऐसा कहीं कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था, हनुमान अंश मूवी थिएटर्स में हिंदी भाषा में ही उपलब्ध है, साउथ के शहरों में भी इसके हिंदी शोज ही चल रहे हैं। अभी फिलहाल मेकर्स की तरफ से इसके आधिकारिक तेलुगु डब वर्जन की थिएटर या फिर ओटीटी रिलीज को लेकर कोई फाइनल डेट अनाउंस भी नहीं हुई है। ऐसे में हमारा सवाल ये कि वायरल हो रहे वीडियो में तेलुगु आवाजें क्यों सुनाई दे रही है। दूसरा सवाल कि हनुमान अंश मूवी में हनुमान चालीसा को रिक्रिएट नहीं किया गया है। ऐसे में हमारा सवाल सीधे तौर पर यह कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। सच और झूठ की इस रिपोर्ट में जानिए।
5: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रही वीडियो के कुछ की फ्रेंड्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो तेलुगु फिल्मों को कवर करने वाले एक इंस्टाग्राम पेज पर मिला। पेज पर वीडियो 30 जनवरी 2024 को अपलोड किया गया था। पोस्ट के मुताबिक ये घटना उप्पल स्थित एशियन सिनेमा में हुई थी और महिला फिल्म हनुमान के क्लाइमेक्स के दौरान भावुक होकर अजीब तरह से प्रतिक्रिया देने लगी थी। पड़ताल के दौरान हमें ये वीडियो एक YouTube चैनल पर 30 जनवरी 2024 को अपलोड हुआ मिला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि एक महिला हनुमान मूवी देखते समय असामान्य हरकतें करने लगी थी। इससे स्पष्ट होता है कि वायरल वीडियो हाल में रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश का नहीं है बल्कि करीब 2.5 साल पुराना है। सर्च के दौरान एक वेबसाइट पर 30 जनवरी 2024 को इस घटना पर प्रकाशित रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में वायरल वीडियो वाले दृश्य भी देखने को मिले। रिपोर्ट के अनुसार महिला फिल्म देखने के दौरान इतनी भावुक हो गई कि वह कांपने लगी और अपनी सीट से नीचे गिर गई। रिपोर्ट में इस घटना को तेलुगु फिल्म हनुमान के क्लाइमेक्स से जोड़ा गया था। हनुमान और हनुमान अंश दो अलग अलग फिल्में हैं। हनुमान तेलुगु सुपर हीरो फिल्म है जो हनुमान से जुड़े पौराणिक संदर्भों को सुपर हीरो कथा के साथ पेश करती है। वही हनुमान अंश नीम करोली बाबा के जीवन और उनके आध्यात्मिक यात्रा पर केंद्रित फिल्म है। हमारे पड़ताल में मेरे साक्ष्य से स्पष्ट है कि थिएटर में अजीबोगरीब हरकतें करती महिला का वायरल वीडियो नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश से संबंधित नहीं है। ये वीडियो करीब 2.5 साल पुराना है और जनवरी 2024 में तेलुगु फिल्म हनुमान देखते हुए सामने आया था। अब इस पुराने वीडियो को हाल ही रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश से जोड़कर भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। और इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग सड़क पर दुआ करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि नेपाल का है जहां पर आपदा के बीच लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। लेकिन जब वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में।

0: नेपाल में 26 अगस्त को आए विनाशकारी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। इस हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इन सबके बीच चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। किसी पहाड़ वाली जगह पर कई लोग सड़क किनारे कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां कहीं वर्दीधारी भी मौजूद है और कुछ लोग आते जाते हुए भी देखे जा रहे हैं। वीडियो को इस दावे से शेयर किया जा रहा है कि नेपाल में बाढ़ से बचाव के लिए कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि ये है ईमान की ताकत। ये वीडियो नेपाल का जहां पर कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है और दुआ की जा रही है, माशाल्लाह। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर 11 सेकंड का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कई लोग सड़क किनारे कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां कई वर्दीधारी भी मौजूद हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि नेपाल त्रासदी के बाद कुछ लोग सड़क पर कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। वीडियो को लेकर चौंकाने वाला दावा किया जा रहा था, क्योंकि इसके जरिए भी कहा जा रहा था कि नेपाल में बाढ़ से बचाव के लिए लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ा है। हाँ, ये बात सच है कि 26 अगस्त को नेपाल में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है, लेकिन वायरल वीडियो इसी बाढ़ से संबंधित है, ये जानना जरूरी हो गया था। लेकिन वीडियो को देखने से हमें इसमें ऐसी कई चीजें देखने को मिली जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। मसलन वीडियो में एक जगह एक वर्दीधारी जवान की जैकेट पर लिखे शब्दों को हमने जब गौर से देखा तो इस पर किर्गिस्तान लिखा हुआ था। हमें यह देखकर काफी हैरानी हुई। वायरल वीडियो नेपाल का है तो फिर यहां पर किर्गिस्तान के जवान का क्या काम? नेपाल में आपदा राहत कार्यों में शामिल जवान नीले रंग की कैमोफ्लाज यानी कि नीली चितकबरी वर्दी में नजर आ रहे थे, जबकि आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान डार्क ग्रे बैकग्राउंड के साथ ही लाइट ग्रे, डार्क ब्लू और फिर ब्लैक मिक्स वाली वर्दी पहनते हैं। ऐसे में हमें वीडियो की सत्यता पर संदेह हुआ। हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यह कि सर्च के दौरान जानकारी जो सामने आई है उसमें किर्गिस्तान के राष्ट्रपति ने नेपाल आपदा पर दुख जरूर जताया, लेकिन वहां कोई सैनिक रेस्क्यू टीम का हिस्सा बना ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। अब सवाल यह है कि अगर वायरल वीडियो नेपाल का है और बाढ़ से बचाव के लिए कुरान शरीफ पढ़ रहा है ये जवान, तो फिर यहां पर किर्गिस्तान रेस्क्यू टीम के जवान नजर क्यों नहीं आ रहे? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नेपाल के साथ जोड़कर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही? सच और झूठ।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 25 जून को अपलोड किया गया था। इसके बाद हमने इस इंस्टाग्राम अकाउंट में मौजूद बायो का अनुवाद किया, जिसके जरिए जानकारी सामने आई कि यह अकाउंट किर्गिस्तान के चुई ओब्लास्ट के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय के प्रेस विभाग से जुड़ा है। इतना ही नहीं, हमें इस अकाउंट पर अपलोड किए गए कई वीडियो में उसी ड्रेस में दिख रहे कई वर्दीधारी भी मिले जो वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियोस में वर्दीधारियों द्वारा पहने गए लाइफ जैकेट पर किर्गिस्तान रेस्क्यू भी साफ साफ लिखा हुआ देखा जा सकता है। इसी दौरान हमें किर्गिस्तान के मीडिया पोर्टल के फेसबुक अकाउंट से 26 जून को पोस्ट किया गया वीडियो मिला। इस वीडियो में भी वायरल वीडियो से मिलते जुलते दृश्य मौजूद थे। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में लिखा हुआ था, किर्गिस्तान के केगेती घाटी में एक 6 वर्षीय बच्चा पानी में गिर गया था जिसकी तलाश की जा रही थी। इसमें कई देशों के वॉलंटियर्स भी शामिल हुए थे। इसी दौरान बिरदिक गांव के हाफिजों ने बच्चे की खोज के लिए कुरान पढ़ी थी। जांच में हमें 25 जून को किए गए कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट भी मिले जिनमें वायरल वीडियो से मिलते जुलते दृश्य मौजूद थे। इस संबंध में हमें किर्गिस्तान की एक न्यूज वेबसाइट पर 26 जून का प्रकाशित रिपोर्ट भी मिला। रिपोर्ट में बताया गया था कि 23 जून को एक कार केगेती नदी में गिर गई थी। इसमें 2 महिलाएं और 5 बच्चे मौजूद थे। दोनों महिलाएं और 3 बच्चे गाड़ी से निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन 2 बच्चे उसमें ही फंसे रह गए थे। 12 वर्षीय बच्चे की बॉडी पहले ही रेस्क्यू टीम ने रिकवर कर ली थी। बाद में 26 जून को उस बच्चे का शव भी बरामद हो गया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से साफ है कि नेपाल में बाढ़ से बचाव के लिए कुरान पढ़े जाने के दावे से वायरल ये वीडियो किर्गिस्तान का है।
1: चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
3: क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति बहुत साहसी हो जाता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति के अंदर बहुत आकर्षण पैदा होता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति को बड़ी सारी संपत्ति का फायदा होता है? क्या मंगल दोष होने से भी हो सकता है लाभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
5: अरे बेटा बोल तो दिया नेम फाइव सीजन्स। विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, मानसून। क्या दिक्कत है इसमें? नेम फाइव सीजन्स तो नहीं आते तो मैं इनका बोला वो मीनिंग लिखो फटाफट से। चलो बेटा मेरे पास पेंसिल्स का टाइम भी अपनी लाया करो। चलो अपनी पेंसिल यूज करो। या फिर मैं पेंसिल देने वाली बैठी हुई हूँ। वर्क देती हूँ आपको ना कि पेंसिल्स। अपनी लाया करो पेंसिल्स। कल से ना सारे बच्चे अपनी अपनी पेंसिल्स लेके आएंगे। आज लास्ट टाइम है। दे रही हूँ बस मार्क पकड़ो।
6: छोटी सी मैडम ने घर में ही लगा ली अपनी क्लास। बच्चे जिस अंदाज में पढ़ा रही है उसे देखकर यूजर्स मुस्कुरा रहे हैं। दरअसल बच्ची ने नोटबुक्स को ही अपने छोटे छोटे स्टूडेंट्स की तरह मान लिया है और बड़े ही ध्यान से उन्हें पढ़ाती नजर आ रही हैं। कभी वो कॉपी की तरफ देखकर समझाने की कोशिश करती है तो कभी टीचर की तरह अपना पूरा ध्यान क्लास पर लगाती दिखाई देती है। सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान बच्ची के अंदाज ने खींचा है। जिस तरह से वो टीचर बनकर पढ़ाने का खेल खेल रही है वो देखने में बेहद प्यारा और मजेदार है। बच्ची की बॉडी लैंग्वेज और पढ़ाने का तरीका देखकर सोशल मीडिया यूजर्स उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।
5: आपको मैन को बोला जो प्रणाम दोनों का। चलो दो मिनट आप जस्मिका चार पांच छह मीनिंग देखो लाइन डाल दिए। मीनिंग देखो उसका मेरे को नहीं पता क्या खुद लिखो। एक तो बस लेट है और मीनिंग भी मैं भी तो
6: एक छोटे बच्चे ने अपने परिवार के बारे में लिखे सवाल का ऐसा जवाब दिया कि उसकी कल्पना और बेबाकी दोनों चर्चा का विषय बन गए। तस्वीर में बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आ रहा है और उसके सामने उसकी लिखी हुई कॉपी रखी है। कॉपी में टीचर ने अपने परिवार के बारे में लिखे सवाल दिया था। इसके जवाब में बच्चे ने अपने परिवार के हर सदस्य के बारे में बड़े ही अनोखे अंदाज में लिखा है। बच्चे ने शुरुआत करते हुए लिखा कि उसका परिवार खतरों का खिलाड़ी है। इसके बाद पिता के बारे में उसने लिखा कि उनके पापा शक्तिमान का रूप है। माँ को उसने घर की लक्ष्मी बाई बताया है। यहाँ तक तो जवाब काफी प्यारा और सामान्य लगता है लेकिन इसके बाद बच्चे की कल्पना कुछ ज्यादा ही मजेदार हो जाती है। बच्चे ने अपनी बहन का जिक्र भी बेहद अनोखे अंदाज में किया है। इसके बाद उसने अपने बारे में जो लिखा वही इस पूरी कॉपी का सबसे मजेदार हिस्सा नजर आता है। बच्चे ने खुद को घर का सबसे नालायक बताया है। उसकी ये बेबाक लाइन पढ़कर लोग हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे हैं। जवाब पढ़ने के बाद टीचर ने लाल पेन से कुछ शब्दों को घेरा और नीचे अपनी टिप्पणी भी लिखी। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि बच्चे को इस जवाब के लिए 10 में से 10 नंबर मिले हैं। टीचर का ये फैसला भी लोगों को खूब गुदगुदा रहा है। गुरु शिष्य के रिश्ते की ये खूबसूरत तस्वीर लोगों को खूब पसंद आ रही है। यहाँ तोहफे की कीमत नहीं बल्कि उसके पीछे छिपा बच्चों का स्नेह मायने रखता है। किसी बच्चे के हाथ में खेत से तोड़ी गई तोरई है, कोई बच्चा अपनी भैंस का दूध लेकर पहुंचा है तो कोई अपने घर खेत से ककोड़ा लेकर आया है। देखने में चीजें भले ही साधारण लगे लेकिन बच्चों की नजर में ये उनके पास मौजूद सबसे खास चीजों में से है। इस पूरे भाव को सबसे ज्यादा खास बनाता है शिक्षक का व्यवहार। बच्चों की लाई गई इन चीजों को वो सामान्य सामान की तरह नहीं लेते, वो उन्हें अपने सिर से लगाकर प्रणाम करते हैं, मानो बच्चों ने सामान नहीं बल्कि अपना प्यार और सम्मान उनके हाथों में रखा हो। शिक्षक भी स्नेह को पूरे सम्मान के साथ अपने सिर माथे लगा लेते हैं। इस अद्भुत कलाकारी को देखकर लोग दंग हैं। नीली साड़ी पहने एक महिला अपने हाथों में एक विशालकाय हरा पत्ता थामे हुए दिखाई देती है। महिला पत्ते को पकड़े हुए मुस्कुराती है, जिससे लोगों को लगता है कि ये शायद प्रकृति की सुंदरता को दर्शाने वाला कोई साधारण वीडियो है। लेकिन असली रोमांच तब शुरू होता है जब महिला उस विशाल पत्ते को घुमाती है। पत्ते के दूसरी तरफ का दृश्य देखकर हर कोई हैरान हो गया। पत्ते के कैनवास पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बेहद खूबसूरत और जीवंत चित्रकारी उकेरी गई है। पत्ते की सतह पर किए गए रंगों के संयोजन और बारीकियों को देखकर महिला के हुनर का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। एक ड्राइवर के लिए उसकी गाड़ी सिर्फ मेटल और टायरों का ढांचा नहीं होती बल्कि उसका हम सफर होती है, जिसने धूप छांव और आंधी तूफान में उसका साथ निभाया होता है। केरल की एक रोडवेज बस ड्राइवर का रिटायरमेंट का ये भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है, जिसमें वो अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद बस को ऐसे विदाई दे रहे हैं जैसे कोई अपने किसी बेहद करीबी को अलविदा कह रहा हो। ड्राइवर पॉल कुरियन का ये वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इडुक्की जिले के कुमेली डिपो पर 2 सितंबर को शूट किए गए इस 1 मिनट के वीडियो में पॉल कुरियन अपनी आखिरी शिफ्ट पूरी करने के बाद बस के पास खड़े नजर आते हैं। उन्होंने बेहद भावुक अंदाज में बस की स्टेयरिंग व्हील को चूमा, उसके चारों टायरों को छूकर नमन किया और जाने से पहले गाड़ी को सल्यूट किया। इस दौरान पॉल कुरियन की आंखें नम हो गई और वो अपने आंसू पोंछते हुए वहां से विदा हुए। सालों तक जिस बस के जरिए उन्होंने लाखों यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाया और अपने परिवार की आजीविका चलाई, उससे अलग होना उनके लिए बेहद मुश्किल था। इंटरनेट पर ये वीडियो सामने आने के बाद लोग ड्राइवर के अपने काम के प्रति समर्पण और ईमानदारी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी फिटनेस और जज्बे से युवाओं को भी हैरान कर दिया है। हरी साड़ी में एक बुजुर्ग महिला लेग प्रेस मशीन पर लेटी हुई है, वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति खुद लेग प्रेस प्लेट्स के ऊपर बैठे हुए हैं ताकि अम्मा पर अतिरिक्त वजन आ सके। अम्मा बड़े ही सहज अंदाज में लेग प्रेस रेप्स मारती हैं और आसपास खड़े युवाओं ने देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इसके बाद अम्मा बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से केबल फ्लाई और बटरफ्लाई मशीन पर चेस्ट और शोल्डर वर्कआउट करती नजर आती हैं। बिना किसी झिझक के साड़ी का पल्लू संभाले अम्मा का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लंदन के अंडरग्राउंड ट्रेन में सफर करने वाले लोगों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि एक दिन उन्हें प्लेटफॉर्म पर ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जिसे देखकर ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्री हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। मामला 2 छोटे छोटे चूहों का है जो लंदन के अंडरग्राउंड स्टेशन पर अचानक आपस में भिड़ गए। दोनों की लड़ाई इतनी मजेदार थी कि वहां मौजूद यात्रियों का ध्यान ट्रेन से ज्यादा इन दोनों फाइटर्स पर टिक गया। दोनों चूहे कभी एक दूसरे के पीछे दौड़ते तो कभी सामने आकर पंजों से ऐसे वार करते जैसे किसी बड़े बॉक्सिंग रिंग में मुकाबला चल रहा हो। कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लगा मानो दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी हो और आज हिसाब बराबर करने का दिन आ गया हो। वीडियो बनाने वाली सोनिया मैंसफील्ड अपने दोस्त अरुण के साथ स्टेशन पर मौजूद थी। दोनों की नजर जब इन चूहों पर पड़ी तो उन्होंने इस मजेदार घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। चूहों की हरकत इतनी अजीब और मजेदार थी कि वहां मौजूद लोगों के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
7: सोचिए, एक रोबोट आपके घर में आए और सिर्फ चलने या बोलने की बजाय फ्रिज खोले, सामान उठाए, चीजों को सही तरीके से पकड़े और आपके साथ मिलकर काम करे। सुनने में भविष्य की कहानी लगता है, लेकिन ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद के सामने इसकी झलक दिखाई गई। AI पावर्ड रोबोट्स ने अपनी ऐसी क्षमताओं का प्रदर्शन किया जो आने वाले वक्त में घर से लेकर फैक्ट्रीज तक काम करने का तरीका बदल सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: ये तस्वीर उस भविष्य की है जहां मशीनें सिर्फ मशीन नहीं रहेंगी। ब्रसेल्स में यूरोपियन संसद के खास रोबोटिक शोकेस में एआई पावर्ड रोबोट्स ने ताकत दिखाई। चलते रोबोट्स, चीजें उठाते रोबोट्स और बारीकी से काम करते रोबोट्स। 14 देशों के 31 एकेडमिक और इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के 15 रोबोट्स ने दिखाया कि मशीनें अब सिर्फ प्रोग्राम किए गए काम दोहराने से आगे बढ़ रही हैं। इन रोबोट्स की सबसे बड़ी खासियत है अपने आसपास की दुनिया के साथ तालमेल, किसी वस्तु को पहचानना, उसके आकार और स्थिति को समझना, फिर उतनी ही ताकत से पकड़ना जितना जरूरी हो। इंसान के हाथ के लिए ये सब बेहद स्वाभाविक है, लेकिन एक रोबोट के लिए हर मूवमेंट के पीछे सेंसर, एआई और बेहद सटीक गणना काम करती है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है फ्रिज खोलना, हमारे लिए रोज का मामूली काम, लेकिन रोबोट के लिए एक पूरा मिशन। उसे फ्रिज देखना है, हैंडल पहचानना है, सही जगह हाथ ले जाना है, ग्रिप बनानी है और फिर सही ताकत लगाकर डोर खोलना है।
1: So they have to interact with our environment, open doors, open door, drawers. In the case of our robot has to open the fridge, which seems like a simple task, we do it all the time. But imagine when you do it and your hand is very soft and compliant and is doing very quick movement.
0: असली कमाल सिर्फ रोबोट्स के चलने में नहीं, कमाल तब है जब वो देखकर फैसला करे, हाथ बढ़ाए और काम पूरा करे। और यही क्षमता इन्हें घर, अस्पताल और दूसरी जगहों पर इंसान का मददगार बनाने की दिशा में ले जा रही है। लेकिन इस तकनीकी दौड़ में यूरोप के सामने बड़ी चुनौती भी है। चीन और अमेरिका ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में भारी निवेश के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यूरोप के पास मजबूत रिसर्च है, लेकिन उसे लैब से निकालकर बड़े पैमाने पर उत्पादन तक पहुंचाने की रफ्तार अभी चुनौती बनी हुई है।
2: Huge ecosystem of suppliers, of technology, manufacturing facility that allow to accelerate and go very, very fast as China is doing or how US is doing because of the large investment that they are receiving.
0: ये सिर्फ तकनीक की दौड़ नहीं है, बुजुर्ग होती आबादी और घटते वर्कफोर्स के बीच आने वाले वक्त में ऐसे रोबोट्स की जरूरत और बढ़ सकती है।
3: It's definitely lack of funding and lack of political willingness. It's not that we don't get funding. It's not that the politicians do not pay attention to robotics, but clearly not at the same level as what happens in China.
0: फ्रिज के डोर खोलने से शुरू हुई ये कहानी घर के काम से लेकर फैक्ट्री के मुश्किल काम तक पहुंच सकती है। बेशक रोबोट्स इंसान नहीं बन सकते, लेकिन उन्हें इंसान की तरह काम सिखाने की कोशिश अब पूरी रफ्तार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति बहुत साहसी हो जाता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति के अंदर बहुत आकर्षण पैदा होता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति को बड़ी सारी संपत्ति का फायदा होता है? क्या मंगल दोष होने से भी हो सकता है लाभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
7: महाराष्ट्र के अकोला में गणेश उत्सव को लेकर गजब का उत्साह। शास्त्री नगर में चिंतामणि गणपति बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का भव्य स्वागत, आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमान। राजधानी दिल्ली पर भी चढ़ने लगा गणेश उत्सव का रंग, स्वीट स्टोर्स में जोरदार तरीके से बप्पा के प्रिय मोदक का निर्माण, खूबसूरत मूर्तियों से सजे बाजार, तो कहीं घरों में मिट्टी से बने गजाना। अकोला में पोला उत्सव की जोरदार तैयारियां, बैलों को सजाने के लिए रंग बिरंगी रस्सियां, घुंघरू और पट्टे खरीद रहे हैं किसान। वृषभ राजा के प्रति सम्मान दर्शाता है यह पर्व। रामनगरी अयोध्या से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा। मानदेय में 50% इजाफे के साथ मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का कैशलेस इलाज। लखनऊ में हनुमान अंश की टीम से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा नेब करौरी के जीवन पर बनी फिल्म को देश भर से मिल रहा प्यार। बॉक्स ऑफिस पर हर दिन बना रही है नए रिकॉर्ड्स। वडोदरा में 6,000 से ज्यादा युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का मेगा इवेंट समारोह में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम। 35,000 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुप्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के रंग की करते हैं। आपसे देखिए, पांच दिनों के बाद गणेशोत्सव का श्री गणेश होने वाला है। शहर शहर गजानन की आस्था के रंग दिखने लगे हैं और शहर शहर मूर्तिकार गजानन की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। गणपति पंडालों की सजावट भी अंतिम दौर में पहुंच गई है। घर गलियों में मोदक की खुशबू बिखरने लग गई है। नागपुर से लेकर अकोला तक गणपति उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर शहर बप्पा की भव्य आगमन की यात्राएं चल रही हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज और नाचते झूमते भक्तों के बीच में बप्पा पधार रहे हैं। 14 सितंबर को बेहद श्रद्धा के साथ गजानन की स्थापना की जाएगी। गणपति बप्पा के आगमन को लेकर हर उम्र के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। पूरा माहौल भक्तिमय है। जैसे जैसे गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आ रहा है, मूर्ति निर्माण से जुड़े कारीगर बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तो वहीं बप्पा के प्रिय मोदक को बनाने का काम भी जोर शोर से शुरू हो चुका है। गणपति उत्सव की तैयारियों से जुड़ी तमाम तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बप्पा की भव्य आगमन की

अब जो स्वयं गणराज कहलाते हैं उनका स्वागत किसी राजाधिराज से कम क्या ही होगा। सो नागपुर वालों ने अब की बार वही करने की ठानी। गणेश उत्सव से पहले नागपुर में सार्वजनिक पंडालों में गणपति बाप्पा का आगमन शुरू हो चुका है। ये तस्वीर है नागपुर के महल इलाके में विराजमान होने वाले गणपति बाप्पा की। महल के दक्षिण मूर्ति चौक उत्सव पंडाल में बाप्पा को धूमधाम से लाया गया। डीजे ढोल नगाड़ों की धुन के साथ सैकड़ों लोग अपने लाडले बाप्पा का स्वागत करने पहुँचे। पंडाल को पहले ही सजाया जा चुका है, बस एक बाप्पा की कमी थी, अब वो भी पूरी हो गई। सुनागपुर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। अब 14 सितंबर को गणनायक पूरे विधि विधान के साथ अपने भव्य पंडाल में स्थापित कर दिए जाएंगे और उसके बाद 10 दिनों तक बाप्पा की भक्ति का ये उत्सव यूं ही चलता रहेगा। नागपुर क्या, इन दिनों तो शहर यही सूरत दिख रही है। ये तस्वीर गुजरात के सूरत की है। सूरत में गणेश उत्सव की रौनक नजर आने लगी है। गणेश उत्सव शुरू होने से पहले शहर के अलग अलग इलाकों में गणेश प्रतिमाओं के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है। गणेश पंडालों की चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले सूरत की इस गणेश आगमन यात्रा को देखिए।

शहर की गणेश आगमन यात्राओं में इस बार पारंपरिक आयोजनों के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों की अनोखी कलाकृतियां और आकर्षक प्रस्तुतियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। तस्वीरें सूरत के भटार इलाके में साई युवक मंडल की ओर से निकाली गई भगवान गणेश की भव्य आगमन यात्रा की है। इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और शहरवासी शामिल हुए। गणेश प्रतिमा के आगमन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आगमन यात्रा में अलग अलग धार्मिक और पौराणिक पात्रों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया।

0: कलाकारों ने अलग अलग रूप धारण कर नृत्य नाटिका का मंचन किया। कोई कलाकार राक्षस के रूप में नजर आया तो किसी ने भगवान का स्वरूप धारण कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आगमन यात्रा के दौरान भगवान शिव के तांडव की विशेष प्रस्तुति भी हुई। कलाकार भगवान शिव का स्वरूप धारण कर तांडव करते नजर आए। उनके चारों ओर जलती आग ने इस प्रस्तुति को और भी प्रभावशाली बना दिया। आगमन यात्रा में भगवान के 12 अवतारों को भी अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया। गणेश चतुर्थी से पहले भव्य आगमन यात्रा का आयोजन करने के मुख्य रूप से दो उद्देश्य थे। एक तो श्रद्धालुओं को गणेश उत्सव की धार्मिक भावना से जोड़ना और दूसरा भारतीय संस्कृति और पौराणिक परंपराओं की भव्य प्रस्तुति। और वाकई कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने पूरी यात्रा को एक अलग ही रंग दे दिया। लोगों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों को अपने मोबाइल फोन में कैद किया और बड़ी संख्या में लोग इन दृश्यों को देखने के लिए यात्रा के मार्ग पर मौजूद रहे। सूरत के भटार इलाके में इस साल गणेश उत्सव के लिए एक और खास तैयारी की जा रही है। यहाँ गणेश मंडल की ओर से ओडिशा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर भव्य गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है।
1: कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उसकी थीम पर इस बार भगवान गणेश की स्थापना की जानी है। और मूर्ति की अगर हम बात करें तो मूर्ति का आगमन हो चुका है। जिस मूर्ति के आगमन के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे और कई राज्यों से कलाकार आए थे, उन्होंने कई अपनी अलग अलग थीम पर यहाँ पर नृत्य किया था, अपना प्रदर्शन किया था। और जो आप मूर्ति देख सकते हैं वो यहाँ पर अभी रखी हुई है भगवान गणेश की, और जब यहाँ पर स्थापना की जाएगी तो गणेश उत्सव के दौरान हजारों की संख्या में भक्त भगवान गणेश के दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो ये जो मूर्ति है वही इस पंडाल में विराजमान की जाएगी। फिलहाल मूर्ति का आगमन हो चुका है।
0: हर साल यह गणेश मंडल एक अलग और अनोखी थीम पर गणेश पंडाल तैयार करवाता है। इस बार आयोजकों ने ओडिशा के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर को अपनी थीम बनाया है।
2: साईराम योग मंडल पिछले 28 सालों से बड़े बड़े थीम पे आयोजन करता है। पिछले साल वनतारा थीम, उसके पहले शीश महल, उसके पहले जयपुर महल, ऐसे अलग अलग महलों में सूरत के अंदर बहुत फेमस है। इस साल हम लोग ओडिशा का कोणार्क मंदिर का भव्य आयोजन कर रहे हैं और हमने शोभा यात्रा पिछले दिनों बहुत भव्य आयोजन किया था, जिसमें हजारों की तादाद में हमने शोभा यात्रा का बहुत बढ़िया आयोजन किया था, जिसमें महाराष्ट्र से ढोल पटक आए थे, महाराष्ट्र के इवेंट द्वारा समुद्र मंथन का कार्यक्रम किया था, उसके बाद गणेश वंदना की थी।
0: आयोजकों ने इस पंडाल का 3D वीडियो भी जारी किया है, जिसमें पंडाल का प्रस्तावित स्वरूप दिखाया गया है। पंडाल तैयार होने के बाद गणेश उत्सव के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। नागपुर से योगेश वसंत पांडे और सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, बात जब गणपति के आगमन की हो रही हो तो ये कैसे मुमकिन है कि मोदक का जिक्र ना हो। दरअसल मोदक को गणपति का प्रिय भोग माना जाता है। वैसे तो मोदक किसे पसंद नहीं होते, लेकिन गौरी पुत्र को मोदक से विशेष प्रेम है। गणपति से जुड़ी कहानियों में वो माँ गौरी से लेकर देवी अनुसुईया तक सबके हाथों से मोदक पाते रहे हैं और बप्पा का ये मोदक प्रेम उनके भक्तों को भी खूब भाता है। तो चलिए, एक वक्त था, ये भी आपको बता देते हैं, जब गणेशोत्सव में मोदक बनाने का चलन महाराष्ट्र तक सिमटा था, लेकिन देखते ही देखते मोदक देश के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच गया, मुंबई से लेकर दिल्ली तक। मिठाई की दुकानों में गणेश चतुर्थी के मौके पर लड्डू के साथ साथ अब मोदक भी खूब बनने और बिकने लगा है। दिल्ली के चांदनी चौक की एक ऐसी ही दुकान मौजूद है जहां के लिए दावा किया जाता है कि मोदक का चस्का दिल्ली वालों की जुबान पर वहीं से चढ़ा। दरअसल 40 साल पहले इस दुकान के मालिक महाराष्ट्र के दौरे पर गए तो कुछ नया करने की चाह में लौटते समय मोदक बनाने के सांचे वहां से लेते आए। फिर क्या था, चांदनी चौक में मोदक बनने का सिलसिला चल पड़ा और अब यहां लगभग 25 तरह के मोदक तैयार किए जाते हैं। चावल, काजू, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट के अलावा स्ट्रॉबेरी, हेजलनट, कलाकंद के स्वाद वाले मोदक भी यहां पर मौजूद हैं।

0: बप्पा आ रहे हैं और बप्पा के आने की तैयारियां हर तरफ दिखाई पड़ रही है। आज हम आपको दिल्ली के दिल चांदनी चौक में लेकर आए हैं और चांदनी चौक की उस दुकान पर जहां पिछले 35 साल से लगातार मोदक तैयार किया जा रहा है, बप्पा का फेवरेट भोग तैयार हो रहा है। आज भी हम आपको यहां पर अलग अलग तरह के मोदक की तैयारी दिखा रहे हैं, वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं, उनकी मेकिंग दिखा रहे हैं। किचन में हम मौजूद हैं और आपको बात करवाएंगे उन लोगों से भी जो पिछले 35 सालों से लगातार इस काम में लगे हुए हैं। ये दुकान 1910 के आसपास शुरू हुई थी, लेकिन ये इस दुकान के उन लोगों का इनोवेशन ही था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई चीज़ लाई जाए जो कि नॉर्थ इंडिया में भी बहुत तेज़ी से चल जाए। और नए के नाम पर वो पहुँचे महाराष्ट्र और वहाँ से लेकर आए ये सांचा। ये वो पहला सांचा है जो इस दुकान के पूर्वज लेकर आए थे मोदक बनाने के लिए। ये सांचा आया और तब से यहाँ पर बप्पा का फेवरेट भोग मोदक बनना शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक ये लगातार ऐसे ही बन रहा है। 25 से ज़्यादा फ्लेवर ये लोग खुद बनाते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल फ्लेवर ऑर्डर भी करता है तो उसकी पसंद का मोदक भी यहाँ पर तैयार हो जाता है। हम भरत के किचन में हैं, तो कौन कौन सी वैरायटी है इसमें, कितने तरह के मोदक हैं?
1: सर देखिए, यहाँ पे शाम स्वीट्स के अंदर हम डिफरेंट तरीके के मोदक बनाते हैं। वैसे तो इंडिया हमारा रिच ऑफ कल्चर्स, टेस्ट एंड अलग अलग जगह के अलग अलग स्वाद हैं। जो मोदक असल बनना शुरू हुआ था महाराष्ट्र से, साउथ साइड से, वो बनना शुरू होता है सब अनाज का, बट दिल्ली में आते आते उसके फ्लेवर्स वेरिएशंस चेंज हो गए। जैसे अब आप यहाँ पे इस थाल में देख पा रहे हैं, एक मोतीचूर का है, केसर का है, मोती बूंदी का है, स्ट्रॉबेरी का है, आपका खोए का है, पेड़े का है, ये आपका कीवी का हो गया, मोटे गोले का हो गया, अल्फांसो विद चॉकलेट हो गया, कलाकंद का हो गया, ये केसर मिक्स हो गए। इस तरीके से वेरिएशंस हैं अलग अलग तरीके के, और इसके अलावा ना जाने कितने किस्म के बन जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट है और एक इनोवेशन है जो जिस तरीके से जैसे बना सके। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हमारे को इस तरीके का मोदक चढ़ाने का मन है, क्योंकि भगवान को तो वही अर्पित किया जाता है ना। जो भगवान को एक ही चीज़ कब तक खिलाएंगे कहते हैं ना बहुत से लोग, तो इसलिए जो सामने वाले का स्वाद हो हम वो चीज़ बनाने में सक्सेस करते हैं उसको, ताकि वो अपने मन के हिसाब से वो पूरा कर सके अपनी पूरी श्रद्धा भाव से।
0: जो भाव का है वो भगवान का है, सिंपल सी बात है। तो अभी जब मोदक हम लोग बना रहे हैं, 35 साल पहले जो यात्रा शुरू हुई थी उस समय भी क्या वजह थी कि मतलब, क्योंकि तब यहाँ पर गणेश पूजा उस लेवल से नहीं होती थी, लोग जानते नहीं थे, कैसे इसकी शुरुआत हुई?
1: इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई थी, अब जैसे पुराने लोग बताते हैं, इसमें पुराने मतलब हमारे बड़े बताते हैं, गणेश चौथ तो गणेश चतुर्थी जिसको शॉर्ट में गणेश चौथ बोलते हैं, तो इसको तो ये तो पहले ही मनाई जाती थी, मगर दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ भगवान को लड्डुओं का भोग लगाते थे। तो फिर हमारे बड़े गए, कभी बाहर घूमने गए होंगे या किसी कारणवश गए होंगे किसी काम से, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ डिफरेंट चीज़ देखी, तो वहाँ से मोदक बनाने का सांचा लेके आए, वहाँ से रेसिपी लेके आए, वहाँ से कारीगर को लेके आए, वो बनाना सीखा, वो रेसिपी आज तक है हमारे पास, और वो सांचे भी हैं। जैसे ये बहुत पुराने सांचे हैं, मतलब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो करीबन 40 से एक साल तो हो गए होंगे इस सांचे को, जो आज भी हमने संभाल के रख रखा है उनकी याद में।
0: ये सबसे पहले आया था?
1: हाँ जी, ये आया था एक बड़े के लिए और एक छोटे के लिए, ये था इस तरीके से जी। तो पहले तो, अब तो आज की डेट में बहुत सारे स्टील के बनते हैं, स्टेनलेस स्टील के, प्लास्टिक के बनते हैं, बट ये पहले के ज़माने में जो हाथ से बनते थे ये यही थे। इसमें एक पहले लकड़ी का और होता था, लकड़ी का तो अब समय के हिसाब से थोड़ा सा नहीं रहा सही, अभी है भी नहीं हाथ में, तो इसलिए जो आपको है वो दिखा पा रहे हैं। बाकी अब जो हम बनाते हैं,
0: आपके पूर्वजों ने कहा

0: करना था और वो एक्सपेरिमेंट ये था।
1: गणेशोत्सव की शुरुआत से कई दिनों पहले ही कलाकारों ने अलग अलग रूपों में बप्पा को ढालना तो शुरू कर दिया था। ऐसे में अब बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। कहीं गणपति देवा अपने पिता महादेव के वेश में नजर आ रहे हैं, तो कहीं लाल बादशाह राजा के स्वरूप वाली प्रतिमा भी बनकर तैयार है। शहर शहर श्रद्धालु बप्पा की इन प्रतिमाओं को खरीदने पहुंच रहे हैं।

0: जिसकी जैसी भावना वैसे उसके बापा। गणेश उत्सव में बहस कुछ ही दिन बाकी है, सो शहर शहर गणपति की मूर्तियां बनाने का काम भी तेज हो गया है। मूर्तिकार इन मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ये तस्वीरें यूपी के झांसी से आई है। झांसी में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बाजार में इस बार भगवान गणेश के पारंपरिक स्वरूप के साथ साथ कई नए और आकर्षक डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर भगवान भोलेनाथ से जुड़े स्वरूपों वाली गणेश प्रतिमाएं लोगों को खूब पसंद आ रही है। शिवलिंग के साथ गणेश प्रतिमा, भगवान शंकर के वेश में गणेश और लालबाग के राजा के स्वरूप वाली प्रतिमाओं की मांग खूब है। इसके साथ ही AI डिजाइन से तैयार किए गए नए नए स्वरूप भी भक्तों को भा रहे हैं। स्वरूप के अलावा बात अगर डिजाइन की करें तो घर में गणपति की स्थापना के लिए 1 से 3 फीट तक की प्रतिमाओं की मांग सबसे ज्यादा है। झांसी की तरह ही दिल्ली में भी गणेश प्रतिमाओं के निर्माण का काम जोर शोर से इन दिनों चल रहा है। इस काम से जुड़े कई कारीगर बापा की मूर्तियों को डिमांड के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। इन मूर्तिकारों के लिए ये सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि आस्था और कला का एक साथ पेश करने का मौका भी है। ये दो बहनें भी 20 साल से गणेश प्रतिमा तैयार कर रही हैं। पहले ये काम इनके पिता किया करते थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद दोनों बहनों ने इस काम को आगे बढ़ाया। ये दोनों बहनें न सिर्फ मूर्तियां बनाती हैं, बल्कि वो खुद गणपति बैठाती भी हैं।
1: गणेश पूजा, गणेश उत्सव, गणेश जी की मूर्ति को तैयार करना, उसको सजाना सवारना, इसके क्या मायने हैं ये आप इन दो बहनों से समझ सकते हैं, मंजू और वसुंधरा। ये दो बहनें सालों से इसी काम में लगी हुई हैं, हर साल मूर्ति को अपने हाथ से तैयार करती हैं, फिर उसे बेचती हैं, कुछ पैसे कमाती हैं। 20 साल से दोनों बहनें एक साथ ये काम कर रही हैं। इसके पहले ये काम इनके पिताजी किया करते थे, वो चल बसे तो उसके बाद दोनों बहनों ने मोर्चा संभाला हुआ है।
2: मूर्ति में सजावट करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, जो काम आते हैं वो कर लेते हैं।
1: ये काम सीखा किससे, अपने आप से या फिर पिताजी सिखा गए थे?
3: पिताजी सिखा के गए थे, वैसे तो अब देखते देखते सीख गए हम भी।
0: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को है, सो इस समय शहर शहर ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है। कोई मूर्तियों को आकार दे रहा है तो कोई रंग भरने का काम में जुटा है। खास बात ये है कि कई जगहों पर अब मूर्तियों को बनाने के लिए सिंथेटिक मटेरियल की जगह मिट्टी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन प्रयागराज में बनाई जा रही इन मूर्तियों के निर्माण में गंगा की मिट्टी, धान का पुआल या पराली और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे विसर्जन के बाद पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। यहाँ के मूर्तिकार दस्तकार उत्साहित हैं, क्योंकि लगातार बारिश के बावजूद इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की मांग बढ़ गई है। घरों से लेकर बड़े बड़े पंडालों तक के लिए बड़ी संख्या में ऑर्डर मिल रहे हैं।
4: गणेश जी का मिट्टी पूरा प्योर मिट्टी और गंगा जी का शुद्ध मिट्टी से बनता है, और इसमें धान का पैड़ा है और लकड़ी है, बांस है, यही इको फ्रेंडली पूरा कलर भी हमारा।

0: कर लिए।
1: ये तस्वीरें राजकोट की है, जहां भी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं को ही सजाने का काम चल रहा है। कोलकाता के दीपक जाना पिछले 30 वर्षों से लगातार यहां आकर बापा की प्रतिमाओं को तैयार करते हैं। राजकोट के गणेश उत्सव में अपने हुनर के रंग भरते हैं।
2: लेटेस्ट डिजाइन इंटरनेट में आया, उसी को ढूंढ ढूंढ के कलेक्शन करके मैं लोग बनाया मूर्ति।
3: कौन सा वो खास मूर्ति?
2: खास मूर्ति जो पहले नंबर है, नवदुर्गा का स्वरूप में, उसका नवदुर्गा है, उसका गोद में बैठा हुआ गणपति बापा 9 फीट का ऊपर है। ऐसा और भी बहुत सारे थीम है, सभी अलग अलग है, एक ही डिजाइन एक में नहीं है, सभी जितना भी मूर्ति है सब अलग अलग डिजाइन का।
1: तो वही करनाल में राजस्थान से आया मूर्तिकारों का ये परिवार पिछले 6 महीने से बापा की मूर्तियों को आकार देने में जुटा है। इनकी मेहनत का नतीजा ये है कि बापा की सैकड़ों प्रतिमाएं अब यहाँ गणेश भक्तों को लुभा रही है।
4: अभी गणेश तो तैयार करने के मेरे 6 महीना हो गया बनाते बनाते, अभी एक एक मूर्ति में 10 से 12 दिन लग जाते जी, बारीकी काम है।
1: तो वही महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तो बच्चे ही मिट्टी से बापा की मूर्त गढ़ रहे हैं। गणेश उत्सव से पहले यहाँ बच्चों के लिए इस खास वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहाँ बच्चों ने मिट्टी से दोस्ती की और अपने हुनर के रंग भरकर बापा की प्रतिमाओं को तैयार करने में जुट गए। अब इनकी बनाई प्रतिमाएं इस साल गणेश उत्सव की शान बनेंगी। झांसी से अजय झा, राजकोट से रौनक मजीठिया, करनाल से कमलदीप, चंद्रपुर से विकास राजूकर, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: अब देखिए, कुछ सालों से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए गणेशोत्सव पर खास तौर से प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय इको फ्रेंडली यानी मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं बनाने का चलन भी रहा है। वास्तव में ये जल प्रदूषण से बचाव का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ऐसे में कई मूर्तिकार जहां मिट्टी और दूसरी सॉल्यूबल चीजों से एक से बढ़कर एक मूर्तियों को आकार दे रहे हैं, तो इनकी डिमांड भी मार्केट में खूब बनी हुई है।

0: बीते कुछ सालों से गणेशोत्सव पर प्रकृति का भरपूर ख्याल रखने का संदेश दिया जा रहा है। नेचर को नुकसान पहुंचाने वाले जहर से कोसों दूर बाप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां आज मूर्ति कारीगरों के साथ आस्थावानों की पहली पसंद है। ऐसे में कुछ मूर्तिकार परिवार अपनी गणेश भक्ति को ही पीढ़ियों से चली आ रही कला परंपरा में बदले हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर का एक परिवार है जो हर साल आस्थामयी और कलात्मक माहौल में भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय बांस, नारियल की छाल और मौली धागा से बेहद खूबसूरत और पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों को आकार दे रहा है। इस परिवार के मुखिया हैं शिवचरण यादव, जो कभी सरकारी मुलाजिम रहे, घर चलाने के लिए भेल भी बेची, लेकिन जब इस काम में मन नहीं रमा तो फिर कलाकारी करने का महज ख्याल ही मानो पैशन बन गया है।
1: बच्चे लोग सबसे पहले मेरे को वहाँ अध्यक्ष बनाए, उसके बाद फिर मैंने अपना धीरे धीरे स्थल सजावट का काम किया। स्थल सजावट करने के बाद अब उसमें भी मजा नहीं आया, तो फिर मैं बोला उसको बंद करके मूर्ति का काम स्टार्ट किया।
0: मूर्तिकार शिवचरण को इन मनोहारी मूर्तियों को आकार देते हुए 25 साल से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान उन्होंने ठेले पर भी बाप्पा की मूर्तियां रखकर बेची। साल 2011 से शिवचरण ने घर पर ही मौली धागा, नारियल की लकड़ी, नारियल की बुच जैसी कई इको फ्रेंडली चीजों से मूर्तियों को आकार देना शुरू किया। वहीं इस बार के गणेशोत्सव में शिवचरण ने धूप दीप, पेड़ की छाल और बांस की लकड़ी जैसी कई और पर्यावरण सुरक्षित जैसी चीजों से खूबसूरत बप्पा बनाए हैं, जिनके डिमांड काफी है।
1: इस बार हम लोग बनाए हैं धूप दीप का बनाए हैं राम भगवान के रूप में, और पेड़ के छाल से बनाया गया है, और उसके बाद बांस की लकड़ी से बनाया गया है, और नारियल की बूच को नारियल का स्वरूप दिया गया है।
2: बिंदी से शंख और सीप से
1: बनाया गया है, और ये क्या बोलते हैं,
2: बिंदी से
1: ये मोती से बनाया गया है।
0: शिवचरण और उनके परिवार की नजर में प्रकृति का सम्मान ही बाप्पा की सच्ची भक्ति है। शिवचरण अपनी पत्नी, दो बेटे और एक बहू के सहयोग से विघ्नहर्ता की ऐसी ऐसी सुंदर मूर्तियां बना रहे हैं जिनके चाहने वाले ग्राहक हर साल बढ़ रहे हैं।
3: बाकी मूर्तियां तो अलग अलग बनाए जाते हैं मिट्टी से और बाकी अन्य चीजों से, लेकिन हम लोग गणेश जी को किसी भी चीज में अलग अलग रूप में बनाकर, मतलब आप देख सकते हैं कि पीछे एक लकड़ी की छाल है, सामने धूप अगरबत्ती है, उसके हिसाब से अलग अलग चीजों में बनाते हैं।
2: आस्था भी है गणेश
3: जी, बहुत आस्था है हमारी।
0: फिलहाल तो मिट्टी की ये सुंदर सुंदर इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा हमारी प्रकृति को मुस्कुराने की वजह दे रहे हैं। रायपुर का ये परिवार गणेश मूर्ति को बनाने की कला को जिस अंदाज में जिंदा रखे हुए हैं, उससे न केवल समाज को अपना पर्यावरण बचाने की प्रेरणा मिल रही है, बल्कि खुशहाल प्रकृति बने रहने का संकेत भी मिल रहा है। तो हो जाए एक बार फिर विघ्नहर्ता का ये प्यारा सा उत्सव इको फ्रेंडली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि बप्पा पधार रहे हैं। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छे और पॉजिटिव खबरें जा रही हैं, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति बहुत साहसी हो जाता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति के अंदर बहुत आकर्षण पैदा होता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति को बड़ी सारी संपत्ति का फायदा होता है? क्या मंगल दोष होने से भी हो सकता है लाभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: महाराष्ट्र के अकोला में गणेश उत्सव को लेकर गजब का उत्साह, शास्त्री नगर में चिंतामणि गणपति बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का भव्य स्वागत, आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमान। राजधानी दिल्ली पर भी चढ़ने लगा गणेशोत्सव का रंग, स्वीट स्टोर्स में जोरदार तरीके से बप्पा के प्रिय मोदक का निर्माण, खूबसूरत मूर्तियों से सजे बाजार, तो कहीं घरों में मिट्टी से बने गजानन। अकोला में पोला उत्सव की जोरदार तैयारियां, बैलों को सजाने के लिए रंग बिरंगी रस्सियां, घुंघरू और पट्टे खरीद रहे हैं किसान। वृषभ राजा के प्रति सम्मान दर्शाता है ये पर्व। रामनगरी अयोध्या से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा, मानदेय में 50% इजाफे के साथ मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का कैशलेस इलाज। लखनऊ में हनुमान अंश की टीम से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाबा नेब करौरी के जीवन पर बनी फिल्म को देश भर से मिल रहा प्यार, बॉक्स ऑफिस पर हर दिन बना रही है नए रिकॉर्ड। वडोदरा में 6,000 से ज्यादा युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का मेगा इवेंट समारोह में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम, 35,000 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: हूं नवजोत रंधावा, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली गिरफ्तार की तरह फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है, हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है, कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं और इन्हें शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की पड़ताल और झूठ के नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले वायरल हो रहे उस वीडियो की बात होगी जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि हनुमान अंश फिल्म देखने पहुंची एक महिला हनुमान चालीसा सुनते समय अचानक बेहद भावुक हो गई और कुछ ही देर में जोर जोर से चीखने लगी। क्या है इसकी सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के से जुड़ी हुई जिसे नेपाल का बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक शख्स कुरान शरीफ पढ़ने लगा। वीडियो की सच्चाई क्या है, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: नीम करौरी बाबा के जीवन पर बनी भक्ति ड्रामा फिल्म हनुमान अंश ने धूम मचाई हुई है। ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हो रही है और सोशल मीडिया पर हनुमान अंश छाई हुई है। कहीं सिनेमा घरों के बाहर लड्डू बांटे जा रहे हैं, कहीं हनुमान सदा सहायते के नारे गूंज रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि महिला हनुमान अंश देखने के बाद थिएटर के अंदर ही चीख चीख कर दहाड़े मारने लगी। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
3: जिसने भी इस दृश्य को देखा वो हैरान हो गया। थिएटर के अंदर एक महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी और अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। महिला की हरकत देखकर आसपास बैठे लोग भी दंग हो गए। आसपास बैठे लोगों ने इसे रोकने की कोशिश में जुट गए। कोई इस लम्हे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने लगा। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि थिएटर में नीम करौली बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर बनी मूवी हनुमान अंश देख रही महिला हनुमान चालीसा सुनते समय अचानक बेहद भावुक हो गई और कुछ ही देर में जोर जोर से चीखने लगी। कुछ लोग इस घटना को गहरी भक्ति का प्रणाम बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स इसे भावनात्मक प्रतिक्रिया मान रहे हैं। वीडियो के साथ एक संदेश भी शेयर किया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि जब कोई फिल्म दिल को छू जाती है और इंसान भगवान की भक्ति में पूरी तरह डूब जाता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल हनुमान अंश ने सिनेमाघरों में अब तक आई फिल्मों के सामने पूरी बाजी पलट कर रख दी। इस फिल्म को लेकर न प्रमोशनल कोई प्रमोशन किया गया और न ही लोगों को रिलीज के समय भनक लगी। करीब 2 करोड़ रुपए के बजट में तैयार ये फिल्म अब तेजी से 200 करोड़ के क्लब की तरफ कमाई करती नजर आ रही है। इन सब के बीच सोशल मीडिया के पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि हनुमान अंश फिल्म में हनुमान चालीसा सुनकर ये महिला भावुक हो गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। पड़ताल में सामने आया कि वीडियो एक थिएटर के अंदर का है जहां पर्दे पर फिल्म चल रही है। उसमें नए जमाने के हिसाब से ही रिक्रिएट किया गया हनुमान चालीसा बज रहा है। इन सब के बीच एक महिला अपनी सीट पर दहाड़े मारकर रो रही है। वो इधर उधर लौट भी रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका शरीर काबू में ना हो। आसपास के लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये चौंकाने वाला दृश्य था। लेकिन जब फैक्ट चेक टीम ने वीडियो में आ रही आवाजों को फ्रेम दर फ्रेम सुना तो ये सामने आया कि ये तेलुगु है। इससे हमें ये इशारा मिल गया कि वायरल हो रहा वीडियो आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना का हो सकता है। इसके बाद हनुमान अंश मूवी में हनुमान चालीसा को नए तरीके से रिक्रिएट नहीं किया गया जिससे हमें दावे की सत्यता पर संदेह हुआ। साथ ही सर्च के दौरान ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि वायरल वीडियो हाल फिलहाल का है, क्योंकि अगर वाकई ऐसा हुआ होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर मिलती, लेकिन हमें ऐसा कहीं कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था, हनुमान अंश मूवी थिएटर्स में हिंदी भाषा में ही उपलब्ध है, साउथ के शहरों में भी इसके हिंदी शोज ही चल रहे हैं। अभी फिलहाल मेकर्स की तरफ से इसके आधिकारिक तेलुगु डब वर्जन की थिएटर या फिर ओटीटी रिलीज को लेकर कोई फाइनल डेट अनाउंस भी नहीं हुई है। ऐसे में हमारा सवाल ये कि वायरल हो रहे वीडियो में तेलुगु आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं। दूसरा सवाल कि हनुमान अंश मूवी में हनुमान चालीसा को रिक्रिएट नहीं किया गया है। ऐसे में हमारा सवाल सीधे तौर पर यह कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। सच और झूठ की इस रिपोर्ट में जानिए।
3: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रही वीडियो के कुछ की फ्रेंड्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो तेलुगु फिल्मों को कवर करने वाले एक इंस्टाग्राम पेज पर मिला। पेज पर वीडियो 30 जनवरी 2024 को अपलोड किया गया था। पोस्ट के मुताबिक ये घटना उपल स्थित एशियन सिनेमा में हुई थी और महिला फिल्म हनुमान के क्लाइमेक्स के दौरान भावुक होकर अजीब तरह से प्रतिक्रिया देने लगी थी। पड़ताल के दौरान हमें ये वीडियो एक YouTube चैनल पर 30 जनवरी 2024 को अपलोड हुआ मिला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि एक महिला हनुमान मूवी देखते समय असामान्य हरकतें करने लगी थी। इससे स्पष्ट होता है कि वायरल वीडियो हाल में रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश का नहीं है बल्कि करीब 2.5 साल पुराना है। सर्च के दौरान एक वेबसाइट पर 30 जनवरी 2024 को इस घटना पर प्रकाशित रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में वायरल वीडियो वाले दृश्य भी देखने को मिले। रिपोर्ट के अनुसार महिला फिल्म देखने के दौरान इतनी भावुक हो गई कि वह कांपने लगी और अपनी सीट से नीचे गिर गई। रिपोर्ट में इस घटना को तेलुगु फिल्म हनुमान के क्लाइमेक्स से जोड़ा गया था। हनुमान और हनुमान अंश दो अलग अलग फिल्में हैं। हनुमान तेलुगु सुपर हीरो फिल्म है जो हनुमान से जुड़े पौराणिक संदर्भों को सुपर हीरो कथा के साथ पेश करती है। वही हनुमान अंश नीम करोली बाबा के जीवन और उनके आध्यात्मिक यात्रा पर केंद्रित फिल्म है। हमारे पड़ताल में साक्ष्यों से स्पष्ट है कि थिएटर में अजीबोगरीब हरकतें करती महिला का वायरल वीडियो नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश से संबंधित नहीं है। ये वीडियो करीब 2.5 साल पुराना है और जनवरी 2024 में तेलुगु फिल्म हनुमान देखते हुए सामने आया था। अब इस पुराने वीडियो को हाल ही रिलीज हुई फिल्म हनुमानगंज से जोड़कर भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। और इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग सड़क पर दुआ करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि नेपाल का है, जहां पर आपदा के बीच लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। लेकिन जब वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में।

0: नेपाल में 26 अगस्त को आए विनाशकारी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। इस हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इन सबके बीच चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। किसी पहाड़ वाली जगह पर कई लोग सड़क किनारे कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां कहीं वर्दीधारी भी मौजूद है और कुछ लोग आते जाते हुए भी देखे जा रहे हैं। वीडियो को इस दावे से शेयर किया जा रहा है कि नेपाल में बाढ़ से बचाव के लिए कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि ये है ईमान की ताकत। ये वीडियो नेपाल का जहां पर कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है और दुआ की जा रही है, माशाल्लाह। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर 11 सेकंड का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कई लोग सड़क किनारे कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां कई वर्दीधारी भी मौजूद हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि नेपाल त्रासदी के बाद कुछ लोग सड़क पर कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। वीडियो को लेकर चौंकाने वाला दावा किया जा रहा था, क्योंकि इसके जरिए भी कहा जा रहा था कि नेपाल में बाढ़ से बचाव के लिए लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ा है। हाँ, ये बात सच है कि 26 अगस्त को नेपाल में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है, लेकिन वायरल वीडियो इसी बाढ़ से संबंधित है, ये जानना जरूरी हो गया था। लेकिन वीडियो को देखने से हमें इसमें ऐसी कई चीजें देखने को मिली जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। मसलन वीडियो में एक जगह एक वर्दीधारी जवान के जैकेट पर लिखे शब्दों को हमने जब गौर से देखा तो इस पर किर्गिस्तान लिखा हुआ था। हमें यह देखकर काफी हैरानी हुई। वायरल वीडियो नेपाल का है तो फिर यहां पर किर्गिस्तान के जवान का क्या कहा? नेपाल में आपदा राहत कार्यों में शामिल जवान नीले रंग की कैमोफ्लाज यानी कि नीली चितकबरी वर्दी में नजर आ रहे थे, जबकि आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान डार्क ग्रे बैकग्राउंड के साथ ही लाइट ग्रे, डार्क ब्लू और फिर ब्लैक मिक्स वाली वर्दी पहनते हैं। ऐसे में हमें वीडियो की सत्यता पर संदेह हुआ। हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि सर्च के दौरान जानकारी जो सामने आई है उसमें किर्गिस्तान के राष्ट्रपति ने नेपाल आपदा पर दुख जरूर जताया, लेकिन वहां कोई सैनिक रेस्क्यू टीम का हिस्सा बना ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। अब सवाल यह है कि अगर वायरल वीडियो नेपाल का है और बाढ़ से बचाव के लिए कुरान शरीफ पढ़ रहा है ये जवान, तो फिर यहां पर किर्गिस्तान रेस्क्यू टीम के जवान नजर क्यों नहीं आ रहे? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नेपाल के साथ जोड़कर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही? सच और झूठ
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 25 जून को अपलोड किया गया था। इसके बाद हमने इस इंस्टाग्राम अकाउंट में मौजूद बायो का अनुवाद किया, जिसके जरिए जानकारी सामने आई कि यह अकाउंट किर्गिस्तान के चुई ओब्लास्ट के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय के प्रेस विभाग से जुड़ा है। इतना ही नहीं, हमें इस अकाउंट पर अपलोड किए गए कई वीडियो में उसी ड्रेस में दिख रहे कई वर्दीधारी भी मिले जो वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियोस में वर्दीधारियों द्वारा पहने गए लाइफ जैकेट पर किर्गिस्तान रेस्क्यू भी साफ साफ लिखा हुआ देखा जा सकता है। इसी दौरान हमें किर्गिस्तान के एक मीडिया पोर्टल के फेसबुक अकाउंट से 26 जून को पोस्ट किया गया वीडियो मिला। इस वीडियो में भी वायरल वीडियो से मिलते जुलते दृश्य मौजूद थे। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में लिखा हुआ था, किर्गिस्तान के केगेती घाटी में एक 6 वर्षीय बच्चा पानी में गिर गया था जिसकी तलाश की जा रही थी। इसमें कई देशों के वॉलंटियर्स भी शामिल हुए थे। इसी दौरान बिरदिक गाँव के हाफिजों ने बच्चे की खोज के लिए कुरान पढ़ी थी। जांच में हमें 25 जून को किए गए कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट भी मिले जिनमें वायरल वीडियो से मिलते जुलते दृश्य मौजूद थे। इस संबंध में हमें किर्गिस्तान के एक न्यूज वेबसाइट पर 26 जून का प्रकाशित रिपोर्ट भी मिला। रिपोर्ट में बताया गया था कि 23 जून को एक कार केगेती नदी में गिर गई थी। इसमें 2 महिलाएं और 5 बच्चे मौजूद थे। दोनों महिलाएं और 3 बच्चे गाड़ी से निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन 2 बच्चे उसमें ही फंसे रह गए थे। 12 वर्षीय बच्चे की बॉडी पहले ही रेस्क्यू टीम ने रिकवर कर ली थी। बाद में 26 जून को उस बच्चे का शव भी बरामद हो गया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से साफ है कि नेपाल में बाढ़ से बचाव के लिए कुरान पढ़े जाने के दावे से वायरल ये वीडियो किर्गिस्तान का है।
1: चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
3: क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति बहुत साहसी हो जाता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति के अंदर बहुत आकर्षण पैदा होता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति को बड़ी सारी संपत्ति का फायदा होता है? क्या मंगल दोष होने से भी हो सकता है लाभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
1: वक्त है फैक्ट चेक की, आखिरी सफर का, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
5: अरे बेटा बोल तो दिया नेम फाइव सीजन्स, विंटर समर ऑटम स्प्रिंग मानसून, क्या दिक्कत है इसमें? नेम फाइव सीजन्स तो नहीं आते तो मैं इनका बोला वर्ड मीनिंग लिखो फटाफट से। चलो बेटा मेरे पास पेंसिल्स का टाइम भी अपनी लाया करो, गो चलो अपनी पेंसिल यूज करो। अब मैं पेंसिल देने वाली बैठी हुई हूँ, वर्क देती हूँ आपको ना कि पेंसिल्स, अपनी लाया करो पेंसिल्स। कल से ना 4 बजे अपने अपनी पेंसिल्स लेके आएंगे, आज लास्ट टाइम है, दे रही हूँ बस मार्क पकड़ो।
6: छोटी सी मैडम ने घर में ही लगा ली अपनी क्लास, बच्चे जिस अंदाज में पढ़ा रही है उसे देखकर यूजर्स मुस्कुरा रहे हैं। दरअसल बच्ची ने नोटबुक्स को ही अपने छोटे छोटे स्टूडेंट्स की तरह मान लिया है और बड़े ही ध्यान से उन्हें पढ़ाती नजर आ रही है। कभी वो कॉपी की तरफ देखकर समझाने की कोशिश करती है तो कभी टीचर की तरह अपना पूरा ध्यान क्लास पर लगाती दिखाई देती है। सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान बच्ची के अंदाज ने खींचा है, जिस तरह से वो टीचर बनकर पढ़ाने का खेल खेल रही है वो देखने में बेहद प्यारा और मजेदार है। बच्ची की बॉडी लैंग्वेज और पढ़ाने का तरीका देखकर सोशल मीडिया यूजर्स उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक छोटे बच्चे ने अपने परिवार के बारे में लिखे सवाल का ऐसा जवाब दिया कि उसकी कल्पना और बेबाकी दोनों चर्चा का विषय बन गए। तस्वीर में बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आ रहा है और उसके सामने उसकी लिखी हुई कॉपी रखी है। कॉपी में टीचर ने अपने परिवार के बारे में लिखे सवाल दिया था। इसके जवाब में बच्चे ने अपने परिवार के हर सदस्य के बारे में बड़े ही अनोखे अंदाज में लिखा है। बच्चे ने शुरुआत करते हुए लिखा कि उसका परिवार खतरों का खिलाड़ी है। इसके बाद पिता के बारे में उसने लिखा कि उनके पापा शक्तिमान का रूप है। माँ को उसने घर की लक्ष्मी बाई बताया है। यहाँ तक तो जवाब काफी प्यारा और सामान्य लगता है, लेकिन इसके बाद बच्चे की कल्पना कुछ ज्यादा ही मजेदार हो जाती है। बच्चे ने अपनी बहन का जिक्र भी बेहद अनोखे अंदाज में किया है। इसके बाद उसने अपने बारे में जो लिखा वही इस पूरी कॉपी का सबसे मजेदार हिस्सा नजर आता है। बच्चे ने खुद को घर का सबसे नालायक बताया है। उसकी ये बेबाक लाइन पढ़कर लोग हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे हैं। जवाब पढ़ने के बाद टीचर ने लाल पेन से कुछ शब्दों को घेरा और नीचे अपनी टिप्पणी भी लिखी। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि बच्चे को इस जवाब के लिए 10 में से 10 नंबर मिले हैं। टीचर का ये फैसला भी लोगों को खूब गुदगुदा रहा है। गुरु शिष्य के रिश्ते की यह खूबसूरत तस्वीर लोगों को खूब पसंद आ रही है। यहाँ तोहफे की कीमत नहीं बल्कि उसके पीछे छिपा बच्चों का स्नेह मायने रखता है। किसी बच्चे के हाथ में खेत से तोड़ी गई तोरई है, कोई बच्चा अपनी भैंस का दूध लेकर पहुँचा है, तो कोई अपने घर खेत से ककोड़ा लेकर आया है। देखने में चीजें भले ही साधारण लगे लेकिन बच्चों की नजर में ये उनके पास मौजूद सबसे खास चीजों में से है। इस पूरे भाव को सबसे ज्यादा खास बनाता है शिक्षक का व्यवहार। बच्चों की लाई गई इन चीजों को वो सामान्य सामान की तरह नहीं लेते, वो उन्हें अपने सिर से लगाकर प्रणाम करते हैं, मानो बच्चों ने सामान नहीं बल्कि अपना प्यार और सम्मान उनके हाथों में रखा हो। शिक्षक भी स्नेह को पूरे सम्मान के साथ अपने सिर माथे लगा लेते हैं। इस अद्भुत कलाकारी को देखकर लोग दंग हैं। नीली साड़ी पहने एक महिला अपने हाथों में एक विशालकाय हरा पत्ता थामे हुए दिखाई देती है। महिला पत्ते को पकड़े हुए मुस्कुराती है, जिससे लोगों को लगता है कि ये शायद प्रकृति की सुंदरता को दर्शाने वाला कोई साधारण वीडियो है। लेकिन असली रोमांच तब शुरू होता है जब महिला उस विशाल पत्ते को घुमाती है। पत्ते के दूसरी तरफ का दृश्य देखकर हर कोई हैरान हो गया। पत्ते के कैनवास पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बेहद खूबसूरत और जीवंत चित्रकारी उकेरी गई है। पत्ते की सतह पर किए गए रंगों के संयोजन और बारीकियों को देखकर महिला के हुनर का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। एक ड्राइवर के लिए उसकी गाड़ी सिर्फ मेटल और टायरों का ढांचा नहीं होती बल्कि उसका हमसफर होती है, जिसने धूप, छांव और आंधी तूफान में उसका साथ निभाया होता है। केरल की रोडवेज बस ड्राइवर का रिटायरमेंट का ये भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है, जिसमें वो अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद बस को ऐसे विदाई दे रहे हैं जैसे कोई अपने किसी बेहद करीबी को अलविदा कह रहा हो। ड्राइवर पॉल कुरियन का ये वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इडुक्की जिले के कुमेली डिपो पर 2 सितंबर को शूट किए गए इस 1 मिनट के वीडियो में पॉल कुरियन अपनी आखिरी शिफ्ट पूरी करने के बाद बस के पास खड़े नजर आते हैं। उन्होंने बेहद भावुक अंदाज में बस की स्टेयरिंग व्हील को चूमा, उसके चारों टायरों को छूकर नमन किया और जाने से पहले गाड़ी को सल्यूट किया। इस दौरान पॉल कुरियन की आंखें नम हो गई और वो अपने आंसू पोंछते हुए वहां से विदा हुए। सालों तक जिस बस के जरिए उन्होंने लाखों यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाया और अपने परिवार की आजीविका चलाई, उससे अलग होना उनके लिए बेहद मुश्किल था। इंटरनेट पर ये वीडियो सामने आने के बाद लोग ड्राइवर के अपने काम के प्रति समर्पण और ईमानदारी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी फिटनेस और जज्बे से युवाओं को भी हैरान कर दिया है। हरी साड़ी में एक बुजुर्ग महिला लेग प्रेस मशीन पर लेटी हुई है, वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति खुद लेग प्रेस प्लेट्स के ऊपर बैठे हुए हैं ताकि अम्मा पर अतिरिक्त वजन आ सके। अम्मा बड़े ही सहज अंदाज में लेग प्रेस रेप्स मारती हैं और आसपास खड़े युवाओं ने देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इसके बाद अम्मा बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से केबल फ्लाई और बटरफ्लाई मशीन पर चेस्ट और शोल्डर वर्कआउट करती नजर आती हैं। बिना किसी झिझक के साड़ी का पल्लू संभाले अम्मा का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लंदन के अंडरग्राउंड ट्रेन में सफर करने वाले लोगों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि एक दिन उन्हें प्लेटफॉर्म पर ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जिसे देखकर ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्री हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। मामला 2 छोटे छोटे चूहों का है जो लंदन के अंडरग्राउंड स्टेशन पर अचानक आपस में भिड़ गए। दोनों की लड़ाई इतनी मजेदार थी कि वहां मौजूद यात्रियों का ध्यान ट्रेन से ज्यादा इन दोनों फाइटर्स पर टिक गया। दोनों चूहे कभी एक दूसरे के पीछे दौड़ते तो कभी सामने आकर पंजों से ऐसे वार करते जैसे किसी बड़े बॉक्सिंग रिंग में मुकाबला चल रहा हो। कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लगा मानो दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी हो और आज हिसाब बराबर करने का दिन आ गया हो। वीडियो बनाने वाली सोनिया मैंसफील्ड अपने दोस्त अरुण के साथ स्टेशन पर मौजूद थी। दोनों की नजर जब इन चूहों पर पड़ी तो उन्होंने इस मजेदार घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। चूहों की हरकत इतनी अजीब और मजेदार थी कि वहां मौजूद लोगों के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया।
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सोचिए एक रोबोट आपके घर में आए और सिर्फ चलने या बोलने की बजाय फ्रिज खोले, सामान उठाए, चीजों को सही तरीके से पकड़े और आपके साथ मिलकर काम करे। सुनने में भविष्य की कहानी लगता है, लेकिन ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद के सामने इसकी झलक दिखाई गई। AI पावर्ड रोबोट्स ने अपनी ऐसी क्षमताओं का प्रदर्शन किया जो आने वाले वक्त में घर से लेकर फैक्ट्रीज तक काम करने का तरीका बदल सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: ये तस्वीर उस भविष्य की है जहां मशीनें सिर्फ मशीन नहीं रहेंगी। ब्रसेल्स में यूरोपियन संसद के खास रोबोटिक शोकेस में एआई पावर्ड रोबोट्स ने ताकत दिखाई। चलते रोबोट्स, चीजें उठाते रोबोट्स और बारीकी से काम करते रोबोट्स। 14 देशों के 31 एकेडमिक और इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के 15 रोबोट्स ने दिखाया कि मशीनें अब सिर्फ प्रोग्राम किए गए काम दोहराने से आगे बढ़ रही हैं। इन रोबोट्स की सबसे बड़ी खासियत है अपने आसपास की दुनिया के साथ तालमेल, किसी वस्तु को पहचानना, उसके आकार और स्थिति को समझना, फिर उतनी ही ताकत से पकड़ना जितना जरूरी हो। इंसान के हाथ के लिए ये सब बेहद स्वाभाविक है, लेकिन एक रोबोट के लिए हर मूवमेंट के पीछे सेंसर, एआई और बेहद सटीक गणना काम करती है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है फ्रिज खोलना, हमारे लिए रोज का मामूली काम, लेकिन रोबोट के लिए एक पूरा मिशन। उसे फ्रिज देखना है, हैंडल पहचानना है, सही जगह हाथ ले जाना है, ग्रिप बनानी है और फिर सही ताकत लगाकर डोर खोलना है।
1: So they have to interact with our environment, open doors, open door, drawers. In the case of our robot has to open the fridge, which seems like a simple task. We do it all the time. But imagine when you do it and your hand is very soft and compliant and is doing very quick movement.
0: असली कमाल सिर्फ रोबोट्स के चलने में नहीं, कमाल तब है जब वो देखकर फैसला करे, हाथ बढ़ाए और काम पूरा करे। और यही क्षमता इन्हें घर, अस्पताल और दूसरी जगहों पर इंसान का मददगार बनाने की दिशा में ले जा रही है। लेकिन इस तकनीकी दौड़ में यूरोप के सामने बड़ी चुनौती भी है। चीन और अमेरिका ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में भारी निवेश के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यूरोप के पास मजबूत रिसर्च है, लेकिन उसे लैब से निकालकर बड़े पैमाने पर उत्पादन तक पहुंचाने की रफ्तार अभी चुनौती बनी हुई है।
2: Huge ecosystem of suppliers, of technology, manufacturing facility that allow to accelerate and go very, very fast as China is doing or how US is doing because of the large investment that they are receiving.
0: ये सिर्फ तकनीक की दौड़ नहीं है, बुजुर्ग होती आबादी और घटते वर्कफोर्स के बीच आने वाले वक्त में ऐसे रोबोट्स की जरूरत और बढ़ सकती है।
3: It's definitely lack of funding and lack of political willingness. It's not that we don't get funding. It's not that the politicians do not pay attention to robotics, but clearly not at the same level as what happens in China.
0: फ्रिज के डोर खोलने से शुरू हुई ये कहानी घर के काम से लेकर फैक्ट्री के मुश्किल काम तक पहुंच सकती है। बेशक रोबोट्स इंसान नहीं बन सकते, लेकिन उन्हें इंसान की तरह काम सिखाने की कोशिश अब पूरी रफ्तार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति बहुत साहसी हो जाता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति के अंदर बहुत आकर्षण पैदा होता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति को बड़ी सारी संपत्ति का फायदा होता है? क्या मंगल दोष होने से भी हो सकता है लाभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी